हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं, क्योंकि बाबा की चाहना यही है कि वतन में भी साथ में रहें, मूल वतन में, और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ भी राजधानी में साथ रहे। तो जितना दिल तख्त नशीन उतना रॉयल फैमिली में आएंगे, और फिर द्वापर कलयुग में भी समीप संबंध में ही रहेंगे। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार के सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है, अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है, ना सब सब्जेक्ट में पास होना है, पास रहना है। फिर बाबा ने देखा सभा में बहुत बच्चे पहली बारी भी आए थे, तो बाबा कहते पहली बारी जो बच्चे आए हैं वो उठो, पहली बारी आए, आधा क्लास तो नया है, आए हैं, बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। इतना प्यार से, इतनी ऊंची अथॉरिटी, जो पहली बारी आए उनका स्वागत कर रहे हैं, मुबारक हो इस परिवार में आने की बाबा, मुबारक हो पहली बार आने की, मुबारक हो, भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी यह अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। बाबा उनको कहते हैं भविष्य जितना आगे बढ़ाना चाहो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और ये दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे। कितना प्यार बाबा का है बच्चों से, पहली बारी आए हैं तो भी बाबा कहे आगे बढ़ने की मार्जिन है तीव्र पुरुषार्थ के आधार पर, क्योंकि बाप दादा और दैवी परिवार का आगे बढ़ने का वाइब्रेशन मिलेगा। इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की, आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ करो। बाबा फिर भी उनको कहते हाँ तो करो, क्या आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो। अच्छा, फिर बाबा ने मधुबन निवासियों को देखा, तो बाबा मधुबन निवासियों को कहते हैं मधुबन वाले तो लकी है, थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ, और कोई में साथी नहीं बनाना, और बातों में साथी नहीं बनाना, पुरुषार्थ में एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लेंगे, बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना, और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए, मधुबन में सब आ गए, ज्ञान सरोवर शांतिवन सब आ गए। तो मधुबन वाले अगर मिलके, ये नहीं पांडव भवन अलग है या कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक है। तो मधुबन वाले समझते हैं करेंगे, हाथ उठाओ जो करेंगे। बाबा ने जो दिया होमवर्क वो करेंगे, एक सेकंड में बिंदी लगाना और फिक्र से फारिग हो जाना, संकल्प और समय के खजाने के वैल्यू को समझते हुए अंडरलाइन करना और बाबा के दिल तक नशीन सदा रहना। तो बाबा कहते हैं हाथ उठाओ जो करेंगे, सभी ने उठाया, जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है, मधुबन वाले जो समझते हैं कि करना क्या बड़ी बात है, बाप दादा है दादियां हैं तो बड़ी बात तो है नहीं, दादियां क्या समझती है, मधुबन वाले तो नंबर वन,
अच्छा है, बाबा ने ये करके दिखाने का सबको कहा हुआ है, लेकिन मधुबन मधुबन तो मधुबन है, आप सब वाइब्रेशन देना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, विघ्नों का नाम निशान नहीं। चलो बात हुई, कोई लेन देन किया, खत्म। समझो कोई बात हुई, आपस में लेन देन कर दिया, खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था, हां जी का, ना शब्द नहीं, हां जी, बहुत अच्छा। तो मधुबन पहला नंबर जाएगा, बाप दादा को मधुबन का फुकुर है ना, हर एक जोन का फुकुर है, खाली मधुबन वालों का नहीं, लेकिन बाबा कहे हर जोन का फकूर है। अभी मधुबन सामने आया है इसलिए बाबा मधुबन को कहते हैं, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं। हाँ जी मीठी आत्मा, ये सब का पाठ पक्का है? हाँ जी मीठी आत्मा, पक्का है ना? इनाम तो मधुबन वालों को लेना चाहिए। एक सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो? पूछा बाबा ने। एक सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो? चलो पुरुषार्थी है, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं तभी उड़ते हैं। पीछे जो बातें हुई उसको पकड़ते नहीं, छोड़ देते हैं तभी उड़ते हैं। तो बहुत अच्छा। फिर बाबा के सामने गुजरात जोन बैठा था, तो गुजरात वालों को देखकर बाबा ने कहा अभी गुजरात कोई नवीनता करे। बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो। पिछले संडे की मुरली में दिल्ली वालों को भी बाबा ने कहा नवीनता करो। अभी बाप दादा को समाचार मिला तो भी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया है उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है। अभी तो इन्वेंशन शुरू की है, लेकिन भारत या विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हो। भारत और विदेश दोनों मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी, शुरू किया है। अभी विश्व में ये फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना है, और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है, अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों से आए और विश्व में ये प्रसिद्ध हो, तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन है, ब्रदरहुड सिस्टरहुड, ये आवाज फैलता रहे, एक ही स्टेज पर सब तरफ के लोगों का विशेष अनुभव हो। प्लान तो बना रहे हैं सभी, अभी बेहद में जा रहे हैं, अभी बेहद में जा ही रहे हैं। सबको मालूम हो तो ये एक गॉड फैमिली है, ये प्रसिद्ध हो। बाकी तो सभी जो भी आते हो सेवा भी कर रहे हो, स्व पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और गॉडली कार्य है। बाबा कहते जो भी आते हैं सेवा भी कर रहे हैं, स्व पुरुषार्थ भी कर रहे हो और गॉडली कार्य है, यह भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक फैमिली है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं, हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतजार कर रहा है। बाबा फिर रिमाइंड कराते हैं अंत में, समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करना,
आप समय को जितना समीप लाने चाहो, समाप्ति के समय को जितना समीप लाने चाहो उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, समय पर तैयार होना या ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो कि हम समय पर तैयार हो जाएंगे, बाबा कही या ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता है, क्या कहता है? अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाए। प्रकृति भी बाप को कहती है अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दे? समय भी कहता है, प्रकृति भी कहती है। तो बाबा पूछते, बाप दादा क्या जवाब दे, क्या जवाब दे? समय आया कि आया ये कहे, आपकी तरफ से ये जवाब दे, क्या जवाब दे? बोलो क्या जवाब दे? अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना। समाप्ति के समय को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करना, कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे प्रकृति को? प्रकृति बहुत परेशान है, बाबा को भी रहम आता है, प्रकृति बहुत परेशान है। दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही है, मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, बाबा तो देखते हैं कि बच्चे करते हैं, लेकिन लगातार बढ़ती रहे वह और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती है, चिल्लाती है, तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वह एक सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तो भी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की तो चली रही है, बाप दादा खुश है। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह याद रखना और रखवाना, खुद भी याद रखना और दूसरों को भी रखवाना। अच्छा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सन्मुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों को नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मुहूर्त भव। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मुहूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य यानी सेवा सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मुहूर्त के साथ साथ अभिशक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते हैं।
ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्द में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे सूर्य की किरणें फैलती है वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो जाओ, योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो, योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति।

ओम शांति। हम सभी को बाबा ने अपने महान कार्य की महान जिम्मेदारी दी है। जरूर उसने हमें योग्य समझा होगा और वो महान कार्य करने के लिए उसने हमें शक्तियां भी दी, सर्व खजाने भी दिए, ताकि हम दुखियों के दुख दूर कर सकें, जो अशांत हैं उन्हें शांति दे सकें, उन्हें शांति का मार्ग दिखा सकें, जो परेशान हैं उन्हें श्रेष्ठ ध्यान में स्थित कर सकें। बाबा ने हमें सर्व खजाने प्रदान किए हैं, हम गिरतो हुओ को उठाएं। गिराने वाले तो संसार में अनेक हैं, और जो दूसरों को गिराते हैं वो स्वयं कभी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। जो दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, दूसरे आगे बढ़ रहे हों और वो परेशान होते हैं कि हमारा क्या होगा, नाम तो इनका हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी आत्माएं सदा ही पीछे रहेंगी। भले ही उन्हें पद पोजीशन बड़ा मिल जाए, लेकिन संगम युग पर पद पोजीशन नहीं, श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर बैठना एक महान प्राप्ति है। जिसने संगम युग पर अतिंद्रिय सुखों में जीवन जीना सीख लिया, जिसने संगम युग पर बाबा के महान कार्यों को पूर्ण करना सीख लिया, जिसने बाबा की सभी आज्ञाओं को जीवन में धारण कर लिया, जो मैंपन से मुक्त हो गए, वो महान है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। बाबा हमेशा कह रहे हैं, चाहे कोई कैसा भी हो, तुम सभी के लिए शुभ भावना रखो। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, चाहे रावण से भी हजार गुना बड़ा कोई तुम्हारा दुश्मन हो, तुम उसके लिए भी शुभ भावनाएं रखो। हम सोचने लगते हैं, हम ऐसा क्यों रखें, भला ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हमें सोचना ये चाहिए कि ये भगवान की आज्ञा है, और उसकी आज्ञाओं का पालन करने में हमें बहुत बल मिलता है, हमारा कल्याण होता है, हमारे द्वारा सेवाएं होती हैं, क्योंकि आने वाले समय में सेवाएं केवल भाषण से नहीं, सेवाएं उनके द्वारा होंगी जिन्होंने स्वयं में सर्व खजाने जमा किए होंगे, जिनका चित्त दूसरों के लिए शुभ भावनाओं से भर गया होगा, जो योग युक्त रहकर इस संसार से उपराम हो गए होंगे, बेहद के वैराग्य में आ गए होंगे। तो हमें आने वाले समय की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए अपने को हर तरफ से समेट कर व्यर्थ से मुक्त रखते हुए अब सर्व खजाने जमा कर देने हैं। मैं कहूंगा, हे बाबा की बुद्धिमान आत्माओं, जिन्हें सद्विवेक प्राप्त हुआ है, वे आत्माएं अब संसार को देने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा समय भी आएगा जब हमें सेकंड में बीज रूप बनना पड़ेगा। इससे हमसे बहुत अधिक शक्तियां चारों ओर वाइब्रेट होंगी, और ये शक्तियां अनेक चीजों को परिवर्तित करेंगी। जैसे शस्त्र से शस्त्र को काटा जा सकता है, जैसे युद्ध में विमान को विमान से गिरा दिया जाता है, वैसे ही हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस लोगों के निगेटिव वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी सेकंड्स में समाप्त कर देंगे। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों में, अपनी शुभ भावनाओं में शक्तियां भरें, योग की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति।

0: भावनाओं की शक्ति, प्रेम की शक्ति। तो आज सारा दिन हम बार बार सेकंड में बीज रूप होने की प्रैक्टिस करेंगे। बीज रूप का अर्थ है निसंकल्प होकर बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाना, और ये काम वही कर सकेंगे जो लंबा काल स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रखेंगे। जो श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करते हैं वही सब संकल्पों को सेकंड में समेट कर बीज रूप हो जाते हैं। तो आज बार बार बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करेंगे और फील करेंगे बाबा से रंग बिरंगी किरणों की पिचकारी, शक्तियों की पिचकारी मेरे ऊपर पड़ रही है। ओम शांति।
1: अभी बजे हैं सुबह के 6।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृत धारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। दोस्तों, हमेशा की तरह सुबह के सुंदर समय पर हम सुविचार का चिंतन करते हैं, मन बुद्धि में रखते हुए पूरा दिन भी है उसकी शुरुआत सुंदर करते हैं। कभी कभी हम जानते हैं कि बिना मतलब के हम दखल अंदाजी करते हैं, किसी के मामले में कहो या किसी की बातों में कहो। छोटा सा ऐसा ही चिंतन एक लघु कथा के द्वारा यहाँ बहुत सुंदर रीति से दिया है और उससे हमें एक बहुत सुंदर सीख भी मिलती है। एक बार क्या हुआ, एक इंसान जो है वो लिफ्ट से जा रहा था। उसी लिफ्ट में उसने देखा कि एक छोटा बच्चा जो आइसक्रीम खा रहा है बड़े ही प्यार से। तो वो इंसान उसको कहता है, बेटा अरे कितनी ठंडी है बाहर, और अगर तू आइसक्रीम खाएगा तो बीमार हो सकता है। तो बच्चा बोलता है कि अंकल, मेरी दादी जो है ना वो 103 साल तक जीवित रही, पता है? वो कहता है, अच्छा आइसक्रीम खाने की वजह से? तो वो बच्चा बोलता है, नहीं अंकल, उसने कभी भी किसी के भी काम में दखल अंदाजी नहीं की। दोस्तों, इतना गहन अर्थ है। एक छोटे से बच्चे ने जो जवाब दिया, वो जवाब शायद कभी कभी हर एक के लिए भी लागू हो सकता है। कई बार हम इस प्रकार की बातें करते हैं। जब इस बच्चे ने इस प्रकार का जवाब दिया तो वो इंसान कहता है कि अभी मुझे समझा कि मैं क्यों जल्दी जल्दी बूढ़ा हो रहा हूँ। शायद ये तो वजह नहीं कि मैं बिना मतलब के किसी के काम में दखल अंदाजी करता हूँ। दोस्तों, इसीलिए हम किसी को सलाह ज़रूर दें, लेकिन समय, व्यक्ति, सारी सिचुएशन देखते हुए। और आजकल तो देखा जाता है कि किसी को सलाह पसंद भी नहीं आती, तो ऐसे समय हम उसको बस शुभ भावना दे दे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि भले हमने मुख से कुछ बोला नहीं, वाणी से कुछ बोला नहीं, लेकिन हमारी वाइब्रेशंस जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, जो सूक्ष्म रीति से हर एक की वाइब्रेशन दूसरे के पास पहुंच जाती है। इसीलिए दोस्तों, सब अच्छे समय पर हमेशा हम कहते हैं, शुभ भावना दो, दुआएं लो। चलिए दोस्तों, अमृत धारा का बहुत सुंदर चिंतन, श्रवण और अलग अलग प्रकार से उस कहानी का अर्थ हम देख रहे हैं। तो चलिए, इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे पास स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। हम उनका सब मिलकर स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, आज का जो बिल्कुल अलग हट के जो सुविचार कहे, चुटकुला कहे, छोटी सी कथा कहे, बहुत ही अच्छी थी। और उससे मेरे मन में एक विचार आया कि क्या सलाह और सावधानी उसमें फर्क है? कभी कभी क्या होता है, हम बिना मतलब सलाह देने की आदत रखते हैं। अगर किसी ने सलाह मांगी तो हमें जरूर देनी है, लेकिन अगर बिना मतलब किसी के काम में, किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करे तो किसी को अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन सावधानी जो है उसमें फर्क है। अगर सामने गड्ढा है और कोई चल रहा है, जल्दी जल्दी में है और उसे एक्सीडेंट हो सकता है, उस समय हम बिना झिझक उसे सावधानी दे सकते हैं कि आगे गड्ढा है, संभल के चलो, ताकि वो एक्सीडेंट से बच जाए। इसके बावजूद अगर वो चला गया तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीजों में अगर हम किसी को सलाह दे तो किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर कोई मोटा है और उसे कहे कि आप मोटे हो, आप उपवास करो, आप डाइट करो, ऐसे अगर कहेंगे तो उसको शायद अच्छा नहीं लगेगा, भले आपकी भावना श्रेष्ठ है। लेकिन अगर कोई सचमुच बीमार है और आपको बहुत अच्छे डॉक्टर की पहचान है या जानकारी है, और उसे अगर आप सलाह देते हो कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा अनुभव आ गया, आप उधर जा सकते हो, तो ये सावधानी है, ये सलाह नहीं है। और इसलिए सोच समझ के जो कुछ करना है वो हम करेंगे तो उसमें हमारा भी फायदा है और दूसरे का भी फायदा है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने सही कहा। इस प्रसंग में मुझे लगता है कि ये जो छोटा बच्चा है वो भी आजकल के बच्चे देखा जाए जरा ओवर स्मार्ट होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बच्चों को किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। हंसी मजाक की बात तो और है, लेकिन इस प्रकार से एक रिस्पेक्ट न होना, मुझे लगता है कि ये भी अच्छी बात नहीं है। एक विचारधारा के अनुसार हमने इस बात की चर्चा की, वो बात अलग है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन एक संस्कारों की कमी जो है वो भी कभी कभी इसमें दिखाई देती है। दोस्तों चलिए अब सुनते हैं एक बहुत सुंदर भावुक बनाने वाली कथा। अयोध्या के बहुत निकट एक पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज कहते हैं टेढ़ी। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था और उनके घर में एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का कोई सगा भाई तो था नहीं, केवल एक भाई था, वो भी मौसेरा। और वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती तो उसके मन में यही भाव कि सरकार मेरे अपने भाई ही है। बच्ची जो है उसकी आयु उस समय 5 वर्ष की थी और बहुत ही अबोध होते हुए भी वो दिल से भगवान के घर आने के बाद उनको अपना भाई ही मानती थी। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन के समय उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। दोस्तों देखिए, जब भाव

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों आइए सुनते हैं आगे कथा क्या रंग लाती है। तो छोटी सी बच्ची ने सरस्वती ने मंदिर में आकर भगवान को कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी और उसने सुंदर राखी भी बनाई।

0: रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी लाई है। पुजारी जी ने भी छोटी सी बच्ची को, सरस्वती को, गोद में उठा लिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श कर देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांधी, उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका जैसे नियम बन गया। अब समय बीतता गया, सरस्वती बड़ी हो गई, उसका विवाह निश्चित हो गया और वह बहुत ही प्रेम पूर्वक शादी की पत्रिका लेकर मंदिर में आई और उसने कहा, भगवान, मेरा विवाह निश्चित हो गया है और मैं आपको न्योता देने आई हूँ। आप चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को भी उसने पत्रिका दी और कहा, मैंने अपने चारों भाइयों से कह दिया और आप ये पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। बस ऐसा कहकर बड़े ही विश्वास के साथ वो अपने घर चली गई। अब दोस्तों, विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं भी देता है। तो उसकी मौसी ने क्या किया, ने लड़के को कुछ सामान और 11 रुपए दे दिए और उसने कहा, मंडप में जल्दी जल्दी पहुंचो, और वो चली गई। अब सरस्वती का मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और वो 11 रुपए लेकर रिक्शा पर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वो गिर गया। थोड़ी सी चोट भी आई, लोगों ने उसको दवाखाने में जाकर मलम पट्टी भी कराई। अब यहाँ क्या हो गया, सरस्वती जी घूंघट से बार बार देख रही है मंडप के दरवाजे पर, सोच रही है कि अरे अभी तक मेरे सरकार क्यों नहीं आए। उसको तो पूरा विश्वास है कि मेरे चारों भाई जरूर आएंगे। उसने माँ से भी कह दिया था, ध्यान रखना मामा, अयोध्या जी से मेरे चारों भाई आएंगे। उसकी माँ ने उसका भोला स्वभाव देखकर मन में ही समझ लिया। वो हंसी भी, लेकिन जब बहुत देर हो गए तो सरस्वती व्याकुल हो गए और दरवाजे पर जाकर जैसे कि उसकी आंखों में आंसू बह रहे। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए और मेरे अपने भाई नहीं आए, क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? और दोस्तों, अचरज की बात ये है, बस जैसे ही उसने कहा, उसी समय चार बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा सा ट्रक दरवाजे पर आ गया। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे और बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए, रत्न जड़ित पगड़ियां, वस्त्र, हीरों के हार उन्होंने पहने थे और श्री हनुमान जी जो थे वो पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए थे। वो पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक का सारा सामान उतारना शुरू किया। क्या नहीं था उसमें, स्वर्ण था, चांदी थी, पेतल था, तांबे के बहुत सारे बर्तन थे, बिस्तर था, सोफे थे, ओढ़ने के बिछाने के वस्त्र थे, साड़ियाँ थी, अलमारियाँ थी। इतना ही नहीं, नाक, कान, गले, कमर, हाथ, पैर के सारे आभूषण थे। मौसी तो देखकर आश्चर्य में पड़ गए, अरे इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया? और वो चारों जो थे उनका तेज, उनकी सुंदरता देखकर सरस्वती तो मन ही मन खुश हो गई और वो समझ गई, अभी मेरे चारों भाई आए हैं। उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो जैसे आनंद के अश्रु हो गए और सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को भेद बताना नहीं, गुप्त रखना। दोस्तों उनका रूप इतना मनोहर था कि सब जो भी वहां मौजूद थे सारे मेहमान देखते ही रह गए। कोई कुछ भी पूछ न पाया कि ये गाड़ियां आई कहां से, कैसे आई, ये तीन लोग है कौन। बस लोग तो अचंभित होकर हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक तो ये रो रही थी और अभी देखो फूली न समाती है, आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई चारों भाई साथ रहे, सभी गले मिले, आशीर्वचन दिए। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब कुछ संभाल लिया ना आपने, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तो दोस्तों ये चारों भाई भी अंतर्धान हो गए। और उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह से लंगड़ाता हुआ, पट्टी बांधा हुआ वहां आ गया। उसने वस्त्र उड़ाया, उपहार दिया और 11 रुपए दिए। मौसी ने पूछा, अभी अभी तो बड़े कीमती वस्त्र गाड़ी और ट्रक से लेकर आया था, ये पट्टी कहाँ से आ गई और ये कपड़े कैसे फट गए। उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा, बेटी सच सच बता दो क्या बात है, ये है कौन चारों। तब उसने कहा, माँ मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना, मेरे चारों भाई अयोध्या से जरूर आएंगे। अब माँ समझ गई ये चारों भाई है कौन, रघुनाथ जी और अन्य तीन भैया ही तो है। माँ जान गई कि श्री अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम के बंधन में बंध कर आ गए और उसको भरपूर कर दिया। कितनी सुंदर बात है दोस्तों, जब हम दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वो प्यार की रस्सी भगवान को भी उस निश्चल जगह रहने नहीं देती, लेकिन वो साकार रूप में दौड़ा दौड़ा अपने भक्त के पास चला आता है। ज्ञानेश्वर जी सही है ना?
1: बहुत ही सुंदर कथा है, भावुक करने वाली कथा है भक्ति जी, और दिल को छू लेने वाली है। सामने पूरा प्रसंग जो है, घटना जो है, वो सामने खड़ी हो जाती है, लगता है कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं। ये जब मैं सुन रहा था तब दो बातें मेरे मन में आई। कभी कभी क्या होता है, हम भगवान को बुलाते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को बुलाते समय हमें मन में ये निश्चय होता है कि भगवान कभी आते ही नहीं। और इसलिए अगर सचमुच ही भगवान आए तो हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं रखते, गड़बड़ वही है। और जिसका दिल सच्चा है, जो भोला है, उसे किसी ना किसी रूप में भगवान की मुलाकात होती रहती है। कभी कभी इस धरती पर भी भगवान आते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी का अवतार हो गया या और किसी का अवतार हो गया। तो देखिए, श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ कन्हैया के रूप में, वो वृंदावन में बाल लीला कर रहे थे, लेकिन ना गोपों को ना गोपियों को यह समझ में आया ये भगवान है। तो भगवान को पहचानना, असली रूप में पहचानना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भगवान की पहचान सिर्फ ज्ञान से ही होती है, इसलिए भक्ति और ज्ञान उसमें अंतर है। यहाँ कथा में जो सरस्वती है उसे भक्ति भी थी और ज्ञान भी था। भक्ति थी, भगवान को बुलाने की आश थी, लेकिन भगवान दूसरे रूप में आ गए, लेकिन उसने उसे पहचान लिया और इसलिए इसे ज्ञान कहते हैं। यहाँ भी धरती पर भगवान आते हैं, लेकिन दूसरे रूप में आते हैं। अगर हम उसे पहचान पाए तो हमारा ज्ञान है, अगर पहचान नहीं पाए तो सिर्फ भक्ति है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि हम सब ने कभी ना कभी जिंदगी में ये अनुभव भी किया है, और वो अनुभव ही हमें आगे की जिंदगी में चलाता है। दोस्तों आपके पास भी ऐसे अनुभव होंगे कि जो बिल्कुल ही असंभव बात लगती है वो संभव हो जाती है। दोस्तों चलिए इन्हीं बातों के साथ फिर से एक बार हम अपने विश्वास को गहरा करते हुए भगवान को हमेशा ही अपने दिल में रखते हैं और उसके साथ अपनी जिंदगी के बहुत सुंदर लम्हे जो है वो बिताते हैं। दोस्तों, इन्हीं के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज़, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज़ को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज़ है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज़ उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज़ या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज़ वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूँ, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूँ, या वेट करती रहूँ, एक साल सेव करती रहूँ कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूँ। यू नो, इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ। डू आई वॉन्ट देन, नाउ वट हैज हैपन्ड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्प्ररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज़ होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट वेन, वेर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, दशम स्कंद का 16वां अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा भी है, और इसमें कई सारे राज, कई सारे रहस्य का भेद भी किया है, जो हम जैसे परीक्षित है वो परीक्षितों को कहो, या हमारी जो स्थिति है उसको बहुत मजबूत बनाने के लिए, विश्वास अटल रखने के लिए शुकदेव जी जैसे बहुत सुंदर रीति से कथन करते हैं। तो हमने देखा कि कालिया जो है उसके शरीर की एक एक गांठ ढीली हो गई और उसका फन छिन्न बिछिन्न हो गया। उसकी पत्नियां जो थी वो अपने पति की ऐसी दशा देखकर, ये हालत देखकर भगवान की शरण में आई और वो अत्यंत आतुर हो रही थी। भागवतकार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। अब ये नाग पत्नियां क्या कहती है भगवान को? वो कहती है, हे प्रभो, आपका यह अवतार तो दुष्टों को दंड करने के लिए ही तो हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर बात, पत्नी पति के लिए कह रही है कि अपराधी को दंड देना तो उचित ही है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वो किस लिए देते हैं? उसके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए और उसका परम कल्याण करने के लिए। ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि इस प्रकार के विचार होना किसी भी पत्नी के लिए, अपने पति की ये हालत देखने के बाद, ये भी बहुत बड़ा बड़प्पन है। क्योंकि वो क्या कहती है कि आप जो भी किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए देते हैं, ये तो बात सब समझ सकते हैं, लेकिन आगे का जो शब्द है, आगे की जो पंक्ति है, बहुत सुंदर है। वो प्रायश्चित

0: कराने के साथ साथ उसका परम कल्याण करने के लिए देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ हमें एक बहुत सुंदर कर्म की गति कहो, कर्म का सिद्धांत कहो, ये भी भगवान बताना चाहते हैं। मिसाल तो बहुत छोटी सी है, लेकिन उसके द्वारा भगवान हमें एक बहुत गहन अर्थ समझाते हैं।
1: बिल्कुल भक्ति जी, ये भागवतकारों ने इस कथा में जो वर्णन किया पत्नियों का, इसके ऊपर जब मैं गौर कर रहा था तब मुझे दो चीजें याद आई। एक वालकोड़ी, देखिए उसकी भी पत्नी थी, और उसकी पत्नी थी लेकिन उसने क्या किया कि जो कुछ पाप वालकोड़ी ने किया था उसमें शरीक होने के लिए उसने मना किया, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए मना किया। अगर वो जिम्मेदारी उठाती थी तो वालकोड़ी का कल्याण नहीं होता था
0: और ज्ञानेश्वर जी फिर वाल्मीकि रामायण का भी निर्माण नहीं होता था।
1: बिल्कुल, तो क्या हो गया कि जिम्मेदारी उठाने के लिए मना करने के बाद वालकोड़ी की अवस्था जागृत हो गई। जैसे वो नींद में था, संभ्रम में था, और उसे लगता था कि वो पाप कर्म नहीं है, अपना कर्तव्य कर रहा है। बहुत बार हमारे मन में कर्तव्य क्या है और पाप कर्म क्या है उसकी पहचान नहीं होती, और जाने अनजाने में हम छोटे मोटे सूक्ष्म पाप कर बैठते हैं, और ये पाप का घड़ा जो है वो भरते जाता है। वहां तो भले 7 घड़े दिखाए हैं, लेकिन यहाँ हर घड़ी घड़ा भरते जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो ये कालिया की पत्नी एक तो मिसाल है, एक रूपक है, लेकिन अगर हम हमारे जिंदगी में उसे जोड़े, हमारे जिंदगी में उसे देखे, तो मुझे लगता है कि जैसे जज है, किसी ने अपराध कर दिया, किसी ने अपराध करने के बाद उसके पत्नी को दोषी नहीं माना जाता, और पत्नी अगर गुहार लगाएगी जज के पास कि आप उसे दंडित मत करिए तो कुछ फायदा नहीं है। लेकिन दंडित करने के बाद अगर कोई अपराध है, मैं तो बड़े बड़े अपराध की बात नहीं करता जहां फांसी की सजा होती है, लेकिन छोटे मोटे अपराध भी है और उसमें जिसको दंडित होता है वो कारावास हो जाएगा, लेकिन सजा भुगतने के बाद जब वो रिहा होता है तब वो बरी होता है, वो अपराध से बरी हो जाता है। और इसलिए ऐसे ही हम भी कुछ ना कुछ जाने अनजाने में पाप कर्म करते हैं, लेकिन जैसे पदस्पर्श भगवान का होने के बाद कालिया मर्दन हो गया, वैसे हमारे पापों का भी मर्दन होता है, और जो कुछ पाप की भावना है या नकारात्मक विचार है वो पाप के रूप में आते हैं। और इसलिए कहते हैं पर उपकार जो है वो पुण्य है और पर पीड़ा जो है वो पाप है। तो क्या हम पर उपकार हमेशा करते हैं या कभी कभी पर पीड़ा भी होती है? वो शारीरिक पीड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानसिक पीड़ा की बात कर रहा हूं। किसी को दुख देना, किसी के प्रति व्यंग्यात्मक कहना बोलना, ये भी एक पर पीड़ा है। उसका चिंतन, उसकी खोज, उसका शोध हमें रखना है, उसका चिंतन हमें करना है, ताकि हम स्वयं की परीक्षा ले।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही। दोस्तों चलिए आगे भी भागवतकार हमें एक मिसाल देकर, नाग पत्नियों की मिसाल देकर बहुत अच्छी बातें समझा रहे हैं। जरूर उस पर भी चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, नाग पत्नियां जो है वो आगे तो कहती है कि हे भगवान, आपने तो ये बड़ा अनुग्रह ही किया है, ये तो आपका कृपा प्रसाद ही है। और वो कहती है कि हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ। आपके चरणों की रज अर्थात धूल इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। दोस्तों, देखो कितनी सुंदर कहानियाँ भी है और उसके साथ हमें भी हमारे जिंदगी के लिए कुछ मैसेजेस है और चिंतन भी है कि सचमुच ये ऐसा ज्ञान आज तक हमने कभी इस एंगल से देखा ही नहीं था। तो ज्ञानेश्वर जी, यहाँ तपस्या की भी बात हो गई, तो ये जो बात है कि आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी ही अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी भोगों का बहुत दिन तक त्याग करके तपस्या करनी पड़ी।
3: देखिए भक्ति जी, बहुत ही अच्छा वर्णन है, सूक्ष्मता है उसमें और गहनता भी है। लक्ष्मी जी जो विष्णु जी की पत्नी है, विष्णु पत्नी रमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में ऐसे श्लोक में कहते हैं, तो ये विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी, लेकिन फिर भी बहुत बार कहानी ऐसी आती है कि लक्ष्मी को वरने के लिए नारद जी भी उत्सुक थे। और नारद जी जब उत्सुक थे तब उनको कहा गया कि अपना मुंह देखो, और जब उन्होंने आईने में मुख देखा तो बंदर जैसा दिखाई दिया। इसकी गहनता में अगर हम जाए, ऊपर ऊपर की कथा तो अच्छी है, लेकिन उसकी गहनता में हम जाए तो मुझे लगता है कि लक्ष्मी को भी हम लक्ष्मी पद कहते हैं। विष्णु पद और लक्ष्मी पद ऐसी दो चीजें हैं। पद का मतलब क्या है? डेसिग्नेशन, अंग्रेजी में उसे डेसिग्नेशन कहते हैं और हिंदी में उसे पद कहते हैं। अगर कोई मैनेजर बनता है तो वो मैनेजर का पद है, कोई सीनियर मैनेजर बनता है तो सीनियर मैनेजर का पद है, जनरल मैनेजर बनता है तो जनरल मैनेजर का पद है, और कोई मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनता है तो भी उसका पद है। अगर लौकिक रूप से बात करें तो अनेक मंत्री है उनका भी पद है, प्रधानमंत्री है उनका भी पद है, राष्ट्रपति है उनका भी पद है। ये पद जो है वो आपने जो पुरुषार्थ किया है, आपने जो तपस्या की है, आपने जो विद्या पाई है उसके अनुसार मिलता है, पद ऐसे नहीं मिलता। तो फिर क्या हो गया? लक्ष्मी पद पाने के लिए वो लक्ष्मी ने तपस्या की, और तपस्या करते समय उन्होंने सब भोगों का त्याग किया। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी तपस्या अगर हम करते हैं तो जो भोग है, जो लालच है, उसका हमें त्याग करना पड़ता है, और त्याग नहीं करेंगे तो वो पद हम पा नहीं सकते।
2: बिल्कुल।
3: छोटी छोटी अगर हम मिसाल दें, देखिए अगर कोई पढ़ाई करता है और बहुत अच्छा डिग्री हासिल करना चाहता है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या IAS हो, IPS हो, बड़ी बड़ी एग्जाम देना चाहता है, तो वो उस समय पढ़ाई करते समय वो भी भोगों का त्याग करता है। उसको अगर शौक से जीना है, पिक्चर फिल्में देखनी है, टाइम पास करना है, मोबाइल देखना है, घूमने जाना है, ट्रिप में जाना है, पिकनिक पे जाना है, उसका सबका त्याग करता है। वो रात को जागते रहता है, पढ़ाई करता है, और उसके बाद उसे वो पद मिलता है। तो कोई भी पद, चाहे आध्यात्मिक हो या लौकिक हो, हमें तपस्या करनी पड़ती है, भोगों का त्याग करना पड़ता है, और वही त्याग उसने किया और उसको पद पाया, ऐसे मुझे लगता है।
2: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। दोस्तों, तपस्या के तप में खुद को तपना पड़ता है, और इसी कारण ही तपस्या शब्द हम उपयोग में लाते हैं। कितनी सुंदर बात है, लक्ष्मी जो साक्षात देवी है उसने भी तपस्या की, और जब तपस्या की तब भोगों का त्याग किया। बहुत सुंदर बात है, भोगों का त्याग करना। हम भोगों का त्याग इस बात को भी कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, तपस्वी जीवन जो है उसमें बाकी सारी जो बातें हैं, जिस बात के लिए हमारा मन और हमारी बुद्धि चंचल हो जाती है, उस बात का महत्व नहीं होता और फिर वो तपस्या नहीं कहलाई जाती। तो साक्षात लक्ष्मी जी को भी तपस्या करनी पड़ी। तो नाग पत्नियां यहाँ जैसे कि हमें एक संदेश दे रही है कि अगर हमें कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, तो हमें तपस्या भी करनी पड़ती है। दोस्तों, बहुत सुंदर मिसाल है और उसके साथ साथ कुछ न कुछ संदेश भी है। चलिए, इन बातों को लेकर अभी समय को देखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। फिर से मिलेंगे ऐसा ही सुंदर चिंतन देकर अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने बचपन में एक कहानी अवश्य सुनी होगी कि एक पतली लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन यदि बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी जाएं, एक गट्ठर बना दिया जाए, तो उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। ठीक वैसे ही यदि समस्याओं में हम अकेले खड़े होते हैं तो हमारा टूटना, निराश होना, थकना, हारना बहुत लाजमी होता है। कई बार हम बहुत ज्यादा टूट जाते हैं जिससे बाहर निकलना सहज नहीं होता। लेकिन यदि हमारे पीछे एक परिवार है जो हमें मोरल रूप से सपोर्ट करता है, यदि वो परिवार हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है, तो निश्चित रूप से बड़ी बाधा को भी हम सहज रूप से पार कर लेते हैं। समाधान आपका एक ऐसा ही परिवार है जो हर समय आपके साथ है, आपके सुख में, आपके दुख में, आपके जय में, आपके पराजय में, आपकी निंदा में, आपकी स्तुति में, हम हमेशा आपके साथ हैं। ये परिवार आपके साथ है और हमें हमेशा समाधान देने के लिए हमारे साथ रहते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: शुक्रिया।
0: प्रातः जी, वो स्टोरी मुझे याद आ रही थी कि वास्तव में यदि अकेला व्यक्ति होता है तो बहुत ज्यादा कठिनाई होती है उसे, और उसे लगता है कि मैं किसके लिए करूं, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब उसके साथ कोई होता है, एक परिवार होता है जो मोरल रूप से उसे सपोर्ट प्रदान करता है, साथ देता है, तो उसे लगता है कि मेरे साथ एक बड़ा परिवार है, तो बड़ी से बड़ी बाधा भी सहज हो जाती है
1: ऑटोमेटिकली। जहाँ परिवार में बहुत प्यार है, जहाँ बहुत अपनापन है और कोऑपरेशन की बहुत अच्छी फीलिंग है, वहाँ स्वतः ही मनुष्य की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और जहाँ मनुष्य अकेला है, यदि उसके परिवार वाले उसे साथ न दे रहे हों, तो इधर से जो नेगेटिव एनर्जी उसे आ रही है वो उसको बहुत वीक कर देती है और समस्याएं उसे बहुत छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी नजर आने लगती है। इसलिए अगर अपनों से पॉजिटिविटी मिले, उसमें भी विशेष रूप से स्नेह और घर में खुशी का माहौल, अपनापन, तो बात ही कुछ और है। बस बहुत सारी बातें तो रहेंगी नहीं। मनुष्य की मनोस्थिति जब बहुत सुंदर हो जाती है तो वास्तव में समस्याओं का फोर्स बहुत डाउन हो जाता है।
0: बिल्कुल। और व्यक्ति तब बहुत ज्यादा टूट जाता है जब अपने ही साथ छोड़ जाते हैं, जब अपने ही धोखा दे देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास उसे अपनों पे ही होता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब कभी परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई बात आती है, तो पूरा परिवार एकजुट होकर के उसे मदद करे, सहयोग।
1: और बस आजकल यही सबसे बड़ी विडंबना हो गई है परिवारों में, समाज में, कि अपनों से बहुत कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। देखिए, मनुष्य दूसरों की, चाहे वो हजार लोग हों, उनकी हजार बात सुनकर भी उसको इग्नोर कर सकता है, उसमें अपनी स्थिति को बहुत सुंदर रख सकता है। लेकिन अगर अपना एक व्यक्ति भी बहुत ज्यादा विरोध कर रहा हो तो मनुष्य का मनोबल बहुत डाउन हो जाता है और फिर उसको उससे मैनेज करने में ही सारी शक्तियां लगा देनी पड़ती है, क्योंकि वो अपना है और वो सदा का साथी है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि परिवार एकजुट हो, उनमें बहुत ज्यादा शांति, प्रेम, अपनापन, खुशी का माहौल हो, तो वास्तव में समस्याएं कुछ रहेंगी ही नहीं।
0: बिल्कुल। राता जी, जो हमारे पास फोन कॉल आया था उसकी ओर मैं लिए चलता हूँ आपको। परली से हमें भैरवनाथ जी ने फोन किया था और कहते हैं कि भ्राता जी, समाधान कार्यक्रम से मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरा अपने साथी टीचर से 4 महीने पहले झगड़ा हो गया था। मैंने आपके कार्यक्रम समाधान में क्षमा करने और क्षमा मांगने की बात सुनी तो मैंने सुबह उठकर यह प्रयोग किया। 4 दिन मैंने ये प्रयोग किया और 5वें दिन मेरे साथी टीचर का फोन आ गया कि मुझे माफ करना, मुझसे गलती हुई थी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, उसके साथी टीचर ने कहा। मुझे अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये चमत्कार कैसे हो गया। मैं उनसे मिलने जा ही रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे रोका कि आप मत जाओ, घर में कुछ काम है। मैं नहीं जा पाया तो वो खुद बखुद मेरे घर चले आए। सचमुच राजयोग के प्रयोग अद्भुत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल। क्षमा एक ऐसी सुंदर चीज है कि दूसरे के मन को शांत करके उसके विचारों को बदलने की शक्ति है क्षमा में। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस इसके हमारे पास आते हैं। एक बहुत अच्छा बेंगलोर का अनुभव था कि 2 फ्रेंड आपस में, और एक ने दूसरे को 50,000 रुपए दिए थे, उसको जरूरत थी, उसने कहा मैं लौटा दूंगा। अभी आजकल पैसा एक ऐसी बहुत बड़ी माया बन गया है, एक ऐसा स्वार्थ इसमें समा गया है कि देने वाला देना नहीं चाहता है, अब उसने न देने की इच्छा रख ली और धीरे धीरे इसका फोन भी नहीं उठाता था वो। भाई एक तो ये है मनुष्य अच्छा है, वो कहता है अच्छा भाई दे देता हूँ, मैं नहीं इंतजाम कर रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, आप मुझे कोऑपरेट करें, मुझे क्षमा करें। एक तो ये भावना हो तो मनुष्य का प्यार बना रहता है, लेकिन वो फोन ही ना उठाए तो फिर इसने भी हार के छोड़ दिया कि चलो मेरे 50,000 गए गए भाई, फ्रेंडशिप भी गई और 50,000 रुपये भी दे। इसलिए कई लोग आजकल कहते हैं कि फ्रेंडशिप में पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फ्रेंडशिप बिल्कुल टूट जाती है, शत्रुता बदल जाती है। तो ऐसे ही एक क्लास में उसको भी पता चल गया कि क्षमा कर देना चाहिए। तो इसके मन में भी अपने दोस्त के प्रति बहुत कटुता थी, थोड़ा तो रहता ही है, 50,000 है भाई। तो इसने क्लास सुनकर उसको क्षमादान कर दिया और क्लास चली रही थी। इसी बीच में जो एक्सपेरिमेंट कराया कि जिनके लिए भी तुम्हारे मन में कुछ भी ऐसा वैसा हो, किसने पैसा ना दिया हो, बुरे शब्द बोले हो, अपमान किया, उन्हें क्षमा कर दो, इसने वहीं उसको क्षमा कर दिया। और क्लास चली रही थी तो उसके मिस कॉल आए बहुत सारे। अब ये तो क्लास में बिजी था, फिर SMS भी आया कि मेरे से बात करो जल्दी, मेरे से बात करो जल्दी। ये बाहर आते ही इसने देखा और बात की, तो उसने भी यही बिल्कुल यही वृतांत है कि क्षमा मांगी और कहा मैं आपके पैसे अभी दे देता हूँ। अगले दिन उसने पैसे लौटा दिए। तो देखिए संघर्ष कितना बढ़ सकता है धन के लिए, लेकिन एक छोटी सी टेक्निक कि क्षमा कर देना, इससे हमारा चित्त निर्मल होता है और कैसे ये बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर देता है। तो इससे हमारी ये समझ में आ जाता है और सभी हमारे दर्शकों को ये जान लेना चाहिए कि मन की श्रेष्ठ भावनाओं की शक्ति बहुत जबरदस्त है।
0: मान लीजिए वर्षों से कोई मुझे परेशान करता आ रहा है, मेरे साथ गाली गलौज करता आ रहा है, मेरे रास्ते में कांटे बोता आ रहा है, गड्ढे खोदता आ रहा है, मेरे लिए बुरा बुरा बोलता आ रहा है, या पैसे की बात है कि पैसे ले लिए रिटर्न नहीं करा, मतलब लगातार मेरे साथ बहुत कटु व्यवहार, तो ऐसे में क्षमा करना थोड़ा सा कठिन
1: है। बिल्कुल कठिन है, बिल्कुल बहुत कठिन है। इसमें तो किसी को महात्मा बुद्ध जैसा ही बनना पड़ेगा, जिसके सामने उसका चचेरा भाई देवदत्त लंबे काल तक के परीक्षा के रूप में खड़ा रहा। फिर वो भी संघ में आ गया देवदत्त भी, और उसने संघ को तोड़ दिया, अपना अलग बना लिया, और महात्मा बुद्ध को जहां तहां कष्ट देने का उसने संपूर्ण जितना हो सकता था प्रयास किया। क्योंकि राजकुमार था तो बहुत सारी चीजें थी, कभी तो हाथी को एकदम जब बिगड़े हुए हाथी को भेज दिया महात्मा बुद्ध को मारने के लिए। लेकिन देखिए सहनशीलता की शक्ति, वाइब्रेशंस की शक्ति, मनुष्य की आत्मिक शक्ति इतनी जबरदस्त है कि दूसरे की कोई भी ऐसी चीज महात्मा बुद्ध को कुछ हानि नहीं पहुंचा पाई। आखिर वो हारा, उसकी मृत्यु भी पता नहीं कैसे सुसाइड करने से उसके हुई, और महात्मा बुद्ध जीवित है आज तक भी। तो वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति तो चाहिए क्षमा करने के लिए, लेकिन हमें अपने स्पिरिचुअल लेवल को ऊंचा तो उठाना ही पड़ेगा, इसकी तो बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा था, वी वर परफेक्ट, हमारे

0: तो रख के देख लिया, घृणा भाव भी रख के देखा, नफरत और उल्टे विचार भी करके देखे। आजकल लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, आजकल कोर्ट के केसेस तो कितने बढ़ते जा रहे हैं, रोज कोर्ट दो चार एक जगह पर और केस रोज आने वाले, उनकी भरमार लगी हुई है, सबने देख लिया, परेशानी बढ़ती ही है। तो अगर मनु सचमुच अपने चित्त की शांति चाहता है, अगर वो चाहता है उसका कारोबार भी ठीक चले, उसकी समस्याएं भी सहज समाधान हो जाएं और कुछ गड़बड़ भी ना हो, नहीं तो मारकाट होती है, परिवारों के लोग मर जाते हैं, होता सब परिवारों में, अपनों से है, अपनों से, अपनों को ज्यादा कष्ट मिल रहा है ना आजकल, और विशेष रूप से संपत्ति के लिए। तो इसमें ये सब करके तो देख लिया, कठिनाइयां बढ़ती हैं, दुविधाएं बढ़ती हैं, मतभेद बढ़ते हैं, दूरियां बढ़ती हैं, तो हमें सोचना ही चाहिए कि एक सरलतम उपाय अपने चित्त को शुद्ध करके भावनाएं श्रेष्ठ रखना, क्षमा कर देना, प्रेम के वाइब्रेशंस भेजना, यू आर गुड सोल्स, ऐसा एक फीलिंग देना दूसरों को, तो तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता जब तक दूसरे मनुष्य के मन के भाव बदल न जाएं, जब तक उसके विचार ठीक न हो जाएं, पॉजिटिव न हो जाएं, और इसके लिए ये क्षमा भाव
1: एक सुंदर चीज है, एक सूक्ष्म चीज है जो एक आध्यात्मिक तरीका भ्राता जी आप कह रहे हैं। लेकिन संसार में अब तक हम ऐसा सुनते आए हैं, मानते आए हैं, करते भी आए हैं कि अन्याय को सहना भी एक प्रकार का अपराध है, और जितना ज्यादा हम अन्याय को सहते जाते हैं उतना ज्यादा सामने वाला और भी ज्यादा पाप करता जाता है। और ये भी कहा जाता है कि लात के भूत बात से नहीं मानते।
0: देखिए, हाँ, देखिए ये है कि हमें सिचुएशन को देख लेना है, क्षमा करने में भी हमें परख शक्ति का प्रयोग कर लेना है। एक बच्चे को माँ बाप क्षमा करते हैं, लेकिन अगर बच्चा क्षमा करने से बिगड़ रहा है, ये देख लिया कि इसको हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, तो ये बिगड़ता जा रहा है, तो वहाँ अपने क्षमा भाव को छोड़कर हमें दूसरा भाव अपनाना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो। हमारा लक्ष्य कल्याण करना, इतिहास इस बात का गवाह है। बहुत सारे छोटे राजाओं में भी, बड़े सम्राटों में भी ये बात हुई। जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, न केवल वो शक्तिशाली सम्राट थे लेकिन बड़े उदार और क्षमाशील भी थे। मोहम्मद गौरी को भी कहते हैं उसने कई बार क्षमा किया, औरों को भी कई बार क्षमा किया, लेकिन क्षमा का जो रिटर्न देना था दूसरों को, जो उसका उपकार का बदला चुकाना था, वो लोगों ने नहीं किया। छोटे राजाओं में बहुत बार हुआ, कई कई बार उनको क्षमा कर दिया, जब उनका नंबर आया तो उन्होंने इनको नष्ट कर दिया।
1: और इसे ही इतिहास में भारतीय इतिहासकारों ने बहुत बड़ी गलती माना।
0: ये सचमुच गलती इसलिए मानी गई कि परख शक्ति नहीं है। देखो, क्षमा भी अधिक से अधिक 3 बार करना चाहिए, लेकिन पहली बार क्षमा करके देख लेना चाहिए। अगर एक आक्रमणकारी एक बार उसने आक्रमण किया और माफी मांगने लगा, उसको अरेस्ट कर लिया गया और लगता था उसको मेरी मौत निकट है, और उसने माफी मांगी, चरण छू लिए, पैर धो दिए और उसने क्षमा कर दिया, लेकिन अगर वो दोबारा अटैक कर रहा है तो सम्राट को सोचना ही चाहिए कि ये व्यक्ति, इसके मनोभाव, इसकी कुछ कामनाएं कुछ अलग हैं, तो उसको वहीं क्षमा भाव बदल देना चाहिए। फिर तो वो चाणक्य नीति अपनानी चाहिए कि जो सिर उठा रहा है उसका सिर खत्म कर दिया जाए। तो ये इसीलिए कहा गया उन लोगों ने, क्योंकि चाणक्य जैसे जो लोग थे वो बहुत बुद्धिमान थे, राजनीति के असली मर्म को जानने वाले थे। वो देखते थे कि राजाओं में एक आकांक्षा होती है, वो भले ही वहां जान बचाने के लिए क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन अंदर से वो क्षमा नहीं मांग रहे हैं, उनके अंदर गुड रियलाइजेशन या गुड फीलिंग कुछ नहीं है, वो उपकार नहीं मान रहे कि इसने हमारा राज लौटा दिया या इसने हमें जीवन लौटा दिया। लेकिन भारत के कई सम्राट इसके लिए बहुत मतलब महान रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत मान रहा है, तो अशोक भी बहुत मान रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पृथ्वीराज चौहान बहुत महान हुए हैं, समय का भी फेर था। तो हमें इसमें देख लेना चाहिए कि अगर हमारी क्षमा भाव दूसरों का उपकार नहीं कर रही है या देश के लिए कहीं कल्याणकारी नहीं हो रही है, तो हमें क्षमा भाव को छोड़ के दूसरा भाव अपनाना पड़ेगा जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो।
1: बिल्कुल, तो दो बातें होंगे भ्राती जी, या तो हम गौतम बुद्ध जी की तरह बहुत ज्यादा एक आध्यात्मिक ऊंचाई पर हों, और यदि हम नहीं हैं तो फिर हमें दोनों तरीके अपना लेने चाहिए सामने वाले व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए।
0: फील्ड अलग अलग है, एक घर में बच्चा है वो बार बार गलती कर रहा है, है, माँ बाप के सामने है, उसे क्या करें। एक किसी राज्य की बात है, कोई शत्रु बार बार आक्रमण कर रहा है, हम उसे क्षमा कर रहे, वो एक दूसरा फील्ड है। महात्मा बुद्ध के सामने एक तीसरा फील्ड था कि वो धर्म का क्षेत्र था और देवदत्त उसमें बाधा डाल रहा था अपने को उसका नेता बनाना।

0: चाहता, तो अलग अलग फील्ड हैं। अध्यात्म के फील्ड में क्षमाशील होने से मनुष्य बहुत आगे निकल जाता है, बच्चों के फील्ड में बहुत क्षमाशील होने से बच्चे बिगड़ सकते हैं, और जो राज की बात है, लड़ाई युद्धों की बात है, उसमें बहुत सोच समझ के परिणाम देखकर, एक बार क्षमा कर दिया उसका परिणाम देख लिया जाए, वहां तो तीन बार की भी जरूरत नहीं, एक ही बार में अगर परिणाम बिल्कुल विपरीत आता है तो फिर क्षमा भाव छोड़ देना चाहिए।
1: बिल्कुल भ्राता जी, मुझे एक बात याद आ रही है, स्वामी राम जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं भारत के सन, वो एक बार जापान की ओर जा रहे थे, नाव में एक बौद्ध धर्म को मानने वाला बच्चा भी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि तुम सब बौद्ध धर्म को मानते हो, गौतम बुद्ध तो भारत में हुए हैं, यदि वो भारत से जापान की ओर आते तो तुम क्या करते? तो उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल पलक पावड़े बिछा देता, जिस प्रकार से भी हो सकता था उनकी सेवा करता या उनका जो भी है स्वागत सम्मान करता। और फिर स्वामी राम ने पुनः कहा कि यदि गौतम बुद्ध आपके देश पे आक्रमण करने के लिए आते तो क्या करते? तो वो बालक तिलमिला गया, उसने कहा तब तो मैं तलवार खींच लेता और उनका सिर कलम कर देता। तो शायद जो आप बात कह रहे हैं, हर फील्ड के लिए हमें बातों को समझना होगा। भ्राता जी, जहां तक आध्यात्मिकता की बात है और क्षमा करने वाली बात है, वो किस प्रकार से हम करें? जैसे इन्होंने अपना एक सुंदर अनुभव सुनाया कि मैंने क्षमा किया और एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हमारे साथ यदि कुछ ऐसा हो रहा है और अब तक हमने हर प्रकार की विधियां करके देख ली, टिट फॉर टैट करके देख लिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो ये जो विधि आपने बताई है उसे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं ताकि वो भी घर बैठे से कर सकें।
0: एक तो हमारी भावनाओं में जितनी पावर होती है पीछे, उतनी भावनाएं इफेक्टिवली काम करती हैं। मान लो एक व्यक्ति का स्पिरिचुअल लेवल बहुत ही लो है, उसके पास शक्तियां बहुत कम हैं और वो भी क्षमा कर रहा है, तो उसकी क्षमा को लोग मजाक लेंगे, उसकी क्षमा इफेक्टिव नहीं होगी। दूसरा व्यक्ति है, उसका स्पिरिचुअल लेवल बीच तक पहुंचा है, कुछ फील्ड में उसकी क्षमा बड़ी काम करेगी, लोग बदलते नजर आएंगे। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत शक्तियां हैं, बहुत प्योरिटी है, और जिसने विश्व कल्याण की भावना से अपने मन को भरपूर कर लिया है, जिसके मन में किसी के लिए भी घृणा भाव नहीं रहा है, बदले की भावना नहीं रही है, किसी को कष्ट देने की कोई इच्छा नहीं रही है, ऐसा व्यक्ति जब दूसरों के लिए शुभ भावनाएं रखता है या उन्हें क्षमा कर देता है, तो बहुत ही प्रभावशाली रूप से इसका काम होता है, दूसरों में एक बहुत विशाल परिवर्तन होते हैं और दूसरे लोग इनकी महानताओं को नमस्कार करते हैं, मजाक नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे ये तो कायर है, ये तो कमजोर है, बदला नहीं ले सकता तो क्षमा कर रहा है, ऐसे कुछ होता नहीं है, तो चलो सोच रहा है क्षमा कर देते हैं, ये कमजोर है, ये ऐसा वैसा बात करते हैं।
1: लेकिन लोग ये बात कहते हैं,
0: लेकिन जो बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है उसकी क्षमा उसकी महानता मानी जाएगी, जिसका लेवल बहुत डाउन है, बहुत लो है, उसकी क्षमाशीलता दूसरों के लिए हंसी मजाक का कारण बन जाएगी। तो पहली जरूरत है हम योग शक्ति के द्वारा, राजयोग के द्वारा अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाएं, यानी अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं। फिर जब हम किसी भी आत्मा के लिए प्रेम के और शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस भेजेंगे तो ये वाइब्रेशंस तुरंत उन पर काम करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक श्रेष्ठ योगी की शुभ भावनाएं दूसरों में परिवर्तन न लाएं। थोड़ा बहुत समय लग सकता है, डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति में उस कड़े संस्कार का कितना फोर्स है, कितनी कटुता है, कितनी गहरी जड़ें जमा चुके हैं वो संस्कार उसके अंदर। लेकिन एक महान आत्मा की शुभ भावनाएं तेजी से काम करती हैं, इसलिए हम अपने योग की शक्ति को बहुत बढ़ाएं, फिर हमारी शुभ भावनाएं और क्षमा भाव सचमुच हमारी महानता होंगी और ये दूसरों पे काम करेंगे। इसलिए इसके साथ हम पहले दूसरों को स्वमान के अच्छे वाइब्रेशंस भेजा करें। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने कुछ भी हमसे उसका हिसाब किताब है, वो हमें कष्ट पहुंचा रहा है, हम पहले उसको ऐसी भावनाएं भेजेंगे, He or she is a good person. बहुत महान है वो व्यक्ति। हम दोनों ही भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ब्रदर्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये गुड फीलिंग, हम एक हैं, अपनापन इससे आएगा
1: जी।
0: और अपने को लाए, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे तो सबका कल्याण करना है, भगवान ने मुझे बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है सबका कल्याण करने की, तो मुझसे तो सबको अच्छी फीलिंग सी जानी चाहिए, वो मेरा अच्छा मित्र है, ऐसा करके फिर क्षमा करें उसको
1: जी
0: कि तुमने जो कुछ भी हमारे साथ किया अज्ञानवश किया है, तुम्हारी गलती नहीं, उन मनोविकारों की गलती है, क्रोध की गलती है, अहम की गलती है जिसने तुम्हें ये कराया, प्रेरित किया कराने के लिए, हम तुम्हें सच्चे मन से क्षमा करते हैं। तो हमारे ये गुड वाइब्रेशंस, ये हमारी बहुत एक डीप फीलिंग्स हैं, स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं, उसके विचारों को बदलेंगी, उसके ईगो को डाउन करेंगी, उसके क्रोध को शांत करेंगी और वो व्यक्ति बदलेगा।
1: बिल्कुल, इस तरीके को जरूर हमारे दर्शक अपनाएं और देखें कि इसका क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि अब तक कटुता रख के तो देख ही लिया, लेकिन अब एक क्षमा भाव का भी प्रयोग करके देखें ताकि एक निर्मल जो हमारे संबंध है वो बन सके। भ्राता जी, भैरवनाथ जी ने आगे भी लिखा है कि भ्राता जी, मेरा एक अनुरोध है कि मैं स्कूल में टीचर हूँ, 9 बजे हमारा स्कूल लगता है तो मुझे 9:45 बजे घर से निकलना पड़ता है। मैं केवल संडे को ही समाधान देख पाता हूं। मैं अपने हेडमास्टर से छुट्टी लेकर पिछले 8-10 दिनों से लेट स्कूल जा रहा हूं ताकि समाधान देख सकूं और अपने प्रश्न का उत्तर भी सुन सकूं। अनुरोध है कि या तो इसका प्रसारण थोड़ा पहले करें या शाम को अथवा रात्रि को इसका पुनः प्रसारण करें।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहेंगे, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन तक इनकी बात ये पहुँचा दी जाए, क्योंकि बहुत इफेक्ट हो रहा है, बहुत ही लोग इसे सीख रहे हैं, जैसे हमें फीडबैक आ रही है तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समस्याओं का तो एकदम गुलाम होता जा रहा है, जैसा कि लोगों से कांटेक्ट होता है, जिससे बात करो तो बहुत कम लोग ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, संतुष्ट हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपनी दुख भरी व्यथा की गाथा सुनाते ही रहते हैं। इसलिए हम तो चाहते ही ये हैं कि समाधान कार्यक्रम से हर व्यक्ति को सुंदर समाधान मिल जाए और हर व्यक्ति ऐसा कैपेबल हो जाए कि वो दूसरों की ओर न देखे, उसको पता चले, उसको ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो ये समस्या मेरे सामने है इसका समाधान तो मेरे पास है और ये है, इसको कर लूँ तो मुझे समस्याओं के बारे में टेंस होने की, चिंतित होने की, भारी हो जाने की, अनिद्रा का शिकार होने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये समस्या तो गई की गई। तो बहुत अच्छा है अगर रिपीट किया जाए रात को, एक ऐसे समय रात को 9:30 का समय रख लिया जाए तो अधिकतर लोग कामकाज से फ्री हो गए घरों में आ जाते हैं, बहुत फायदा होगा।
1: भैरवनाथ जी को हम ये भी कहेंगे भ्राता जी कि 8-10 दिन से स्कूल लेट जा रहे हैं तो कृपया लेट ना जाए, क्योंकि बच्चों को भी बहुत नुकसान होगा कि अपने समय पे ही स्कूल जाया करें ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और बहुत इनोसेंटली इन्होंने दो आगे भी प्रश्न किए हैं भ्राता जी। पहला ये किया है कि मैं पीस ऑफ माइंड चैनल में ही रोज 5:00 बजे मुरली सुनता हूँ, सेंटर पर नहीं जाता, क्या ये बाबा की श्रीमत है?
0: देखिए, मुरली चैनल पे सुन ले ना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा आज ईश्वरीय महावाक्य क्या है, आज भगवान का हमारे लिए क्या कहना है, किस तरह वो अमृत बांटता है, लेकिन अमृत पीने का रस वो तो तभी आएगा ना कोई पिलाए, और जब हमें क्लास में एक साथ कलेक्टिवली एक समूह में वहाँ पर बैठते हैं और उससे पहले योग अभ्यास चलता है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है, तो वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर बन जाते हैं और न केवल ईश्वरीय महावाक्य सुनने तक हमारा लक्ष्य है, लेकिन उनको जीवन में अपना लेना, उनका एक बहुत ज़्यादा सुख और अलौकिक रस जीवन में भर लेना, क्योंकि वो एक एक महावाक्य केवल ज्ञान वृद्धि के लिए नहीं, वो सुखों की वृद्धि के लिए है। तो मैं तो इनको कहूँगा, ठीक है ये सवेरे भी सुन लिया करें, लेकिन दोबारा भी क्लास में अवश्य जाएं, क्लास में जाने का महत्व ही अपना है, इससे सवेरे उठकर इनके अंदर चुस्ती रहेगी। देखिए, अगर ये सोचेंगे कि मैं तो 5 बजे सुन ही लेता हूँ तो जरूर ये पीछे सो जाएंगे, सुस्ती आएगी, बिल्कुल ठंडे होने लगेंगे, लेजीनेस आएगी, लेकिन अगर इन्हें है कि नहीं मुझे तो एक्टिव रहना है तो ये वहाँ जाएंगे, और फिर इनका जो 8 बजे तक का समय होगा, 7:30 तक का समय, वो इनके लिए ऐसा होगा जैसे इनको एनर्जेटिक कर दिया, जैसे पहले किसी को सवेरे उठते ही बच्चों को हनी चखा देते थे ना, थोड़ा सा चटा दिया तो लगता था एकदम फ्रेश हो गए, ताजगी आ गई। तो ये स्पिरिचुअल पावर बढ़ने का एक बहुत अच्छा समय 1 घंटा और होता है। ये ज्यादा समय न दें तो 6:30 से 7:30 अवश्य 1 घंटे का समय ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए केंद्र पर जाएं। इससे संगठन का बल इनको मिलेगा। और अगर हर व्यक्ति यही सोचने लगे कि मैं तो देख लूंगा, नेट पे देख लूंगा या पढ़ लूंगा, तो इससे तो हमारी जो एक संगठित शक्ति है वो अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए हमारा इनसे नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि ये जाएं।
1: और वैसे भ्राता जी, जैसे कोई प्राइवेट पढ़े और कोई कॉलेज में रेगुलर जाकर के पढ़े, वहां अपने साथियों के साथ बैठे, बहुत सारी चीजें वहां डिस्कस होती हैं, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाता है कि हम प्राइवेट दे रहे हैं एग्जाम या फिर हम रेगुलर जाकर।
0: क्योंकि हमने खुद अपने अनुभवों से देखा, ये अनुभव बहुतों के हैं, कई बार हम लोगों को भी मुरली मिस करनी पड़ती है, कोई विशेष सेवा हो जाती है, या हम कई ऐसी जगह गए होते हैं जहां मुरली दूसरी लैंग्वेज में सुनाई जा रही है। साउथ में हम जाते हैं तो कहीं तमिल में सुना रहे हैं, तेलुगु में सुना रहे हैं, कहीं कन्नड़ में सुना रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं एक भाषा की दूसरी भाषा में, तो हम स्वयं पढ़ लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उस ईश्वरीय महावाक्य को पढ़ने में 20 मिनट लगाते हैं, और क्लास में जब हम बैठते हैं तो हम 1 घंटा बहुत स्थिर चित्त होकर, योग युक्त होकर उसका रसपान करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जब क्लास में वही बात हम सुन रहे हैं तो हर महावाक्य की डेप्थ, बहुत गहराई हमें समझ में आती है, और वो एक सूक्ष्म ज्ञान हमारे विवेक में भरता जाता है, वो एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। और जब हम खुद पढ़ लेते हैं तो ठीक है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, इतना ही हमें ख्याल रहता है, लेकिन उसकी जो सूक्ष्म एनर्जी हमारे मन में भरनी चाहिए या बुद्धि में एक जो सटल और डिवाइन विजडम भरना चाहिए वो नहीं रहता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए सभी को सेवा केंद्र पे जा करके ही मुरली का श्रवण करना चाहिए। भ्राता जी, इनका दूसरा प्रश्न था कि मनोहर दादी जी और सूर्य भाई जी, अर्थात आप, प्रायः मेरे सपने में आते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मेरे सपने में क्यों आते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो आप बता दें कि आप इनके सपने में क्यों जाते हैं।
0: हम तो सपने में नहीं जाते, अब यहाँ आए हुए हैं आपके पास, तो यही कहेंगे कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ऊंचा उठाएं और ऐसे महान बन जाएं कि संसार को देने में हम कैपेबल हो जाएं, क्योंकि आने वाला समय हमसे यही डिमांड करेगा कि हम अपने लिए न जिएं, हम संसार को बहुत कुछ देने वाले बन जाएं, क्योंकि संसार के करोड़ों करोड़ों लोग प्यासी नज़रों से हमारी ओर देखेंगे। मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई, आज मुझे कोई बता रहा था कि बहुत अच्छी कोई वीडियो जैसी बनाई है किसी ने, तो एक व्यक्ति ट्रक के नीचे आ गया है और उसने देखा कि 2 फरिश्ते आकर मुझे बचा रहे हैं और ये बच गया, इसके ऊपर ट्रक चढ़ा नहीं, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बिल्कुल सेफली बाहर आ गया है। तो देखिए, ये अपने एंजेलिक स्वरूप के द्वारा, फरिश्ते स्वरूप के द्वारा होने वाली सेवा है। ये सच्ची घटना किसी ने वर्णन की है। तो मैं इनको यही कहूँगा कि अपनी स्पिरिचुअल लेवल को इतना बढ़ाएं कि लोगों के हम काम आ सके।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका। मित्रों, आपने देखा आज की हमारी चर्चा में भ्राता जी विशेष जोर दे रहे थे कि हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बहुत ऊंचा उठाएं, क्योंकि आने वाले समय में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। और जैसे हमने बात की क्षमा भावना की, तो वास्तव में अब तक तो हमने कटुता रख करके देख लिया, बदले की भावना रख के देख लिया, और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो या ना हो, लेकिन उस कटुता से, उस बदले की भावना से हम अवश्य प्रभावित होते हैं। हमारा मन अवश्य दुखी और चिंतित रहता है, जिसका हमारे शरीर के ऊपर पे भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा समाधान परिवार की ओर से कि इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी करके देखें, अब तक जिसके लिए भी मन में कटुता हो उसे दिल से क्षमा करके देखें, आप पाएंगे कि आप बहुत हल्के हो गए हैं और सामने वाला व्यक्ति भी अवश्य परिवर्तित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। गुड मॉर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे समाधान एपिसोड, और इस एपिसोड में अपने जब साथ निभा नहीं पाते हैं, अपने अपनों के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, तब हमें कैसे डील करना चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डाला आदरणीय सूरज भाई जी ने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। आइए आज के दिन विशेष में पंचांग के बारे में जानते हैं। आज 5 जुलाई रविवार है, शक संवत 14 है, आषाढ़ 1948 है, और आज 21 आषाढ़ मास प्रविष्ट 2083 है पंजाब के पंचांग के अनुसार, और इस्लाम के अनुसार 19 मुहर्रम है 1448 से, विक्रमी संवत आषाढ़ कृष्ण पंचमी दोपहर 1:31 तक, उसके पश्चात षष्ठी तिथि शतभिषा नक्षत्र अपराह्न 3:13 तक, उसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आयुष्मान योग शाम को 4:40 तक, पश्चात सौभाग्य योग तोतिलकरण रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में दिन और रात में संचार करेंगे, सूर्य उत्तरायण है, सूर्य उत्तर गोल, ग्रीष्म ऋतु, शाम को 4:30 से शाम को 6 तक राहुकाल रहेगा। तो ये कुछ आज के पंचांग के अनुसार दिन विशेष के बारे में बात कर रहे थे हम। सूर्योदय 5:50 पर हुआ है, सूर्यास्त होने वाला है 7:12 पर। चंद्रोदय आज जुलाई 5 तारीख को 10:52 पर रात्रि को होगा। चंद्रास्त होगा 6 जुलाई को 11:07 पर सुबह। तो ये कुछ बातें पंचांग के अनुसार जुड़ी हुई थी। आज पीवी सिंधु जी, जिनका आज के दिन जन्म दिवस है, और रामविलास पासवान जी, इनके आज के दिन भी जयंती है। आइए सुनते हैं यहाँ पर एक भजन, मिलते हैं भजन के उस पार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुन रहे हैं आप। आइए जानते हैं वेदर रिपोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले चलते राजधानी जयपुर की ओर। राजधानी जयपुर में 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना लगभग 55% तक है दिन में, और रात्रि के समय 87% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने के लिए। और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश भी हो सकती है, और बिजली कड़कने के लिए पीली निगरानी यानी कि येलो कार्ड का निगरानी दिया गया है। उदयपुर के बारे में बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना सुबह के समय 68% तक है और रात्रि के समय 86% तक है। कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। अबूरोड में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। वर्षा की संभावना 55% तक है दिन के समय भी, रात्रि के समय भी। माउंट आबू में 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 22 डिग्री तक जा सकता है। बारिश के लिए भी यहाँ पर संभावना 50% से ज़्यादा है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, रात्रि के समय 65% तक बारिश होने की संभावना है। पाली जिले में 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की सुबह और शाम को। जोधपुर के अंचल में 29 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है। बात करें सूरत की तो यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, जोरदार बारिश होने की संभावना है दिन के समय लगभग 90% से ज़्यादा, रात्रि के समय 100% बारिश होने की संभावना है सूरत में। बारिश के लिए यहाँ पर लाल चेतावनी दिया गया है। मेहसाना के बारे में बात करें तो यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, और भारी बारिश के लिए सुबह के समय ऑरेंज चेतावनी, नारंगी चेतावनी दी गई है। राजकोट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 30 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की बहुत कम संभावना है। गांधीनगर और अहमदाबाद के अंचल में आज जोरदार बारिश होने की संभावना है रात्रि के समय। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री तक जा सकता है। राजधानी दिल्ली में 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है, और यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है। कुछ अंचलों में जोरदार बारिश होने की संभावना है दिल्ली के आसपास। बात करें कोलकाता की, कोलकाता में 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना 50% से ज़्यादा है रात्रि के समय, दिन के समय लगभग 95% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। बेंगलुरु की बात करें, 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 21 डिग्री तक न्यूनतम तापमान जाने की संभावना है। यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की कम संभावना है। मुंबई के बारे में बात करें तो मुंबई में 28 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, दिन के समय रात्रि के समय झमाझम बारिश होने की संभावना है। बाढ़ लाने वाली बारिश यानी कि बहुत जोरदार बारिश होने की संभावना है मुंबई में। चेन्नई के बारे में बात करें तो चेन्नई में 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की बहुत कम संभावना है। जिला सिरोही में 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री तक जा सकता है, और बारिश होने की संभावना 60% से ज़्यादा है। ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी मौसम जानकारियों के साथ। आइए यहाँ पर अल्पविराम लेते हैं, मिलते हैं 8 बजे के टाइम चेक के बाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। गुड मॉर्निंग आबू।

0: आप खबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। आइए चलते हैं हम आबू रोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां। गाड़ी संख्या है 22547। ग्वालियर से साबरमती तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8:25 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। आरावली एक्सप्रेस 14702 8:30 पर पहुंचने वाली है। 9:11 पर 6 देरी से चलती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस 12461 संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुंचने वाली है। बेंगलुरु से अजमेर जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस 16532 9:10 पर पहुंचेगी। जम्मू तवी से साबरमती तक जाने वाली एक्सप्रेस 19224 9:45 पर पहुंचेगी। अजमेर मैसूर एक्सप्रेस 16209 10:10 पर पहुंचने वाली है। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचेगी। 04111 और ये गाड़ी ऑन डिमांड समर स्पेशल ट्रेन चल रही है और ये प्रयागराज से निकलती है गाड़ी। 11:25 पर 24 देरी से चलती हुई आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और ये गाड़ी गांधीधाम तक जाएगी। योगा एक्सप्रेस 19032 11:34 पर 44 देरी से चलती हुई संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर आने वाली है। 14822 साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 11:40 पर पहुंचेगी। वहीं पर दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस 19412 दोपहर बाद 12:10 पर 40 देरी से चलती हुई ये गाड़ी पहुंचेगी, जो 11:30 को पहुंचने वाली थी वो लगभग 12:10 को पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस जो लगभग 10:50 को पहुंचने वाली थी वो 11:34 को पहुंचेगी। और प्रयागराज से गांधीधाम जाने वाली समर स्पेशल एक्सप्रेस जो 11 पहुंचने वाली थी वो 11:25 तक पहुंचेगी। तो ये कुछ गाड़ियों के बारे में जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे थे। सुनते रहिए रेडियो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। 5 जुलाई 2026 आज है। आइए कुछ बातें जो जॉब रिलेटेड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड जान लेते हैं। गुजरात में कंडक्टर ड्राइवर के 8,917 पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास को मौका है। GSRTC के कंडक्टर और ड्राइवर के 8,917 पदों पर भर्ती निकली है। तो उम्मीदवार GSRTC के ऑफिशियल वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और योग्यता है शैक्षणिक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना चाहिए, RTO का कंडक्टर लाइसेंस और बैज भी होना चाहिए, वैलिड कंडक्टर लाइसेंस और बैज होना चाहिए। न्यूनतम हाइट पुरुष 162 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी के पुरुष 160, महिला न्यूनतम हाइट 158 सेंटीमीटर। आयु सीमा है ड्राइवर के लिए न्यूनतम 25 साल और कंडक्टर के लिए न्यूनतम 18 साल है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें SBI में PO के 1500 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं आवेदन। लास्ट डेट है 8 जुलाई 2026। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट SBI.gov.in पर जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ पंजाब में असिस्टेंट लाइनमैन के लिए पदों पर भर्ती निकली है 6,299 पद पर। तो अगर आप वहां जाकर आवेदन कर सकते हैं www.pspcl.in पर, लेकिन आधार कार्ड शायद वहां का होना चाहिए, ये आप वेबसाइट के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। और वहीं पर लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के 1829 पदों पर भर्ती निकली है। upssc.gov.in पर जाएं और फिर होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में संबंधित विज्ञापन पर आप क्लिक करें तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। PET स्कोर और मेन एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चयन होगा इसमें। और UPSSC PET 2025 स्कोर कार्ड और बैचलर डिग्री, NIE, LIT, ओ लेवल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूनतम आय 21 साल है, क्षमा करें, न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम आयु सीमा है 40 साल तक। 1829 पदों पर भर्ती निकली है और इसके लिए आप 3 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। कुछ बातें जोड़ी हुई थी हमारे जॉब्स के रिलेटेड। यहाँ पर लेते हैं एक अल्पविराम, मिलते हैं गाने के उस पार्ट।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। इस मोड पर एक रेडियो साथी हमारे मध्य आए, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते।
1: हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग आबू, हमारी प्यारी शुभा बहन जी। मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ, रामपुरा राजस्थान से।
0: जी दयाराम जी, आप रामपुरा से बात करें, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, सभी मेरे आरजे बहनों की, भाइयों की और हमारी दादियों की दुआ से अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ।
0: धन्यवाद जी।
1: इस वक्त तो मैं खेत में काम भी कर रहा हूँ और रात थोड़ी छुटपुट बारिश आई थी और 2 इंच बारिश हुई है, ज्यादा तो नहीं हुई। अभी बुआई के लिए तो अभी बारिश कम है, लेकिन थोड़ी गर्मी से मिजाज पाया, थोड़े 2 इंच हुई है
0: जी।
1: इंद्र राजा भी खुश हुए है, तो हो सकता है आज और कल ज्यादा आ जाए और हमारे किसानों के लिए बुआई का काम हो जाए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दुआ भी कर रहे हैं और सभी भी दुआ कर रहे हैं जो सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। जी बताइए।
1: जी जी, सभी सभी मुझे मालूम है, सभी सुन रहे होंगे मेरे प्यारे मित्र सुरेश भाई जोटाणा, सुरेश भाई पिंडवाड़ा, हमारे जो प्रिय भाई है जो हमें हमेशा हंसी या हंसी के साथ आते है, बुरीलाल जी और भूरा राम और से कंचन भाई और भी हमारी बहन
0: फिरोज भाई
1: है
0: जी।
1: मैं सभी का नाम लेना चाहूंगा तो बहुत
0: टाइम हो जाएगा,
1: ज्यादा समय ले पाऊंगा तो
0: जी।
1: आज को दीदी आपको और सुनने वाले सभी मित्रों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन
0: जी,
1: सुबह के साथ।
0: थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और बारिश जल्दी बरसे आपके गाँव में ताकि बुआई में आपको हेल्प मिले। तो आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे आसपास के साथ, कुछ सूचनाएं, कुछ घटनाक्रम आप सभी के समक्ष रखते हैं। अभी ये बातें हम आपको पहुंचा रहे हैं दैनिक भास्कर के जरिए। 12वीं कॉमर्स उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए रोजगार से जुड़ा नया अवसर सामने आया है। राजकीय कॉलेज सिरोही ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीकॉम और बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंशियल और सर्विसेज एंड इंश्योरेंस के साथ, आप इसके साथ साथ अगर आप ये डिग्री आपको प्राप्त है तो इसके लिए AEDP प्रोग्राम शुरू किया है। इस रोज़गार पाठ्यक्रम में 60 सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अंतिम वर्ष में विद्यार्थियों को बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में अप्रेंटिसशिप के दौरान लगभग 12,500 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिल सकता है। कॉलेज प्राचार्य अजय शर्मा जी ने दैनिक भास्कर को बताया कि 3 वर्षीय इस पाठ्यक्रम के पहले 2 वर्ष में विद्यार्थियों को कॉलेज में नियमित अध्ययन कराया जाएगा। इस दौरान डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और टैक्सेशन जैसे निवेश प्रबंधन, एडवांस अकाउंटिंग और ग्राहक सेवा जैसे विषयों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3रे वर्ष में विद्यार्थियों को बैंकिंग के साथ साथ वित्तीय और बीमा संस्थानों में 1 वर्ष की ऑनफील्ड ट्रेनिंग कराई जाएगी और इस दौरान प्रत्येक विद्यार्थी को संबंधित संस्थान की ओर से करीब 12,500 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन पर स्थायी नौकरी का अवसर भी मिलेगा। कौन कर सकता है आवेदन? इस कोर्स में 12वीं कॉमर्स उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश कॉलेज के निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और 50 से 65% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो विद्यार्थी पहले से स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है और इस कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वो भी ट्रांसफ़र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया शुरू, कॉलेज प्रशासन ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित दस्तावेजों के साथ राजकीय कॉलेज सिरोही में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। सीमित सीटें होने के कारण प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे। और वहीं पर सिरोही में राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड ने अधिकारी, अभियंता, वरिष्ठ अभियंता और उप प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंध समेत कुल 32 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 13 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। RCFAL में 32 पदों पर भर्ती निकाली है। वहीं पर सीईटी परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया है, 1 माह तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो चुकी है जो 1 माह तक चलेगी। 12वीं पास कर चुके अगर आप लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के अभ्यर्थियों को आवेदन में दिक्कत आ सकता है, लेकिन अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं, 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में सरकारी नौकरी का मौका है, 15 तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने TGD और टेक्निकल असिस्टेंट सहित तमाम पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। वेबसाइट है dssbonline.nic.in के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन का लास्ट डेट है 15 जुलाई। वेबसाइट फिर से दोहराना चाहेंगे dssbonline.nic.in। माउंट आबू में शुक्रवार रात मौसम अचानक बदल गया था, तो रात करीब 9 बजे तेज हवाओं के साथ काले बादल छाए और बारिश शुरू हुई। कुछ ही देर में धुंध ने अरावली की वादियों को ढक लिया और शनिवार सुबह तक बारिश जारी रही। दिन भर रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी होती रही। वहीं पिंडवाड़ा आबू रोड में 2 इंच बारिश हुई। शनिवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस मानसून सीजन में अब तक 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बारिश के बाद बंद पड़े नदी नालों में पानी की आवक शुरू हुई। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 29 डिग्री रहा है। सिरोही मानसून 2026 को देखते हुए संभावित आपदा हालात में बचाव राहत व्यवस्था को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए 6 जुलाई को शाम 4:30 बजे सुकड़ी सेलवाड़ा बांध रेवदर पर मॉक ड्रिल अभ्यास होगा। और ADM डॉक्टर राजेश गोयल जी ने दैनिक भास्कर को बताया कि मॉक ड्रिल अभ्यास SDRF टीम जोधपुर, नागरिक सुरक्षा टीम सिरोही मिलकर के कराएंगी।

आइए कुछ देर मंडी की ओर चलते हैं। श्री उमेद सिंह कृषि मंडी में शनिवार को अनाज में गेहूं प्रति क्विंटल 2,450 से 3,150 तक रहा। जो रहा 2400 से 2600 रुपये तक, बाजरा 2200 से 2400 रुपये और ज्वार 2800 से 6000 तक। और वहीं पर अरंडी की बात करें 6500 से 6730 रुपये, दलहन मूंग 6500 से 8000 तक, चना 5000 से 5881 रुपये तक, उड़द दाल 6500 से 7800 रुपये प्रति

क्विंटल। वहीं पर तेल की बात करें तो सरसों के तेल 2491 रुपये से 2621 रुपये रहा, मूंगफली तेल रहा 2800 से 3150 रुपये। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे मंडी के साथ। और सरसों के भाव रहा 7100 से 7350 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें ग्राम पोसालिया में समुदाय की सहभागिता से ड्रॉप आउट बालिकाओं को दोबारा शिक्षा से जोड़ने की पहल शुरू की गई है। ताराचंद मेघवाल पहली बार समुदाय से जुड़ाव के उद्देश्य से गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को एजुकेट गर्ल्स संस्था के काम के बारे में बताया। कहा कि संस्था पिछले 19 वर्षों से बालिका शिक्षा बढ़ाने, ड्रॉप आउट बालिकाओं को फिर स्कूल से जोड़ने और उनके कौशल विकास पर लगातार काम कर रही है। ताराचंद मेघवाल जी ने प्रधान आचार्य से मुलाकात की, 22 ड्रॉप आउट बालिकाओं की सूची दी और अभिभावकों से संपर्क करने का भरोसा दिया। बालिकाओं की पढ़ाई के लिए उन्हें प्रेरित करने में सहयोग की बात कही। इसके बाद ग्राम सरपंच ने बात की और सरपंच ने बताया कि नियमित पढ़ाई छूटने के बाद उन्होंने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से परीक्षा दी थी तो राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया था। तो इस कहानी से गांव में भरोसा बढ़ा और अभियान को समर्थन मिला। कालंद्री में सिलदर में देवासी समाज के आलगोत्र में सती हुई सती माताजी के पीछे परिवार ने श्रद्धा से गंगा प्रसादी का आयोजन किया। वहीं पर आबूरोड में महावीर इंटरनेशनल के 52वें स्थापना दिवस पर शनिवार को सरकारी अस्पताल अकरावट्टा में सेवा और जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। और शिवगंज में अरावली पर्वतमाला स्थित कांबेश्वर महादेव धाम की श्रावण मास में आयोजित होने वाली 26वीं पदयात्रा की तैयारियों को लेकर सनातन धर्म सेवा समिति शिवगंज की साधारण बैठक 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी। माउंट आबू केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग की 55वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय माउंट आबू के खिलाड़ियों ने 38 पदक जीते। शानदार प्रदर्शन के आधार पर विद्यालय के 8 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए हुआ है। बात करें नागरिक संहिता के बारे में तो संभाग स्तरीय मंथन कल है जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक मुख्य जन सुनवाई होगी। आबूरोड में शनिवार को कालिका पेट्रोलिंग टीम की सदस्य सुंदर सुलोचना कमला जी ने विद्यालय में छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा संकल्प के तहत जागरूकता किया। भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर परिसर में आयोजित 2 दिवसीय उत्सव के दौरान चिंतन शिविर के दौरान शुभारंभ केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल जी के हाथों से हुआ। शिविर में नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भाग लेकर पिछले 12 वर्षों में हुए विधिक एवं न्यायिक सुधारों की समीक्षा और भविष्य की दिशा पर मंथन कर रहे थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मेघवाल जी ने कहा कि जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो चिंता करने की बजाय उसके समाधान के लिए चिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर का उद्देश्य केवल चर्चा करना नहीं बल्कि पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा कर उनसे सीख लेते हुए भविष्य को और बेहतर बनाना है।

दो दिवसीय शिविर के दौरान प्रतिभागियों के लिए योग एवं राजयोग मेडिटेशन के विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहनों के द्वारा तनाव मुक्त सकारात्मक और संतुलित जीवन जीने के लिए राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर बी के मृत्युंजय भाई जी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी का पुष्पगुच्छ एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजोगिनी बी के सुदेश दीदी जी, संयुक्त सचिव पीसी प्रसाद जी, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित रहे।

बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के घटनाक्रमों के साथ, सूचनाओं के साथ और कुछ अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के साथ। कुछ जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं जो दैनिक भास्कर के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला अस्पताल परिसर में बरसात के पानी की निकासी का प्रबंध नहीं होने से थोड़ी सी बारिश होने पर भी पानी जमा होने लगता है। ऐसे में यहाँ आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिरोही शहर के विभिन्न सड़कों पर हो रहे गड्ढों से वाहन चालकों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाटकड़ा चौराहा से कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्ते में ये गड्ढे हैं, जहां गड्ढों के कारण वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। कई बार गड्ढों के कारण वाहन चालक असंतुलित होकर गिरते गिरते बचते भी हैं। तो अभी वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार रविवार गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत। आप अभी सुन पाएंगे अगला कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, और रेडियो मधुबन पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम जारी रहेगा। आपका पसंदीदा कार्यक्रम आप हमें भेज सकते हैं 9414-1415 पर लिख करके कि आज संडे में आपको कौन से कार्यक्रम ज़्यादा पसंद है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नमस्ते।

0: टकराना तेरा। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
5: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: हार के बाद ही जीत है।
9: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्ममंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार डॉक्टर प्रीति जयकर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रीति, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल ठीक, नमस्ते रमेश जी, ओम शांति। अर्चना जी को, कल्पेश जी को बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ दूसरी बार हूँ शो पे, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, आई थिंक ये आपका एक सिग्नेचर लाइन है, वो सुन के आपकी वो आपका एक स्माइल है साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपका आई थिंक एक ही शो है जो मैंने आई थिंक इतने एपिसोड्स देखे हैं, और कोई एक आपका गेस्ट सेम नहीं है, हर एक का अलग। आई थिंक अर्चना हैज बीन वेरी वेरी गुड एट गेटिंग सच गुड स्पीकर्स। तो एक एक आपके सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इट इज सो डाइवर्स, एंड डाइवर्सिटी में उनका पैशन इतना आगे आता है, इट इज रियली वेरी यूनिक। तो उसके लिए बहुत बधाई,
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर प्रीति के स्वागत में आज हमारे साथ कल्पेश जी जुड़े हैं, एक बहुत ही खूबसूरत गीत।
3: नमस्कार
1: जी भी है। नमस्ते नमस्ते कल्पेश, मैं चाहूंगा स्वागत पेश कीजिए।

0: थैंक यू,
1: थैंक यू
0: आई होप यू
1: संतोष।
0: लाइक्ड इट।
1: या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने नरेट किया, थैंक सो मच, बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामना। तो आइए मैं फिर से अभी डॉक्टर प्रीति जी को जोड़ना चाहूंगा आप सभी के साथ में। आज हम लोग जिस विषय को लेकर बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन चीज है, जैसे कि थायराइड के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर प्रीति जी से। तो प्रीति जी, मैं चाहूंगा कि थायराइड ये क्या है, इसके बारे में बताइए।
2: रमेश जी, अपना बेसिकली अभी क्या है कि वी हैव टेकन, अभी इंग्लिश में बोलते हैं कि वी हैव टेकन आवर बॉडी आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। अपना हार्ट अपना काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, पैर काम कर रहे हैं, तो वी फील दैट एवरीथिंग इज ओके।

0: से हम ट्रीट कर सकते थे, लेकिन काफी लेट आते थे. तो तभी भी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स नाउ जब मैं टाटा छोड़ा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जागरूकता अभी भी थायराइड के लिए काफी कम है. तो आपके ये शो में जितना हमें हमारे पास टाइम है, ग्लैंड तो ग्लैंड का ऐसे वो ग्रंथि का काम समझाना बहुत मुश्किल है लेमेंस टर्म में, लेकिन अपना जो बॉडी का संतुलन है, हर एक कोशिका, हर एक ऑर्गन को जो कंट्रोल करता है, बैलेंस आता है, वो ये ग्लैंड है.
1: जी
0: अभी अगर आप अडल्ट मेल को ले, या आप यूजुअल हेल्थी मेल को ले, जिसका वजन अगर 60 किलो का है, तो क्या आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये ग्लैंड का वजन कितना हो सकता है? जस्ट अ वाइल्ड गेस, कितना हो सकता है? ये 25 to 30 grams का ग्लैंड है सिर्फ. आप सोचिए, सिक्सटी किलो हेल्थी अडल्ट मेल में 25 से 30 ग्राम का, 2 इंच का एक छोटा ग्लैंड जो है, ये नीचे अपने गले के नीचे हिस्से में रहता है, और जो हमारी सांस की नली है उससे वो चिपका हुआ रहता है, और तितली के शेप का बोलते हैं हम. इसलिए मैंने इसका एक्चुअली शील्ड करके इसका जो टॉपिक दिया है, वो जैसे ढाल बोलते हैं वैसे इसका चिपका हुआ रहता है. नॉर्मली आप में हमें ये दिखता नहीं है, लेकिन इसका जो कंट्रोल अपने बॉडी पे है, आपका सोना, आपका उठना, आपका जो स्किन का टेक्सचर है, आपका आवाज है, आपका जो एनर्जी है, आपका जैसे आप इतने प्यार से लोगों को ग्रीट करते हैं, आपका वो सिग्नेचर लाइन, आपका पैशन, एनर्जी, सब का जो मेन कंट्रोल है वो ये ग्लैंड करता है. एक ही ग्लैंड नहीं है अपने बॉडी में, अपने पास बहुत सारे ग्रंथियां हैं, लेकिन ये दूसरे ग्रंथि आप लेके, जैसे पैनक्रियाज है, उसका ज्यादा कंट्रोल रहता है शुगर पे. आपका डायबिटीज और पैनक्रियाज से आपको डेफिनेटली उसकी उसकी थोड़ा कुछ मालूम रहेगा. लेडीज में ओवरीज रहती है, जेंट्स में टेस्टीज रहती है, ब्रेन में 2-3 ग्लैंड्स रहते हैं, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, लेकिन सबका एक एक जो हार्मोन रहता है उसका फंक्शन लिमिटेड रहता है, कि आगे पैंक्रियाज है वो शुगर पे कंट्रोल करे, या ओवरीज का जो हार्मोन्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कंट्रोल करे. तो ये थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो पूरे शरीर में हर कोशिका, सर से लेके पैर तक, अपनी चमड़ी से लेके आंखों तक, अपने मूड से, सबसे संबंधित रहता है. और जब ये हेल्थी रहता है, हम हेल्थी रहते हैं. तो इसकी जानकारी, इसके जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा समझना, सतर्क रहना बहुत जरूरी है, कि हमें आगे चल के ट्रीटमेंट भी जल्दी मिले. और इसका एडवांटेज ये है कि जल्दी पकड़ में आने में ट्रीटमेंट भी बहुत ही आसान है. तो ये ग्लैंड, इसके सिम्टम्स, इसके फंक्शंस, इसके प्रॉब्लम्स है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि हम हेल्थी कैसे रहे.
1: बिल्कुल डॉक्टर प्रीति, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये ग्रंथि है जो बहुत ही कम वेट का है, लेकिन इससे पूरा जो है बहुत सारे काम होते हैं जो आपने अभी जिक्र किया। तो अब बात आती है कि अभी कॉमनली जैसे कि चलो थायराइड का ही बीमारी है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो कि ये थायराइड के कारण हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो फिर चीजें आगे बढ़ेगी नहीं। तो प्रॉब्लम को कैसे हम लोग कॉमनली देख सकते हैं, समझ सकते हैं?
0: बिल्कुल, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, ये पूरे शरीर पे काम करता है, तो इसके सिम्टम्स भी जो है वो सामने आने के लिए भी काफी टाइम लगते हैं. लेकिन लकीली जो 30 साल या 40 साल पहले सिवियर डिजीज के साथ आते थे, कि बाबा बहुत ही थायराइड का इश्यू है और फिर वो डायग्नोस हो रहे हैं, वो लकीली आज, अनफॉर्चुनेटली जो बोले, कि आजकल कम दिखाई देता है, क्योंकि ये टेस्ट बहुत फ्रीली अवेलेबल है. और जो सतर्कता है, एटलीस्ट शहरों में या आप गाँव में भी बोले, तो ये टेस्ट जो है काफी इजिली मिलता है करने के लिए. तो ये हॉर्मोन्स जो है, जो ग्लैंड से निकलते हैं, वो बेसिकली दो हॉर्मोन है, T3 और T4. इसका जो लेवल बॉडी में रहना चाहिए, उसका जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उससे हमें एक इजिली आइडिया आ जाता है कि लेवल्स आपके बॉडी में बराबर है कि नहीं. अगर लेवल्स बॉडी में कम है, अभी प्रॉब्लम्स अगर हम सोचे तो सिम्टम्स वाइज, अगर हॉर्मोन लेवल ज्यादा है, यानी प्रोडक्शन जो कार्यप्रणाली ग्रंथि से हो रही है, अगर वो ज्यादा हो रही है, तो इसे हम हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं, यानी जो हार्मोन लेवल है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा है. अगर उसका प्रोडक्शन या कार्य प्रणाली कम है, यानी थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम कर रहा है तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म, और तीसरा एक टोटली डिफरेंट सिम्टम जो हम और डिस्कस करेंगे वो है कि जब गले में गांठ आती है जो नॉन कैंसरस या बिनाइन भी बोलते हैं और जिसमें उसमें कैंसर होता है

0: उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अभी ये जो हॉर्मोन्स है वो बचपन से लेके अपने आयु के अंत तक उसका काम रहता है, स्पेशली लेडीज में ऐसा देखा गया है कि 10 लेडीज में से एक को डेफिनेटली थायराइड प्रॉब्लम होता है और वो कभी कभी मिस हो जाता है। अभी ये 10 में से आप एक सोचो, यू आर टॉकिंग अबाउट 10%, काफी बड़ा नंबर है। और ये लेडीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्यूबर्टी से लेके प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, इसका जो रोल है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पीरियड्स आते हैं लेडीज में, उस पे काम उसका प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो इनफर्टिलिटी, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, जिनमें कंसीव, जो हम बोलते हैं कि बच्चा हो नहीं रहा है, जिसको हम इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं, ब्लीडिंग का इश्यूज ज्यादा होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जब अगर स्त्री को या महिला को थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपो या हाइपर, तो उसे हम हाई रिस्क कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है वो बच्चे में और मदर में, दोनों में हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम आते हैं वो ज्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जो कार्य प्रणाली है वो कम है, तो थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान देना है वो बराबर से गायनेक एंडोक्राइन जो स्पेशलिस्ट है वो देके प्रेगनेंसी एंड तक बराबर उसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर बाय चांस ये मिस हो गया और अगर बच्चा पोस्ट डिलीवरी हमें चेक करना है कि बाबा रिसेंटली डायग्नोस हुआ है या उनका जो ट्रीटमेंट है वो एडिक्वेट नहीं है मदर का, तो बच्चे में भी हाइपोथायरॉयड सिम्टम्स बहुत डेंजरस होते हैं। ब्रीदिंग से लेके क्राइंग तक, फीडिंग तक, मेंटल रिटार्डेशन तक वहां प्रॉब्लम जा सकता है, और ये इरिवर्सिबल है। अगर हम जल्दी पकड़ नहीं लेते हैं कि बाबा बच्चे में, जन्मजात बच्चे में, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूबॉर्न, उसमें एक स्पेशल टेस्ट रहता है जो हील प्रिक टेस्ट बोलते हैं, वहां से खून में इमीडिएटली हम लोग चेक करते हैं कि थायराइड लेवल कैसा है, और अगर हम तभी के तभी इनिशिएट नहीं करते हैं ट्रीटमेंट, तो आगे चल के रिटार्डेशन और प्रॉब्लम जो इरिवर्सिबल है उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। तो ये सब चीज जो है थायराइड हार्मोन से जुड़ी हुई है, और ये थायराइड ग्लैंड जो लेडीज में, मैंने जब अभी उसका उल्लेख किया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थायराइड अपना नॉर्मल होना चाहिए। सिम्टम्स आप बताएं तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत वेग सिम्टम्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्किन ड्राइनेस रहना, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स, मोटापा होना, अगर मोटापा एज इन नॉट ओबेसिटी टाइप मोटापा, खाते भी ज्यादा है, खाते कम है कोई कोई लोग, नींद नहीं आती है, थोड़ा सा लेथार्जी जो बोलते हैं कि बाबा एनर्जी नहीं है, निकलना नहीं है बेड से, ये सब चीजें जो है, कभी कभी फेस में थोड़ा सा पफीनेस आ जाता है, ये थोड़े वेग सिम्टम्स है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा एक सिम्टम पकड़ के हम बोले कि बाबा ये थायराइड की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि बाबा 3 महीने पहले मैं आई वाज फीलिंग बेटर और अभी थोड़ा सा बदल हो गया है, ये सब थोड़े थोड़े सिम्टम्स है, तो बेटर टू गेट योर थायराइड लेवल्स चेक। हाइपर थायराइडिज्म में जहां वो कार्य प्रणाली ज्यादा हो रही है, वो ट्रेमर्स आते हैं हाथ में, पैल्पिटेशंस होते हैं, एपेटाइट बढ़ता है लेकिन वेट नहीं बढ़ता है, जो हाइपर एक्टिविटी है वो होता है, तो एब्सोल्युटली उल्टा सिम्टम्स, और दोनों कैटेगरी में लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो दैट इज क्वाइट कॉमन इन बोथ। अभी ड्राई आईज रहते हैं किसी किसी में, हाइपर में, और एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि आंख जो है, हमें आंख का जो ऊपर का व्हाइट है जो नॉर्मली दिखता नहीं है वो दिखने लगता है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सोफ्थाल्मा, सो एक वेरी क्लासिकल, लकीली ज्यादा दिखता नहीं है अभी, लेकिन दिस आर द सिम्टम। तीसरा जो रीजन है ये सब, अभी मैं हॉर्मोन्स का मैं आपको लेवल बता रही हूँ, लेकिन उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे आपके ऑफिस में आपका बॉस रहेगा या आपका फैन रेगुलेट करने के लिए एक स्पीड रहेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा बाबा मैं सिर्फ T3 T4 करके अगर मेरा लेवल नॉर्मल है तो या डज दैट मीन कि मेरा थायराइड बराबर है। आप सबने TSH करके टेस्ट सुना होगा जो इसके साथ में जाता है, T3 T4 TSH। अभी ये TSH जो है वो थायराइड से निकलता नहीं है, वो थायराइड का एक बॉस है जो ब्रेन में रहता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वो और एक हार्मोन ग्लैंड है, छोटा सा 1 सेंटीमीटर का ग्लैंड है लेकिन वो किंग है। तो जब हमारे शरीर में हम उसको लगता है कि बाबा हमें थायराइड हार्मोन ज्यादा चाहिए यानी कमी है, तो वो एक सिग्नल भेजता है, TSH बढ़ जाता है, तो ये जो लेवल है वो उल्टा है, यानी आपका थायराइड ग्लैंड कम सेक्रेट कर रहा है तो ये टीएसएच ज्यादा हो जाएगा। तो ये काफी लोगों को समझता नहीं है, उनको लगता है कि मेरे को थायराइड ज्यादा हो गया है क्योंकि टीएसएच बढ़ जाता है, लेकिन उसका जो जो मतलब है वो उल्टा है। यानी टीएसएच बढ़ गया यानी आपका थायराइड लेवल कम है, तो आपको थायराइड की गोली चाहिए। उल्टा हाइपर थायराइड में होता है कि उसका जो प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से थायराइड का जो स्टिमुलेशन चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड कम होता है, तो वो रेंज से कम हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि बाबा ये पेशेंट हाइपर थायराइड है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है हाइपो और हाइपर के लिए। अभी मैं रही सर्जिकल डॉक्टर, तो मैं ज्यादा मेडिकल इश्यूज से ज्यादा आई एम ज्यादा मेरा गले से जो गांठ के पेशेंट आते हैं सिम्टम लेके उस पे हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। तो थर्ड कैटेगरी के जो पेशेंट है वो गले में गांठ लेके आते हैं। अभी अच्छा, आप अच्छा। अगर कहीं भी घूमे तो भी आप देखेंगे कि बहुत सारे इसमें ये गांठ दिख जाती है रास्ते में चलते हुए, आप बहुत लोगों में आपने देखा होगा। अभी ये जो है इसे हम इंग्लिश में गॉइटर बोलते हैं, इसका स्पेसिफिक सिर्फ थायराइड से संबंध है और अच्छा, अच्छा। हिंदी में इसको गलगंड बोलते हैं। अभी ये जो गॉइटर है वो बहुत हम अगर क्लासिफाई करें तो हमें जो है उसको दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एक जो है स्मूथ जो ग्लैंड रहता है उसको डिफ्यूज गॉइटर बोलते हैं, और दूसरा आप देखेंगे पूरा ऐसे पूरा सूज जाता है तो उसे डिफ्यूज गॉइटर बोलते हैं। दूसरे इसमें जहां वो थायराइड के ग्लैंड में ही गांठ आती है उसको नोड्यूलर गॉइटर बोलते हैं। अभी अच्छा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ट्रीटमेंट अलग है दोनों का। और तीसरे जो वैरायटी है वो पूरे अपने कैंसर रिलेटेड आते हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे आई कैन स्पीक ऑन द स्वेलिंग्स की हम
1: जी जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन बीच में एक क्वेश्चन किसी ने डाला है सुभाष जी, हाँ ट्राइबल एंड ट्राइबल आदिवासी लोगों को ज्यादा थायराइड होता है क्या, दिस इज ट्रू और फॉल्स ये पूछा है, और व्हाई पीपल एक्सप्लेन्स ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताइए दीदी। डॉक्टर प्रीति जी, अर्जुन रमेश जी, अर्चना जी, ओम शांति, थैंक यू। यस, आदिवासी और ट्राइबल जो गांव के अंदर रहते हैं उन लोगों को ज्यादा होता है कि ये पूछा है।
0: बिल्कुल, अभी ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि ये पिछले आई थिंक 50 या 60 इयर्स में काफी बदल चुके हैं। बिकॉज जो पहले के जमाने में जो सॉल्ट होता था वो हमें या तो डायरेक्टली सी सॉल्ट से मिलता था और उसका जो है सब्स्टिट्यूट ज्यादा इंटीरियर्स में नहीं मिलता था, एज इन द सेंस कि वो लोग जो है उनके प्रोडक्शन में जो उनको सॉल्ट मिल रहा है वो यूज करते थे। अभी थायराइड इतना एक अमेजिंग या इतना वंडरफुल एक ग्लैंड है जो पूरे शरीर में आयोडीन का जो रिक्वायरमेंट रहता है, आयोडीन करके आई थिंक आप सब लोग
1: बिल्कुल सुना है,
0: तो वो जो आयोडीन है वो उसको यूज करने में सबसे इम्पोर्टेंट उसका एक काम है, और वो T3 और T4 दोनों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है काम करने में। तो पहले के जमाने में जब हमारे पास आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं रहता था तो ये जो नमक आती थी, अभी जो आप सब नमक जो मार्केट में मिलता है वो सब आयोडाइज्ड है, तो पहले के जमाने में जब नहीं मिलता था या तो ऐसे जो आदिवासी हैं जो आयोडाइज्ड नमक नहीं ले रहे हैं उनमें जो है ये आयोडीन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन थायराइड का सेक्रीशन कम हो जाता है और उनको वो गॉइटर आ जाता है। तो उसमें वो स्वेलिंग्स और वो जो हाइपोथायराइड डिजीज है वो आयोडीन डेफिशिएंसी के वजह से है और ये रिवर्सिबल है। तो इन लोगों में अगर ये हम इंफॉर्मेशन दें कि बाबा आपका सॉल्ट आपसे वो नमक चेंज करके आयोडाइज सॉल्ट ले ले तो ये प्रॉब्लम मिट जाए। तो अभी कंपेयर टू द लास्ट 40-50 इयर्स बहुत कम है, लेकिन पहले एंडेमिक एरियाज थे जैसे नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट में एंडेमिक एरियाज थे जहाँ पे ये हमें ज्यादा दिखता था।
1: प्रीति जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और सुभाष जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका, क्योंकि कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं लेकिन फिर हम उसे ठीक से नहीं समझ पाते। अगर समझ जाएंगे तो नेचुरली ये चीजें जो है, पहले मेरे ख्याल से ये खास करके एड भी चलता था एक तरह का आयोडीन नमक खाइए करके वगैरह, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रचलन था ये। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये सारा नॉर्मल मना लोग आयोडीन नमक खाने लग गए और ये सारी चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई। अब बात करते हैं हम लोग डायग्नोसिस पे, इसके बारे में इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं।
0: अभी डायग्नोसिस जो हाइपो या हाइपर थायराइड के हैं वो सिंपल ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। एक T3 T4 TSH का एक सिंपल ब्लड टेस्ट रहता है जिसके लिए हमें भूखे पेट की भी जरूरत नहीं है, वो टेस्ट में एक अंदाज आ जाता है कि अपने लेवल्स ठीक है कि नहीं। अभी इसमें अगर आप T3 T4 भी ना करें और सिर्फ TSH करें तो उससे भी हमें काफी आइडिया आ जाएगा कि बाबा थायराइड का आपका प्रोडक्शन बराबर है कि नहीं, और ये रेंज में रहता है, वो रेंज में अगर है तो योर। और ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा रेंज, फॉर एग्जाम्पल अगर 4.95 है और आपका अगर 5 है तो आपको हाइपोथायरॉयडाइसिस नहीं है. ये जो है हम डिसाइड करते हैं गोलियां देनी है नहीं देनी है बेस्ड ऑन द लेवल सिम्टम्स. तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा एक पॉइंट इधर उधर हुआ तो आप हाइपो या हाइपर है. तो ये ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए अगर आपका रेंज में नहीं है तो इमीडिएटली आपके या तो एमडी स्पेशलिस्ट जो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट है या तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इससे अगर आप मिले तो दे कैन गाइड यू कि आपको मेडिकेशन की जरूरत है या आपको टेस्ट थोड़े दिनों के बाद वापस रिपीट करके चेक करना है. इसके अलावा जो है अगर हाइपर थायराइड की बात करें तो और 2-3 ब्लड टेस्ट रहते हैं जो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह करते हैं उसमें भी आइडिया आता है. इसके साथ में कभी कभी हम गले की सोनोग्राफी निकालते हैं देखने के लिए कि थायराइड ग्लैंड दिखने में कैसा है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बराबर है कि नहीं. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जब हमारे पास पेशेंट वो गांठ लेके आते हैं तो हमें पता करना पड़ता है कि वो गांठ कैसा है कितना बड़ा है एक है कि ज्यादा है या हमें उसमें कोई डेंजर सिम्टम लग रहे हैं उसके साथ में और कहीं फैला हुआ गांठ हमें दिख रहा है कि नहीं करके. तो इसके ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है. अल्ट्रासाउंड तो आपको मालूम है आई थिंक 15 मिनट्स में अल्ट्रासाउंड हो भी जाता है. तो ये बहुत सिंपल टेस्ट है. इसके अलावा अगर हमें डाउट है कि हाइपरथायरॉयडिज्म कोई पर्टिकुलर एरिया थायराइड की वजह से है तो कभी कभी थायराइड स्कैन होता है जो स्पेशलाइज्ड स्कैन है जो न्यूक्लियर मेडिसिन एक अलग ही डिपार्टमेंट है वहां पे करते हैं. तो वो सिर्फ थायराइड का ग्लैंड देख के वो बताते हैं कि बाबा ये एरिया में उसका प्रोडक्शन ज्यादा है तो वो स्पेशलाइज्ड स्कैन है. सीटी एमआरआई तो हम सब ने सुना है. तो अगर कैंसर का डाउट है या हमें लग रहा है कि कोई और सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस है तो कभी कभी हम वो भी करते हैं. इसके अलावा अगर कोई एरिया में हमें डरता है तो छोटी सी हम उसमें सुई डालते हैं जिसे FNAC करते हैं. तो उसमें एक FNAC करके है जो छोटी सुई वो एरिया में डाल के उसका जो है टेस्टिंग करके हमें आइडिया आता है कि ये कैंसरस है कि नहीं. तो ये सब जो है टेस्ट है जो हमारे पास है. इसके अलावा बहुत सारे हैं बट दीज आर द मोस्ट कॉमन वन.
1: एक कुछ सवाल आए हैं वापस एक बार हम लोग उनको देख लेते हैं. यहाँ पर संगीता चांदक लिखते हैं क्या पत्ता गोभी से बढ़ता है थायराइड या इसे अवॉइड करना चाहिए. दूसरा उन्होंने लिखा है तो इसको अवॉइड या थायराइड को कम करने के लिए कोई एक्सरसाइज है.
0: ये बहुत ही कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारा वजन ज्यादा है या तो हम कोई चीज खा रहे हैं जैसे इन्होंने बताया पत्ता गोभी किसी किसी को एक स्पेशली देयर आस्क्ड टू अवॉइड टमाटोज. तो ये सब जो चीजें हैं इनका थायराइड से कोई संबंध नहीं है. देयर इज नो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस विद थायराइड. थायराइड का जो ग्लैंड है वो अपने आप से एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड है जिसका आयोडीन छोड़ के डाइट में कोई फर्क में कोई चीज में आप ले या ना ले उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो कोई चीज अवॉइड करने के लिए थायराइड के लिए कोई देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल. एक्सरसाइज की बात एक्सरसाइज करना तो एनीवे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है लेकिन एक्सरसाइज और अगेन थायराइड का कोई संबंध नहीं है. तो अगर थायराइड में प्रॉब्लम है कमी या ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है. साथ ही आप एक्सरसाइज कीजिए साथ ही आप बैलेंस डाइट लीजिए इट विल हेल्प लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द सिचुएशन.
1: सवाल आया है यहाँ पर इट इज अ बिलीव दैट इफ यू कर्ब योर फीलिंग यू डू नॉट स्पीक आउट यानी जो लोग अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं और बात नहीं करते हैं तो इससे भी क्या थायराइड प्रॉब्लम होता है क्या ये सही है.
0: एक्चुअली क्वाइट द रिवर्स. बेसिकली क्या रहता है कि जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल अगर हाइपो है या हाइपर है तो जैसे मैंने बताया इसका जो रोल है वो पूरे शरीर में है इंक्लूडिंग द ब्रेन. तो बहुत अनट्रीटेड जो थायराइड बोलते हैं जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है उनके दिमाग में बहुत विचार चलते हैं. हाइपर एक्टिविटी से लेके डिप्रेशन तक एंजाइटी तक कुछ भी हो सकता है. तो मेनी पीपल ये रिलेट करके ऐसे समझते हैं कि बिकॉज मैंने ऐसा किया तो मुझे थायराइड हुआ. वो एक्चुअली सिचुएशन टोटली उल्टा रहता है. थायराइड डिटेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके जो विचार है उसकी वजह से कोई चेंज हो सकता है. अगर ऐसा लग रहा है कि बाबा विचार अलग आ रहे हैं या हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ तो बदल हो गया है तो डेफिनेटली
1: एक और सवाल आया है. ये लिखते हैं मीनल जी के बाद कल्पेश जी खुद लिख रहे हैं क्या थायराइड की वजह से डायबिटीज होने का चांसेस है क्या.
0: ये टोटली अलग अलग ग्लैंड्स है. फॉर एग्जांपल जैसे थायराइड ग्लैंड जो है उसका मैंने बिगिनिंग में कहा था थायराइड ग्लैंड का फंक्शन अलग है. पैंक्रियास का फंक्शन अलग है. हर एक का रोल है और वो रोल जो है इतना बैलेंस्ड है जिसकी वजह से आप ऐसे हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपकी आवाज अच्छी आ रही है, तो ये बैलेंस रखने के लिए हर ग्लैंड को अपना काम बराबर करना चाहिए। तो डायबिटीज जो है वो रिलेटेड रहता है, उसका पैनक्रिया से भी रिलेशन है, उसका इंसुलिन जो सेक्रेट हो रहा है डाइट में वो उसमें उसका टोटली अलग एक रीजन रहता है, लेकिन थायराइड और थायराइड की वजह से डायबिटीज होना अनलाइकली है।
1: अच्छा अच्छा, चलिए कल्पेश जी आपने जो पूछा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी अलग है, टेस्टिंग भी अलग है, सब कुछ है अलग। तो आइए अब बात करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें समझ लिया कि थायराइड एक ग्रंथि है और हाइपो हाइपर या हाइपो मना कम हाइपर मना ज्यादा, मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहबा? तो ये कम ज्यादा वाला बात होता है, तो इसमें आपको इसलिए मेरे ख्याल से थायराइड के टैबलेट्स में ना पावर होते हैं, है ना, तो कभी 25 कभी 50 कभी 75 100 तक भी जाते, तो आप फिर कम होते वो सारी चीजें कम भी गोलियां कम लेनी पड़ती, इसका मतलब आपका थायराइड लेवल अगर बैलेंस में आ रहा है कम करनी पड़ेगी गोलियां, और अगर कम हो रहा है तो फिर आपको गोलियों का पावर बढ़ाना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ठीक से समझने की जरूरत। एक और बात आई थी इस पर पिछली बार किसी डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बातें कही थी, तो क्या थायराइड एक बार होने से कम्प्लीटली वो खत्म होता है क्या ट्रीटमेंट करने के बाद, या रहता ही है या गोली लेना ही पड़ता है?
0: देखिए इसमें जो है हाइपोथायरॉयडिज्म में जहाँ पे सेक्रीशन जो कार्य प्रणाली वो कम हो रही है उसमें हमें टैबलेट लेना ही है, और वो टैबलेट क्या है, वो एक्सटर्नली सिंथेटिक हम लोग हार्मोन दे रहे हैं कि वो बैलेंस करने की, तो ये कम ज्यादा हम कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ, लेकिन ये यूजुअली जो है लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है कि आप अपने जैसे आप अपना चश्मा है वो अगर आप शुरू से पहन रहे हैं तो सडनली जो है आप निकाल नहीं सकते, आपको नंबर चेंज हो सकता है,
1: नंबर चेंज
0: हाई और बिल्कुल तो हाई, और वो क्या है सिर्फ एक गोली है जो सवेरे हम भूखे पेट लेते हैं, तो इट इज लाइक अ लाइफ स्टाइल, यू हैव टू चेंज इट कि बाबा हमें थायराइड की गोली लेनी है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो हमारी कमी को बैलेंस कर रहा है, दैट इज द ओनली रोल इट हैज। हाइपरथायरॉयडिज्म जो है हमें क्योर करने के लिए उसके उसके पीछे हम यूजुअली ट्राई करते हैं। हाइपर में क्या रहता है कि समटाइम्स वो ग्लैंड ही सूट जाता है किसी डिजीज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कभी एक जगह जो है वो ग्लैंड का वो ज्यादा काम करता है, तो नॉर्मली इसमें जो है दवाई टोटली अलग दी जाती है, वो थायराइड हार्मोन नहीं रहता है, वो हार्मोन को दबाने के लिए अलग से ड्रग रहता है, वो कभी कभी जैसे वो उसकी सूजन चली जाती है या उसका जो प्रभाव है वो निकल जाता है, तो हो सकता है कि 3-4 साल में वो गोली हम बंद भी कर सकते हैं। तीसरा अगर वो 3-4 साल के बाद भी नहीं हो रहा है और हमें पता है कि वो एक जगह में वो गड़बड़ है, तो ऑपरेशन द्वारा वो भाग निकाल के हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, तो हाइपर में डेफिनेटली हम बंद करने की कोशिश करते हैं, हाइपो में चांसेस कम है।
1: कम, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट था जो समझना जरूरी था। अब बात करते हैं, जैसे मान लो किसी को डिटेक्ट हो गया भाई थायराइड है हाइपो या हाइपर, लेकिन फिर भी अब ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या करना होता है, थोड़ा सा वो बताएं।
0: अभी हाइपो में जैसे हम अभी बता रहे थे कि गोली लेनी पड़ती है, और जैसे आपने सही बताया कि उसके पावर रहते हैं, तो ये जो दवाई है वो कोई अपने आप से ना लेके अगर आप बराबर एक फिजिशियन के पास या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके अगर आप डोज वो टीएसएच को देख के आपको डिसाइड करते हैं कि आपको स्टार्टिंग डोज क्या लेना है, अब वो अगर 25 से चालू करें तो 25 ऐसा नहीं कि 10 दिन में आपका लेवल बदल जाएगा, ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो मे बी 2 महीने या 3 महीने के बाद वापस चेक करके वो देखते हैं कि लेवल कितना चेंज हो गया है, अगर नॉर्मल आ गया है तो वो उसी डोज पे आपको कंटिन्यू करेंगे, फिर भी अगर टीएसएच ज्यादा है यानी आपका लेवल फिर भी कम है तो वो थोड़ा और डोज बढ़ा देंगे, तो वो जो बैलेंस करने का जो एक ये रहता है कि आपको 25 चाहिए 50 चाहिए 100 चाहिए, वो बैलेंसिंग करने के लिए कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, और ये करने के बाद हर 6 महीने में वो टेस्टिंग रिपीट करके हम देखते हैं कि अदर लेवल टीएसएच लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं कि नहीं। हाइपर में क्या रहता है कि एक स्पेशल जैसे मैंने बोला वो टैबलेट देते हैं जिसकी वजह से वो हम लोग हार्मोन लेवल्स कंट्रोल करते हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट ड्रग रहते हैं। अभी ये जो थायरोक्सिन की गोली है जो आती है पावर में, उसका सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट चीज है कि वो सवेरे बिफोर ब्रेकफास्ट भूखे पेट में लेना है, और हो सकता है तो उसके बाद एटलीस्ट एक 40-45 मिनट 1 आवर के बाद आप चाय लो कुछ और लो कुछ और ले सकते हैं, तो एम्प्टी स्टमक होना जरूरी है। इसमें भी काफी अभी वाद विवाद है, बट जो टीचिंग है हमारा रेगुलर वो ऐसा है कि मॉर्निंग में भूखे पेट में ले लीजिए और मिस नहीं होना चाहिए, वो एक जरूरी चीज, तो वो मिस ना करें और बराबर से ले। और प्रेगनेंसी के द्वारा तो यू हैव टू बी इन टोटल कनेक्शन विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट कि बाबा बराबर चल रही है कि नहीं, तो उसमें भी हार्मोन लेवल बहुत ऊपर नीचे चले जाते हैं। ये हाइपो हाइपर, अभी अगर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट जाए तो जो गलगन जो बोलते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए राइट फ्रॉम कुछ नहीं करने से लेके पूरा थायराइड निकालने तक हमारा पूरा एक प्लान रहता है। जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो डिफ्यूज जो स्मूथ गॉइटर है उसको नॉर्मली ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वो अपने आप से बैठ गई, अगर हम हाइपो है हमने गोली ले ली वो बैठ गई तो ठीक है, नहीं बैठी तो भी हम लोग उसके लिए ऑपरेशन नहीं करते हैं। अगर बाय चांस उसकी वजह से तकलीफ हो रही हो राइट फ्रॉम कॉस्मेटिक की बाबा बहुत सुझा हुआ लग रहा है या उसकी वजह से प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हो तो ही हम उसे ऑपरेट करते हैं। जो नोड्यूलर गॉइटर है जिसमें जो उसमें ग्रंथि में ही छोटे छोटे गांठ है, उसमें दो टाइप के हैं, एक जो सिंगल गांठ आती है उसमें हम एक स्पेशल उसका नाम रहता है जो हम सॉलिटरी थायरॉइड नोड्यूल यानी एक ही साइड में एक ही जगह वो गांठ है, उसके लिए अगर हम साइज 1.5 सेंटीमीटर से क्रॉस करें तो वो हम आधा थायराइड निकालते हैं। अच्छा। तो वो जो भाग है क्योंकि चांसेस कम है लेकिन वो आगे चल के कैंसर में बदलने का चांस करके हम करते हैं। तीसरा जो है मल्टी नोड्यूल यानी दोनों साइड में छोटी छोटी गांठें हैं, उसको भी हम यूजुअली सर्जरी नहीं करते हैं। ये जब हम टच करते हैं जब हमें कोई डाउट है कि बाबा कोई एक जगह डेंजर हो गया है, सडनली कुछ बढ़ गया है। अभी ये आप मैं जो नोड्यूल बता रही हूँ वो 2 मिलीमीटर से लेके 1.5 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। कोई कोई पेशेंट ऐसे लिटरली ऐसे गांठ लेके आते हैं, उनमें भी आपने देखा भी होगा काफी, इट्स क्वाइट कॉमन, अभी भी क्वाइट कॉमन। लेकिन फिर भी अगर हमें डाउट है कि बाबा उसमें तकलीफ हो रही है, उसमें तकलीफ क्या रहती है, दो चीज से हमें डर रहता है, एक तो प्रेशर की वजह से बिल्कुल पीछे सांस की नली रहती है तो बहुत टाइम से अगर 15 साल 20 साल वो हम गांठ में वो सूजन गले में सूजन है तो उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है तो लेटते समय सांस में तकलीफ आ जाती है। उसके पीछे डायरेक्टली जो है हमारा हमारी अन्न नलिका रहती है तो कभी कभी निगलने में तकलीफ आ जाती है। और ये जो ग्लैंड है उसके दोनों साइड उसके पीछे से छोटी जो है नसें जाती है जो हमारा हमारी जो वॉइस बॉक्स है जो हम बात कर रहे हैं अपना जो पिच है वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं तो उसको वो सप्लाई करती है तो कभी कभी उस पे प्रेशर आता है तो आवाज होर्स हो जाता है जैसे हमारा गला बैठ गया है वैसे आवाज आती है। ये सब कंडीशन में हम ऑपरेट करने के लिए हम पेशेंट को सलाह देते हैं। टोटली डिफरेंट चीज है कैंसर। अभी कैंसर में जो थायराइड ग्लैंड के कैंसर है वो नॉर्मली 3-4 टाइप के रहते हैं। कोई कोई कैंसर उसमें फैमिलियल रहते हैं जो जेनेटिक रहते हैं कि किसी के फादर की साइड से या मदर के साइड से वो कैंसर ट्रांसमिट होता है लेकिन वो कम है। लेकिन अगेन सतर्कता जरूरी है कि बाबा समबडी इन माय फैमिली हैड कैंसर स्पेशली थायराइड कैंसर तो हम चांसेस है। इंडिया में जेनेटिक टेस्टिंग अभी भी इतना प्रचलित नहीं है तो ये जो जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री है वो अभी भी काफी कम हमें दिखता है या हम उसका जो डायग्नोसिस कर रहे हैं। आई थिंक आगे के 20-30 साल में वो और बढ़ जाएगा। ये जो कैंसर आते हैं इसमें इसका जो टाइप्स है वो 2-3 टाइप के जैसे है जो काफी कॉमन है। उसका ट्रीटमेंट भी जो है वो कैंसर के टाइप से डिसाइड होता है। तो इसका जैसे हमने पहले बताया कि छोटी सुई डालते हैं उसका स्लाइड देखते हैं अगर उसमें कैंसर दिखता है तो या तो सर्जरी या तो सर्जरी के साथ कभी कभी हम कीमो कभी रेडिएशन वो भी देना पड़ता है। इसके अलावा अगर वो एक स्पेशल टाइप का कैंसर जो मेड्यूलरी कैंसर बोलते हैं फॉलिकुलर कैंसर बोलते हैं जो उसका फैलने का डेंजर रहता है तो जो थायराइड ग्लैंड के साथ में कभी कभी उसके आजू बाजू के जो नोड्स हैं जो गले में फैल रहे हैं उसको देखना पड़ता है। कभी कोई टाइप के कैंसर्स में हमें एक्स्ट्रा बूस्ट जैसे हम रेडिएशन देते हैं वैसे जैसे आयोडीन का कनेक्शन है थायराइड के साथ रेडियो आयोडीन करके एक थेरेपी रहता है जिसमें वो सिर्फ आयोडीन की के माध्यम से स्पेशल आयोडीन के माध्यम से जो कैंसर का टिश्यू है वो जल जाता है। अच्छा। तो इसका वो एक स्पेशल ये सब मॉडलिटीज हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट काफी सक्सेसफुल रहता है जितने जल्दी आएंगे उतना डेफिनेटली सर्वाइवल अच्छा है। तो अगर पेन है कहीं नया गांठ कुछ निकला है आपको ऐसे लग रहा है कि गले में आपका आवाज में बदल आ गई है या सांस लेने में बदल आई है तो प्लीज आपके डॉक्टर से मिलिए एंड गेट दैट चेक्ड अप बिकॉज ये नॉर्मली दिखता नहीं है किसी में, अगर दिख जाता है देन यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम. सो इट इज इजी टू, अभी डर के बैठ के घर पे बैठने से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो यू हैव टू अप्रोच द डॉक्टर, यू हैव टू गेट इट ट्रीटेड.
1: बिल्कुल बिल्कुल. कल्पेश जी कुछ लिखा है, उन्होंने लिखा कि मेरी वाइफ शायद 250 नहीं होगा, 25 होगा, नहीं टैबलेट 250 mg का भी आता है क्या?
0: नहीं वो 100 के आके देते भी हैं, इट इज नॉट, इज नॉट गिवन. काफी वो
1: तो हो सकता है, ज्यादा भी देना पड़ता है अपने को डोज
0: कभी कभी. और ये जो हम जब ऑपरेशन करके पूरा थायराइड निकालते हैं तो जिंदगी भर थायराइड की गोली देनी ही पड़ती है. तो वो ऑपरेशन के बाद 6 के बाद हम लोग टेस्ट करके बेसलाइन कितना है देखे, वो हम लोग लाइफ लॉन्ग देने की जो है एक नीड हो जाता है कि देना ही पड़ता है. तो हो सकता है कि वो लगे, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज कंट्रोल में है डोज मैटर नहीं करता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो चलिए एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी मिस कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक सवाल आया था जैसे पत्ता गोभी खाने से थायराइड बढ़ जाता है या सही है, या कोई एक्सरसाइज है जिससे हमारा थायराइड कम हो सकता है, तो ये इन चीजों पे थोड़ा सा और आप गहराई से बताए.
0: ये सबसे जो आसान मिसकंसेप्शन जो मैं बोल रही, कॉमन मिसकंसेप्शन है वो है कि मैंने 6 मेरी थायराइड की गोली ले ली, अभी मेरा लेवल नॉर्मल है, अभी मैं बंद कर देती हूँ. और जैसे यू नो मेरा नेबर है वो 25 ले रहा है, मेरे डॉक्टर ने मुझे 100 लेने को बोला है, वो तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैं अपने आप से कम कर देता हूँ. तो ये चीज बहुत गलत है. आपके थायराइड लेवल चेंज होने में 2 लग जाते हैं. तो अगर आपका लेवल नॉर्मल है, ये नॉर्मल है क्योंकि आपकी गोली चल रही है, तो अपने आप से तो कभी बंद मत कीजिए. अगर करना भी है कि आपको वो चेक करना है कि कोई चेंज करना है, तो टेस्ट करके आपके डॉक्टर की सलाह के साथ ही लीजिए. जैसे मैंने बताया वो सिर्फ एक ही गोली है, सवेरे लेनी है बस. लिटरली अपने दिन की शुरुआत अगर उससे करें तो आपका पूरा दिन जो है इट इज गोइंग टू गो वेल. तो हम सवेरे उठ के चाय पीते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, उसके वैसे ही हमें ये एक लाइफस्टाइल में जोड़ना है, वो एक चीज है. लेकिन मिसकंसेप्शन ये है कि आपने जैसे बताया कोई डाइट खाने से या डाइट ना खाने से ये इसमें बदल हो सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट प्रूवन कि डाइट और इसमें कोई संबंध है. सिर्फ वो आयोडीन का है जैसे मैंने बताया, तो आयोडाइज सॉल्ट लेना बहुत जरूरी है. तो ये डेली डाइट में जितना अपना रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है जिसको RDA बोलते हैं, वो लेना जरूरी. और थर्ड जो ये हम सर्जिकल इसमें देखते हैं कि काफी लोगों में ये जो गांठ आती है वो दिखने में तो काफी बड़ी भी होती है, कभी कभी छोटी रहती है, लेकिन बहुत जो पेशेंट्स आते हैं उनको डर रहता है कि निशान ना आ जाए. अच्छा. मैं ऐसे कैसे घूमू की इधर ऑपरेशन हुआ है करके. लेकिन कॉस्मेटिक जो सर्जरी का एक भाग नेक का सर्जरी रहता है, जो हम इंसिजन ही ऐसा लेते हैं, जो कट ही ऐसा लेते हैं, तो निशान और उसका जो दिखने का जो एक डर रहता है वो भी काफी लोगों में रहता है, वो ना ले. द अदर थिंग इज कि बाबा मेरा वॉइस बदल ना जाए ऑपरेशन के बाद. ये काफी इम्पोर्टेंट है, जो हम सिंगर्स में देखते हैं, जो टीचर्स हैं, जो आपकी तरह है, जो RJ है, जो आपका काम ही है, जो यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, तो इनमें जो है जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो आपके सर्जन के साथ आपको ये समझना जरूरी है कि वो जो 2 जा रही है, जो अपने वोकल कॉर्ड को पिच दे रही है, जो उसको बैलेंस दे रही है, वो कभी कभार जो है इंजर होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली कैंसर में. क्योंकि कैंसर का एम है कि हम कैंसर को निकालना जरूरी है, लेकिन अगर वो कैंसर वो नस में चली जाए या बाई मिस्टेक वो आप लिटरली आपके जो बाल है उससे भी छोटे वो नसें रहती है जो हमें बचा ऑपरेशन करना, इतना डेलिकेट सर्जरी है वो. और वो कभी कभी अगर इंजर होती है तो कभी टेम्पररी भी इंजर हो सकती है, कभी परमानेंट भी हो सकती है. तो ये कभी कभी पेशेंट को पहले अगर पता होता है कि बाबा ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो टेम्पररी चीज थोड़े दिनों में, हफ्तों में एक्सरसाइज के साथ ठीक भी हो जाती है. परमानेंट जब रहती है तो भी 2-3 में उसका जो एक बैलेंस आ जाता है. वॉइस में हो सकता है कि थोड़ा बदल हो, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी बैड कैंसर्स या वेरी बैड थिंग. नॉर्मली पेशेंट आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होता नहीं है, लेकिन ये वॉइस इश्यूज काफी लोग डर जाते हैं उससे, तो नहीं करते. और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया सब गांठ में कैंसर नहीं होते, सब थायराइड स्वेलिंग्स में ऑपरेशन नहीं लगता है, लेकिन किसमें लगता है नहीं लगता है वो आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकते. एक चीज
1: जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि क्या इसमें कुछ बहुत सारे लोग अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो क्या थायराइड में भी कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है?
0: अभी बहुत अल्टरनेटिव अपना आई थिंक इंडिया इज द हब फॉर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स. लेकिन एक बहुत इसका एक लॉजिकल ये है कि अगर हमारे हार्मोन कम है, ग्लैंड कम सेक्रेट कर रहा है, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद द सेम हार्मोन, तो दूसरे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में जाने के लिए लॉजिक क्या है? आई एम एन एलोपैथ, आई मुझे ज्यादा होम्योपैथी के बारे में नहीं है, एलोपैथी, यूनानी, कुछ भी, आई डोंट नो मच अबाउट द अदर थिंग्स, बट लॉजिक एंड प्रैक्टिकली जब हम बात करें कि बाबा इसका ये हम हमारे पास आसान से इलाज है, बहुत सस्ता भी है, अगर हम ले और हेल्थी रहे तो व्हाई नॉट, अभी अलग एंड सेकेंडली अगर हम जो फीमेल्स के बारे में जिनमें ये बहुत ज्यादा दिखता है थायराइड प्रॉब्लम, उसका हम देखें तो ये इसके जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा है. तो आई वुड नॉट लाइक एनी फीमेल या कोई भी महिला कि बाबा मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, मैंने बराबर ट्रीटमेंट जो है जो रिकमेंडेड है या जो मेरे सामने अवेलेबल है अगर मैं ना लूँ तो आर यू रेडी टू टेक अप द प्रॉब्लम्स दैट कम एसोसिएटेड विद, मिसकैरेजेस है, प्रेगनेंसी रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स है, इनफर्टिलिटी है, स्पेशली प्रेगनेंसी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारे. तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट द अल्टरनेटिव्स, बट आई नो कि हमारे पास जो अभी अवेलेबल है जो ट्रीटमेंट है दे वर्क दे आर गुड. अल्टीमेटली इट इज अ व्हाट यू कॉल एजुकेटेड चॉइस, कि आपको ये पता होना जरूरी है कि आपके पास ये दो तीन ऑप्शन है और आप वैसे चूज करो.
1: बिल्कुल, कई बार होते हैं लोग अरे एलोपैथी नहीं, आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में चले जाओ ठीक हो जाएंगे और ज्यादा दिन डोजेस यानी दवाइयां भी लेनी नहीं पड़ेगी, ऐसे कुछ सजेशन, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है.
0: नहीं, वो ऐसे नॉट ओनली थायराइड, मैं कोई भी डिजीज के बारे में आपको बताऊं कि अपने एटलीस्ट अपने भारत में हमने देखा है कि अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने जो अपने कांटेक्ट में है, उनके जो विचार है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, वो हमें बहुत आई थिंक दूसरे दिन ही पता चलता है कि भाई मुझे भी ये प्रॉब्लम था, मेरे नेबर को भी ये प्रॉब्लम था, मेरे इसको भी प्रॉब्लम था. तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि जो मेडिकली हम 13 साल या 15 साल सीख के हम आपके सामने ला रहे हैं, वो हम आपके नेबर के साथ हम कैसे उससे कैसे मैं आर्ग्यू करूँ. तो अभी एजुकेशन हमारे सब आई थिंक ऑल ऑफ अस आर एजुकेटेड, लेकिन ये जो मेडिकल एजुकेशन है या ये जो बॉडी का साइंस है वो इतना इट इज सो अमेजिंग कि मैं थायराइड कैंसर के बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को बोलो तो वो आपका शो सवेरे से लेकर रात तक ले जाए सिर्फ थायराइड पे. यानी इतना एडवांस्ड हो गया है अभी अपना ये, फिर भी हमारा जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो और बढ़नी चाहिए. ऐसा ना हो कि मेरा ऐसा ही एक होप है कि बाबा कोई एडवांस स्टेज में ना आए, अर्ली डायग्नोसिस करे, सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन अपने पास कोई शॉर्टेज नहीं है. तो अगर आपको कोई डाउट है कि बाबा ये ट्रीटमेंट जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, मुझे और एक ओपिनियन है, तो बिंदास ले लीजिए, लेकिन डिले मत. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले और प्रेगनेंसी के द्वारा, प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले रूटीन टेस्ट जो है उसमें थायराइड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्शन से लेके पूरा आपके जो प्रेगनेंसी के दौरान जो 9 महीने 40 वीक्स के जो है, वो जो दौरान आपका प्रेगनेंसी ठीक चल रहा है कि नहीं, बच्चा बराबर बढ़ रहा है कि नहीं, जो बच्चा फर्स्ट डे से लेके पैदा होने तक उसका जो डेवलपमेंट है, उसका और थायराइड का इतना क्लोज संबंध है कि आपको वो आपको बहुत केयर लेना पड़ता है. तो एनीबॉडी प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, जो भी महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, वो सब रूटीन टेस्ट के साथ एक थायराइड टेस्ट भी कीजिए. फर्स्ट जो एंटीनेटल स्कैन रहता है, एंटीनेटल टेस्ट रहता है, पहले 6 हफ्ते में जब आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हो, तभी भी 99% गायनेकोलॉजिस्ट थायराइड टेस्ट भी कराती है, तो ये करना जरूरी है.
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफी चीजें हमने समझ ली है थायराइड के बारे में. अभी कोई मिसकॉन्सेप्ट में मत जाइए, आप सीधे अगर आपको लग रहा है कुछ चीजें ऐसी है तो आप टेस्ट करें, डॉक्टर के पास जाइए और उनसे जरूर ट्रीटमेंट लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें. हाइपो और हाइपर के बारे में आपको पूरी तरह से पता चल गया है, जहाँ पर आपको सिर्फ टैबलेट्स लेने हैं हाइपो में, और हाइपर में मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रीटमेंट होने के बाद आप नॉर्मली मतलब बिना टैबलेट के भी रह सकते हैं. तो ये ऐसा नहीं हो कि भाई आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने से बंद कर दें, ये चीजें बिल्कुल ना करें आप इन चीजों के लिए. अगर बंद भी करना है आपको तो डॉक्टर से प्रॉपरली डायग्नोस होने के बाद डॉक्टर कहे तो बंद कीजिए, अदरवाइज कोई मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज नहीं है. आप सवेरे उठ के एक गोली ले लिया तो समझ लो फ्रूट खा रहे एक तो मैनेज हो जी. जी चलिए अर्चना जी, कुछ पूछना है आपको?
2: हाँ जी.
1: जी
2: डॉक्टर प्रीति, Nice to see Hi, you Arjun. On the show back again.
0: Same here, same and, here. I'm so happy to see you.
2: एक सवाल मुझे पूछना था आपसे. मेरे कुछ friends हैं who are suffering from thyroid. I think it's the hyperthyroid. So I see them that you know they skip their lunches and they keep having some Nutri bars and yoga bars. So I always wonder कि how can food substitute be substituted by this? So I think they have it thyroid ke wajah se. So is it good to have these kind of nutri bars and things, artificial food in place of natural food? Like, does it help you reduce your thyroid levels?
0: Absolutely not. I think you have got the crux of the whole thing. Ye jo thyroid ka problem hai, वो लाइक आई सेड एक्सेप्ट फॉर आयोडीन देयर इज नो कनेक्शन टू अ डाइट. लोगों को क्या रहता है कि अगर हाइपोथायरॉइड है तो वजन बढ़ता है, तो उनको लगता है कि वजन क्यों बढ़ गया है तो उसकी वजह से डाइटिंग करते हैं. और अभी जो है स्पेशली सिटीज में जो ये डाइट के फैट्स आ गए हैं, इफ यू लुक आउट द आप अगर डायटरी फैट्स देखो कि बाबा कीटो डाइट है, ये डाइट है, वो डाइट है, फ्रूट डाइट है, जूस डाइट है, ये सब जो है दे आर टेम्पररी एंड दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स. जो मैं अपने पेशेंट को एक ही कोई भी वॉट एवर इट इज वेदर इट इज अ थायराइड प्रॉब्लम एनी अदर प्रॉब्लम एक सलाह देती हूँ कि मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस डाइट. यू डोंट हैव टू हैव टू मच ऑफ वन थिंग. ऐसे नहीं कि दिन भर फ्रूट्स खाओ एंड यू आर ओके एंड योर बॉडी इज गोइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल. इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग कि बाबा यू हैव अ हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड यू आर गोइंग टू अप योर विटामिन ई लेवल्स. इट डजंट वर्क दैट वे. इट इज अ सिस्टम विच इज गोइंग टू वर्क इन इट्स ओन टाइम एंड इफ यू help it, it will work better. We are all aging. All of us are growing older every day, every second. But we can age well. We can age healthy. So you have to maintain a diet where you are getting everything. So you take a Nutri bar, nothing is wrong. But if you are taking a Nutri bar in place of something, the rest of the meal has to make sure that you are compensating for it. I have patients who have no breakfast, no lunch. They will have a cup of soup in the evening and they feel that they're losing weight. But is that a good way to lose weight? No. Because it will not, aapko do din mein pata nahi chalega. But 6 months later, you start having joint pains, you start having tiredness, and then you can't reverse 6 months in 2 days. Then it takes that much time to get it back. So as a rule, if you have a good healthy diet, it should not be an excess of anything. It should be have a balance. Balance yani aap agar bhaji le rahe ho, chapati le rahe ho, uske sath mein salad lo, you take dal, you take there has to be a protein, there has to be a carb, there has to be a fiber, there have to be balance of everything. Unless you have been specifically told ki baba restrict this, agar aapko sugar ka problem hai ya aapka bp ka problem hai, then you lower it. But as a rule, most healthy people who don't have any underlying disease can manage with a good healthy diet. So these fads are absolutely no help and definitely not in thyroid.
2: People who are, getting treated regularly for thyroid because they have it and they do their tests and take all the medicines, but still it keeps, you know, coming up time and again. So is it like a regular thing in thyroid or something is not right? Either on emotional level, health level, your diet level, or what is it? Because I know somebody who is quite regular with the medicines and diet and everything, but still, it keeps coming up all the time. So yeah. What could be the reason?
0: It's like what we discussed earlier, it's like wearing glasses. It's not that where you wear one and 6 months later, your number might change. So the idea is that when you're having an issue with the thyroid, there will be ups and downs. Very few people, बहुत कमी patients रहते हैं जिनमें अगर आप देखें तो सालों तक वही एक dose चलता है. There are quite a few patients who just need one dose and it continues, but a lot of times, perimenopausal, old age जो ladies रहते हैं 60 plus, 70 plus, even 90s, they have a very what we call a labile thyroid. And ek mahina hypo, next month hyper, the dose has to vary based on the levels that you get. And unme jo hai symptoms bahut jaldi pata chal jata hai ki baba they hyperactive, then ki baba thoda level badh gaya hai, check karte hain to kam karna padta hai. So it is known quite a few people have that problem. The only thing to do is be patient, check, make sure that your lifestyle is proper, you're eating well, you're exercising, mentally you're doing your meditation. Meditation is very important. It really helps calm you down, whether you have a thyroid or not, but definitely makes you feel better. Exercise, good lifestyle, make sure that you have a hobby. I think that is very, very important nowadays. We have all lost having a hobby. And get your thyroid levels checked every 6 months if possible. As a routine, I would tell everybody get it checked at least once in a year. as a routine. But if you already have a problem, check it every 6 months. So you know whether you're in the range or not. But don't worry, it happens. There are changes and it can be easily corrected. Not a problem.
1: Okay. थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और हमारे बाबूलाल प्रजापति जी लिखते हैं, डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली स्पष्टीकरण दिया है इस बीमारी पर, तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करके मैसेज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सुभाष जी ने भी धन्यवाद भेजा है, कल्पेश जी ने भी धन्यवाद भेजा है। आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और चलिए फिर से एक बार जो है, आपको थायराइड अगर हो जाता है तो भी टेंशन लीजिए, क्योंकि एक ही गोली आपको खाना है। और अगर हाइपर है तो आप जो है ट्रीटमेंट लेके उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है, चॉइस इज यूर्स। और कभी भी अल्टरनेटिव पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर वो ग्रंथि के साथ काम होता है, तो इसीलिए आप ज्यादा सोचिएगा नहीं। और बहुत ही सस्ता टैबलेट है, वो टैबलेट आप कंटिन्यू ले सकते हैं, और सिर्फ एक ही लेना है तो वो भी आराम से आप सवेरे ले सकते हैं। और फिर भी लग रहा है कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके आप इसका इलाज बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी थायराइड से मुक्त रहे, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम ऐसी नारी शक्ति पर आधारित है जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव या कुछ अलग उनके जीवन की कोई कहानी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नारी शक्ति के साथ जो घर में रह रही है या बाहर जो भी करती है तो उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नारी शक्ति की शक्ति को भी पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रगल को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है

0: मधुर राठौड़, आप गुजरात जूनागढ़ जिला बांटवा गांव के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 52 वर्ष है, आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है, सिलाई कढ़ाई बुनाई का आपको बहुत ही शौक है, कुकिंग का और विशेष करके सफाई का बहुत ही शौक है और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। मधु जी नमस्कार।
1: धन्यवाद जी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद
0: मधु जी। चलिए, आपकी उम्र 52 है, मतलब पिचपन के आसपास पहुंच चुकी है, और कहते हैं ना पिचपन में जब बचपन की बातें करते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहेंगे?
1: बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी
0: जी,
1: तब से मुझे कुछ ऐसे लगा, बचपन से तो वैसे माँ बाप, हम 5, 3 बहनें हैं, 2 भाई है, छोटा सा परिवार है और माता पिता है, दादी थी। फिर दादी तो अचानक से हार्ट अटैक आया और चली गई। उसके बाद सत्संग चला था घर में, जैसे कि तो सत्यनारायण की कथा हर 11 को होती थी, तो मम्मी सब कहती थी कि जाओ आप ना सबको, जो सगे संबंधी है उसको कहना कि हमारे यहाँ सत्संग है तो आ जाना। फिर सबको वो फूल लाना, प्रसाद लाना, वो सब मम्मी मुझे देती थी कि आप वो करो। फिर तो सब लाते थे, फिर ना बरसात आई, ये सब इकट्ठा करते हैं पैसा और उसका कुछ बड़ा करना था, तो मैं तो छोटी थी, तो एकदम बरसात आई तो सारा पैसा ऐसे पास रहता है, 25 पैसे का 30 पैसे का
0: जी
1: हाँ, तो वो सब इकट्ठा किया हुआ था और घर की जो कांधी कहते मतलब माड़िया कहते उसमें लगा था, तो बरसात आने की वजह से जोरदार वो बिक गया। फिर सब वो सुखाया बहनों ने, मेरी 2 बहनें हैं और भाभी है, सब सुखाया। फिर तो मम्मी ने और सत्संग की जो मंडली थी ना, बड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही वो सत्संग चालू किया, तो कहते हैं कि अब ना कुछ उसका नया करे, हमारे यहाँ जो राजपूत के मंडली होती है ना बहनों की, तो उसमें सत्संग में से जो इतने पैसे इकट्ठे हुए थे तो उसका कुछ अच्छा सा करे जो सबको काम भी आए उसमें।
0: चलिए मधु जी, सत्संग की बातें हम जरूर जानेंगे, पहले हम बचपन की बात जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कि 5 भाई बहनों, ठीक है, अच्छा आप 3 बहनों और 2 भाई हो, आपका नंबर कौन सा आता है?
1: मेरा लास्ट का नंबर 5वां।
0: तो आप तो सबके चहेते रहे होंगे।
1: बहुत बहुत बहुत चहेते रहे।
0: आपके पिताजी क्या काम करते थे उस समय?
1: वो किसान थे, किसान। पहले तो मैं जब से आई है ना तब से तो हमने बहुत खेती देखी। इससे पहले कहते थे कि हमारे 7 थे ना घर में, जैसे 5 बच्चे और 2 माँ बाप और दादी, उसमें बहुत एकदम करकसर से जीवन था।
0: जी जी, मुश्किल से हाँ, चल पाते थे गृहस्थी की।
1: हाँ, नहीं, पापा का यही एक सपना था कि मैं बड़ी खेती लूँ, इसके लिए उसने करकसर से हम सबको ऐसे सिखाया कि करकसर से रहोगे, लोभ से नहीं, करकसर से।
0: जी जी।
1: तो उसने 100 बीघा, मतलब अभी उसका पैसा होता है वो 15 करोड़ होता है, तभी कभी कुछ नहीं था, फिर भी पापा ने, हम काका कहते थे, हम साथ में रहते थे,
0: जॉइंट परिवार था।
1: हाँ, जॉइंट परिवार था, मतलब मेरे जो बड़े पापा के बड़े भाई वो साथ में रहते थे, उसका 6 बेटा
0: जी
1: हाँ, और साथ में रहते थे, तो साथ में रहने की वजह से जो बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं
0: जी, काका बोलते हैं और बड़े पापा के बेटे,
1: हाँ पापा के बड़े भाई, उसको हम अदा बोलते हैं गुजराती में
0: जी,
1: तो वो अदा का सब बच्चे इकट्ठे रहते, तो वो मेरे पापा को काका कहते थे, तो हम भी काका ही कहते हैं, लास्ट तक काका किया, तो काका का यही सपना था और मुझे बहुत पढ़ाया उसने, सब हमारे भाई बहन है ना उसमें से मुझे ज्यादा पढ़ाया।
0: अच्छा, बाकी आपसे सब कम पढ़े लिखे?
1: सब कम पढ़े लिखे।
0: भाई भी?
1: भाई भी।
0: तो सब क्या करते, खेती का काम?
1: हाँ, सब खेती का ही काम करते।
0: तो आपके सामने 100 बीघा जमीन का जो आपके पिताजी का
1: वो बनाया उसने
0: संकल्प था तो लिया?
1: हाँ, वो पूरा किया, पहले ऐसा नहीं था, फिर पूरा किया, फिर उसका तो इतना उमंग आया। उसके बाद सब, पहले भाई की शादी हुई, बड़े भाई की, उसके बाद तीन तीन की साथ में हुई, और मेरी अकेली हुई।
0: अच्छा, आपकी शादी की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात कर रहे थे आपके बचपन की, कि इस तरह आपके पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे। आपके माताजी भी कुछ करते थे?
1: हाँ, घर का काम करती थी और खेत में पिताजी को बहुत साथ देती थी, सारा पूरा काम करके अपना बाता बना करके, और मुझे कहती थी कि आप ये घर संभालो और पढ़ाई करने के बाद हम आएंगे तो आपको ये खिचड़ी बना के रखनी है, ये सफाई करनी है और चूल्हा चूल्हा यह सब कुछ अच्छे से रखना है, ताकि आए तो सिर्फ हमें सब्जी और रोटी दोनों ही बनानी है और पूरा घर का ख्याल रखना है, बाहर सब आपको करना है, और फिर आप ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर पेड़ाई कर लेना और सफाई कर लेना। तो मम्मी भाता बनाकर, मतलब रसोई बनाकर जाती थी
0: जी।
1: हाँ, और साथ में पिताजी को बहुत बहुत साथ देती थी।
0: तो आपके भाई बहन भी जाते थे खेत में?
1: सब जाते थे, सब के सब।
0: आप अकेले घर पर रहते?
1: हाँ, मैं अकेली घर पर रहती, मैं डरती नहीं थी। मेरे से जो तीसरे नंबर की बहन है ना, जैसे हम तीन बहन है तो तीसरे नंबर की बहन, वो अकेली नहीं रहती थी, वो डरती थी, वो कहती थी मैं अकेली नहीं रहूंगी। मम्मी बहुत कहती थी कि आप रहो इसके साथ, फिर मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं मम्मी आप जाओ उसको भी ले जाओ, मैं अकेली रहूंगी। और मैं बहुत बड़ा था तो मैं उसमें अकेली रहती थी और सब काम कर लिया करती, और मम्मी मुझे ऐसी शाबाशी देती, देखो तो आपसे छोटी है तो भी वो अकेली रहती है और सारा डरती भी नहीं है, कोई आते है तो ऊपर से देख लेती हूँ कि कौन आया है, अगर कोई हमारा संबंधी आते है तो मैं खिड़की खोलती हूँ, अगर कोई और है तो खिड़की भी नहीं खोलती, ऐसे में बहुत तैयार थी। तो मम्मी और पापा दोनों की चाहती थी,
0: जी।
1: पापा पापा तो हमें साथ में ही सुलाते थे, वो तो मेरी सगड़ी है जैसे बोलते, मैं इतनी गर्म रहती हूँ ना तो वो खेत में से आते और पापा को मैं पानी देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तो पापा की बहुत चाहती थी, छोटी थी इसलिए बहुत बचपन प्यार से ही गुजरा, और सबका भाई बहनों का अभी तक प्यार मिल रहा है।
0: जी जी जी
1: हाँ, बहुत प्यार मिल रहा है।
0: जी
1: और अभी वो दुलार देते तो कहते है कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसे कहते है अभी भी।
0: जी जी वो कहते हैं ना कि नमे सौने गमे, गुजराती कहावत है।
1: हाँ,
0: तो आपके अंदर नम्रता थी, तो आप सभी के दिलों पर राज करते थे।
1: अभी भी कर रही हूँ। और
0: बचपन से जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं वो लाइफ टाइम चलता है।
1: हाँ, वो आगे ज्यादा हो जाता है बढ़कर, तो बचपन ऐसे ही गुजर गया पता ही नहीं चला कि देखो सब ने इतना साथ दिया, और मैं मेरा उत्साह और उमंग बहुत बढ़ाते थे भाई बहने,
0: जी
1: जो मेरे से चारों भाई बहन है ना बहुत उत्सव उमंग बढ़ाते थे, जैसे कि खेतों में बुनाई होती है कटाई होती है वो हम एक दो मजदूर रख करके हम स्वयं करते थे,
0: अच्छा
1: मजदूर चार आते थे, वो चार बहनें आती थी, दो बहनें अपनी और दो भाई उसके, वो चार ही आते थे और हम सब मिल करके ये सारा खेत संभालते थे।
0: सौ बीघा जमीन में?
1: हाँ सब,
0: अच्छा
1: मजदूर नहीं, ना कोई किराए का रखा, रात में कोई नहीं, सब अकेले ऐसे ही करते थे। तो हमने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो और मेहनत से आगे बढ़े, और पापा का तो बहुत था कि ये ले वो ले, बहुत था को ना मेहनत में बहुत विश्वास था।
0: जी। चलिए मधु जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं जो हम फिर से सुनेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए।

0: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी जुड़ी हुई है, ऐसी ही मातृशक्ति जुड़ी हुई है, मधु राठौड़, जिनके अनुभव हमने सुने हैं। इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। मधु जी, पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: जी थैंक यू जी।
0: तो मधु जी, आपके बचपन की बातें चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, स्कूल की बातें बताएंगे कि आपके टीचर्स के साथ, सखियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
1: हाँ, मेरी सखियाँ भी बहुत बढ़िया थी। एक सखी थी, बहुत अच्छी थी, मैंने उसे अपना माना था, उसका वो अलग था। फिर मैंने पहले आठवीं पढ़ी, तो कुछ आठवीं पढ़ी तो मम्मी होली का त्यौहार था, जैसे अभी होली आ रही है, तो होली का त्यौहार था, तो मम्मी ने कहा कि अबे ना सारा रसोई या बाता बोलते हैं ना, वो बाता कर रही हूँ, तो आप ना आज जाओ शिव के मंदिर पर। और वहाँ से गुजरात में ये होता है कि बड़ा शिवरात्रि का महत्व होता है, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं और भांग का प्रसाद मिलता है, और बड़ी उत्साह उमंग से शिवरात्रि पूरा दिन रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन खाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेना है, दूध लेना है, और वो प्रसाद लेना जरूरी है। तो प्रसाद नहीं, माताजी लाई थी, तो उसने कहा आप जाओ तो मुझे मंदिर भेजा। तभी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिली और मैं आठवीं कक्षा में वो प्रदर्शनी देखी। तो वो प्रदर्शनी पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, बाद में इतनी मन को भा गई कि बार बार वही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। इसमें इतनी लगती थी कि मैं ही वही देवी हूँ, और मुझे इतना अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं बस इसी मार्ग पर चलूँ। घर पर आई, प्रदर्शनी देखी, तो उस प्रदर्शनी में सुना कि मैं कौन हूँ, वही बहुत अच्छा लगा। फिर पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, और माता जी तो चली गई खेत में, और मैं घर पे, तब स्कूल पे रजा होती है तो घर पे हूँ, घर पे थी। उसके बाद आध्यात्मिक में मेरा जुड़ाव बहुत रहा, मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आध्यात्मिक में कैसे आगे चलूँ। फिर हर ग्यारस के दिन और पूनम के दिन मेरी माताजी कथा करती है, सत्संग सब बहनें आती है, सत्संग की 50 बहनें होती है, तो माताजी सत्संग में होने के कारण मैं इतनी आध्यात्मिक रही पहले से। भक्ति भाव, उसमें प्रसाद होता है, महाप्रसाद की बहुत महिमा होती है सत्संग में, सत्यनारायण की कथा, वो सत्संग फिर पाठ पूरा हो जाता है, 5 अध्याय होता है, पूरा होने के बाद प्रसाद सबको बांटते।
0: अच्छा, तो आप अध्यात्म में चलने लगे, तो फिर घर में किसी ने विरोध तो नहीं किया?
1: जी, छोटी थी तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर ऐसे कहा कि अच्छा है, मम्मी अध्यात्म से जुड़ी थी तो अध्यात्म में बहुत रुचि थी मेरी पहले से ही।
0: तो भक्ति के संस्कार आपको बचपन से?
1: बचपन से
0: जी। और आठवीं से आपको थोड़ा अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया?
1: स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
0: अच्छा, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि आपकी सखियों के साथ कैसा था?
1: सखियों के साथ तो इतना मैं सखी नहीं करती थी, मुझे ऐसे आध्यात्म में अच्छा लगता है बस।
0: अच्छा, ये बताइए, आप स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करते थे, जैसे गाने?
1: हाँ,
0: में
1: हाँ, जो कोई स्पर्धा होती है, कोई भी स्पर्धा होती है, तो पहले तो मैं लींबू चमची में वो स्पर्धा किया ना, तो मेरा वो इसमें फर्स्ट नंबर आया, पहला नंबर आया, जो अच्छा लगा कि आगे बहुत बढ़ना चाहिए, उत्सव उमंग बढ़ा, जैसे पहले नंबर आए ना तो अंदर से लगा कि बहुत आगे मेहनत करनी चाहिए, फिर तो आगे आगे नंबर आता ही गया।
0: अच्छा, तो हर साल आप भाग लेते थे?
1: हाँ, हर साल भाग लेते।
0: अच्छा, और डांस गरबा ये भी करते थे?
1: हाँ, गरबा करते, डांस तो अकेले अकेले करते,
0: तो करते थे अकेले स्टेज पर?
1: हाँ, अकेले अकेले स्टेज पर करते थे, पर थोड़ा हिचकिचाते पर कर लेते थे, फिर बाद में एक भी किया फिर तो अच्छा लगा, तो करते रहते थे डांस भी।
0: कभी टूर्नामेंट में भी गए, गेम्स में कोई गेम्स खेलते थे?
1: गेम्स तो नहीं खेली।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, और एक फोकस था कि आगे बढ़ना है, मतलब इतना तो लाना ही है। तो पढ़ाई में भी रुचि बहुत रही, 10वीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 12वीं तक। पर 12वीं तक में तो मेरी शादी हो गई थी, मैं 12वीं तो वहाँ ससुराल में किया।
0: अच्छा 12वीं पढ़ रहे थे और शादी करवा दी।
1: हाँ 12वीं में तो मेरा जो रिजल्ट आया ना वो ससुराल में आया, पढ़ाई तो वहाँ, शादी तुरंत कर दी।
0: तो आपका ससुराल कहाँ है?
1: ससुराल भी वही बांटवा में ही है।
0: बांटवा में? कितना बड़ा शहर है बांटवा, शहर है या गांव है?
1: वैसे शहर भी कहो तो शहर भी है और गांव भी है।
0: तो वहीं पर आपका पियर भी और ससुराल भी वहीं
1: ससुर
0: पर?
1: एक गांव में, सब कई बाहर गई नहीं, रेल तो मैंने कहीं देखा नहीं, आध्यात्मिक में रहे और गांव में ही शादी हो गई।
0: तो आप बता रहे थे कि छोटे थे तब तो कोई विरोध नहीं करते थे, तो शादी के समय किसी ने विरोध किया क्या?
1: नहीं, फिर तो युगल को मैं आध्यात्मिक में ले गई तो उसको भी अच्छा लगा, फिर विरोध होगा आध्यात्मिक में।
0: फिर क्या
1: और
0: हुआ, विरोध हुआ?
1: हाँ ससुराल में कहते कि नहीं हम कोई पकड़ बकड़ नहीं है, हम आध्यात्मिक में नहीं चल सकते, अब तो हमें बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ऐसे आप शादी की है तो ये करना है वो करना है।
0: कौन बोलता है?
1: सास ससुर बोलता है, पर हमारे में लाज प्रथा थी, घूंघट
0: जी
1: निकालने की प्रथा थी।
0: जी
1: तो मेरे पापा ने ही शादी के वक्त कर किया था कि आप घर जाके घूंघट उठाओ वो अलग बात है, हमारे यहाँ तो शादी होगी तो घूंघट में ही होगी,
0: जी
1: पापा जी ने यही बोला था। और माता जी और बड़ी दो बहनें हैं वो भी अच्छे से शिक्षा देती रही कि हमें अपने मर्यादा में ही रहना है, कभी इधर उधर पाँव न जाए फिसल न जाए, वो बड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ। बहुत सारी हमें मदद की बातें मिली उसी से,
0: जी
1: बड़ी दो बहनें थी उसी से सब मिला।
0: तो फिर ससुराल में सब कैसे रहते थे? शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
1: सासी तो घूंघट निकालते थे और बहुत स्ट्रगल हुआ,
0: मतलब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते थे?
1: तभी तो करते थे, पर जब आध्यात्मिक में जुड़ी, आध्यात्मिक में मेरा मन रुचि लगी, तभी विरोध हुआ।
0: तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ जाते थे।
1: पहले उसने थोड़े टाइम किया, थोड़े टाइम वो मेरे साथ चले, मैंने कहा प्यार से उसे बोला ना कि चलो हम जाते हैं इसमें आध्यात्मिक में, क्या बहुत अच्छा है लगता है। वो सत्संग में जाने लगे, अब मेरे साथ आए, वो उसमें साप्ताहिक होता है कोर्स, उस वो किया उसने, और उसके बाद विरोध किया। और घर में तो जाते हैं तो सबको पता चलता है ना ससुराल में, तो मैं कह कर के जाती थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो फिर आने के बाद सबको अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना काम टाइम पर करती थी, सबको बहुत प्यार से रखती थी, फिर भी उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हम पकड़ लोग नहीं है सत्संग में, हमारा आध्यात्मिक में नहीं जाना है, सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर मन नहीं लगता था सत्संग के बिना। तो
0: फिर आपने विरोध किया?
1: मैंने विरोध नहीं किया, मैंने चलती रही सत्संग में, जाती रही,
0: जी
1: फिर छुप छुप के जाने लगी, ऐसे थोड़े सामने, फिर तो उसको पता चल गया कि ये वहां से जाती है, तो सामने से आकर दो चमाट लगा देती।
0: अच्छा, तो इस तरह आपके साथ विरोध होने लगा।
1: बहुत
0: अच्छा, ससुराल में कितना बड़ा परिवार था, मतलब संयुक्त परिवार था या आप अकेले रहते थे सास ससुर के साथ?
1: संयुक्त परिवार था, 10 जने रहते थे, 4 भाई है, 2 बहनें हैं, 2 ननद है और सास ससुर है, जेठ जेठानी, उसके 3 बच्चे
0: जी जी
1: बच्चे थे। हाँ
0: तो इतना बड़ा परिवार था, आप कह रहे 10 जने थे, इतना बड़ा परिवार रहते थे साथ में।
1: हाँ, सबका काम भी हमें ही करता है, ऐसे कोई काम का भाग नहीं हुआ था, सब इकट्ठे काम करते थे। और मैं तब पानी की तंगी थी तो खेत में जाकर के कपड़े धोने होते हैं।
0: जी जी जी
1: हाँ, और वहाँ नहाने का सब सब मना होता है, नहाते नहीं थे, कहते कि नहीं हम थोड़ा ब्राह्मण लोग है, हम ब्राह्मण लोग नहीं है, वो क्या बोलते है, ब्राह्मण लोग नहाते हैं, हम नहीं नहाते। तो 2-3 दिन में नहाने देते थे और जैसे कि चलता था।
0: अच्छा, नहाने रोज नहीं देते थे और आपको
1: नहीं,
0: स्वच्छता पसंद है, तो फिर क्या करते?
1: फिर मैं तो नाती हूँ तो उसको विरोध होता है कि ये कैसी है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते बोलते थे ना कि नहीं नाना नहीं है, हम थोड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते ही वो नाते थे।
0: हाँ,
1: इस
0: जी चलिए मधु जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए, इनके अनुभव हमने काफी कुछ सुने हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी, जैसे आपकी शादी हो गई, आपको अध्यात्म में गहरी रुचि थी, सत्संग में आप जाते थे, ससुराल में फिर आप जाने लगे तो विरोध होने लगा, फिर आप रोज नहाते तो नहाने का भी विरोध होने लगा, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? घर पर नल था?
2: हाँ जी, नल तो था, पर ऐसे भी सबका मन भी देखना है ना, उसका मन नहीं है और हम ना रहे, फिर भी नहाना ही है, जरूरी है, फिर नहाते थे, नहाना तो जरूरी लगा, तब भी लगा और अब भी लग रहा है।
1: नहाते और रोज डांट खाते?
2: रोज डांट भी खाते, और उसको हम अच्छे नहीं लगते थे, क्यों नहाने के लिए मना करते और हम नहाते, तो संबंध ऐसे प्यार से नहीं रहता है।
1: आपके हस्बैंड के साथ?
2: हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे है।
1: तो कौन मना करता है?
2: सासू, जेठानी, वो कहते कि नहीं नहाना है, ये क्यों नहाना है इसे।
1: तो फिर साथ में ही रहे या अलग हो गए?
2: नहीं, फिर तो साथ में रही, जब तक पहली बेटी आई, दूसरा बेटा आया, तब तक साथ थे।
1: अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे उस समय?
2: वो होमगार्ड में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं।
1: अच्छा, तो आपके गांव में थे?
2: हाँ, गांव में सेवा होती है ना सरकारी, होमगार्ड की, जैसे पुलिस के नीचे।
1: जी जी,
2: कॉन्स्टेबल के नीचे होती है।
1: अच्छा, तो जैसे आपका मायका भी वहीं था
2: और ससुराल भी गांव में।
1: जी, जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े धोने आप खेत में जाते थे, तो पानी की कमी थी तो आपके मायके में भी कपड़े धोने आप खेत पर जाते थे?
2: जी नहीं, वहाँ तो घर पे ही था सब कुछ, घर पे ही कपड़े धोते थे, पर ससुराल में ना दुष्काल हुआ तो वहाँ थोड़ी तंगी हुई पानी की, तो कहते कि आप खेत में जाओ, तो मैंने तो जैसे शादी की आई और तुरंत कपड़े या जो चद्दर वो रजाई होती है ना, एक साथ 18 रजाई धोई, एक दिन भी मैंने बैठी नहीं हूँ।
1: इतना काम करते थे?
2: एक दिन भी बैठी नहीं हूँ, जैसे आज इधर पांव रखा, शाम को शादी करके आए, सुबह सब बोलने लगे इतना काम है, इतना काम है, वो है, इतना धोना है, तो मैंने सीधा कहा चलो मैं आती हूँ, मैं और मेरी जेठानी साथ में गए। फिर एक दिन आई, दूसरे दिन तो सास बोलने लगी कि इतना काम मैं अकेली क्या करूँगी, तो वो तो घर पर रही रसोई के लिए और मैं अकेली गई
1: कपड़े धोने।
2: हाँ,
1: तो शादी होते ही आपके काम में लगा देते हैं, नई नई बहू आई तो थोड़ा लाड़कोड़ भी तो करते हैं ना?
2: करते हैं ना, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी बहू है, हम भी बहुत करते हैं, क्योंकि ऐसे आध्यात्म में जाते हैं ना, तो जैसे हम पर बीती है ना, उस पर ना ही बीते, उसको तो इतना लाड प्यार करते, उसको तो आप करके, आप अभी भी, मैं, मेरी बहू है, उसको आप कहकर ही बुलाती हूँ
1: जी,
2: उसको ऐसे तुकार के नहीं बुलाते, प्यार से ही उसे बुलाते, अगर बुलाना है तो प्यार से ही बुलाते।
1: जी जी, अच्छा, तो जैसे आपका काम में लगा दिया तो आपके मायके वालों ने कुछ नहीं कहा?
2: नहीं नहीं माँ पापा का तो यही था कि मेहनत करो, मेहनत आपको जगह दे, मेहनत से ही आगे बढ़ना है ना।
1: तो इतना आप काम करते थे तो सास ससुर प्यार करते थे आपको?
2: नहीं, हो अपना अपना तरीका होता है ना, अपना अपना नजरिया होता है।
1: अच्छा, किसी का प्रेम नहीं मिला?
2: नहीं, आध्यात्मिक में बहुत रुचि इसलिए तो जगी ना।
1: अच्छा, तो इसलिए आपको थोड़ा सत्संग से प्रेम बढ़ा?
2: हाँ, प्रेम और बढ़ा।
1: फिर कितने समय में आप पियर जाते थे?
2: पियर तो गांव में ही था, क्योंकि वहाँ खाना, मुझे वहाँ तेल बहुत लगता था सब्जी में, और मायके में तेल नहीं था, तो साग भाजी में मायके ही खाती थी। अब माता जी मेरी और मेरी भाभी थी, सब कहते थे अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता, यहाँ खा लो, और खा करके वहाँ जाती हूँ ससुराल में।
1: तो रोज जाते थे खाना खाने?
2: हाँ, वहाँ रिवाज है, गांव में जो शादी होती है ना, वो 4 बजे या 5 बजे मायके में रोज जाती है।
1: अच्छा,
2: अभी भी
1: टाइम मिल जाता है?
2: नहीं, टाइम निकालते, वो रिवाज हो गया है।
1: तो 5 बजे जा करके खाना खा के वापिस आ जाते।
2: हाँ।
1: फिर ससुराल में खाना नहीं खाते थे?
2: नहीं, सब्जी में बहुत तेल होता है, कोई स्वाद नहीं। तो क्या,
1: तो आप नहीं बोलते कि सब्जी में थोड़ा तेल कम डालो, या आप खुद नहीं बनाते?
2: नहीं, सबको यही पसंद है, मेरी पसंद नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम मैं खा लेते।
1: नहीं तो जैसे नहीं कहते कि आपके चाहिए उत्ती अलग से बना दो?
2: अलग कोई नहीं बनता किसी का।
1: अच्छा, तो इस तरह आपके जीवन यात्रा रही। तो वो कहते हैं ना, गांव में पियर और गांव में ससुराल है, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है बैलेंस बनाने में, तो मुश्किल रहती थी आपके जीवन में भी?
2: हाँ, पर अध्यात्म में बहुत रुचि थी ना, तो मुश्किल नहीं लगा।
1: जी अच्छा, और आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था?
2: तभी मिलता था, फिर वो आध्यात्मिक में जुड़े तो थोड़ा कम हुआ। फिर ससुराल में सास ने और बोला कि अब तो 3 साल हो गए, तो 3 साल में तो बच्चा होना चाहिए। मैके में भी यही कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर तो बेटी हुई। बेटी हुई तो जेठानी थी, वो खेत में चली जाती थी, पूरा काम मेरे पर आ जाता था। जैसे गायों को दोना, भैंस रखते थे इसको दोना, सब काम करना और बच्चे को रखना।
1: जी।
2: थोड़ा थोड़ा ज्यादा सासू का साथ था, सासू थोड़ी बेटी को रखती थी, साथ में थे ना, जॉइंट फैमिली में।
1: जी।
2: तो रखती थी।
1: दूसरे और कोई सदस्य नहीं थे परिवार में?
2: हाँ थे ना, वो है, एक चूल्हे पर ही रसोई बनती थी, पर यहाँ से कटोरी में लेकर वो अपने घर में खाती थी, वो मेरी सास की सास थी ना वो।
1: अच्छा, तो मधु जी, जैसे आप कह रहे थे कि आपको सत्संग का शौक था, इस वजह से परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे और काम की जिम्मेवारी काफी रहती थी आपके ऊपर, और फिर आप कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद आप अलग हो गए, तो सभी अलग हो गए, जेठानी आप।

0: या फिर सास ससुर के साथ रहते थे आप?
1: सभी अलग हो गए, देवरानी भी अलग हो गई, मैं भी हो गई। फिर तो देवर की शादी हुई, उसके बाद एक साल में सब अलग हो गए।
0: जी, फिर तो आपको सत्संग में जाने से कोई नहीं रोकता था?
1: नहीं, कोई नहीं रोकता था, मैं चुपके से ही जाती थी सत्संग में। वो जो मेरे पति है ना, उसको जाना अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं अपना ढूंढती थी अंदर से कि भाई क्या मेरी कमी है, मेरा कोई काम छूट ना जाए। उसको बराबर से टाइम देती हूँ, उसका खाना पीना सब काम करना।
0: अच्छा, आप सारा काम करते थे और भजन कीर्तन भी करते थे? अच्छा,
1: साथ में बहुत भजन कीर्तन साथ में ही रहता था।
0: और आप क्या करते थे
1: और
0: कभी
1: सिलाई
0: बच्चों को?
1: करते थे, हाँ बच्चों को पढ़ाई
0: हाँ,
1: में।
0: आपको सिलाई का भी शौक रहा, तो सिलने में आप क्या क्या सिलते थे?
1: ब्लाउज सिलते थे, ड्रेस सिलते थे, सिलाई का काफी शौक था। मैं ब्लाउज भी बना लेती थी और अपना पूरा जो भी है वो सब मैं सिलाई कर लेती हूँ।
0: जी, तो आप जैसे सास जेठानी देवरानी सबके साथ रहते थे, वहां पर भी सिलाई करते थे या अलग होने के बाद शुरू
1: अलग
0: किया?
1: होने के बाद साथ में तो टाइम ही नहीं मिलता था,
0: जी,
1: क्योंकि 10 जने का काम था।
0: इसलिए आप अलग होने के बाद सिलाई का काम शुरू किया, तो आप अपना ही सिलते थे या मोल का भी सिलते थे?
1: मैं अपना ही सिलती थी। फिर दो थे, भैंस थी और खेत थी। अलग होने के बाद तो खेत को संभालना होता है। सुबह 8 बजे बाता बना करके 8 बजे निकल जाना, 1 घंटे का चलने का खेत दूर थी।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो वहाँ पहुँच के आध्यात्मिक में रुचि थी ना, तो वहाँ भी मैं पढ़ लेती थी, कुछ भजन भजन कर लेती थी
0: वहां भजन किसके साथ करते थे?
1: ऐसे अपने ऐसे ही मन से। तो जब मजदूर आते हैं ना, उससे पहले मैं पहुँच जाती थी।
0: अच्छा, तो
1: हाँ,
0: आपके हस्बैंड भी जाते थे?
1: वो दोपहर को रोटी लेकर आते थे, उसको क्या भाता बोलते हैं। हाँ, तो वो भात लेकर के आते। मैं अपने भाता लेकर के जाती थी सुबह, और बच्चों को मेरी माँ रखती थी
0: अच्छा
1: अलग होने के बाद।
0: जी,
1: हाँ, और शाम को आती थी चल करके, साइकिल भी नहीं कुछ नहीं था, चल के आना चल के जाना। तो 1 घंटा तो हो जाता है आने जाने में, 2 घंटा
0: तो खेत में क्या करते थे आप? कुछ बोते थे?
1: बोते तो वो
0: बुआई आप ही करते या मजदूर करते? आप देख रेख करते?
1: बुआई तो उसी से होती है, ट्रैक्टर से होती है।
0: जी,
1: पहले तो बैल था ना, बैल से होती बुआई। तो फिर उसमें सफाई होती है ना, वो हम करते थे।
0: अच्छा,
1: उसके बाद बड़े होकर के कटाई होती है ना, जैसे मूंगफली को पाड़ते हैं, भेगी करते हैं जैसे गुजरात।
0: जी, खट्टी करते हैं और फिर
1: हाँ
0: उसकी मिट्टी हटाते हैं,
1: हाँ और
0: मतलब
1: फिर
0: खेत के काम में आप व्यस्त रहते हैं।
1: सारे काम करते थे,
0: जी,
1: जो मजदूर वाला होता है ना वो सारा काम करते थे।
0: और पढ़ाई में आपको शौक था और उसी घाम में आपकी शादी हुई, तो आपके टीचर लोग नहीं कहते कि क्या तू इन कामों में लग गई, पढ़ाई कर लेती तो अच्छा रहता?
1: टीचर बहुत अच्छी थी, पढ़ने जाते थे तो भी वो ऐसे वार्ता बोलते, ऐसे ही पढ़ाई की भार नहीं दिया। पढ़तर में तो बहुत अच्छा।
0: जी, आप इस तरह खेत में जाते, खेत में आते, आपका टाइम पूरा हो जाता, फिर सिलाई कब करते हैं?
1: सिलाई तो मैं जिस दिन नहीं जाना होता है ना तब करती हूँ, और कभी कभी तो खाने पीने के बाद टाइम निकाल करके जो बनाना है ना वो मन से बना लेती हूँ। करना है कि यही करना है, यही चाहिए घर में और अपने पहनने में, तो रात को भी मैं सिल लेती थी।
0: अच्छा, जब जरूरत पड़ी कि हाँ मेरे को इस तरह के कपड़े चाहिए, तो आप खुद का सिल लेते थे।
1: खुद का सिल लेती।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है मधु जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव और भी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो नारी का मान रखे उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी के काफी अनुभव सुने हैं, और भी हम कहना चाहेंगे, मधु जी आप पूरे जीवन, अभी तक 52 साल की उम्र है तब तक आप पाटवा गांव में ही रहे, उससे बाहर आपका जाना नहीं हुआ
2: कभी नहीं।
1: तो जैसे आपकी दो बहनें बड़ी है, कभी उनके यहाँ जाना हुआ होगा?
2: एक तो गांव में ही है, एक बाजू में मजेठी है, वहाँ है।
1: अच्छा, पास पास में ही है।
2: हाँ, कभी कभी जैसे कि प्रसंग होते हैं, उसकी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तभी जाना हुआ
1: जी। और आप कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं?
2: नहीं, पहली बार एक आध्यात्मिक ही बैठे।
1: हाँ, पहले जब आप रहे अपने ससुराल में तब तक ट्रेन में नहीं बैठे?
2: ट्रेन देखा ही नहीं था, दूर बाटवे में तो ट्रेन नहीं है, जूनागढ़ से।
1: जूनागढ़ से मिलते हैं। अच्छा, और जैसे अब आपकी उम्र 52 साल की है, आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, बेटी की भी शादी हो गई होगी?
2: हाँ, बेटी की भी शादी हो गई है, वो उसका भी दो बेटी है, बेटा है छोटा।
1: अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाए, तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया?
2: बहुत खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको तो नौकरी भी दिलाई यहाँ तक।
1: बेटी को?
2: बेटे को भी, अभी बेटा भी है, वो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर वहाँ पाजोद में है।
1: अच्छा, दोनों बच्चे जॉब करते हैं आपके?
2: हाँ, बेटी नहीं करती, बेटी को तो अच्छा ससुराल मिला है तो उसको नहीं करने देते, पर अब वो विदेश जाने वाली है।
1: जी जी, शादी हो गई और बेटा जॉब करता है?
2: हाँ।
1: अभी आपको कोई दिक्कत नहीं?
2: जी नहीं।
1: अभी कोई सत्संग से रोकता नहीं?
2: जी नहीं।
1: आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं अब?
2: हाँ, वो सहयोग करते हैं, थोड़ा मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो सत्संग में, तो मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है
1: जी।
2: मैं उसको भी बोलती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
1: अभी भी आपके सास ससुर सभी है?
2: सास है अभी।
1: जी जी जी। अब अच्छे रहते हैं आपके साथ?
2: हाँ, बढ़िया रहते हैं, सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
1: जी जी।
2: हाँ,
1: एक समय था जब कोई आपके साथ अच्छे नहीं रहते थे तो आपका दिल दुखता था?
2: एक समय तो यही था कि जब मैं अलग हुई ना, तब तो मेरे से सब विरोधी थे, फिर मेरी ये सत्संग की वजह से मैं सबसे साथ मिलजुल रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको स्वीकार लेती हूँ, जैसे भी है मैं मिल जाती हूँ उसके, हर प्रसंग में उसके आगे होती हूँ।
1: जी जी जी, बिल्कुल। तो आपने सबके साथ तालमेल बनाए रखा?
2: अभी भी बनाए रखा है।
1: जी जी। और बहू के साथ आपका कैसा व्यवहार है?
2: बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसका नाम भी ऐसा है जैसा उसका काम है, उसका नाम है शीतल। तो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है।
1: जी जी जी। तो आपने बहू और बेटी को समान समझा?
2: हाँ, बेटी से बढ़कर भी बहू को मैंने अपने दिल में रखा है।
1: जी जी।
2: कहते हैं ना, बेटी तो आती है तो जाती है।
1: जी।
2: बेटी से हमारा क्या? हाँ, आती है, वो फोन भी करती है, सब हालचाल पूछती है, पर बेटी से बढ़कर है बहू।
1: जी जी,
2: बहुत। और बहुत बहुत अच्छी है।
1: जी,
2: बहुत प्यारी है, और उस जैसा इसका नाम है ना वैसा उसका गुण है।
1: जी। और सिलाई काम आज भी आप करते हैं? हाँ, या छोड़ दिया?
2: नहीं नहीं, करती हूँ अभी भी। अभी तो बहुत अच्छा सिलाई काम हाथ में बैठ गया है।
1: तो आप अपना ही करते हैं या अभी भी मुल्का करते हैं?
2: मुल्का बेटे ना बोलते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं मम्मी, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती है, अभी बहुत अच्छा है।
1: तो पहले आप मोल का भी करते थे?
2: पहले मोल का नहीं, घर का पूरा करती थी, खेत करती थी और पशुपालन।
1: अच्छा,
2: पशुपालन मेरे ऊपर था।
1: अच्छा, कितने गाय भैंस थे?
2: 3 गाय भैंसे थी और उसके बछड़े बच्चे होते हैं वो थे।
1: तो आप अकेले संभालते थे?
2: हाँ, हस्बैंड का तभी थोड़ा कम था साथ सहयोग।
1: जी। तो वो क्यों सहयोग नहीं करते थे फिर, आपने इतना क्यों पाला? खेती को संभालना,
2: पैसे के लिए पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो खेत में से जो उत्पादन होता है वो तो इतना नहीं होता था तब।
1: लेकिन आपके हस्बैंड तो होम गार्ड थे ना, तो सैलरी तो आती होगी ना।
2: हाँ वो उसके खाते में जमा होती है, वो घर पर नहीं देते थे ना।
1: अच्छा घर में पैसे नहीं देते?
2: नहीं देते थे,
1: तो घर कैसे चलेगा?
2: हाँ बस दूध घर का है, सब्जी खेत की आती है, गेहूं भी खेत के आते हैं, तो और क्या चाहिए? जैसे कि बाहर से कुछ लेना है ना, तो वो गाय भैंस का जो दूध बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसमें से मेरा घर चल जाता है।
1: इसलिए आपने गाय भैंस रखी कि हाँ, आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते थे?
2: हाँ तभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते,
1: अभी भी नहीं देते,
2: नहीं देते।
1: तो फिर पैसों का क्या करेंगे वो?
2: वो तो क्या करेंगे, ले जाएंगे साथ में, कोई नहीं ले जाता है ना, यहाँ ही पड़ा रहेगा।
1: अच्छा तो आप जैसे आबू आए अभी, आप रेडियो मधुबन में हमारे साथ है, तो किराया भी लगता है, पैसा भी चाहिए बाहर जाने पर, तो कौन देता है फिर आपको?
2: बेटा देता है ना।
1: अच्छा बेटा देता है,
2: बेटे से मांगती हूँ, मेरा स्वभाव यही है कि मैं मांगती नहीं, वो सामने से बोलता है कि अभी तो आपका खलास हो गया होगा, इतना दिया था अब खलास हो गया होगा तो लो मम्मी। मैं तो पहले तो ना ही बोलती थी, मुझे नहीं चाहिए, फिर यहाँ ये तो
1: बाहर जाते हैं तो फिर पैसे दे देते हैं बेटा, लेकिन हस्बैंड आज भी नहीं देते?
2: नहीं,
1: और आज भी जॉब उनकी जारी है?
2: नहीं वो रिटायर्ड हो गए।
1: रिटायर्ड हो गए, पेंशन आती होगी?
2: नहीं पेंशन नहीं आती, उसमें नहीं आती है। अच्छा, होमगार्ड में नहीं आती है।
1: अच्छा फिर भी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में होगा, लेकिन देते नहीं है?
2: हाँ वो सारा जमीन का पैसा तो आता ही है ना
1: जी, खेती बाड़ी का।
2: खेती बाड़ी का
1: तो फिर खेती बाड़ी में से भी आपको नहीं मिलता है, जबकि आप तो काम करते हैं?
2: से नहीं मिलता।
1: अच्छा
2: ये महिलाओं की जिंदगी ऐसी टगल वाली है।
1: फिर भी आप खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करके चल रहे?
2: स्वीकार लिया ना जैसे भी है।
1: जी जी जी, तो चलिए कार्यक्रम के अंत में आप हमारी बहनें सुन रही, उनको क्या कहना चाहेंगे?
2: मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, और हर परिस्थिति का डट के सामना करना है। जब सामना करेंगे आगे बढ़ेंगे तभी हमें अंदर से खुशी भी आएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
1: जी चलिए, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है मधु जी, सभी नारी शक्ति को, कि मेहनत करना है और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जैसे आप पशुपालन करके थोड़ा बहुत पैसे बचा करके कहीं जाते हो तो लेके जाते हो, बाकी घर से नहीं मिलता है।
2: और सहन शक्ति एक बड़ी शक्ति है, वो सहन शक्ति से हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहता है।
1: जी जी जी,
2: सहन करेंगे ना तो सबके प्यारे रहेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है मधु जी ने, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू जी, थैंक यू उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मधु जी राठौड़ हमारे साथ बने हुए थे। आप जूनागढ़ बांटवा से पधारे हैं और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए हैं। देखिए आपने जाना है कि नारी शक्ति कितनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एक रुपये पर भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी आप खुश है, परिवार को साथ में लेके चलते हैं, और सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप ईश्वर भजन करते हैं, तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और आपके साथ अव्यवहार किया, फिर भी आप सहनशीलता के दम पर और मिलनसार संस्कार होने के दम पर सभी को साथ में लेके चले और हमेशा खुश रहे, और आज भी खुश है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का अभिवादन। भारत भूमि पर अनेक वर्षों तक विदेशियों का आधिपत्य और प्रथम स्वतंत्र

स्वतंत्रता संग्राम के विफल होने के कई कारणों में से एक था भारतवासियों का विभिन्न जाति समुदाय और संप्रदायों में बटा होना। सन 1857 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं ने इसे भली भांति समझा और विदेशी ताकतों से मुक्ति प्रयास के साथ ही देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का भी संकल्प लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने जीवन में जातीय बंधन और अमीरी गरीबी के भेदभाव को दूर करने तथा दलित व पतित उद्धार के अनेक कार्य जहां स्वयं किए वहीं अपनी रचनाओं से भी इसे व्यक्त किया। वे कहती हैं कि ईश्वर जो सर्वोच्च है सर्वज्ञ है उसकी आराधना के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ निर्मल हृदय का समर्पण पर्याप्त है।

आजादी की पहली लड़ाई की प्रणेता महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के 47 साल बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म मानो उनके छोड़े हुए अधूरे काम को पूरा करने के लिए ही हुआ। तभी तो राष्ट्रभक्तों से जुड़े स्थल उन्हें खींचते थे, प्रेरित करते थे उन काव्य पंक्तियों के लिए जिन्हें लिखकर वे निर्भय हो जेल की यात्राएं करती और जिन्हें सुन और पढ़कर लोग भारत माता के बंधन दुगने जोश से खोलने को तत्पर होते थे। वे देश प्रेम में इस कदर डूबी थी कि प्रकृति के मनोरम दृश्यों में भी वे मातृभूमि के बलिदानियों का ही स्मरण करती थीं। इसीलिए ऋतुराज वसंत के आगमन पर जहां अन्य कवि उसके स्वागत की रचनाएं लिखते, वहीं वसंत पंचमी को यह असार संसार छोड़ने वाली सुभद्रा जी की लेखनी उन लोगों की अनुभूतियों में डूबी हुई है जिन्होंने इस ऋतु में अपना सब कुछ खोया है या खोने की स्थिति में है। उनकी पहली रचना वीरों का कैसा हो वसंत देश की रक्षा में जुटे वीरों की मनस्थिति पर सवाल करती है, तो दूसरी रचना जलियांवाले बाग में वसंत पाठकों और श्रोताओं को निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार से बारंबार रुलाती है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, ये है शोक स्थान।

0: मित्रों, ये था आज का कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार तापसी नागराज, संगीतकार तापसी श्रीधर नागराज, आलेख साधना उपाध्याय, उद्घोषणा मुरलीधर नागराज, कार्यक्रम परिकल्पना श्री राम तिवारी की, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय।
1: आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से।

0: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening to FM Radio Madubar. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomaduban.in on internet, even Russia, even everywhere.
1: दोस्तों नमस्कार, रेडियो आजाद हिंद 90.8 पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त मनीषा, और आज बाल सभा का विषय है इम्तिहान से डर कैसा।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते।
3: नमस्ते दीदी।
1: आज हम क्या बात करने वाले हैं, पूछो तो जरा मुझसे तुम लोग।
4: क्या दीदी?
1: आज हम बात करने वाले हैं कि जब इम्तिहान आने वाले होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है?
3: डर।
1: डर लगता है?
3: हाँ दीदी, जैसे कोई भूत आने वाला हो।
5: और माँ पापा बार बार पूछते हैं, पढ़ाई कर ली, रिवीजन हो गया, बस फिर क्या, पूरा घर एग्जाम मोड में चला जाता है।
1: हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा कि पूरा घर ही एग्जाम मोड में चला जाता है, सारे काम भूल के बेचारे पेरेंट्स सिर्फ इसी में लगे रहते हैं कि बच्चों का रिवीजन हो जाए, बच्चों का टाइम टेबल से सारा काम हो जाए, लेकिन क्या किया जाए।
3: सबसे पहले तो हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, हर विषय के लिए रोज थोड़ा थोड़ा समय तय करना चाहिए, जैसे गणित रोज आधा घंटा, अंग्रेजी एक घंटा, फिर थोड़ा रेस्ट।
5: हाँ, और बीच बीच में पानी पीना और ब्रेक लेना भी जरूरी है, अगर हम बिना रुके लगातार पढ़ेंगे तो दिमाग थक जाएगा।
1: अरे वाह पद्मप्रिया, तुमने ये बात बहुत अच्छी कही कि हमें थोड़ा थोड़ा सा बीच में रेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं ना।
5: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती होती है आखिरी दिन पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करना।
3: हाँ वो तो जैसे दिमाग का ट्रैफिक जाम हो जाता है।
1: अच्छा मतलब एग्जाम्स में अगर तुम लोग एक साथ कुछ भड़बड़ करके तैयारी करते हो तो सच में ऐसा लगता है कि एक ही दिन में इतना सारा कोर्स, ट्रैफिक जाम तो हो जाता है। और इसके साथ ही मातृका ये बताओ कि कई बार ऐसा होता है ना, बहुत थक भी जाते हैं।
3: हाँ और नींद भी बहुत जरूरी है, अगर हम रात भर पढ़ते रहेंगे तो अगले दिन परीक्षा में नींद ही आती रहेगी।
5: बिल्कुल, 7 से 8 घंटे की नींद हमारे दिमाग को फ्रेश रखती है।
1: बहुत सही, और सुबह सुबह थोड़ा सा ध्यान और गहरी सांस लेने से भी मन शांत रहता है, क्या कहती हो पद्मप्रिया?
5: मातृका तुम्हारा कोई टॉप सीक्रेट ट्रिक है क्या पढ़ाई का?
3: हाँ मैं याद करने के लिए रंगीन पेन इस्तेमाल करती हूँ, लाल से मुश्किल बातें, नीले से आसान, इससे किताब खोलते ही याद आ जाता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ है।
5: वाह मैं तो अपने नोट्स गाने की तरह याद करती हूँ, राइम बना लेती हूँ, जैसे हिस्ट्री की डेट्स ना भूलो मेट्स।
1: कितना अच्छा तरीका बताया तुम दोनों ने, एक अपने कॉपी में रेड पेन से मुश्किल बातें कर लेती है, ब्लू से आसान कर लेती है, और एक ने तो राइम बना ली है हिस्ट्री की डेट्स, क्या बात है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ पढ़ाई से नहीं आत्मविश्वास से भी काम बनता है, क्योंकि जो बच्चे बहुत डरते हैं ना उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, उन्हें खुद पे विश्वास थोड़ा कम होता है।
3: सही कहा, अगर हम सोचेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो डर बढ़ेगा,
5: और अगर हम सोचेंगे मैं कोशिश करूंगी तो जरूर हो, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा।
1: बस यही है असली मंत्र कि एग्जाम से डर कैसा, डर को दूर करो और विश्वास को गले लगाओ।
3: परीक्षा वाले दिन क्या करें ये भी बताना चाहिए ना।
5: हाँ सुबह हल्का

0: नाश्ता, थोड़ा रिलैक्स होकर पेपर टाइम से पहले पहुंचो।
1: और पेपर हाथ में आते ही पहले पूरा पढ़ो, जो सवाल आसान लगे पहले वही करो, है ना?
2: और आखिरी 5 मिनट में अपने जवाब दोबारा पढ़ो,
0: ताकि गलती पकड़ में आ जाए।
1: इतने अच्छे अच्छे सुझाव दे दिए हैं तुम लोगों ने, अब जरा ये बताओ, मुझे लगता है जितने बच्चे सुन रहे होंगे उन्हें बड़ा मजा आने वाला होगा आज। तुम पद्मप्रिया बताओ आज क्या सुनाने वाली हो इसके अलावा, क्योंकि एग्जाम्स की तैयारी करते करते हमें रिलैक्स करने के लिए भी कुछ और करना पड़ता है। और मुझे पता है तुमने बाल सभा में आने से पहले ही मुझे कहा था कि दीदी मैं कहानियां बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ।
0: हाँ दीदी, आपने सही कहा, अगर हम एग्जाम की प्रिपरेशन के बीच में ब्रेक लेकर कहानियां पढ़ें, म्यूजिक सुने या किसी और काम को करें तो हमारा दिमाग फ्रेश रहता है।
1: तो आज कौन सी कहानी सुना रही हो तुम?
0: आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी प्राचार्य की चतुराई। एक बार कॉलेज के 2 छात्र आपस में लड़ पड़े। वे दोनों अपने को बड़ा बहादुर कहते थे और एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे। जब झगड़ा मिटाने का कोई रास्ता नहीं निकला तो दोनों कॉलेज के प्राचार्य के सामने पहुंचे। एक ने अपने को बहादुर कहा, दूसरे ने अपने को सवा बहादुर कहा। प्राचार्य ने उनकी बातें सुनी, फिर कहा, तुम दोनों बड़े बहादुर हो?
3: जी हाँ,
0: दोनों ने कहा। प्राचार्य ने कहा, बहादुर कौन होते हैं? उत्तर मिला, जो कठिन काम कर सकते हैं। प्राचार्य बोले, अच्छा यह बताओ कि जब तुम्हें गुस्सा आ रहा हो और तुम्हारा मुक्का तना हो, तब दूसरे की नाक पर मुक्का मार देना आसान है या उसे खींच कर जेब में रख लेना? नाक पर मुक्का मार देना आसान है, दोनों ने कहा। प्राचार्य बोले, पर तुम दोनों तो बहादुर हो। प्राचार्य की बात पर दोनों छात्र लज्जित होकर चले गए।
1: ओहो पद्मप्रिया, तुमने कहानी नहीं बल्कि जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दे दी है।
2: दीदी अब मैं सुनाऊं?
1: नहीं, पहले ये बताओ तुम्हें इस कहानी से क्या समझ आया?
2: मुझे इस कहानी से यह समझ आया कि हमको कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और घमंड कभी नहीं करना चाहिए।
1: हाँ, गुस्से से घमंड भी आता है, उसने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है। ये बताओ पद्मप्रिया, तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली?
0: दीदी मुझे इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए और हमें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो आज की बाल सभा में हम इस बात पे जरूर बहुत जोर देना चाहेंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, जब मैं कॉलोनी में देखती हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को अपशब्द बोल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, और तो और एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जो बहुत दिनों तक हमको बुरी लगती रहती हैं। तो ये कहानी जो पद्मप्रिया ने सुनाई है उससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुस्से पर काबू करना आना चाहिए और यही सच्ची बहादुरी भी है ना मातृका?
2: हाँ दीदी, पर अब मैं सुनाऊं प्लीज?
1: अच्छा ठीक है, चलो तुम सुनाओ।
2: तो मेरी कविता का शीर्षक है गुरुत्व शक्ति। शाम सुहानी थी, पेड़ों पर पत्ते झूम रहे थे, धीरे धीरे एक बाग में न्यूटन घूम रहे थे। तरह तरह की खुशबू से महका था बाग फूलों का, आया तभी कहीं से कोई एक हवा का झोंका। टपका शोर हुआ जोर से, न्यूटन ने देखा मुड़कर पीछे, किसी पेड़ से एक सेब था गिरा टूट कर नीचे। यही देखकर बुद्धिमान न्यूटन का सर चकराया, लगे सोचने सेब टूट कर नीचे ही क्यों आया, गिरा टूट कर धरती पर क्यों ऊपर जा सकता था, आसमान में भी तो कोई पंछी खा सकता था। हाथों में लेकर न्यूटन ने चीजें कई गिराई, लेकिन गई न कोई ऊपर, सब नीचे ही आई। धीरे धीरे सारी बात समझ गए तब न्यूटन, पृथ्वी में है एक बड़े चुंबक सा कोई एक आकर्षण, इसी शक्ति के बल पर ही हम धरती पर रहते हैं, पृथ्वी की इस ताकत को ही गुरुत्व शक्ति कहते हैं।
1: अरे वाह मातृका, ये क्या ही कविता सुनाई है तुमने पद्मप्रिया, इस कविता के लिए तो तालियां होनी चाहिए।
4: हाँ।
1: बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब ये बताओ कि इसके लेखक कौन है?
2: इसके लेखक का नाम है हेमंत स्नेही, जो बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखते हैं और इनकी कुछ कविता से हमको आत्मविश्वास, सोचने की शक्ति बढ़ती है और एग्जाम में अच्छे से लिखने की भी शक्ति बढ़ती है।
1: अरे वाह, तो आपकी ये शक्तियाँ बढ़ें, हम आपको ये शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन इस कविता में तो बहुत कमाल की बात थी, सारी बातें विज्ञान की न्यूटन ने हल की, लेकिन उसको मजेदार तरीके से बच्चे याद रखें कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये कविता बहुत मदद करेगी। थैंक यू मातृका। अच्छा एक बात बताओ पद्मप्रिया, कि अब हम वापस अपने विषय पर लौट आए क्या?
0: अपने विषय पर लौटने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाना चाहती हूँ।
1: अच्छा सुनाओ।
0: कविता का शीर्षक है अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।
1: ये कविता तो हर बार ही मुझे निःशब्द कर देती है। हरवंश राय बच्चन जी की इस कविता को सुनने के बाद दिल करता है कि कुछ ना कहा जाए, लेकिन अपने बच्चों को याद दिलाने के लिए वापस विषय पे लौटना होगा कि आज तुम लोगों ने बाल सभा में बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, और सबसे अच्छी बात कि आज आप दोनों ने बातें करके हमारे छोटे छोटे बच्चे जो सुन रहे होंगे उनको भी ये समझाया है। इवन जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं उनको भी ये बातें याद रखनी चाहिए कि पूरा घर एग्जाम मोड में आने से कई बार डर का माहौल ज़्यादा बन जाता है कंपैरेटिवली आत्मविश्वास के। और कई बार हमको ये भी सोचना चाहिए, जैसा पद्मप्रिया मातृका दोनों ने कहा, कि थोड़ा रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात मातृका ने कही थी जो मुझे याद है, कि हमें अपनी वो लाल पेन और नीले पेन वाली ट्रिक याद रखनी है, कि जो कठिन बातें हैं वो आप अपनी खुद की कॉपी में रेड पेन से लिख लीजिए, ताकि आप याद रख पाएं कि इनको आपको दोबारा दोहराना है। एक बात पद्मप्रिया ने बहुत अच्छी कही थी कि हमको पहले पढ़ के तैयारी कर लेनी है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जब एग्जाम के एक रात पहले सारी तैयारी करते हैं तो आप ओवरलोडेड हो जाते हैं और आप हो जाते हैं बहुत ज्यादा परेशान, है ना पद्मप्रिया? क्यों मातृका?
2: हाँ दीदी।
1: तो अब हम चलें, उससे पहले मातृका जो बार बार मुझे इशारा कर रही है वो क्या है?
2: मैं इशारा कर रही हूँ कि ये बाल सभा खत्म होने से पहले मैं एक सुंदर सा अच्छा सा गाना सुनाऊं। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे, भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे, सा सा धा पा धा धा पा गा पा पा गरे गरे सा सा

धरती, जिस धरती पर जन्म लिया है, जिस धरती पर जन्म लिया है, माता उसे पुकारेंगे, भारत प्यारा देश हमारा, तन

0: वाह मातृका, पद्मप्रिया तालियां हो जाए मातृका के लिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। तो अब बच्चों हम लोग के चलने का समय आ गया है। आज जो बातें हुई हैं उनसे आपको फिर एक बार बता दें कि इम्तिहान सिर्फ एक पेपर नहीं है बल्कि एक अनुभव है। डर से नहीं, तैयारी से जीतिए। तो अब चले पद्मप्रिया मातृका दोनों हम लोग।
1: हाँ दीदी।
0: तो आज चलते हैं बाल सभा में। बस आज का सफर यहीं तक। अगली बार नई बच्चे नई बातों के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्ते दीदी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और आपके साथ थी मैं मनीषा चतुर्वेदी। हमारे साथ थे आज बाल कलाकार पद्मप्रिया और मातृका। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: बाल सभा।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: नमस्कार। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे एक बागवान बगीचे की रचना करता है, माली उसका ध्यान रखते हैं, फूलों की शोभा सिर्फ उसके रूप और रंग से संपूर्ण नहीं होती, उसमें सुगंध भी हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इस प्रकार जगत नियंता ने हम सभी को जीवन रूपी उपहार तो दिया है और उसमें संगीत रूपी सुगंध भी दी है, जो जीवन के आनंद में और भी बढ़ोतरी करता है। जरूरी नहीं सभी मनुष्य आत्मा इसका उतना ही आनंद लेता होगा, परंतु देखा गया है हर प्राणी जीव जो सामाजिक प्राणी मनुष्य के साथ साथ पशु पंछी और पौधे भी संगीत की धुन से पुलकित हो जाते हैं। आइए संगीत की महिमा में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको भी शुभेच्छा देती हूँ और जितने सारे लिसनर हैं उसको भी प्यार देती हूँ।
0: श्यामली जी, आज हमने बताया कि जीवन में संगीत,
1: हाँ जी,
0: ये जैसे के फूल में सुगंध,
1: हाँ जी,
0: जैसे सुगंध के बिना फूलों की सुंदरता में थोड़ी सी कमी आ जाती है,
1: हाँ जी,
0: इसी प्रकार संगीत का स्थान भी हमारे जीवन में कुछ तो कमी लाता है। कैसे उसको हम और अच्छी तरह से हमारे लिसनर को समझा सकते?
1: देखिए, ऐसे जरूरी नहीं कि वो गीत कर सकते,

0: जी कंठ से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति है जो गीत सुनना बिना सोते भी नहीं है।
1: जी जी,
0: दिनचर्या में अगर थोड़ा सा गीत रखे तो हर काम भी बहुत आसानी से कर सकती है।
1: जी जी,
0: गीत सुनते सुनते कोई भी काम करे, खाना बनाए, उसको वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा होता है।
1: जी,
0: अगर कोई भक्तिमूलक डिवोशनल जो गीत होता है, अगर वही गीत का जो वाइब्रेशन होता है वो खाना में पड़ते हैं या कोई काम में,
1: एनर्जी हमारी बनी रहती है।
0: हाँ जी
1: जी,
0: जब हम मंदिर में जाते हैं, अलग दुनिया में जाते हैं, तो मन की भावना भी अलग हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ हर कोई गीतकार नहीं सकते हैं, ठीक है चलो, वो उसको शायद उसको कंठ अच्छा नहीं है, वो कर भी नहीं पाती है, उसकी इच्छा भी है, उसको समय नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, लेकिन सुन तो सकते हैं। अभी जिंदगी बहुत फास्ट हो गया, हर घर में टेप, रेडियो, एफएम तो चलता ही है,
1: जी,
0: टीवी, हर कुछ भी। लेकिन मैं सोचती हूँ जितना सीरियल देखना पसंद करते हैं उतना गीत भी सुनना पसंद करें।
1: जी जी,
0: सारा दिन इसमें जो जन साधन होता है उसमें प्रभाव भी पड़ते हैं।
1: जी,
0: घर की माहौल कैसे होना चाहिए, थोड़ा गीत प्रधान होता है, म्यूजिक होता है तो, क्योंकि म्यूजिक थोड़ा घर में रहने से बहुत ये लाभदायक है।
1: जी,
0: जानवर भी गीत से थोड़ा मान जाते हैं।
1: जी,
0: अगर एक सांप के सामने बीन बजाए,
1: हाँ ये तो
0: वो
1: हमारे
0: देख
1: पास
0: तो नहीं सकते
1: है,
0: लेकिन उसमें जो हाथ हम हिलाते हैं उसमें वो थोड़ा उसको सिर हिलाते हैं, ऐसे कान में, ऐसे सुना है कि सांप कान में नहीं सुन पाते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन अगर थोड़ा सामने बीन बजाइए, देखिए वो भी थोड़ा डांस करना शुरू करते हैं। हम देख मोर जैसे
1: प्रकृति की रचना को भी कुछ न कुछ ऐसा,
0: बरसात जब आते हैं, बारिश जब होता है, बारिश की रिमझिम से मोर क्यों नाचते हैं,
1: जी
0: उसको
1: जी,
0: अच्छा लगता है। प्रकृति के साथ जानवर या इंसान सब
1: अपने उमंग उत्साह को वो प्रत्यक्ष करते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: श्यामली जी, आज आप हमें संगीत में क्या सिखाने वाले हैं?
0: हाँ, हर बार की तरह मैं सरगमी सिखाऊंगी,
1: हाँ जी,
0: अलंकार पलटा, क्योंकि अलंकार पलटा करने का बहुत लाभ है।
1: जी,
0: अगर हम पहले कोई भी एडुकेशन, कोई भी शिक्षा लेने के पहले ग्रामर तो जरूरी है।
1: जी,
0: ग्रामर बिना कुछ नहीं सीख सकते।
1: भाषा कोई भी हो मगर
0: कोई भी हो,
1: ग्रामर तो चाहिए।
0: या आप कोई शिक्षा, आप खाना बनाइए, उसमें भी प्राथमिक तो शिक्षा लेना चाहिए। वो शिक्षा बिना अधूरा रहते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा उसके पलटा सीखा है, गला को थोड़ा गर्म करे।
1: जी जी,
0: गर्म भी होता है क्योंकि जब गीत सीखना शुरू करते हैं वोकल कॉर्ड जो है वो नरम हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: उसको थोड़ा सख्त बनाना है, उसको थोड़ा अच्छा एकदम कंक्रीट बनाना है।
1: अच्छा,
0: कैसे? वो जितना पलटा करेंगे उतना उसको गला मजबूत हो जाएंगे।
1: माने ये एक विधि है उसको मजबूत करने की।
0: हाँ, सुमधुर करना है, सुरेला करना है तो पलटा जरूरी है ही है।
1: जी जी,
0: जितना हम कोई भी प्रैक्टिस करें उतना उसमें भी, और भी पीएचडी किस लिए करते हैं?
1: जी,
0: जब जानकारी हो जाए तब तो जाके पीएचडी करते हैं ना।
1: जी,
0: तो जितना वो संगीत के ऊपर थोड़ा रिसर्च करेंगे, जितना सरगम करेंगे, उतना और भी पक्का होते जाएंगे।
1: ओके,
0: मैं चाहती हूँ हर लिसनर जो शिक्षा लेना चाहते हैं पहले उनको पलटा करना जरूरी है ही है।
1: ओके,
0: इसलिए मैं पिछले एपिसोड में जितना सिखाया और भी मैं आगे बढ़ती हूँ।
1: जी जी,
0: ओके,
1: हाँ जी।
0: आज मैं शुरू करती हूँ कि हमने क्या किया, सारे गामा लास्ट तक हमने शायद किया है।
1: जी,
0: सारे गामा पहले किया है, सारे गा, उसके बाद लास्ट में किया है सारे गामा, तीन चार। आज क्या करेंगे, सारे गामा पाधा नी, इतना जो सप्तक जो है उसमें क्या करेंगे, जैसे होता है ना 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 2 4 3 5 ऐसे करेंगे।
1: अच्छा,
0: 1 3 करेंगे, उसके बाद 2 जो है बीच का एक स्वर निकल देंगे।
1: ओके,
0: करके मैं सुनाती हूँ। उसके बाद 2 स्वर निकल देती हूँ, उसके बाद 3 स्वर निकल देती हूँ, उसके बाद 4 स्वर निकल देती हूँ, इसलिए एकदम एक बाई एक करते हैं
1: ना। फर्स्ट थर्ड, फिर थर्ड फिफ्थ,
0: नहीं फर्स्ट थर्ड 2 4।
1: अच्छा, 2 4, ओके फाइन।
0: 3 5,
1: ओके हाँ जी।
0: 4 6,
1: हाँ जी।
0: 5 7, ऐसे करती हूँ। अगर हम शुरू करेंगे तो समझ जाएंगे लिसनर, ठीक है?
1: हाँ जी।

शायद लिसनर को समझ में आया कि मैं सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा ऐसे प्रकार दो तीन चार हटा देंगी। तो पहले एक हटा दिया, फिर से करती हूँ।

0: इसमें एक लाभ भी है, मैं लाभ भी बताती हूँ
1: जी।
0: कोई कोई गीत में, कोई कोई राग में शुरू होता है सागा। जैसे हम राग सीखेंगे सागा मा पा धानी सा, अगर हम पहले ये नहीं करेंगे तो दिक्कत होंगे, बाद में तकलीफ होंगे।
1: अच्छा।
0: इसलिए मैं सीखा चाहती हूँ निकल के एक एक स्वर दो स्वर निकल के, बाद में जब राग सीखते हैं उस टाइम में मेहनत नहीं करना पड़े।
1: साथ जो सारे गामा पध निसा, ये कोई भी स्वर से शुरू होने वाला गीत आसानी से करने के लिए ऐसा करना,
0: ऐसे पलटा करना जरूरी है। ठीक है
1: जी।
0: मैं आ करती हूँ।

0: लिसनर नोटिस किया है कि इसमें दो स्वर निकल दिया है, सा मा अगर करते हैं तो बीच में जो रे गा निकल दिया है
1: जी,
0: दो स्वर निकल दिया, फिर इसको आ करते हैं आ।

श्यामली जी, सरगम के इसी अलंकार के साथ और भी आपसे बहुत कुछ हम सीखना चाहते हैं और आप सिखाएंगे भी, मगर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में हम बहुत मीठा सा प्यारा सा गीत लेकर आए हैं हमारे सभी श्रोता मित्रों के लिए। आप सभी उसका आनंद लीजिए। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने शामली जी से अलंकार के बारे में कुछ जानकारी ली। आज वो हमें नंबर वाइज जो 7 सुर है उसमें फर्स्ट, थर्ड, फिर सेकंड, फोर्थ
1: ऐसे सिखाया,
0: इस प्रकार से कैसे जंप करके एक एक बीच में निकाल के जंपिंग वाला जो टेक्टिस है, जिससे आने वाले समय में हम राग को जब सीखेंगे तो कोई भी सुर से अगर राग शुरू हो तो हम उसको आसानी से कर पाते हैं। श्यामली जी, पुनः आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आगे आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: अभी साधा, सा पा तक किया है साधा,

0: मैं सोचती हूँ कि शायद लिसनर को ये जो हमने किया है पहले से वो थोड़ा रिविजन करेंगे तो अच्छा है
1: जी।
0: थोड़ा कठिन है, अगर थोड़ा और भी एक बार जानकारी दे देती हूँ तो और भी अच्छा करते। मैं ये जो किया है रिविजन करती हूँ।
1: हाँ, मैंने उनका रिविजन भी हो जाएगा।

0: हमने जो कुछ सरगम सिखाया है माला की तरह जो है अलंकार की तरह, ये पहले कठिन शायद हो सकता है, फिंगर में भी दिक्कत होता है, अंगुलियों में भी दिक्कत होता है, लेकिन एक बार उठाएंगे कंठस्थ कर लेंगे तो उसके बाद आकर करेंगे, आकर सहयोग करेंगे, पहले मेहनत होंगे आकर सहयोग से, क्योंकि बीच में स्वर निकल दिया
1: जी,
0: जैसे लास्ट में सा नी रे सा एकदम आ आ आ आ आ अंगुली में भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन मास्टर जी के पास शिक्षा लेते हैं, दिखा देते हैं, गुरु जी दिखा देंगे तो और भी आसानी से कर सकते हैं
1: जी।
0: तो मैं इतना तक करते हैं, उसके बाद आकार सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा है, करना ही पड़ेगा
1: जी।
0: अगर कंठ को सुरीला बनाना है या सुंदर बनाना है तो आपको पलटा करना जरूरी है ही है। तो मैं और भी आगे बढ़ती हूँ, तो अभी हम दिखाते हैं, पहले हमने क्या किया है, सा रे रे गा गा मा मा पा, हमने ऐसे किया है। इसके साथ अभी जो किया है सा गा रे मा गा पा जो है, पहला जो है आज की पहला लेसन जो है नंबर वन
1: जी,
0: ये जुड़ा देती हूँ, इसको साथ प्लस कर देती हूँ, तो क्या ऐसे होता है, ठीक है,
1: दोनों मिला के आप अभी बता रहे हैं जी।

0: जितना ऐसे करेंगे और भी गला और भी सुंदर होते जाएंगे।
1: सभी प्रकार की स्पीड जो है,
0: हाँ जी,
1: उसको प्रैक्टिस में लाना है।
0: लेकिन मैं अभी मना करती हूँ, इतना जल्दी नहीं होंगे, इतना जल्दी भी नहीं करे, इसलिए मैं रिपीट करती हूँ, दोबारा करती हूँ, रिविजन कराती हूँ। तो अगर कभी भी जरूरी होता है तो मैं फिर भी रिविजन करा दूंगी
1: जी।
0: ठीक है
1: जी। श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत। आपसे अलंकार के बारे में और भी जानकारी हम लेते रहेंगे। आज आप हमारे लिए कौन सा गीत लेकर आए?
0: बहुत अच्छा एक फिल्म है, आ गले लग जा।
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: उसमें एक
1: बहुत ही फेमस ये फिल्म है,
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता, क्योंकि शायद लिसनर के साथ पहले कुछ
1: नाता है हमारा, बिल्कुल लिसनर के साथ नाता है, इसलिए घर बैठे उनको गुरुजी मिल गए।
0: हाँ जी
1: जी।
0: तो मैं सोचती हूँ कि अगर कोई भी लिसनर ये सुनकर वो भी गा सकते हैं, मैं कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है
1: जी।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सचमुच का पक्का वादा रहा, कभी नहीं छूटने वाला।
1: मैं कोशिश कर सकती हूँ।
0: सही बात है,
1: बच्चों को सुनाना है, लिसनर को सुनाना है
0: जी। और सचमुच हमारा नाता भी तो वैसा है।
1: हाँ जी,
0: जी।
1: हाँ जी।
0: हम यहाँ वो वहाँ, फिर भी हमारा नाता अटूट बंध जाता है। श्यामली जी, इसी के साथ आज हम लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। SMS के द्वारा भी आप हमें संगीत के बारे में पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौड़ परिवार के जमाई सा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौड़ परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौड़ परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
1: मेरा फैसला यह है कि
2: क्या है पापा,
3: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
4: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
5: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
1: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे है, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
5: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
6: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
7: शांति, सब ठीक कह रहे हैं, चलो हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
8: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
9: क्या?
10: क्या?
9: क्या?
10: क्या?
8: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के

0: अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में, दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
1: हाँ जमाई सा, तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना।
2: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
3: मैं तो बहुत खुश हूँ।
2: बढ़िया,
4: बहुत अच्छी बात है,
5: सब लोग मिलकर रहेंगे।
6: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी।
2: माँ तुम कैसी बातें कर रही हो, इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
0: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर है।
7: वीरेंद्र तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
8: माँ आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके।
6: किशन सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
2: जमाई सा परिवार के हैं, और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपके ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
9: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा, और घर जमाई की इज्जत कौन करता है।
8: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं।
10: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो।
9: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है ये खुशी न दामाद की।
2: अरे जमाई सा अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
1: वैसे जमाई सा मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
6: अरे राजकुमारी तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को।
2: अरे माँ खतरा है ना।
7: क्या?
2: राजकुमारी के हाथ का खाना।
11: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
10: क्या करेले के लड्डू
7: या मिर्ची का हलवा।
1: बस इसी से वार्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊं, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
9: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
8: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
5: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
1: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
5: हाँ हाँ वही।
6: हाँ बेटा हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
8: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या। सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या। अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या। अंधेरों में साथ निभाता है दिन में भला क्या खूबी है। मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या।
2: किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
9: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
5: चंद्रावती तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
9: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
5: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
2: भाई साहब जाने दीजिए ना।
11: भाभी जी मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
5: जमाई साहब आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो, एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो, ना सोने देती हो तुम।
2: भाई साहब बस कीजिए, जमाई साह के सामने ये सब शोभता नहीं।
3: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है और ये कहते हैं।
1: भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी है, दिल नहीं।
10: बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
8: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
3: क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
6: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
0: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
11: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
0: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है। समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है। रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
2: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन, शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार। कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन दिल में नहीं।
6: चलिए जमाई साहब, अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
1: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाई साहब के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोल कर इस्तेमाल कर लिया था। वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाई साहब रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
12: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी, अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित।

बेखबर कुछ ना आता नजर, सुखा सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले

थमी दिया तूने हमें जो जन्म तुई जे लेगा हम सभी के गम नेकी पर चले और बदी से टले।

नेकी पर चले और बंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल

बिना बड़ उठी प्यारी का हर कदम और मिटे गिर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले ताकि

0: पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, 107.8 FM रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन के सभी सुनने वाले श्रोताओं का कार्यक्रम सलामे जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर सप्ताह हम आपके पास एक हमारे समाज के ही अनुभवी व्यक्तित्व को लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में, जहां पर हम बात करते हैं उनके जीवन की, उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं उनके मुख से ही कैसी उनकी जीवन यात्रा रही और वहाँ से कुछ सीखने का प्रयास भी हम करते हैं। और ऐसे ही अनेक व्यक्तित्वों को लेकर कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व सलामी ज़िंदगी में आपसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, वह एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत हैं, क्योंकि उनका जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन वर्तमान वो भारत में ही रहते हैं। आपका शुभ नाम है रमेश चंद्र शाह। आपका जन्म नैरोबी केन्या यानी कि अफ्रीका में हुआ था, लेकिन आपको जान के बहुत खुशी होगी कि उनके पिताजी आज से 100 साल पहले भारत के जामनगर से नैरोबी गए थे और वहाँ पर अपना बिजनेस आरंभ किया था। तो काफ़ी लंबी यात्रा रही है इनकी परिवार की विदेश में रहने की, और आपकी खुद भी बहुत सारे अलग अलग देशों में अपने प्रवास किया है और वर्तमान में अपना जो सीनियर सिटीजन के रूप में एक अनुभवी व्यक्तित्व के रूप में भारत में अपना समय सफल कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी।
1: थैंक यू।
0: कैसा लग रहा है आपको आज ब्रह्मा कुमारीज के इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर आकर?
1: बहुत अच्छा लगता है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एकदम लाइटनेस फील हो रहा है और बहुत ही आनंदित वातावरण में है हम।
0: तो आज के इस कार्यक्रम में जब हम हमारे समाज के अनुभवी व्यक्तित्व से बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में झांकने का प्रयास करते हैं, और आपके साथ आज की इस बातचीत के आरंभ में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ आपका जन्म हुआ और आपके अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में।
1: हम जामनगर से, सब मेरे फादर सब फार्मर्स थे, खेती करते थे, और वो लोग वहाँ हर 3 साल में और 2 साल में दुकाड़ होता था, पानी नहीं होता था,
0: अकाल पड़ता,
1: तो लाइफ बहुत मुश्किल होती थी। तो वो लोग वहाँ से बोट्स में बैठकर 2-2 महीने की जर्नी करके बॉम्बे से मुंबासा, जो केन्या अफ्रीका का पोर्ट है, वहाँ गए और वहाँ से अंदर 500 किलोमीटर आगे है नैरोबी, जो नया देश बन रहा था, ब्रिटिश का ही था। जैसा हिंदुस्तान में ब्रिटिश का राज था वैसा केन्या में ब्रिटिश राज था, लेकिन अपना भारत हजारों साल से डेवलप था और वो सारा जंगल था, और टोटल जंगल में से उन्होंने नया देश ब्रिटिश एस्टेब्लिश कर रहे थे। तो उसके लिए मेरे फादर और हमारे आजू बाजू वाले, उनके रहने वाले, वो सब यहाँ से सफर करके मुंबासा पोर्ट पर गए, फिर मुंबासा पोर्ट से अफ्रीका में केन्या में जो सब कैपिटल सिटी था उसका नाम है नैरोबी, तो थोड़े नैरोबी सेटल हुए। दूसरे जो दुनिया का सबसे बड़ा लेक, सेकंड बिगेस्ट लेक है, लेक विक्टोरिया, उधर किसुमू करके टाउन है, वहाँ सेटल हुए, और उसके बाकी के लोग केन्या के, जैसा मुंबासा है, किटाले है, एल्डोरेट, कुरु, बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर टाउन से, जिसको यहाँ हम हिल स्टेशन बोलते, इतनी अच्छे हवामान, बहुत ही अच्छे टाउन थे। तो सब वहाँ गए और जंगल से सारा चालू हुआ, तो उनको काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। उस टाइम में लाइट नहीं था, पानी नहीं था, बहुत ही ठंडी होती थी, तो वो सारा गुजरते गुजरते वो लोग ने किया, और फिर उन लोग ने, जैसे वो लोग पढ़े हुए नहीं थे, बहुत कम पढ़े हुए थे, तो फिर वहाँ हम सब उनके बच्चे हमको पढ़ाने का उन्होंने चालू किया।
0: तो आपका जन्म नैरोबी में हुआ या फिर भारत में हो गया था?
1: नैरोबी केन्या में
0: ही। केन्या में ही जन्म हुआ।
1: 1945 में मेरा जन्म।
0: मैरिज यही भारत में करके वहाँ गए थे?
1: नहीं, और मेरे फादर वो पहले यहाँ से सब जाते थे सिंगल के हिसाब से, मेहनत करके जाते थे वहाँ, मेरे फादर भी गए, फिर वहाँ थोड़े कमाए, कमा कर घर बनाया, घर मतलब एक रूम बस, इतना ही, उस टाइम में इतना नहीं था पैसा वगैरह, तो एक रूम लिया, फिर थोड़ा पैसा कलेक्ट किया, और फिर जामनगर वापस शादी करने के लिए मेरे फादर आए। उसी तरह सब लोग ऐसे आते थे, तो मेरे फादर ने आकर यहाँ भारत में शादी की, और शादी करके फिर वो, मेरे मदर की उम्र उस टाइम 16 साल की ही थी, और जो उस टाइम में इसी तरह से होता था, उसको भी ऐसी दाउस में बोट में लेकर वहाँ चले, और बोट जर्नी भी बहुत, जैसे बोलते आज के समय में हम सोच भी नहीं सकते थे, अपना कोलसा साथ ले जाने का था, अपनी सगड़ी साथ ले जाने की, दो माह की जर्नी अपने ग्रोसरी साथ ले जाने की होती थी, और वो बोट के अंदर खुद को कुकिंग करना होता था। तो इस तरह से तकरीबन 50-60 लोग जाएंगे, बीच में थोड़े लोग बीमार भी हो जाएंगे, कोई मर भी जाएंगे, तो वो सारा करते करते वो वहाँ पहुँचे। और आप सोचो कि 16 साल की उम्र में अपने भारत में संस्कृति का जो सीखे हुए मेरे मदर फादर, सब कुछ आप 16 साल में घर चलाना, सब कुछ करना, तो वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो सब अपने मदर से सीखे हुए होते थे। तो छोटे छोटे थे, अपने छोटे मेरे मदर के वो लोग 10 भाई बहन, मेन मदर सबसे बड़ी थी, तो 16 साल पहले तो उसके छोटी बहन छोटे भाई सबको ध्यान रखते थे, जैसे और टैलेंटेड थे।
0: आपका जन्म और आपकी जो परवरिश है नैरोबी में ही हुई, तो सबसे पहले जो गुरु होते हैं किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता और पिता ही होते हैं, उनको देखकर ही बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। और जब आप उनको याद करते हैं आज, तो कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो वैल्यूज हैं जो आपको उनके जीवन में दिखती हैं, आप भी आज प्रैक्टिस में लाते हैं?
1: मेरे माँ बाप का, हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे उस जमाने में, वो लोग खुद भी इतने कोई पढ़े हुए नहीं थे। मेरे मदर को तो लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसको टाइम होता था तो खाना तैयार होएगा, स्कूल के लिए तैयार कर दिए, ऐसा था। तो हम लोग उस जमाने में एक मकान में, जिसको हम फड़िया बोलते थे यार्ड के, तो अंदर 8-10 रूम होएंगे, एक एक रूम में सब रहते थे, और बीच में जो जगह होती थी जिसको हम फड़िया बोलते थे, उधर बच्चे खेलते थे। तो खेलते खेलते सबके माँ बाप कुछ कुछ कुछ जो सिखाते थे वो हम सीख जाते थे। और उसी तरह से जैसा अपना कबड्डी है, खो है, अपनी गिली डंडा है, वही चीज़ें सारा दिन खेला करते थे, और एक दूसरे के इंटरेक्शन से सीखते थे। और दूसरा हमको सीखने का मिलता था, जैसा अपने उस टाइम में धर्म का बोध था, तो मंदिर में गए, कोई संत स्वामी आए, सब भारत से आते रहते थे, तो वो लोग बताते थे, उससे थोड़ा मेरे पेरेंट्स सीखते थे, फिर हमको शेयर करते थे, तो हम उसमें से थोड़ा बहुत सीखते थे। बाकी हम स्कूल में जाते थे, तो मेरी स्कूल गुजराती मीडियम में होती थी, तो उधर गुजराती में जो क्लास वन से जो अपनी कहवते है, थोड़े मोरल वैल्यूज वाले, जैसा ब्रह्मा कुमारीज में सिखाते, उसी तरह से उसमें से हम पिक करते थे, बस वही हमने सीखा और अपनी लाइफ में अप्लाई किया।
0: आपकी वहाँ पर पढ़ाई की?
1: वहाँ मेरी पढ़ाई की गुजराती में थी, और वहाँ हमने हमारे बुजुर्गों जो मेरे फादर वगैरह गए, उन्होंने वहाँ जाकर बहुत मेहनत करके स्कूलों बनाए, हिंदी की स्कूल बनाई, गुजराती की स्कूल बनाई थी, आर्य समाज की हिंदी की थी, कच्छी गुजराती हिंदू यूनियन करके गुजराती की स्कूल थी, और गवर्नमेंट की जो स्कूलें सारी थी वो होती थी इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम में। इस तरह से हमको तीनों चीज का, तीनों लैंग्वेज का स्कूलों का चॉइस था, और मेरी स्कूल थी वो गुजराती मीडियम में थी।
0: तो वहाँ पर नैरोबी में भी गुजराती स्कूल्स हुआ करते थे?
1: हाँ, नैरोबी में ही हमारे फादर वो सब लोग गए, वो सब ने चालू किया। सबसे पहले एक शिव मंदिर बनाया, और उसके आसपास ही एक कच्छू गुजराती करके स्कूल बनाई। तो उसके सब मंदिर में अंदर ही आते थे, भजन कीर्तन वहाँ ही होते थे, अपने सब संस्कार का जो बोलते हैं, जो भी हम पिक करेंगे उसमें से पिक करते थे।
0: जी जी। तो वहाँ पर टीचर कैसे होते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहिए?
1: हाँ, हमारे वहाँ टीचर्स जास्ती सब अपने भारत से आते थे। भारत में हमारी साइड जामनगर की साइड थी, लेकिन गुजरात साइड में जो जामनगर वो काठियावाड़ बोलते, और गुजरात मतलब बड़ौदा आनंद वो साइड में प्रॉस्पेरिटी जास्ती थी, उधर पढ़े हुए लोग जास्ती थे, तो मोस्टली टीचर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, पढ़े हुए लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ले आती थी, उसको भाड़ा देगी, उसको स्टीमर में ले आएगी, उसको उधर रहना देगी, और वो सब मेरे टीचर्स थे।
0: बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जैसे आपने अपनी ये यात्रा बताई, जब हम माता पिता से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर हम सीखते हैं गुरुजनों से, तो और उसके साथ साथ में जो हमारे दोस्त होते हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो ऐसे किसी को याद करना चाहेंगे जो उनका आपके जीवन में अच्छा प्रभाव रहा हो, कोई ऐसे शिक्षक, कोई ऐसे दोस्त जो जब आप अभी भी कभी कभी उनसे बातचीत होती हो आपसे?
1: हाँ, हमारी बहुत यूनिक कहानी है कि मेरे फादर, मैं 10 साल का था, मेरा बड़ा ब्रदर 12 साल का था, मेरी बहन 8 साल की थी, और छोटा ब्रदर 2 साल का था। उस टाइम मेरे फादर परमधाम चले गए, उसका डेथ हो गया। और उस जमाने में बोट मेरे लगभग 50 और 60 के बीच में बोट 70% 70% मेन लोगों का देहांत उसी एज में हो जाता था। उस जमाने में इतना मेडिकल एडवांसमेंट नहीं था, लोकल बीमारियां थी और सबकी वजह से यूजुअली सबका, तो मेरा फादर का भी ऐसा हुआ। तो मेरे को हमारे आजू बाजू में अखाड़े होते थे, तो अपने जैसा भारत में थे उसी तरह से अखाड़े होते थे। तो मैं कोई फीस नहीं, कोई पैसा देने का, जैसा ब्रह्मा कुमारी में यहाँ जाते फीस नहीं कुछ देने का नहीं, लेकिन जैसा ब्रह्मा कुमारी में ये बहन भाई होते तो हम जाकर जाते तो बोलते कोर्स कराते और उससे हम कितनी चीजें सीखते हैं। तो उसी तरह से तब अखाड़े में हम जाते थे और वहाँ हमारे जो जैसा मैंने बोला ये लोग सूरत है, बड़ोडा है, अहमदाबाद, उस साइड पड़े हुए लोग और जिसको सब कुछ आता था, ऐसे लोग जो एक्सपेक्टेड टीचर्स के हिसाब से आते थे और गवर्नमेंट सर्विस में आते थे वो आते थे और वो हमको सिखाते थे, जैसे कबड्डी है, खो है, ये सारी एक्सरसाइज है।
0: तो दो पोल पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप भारत के अंदर ही पले बड़े हैं, क्योंकि एक छोटा सा भारत आपने वहाँ भी, आपके माता पिता ने वहाँ जो गुजराती समाज आपके साथ किया था उन्होंने निर्माण कर दिया। तो मैं सही कह रहा हूँ?
1: बराबर, एक एग्जैक्टली वही है। उन्होंने मंदिर बनाए, कम्युनिटी के हॉल्स बनाए कि जहाँ सब इकट्ठा हो सकते और सब कम्युनिटी वाइज वहाँ, तो हिंदुओं का आर्या समाज बोलते थे, जैसा ब्रह्मा कुमारी में सब आते उस तरह आर्य समाज के होते थे। उसके सिवा उधर दर्जी ज्ञाति, मोची ज्ञाति, हमारी थी विश्वासवाल ज्ञाति, पटेल ज्ञाति, लोहना ज्ञाति, सब लोगों ने अपने अपने हॉल बनाए। और उस हॉल का फायदा क्या था कि कम्युनिटी इकट्ठी होती थी और कोई खूब किसी का बर्थडे तो जमाने में होता ही नहीं था, कोई सेलिब्रेट नहीं करता था, और शादी भी बहुत शादी होती थी, शादी में फोटोग्राफी का भी कुछ नहीं था उस जमाने में। इधर हमारे साइड जामनगर में था वही तरह उधर था, और उसमें से सब इकट्ठे होकर वहाँ कोई वहाँ वाला है बाहर से आते थे, वो सारे अपने को जिसको हम इंग्लिश में बोलोगे एथिक्स एंड वैल्यूज, मतलब लाइफ कैसे जीना, माँ बाप का कैसा मान सम्मान करना, आगे जिंदगी में कैसा बढ़ना, वो उस तरह से सारा वो लोग सिखाते थे। और हम मेरी लाइफ में मेरा मोटिवेशन ये है, मेरे अखाड़े में से ही एक

0: पहले मैंने कोर्स किया 94 में, उसके बाद सबको करवाया था। तो वो दर टीचर जो ब्रह्माकौर में होते थे, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, और बहुत अच्छी तरह से समझाए गए कि कैसा अपने को भगवान को मिल सकते हैं, किस तरह से अपने को कनेक्शन कर सकते हैं, और उससे अपने को एनर्जी बोलते वो लेकर हम अपने स्टडीज में अच्छे रहेंगे, गेम्स खेल में अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। तो उसी टाइप जिस ब्रह्मा कुमारी इस टाइप का ही वातावरण वहाँ अपने आप होता जाता था, और उससे हम सब सीखते जाते थे और उसी से आगे बढ़ते जाते थे।
1: जो कहा जाता है कि अनुभव जो है बहुत सोने जैसा होता है, क्योंकि जिसके पास भी होता है वो उतना वैल्यूबल बनाता है उस व्यक्ति को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी इस यात्रा को सुनते हुए, समझते हुए कि किस प्रकार से आपकी अपब्रिंगिंग हुई, कैसे आप बड़े हुए, कैसे आपका पालन पोषण हुआ, किस किस प्रकार की आपने पढ़ाई की, किससे किससे मिले, और भी आगे के जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन समय हो रहा है एक ब्रेक का, जहाँ पर हम सुनेंगे एक खूबसूरत सा गीत, और इस गीत के बाद फिर मुलाकात होगी। दोस्तों सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: મારો નામ લોકેશ દેવપ્રા હે, હું ઉદયપુર બોલ રહ્યો હું. આશા ભુંડિયા ઓર રેડિયો મધુબન 107.8 FM સુનતા રહો, હસતા રહો.
1: नमस्कार, 107.8 FM रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम चल रहा है सलामी जिंदगी. दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं रमेश चंद्र शाह जी, जिनका जन्म हुआ था नैरोबी, केनिया, अफ्रीका में, और अभी वर्ष 2024 में उनकी उम्र करीब 79 ईयर है. और आप हमें अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों के बारे में बातचीत के माध्यम से बता रहे थे. सर, आपका फिर से स्वागत करता हूँ. तो आगे की यात्रा पर चलना चाहेंगे और मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा आपके युवा काल

0: के बारे में, क्योंकि जैसे ही हम स्कूल की जीवन से आगे बढ़ते हैं और युवा काल में प्रवेश करते हैं तो बहुत प्रकार के विचार हमारे को आते हैं। अगर बिजनेस फैमिली का व्यक्ति हो तो वो बिजनेस में क्या करना है नहीं करना ये सोचता है, या पढ़ाई कर रहा हो जॉब करने के बारे में सोचता है। तो आपका ये समय कैसा रहा जब आपने अपने जीवन में भरण पोषण के हिसाब से कोई एक व्यवसाय आपने चुना होगा?
1: आपका बहुत आभार, और सबके साथ में अभी अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो हम जब स्कूल में, हमारे टाइम में 11 धोरण तक पढ़ना तो बहुत ज़्यादा था। गवर्नमेंट में कहाँ भी आपको नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में तो 11 धोरण तो बहुत गिना जाता था उस जमाने में। तो उस टाइम में जब हम, जैसा मैंने बोला, ये ब्रह्मा कुमारीज में अपने को जब भी वहाँ जाते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि अपने को जो उधर के जो शिक्षक होते वगैरह होते हो वो काफ़ी पढ़े हुए अनुभवी लोग होते और अपना टाइम वो फ्री में देते हैं क्योंकि समाज को आगे ले आने के लिए। तो उस तरह से हमारे अखाड़े में भी ऐसे ही लोग होते थे, तो हम पढ़ते थे ना उसी टाइम पर वो लोग हमको इनक्रेज करते थे कि कुछ ना कुछ साइड बाय साइड सीखो। को मैंने सीखा था इलेक्ट्रिक वायर रिपेयर करने का, उस जमाने का रेडियो आता था उसको रिपेयर करने का, फोटोग्राफी का मैंने चालू कर दिया था। मैंने इस तरह से सब सीखते जाते थे। और एक मेरे अनुभव जो मैं यहाँ भी शेयर करता हूँ, भारत में भी शेयर करता हूँ, हर जगह शेयर करता हूँ, कि छोटी उम्र से हम जब माँ बाप बच्चे को डांटने की जगह इनकरेज करते हैं, कुछ ने उसे तोड़ भी दिया तो इनकरेज किया कि यस कोई नहीं टूटा, फिक्र मत करो हो जाएगा, लेकिन इस तरह से करो, वापस भी हुआ तो भी कोई डांटना नहीं, अच्छी तरह से बताना। तो मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव था कि मैं 12 साल की उम्र में, मेरे माता जी ने, 2 साल हुआ था मेरे पिताजी गुजर गए, तो मेरे माता जी ने मेरे को बोला कि तेरे को तू क्या पढ़ने वाला है। तो मैंने बोला मैं पढ़ने वाला हूँ 11 के बाद मेरे को जर्मनी जाने का सोच उस टाइम में आ गया था। तो मैंने बोला जर्मनी जाऊँगा, इंजीनियर बनेंगे, ये करेंगे ये करेंगे। तो उन्होंने बोला कि लुक बेटा, आप, हम व्यापारी ज्ञाति में से, हमारी विश्वासवाल कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी है ना, बहुत सारी व्यापारी कम्युनिटी थी उधर, इधर फार्मर थी उधर व्यापारी कम्युनिटी थी। तो बोलते तो दुकान पर जा और देख देख किस तरह से ग्राहक को अच्छी तरह से बुलाते हैं, अच्छी तरह से सेवा करते हैं, अच्छी तरह से हंस से बात करते हैं, और जो भी काम है उधर अपने मेरे चाचा लोग थे उसको मदद कर, जो भी काम है मदद कर सबको। तो मदद करते करते कितनी चीजें मैं सीख गया। एक एग्जाम्पल इसके साथ मैं ये दूंगा कि जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर में लोग जाते हैं तो थोड़े टाइम जाने के बाद कोई कोई शिक्षक उधर के होते हैं उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इधर झाड़ू लगाओ, इधर ये चीज रख दो, ये बुक बराबर रख दो, या कोई एग्जीबिशन है उधर भाग लो, उस तरह से चांस देते रहते थे। तो मेरे को मेरे मदर और मेरे ये सारे प्ले ग्रुप को भी सबको इनकरेज ऐसा करते थे। तो मैंने मदर को ये बोला तो उसने बोला कि तू व्यापारी का बच्चा है, तेरे को व्यापार सीखना है। बोलते जो पढ़े हुए लोग हैं उसको तेरे को काम पर रखने का, मतलब वो कैसा हो सकता है। तो उसने बोला अभी देख तू ऐसा कर, तू, हम बंटा खेलते थे उसको, वो इधर गोली कुछ बोलते वो खेलते थे, तो हम लेते थे एक एक एक एक, मान लो एक पैसा का एक ऐसा लेते थे। तो उसने बोला तू जा पूछ दुकान वाले को 12 का कितना है। तो 12 का जो भाव था ना उसमें 4 फ्री आ जाता था, 8 का ही भाव देने का था। तो उसने क्या किया, मैंने कि वो बंटे ले आया, फिर उसने बोला ये 4 है ना बेच दे एक एक पैसे में, 2 रुपया 12 की उम्र में कमाना चालू कर दिया। तो उस तरह से,
0: पर उस समय वो छोटा अमाउंट भी बहुत वैल्यूबल होता होगा ना,
1: बड़ा था फिर भी उस टाइम के हिसाब से नहीं बोलते, इतना बच्चे को आनंद आएगा, 1 रुपया भी कमाया तो उसको लगेगा और देखो मैंने कमा लिया। तो उस तरह से मेरा ट्रेनिंग बोले ना चालू हो गया, और वो करते करते करते हमने आगे करते, हमने, मैंने 20 साल की, 18 साल में मैं हमारा बिजनेस में लग गया जो चालू बिजनेस था। फिर 20 साल की उम्र में बिजनेस, मेरे चाचा को रिटायर होना था तो हमने टेक ओवर किया। हमारी दुकान थी बहुत ही अच्छा एरिया में, और नामना भी मेरे फादर वगैरह में बहुत अच्छी नामना रखी थी, और हमारे सारे जो वहाँ जो कम्युनिटी वहाँ सेटल हुए थे वो उस टाइम के भारत की वैल्यूज लेकर आए थे कि हर चीज खानदानी से करनी है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, दाम भी लगाना है तो रिजनेबल लगाने का है, उस तरह से प्यार से सबसे बात करने है, लेवे के नहीं लेवे कोई। कोई करने, लेकिन अच्छी तरह से तो वापस तो आएगा ही, अच्छी तरह से किया हुआ है। तो इस तरह से हमने एक बाजू वो किया, दूसरी साइड हमने क्या किया जैसा ब्रह्मा कुमारी में करते है कि जो छोटे छोटे और बच्चे थे उसको हम वही अखाड़े में ले जाते, फिर हम उसको सिखाते थे चीजें। तो मेरा 20 साल, ये 17 साल में दुकान में लग गया, 20 साल में हमने दुकान लिया। उसके बाद हमने, मैंने 25 साल की उम्र में हमने इंग्लैंड की एक, जो अंग्रेज लोग होते हैं आपको इंग्लैंड बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ की एक कंपनी के साथ मेरी इतनी अच्छी मित्रता हो गई थी, वो भी बिकॉज वो लोग मेरे चरित्र, मेरे कैरेक्टर और सबको एडमायर करते, जिस तरह से ब्रह्मा कुमारी में मैं एडमायर करता हूँ, जिसको भी मिलते मेहनत करते, पैसा वैसा का कुछ सोचते नहीं और अच्छी तरह से सेवा करते रहते, और बहुत ही बड़ी और ट्रेनिंग उसको अपने आप मिल जाती है ब्रह्मा कुमारी में। उसी तरह से मेरे को सारी ट्रेनिंग मिली, तो 25 की एज में हमने ये फैक्ट्री का प्लान किया। तो उस लोग ने मेरे को बोला कि रमेश तुम्हारे देश में भी प्रदेश की चीजें तो बंद करने वाले है, तो तुम क्या करोगे? बोलो फैक्ट्री का सोच रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्या करूँ। तो उसने बोला रमेश तू फिक्र मत कर, मेरी फैक्ट्री में आ जा, जो भी देखना है जो भी सीखना है कर ले, यही चालू कर दे, हमको कुछ तेरे से नहीं चाहिए, बस तू चालू कर दे किनिया में। और नाम भी मेरी फैक्ट्री का अफ्रोलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके रखा था, और उसी लोगों ने जो उस टाइम के करोड़पति थे, आज के वो जो मकान में रहते थे, मेरे को घर पे बुलाते थे, तो मेरे को लगता था जैसा बुद्ध फार्म ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाएंगे और समझ लो के पेरेंट्स छोटा से काम करते है, छोटे से घर में रहते है, तो उसका बच्चों को लगेगा मैं तो महल में गया हूँ। तो उस तरह से हमको भी ऐसा लगता था उनके घर पे जाकर। तो उन्होंने तो बच्चे जैसा ही बुलाया मेरे को, अच्छी तरह से क्या, और कंपनी का नाम भी उसने बोला अभी क्या रखोगे तुम? तो हमने सोचा फिर अफ्रोलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके नाम निकाला, और विद इन हम बिजनेस चालू करने के 3-4 साल में बेस्ट लेडीज हैंडबैग, सूटकेसेस, सब चीज, घूमने फिरने का सामान और सब कुछ वहाँ बनाने लगे। और हमारी क्वालिटी थी ने वो इंग्लैंड के साथ कंपेरेटिव क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी हम बनाते थे। और हम जाम्बिया, नैरोबी केन्या में, और हम जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अफ्रीका में बहुत से देशों में एडन एक्सपोर्ट भी करते थे मेरे माल, इतने तक मेरा माल अच्छा बन रहा था।
0: और प्रेरणादायी आपकी ये जो यात्रा है, क्योंकि कम उम्र में भी इतनी प्रकार की बुद्धि चला कर, और मैं समझता हूँ कि माता पिता का आपका बहुत ही अच्छा योगदान रहा, जहाँ पर आपको छोटे स्तर से ऊपर कैसे जाना है उस बारे में भी आपको सिखाया, और साथ साथ आपके समाज का भी आसपास के योगदान रहा आपको आइडियाज के बारे में देने के लिए और भी अन्य प्रकार से। तो इस प्रकार के सहयोग से आप आगे बढ़ते रहे, तो इसमें चुनौतियाँ भी जरूर कुछ आती होंगी।
1: चुनौतियाँ वहाँ जो अफ्रीका के देश में रहते थे ना, वहाँ चुनौतियाँ वो लोग जो जिसको आप हब्सी बोलेंगे गुजराती में, ब्लैक लोग उधर के होते थे, तो वो लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके साथ साथ आज़ादी मिलने के बाद उनको क्या, उनको ऐसा था कि हमारा ये देश है तो हम सबको ऐसा था कि हम सबको तो इधर से निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग उधर कम्युनिटी के हिसाब से गिनाई जाए, इंडियंस को एक ग्रुप है, अफ्रीकन जो मेजोरिटी वहाँ के लोग, आज वहाँ की पॉपुलेशन है 6 करोड़, तो वो और देश की साइज है जितना राजस्थान या गुजरात है वही साइज का देश है। तो ये लोग को ये होता था कि ये सबको निकाल के हम सब कुछ ले लेंगे, तो ये हमको डर बहुत वहाँ रहती थी, उसलिए हमने इंडस्ट्री वगैरह डाला था। और उसके साथ साथ वहाँ हर जगह चोरियों की डर बहुत रहती थी, कहाँ भी घर पे आकर लुट जाएंगे, रास्ते में लुट जाएंगे, फैक्ट्री में आकर लुट जाएंगे, बंदूक लेकर आकर लुट जाएंगे, घरों में भी बंदूक लेकर आ जाएंगे, या तो बड़े छरे लेकर आ जाएंगे, और काफी लोगों का इससे लगता भी था और थोड़े थोड़े का मृत्यु भी हो जाता था, वो हमको सबसे बड़ी डर लगती थी। लेकिन हुआ क्या कि जैसा ब्रह्मा कुमारी इसमें बोलते हैं कि बाबा मेरे साथ है, और बस वो है तो क्या फिक्र, मैं जो हिम्मत से चलते रहते थे, और हम सोचते थे ये तो इंग्लैंड में भी होता है, अमेरिका में, हर जगह होती है चीजें, तो यहाँ होती है। तो उस तरह से हम ये चुनौतियों को पास करते जाते थे। और दूसरी चुनौतियाँ सबसे बड़ी, जैसे हमने बिजनेस चालू किया, तो मैंने सोचा कि अभी हम ये बिजनेस तो चालू किया तो सबसे पहले बैंक फैसिलिटी का जरूर होता है। तो ये बैंक फैसिलिटी का क्या हुआ कि हमने एक बैंक के साथ हमारा फैसिलिटी 1 लाख रुपये का, जो आज का बोलेगे 1 करोड़, उसका फैसिलिटी कराया। तो हुआ क्या कि उनका मैनेजर चेंज हुआ, तो नया मैनेजर ने उसका एक स्टाफ को उसके ऊपर इंजाम लगाया कि तुम ये कस्टमर को फेवर करते हैं। तो मैंने बोला वो फेवर कुछ नहीं किया है, सब कुछ बैंक के रूल पे किया है। और मैंने बोला आपके स्टाफ को भी ऐसा नहीं बोल सकते। मैं छोटा था तब से किसी के पर भी, जैसा ब्रह्मा कुमारीज में एवरेज लोग बहुत आते हैं, तो वहाँ जो कोई आएगा उसी की कोई मजाक करेगा ना, तो वो मैं नहीं लूंगा। जो हम बहुत आगे थे पैसे वाइज हर जगह, लेकिन वो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा भले कितने भी बड़े हैं वो, और मैं चैलेंज भी करूंगा। तो इस तरह से इसको किया। तो बैंक मैनेजर ने बोला, तो मैं वहां से थोड़ा नाराज होकर बाहर निकला। तो जैसा हम ब्रह्मा कुमार इसमें जाते हैं तो बहुत इधर अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं, ऊपर वाले हैं, पैसा वाले, वो भी आते रहते, हम तो बच्चे होते। तो ऐसे एक भाई मनिकलाल रुगाने करके वो निकले, तो मैं लोगों को बोला रमेश तू यहाँ बैंक से निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम है तेरा, मुंह पे दिखाता है, तू थोड़ा रखता है नाराज। तो बोला ये बैंक मैनेजर बहुत ये, तो बोलता है तेरे को कितना देते है? मतलब 1 लाख का ओवरड्राफ्ट देते। बोलते चल मेरे साथ। वो मेरे को ले गए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वहाँ की बहुत बड़ी बैंक में, और उसका मैनेजर को मिलाया और उसको बोला कि रमेश आज से 5 लाख की, आज का 5 करोड़ ले लो, आज से 5 लाख की फैसिलिटी दे दो। क्योंकि वो खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो भी अखाड़े में आने वाले ही थे। तो उसने बोला इसको 5 लाख की फैसिलिटी दे दो आज से ही, और मेरी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कोई फिक्र नहीं तुमको, वो पहले बता दिया होगा मैनेजर के सामने। तो बोला इसको दे ही दो। तो ये मेरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ था। और मैनेजर ने बोला कि तू का फॉर्म फिल कर ले, तेरा कर ले। और जो हमारी एक प्रॉपर्टी थी जो लाख के सामने रखी थी, वो बोलते उसी प्रॉपर्टी तुम ट्रांसफर करवा लेना, बट उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है, बस तुम कल से तुम्हारा ये पैसा चालू कर दो, यूज करना। बिकॉज हम जरूरियात के मुताबिक करते थे, क्योंकि हम जो गुजराती कम्युनिटी में आते हैं तो वहाँ ये चीज बिजनेस में आगे क्यों आते है कि हम संभाल के पैसा को रखते है, थोड़ा आया तो ऐसा ही खर्च करने में नहीं डाल देंगे, थोड़ा रखेंगे मकान लेने के लिए और रखने के बिजनेस के लिए रखेंगे, और थोड़ा सा जो स्पेंड करने है उसमें करेंगे। और मेरा पहले से हुआ था कि जो भी कमाते हैं ना उसमें 5-10% कहाँ भी, जैसा ब्रह्मा कुमारी इसमें बाबा के बॉक्स में भंडारे में डालते है, मंदिर में डालते है, कोई बच्चे को पढ़ाने का, किसी अपने से बेचारा कमजोर है उसको हेल्प करने का। तो उस तरह से हम पहले से ही ये सोच रखी थी कि कम से कम 5% 5% जो भी कमाते उसमें से उसी में डालने का है, और हमने लाइफ टाइम में वो चालू ही रखा। और उससे हमको सुकून मिला, शांति मिली। हम उसके लिए नहीं करते थे, हम सिर्फ अपने को अच्छा लगता था उस लिए करते थे। फिर ब्रह्मा कुमारी से जाने के बाद पता लगा कि जो हम कर रहे हैं तो अच्छी चीज है।
0: तो आपकी इस यात्रा से मैं समझता हूँ हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं तो बहुत इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, कैसे एक शून्य से आरंभ करके धीरे धीरे धीरे धीरे उसको प्रगति करना है, और इस प्रगति करने के लिए कौन से जो जीवन के सूत्र हैं, चाहे वो सेविंग्स के बारे में आप बता रहे हैं, चाहे लोगों से पार्टनरशिप के बारे में बता रहे हैं, लोगों से सहायता लेने की बात बता रहे हैं, या फिर अपने माता पिता से जो सीख मिली उसके बारे में बता रहे हैं। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। और सलाम ज़िंदगी इस प्लेटफॉर्म से आज हम आपके माता पिता को भी यहाँ से सलाम करते हैं, क्योंकि आपकी वर्तमान ज़िंदगी में उनका जो योगदान उन्होंने दिया है आपके बाल्यकाल में और युवा काल में, उसके फलस्वरूप उन शिक्षाओं के आधार पर आपने इतनी प्रगति कर पाए। और भी बातें करेंगे और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर आपने जीवन के मूल्यों को कैसे संजोया, परिवार के मूल्यों को कैसे संजोया, अपने बच्चों को कैसे अपने जैसा बनाने के लिए आगे सफल बनाया, इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी, हमारे साथ बने हुए हैं रमेश चंद्र शाह जी, और बहुत ही अपने जीवन से अमूल्य अनुभवों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अभी समय हो रहा है एक ब्रेक का, आप सुनिए ये प्यारा सा गीत। हम फिर लौट कर आएंगे रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

0: सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का फिर से स्वागत है। और आज रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं रमेश चंद्र शाह जी। आप नैरोबी केन्या से हैं, 1945 में आपका जन्म हुआ और आपने अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की हैं, जिसमें अकाउंटेंसी, इंग्लिश लॉ, इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट प्लास्टिक में और भी अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की। तो उनसे बातचीत करते हुए हमने उनके बाल्यकाल और जो युवा काल है उसके बारे में बातचीत की, उनके जो कर्ममय जीवन है उसके बारे में बातचीत की। अभी आगे चलते हैं दोस्तों और उनका फिर से स्वागत करते हुए सर आपसे अब मैं जानना चाहूँगा हमारे श्रोताओं की ओर से कि आपने जो अपने कार्यमय जीवन प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर तो अलग अलग प्रकार की सफलताएँ प्राप्त की, जो अपना पारिवारिक जीवन है जैसे मैंने आपसे पूछा था तो तीन भाई थे आप और आपका एक बहन थी, लेकिन आपके कितनी संतान थी और उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे?
1: शुक्रिया आपका। अभी जो फैमिली का है, मेरा जैसा मैं आपको रिपीट करता रहता हूँ, ब्रह्मा कुमारी एक्चुअली ब्रह्मा कुमार से जो हमको ज्ञान, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सब कुछ करने का जो सीखते हेल्प करते करते, बाबा को तो याद करेंगे लेकिन हेल्प करते करते जो सीख जाते हैं ना, वो मेरे को मेरे अखाड़े वगैरह ग्रुप से जो सीखा था तो उसमें मेरा ऐसा बोलो ना कि 10-12 साल में ही फादर का रोल जैसा आ गया था कि मेरी छोटी बहन थी मेरे से 2 साल कम, मैं 10, उसकी 8 थी और छोटा भाई 2 साल का था। उसको तो मेरे फादर का याद भी नहीं कुछ होएगा, लेकिन हुआ क्या कि ये मैं ये जैसा एग्जाम्पल मैं कंपेयर करने के लिए दे रहा हूँ कि जो ब्रह्मा कुमारी में मैंने देखा हुआ है यहाँ के डेंसिंग करते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, तो 10-12-14 साल के बच्चे इतना बढ़िया चीज़ें करते हैं तो हम सोचने लगते हैं सीखे कैसे, लेकिन उसको सिखाने वाले बड़े बड़े जो ब्रह्मा कुमारी वाले और टीचर्स होते हैं सब होते हैं, उससे उनको इंस्पिरेशन मिलता है और सिखाएंगे कराएंगे। मैंने देखा इधर रंगोली भी जो बनाते हैं आप हैरान हो जाएंगे, और बनाने वाले कोई दफ़ा तो 12-14 साल के होते हैं। तो यहाँ इसी के तरह से मेरा जो अखाड़ा का था ग्रुप्स थे, तो वो ग्रुप में से मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना आ गया था, मेरा बड़ा भाई था वो मेरे से 2 साल बड़ा था, उसका ग्रुप जो आज के ज़माने के ग्रुप होते हैं कि कोई भी मिलेगा चलो घूमने, क्या पढ़िए घर का, क्या पढ़िए माँ बाप का, चलो हम मज़ा करते, उसका उस टाइप का ग्रुप था। तो उस ग्रुप में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता था, तो मैंने प्यार से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मेरा छोटा भाई को हाथ पकड़ के, हमारा उस जमाने में रेलवे स्टेशन बड़ी जगह गिनाई जाती थी जैसा भारत में भी ये जो जमाना था तो अबू रोड तो एक एक दुनिया का देखने की जगह गिनाई जाती थी, इधर का डोम बना है उस जमाने में, आप सोचो ऐसे डोम कहाँ होएगे, तो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम अबू रोड स्टेशन देखा ये तो कोई तीर्थरण पर आ गए। तो इस तरह से मैं मेरे भाई को ले जाता था, मेरी बहन को ले जाता था, और हमको इन्हें रोज का 10 पैसा मिलता था स्पेंड करने के लिए, तो 10 पैसा मैं इकट्ठा करके मेरे भाई बहन के लिए आइसक्रीम ले जाऊंगा, कुछ ना कुछ ले जाऊंगा। मेरे को नहीं याद है 16-18 के साल तक मैंने आइसक्रीम कभी चखा था, और मेरे को उसका कोई ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई उनके लिए कुछ कर रहा हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा बन गया था। जैसा मैं रिपीट बोलता हूँ, ब्रह्मा कुमारी में भी जो लोग आते हैं ना उसका सेवा का नेचर बनता है, मतलब पब्लिक की तो सेवा करेंगे लेकिन अपनी फैमिली की भी उतनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने छोटे भाई बहन, अपने चाचा के लड़के, मामा के लड़के, जो भी बोल दो। जैसा मेरी फैमिली में 10 बच्चे थे, मेरी बहन के 3 बच्चे, मेरे बड़े भाई के 3 बच्चे, मेरी 2 बच्चियाँ और मेरे छोटे भाई का 2 बच्चे, तो ये सबको 10-10 को मैं जहाँ भी हम जावे, और अच्छी मेरा एडवांटेज क्या था कि शादी के बाद मेरे को युगल बहुत अच्छे मिले थे, उनके भी संस्कार जैसा ब्रह्मा कुमारी में होते हैं उसी टाइप के संस्कार थे, बहुत धार्मिक थे वगैरह, तो उन्होंने कभी भी मेरे को ये नहीं बोला कि ये क्यों अपने साथ आ रहे, खाने के टाइम पर आ गए बैठ गए क्यों हो गया, जो आज के ज़माने में तो कोई एक भी कोई आ गया तो उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत लोगों को मुश्किल होता है, बहुत लोगों की बीबी को भी मुश्किल होता है।
0: कौन सी वैल्यूज है जो बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को अकेले रहने की आदत पड़ती जा रही है, यहाँ तक कि माँ बाप और बच्चे भी अलग अलग, उनके कमरे अलग और कई बार तो मकान भी अलग कर लेते हैं कि नहीं हमको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, अलग से हमको रहना है, तो आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं और इसको देखते हैं, तो कौन सी वैल्यूज अगर आती हैं तो इन सब चीज़ों को धारण करना आसान हो जाता है?
1: देखो, मेरे हिसाब से सबसे बिगिनिंग में वैल्यू ये है कि मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेरे को एक्सरसाइज करना चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अभी बॉडी का तो हो गया, माइंड के लिए कोई ब्रह्मा कुमारी जैसी जगह पे जाकर वो सीखना पड़ता है कि अपने को अच्छे विचार आवे, अच्छी सोच मिले, तो ये उससे मेरी वैल्यूज डेवलप होती है। तो मेरे में ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया था। नंबर वन, अब मेरा प्रेम मेरे माँ बाप के लिए, मेरे सब आजू बाजू में है वो सब के लिए मेरा प्रेम भाव, जो भी हमारे फड़िए में खेलते थे सब बच्चों बोते थे, अभी भी मेरे को 70 साल की एज में याद कराते हैं कि मैंने लेसन नहीं किया था, मैं 7 बजे तैयार हो जाता था, तो लेसन करने के लिए दौड़ के आते थे, जल्दी जल्दी करा दो मैं स्कूल में जाऊंगा अदरवाइज मार पड़ेगी उस जमाने में। तो अभी भी मेरे को एक मिला होता है, तो बोलते आप कितने मेरे को कर रहे थे उस जमाने में। तो वो वैल्यू है सभी को हेल्प करने की वैल्यू। सबको पहले तो मेरे खुद का मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मेरे खुद का दिमाग अच्छा होना चाहिए, मेरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मेरा खान पीन अच्छा होना चाहिए, मेरे संबंध दोस्त और वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए। उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि मैं यहाँ अबू में शिमनी होम जो ग्लोबल हॉस्पिटल के नीचे वहाँ रहता हूँ, तो वहाँ जो लोग हैं ना वो लोग ब्रह्मा कुमारी में रिटायर्ड लोग आए, तो सबका हैबिट अच्छे है, किसी का कोई खराब हैबिट नहीं, ये वो नहीं, वो अपने आप आ गया हुआ है, कोई भी बना कर नहीं आते। हैबिट तो मेरा होएगा जिसके साथ रहते हैं, जो एटमोसफियर में रहते हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंस होती है ना वो इस टाइप की। तो मेरे हिसाब से होनेस्टी मतलब ईमानदारी, और जो भी हम करते हैं, किसी को हमने प्रोमिस किया कि मैं कल तक आपको ये करके दूंगा तो करके ही दूंगा, नहीं हो सकता है तो मैं बोलूंगा मैं 4 दिन के बाद करके दूंगा। किसी का भी काम है, किसी को झाड़ू भी लगाना है, किसी को कुछ रिपेयर करना है, किसी को कुछ ले आकर दुकान में लेकर देने का है, किसी को पहुंचाने का है, कुछ भी है, हर जगह डिसिप्लिन के मैंने जो टाइम दिया वो मैं रखूंगा ही। अगर बहुत ऐसी सरकमस्टेंस होगी तो उसको बता दूंगा कि सॉरी मेरे को ये आ गया है तो मैं उसके बाद करूंगा। जैसा लेसन करना है तो लेसन लास्ट मोमेंट पर नहीं, पहले से कर लेने का, वो डिसिप्लिन है। और दूसरा डिसिप्लिन यह है अपने माँ बाप का प्यार और अप्रिसिएशन कि देख आपने मेरे लिए कितना कर रहे, भले मेरी उम्र 5 साल की है, 10 साल की है, 80 साल की है, माँ बाप को कभी नहीं भूलना, और उसके सिवा अपने गुरुओं को, अपने टीचरों को, जहाँ भी हमको किसी ने कुछ सिखाया है कभी भी उसको नहीं भूलो। और उसको मैं हर रोज याद करता हूँ, मैंने पहले रिफर किया है ये, हम उसको दवे जी बोलते थे, भूपेंद्र दवे जी, अभी भी उसकी लड़कियों के साथ, उसके बच्चे लड़के के साथ अभी भी मेरा इतना संबंध है, वो तो मेरे से कंपेरेटिव छोटे है, अभी भी वही संबंध है। और अभी भी वो लोग मेरे को बोलते है, मेरे पिताजी को, वो तो मेरे गुरु थे लेकिन वो मेरे को बहुत याद करते थे, बोलते चेला कैसा निकला, हमने जो बोला उसने तो 50 गुना जास्ती करके दिखा दिया। तो उस तरह से होनेस्टी, इंटेग्रिटी और उसके साथ साथ मेडिटेशन भी बहुत ही जरूरी चीज है। लोगों को लगता है मेडिटेशन बोलते हैं तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन का याद कर, वो नहीं है, वो लोग अपना समय दे रहे है, अपनी लाइफ दे रहे हमारा ब्रेन को अच्छा रखने के लिए। और आपका कंप्यूटर का CPU अच्छा हो गया तो ही कंप्यूटर चलेगा, वो नहीं होएगा तो आपका कंप्यूटर में भी गार्बेज ही आएगा। दूसरा, मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो आपके मन में विचार जो रखे, अच्छे विचार डालते जाएंगे तो अच्छा विचार बाहर आएगा। बहुत लगा लोग बोलते हैं मैं कोई भी गंदे विचारों लोग के साथ घूम सकता हूँ, कर सकता हूँ और मैं अच्छा रहूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते है गार्बेज इन, मतलब कचरा कंप्यूटर के CPU में डाला तो कचरा ही कंप्यूटर से बाहर आएगा, अच्छा इन्फॉर्मेशन डाला तो वो एकदम कैलकुलेट करके आपका 100 गुना अच्छी चीज बाहर निकालेगी। उसी तरह से अपने ब्रेन में अच्छे फीलिंग्स, अच्छी वैल्यूज, वैल्यूज मतलब सिंपल वैल्यूज है, होनेस्टी, इंटेग्रिटी, और मैं सबसे बड़ी वैल्यू गिनता हूँ सभी को मदद करने का, सभी को मदद करने का, आपके बच्चे, भाई के बच्चे और पड़ोस के बच्चे, समझ लो उसको उसके माँ बाप से इतना प्यार नहीं मिल रहा है। हम ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत ही अच्छा वर्ड बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी, मैं तो हर जगह जाता हूँ, स्वामीनारायण में बात तो हम जैन में है, हम साई बाबा वाले ग्रुप है, मैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ में मेरे मेन रहने का लास्ट 25 साल से था, तो वहाँ और इंग्लैंड में भी हमारा फुल राइट्स है, वहाँ भी काफी मैं रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि जो भी बहुत दफा किसी को अपने माँ बाप से जो चाहिए उस टाइप का नहीं मिलता है, क्योंकि माँ बाप खुद भी उनको खुद चांस नहीं मिला है वो पढ़ने का सीखने का, तो बच्चों को कैसा करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया में तो नॉर्मल है, किसी को बच्चा आएगा उसको ये भी नहीं पता कैसा उसको हाथ में उठाएंगे, और तो बात जाने दो दूध कैसा पिलाएगा वो भी नहीं पता होता है। उधर गवर्नमेंट बच्चे आने के बाद सब कॉफी में माता ये सब मिले और कॉफी का पैसा गवर्नमेंट देती है, वो बोलेगी ये हम देंगे लेकिन आप सीखो एक दूसरे से। यहाँ तो हम हिंदुस्तान में इतने लकी है कि हम मिलेंगे, और मीडियम मिलने का कहाँ है कि जैसा मैंने बोला कि जो भी सोसाइटी में जो भी जगह जाते हैं वो मीडियम है मिलने का। तो ये वैल्यू अपने में कि सेवा करने का, हम करेंगे तो सामने से आएगा, जैसा हम ब्रह्मा कुमारी में बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं वगैरह करते हैं, लेकिन वो करने से हमारे शरीर में तंदुरुस्ती आती है, अच्छे विचार आते हैं, और किसी को भी मदद की जरूरत है तो हम खड़े ही रहेंगे, हम सोचेंगे नहीं ये गिर गया है तो ओ मेरा काम नहीं है, आजकल तो कोई गिरा है कोई बाजू में भी नहीं जाएगा, लेकिन जो ऐसी धार्मिक वृत्ति रखता है वो दौड़ कर जाएगा कि कल मेरा भाई होता तो, कल मेरा चाचा होता तो उसी तरह से हम वैल्यूज रखते हैं।
0: देखिए कितनी अनुभव की जो बातें होती हैं वो हमको तो खुद को वैल्यूबल है बता साबित करती हैं, लेकिन जो सुनता है उन अनुभवों से अगर सीखने का प्रयास करता है तो ये और भी बहुत सारे लोगों के जीवन को वैल्यूबल बना देता है। ऐसी ही कुछ बातें हमारे सामने निकल के आ रही हैं जब हमारे साथ में हैं रमेश चंद्र शाह जी, और उन्होंने अपने जीवन के पारिवारिक जीवन और उनके सगे संबंधियों के साथ किस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़े, कौन कौन सी वैल्यूज़ महत्वपूर्ण हैं कि एक परिवार को जॉइंट फैमिली बना के रखने में सहायक होती हैं, और अपने खुद के व्यक्तित्व को मन को और तन को स्वस्थ बनाने के लिए भी क्या आवश्यक है, ये सारी बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, एक गीत सुनते हैं और गीत सुनकर फिर वापस आएंगे कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में, जहाँ पर हमारी फिर बात होगी रमेश चंद्र शाह जी से, और हम जानने का प्रयास करेंगे वह जीवन के इस पड़ाव पर जहाँ पर उनकी उम्र करीब 79 ईयर है, कैसे वो अपने को तन और मन से स्वस्थ रखते हैं, किस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: प्रभु।
1: नमस्कार, 107.8 FM सुन रहे हैं आप और हमारे साथ बने हुए हैं रमेश चंद्र शाह जी। दोस्तों, सलामी जिंदगी के इस कार्यक्रम में जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं हमारे अनुभवी व्यक्तित्व से, आज के इस अनुभव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी सारे अनुभव हमारे सामने आए, अलग अलग देशों के साथ उनके संबंध, उनकी यात्रा, उनका जन्म। और आइए इसको आगे ले चलते हैं और फिर मुखातिब होते हैं रमेश चंद्र जी से। रमेश जी, जो अंतिम पड़ाव है इस कार्यक्रम का, इसमें हम आप जानना चाहेंगे आपके वर्तमान जीवन के बारे में, क्योंकि जब हम देखते हैं कि समाज में हमारे बुजुर्गों को कई बार कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, कई बार धन के बारे में होती है, और कई बार परिवार के अंदर पारिवारिक चुनौतियाँ भी होती हैं जो संबंधों के आधार पर होती हैं। तो जो आपकी जो ये जीवन यात्रा रही है, इतनी अच्छी आवाज़, बुलंद आवाज़ में आपने हमारे सभी साथियों को अपने अनुभवों को सुनाया, तो हमारे साथी भी अनुभव कर रहे होंगे कि श्रेष्ठ जीवन आपने अपना चुना है और इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ पुरुषार्थ किया होगा। कई सारे युवा साथी भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो अगर उनको ये पता चले कि बुजुर्ग होने से पहले हमारे जीवन को हमें कैसे गढ़ना है, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि कैसे हम हमारे जीवन को बुजुर्ग होने के, और जब हम जाते हैं तो हमारी जीवन यात्रा में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए, आप क्या करते हैं?
2: नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ, ये जो अभी आपने पूछा वो चीज़ इतनी महत्व की है कि हमारे बुजुर्ग उम्र तो आ गई, लेकिन उसके पहले क्या प्लानिंग करना है। अभी मैं मेरा ही एग्जाम्पल दूंगा आगे, जब मैं 40 साल तक मैंने इतना प्रोग्रेस कर लिया था मटेरियली, के रहने का मकान ले लो, कार ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जो भी चीज़ है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना, तो मैं सोचता था कि ओ ये तो अभी दुनिया का सब कुछ कर लिया और तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस अभी तो जिंदगी ऐसे ही जीने की है। और हुआ क्या कि ऐसे ऐसे जैसा हम सब बोलते हैं कि अपने किस्मत में जो लिखी हुई चीज़ है वो बुलानी नहीं पड़ती, अपने आप ही आ जाती है। तो उसके लिए जब 40 हुआ तो मैंने बोला हो गया होएगा, तो 40 में मैंने बोला आगे समस्या तो नहीं होएगी, 40 में आगे वाली समस्या हो तो आकर खड़ी रह जाती है, रह गई मेरे में भी, 50 हुआ और समस्याओं खड़ी रहकर आ गई, 60 हुआ और समस्याओं। आप सोचेंगे पैसा का तो कोई तकलीफ नहीं, जो हम सब सोचते हैं यंग उम्र में कि पैसा मिल गया, घर मिल गया, कार मिल गई, समझ लो अच्छा जॉब या बिजनेस है तो और क्या। तो उसमें ऐसी ऐसी समस्या आती है कि जिसमें वो कोई चीज भी काम नहीं आएगी। तो ये मैंने देखा है कि पहले तो इकोनॉमिक, मतलब अपना प्लानिंग क्या करने का होता है, कि जैसा ऑस्ट्रेलिया में ये नॉर्मल होता है, मेरी बड़ी बेटी अंजलि उसको सीनियर फाइनेंशियल प्लानर थी, बड़ी सबसे बड़ी बैंक में वहाँ, तो वहाँ क्या करते हैं 25-30-35 साल में प्लान करने लगते हैं कि अभी मैं जब बड़ा होऊंगा तो मेरे को कितने पैसे की जरूरत होगी, मेरा क्या क्या कमिटमेंट होएगा, बच्चों ने तो पढ़ लिया होगा, वो तो अपने अपने काम पे लग गए, उसके सिवा मेरा क्या जरूर होएगा, हेल्थ का क्या होएगा। और हेल्थ में हम सोचेंगे बॉडी का, सोचेंगे कि बॉडी की हेल्थ का क्या होएगा, ये सारा करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे महत्व का है कि जब मेरा प्रगति होता है ना, तो हमको लगता है कि वो किसी की जरूरत नहीं, अपने पास कोई आया बोलता है कुछ बोलेगा मैं तेरे को दिमाग का, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले कोई आएंगे, मेरे को मेरा भी हुआ था, मेरे को 40 की उम्र ब्रह्मा कुमारी नैरोबी सेंटर वाले में तो आते जा, मैंने बोला बूढ़े हो गए तब आएंगे, अभी क्या जरूर है, अभी तो हमको मजा करने दो। मजा मतलब मैंने कुछ भी और नहीं किया, मजा मतलब चाय पियो और करो, लेकिन मैंने बोला मेडिटेशन वगैरह में 6 बजे उठकर क्या टाइम वेस्ट करना है। तो इस तरह से मैं भी हंसने लगा था, लेकिन मैंने देखा कि अपना प्लानिंग अब पहले से बॉडी का, दिमाग का, और अपने जब मैं बोलूँगा पैसों में, उसमें सब कुछ आ गया, घर आ गया, सब कुछ आ गया, कि सबसे पहले पैसा वगैरह जो कलेक्ट करते अपने खुद के नाम पर रखने का है, किसी के भी, जो सब भाग्य लेकर आए, बच्चे भी भाग्य लेकर आए, और उसका भाग्य के हिसाब से जो बनेंगे करेंगे। और मेरा तजुर्बा है हम किसी का भाग्य नहीं खरीद सकते, दे भी नहीं सकते, कितना भी पैसा दे दो आपको भाग्य नहीं बना सकेंगे, भाग्य बना सकेंगे मेरे अनुभव में भगवान के साथ कनेक्शन करके, क्योंकि वो अपने को, जब भी अपने को तबीयत बिगड़ जाएगी, लाइफ में एक्सीडेंट होएंगे, जिसके साथ हमको प्यार है उसका एक्सीडेंट, जरा मेरा केस में 7-8 साल पहले मेरे वाइफ तो चल बसे, लेकिन उसके बाद मेरी 40 साल की प्रोफेशनल लड़की सीनियर फाइनेंशियल प्लानर थी, टॉप पोस्ट में थी, बहुत ही अच्छी तरह से हमारी इस वैल्यू में चलने वाली थी, वो भी चल बसी 40 साल की उम्र में। तो उस तरह से इसी चीजें लाइफ में
1: क्राइसिस
2: आती रहेगी, तो ये जब आएगी तो अगर हमने मेंटली अपना डेवलपमेंट नहीं किया, जो मेंटल डेवलपमेंट जैसा कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, एक सिर्फ समझ लोगे ब्रह्मा कुमारीज में स्पिरिचुअल मतलब सब दिमाग की रिलेटेड है। अब भगवान को याद करेंगे, फिर वो करेंगे, तो हम माइंड को क्लियर करते रहते और अच्छी अच्छी सोच आती है कि आगे क्या हो सकता है, उसकी विजन देख सकते हैं। अदरवाइज अपने झंझट में विजन नहीं देख सकेंगे। और दूसरा मैंने देखा है, जैसा हम 50 के हुए, बच्चे बड़े हुए, तो बच्चों का प्रॉब्लम चालू हो गया, फिर वो झंझट में, फिर उसके बच्चों के प्रॉब्लम वो झंझट में, तो उसमें से फिर तो जास्ती हमारी लाइफ से भी जास्ती बिजी हो जाएगी। और जब बड़ी उम्र होती है, समझ लो 60-65 की रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट में क्या होएगा कि बच्चे, वो ऑस्ट्रेलिया में ये नॉर्मल है, बच्चे है वो बोलेगा आप जाकर ये कर लो, आप जब हिंदुस्तान से भी पेरेंट्स को बुलाते बोलेंगे घर साफ सुफ कर लेना, ये सारा क्लीन कर लेना, बच्चों को स्कूल पे छोड़ाना, ये करना जो उसकी जवाबदारी है। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, वो सारी जवाबदारी ढोड़ देंगे अपने पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स को प्यार है बच्चे से, तो वो सब कुछ करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि उसकी खुद की हेल्थ बिगड़ने लगेगी, क्योंकि उम्र में वो बच्चे बड़े करने की उम्र नहीं है उनकी, उसकी बैक दिखने लगेगी और हर तरह से प्रॉब्लम होएगी। फाइनेंशियली क्या करेंगे, उसको लगेगा बच्चे अच्छे, सब कुछ उसके नाम पे कर दो। ऑस्ट्रेलिया में काफी केसेस अपने हिंदुस्तानियों का भी हुआ है, उधर बच्चों के नाम पे सब कुछ कर दो, सब कुछ दे दो, हम तो इधर रहने वाले हैं, थोड़ी देर होएगी, वो लोग को पता है थोड़े बच्चे हुए, अब की इसको जरूरी नहीं है, तो उसको डस्टबिन बोलते उधर बड़े वाले को, डस्टबिन मतलब कचरा पेटी, इंग्लैंड में तो नाम ही है कचरा पेटी, तो कचरा पेटी हो गए, उसके लिए कोई जरूरी है, मैं नहीं बोलता हूँ सबका है, लेकिन थोड़े थोड़े लोगों का होता है,
1: ये ध्यान रखने की आवश्यकता है।
2: हाँ, और ध्यान रखने की आवश्यकता है, और साथ ये नहीं सोच मेरा ऐसा नहीं होएगा, जो भी बोलता है ना, सब मेरे को कोई मिलता है, मैं बोलता हूँ कार अच्छी तरह से चलाओ, बोलते मेरी कभी एक्सीडेंट नहीं हो, मैं बोलता हूँ सीट बेल्ट पहनो, मोबाइल फोन यूज नहीं करो, अच्छी तरह से चलाओ, मेरा कब नहीं हुआ, लेकिन ए फर्स्ट टाइम ही एक्सीडेंट हुआ, मरने भी वाले फर्स्ट टाइम ही, तो एक्सीडेंट भी सबका फर्स्ट टाइम ही होता है, तो ये सोचने मत रखना मेरा नहीं होगा,
1: नियम से चलाना।
2: हाँ, नियम से चलाओ और सोचो कि मेरा भी होगा तो मैं तैयारी कैसा करूँ। आपका पैसा आपके अकाउंट में FD में जो रखना है रखो, किसी के भी नाम के मरने तक नहीं करने का, और जो चैरिटी का है वो भी साइड साइड भी करते जाओ। तो हम अभी आपके साथ वापस टाइम मिलेगा, सब शेयर करेंगे, लेकिन अभी मेरे को बहुत आनंद हुआ आप लोगों के साथ शेयर करा, और कुछ भी आपको इसमें से काम आया तो मैं बहुत खुश होऊंगा।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, और जीवन ही आपका सलाम करने लायक है, जहाँ इसलिए हम कार्यक्रम सलाम है जिंदगी में आपसे बातचीत कर रहे हैं। जाने से पहले मैं आपसे दो लाइन में आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे।
2: मैं आप सबको मेरा मैसेज है, आप सब प्रोग्रेस करो, लाइफ में आगे बढ़ो, और अच्छी तरह से सब कुछ आराम से शांति से करते जाओ। कभी भी बड़ा जंप एकदम लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि किस्मत आपके आगे है आहिस्ता, और आपका माइंड का हेल्थ का बहुत ध्यान रखो पहले से ही।
1: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामे जिंदगी, जहां पर हमारे साथ थे रमेश चंद्र शाह जी, और रमेश चंद्र शाह जी की जिंदगी को आज हम सलामे जिंदगी से सलाम करते हैं, और उन्हें भी शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बना के रखा है, ऐसा ही उदाहरण हमेशा वो बने रहें, उनका स्वास्थ्य तन मन तंदुरुस्त रहे, और ऐसे ही हम सबको इंस्पायर करते रहें रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब,
2: थैंक यू।
1: तो दोस्तों, आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 107.8 FM पर रेडियो मधुबन।
0: अभी बजे हैं दोपहर के 2, एक मिनट का यह समय स्वयं को और परमपिता परमात्मा को दो।

0: मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरी आवाज से फैमिलियराइज हो गए हैं, मेरी आवाज को पहचान रहे होंगे। मैं आपका होस्ट हूँ आरजे शरद, और आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून, जो आप सुनते हैं आपकी जानी पहचानी फ्रीक्वेंसी पर 107.8 FM पे। और इस शो की शुरुआत हम फिर से आज कर रहे हैं। आज की शाम बड़ी खूबसूरत है, और मेरी विंडो से मैं देख पा रहा हूं कि पहाड़ों पे सूरज जो है अस्त हो रहा है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से एक बहुत ही शानदार एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता गुलजार को। गुलजार, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम जुनून में। तो
1: थैंक यू सो मच
0: जी,
1: बुलाने के लिए।
0: और गुलजार की पहचान हम बाद में बताएंगे कि गुलजार कहाँ से आती हैं और कैसे अपने आसपास के समाज और अपने देश को कैसे गुलजार कर रही हैं अपने काम से, और उनके जीवन की क्या अचीवमेंट है, उन्होंने क्या सीखा है और क्या समझा है समाज के बारे में, और कैसी दुनिया, सुंदर दुनिया वो देखना चाहती हैं, और उनका जुनून क्या है। तो देखिए ना, आज हम जुनून में ले आए हैं एक जाने पहचाने चेहरे को, एक युवा चेहरे को। तो गुलजार, हम बात करते हैं। गुलजार, थोड़ा बताइए ना अपने जीवन की अपब्रिंगिंग, आप कहाँ से आते हैं, किस समाज से आते हैं, आपकी क्या शुरुआत हुई, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे।
1: थैंक यू सो मच। मेरा नाम गुलजार, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ और मैं जिस समाज की महिला हूँ, पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि जिस समाज से आती हूँ, मैं मुस्लिम तबके से आती हूँ, मुस्लिम तबके की महिला हूँ मैं।
0: जी
1: और मैं जैसा समाज चाहती हूँ कि इक्वलिटी वाला, एक बराबरी, जिस तरह से जीने का, सबको हक हो। जब मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी तो मैं अपना राइट्स, मेरे क्या हक है, मैं नहीं जानती थी।
0: जी
1: मुझे केवल ये लगता था कि जो कर रहे हैं वो ठीक है, इवन जो हो रहा है मेरे साथ वो ठीक है। लेकिन मेरी शुरुआत ऐसे हुई जीवन की कि मेरा फर्स्ट में तो पहले मेरा बाल विवाह हुआ, उसके कारण तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई थी। लेकिन
0: जी
1: मैंने सोचा पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, लेकिन जीवन में मौका नहीं मिला। फिर बाल विवाह होने के बाद किसी ऐसी समस्या के चलते हम लोग अलग हो गए हस्बैंड से, और अलग होने के बाद मैंने अपने जीवन की शुरुआत वहीं से की। तो मेरी पढ़ाई भी वहीं से स्टार्ट हुई, मेरा 10th भी नहीं था, लेकिन मेरे को किसी टीचर ने मोटिवेट किया, बेटा जीवन में ऐसे मत रहो, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी, 2 साल डिप्रेशन में रही, मेरा एक छोटा बच्चा भी था तब। तो मैंने सोचा अपने लिए ना सही, मैं एक माँ हूँ तो मुझे तो स्ट्रगल करना ही है। मुझे वो सोच थी कि भाई मेरे लिए ना सही, क्योंकि मेरा क्या हक है मैं अपने बारे में जानती नहीं थी। मैंने शुरुआत की ऐसे में, मैं एक एनजीओ सेक्टर में आई। एनजीओ सेक्टर में आने के बाद मेरा स्ट्रगल रुका नहीं था, क्योंकि जीवन में काफी चीजों से जूझ के मैं निकली थी। मैंने सोचा अब कुछ बेहतर होगा, लेकिन मुझे ये नहीं
0: ठहरते
1: पता
0: हैं
1: कि
0: गुलजार, ठहरते हैं। आप बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, आप एनजीओ पे आ गए सीधे। हम एनजीओ पे आएंगे, आपके करियर पे आएंगे, आपके करियर की शुरुआत पे बात करेंगे, लेकिन हमें बताइए कि ये बाल विवाह किन परिस्थितियों में हुआ, और अजमेर के समाज में या अजमेर जिस अरावली में आप रहते हैं वहां पर बाल विवाह कितना आम है।
1: बाल विवाह अगर देखा जाए, जिस समाज से आती हूँ मैं, जैसे कि पहले ही होता था कि लड़कियों के, एक वो कहते हैं ना, एक खाने में सभी लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए,
0: वो तो आज भी
1: और
0: होता है गुलजार।
1: बिल्कुल होता है। लेकिन मेरा जो रहा था कि फैमिली में हम लोग 4 बहनें थे, तो बड़ी वाली सिस्टर के साथ सोचा कि भाई इनकी भी कर देना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि बेटियों को जितना जल्दी ब्याह दो उतना अच्छा है,
0: जी
1: एक सेंटेंस है कि बेटियों को अपने ठिकाने लगा दो, बेटियां मतलब बेटियां कांच की तरह होती हैं, तो वाला सेंटेंस सब फॉलो करते हैं। मेरी फैमिली ने भी वही फॉलो किया, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे पापा ज्यादा शिक्षित नहीं थे, वो थर्ड स्टैंडर्ड कुल पढ़े थे, तो और जीवन को शायद उन्होंने उस तरह से देखा भी नहीं था। तो
0: जी
1: जो समाज और जो हमारे जो पंचायत के लोग होते, उन्होंने कहा, वही चीजों को फॉलो किया। इसके चलते मेरा भी, मेरी बड़ी दीदी के साथ मेरी भी शादी हो गई। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि कम एज में शादी का क्या मायना है हम लोग नहीं समझ पाते। वही चीज मेरे साथ भी हुआ कि उसके चलते मेरा तलाक होना था, तो
0: जी
1: मैं इन चीजों से जूझ रही थी। तो इसके चलते पापा ने सोचा कि भाई समाज में जैसे लोग कहते हैं, जैसे रिश्तेदार हैं, पंचायत है, जो कहते हैं उनको फॉलो करना है, और वो जो कहते
0: जी
1: हैं भाई बेटियां कांच की तरह होती है, तो पापा ने भी वही चीज को फॉलो किया। और पापा को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन
0: जी
1: वहां से जब मेरा जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, मेरा स्ट्रगल के एक तो दहेज को लेके, कि दहेज को लेके भी टॉर्चर किया कि भाई दहेज अच्छा देना चाहिए, क्योंकि फैमिली में जो था वो, पापा ने, अब 4 बहनें हैं हम, तो पापा ने जो उचित लगा उस समय पापा ने दिया, क्योंकि कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। लेकिन
0: जी
1: शादी के बाद डिमांड होने लगी कि भाई मिलना चाहिए था, वो उस टाइम नहीं
0: जी
1: की, लेकिन बाद में करने लगे कि अच्छा दहेज नहीं
0: जी
1: दिया, अगर अच्छा दहेज देते तो अच्छा होता। और इसके चलते फिर, और फिर भी था कि एक कम एज में शादी के मेच्योर नहीं होते रिश्तों को लेके, तो फिर लास्ट में एंड ये हुआ कि 3 4 साल में चीजों से जूझती रही मैं। कैदी जो होता है ना, कैदी समान थी मेरी जिंदगी, कि अगर फैमिली से भी बात करूंगी तो स्पीकर पे फोन होगा, तो मैं अपनी इच्छाओं के बारे में या अपनी तकलीफ के बारे में परिवार में शेयर नहीं कर पाती। तो जिस तरह से मेरे साथ, जो दहेज को लेके जो मेरे साथ प्रताड़ना हुई, मैं उन चीजों को नहीं बता पाती थी। लेकिन बहुत टाइम बाद ये हुआ मेरे को कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ करना ही था। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई तो अपनी फैमिली में आ गई, उस टाइम मैंने शेयर किया अपनी मम्मी से और फिर चुप हो गए, ठीक है कोई नहीं। फिर वो बेबी होने के बाद मैं वापस गई, तो मैं बच्चे का स्ट्रगल नहीं ये कर सकती थी, क्योंकि मेरे को बच्चे को भी, मेरे को लग रहा था कि मैं यहाँ पे इतना पूरे दिन, एक महिला हूँ पूरे दिन घर को संभालती हूँ, फिर भी मेरे बच्चे का अच्छा जीवन नहीं है। और फिर मुझे एक चीज फील हुई, मैंने एक महिला थी जो घरेलू काम करती, मैंने उसको देखा, वो दूसरों के घर में जाके काम करती है, उसको पैसा भी मिलता है और उसको एक सम्मान भी मिलता है, वो अपने घर लौटती है तो पैसे से लेके। और तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं पूरा दिन पूरी रात इतना काम करती हूँ, ना तो मेरे पास पगार है ना मेरी वो वैल्यू है। तो ये चीज ने मुझे झंझोड़ के रखा अंदर से कि भाई वो कामगार महिला कितनी वैल्यू है, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो इस घर की बहू हूं ना, इसलिए नहीं है। तो वो चीज मेरे माइंड में, और बच्चे वाला था जो मेरे दिमाग में घूमा के मुझे अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए मुझे निकलना है। तो मैंने एक टाइम पे आके डिसीजन लिया, हालांकि मेरे डिसीजन के सब खिलाफ थे। सबसे पहले तो फैमिली, पापा ही नहीं
0: आपने
1: था
0: समाज
1: पापा,
0: में बगावत कर दी गुलजार। हाँ,
1: समाज में
0: आप
1: भी और घर
0: समाज से
1: में,
0: भिड़ी हैं।
1: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि समाज से झगड़ लो, परिवार से झगड़ो तो परिवार अगर निकाल दे तो वो बड़ी टिपिकल सिचुएशन होती है। जब मैं घर आई तो मैंने बोला कि मैं अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर मैं, मेरे बच्चा हो गया था, तो मैंने बोला अब मैं नहीं जाऊंगी पापा, मेरा जाने का नहीं है। तो पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था,
0: ओहो,
1: जो बेटी हमारी नहीं सुन रही हम उसको घर में नहीं रखेंगे। उस टाइम मैं 10th भी नहीं थी, तो मैं उतना कैपेबल नहीं थी, लेकिन मैं कुछ जगह कुछ अरबी वगैरह पढ़ाती थी, तो कुछ अर्निंग सोर्स होता था मुझे। उस टाइम 400 रुपये अर्निंग होता था मुझे। तो मैंने एक रूम लिया, वो रूम पापा ने निकाल दिया था, तो मेरे को रूम लेना था, मैंने जाके रूम लिया, बच्चा भी साथ था। वो 300 रुपये मैंने रूम के दिए, वहां पे मेरे पास बिछाने को चटाई भी नहीं थी। बहुत वो टाइम जो मेरा था कि ना चटाई है ना मटकी है पानी की, फिर मैंने किसी पड़ोसी से मटकी ली, और मम्मी ने मुझे उस टाइम में थोड़ा सपोर्ट किया, मम्मी ने आके मुझे चटाई वगैरह घर में लाके दी। इवन मैंने वहां से स्टार्ट किया, फिर सब जो समाज के लोग, जो आसपास के लोग थे ना, वो पापा को कहने लगे आपकी बेटी आपसे अलग रहती है, इसका रीजन क्या है? तो पापा उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पा, और फिर पापा ने बुलाया, पापा ने बोला उसको बुला लो भाई, मेरी तो बदनामी कर दी उस लड़की ने, वो घर से जाने को तैयार है मगर मेरी बात मानने को तैयार नहीं।
0: जी, इसे कहते हैं श्रोताओं जुनून। ये है जुनून। जी श्रोताओं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे साथ हैं गुलजार और साझा कर रही है अपनी जीवन की कहानी, जो संघर्ष से भरी हुई है और साहस से भरी हुई है। जी गुलजार, ओवर टू यू।
1: थैंक यू। और फिर मैंने डिसीजन ले लिया, फिर मुझे किसी टीचर ने मोटिवेट किया, बोले बेटा तुम तो 10th भी नहीं हो लेकिन मैं चाहती हूँ तुम 10th करो। मैंने कहा मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने बोला बेटा तुमको मैं लगाती हूँ। तो वहां पे एक टिफिन सेंटर चलता था मदरसे के पास, अब मैं टिफिन सेंटर में लगी, मुझे मात्र 850 रुपये मुझे मिलते थे। तो मैंने सोचा कि कम से कम 1600 रुपये फीस थी उस टाइम ओपन बोर्ड की, मुझे जिन्होंने टीचर ने सजेस्ट किया था। मैंने बोला मैडम मेरे पैसे तो चलो टिफिन सेंटर से जो आएंगे, खाना बना रही हूँ मैं, वहां से आ जाएंगे, और मेरे को किताबों के लिए चाहिए, मुझे किताबें आप कहीं से कर दीजिए ना। तो उन्होंने मुझे 300 रुपये दिए, जब उन्होंने 300 रुपये दिए, वो 300 रुपये मेरे 3 लाख के बराबर थे ऐसा मानो, क्योंकि मेरे पास एक बुक्स नहीं थी पढ़ने की, मेरा एग्जाम का मैं फॉर्म तो भर देती अपने पैसे से। फिर मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला, मैंने कहा तुम भी करो, तो मेरी सिस्टर ने बोला ठीक है। तो मैंने उसके भी पैसों का अरेंजमेंट किया, फिर हम लोग ऐसे करके हम लोगों ने, दोनों ने फॉर्म भरा, मैंने भी भरा उसका भी भरवाया, मैंने कहा तू भी पढ़। फिर हम दोनों ने फॉर्म भरा और हम लोग पापा सो जाते, पापा को नहीं बताया, और टिफिन सेंटर का जो काम करने जाती थी मैं चोरी से जाती थी, और पढ़ाई भी रात को चोरी से करती थी। अगर पापा को पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे, बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ के क्या करेंगी, उनके एक सेंटेंस जो थे ना माइंड में रिविजन, एकदम रिविजन होते थे। तो मैंने ये सोचा अभी उनको नहीं बताएंगे, अगर बता दिया तो भाई डांटेंगे। फिर हमारा एग्जाम्स का टाइम आया, फिर हम लोग गए, और कई बार तो हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हुई कि हमारे पास 20 रुपये भी नहीं होते थे, हम लोग पैदल निकल जाते थे। तो मैंने वो टाइम चीजों को फोकस किया, और हालांकि वो टाइम पे मेरा एक बैग भी लगा, एक सब्जेक्ट्स में बैग भी लगा। फिर मैंने सोचा जीवन में यार मैं इतनी सारी लड़ाई से नहीं हार मानी हूँ खुद को, तो मुझे लगता है इस बैग से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं बहुत सारी चीजों को झगड़ के आगे बढ़ी हूँ। मुझे लगता है जिंदगी में मुझे इस बैग से भी झगड़ना पड़ेगा, क्योंकि
0: जी
1: कोई भी चीज आपको हारने के बाद ही जीत का मजा आता है। तो मैंने कहा अब हमको हारना नहीं है, अगर हार भी गए तो उसका बुरा नहीं मानना, आगे बढ़ना है। तो
0: जी
1: मैंने कहा कि सप्लीमेंट्री मेरे लिए कोई फर्क नहीं। फिर मेरे को फिर पैसे करने थे, तो उस टाइम टिफिन सेंटर अचानक से बंद हुआ, तो मुझे एक भैया थे समोसे बनाने वाले, मेरे को बोलते थे 20 रुपीज के मेरे रोज समोसे बनाओ, और ज्यादा होंगे तो मैं ज्यादा, तो मैं समोसे बना के देती थी, तो वो मेरे को पैसे देते थे। मैं खुश थी कि मेरी पढ़ाई सप्लीमेंट्री में जो बैग लगा है मैंने उसके पैसे निकल जाएंगे। तो इस तरह से मेरा 10th क्लियर हुआ। 10th क्लियर होने के बाद में मैं एक एनजीओ सेक्टर में मैं एज अ हेल्प के रूप में लगी वहां पे, और वहां पे मुझे पूरा ऑफिस का मैनेजमेंट देखना था। पर एनजीओ सेक्टर में होता क्या है मुझे ये नहीं पता था। एक आंटी मिली थी मुझे, वो आंटी मुझे वहां ले गई थी कि बेटा तुम्हें यहाँ चाय बनानी है, और खाली चाय बनानी, साफ सफाई करने वाली आएगी वहां देखना, और ऑफिस का जो भी मैनेजमेंट है वो देखना, तुम थोड़ा तो पढ़े हो। फिर वहां गई ना, जो एंट्री मिली सबसे मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी कि वहां पे पूछा गया कि आप 10th हो क्या, तो मैंने बोला हाँ मैं 10th हूँ। फिर मेरे माइंड में ख्याल आया अगर मैं 10th नहीं करती तो शायद आज मुझे यहाँ जगह भी नहीं मिलती, तो मेरे लिए एक शॉक
0: जी
1: लेवल था वो। तो मैंने कहा
0: जी
1: मैंने बहुत अच्छा किया, तो मैंने कहा मुझे आगे भी पढ़ना चाहिए, वो 10th पढ़
0: इट
1: के
0: वाज अ
1: मुझे यहाँ।
0: पॉजिटिव शॉक, खुशी
1: यस यस
0: देने वाला शॉक। जी
1: खुशी, मैं बोली, मैंने मम्मी को बोला आके पहले तो, और फिर पापा को भी शेयर किया। मैंने कहा पापा मैंने 10th कर ली और मैं पास हो गई। पापा बोले बहुत अच्छा किया, कर लिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझसे एक पैसे ना मांगना, तुमको एक पैसे नहीं मिलेंगे हमसे। मैंने कहा पापा खाली आप इतनी परमिशन दे दो मैं बाहर निकल जाऊँ, मेरे लिए उतना काफी है, बाकी फतेह मैं खुद कर लूंगी जंग में। तो
0: जी
1: फिर मैंने बोला पापा मैं ना एक जॉब मिली है मुझे, वहां है ना 8,000 देने को बोला है। तो पापा ने कहा ठीक है, पर है ना मैं नहीं चाहता हूँ बेटा बाहर जाए। पापा मुझे करना पड़ेगा, एक बात बताओ आप खाना तो खिला दोगे, बाकी जरूरतें तो मेरी है जो मुझे पूरी करनी है ना, बच्चा भी
0: जी
1: है। तो पापा ने बोला भाई देख ले मैं तो नहीं बोलूंगा। फिर पापा को कैसे तैसे मनाया, पापा की सोच इतनी जल्दी बदली नहीं, पापा को तैसे तैसे मना के मैं निकली। फिर मैं वहां जॉब करने लगी, वहां मैनेजमेंट देखती थी, वहां बहुत सारी चीजें। लेकिन कहते हैं ना जिंदगी में संघर्ष जो होता है ना वो आपको पूरे जीवन में, एक तो लर्निंग और एक संघर्ष,
0: जी
1: पूरे जीवन जब तक जीवित हो आपको, आप सीखते रहोगे और
0: जी जी
1: संघर्ष आपके जीवन में छोटे मोटे आते रहेंगे। वहां गई, वहां ज्वाइन करने के बाद में 1 साल हुआ था, और 1 साल बाद मुझे पता चला जिस पोस्ट पे मैं थी उस पोस्ट को कई लोग अप्लाई करना चाहते थे और मतलब नहीं हुआ, तो वो कैसे ना

0: लगाया कि तुमने जादू किया। मैंने बोला, मैडम जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया मैंने उनके पर भी नहीं किया, और आप पढ़े लिखे हो के ऐसी बात मानते हो? तो मैं तो इतना पढ़ी हुई भी नहीं हूँ जितना आपको ज्ञान है।
1: श्रोताओं, समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, गुलजार उसकी बात कर रहे हैं, और रेडियो मधुबन का मिशन है या जुनून है कि हमें समाज से अंधविश्वास हटाना है, जो कि देश के संविधान की भी बात है। तो गुलजार जो है संविधान की बात कर रही है। ध्यान से सुनते और सुनते रहिए आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM, रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए माउंट आबू की वादियों से। जी गुलजार, ओवर टू यू। बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है।
0: थैंक यू। उसके बाद में मैंने बोला, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप इस चीज को मानते हो? तो मैंने उनको बोला, मेरे को जो थोड़ा समझ में आया, मैंने कहा आप इसको नींबू को लेप में भेजो, अगर मैं गुनाहगार हूं तो बिल्कुल मुझे सजा मिलना लाजमी है इस पे। तो
1: जी
0: उन्होंने बोला लैब नहीं भेजेंगे हम, तो तुम्हें पुलिस में भिजवाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल भिजवाओ, पुलिस भी तो जांच करेगी ना। तो कुल मिला के मुझे निकालना जो बहाना था, आपस में उन्होंने, इतने सारे लोग थे आपस में क्या, क्योंकि मैं एक बहुत छोटी पोस्ट पे थी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो था, मुझे अपने हक के बारे में और संविधान के बारे में नहीं पता था। दूसरा, पोश जो होता है, पोश के बारे में मुझे नहीं पता था। सबसे बड़ी आहत करने वाली बात मेरे लिए ये थी कि मुझे पोश का नहीं पता था, अपने अधिकार के बारे में नहीं पता था। एनजीओ सेक्टर में भी जो महिलाओं के लिए या उनके ह्यूमन राइट्स के लिए जो गाइडलाइन होती है, मैं उन चीजों को भी नहीं जानती थी।
1: जी
0: तो मैं उस टाइम मैं रोई, मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं बहुत ज्यादा रोई। मैंने जाते जाते लेकिन कुछ बात कहते गई, क्योंकि वहां मैं एक, ये था ना कि मैं एक मुस्लिम हूं, तो मुझे उस वजह से भी वो लोग ऐसा करते थे। तो मैं जाते जाते मैंने वहां के जो सीनियर थी, मैंने उनको शेयर किया। मैंने कहा मुझे निकालने का रीजन, आप बिल्कुल बेशक निकाल देते, लेकिन मुझे आप निकालते तो इज्जत के साथ निकालते। मुझ पर तरह से जो लगाए गए हैं ब्लेम, वो बहुत सरासर गलत है, लेकिन मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं। मैं चली गई, मैंने मन को, खुद को बहुत समझाया, और मैंने खुद को मोटिवेट किया कि अच्छा होने से पहले बुरा होना जरूरी है लाइफ में। उसके बिना हमको ना नॉलेज होगी और ना ही हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, मेरे को एक बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट पे और अच्छी सैलरी पे मेरा सिलेक्शन हुआ, फील्ड कोऑर्डिनेटर की।
1: जी
0: और उसमें मैं घुमंतू समुदाय और मुस्लिम राइट्स पे काम करने लगी, और वहां पे मैं एट्रोसिटी पे भी काम करने लगी, जो मतलब एट्रोसिटी होती थी मैं उस पे भी समझने लगी। तो
1: जी
0: मेरे खुशी के पल थे, फिर मैंने बुरे चीजों को ऐसे सोच के भुला दिया। मैंने कहा आज अच्छा हुआ है तो शायद बुरा होना भी जरूरी था मेरे साथ। तो मुझे समझ आया, लेकिन मेरे को लगा कि मेरे को इन छोटी छोटी चीजों से हार नहीं माननी चाहिए, अभी तो मेरा बहुत सारा जीवन है। उस फील्ड लेवल में जो मेरी एक जो नॉलेज बढ़ी, कि मैं अभी अगर स्टार्ट करके अगर हार मान जाती ना, आगे नहीं बढ़ती, वो एक लाइन याद आ रही है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे जीवन की ओर लड़ाई है।
1: जी
0: तो वो सेंटेंस ने मेरे दिमाग को और मेरे को बिल्कुल ऐसा एकदम बिल्कुल चलना है, हार नहीं माननी है। तो
1: जी
0: मैं कंटिन्यू करती गई उस प्रोजेक्ट में, और मैंने उस प्रोजेक्ट में क्राइम से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इवन मेरा 12th कंप्लीट हो गया उसके साथ साथ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, ग्रेजुएशन भी चल रहा था मेरा इस तरह से, और मैं काम भी कर रही थी।
1: और श्रोताओं,
0: और
1: आपको बता दूं कि अब गुलजार मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, राइट?
0: थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल राइट।
1: तो देखिए, एक 10वीं नहीं पूरी कर पाने की जद्दोजहद के बीच और आज आप मास्टर्स हैं सोशल वर्क के, और समाज सेवा के क्षेत्र में एक प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहे हैं, और जो दलित राइट से लेकर महिलाओं के अधिकार और धर्म विशेष के लोगों के साथ जो कभी भेदभाव आदि होता है, और घुमंतू समाज के व्यक्तियों के साथ, जो हमारे देश में घुमंतू समाज है, जो बड़ी संख्या में इधर से उधर, यहां से वहां, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, उनके जीवन को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इस क्षेत्र में गुलजार का अनुभव है और विशेषज्ञता है। श्रोताओं, हम किसी धर्म विशेष या किसी जाति के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में हम उससे सहमत नहीं है, हम उससे बिल्कुल भी, हमारा कोई विश्वास नहीं है ऐसी किसी बातचीत पर, परंतु अगर ये गुलजार के व्यक्तिगत अनुभव है और गुलजार इसको रखने के लिए आजाद है, तो गुलजार मुझे ये बताइए कि इस पूरी बातचीत के बाद और इस पूरे संघर्ष के बाद आपसे हम जो बात करना चाहते हैं, जब मैं अजमेर की पोस्टिंग के दौरान हम साथ में थे, हम काम कर रहे थे।
0: जैसे कि कोविड के बारे में बता रही थी, जस्ट कोविड आया और मैं एक फेलोशिप को ज्वाइन की थी, और
1: जी
0: जैसे कि मैं ऑलरेडी करके आई थी, तो मेरे को ह्यूमन राइट्स के बारे में पता था। और जिस तरह से हम लोग एक जो मन में जो एहसास होता है ह्यूमन इंसानियत के प्रति, वो चीजें मैं काफी सीख गई थी, और मुझे खुद के हक के साथ दूसरों के हक के बारे में भी नॉलेज हुई थी। उसके बाद जैसे ही कोविड आया, तो हमारी जो परमिशन थी, जैसे कि मेरी मुलाकात शरद त्रिपाठी सर से हुई थी, नेहरू युवा केंद्र के जो थे,

0: मिलने के बाद
1: आज मैं
0: मैंने
1: यहाँ पर आरजे भी हूँ जी
0: इवन मैंने नहीं सोचा था कि आप
1: जी
0: इतने बड़ी पोस्ट पे एक अधिकारी, हम लोगों से इतना मतलब डीपली, एक होता है ना नॉर्मली एक फ्रेंड जो टाइप से होते हैं उस तरह से बिल्कुल एक नॉर्मली वे में बात करना, और हमारी जो परमिशन सर की वजह से हुई, और कुछ चीजें कभी भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आती तो हम सर को कॉल करते थे और सर से शेयरिंग करते थे कि सर ऐसी प्रॉब्लम है। और हमारे को कोविड में मैं जो देख रही थी कि लोग है ना भाग रहे हैं इधर से उधर, अफरा तफरी मची है, लोगों को खाने को तक नहीं है। तो उस टाइम में
1: जी
0: हम लोगों को जैसे कि जिला प्रशासन की तरफ से, तो हम लोग थे कि जिला प्रशासन में जो हम लोगों को लगाया गया था कि जहाँ पे जरूरत है खाने की दवाइयों की हम लोग उनको दे सकें, और हमें गाड़ियां वगैरह भी करवाई थी जिला प्रशासन ने, तो हम लोग लगे हुए थे एनजीओ सेक्टर में। पर सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये थी कि हमें अपनी सुरक्षा करनी, तो सबसे ज्यादा जो चिंतित थे ना फैमिली के लोग थे। मैंने
1: जी
0: देखा है मेरा खुद का तो, और मेरे पापा का भी जो बदलाव देखा है ना कोविड के बाद ही देखा है मैंने, जैसे जूझ रहे थे लोग, तो लोग मुझे एनजीओ सेक्टर से, लोगों ने मुझे काफी मदद भी की थी कि जिस तरह से हम एनजीओ सेक्टर से कनेक्ट थे, तो उन्होंने हमें लाखों का सामान दिलवाया था मेरे आसपास के लोग, और जहाँ जरूरतमंद प्रवासी थे उनके लिए भी। और काफी जैसे कि एक्चुएट में भी कुछ थे जिनसे मैं कनेक्ट थी एक प्रोग्राम के जरिए, तो उन्होंने भी मुझे बहुत मदद की। और प्रवासी जो आए थे उनको जाने में जो प्रॉब्लम हो रही थी, उनके पास पैसा नहीं था, तो
1: जी
0: एक्शनेट ने मुझसे कनेक्ट हुए होके, और उन्होंने एक्शनेट ने बोला आप प्रवासियों के नंबर लो, प्रवासियों के नंबर लोगे तो हम आपको अकाउंट नंबर लोगे तो हम उनके अकाउंट में अमाउंट डलाते हैं ताकि उनको जाने में दिक्कत ना हो। तो
1: जी
0: प्रवासियों की भी मदद की और आसपास के लोगों की मदद की, और काफी ऐसे लोग थे, हम तो देख रहे थे जहां से जिसके लिए मदद होती है हम लोग को उनके लिए आगे जाना है, उनकी मदद करनी है। और इंसान
1: जी
0: के साथ साथ हम लोग जानवरों के लिए, जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, इवन अदर जो हैं, हम उनके लिए भी सोच रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो भी हमारा हिस्सा है और हमारे समाज का हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा है, तो हम लोग उनके लिए भी मदद करने में। और जो हृदय होता है ना, इतना हृदय कोमल हो गया कि क्या ही बोलूं, मैं तो किसी की तकलीफ नहीं देख सकती थी वो टाइम में। मुझे लग रहा था आधी रात को भी बाहर रहना है डेफिनेटली,
1: जी
0: मम्मी मेरे को पूछते थे फोन करके कब आ रहे हो। कई बार रमजान में मैंने रोजा बाहर खोला है रोड पे, मैंने बोला मम्मी मैं बाहर आई हूँ और खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, ये टाइम खत्म हो गया तो ना खाना मिलेगा उन लोगों को, क्योंकि काफी एनजीओ सेक्टर जो थे पका हुआ खाना, और काफी लोग दानदाता थे जो पका हुआ भोजन शाम को वितरित करने के लिए हमको देते थे
1: जी
0: टंकियों में।
1: जी
0: तो वो मेरे लिए अचीवमेंट था कि मैं बोलती थी मम्मी को, मम्मी मैं एक भूखी रहूं, मेरे पीछे हजारों भूखे रहेंगे, चलेगा मेरे को क्या, बोलो। तो मम्मी ने बोला नहीं जाओ तुम, मम्मी ने परमिशन दे दी, पापा ने परमिशन दे दी, आधी रात को घर पे लौट रहे हैं, उनको बस चिंता रहती थी, फोन वगैरह करते थे। लेकिन जो लोगों को हमने देखा है ना कि उनको खाने से मदद करें, और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि आसपास जो कोविड को पॉजिटिव होने के बाद उनसे लेन देन बन, उनकी मदद बन, तो हम लोग उनके घर तक भी पहुंच रहे थे, यहाँ तक कि क्लिनिक पे जाके उनके लिए दवाइयां जो होती हैं उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे
1: जी
0: थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जिला प्रशासन में जब मैं आपके साथ हम लोग जुड़े हुए थे, तो हम लोग भी जो आप लोगों के साथ मिलके कर सकते थे वो हम लोग भी कर रहे थे, बिकॉज आप हमारे वॉलंटियर्स थे, आप हमारे हैंड्स थे, है ना
0: आपका सपोर्ट बहुत था, इवन हम लोग जहां भी अटकते थे आप लोगों से सपोर्ट मांगते थे, और डेफिनेटली
1: जी
0: 100% उसी टाइम हम लोग को सपोर्ट मिलता था। ये प्राउड मोमेंट था। और सबसे बड़ी बात जब हमारे लिए था कि हम एक पहाड़ी पे चढ़े जो
1: जी
0: रूठी रानी महल के नाम से फेमस है, और दो बंदियां
1: जी
0: 40 बंदों के बीच में, वो बड़ा एक था, तो मेरे साथ
1: जी
0: जो थी मैंने उनको बोला, इनको सबको मैं जानती हूँ, हालांकि जानती मैं नहीं थी, मैं सिर्फ खाना देने गई थी उनको। मैंने
1: जी
0: बोला
1: जी
0: अगर मैं कह दूंगी मैं नहीं जानती हूँ तो ये भी थोड़ा घबरा जाएंगे, हमें तो उनको खाना पहुंचाना था। तो हम खाना पहुंचाने एक पहाड़ी पे चढ़े थे, क्योंकि उसका टाइम था, काफी लोग आए थे, तो जैसे वो हुआ कोविड का बंद हुआ तो लोग इधर से उधर हो गए थे, तो सब लोग डरे हुए भी थे एक तो कि हमारे साथ क्या होगा, तो वो एक बहुत दुख का विषय भी था कि हम लोग एज ए ह्यूमन, और कई बार तो अपने भी अपनों को छोड़ के रास्ते पे जा रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और कुछ टाइम जब खुलता था मार्केट जो दुकानें लगती थी, कई बार
1: जी
0: ऐसा होता था कि उनकी दुकानें बंद करा दी जाती थी, या तो कुछ ऐसी चीजें होती थी कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है तो वो उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो उनके साथ उनका सामान भी फेंक दिया जाता था। तो वो मुझे बहुत रुला देता था उस टाइम कि इनका सामान फेंक दिया है बेचारे, कैसे तो कैसे अरेंज करके आए, तो वो चीजें भी आहत कर रही थी। लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ सिस्टम का कुछ ऐसा रीजन था, मैं
1: वो
0: कुछ
1: हमारे
0: चीजों
1: प्रशासनिक
0: में
1: निर्णय थे, वो हमें कई बार लेने होते थे, सख्ती करनी पड़ती थी, लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि हम सख्ती करें। सरकार कभी नहीं चाहती कि आवाम को परेशान किया जाए, परंतु वो सब हम लोगों ने आपके सहयोग से उन चीजों को समझा, और हम लोगों ने जितना हम बेहतर कर सकते थे हमने करने का प्रयास किया, और सरकार ने भी बसेस लगाई, हम लोगों ने
0: बिल्कुल
1: कैंप लगाए, चप्पल की व्यवस्था की, और सूखा राशन तो हम लोग नियमित रूप से आप लोगों के माध्यम से पहुंचा ही रहे थे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारी चीजें हो रही थी। जी जी गुलजार, ओवर टू यू।
0: और ये भी हो रहा था, माध्यम सबसे बड़ा था कि आप लोगों का जो सपोर्ट था, अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो नहीं होता। लेकिन ये जो चीजें हो रही थी, तो ये समझते हम कि कई बार हम लोग आम जनता जो होते हैं सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग इतने अपने इसमें हो जाते हैं मगन कि हमें जो सिस्टम होता है उसको, हम सिस्टम को नहीं देख पाते। तो हमको उसको सिस्टम को भी समझना पड़ेगा कि भाई सिस्टम क्या है। कई बार हम सिस्टम को ना समझ के गलतियां करते हैं और फिर हमारे साथ चीजें गलत होती हैं, तो हम उनको गलत नहीं कह सकते हैं। ये एक अपने समझ का फेर है।
1: जी।
0: और बाकी उसके बाद में, कोविड के जस्ट बाद में, जब हम आपके साथी थे, आपके साथ भी गए थे, जब हमें सम्मानित किया, और आप हमारे लिए आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे हमेशा, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा। इवन जब हमको जिला प्रशासन ने सम्मानित किया, उसके साथ जहां पे भी सम्मानित किया, इवन प्राउड मोमेंट था। हर मोमेंट को मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ। आज मैं उसी चीज में चली गई हूँ, एक अगर देखे तो पीछे चली गई हूँ, उन चीजों को ऑब्जर्व कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग सब उतरे थे और आप हमारे साथ थे जब हमें सम्मानित किया जा रहा था हर जगह। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट। और मेरे पापा सबको देख के इंस्पायर हो रहे थे मेरे लिए, ये की और है। और सबसे बड़ी बात, पापा की सोच जो है ना कोविड के बाद बदली। आज मेरे घर में फ्रीडम, आजाद हूं मैं, और संविधान को पढ़ा, संविधान को समझा, बिकॉज इक्वलिटी राइट्स, सभी को एक बराबरी जीने का हक है। और मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा ही समाज हो। वो सोच पापा की बदली। तो पापा को उस टाइम जो चीज की नीड थी, मैंने पापा को बाहर नहीं निकलने दिया। तो पापा को सब लोग कहते थे, अरे ये तो तुम्हारे बेटे को भी फेल कर दिया इसने, तो देखो। तो पापा को जब लोग कहते थे ना, और पापा जब देखते थे मेरे अखबारों में नाम आता, तो पापा भी प्राउड फील करते थे। फिर
1: जी
0: पापा ने एक जो मेरी वैल्यू जो थी ना डाउन, जो पापा की सोच थी कि भाई लड़कियां और लड़कों में अंतर होता है, वो सोच बदली। आज मेरे पापा इक्वलिटी वाला राइट से, कि मेरे बिना डिसीजन के तो पापा भी कुछ नहीं डिसीजन लेते हैं। तो मेरे लिए
1: जी
0: बहुत फख्र की बात है कि मैं, सबसे पहली बात होती है, हम दुनिया से तो लड़ सकते हैं, अपने परिवार में रह के लड़ना एक टिपिकल सिचुएशन होता है, तो मैं उन चीजों से लड़ के निकली हूँ। बिकॉज मेरा MA कंप्लीट हो गया है, इवन प्राउड फील होता है कि मैं अपने जीवन को इस तरह से स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ तक पहुंची हूँ।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: इसके साथ साथ फिर मुझे काफी फेलोशिप का मौका मिला। अभी लास्ट में प्रामल फेलोशिप में थी, वहां पे मैंने काफी चीजें सीखी प्रामल फेलोशिप में, और प्रामल सर
1: जी
0: से भी,
1: श्रोताओं
0: प्रामल
1: आपको
0: सर से
1: बता
0: भी।
1: दूं, फेलोशिप जो है वो समाज कार्य के क्षेत्र में एक सामान्य बात है। जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं वो अपने एक मिशन के साथ में उनको एक फेलोशिप दी जाती है, जो एक देश की प्रेस्टिजियस फेलोशिप पीरामल फेलोशिप गुलजार के पास है, और गुलजार उसके माध्यम से अपने इस काम को जारी रख पा रही हैं। और काम क्या है, जुनून है। जुनून है जैसे कोविड में किसी को भूखा नहीं रहने देना है, जुनून है कि कोई अपने शहर को छोड़ के जा रहा है, कोई मजदूर अपने अपने देश को अपने स्टेट को जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको वो सुरक्षित अपने अपने गांव पहुंच सके। प्रवासी जो है वो जुनून है। जुनून है किसी की आंखों में अगर आंसू है तो उसके आंसू पोछे जाए और उसकी जो मदद संभव है वो की जाए। ये एज अ वॉलेंटियर, एज अ स्वयं सेवक करना समाज सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात है। तो गुलजार हमारे लिए एक रोल मॉडल है, एक मिशन को लेकर चल रही हैं। तो वही बातचीत अब हम कर रहे हैं, और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM। हालांकि मैं हंस के बात कर रहा हूँ, मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, मुस्कुराने की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बातें इतनी गमगीन कई बार कर देती हैं, पुरानी यादों में भी ले जाती हैं, मुझे भी और गुलजार को भी। लेकिन समाज में जो ये समस्याएं हैं, जो जो गरीबी है, मुफलिसी है, इसका जो सॉल्यूशन है, इसकी इसकी जो समस्या की जो निजात पाने में हम सबको इकट्ठा होना होगा। और यही कार्यक्रम में हमारे जुनून की बात है, मकसद है कि हम आप तक इस विचार को पहुंचा पाए, इस बात को पहुंचा पाए कि देश को कैसे हम सोने की चिड़िया फिर से बना सकते हैं। तो गुलजार से जो बात हो रही है, गुलजार अपने कोविड के दौरान के जो एक्शन है उसको बता रही है, और गुलजार ने अपनी पढ़ाई की जो यात्रा है, अपने संघर्ष की जो यात्रा है, उसको भी साझा किया है। वो बात अलग है कि अब जिला प्रशासन में रहते हुए जो छोटा सा सहयोग मैं वॉलंटियर्स के लिए कर सकता था, क्योंकि जो समाज से जो लोग निकल कर आए हैं, अपने घर को छोड़कर आए हैं, लीड करने के लिए आए हैं, उनको सपोर्ट करना जिला प्रशासन या सरकार का पहला फर्ज है। और वही हमने कोविड से लड़ने के लिए जन भागीदारी के रूप में गुलजार जैसे बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ हमने मिलकर काम किया। और गुलजार का सम्मान तो छोटी सी बात है, और परिवार जो है, जो गुलजार के फादर का रस्म गुलजार बता रही हैं कि परिवार या कहते हैं कि पिताजी का सहयोग, जो कोविड में जो एक्शन देखा उन्होंने, सम्मान देखा कि सरकार कैसे एक्नॉलेज कर रही है इनके काम को, तो वही बात थी। और वही शायद मुझे लगता है चेंज मेकिंग पॉइंट था, और हमारे जुनून में और उससे इजाफा हो गया। तो गुलजार, लेकिन बात इतनी सी है कि आपने पूरी कहानी अपनी बताई, कोविड की बात भी की, हमने लड़ाई की बात भी की, और आपके बाल विवाह से बाहर निकलने की बात भी आपने की। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये जुनून आता कहाँ से है और इस जुनून का आगे का रास्ता क्या है।
0: डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगी।
1: जी
0: मैंने एक चीज सीखी है जिंदगी में कि बचपन में जब मम्मी हमको हाथ पकड़ के चलाते हैं ना, तो गिरते
1: जी
0: जरूर हैं, तो
1: जी
0: गिरना बहुत जरूरी है चलने के लिए, बहुत बेहतर चलने के लिए, क्योंकि
1: जी
0: मम्मी पूरी जिंदगी आपको उंगली पकड़ के नहीं चला सकती। तो जुनून मुझे वहीं से आता है, हार
1: जी
0: मानना मतलब गिरने जैसा होता है छोटे बच्चे के। तो
1: जी
0: एक जो जुनून होता है ना, कि जो जुनून है वो जुनून बरकरार रखना चाहिए कि मेरी जीत होगी। वो मैंने एक सेंटेंस जो अभी दोहराया था, मैं वापस दोहराना चाहूंगी। मैं जब भी चीजों में डगमग होती हूँ या डिमोटिवेट होती हूँ, तो मैं एक चीज याद रखती हूँ, अभी तो ये अंगड़ाई है मेरी आगे और लड़ाई है। तो ये सेंटेंस मुझे मोटिवेट करता है कि जिंदगी में हम लोग छोटी छोटी चीजों से जूझ के बड़ी सफलताओं को हासिल करेंगे। लेकिन एक जो होता है ना जुनून, जुनून रखना बहुत जरूरी है। अगर हम जुनून नहीं रखेंगे, हार मान जाएंगे, तो मुझे लगता है अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमको हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ गोल, और गोल के साथ हमें मोटिवेट करना कि मैं हार नहीं सकती। और मैं एक सेंटेंस बहुत अच्छे से याद करती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया। मैं गिरी
1: जी
0: हूँ, फिर संभली हूँ, और बहुत बेहतर चलना सीखी हूँ। जब हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी हार महसूस करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए हम अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी, और बेहतर इंसान और बेहतर खड़ा होने के लिए एक बार गिरना जरूरी है। तो हार कभी नहीं माननी है, जीत से ज्यादा हार एक्सपीरियंस देती है। होता है ना एग्जाम में, जैसे कि मेरा बैक लगा, तो वो बैक मेरे लिए एक वो था कि मुझे खड़ा होना है इवन, और करना है, और बहुत अच्छा किया मैंने। प्राउड फील होता है मुझे उस चीज के लिए। उस टाइम तो फीस भी थी, अब तो गवर्नमेंट ओपन बोर्ड को फ्री कर दिया है, प्राउड फील होता है। और अभी जो गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए फ्री किया है, तो मैं चाहती हूँ लड़कों के लिए भी फ्री करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो इक्वलिटी की बात करते हैं अपने देश में, एक बराबरी की, तो मुझे लगता है जो लड़के हैं उनके लिए भी बात होनी चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी की बात है हमारे लिए। तो लड़कियों के साथ लड़कों की भी पढ़ाई फ्री होनी चाहिए ओपन बोर्ड में। तो हो सके तो मेरा ये संदेश जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि कई बार लड़के होते हैं ना, सफर करते हैं वो भी अपने जीवन में। तो मैंने लड़कों को भी ऑब्जर्व किया है, वो काम के साथ कई बार पढ़ाई भी करते हैं, और कई लड़के तो ऐसा होते हैं कि उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं। जिस तरह से
1: जी
0: मैं समाज में लोगों को देखती हूँ, तो मैंने देखा, बोले दीदी लड़कियों की तो पढ़ाई फ्री करती, हम लड़कों का क्या कसूर है, हमारा भी तो फ्री करना चाहिए ना। तो वो एक सेंटेंस मुझे एक लड़के का बहुत अच्छे से याद आया कि मैं जॉब करता हूँ दीदी, मैं ना, मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, और अभी यहाँ भी फीस लग रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बात एक जरूर पहुंचे, क्योंकि मुझे लगता है लड़कों के लिए भी फ्री होना चाहिए
1: जी
0: गवर्नमेंट में, जिस तरह से लड़कियों के लिए फ्री हुआ। और मैं समाज को ऐसा ही देखना चाहती हूँ, इक्वलिटी वाला, एक बराबरी से जीने का। और मेरे समाज में जितने लोग हैं, सब प्रेम और भावनाओं के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे को देखें, और एक दूसरे की तकलीफ से तकलीफ महसूस हो, वो एज ए ह्यूमन,
1: जी
0: एक मानवता।
1: जी और पूरा देश और पूरा विश्व जो है वो शांति से गुलजार हो जाए, राइट गुलजार।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गुलजार हो जाए। थैंक
1: जी
0: यू।
1: जी तो गुलजार ये बताइए ना कि आपने जुनून की जो बात की है और जुनून के साथ आपने बताया कि कैसे है, तो थोड़ा बताइए घुमंतू समाज में आप काम कर रहे हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं और क्या एक समझ हमारे श्रोताओं को मैं चाहता हूं कि वो जाने रेडियो मधुबन के माध्यम से कि हमारे मधुबन में कुछ फूल जो है घुमंतु परिवार वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जी
0: घुमंतू समुदाय के सबसे जो पहले उनके साथ जो भेदभाव होता है वो बड़ा बेकार है।
1: जी
0: अब जैसे कि मेरासी समुदाय, मैं इतना मानती हूँ हम लोगों के पास धीरे धीरे चीजें मिलती है, साधन मिलते हैं, तब हम उतना कैपेबल बनते हैं। और जो घुमंतू समुदाय के लोग हैं, उनके पास जरूरत की पूरी चीजें नहीं है, वो उतना कैपेबल नहीं है हमारी तरह। और
1: जी
0: उनकी जो सबसे समस्या, उनको जो चैलेंज आते हैं, जैसे घुमंतू समुदाय एक जगह नहीं, अलग अलग एरिया में घूम के वो अपना निवास करता है और अपना रोजगार करता है। जैसे कि मैंने एक चीज ये भी देखी थी कि मेरे यहाँ मेरासी समुदाय भी है, दूसरे भी हैं, मेरासी समुदाय इधर से उधर घूम के अपना गुजारा करते हैं, वो भी घुमंतू में है। तो मैंने देखा है कई बार मेरे एरिया में इधर से उधर गए, तो कई बार जहाँ पे एरिया में चोरी होती है तो इन पे आ जाता है ब्लेम। और कई बार जो इनके साथ भेदभाव होता है, उनके आसपास के जो एरिया के लोग होते हैं ना, उनकी पानी जो देना होता है उनको पानी पीने के लिए, तो दूर से देते हैं, एक ये बहुत बड़ा उनके लिए है। और दूसरी बात, आंगनवाड़ी में भी कई बार ऐसी चीजें हुई है, तो हमने खुद ने बात की, हमने बोला संविधान सबको एक बराबरी का राइट देता, मैडम आप इन बच्चों को जब तक आने नहीं दोगे, मौका नहीं दोगे, तो कैसे ये बच्चे करेंगे। वो कहते हैं ना कि कोई अगर जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उनसे बोलते हैं एक्सपीरियंस क्या है। तो मैं उनसे बोलती हूँ, अगर हर कोई एक्सपीरियंस की बात करेगा, तो उनमें एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, मौका भी देना चाहिए कुछ करने का।
1: जी जी
0: जो घुमंतू समुदाय को अगर मौका नहीं मिलेगा तो अपने आप को डेवलप कैसे कर पाएंगे? उनको मौका
1: जी
0: मिलना चाहिए, शिक्षा का मौका मिलना चाहिए, और एक जाजम पे बैठ के, अब जैसे कि मेरी फैमिली में जब हमारे आते हैं मेरे घर, तो मैं, वो कभी नीचे बैठते हैं तो मैं उनको नीचे नहीं बैठने देती हूँ, कहती हूँ आप मेरे बराबर बैठो। और सबसे बहुत अच्छा कनेक्शन है, मैं बोलती हूँ मेरे बराबर बैठो, आप भी मेरी तरह इंसान हो, आपका अपना हक है। और मैं ये भी बोलती हूँ, यहाँ नहीं कहीं भी जाओगे तो अपने हक के बारे में बात करो, जब आपके साथ कोई गलत करता है तो उनको बोलो मेरा हक है और आपको देना पड़ेगा, वो आपका हक है। कहीं डॉक्टर के जा रहे,
1: तो आपको बता दें, गुलजार जिस समुदाय के बारे में बात कर रही है, वो समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी रोजी रोटी के लिए मूवमेंट करता रहता है, चलता रहता है, रास्ते में रुकता नहीं है, और अपने कैंप में रहता है, पक्के घर बना के नहीं रहता है वो समुदाय, और शिक्षा से बहुत दूर है। और इस समुदाय के बच्चों की शिक्षा आज भी हमारे देश के लिए एक चुनौती है, और सरकारें इस पर आज भी चिंतन कर रही है कि इन बच्चों को हम कैसे मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में शिक्षा से जोड़ सकते हैं। जी गुलजार, बताएं थोड़ा सा और इसके बारे में।
0: बाकी सभी लोग मेरे को सुनेंगे मुझे यकीन है, और मैं सभी तक एक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। अगर हम उनको चाहते हैं कि वो भी अपने में चेंज आए, उनमें चेंज आए, वो भी हमारी तरह हो, तो उनको हमारे को हमारे साथ लेके चलना पड़ेगा। वो एक है ना सेंटेंस के, सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ से होगा जब तक हम साथ नहीं लेके चलेंगे? वो शिक्षा
1: जी
0: से वंचित रहेंगे, अपने राइट्स के बारे में नहीं जानेंगे, वो अपने रोजगार को
1: हाँ, और
0: बढ़ावा
1: तो और
0: नहीं।
1: गुलजार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे आग्रह किया है देश को कि 2047 में हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, और जो बच्चे आज पढ़ाई से छूट जाएंगे या जिनका बाल विवाह हो जाएगा, तो वो अगले 20 साल बाद वो विकसित राष्ट्र के भाग नहीं बन पाएंगे ना। हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की कड़ी में कहीं ना कहीं हमें समस्या आएगी, तो हमें आज ही बच्चों को शिक्षा से जोड़ना होगा, बाल विवाह को बिल्कुल बंद करना होगा। जी जी गुलजार,
0: और बच्चों को शिक्षा में जैसे घुमंतू समुदाय के लाने के लिए मुझे लगता है कि सभी को प्रयत्न करना पड़ेगा, सभी को कोशिश करनी पड़ेगी, मेरे समाज के लोग, मेरे आसपास के लोग, मेरे जो देश के लोग हैं, और उनका सबका योगदान बहुत जरूरी है इसमें। क्योंकि जब तक हम उन्हें एक साथ लेके नहीं जाएंगे, उनको एक साथ बैठने का मौका नहीं देंगे, या हम उनके अधिकारों के लिए दूसरों से लड़ेंगे नहीं, मुझे लगता है कि जब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं खाली गुलजार अकेली नहीं, मेरा पूरा देश, मेरे पूरे देश के लोग और जितने लोग हैं आसपास के, सभी लोगों को इन चीजों को समझना होगा। जब हम, हमारा देश संविधान में इक्वलिटी का राइट देता है, हमको एक बराबरी का हक देता है, तो हमें हक नहीं है किसी के साथ गलत करने का। तो हमें लगता है कि हमको सबको एक साथ लेके चलने के लिए उनको मौका देना है, उनको साथ लेके चलना है, जहाँ कहीं वो रहते हैं उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो उनको ये सोच के नहीं छोड़ देना है कि वो उनकी समस्या है, की समस्याओं को अपनी समस्या समझो, वो उनके साथ जो घटना हो रही है उनको अपनी घटना समझो। क्योंकि एज अ
1: जी
0: ह्यूमन, एक इंसानियत के नाते हमें ये तो समझना है, ये मन है जो इन चीजों सबको देख के विचलित तो होता ही है, जाहिर सी बात है। तो मेरा यही है कि उन सब के लिए हमको आगे बढ़ना है, उनके जो चुनौतियां हैं उनमें उनको हमें सपोर्ट करना है, उनसे लड़ने के लिए हमको उनके साथ खड़े होना है। और मैं अकेली गुलजार नहीं, सभी लोगों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण है योगदान।
1: जी बिल्कुल। और गुलजार, आपने साथ साथ आपने प्रिवेंशन ऑफ वेमेन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एट वर्क प्लेस की बात भी की थी, तो वो भी थोड़ा बताइए ना, पॉश के बारे में बताइए ना, पॉश क्या कहता है और कैसे महिलाओं को पॉश के बारे में पता होना चाहिए।
0: बिल्कुल, जब मैं गई थी तो मुझे पोश के बारे में नहीं पता था, जो मेरे साथ फर्स्ट घटना हुई थी वो मेरे लिए बहुत एक ये था। लेकिन उन चीजों के बाद जब मैंने दूसरे एनजीओ को ज्वाइन किया, जब मैं घुमंतू और अदर समुदाय के साथ काम कर रही थी उनके राइट्स में, तो मैंने पोश के बारे में जाना कि हमारे लिए पोश बना, जहाँ भी महिलाएं काम करती है उनके लिए पोश का एक वो है, वहां पे अगर उनको कोई काम के दौरान उनके साथ कोई समस्याएं होती है तो वहां उनको बताना, उनके खिलाफ कार्यवाही होती है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और उनका नाम भी गुप्त रखा जाता है। तो हम महिलाएं जो भी हैं या हमारे साथ जो घटनाएं
1: थोड़ा खुल
0: होती
1: के
0: है, वो
1: बताइए ना, थोड़ा खुल के बताइए ना, किस तरह की समस्या है।
0: जैसे कि काम के दौरान महिलाओं के साथ, उनके साथ ऐसी हिंसा हो रही है, छेड़छाड़ वाले मामले हैं, कई बार महिलाओं को बहुत देखना पड़ता है। मेरे साथ भी कई बार ये चीजें हुई हैं, और मैंने उसमें ये लिया है कि अकेली महिलाएं होती हैं जब काम के दौरान, लोग सोचते हैं भाई अकेली महिलाएं काम करी, कई बार उनको मिसयूज करने का भी सोचते हैं, वो उनके साथ गलत करने का भी सोचते हैं कि भाई हम इनका फायदा उठाएं, तो कई बार वो पोश कानून को नहीं जानती हैं, तो वो चुप हो जाती हैं या वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। जो पोश कानून हमारे लिए बनाए, हमारे देश में जो हमारे लिए कानून बने, सभी बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि हमें उनके बारे में जागरूक होना पड़ेगा और जानकारी हासिल हो करनी पड़ेगी, और उनके लिए हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे लिए जब कानून बने तो हमें डरना क्यों है? तो पोश
1: जी
0: का हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं किसी भी मामले में, कोई छेड़छाड़ का मामला है, कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, कोई काम के दौरान आपके साथ चाहता है कि भाई हम मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ मैं आपका प्रमोशन करा दूं, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको मेरे से रिलेशनशिप में आना है। कई बार होता है ऐसा, तो मुझे लगता है वहां पे पोश अपने लिए बहुत अच्छा है। इवन पोश का सपोर्ट लेना चाहिए और हमें अपनी बातों को अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पोश कमेटी जो बनी, पोश कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो हमारे लिए होते हैं। वहां पे महिलाएं भी होती है, खाली पुरुष नहीं होते, हम वहां पे महिलाओं से भी अपनी बात कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि महिलाओं के साथ महिलाएं कंफर्टेबल होती है, तो पोश में जो मेंबर होते हैं वहाँ पे महिलाएं भी होती है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पोश में अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो हमको पोश का सपोर्ट लेना चाहिए, इवन पोश से हमारी शेयरिंग करनी चाहिए और हमारे लिए जो हो उचित कार्रवाई करते हैं वो लोग।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और निश्चित रूप से महिलाओं को अपनी इंटीग्रिटी, अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और देश का कानून उनको वर्क प्लेस पे समानता के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लैंगिक भेदभाव के काम करने का अधिकार देता है, और किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना से उनको बचाने में मदद करता है। तो पॉश एक्ट के बारे में आप भी पढ़िए, जानिए श्रोताओं। और गुलजार ने तो उसके उस पर उसकी तरफ एक इशारे में कम समय में थोड़ी सी बात रखी ही है। हालांकि इसके बारे में विस्तार से हम रेडियो के किसी और शो में बात करेंगे। तो जुनून, हमने जुनून की बात करी गुलजार से। गुलजार, ऐसी कोई बात जो मैं जिसका सवाल आपसे नहीं पूछ पाया हूँ लेकिन आप श्रोताओं से कहना चाहते हो, तो कार्यक्रम के अंत में चलते चलते आप कह सकते हैं।
0: मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने महिलाओं को देखा है, हमारे देश में बहुत सारे कानून है और महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छे राइट्स हैं, तो मुझे ये मानना चाहिए कि जैसे मैंने अपने संघर्ष से जीवन को आगे बढ़ाया है और मुझे लगता है कि मेरी जैसी गुलजार होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है महिलाओं में, जिस प्रकार मैं काम कर रही हूँ, महिलाएं डर जाती हैं, पीछे हो जाती हैं, कहती हैं भाई आपके जैसा सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं बोलती हूँ कई बार उनको, मेरे पापा ने तो मुझे घर से भी निकाल दिया था, आप और कैसे सपोर्ट की बात करोगे, मैंने तो अपने स्तर को ऐसे स्टार्ट किया, तो आपको हार नहीं माननी है। तो मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी कि कभी भी हार मत मानो, जुनून हमेशा जिंदा रखो अपने में। जिंदा दिल होने की यही निशानी है कि जुनून होना चाहिए। जुनून होगा तो आप अपनी लाइफ में जरूर, आज मैं यहाँ पहुंची हूँ और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं फेलोशिप को करके इवन आगे आगे बढ़ के मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ, इवन अब मैं LLB के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। दोस्तों, जिस गुलजार को ये भी नहीं पता था उसके क्या कानून है, आज वो कानून की पढ़ाई पढ़ने वाली है। तो ये एक प्राउड मोमेंट है कि भाई मैं अपने राइट के बारे में नहीं जानती थी। आज
1: जी
0: मेरे फैमिली में जब बात होती है पापा को, तो मैं एक ही कहती हूँ, पापा अपने सबके हक हैं। तो पापा पता है बराबर में खड़े होके कहते हैं, बेटा मुझे अच्छा लगता है तेरे को देख के। और पापा जो घर से नहीं निकलने देते थे, आज मैं बिंदास राजस्थान से मुंबई, दुनिया में पता नहीं किस किस कोने में घूम रही हूँ। वही पापा हैं, वही मैं हूँ। और मुझे लगता है कि सही गलत पे हमें बात करनी चाहिए, ये नहीं कि हमारे बड़े गलत कहते हैं, ये नहीं, हम बड़ों को समझना है और समझाना है। कुछ चीजें हमारे घर के बड़े होके भी कुछ चीजों को नहीं समझ पाते क्योंकि उनको उस पर ज्ञान नहीं होता है कई बार कुछ चीजों को लेके। तो मुझे लगता है कि वो जरूर पापा से शेयरिंग की ना, मैंने पापा से शेयरिंग की और आज पापा प्राउड फील करते हैं इस बात के लिए कि भाई बेटी मेरी कहाँ, मैंने रोका था वो कहाँ से कहाँ। वो कहते हैं ना जिद्दी है तू, जिद्दी जुनून का
1: क्या
0: एक एक नाम है। तो जिद्दी जुनून के लिए जिद्दी होना जरूरी है। और
1: बात
0: सबसे बड़ी बात कि हार नहीं माननी, अगर हार मान गए ना। और मेरे को कुछ चीजें इंस्पायर करती है कि मैं पीछे जो चीजें लड़के आई हूँ वो मेरी लड़ाई छोटी नहीं थी, तो ये
1: जी,
0: लड़ाई छोटी नहीं है। और हार वहां भी नहीं मानी हूँ और जीत के आई हूँ। तो मुझे लगता है सफल होने के लिए जिद्दी और जुनूनी बहुत जरूरी है। तो
1: क्या
0: जुनून, थैंक यू सो
1: बात
0: मच।
1: है। श्रोता हूँ, ऐसे ही किसी जिद्दी से हम आपको मिलवाते रहेंगे, और जल्दी ही एक जिद्दी आपके शो पे और आएगा, और हम उस जिद्दी से बात करेंगे कि तुम्हारा जुनून क्या है। तो गुलजार के जुनून को आपने जाना, समझा, आपने समय निकाला हमारे शो के लिए। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शरद आपको धन्यवाद देता हूँ इस शो से जुड़ने के लिए, और ऐसे ही सुनते रहिए आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन 107.8 FM। लेकिन एक बात, चलते चलते मैं देख पा रहा हूं अपनी खिड़की के बाहर से सूरज ढल चुका है, अंधेरा आ गया है। लेकिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कहते हैं ना, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और भारत उठेगा। जय हिंद। शरद त्रिपाठी साइनिंग ऑफ।
0: जय हिंद, जय भारत।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
2: राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को कपूरथला के राज परिवार में हुआ था।
4: उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे भारत को विदेशी सत्ता से मुक्त होते हुए देखें और इस दिशा में कार्य करें। उनकी इस इच्छा को बढ़ावा दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले जी की मार्फत ही वे गांधी जी से मिली। अपने माता पिता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया। गांधी जी के निर्देशन में उन्होंने पंजाब के बुनकर संघों को व्यवस्थित करने, जालंधर जिले के ग्राम उद्योगों को पुनर्गठित करने, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निरक्षरता जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और स्त्रियों की दशा सुधारने जैसे कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। गांधी जी की प्रेरणा से वे कांग्रेस में शामिल हुई और नमक सत्याग्रह में भाग लेकर गिरफ्तार हुई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और कारावास की यातनाएं भी सही। भारत के स्वतंत्र होने पर वे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का श्रेय भी राजकुमारी अमृत कौर को ही जाता है। उनका मानना था कि भारत की प्रगति बालकों के चरित्र निर्माण और उत्थान से संभव है। एक सक्रिय और समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन जीने के बाद 6 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया।
5: आज शाम 7 बजे बाढ़ चौक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। अधिक से अधिक संख्या में आए और लाभ उठाए।
6: अरे नमस्कार राम भरोसे काका।
7: नमस्कार नमस्कार भैया, क्या बात है? आज दोनों अकेले ही? साथी लोग कहाँ हैं?
6: वो सब आपकी दुकान पर है। हम तो न्यूज़पेपर लेने चले आए थे। कहाँ से आ रहे हैं काका?
7: मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ।
6: इसीलिए 2 दिन से आप दुकान पर दिखे नहीं। पर ये अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम कैसे बन गया?
7: अरे वो अपने चौक वाले दीनू काका है ना, उनकी बहू विमला माँ बनने वाली है और उसको पी लिया हो गया है। डॉक्टर ने दिल्ली ले जाने को कहा था तो उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवा के आ रहा हूँ।
6: क्या वो बहुत बड़ा अस्पताल है काका?
7: हाँ बड़ा है और सुविधाजनक भी। वहाँ कई बीमारियों का इलाज होता है। बहू का इलाज शुरू हो गया है। अरे उसे फायदा भी है।
6: इतना अच्छा संस्थान किसने बनवाया काका?
7: बेटा इसकी स्थापना राजकुमारी अमृत कौर ने की थी।
6: राजकुमार और राजकुमारी ही तो बनवा सकते हैं ये सब, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है?
7: अरे अमृत कौर वैसी राजकुमारी नहीं थी।
6: फिर कैसी थी?
7: चलो पहले दुकान चलते हैं, फिर विस्तार से बताऊंगा तुम्हें।
8: क्यों रे छोटू, आधे घंटे से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू कहाँ भटक रहा था?
6: बस स्टैंड ही गया था, काका से पूछ ले। और ये ले अखबार। अरे राजू भाई चाय पिलाओ यार, बढ़िया अदरक वाली।
8: अच्छा छोटू मैं चलता हूँ।
6: अरे रुक जा, आज काका राजकुमारी अमृत कौर के बारे में बताएंगे।
9: भैया चाय ले लो, चाय ले लो।
6: हाँ ले, चाय भी आ गई, चल बैठ। हाँ तो काका, उनका नाम राजकुमारी अमृत कौर था। और
7: अमृत कौर सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं थी बेटा, अपने कामों से उसने लोगों के दिल पर राज किया। अमृत कौर के पिता पंजाब की रियासत कपूरथला के राजा के बेटे थे। अमृत कौर की माँ सामाजिक कार्यकर्ता थी, अपनी माँ से उसने समाज सेवा का पाठ सीखा। राजकुमारी अमृत कौर की शिक्षा इंग्लैंड में हुई।
6: हाँ भैया राजकुमारी जो थी,
7: लेकिन उनका मन तो भारत में रमता था, वो भारतीय संस्कृति के रंग में रंगी हुई थी।
10: राजकुमारी अमृत, यू आर ग्रेट, तुम इंग्लैंड की नंबर 1 प्लेयर हो, यह हमारे कॉलेज के लिए फक्र की बात है। तुम क्रिकेट और हॉकी दोनों की ही कैप्टन हो, तुम्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ इंग्लैंड का अवार्ड दिया जाता है।
11: मैं इस समय अपनी माँ को याद कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे अपने सारे कामों की शक्ति दी। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
10: अमृत कौर, आप भविष्य में इंग्लैंड के लिए खेलती रहेंगी या कुछ और भी इरादा है, मतलब शादी वादी?
11: नहीं नहीं, शादी तो कतई नहीं, वो जिंदगी भर चलता रहेगा। मेरी नजर अपने भारत पर है, उस सरजमी को मेरी जरूरत है और मुझे उसकी।
10: अमृत कौर की भारत को ही नहीं इंग्लैंड को भी उतनी ही जरूरत है। ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जिसने हमारे ब्रिटेन का नाम रोशन किया, हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। धन्य है भारत देश जिसने ऐसे महारथियों को पैदा किया।
11: मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने मेरे नाम से एक अवार्ड शुरू किया, और चाहती हूँ इस अवार्ड में जात पात रंग भेद का भेदभाव ना हो, ये योग्यता और व्यक्तित्व के आधार पर दिया जाए। और जो मुझे आज ये सम्मान राशि दी गई है उसे मैं कॉलेज के विकलांग छात्र एल्विन के लिए समर्पित करती हूँ।

0: और एक दिन इंग्लैंड का जहाज भारत जाने को तैयार था। इंग्लैंड वासी और दूसरे नागरिक अपनी प्रिय साथी को भावभीनी विदाई दे रहे थे।
1: आप जा तो रही हैं भारत, पर यहाँ आपको हम सब बहुत मिस करेंगे। ये देखिए, दोनों स्टूडेंट फेडरेशन के सारे मेंबर्स आपको विदाई देने आए हैं।
2: अलविदा दोस्तों, दोस्ती की महक भारत से इंग्लैंड तक पहुंचती रहेगी। सबकी जय हो, अनीति का नाश हो। अलविदा, फिर मिलेंगे।
0: और भारत लौटने के बाद वो सीधी पंजाब के कपूरथला रियासत के एक गांव में पहुंची।
2: भाइयों, मेरे स्वागत और सम्मान में जो भव्य समारोह आप करने की बात कर रहे हैं, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो सारा पैसा आप गांव के विकास में लगाइए।
3: राजकुमारी अमृत कौर की जय। राजकुमारी अमृत कौर की जय। राजकुमारी अमृत कौर की जय।
2: मैं देख रही हूँ भारत में महिलाओं की दशा अच्छी नहीं है। अब हम सबको मिलकर लड़कियों की शिक्षा और उनके समग्र विकास के लिए काम करना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा। मैं 20,000 रुपया गांव के खेल मैदान और स्कूल के लिए देना चाहती हूँ।
3: राजकुमारी अमृत कौर की जय। राजकुमारी अमृत कौर की जय। राजकुमारी अमृत कौर की जय।
0: अमृत कौर महिलाओं के उत्थान के लिए जुट गईं और इस महायज्ञ में कई लोगों को शामिल कर लिया। छोटे छोटे गांव कस्बों तक पैदल यात्रा की।
4: राजकुमारी जी, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मुझ असहाय पर कोई दया नहीं करता, सब मुझे पापी कहते हैं।
2: अरे उठो, कौन हो तुम? रो मत बहन, रोने से कुछ नहीं होगा। बोलो क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
4: मैंने प्रेम विवाह किया था। हम दोनों कुछ दिन साथ रहे, फिर एक दिन अचानक मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने उसके बच्चे को जन्म दिया, लेकिन लोग मुझे गांव में नहीं रहने देते। मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं कोई पापी नहीं हूँ दीदी, मैं पापी नहीं हूँ।
2: हाँ, तुमने कोई पाप नहीं किया। किसी से प्रेम करना पाप नहीं है, ईश्वर ने हमें सबसे प्रेम करना सिखाया है। चलो, तुम्हारे बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। चलो चल पड़ो, रुको मत, जीवन के सत्य को स्वीकारो, प्रेम के प्रकाश को सब में बांट दो। आइए पिताजी।
5: अरे बेटी, क्या कर रहे हो? अरे देखो, ये किताब देखो, गोपाल कृष्ण गोखले कल ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं और गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन पर लिखी ये पुस्तक तुम्हारे लिए दी है।
2: ये मेरे जीवन में एक नया मोड़ है। अफ्रीका में लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं पिताजी। मैंने एक प्रण किया है।
5: बोलो बेटा।
2: मुझे सौगंध है गीता की, सौगंध है बाइबल की, मैं अविवाहित रहकर लोगों की सेवा करूंगी।
5: ठीक है, हम मैं आगे क्या बोलूं? ईश्वर तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ इस सेवा मार्ग पर। बढ़ो और आगे बढ़ो।
2: पिताजी, माँ की जनसेवा मैंने बचपन से देखी है, आपके त्यागी स्वभाव ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक इस सेवा मार्ग पर चलती रहूंगी।
5: देखो बेटा, ऐसा काम करो जिससे इस दुनिया में जरूरतमंद गरीब लोगों का कल्याण हो। राह में कांटे जरूर मिलेंगे, पर तुम्हें निडर होकर यह कार्य करना होगा, समझे बेटा?

0: राजकुमारी जी, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। उनका कहना है हम राजकुमारी जी से मिले बगैर नहीं जाएंगे यहाँ।
1: पिताजी, सबसे पहले तो आप सबसे ये कह दीजिए कि मुझे राजकुमारी कहकर संबोधित नहीं करें। मैं सिर्फ अमृत कौर हूँ, मैं सब लोगों की बहन बेटी हूँ बस। हाँ, आप चलिए और उनसे कहिए परेशान ना हो, मैं उनसे अवश्य मिलूंगी।
2: वाह बेटी वाह, तुम्हारी बातें सुनकर मैं अभिभूत हो उठता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर सबको तुम जैसी बेटी दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे सभी प्रयत्नों में तुम्हारा साथ दें।
3: गांधी जी के भारत लौटने पर अमृत कौर ने उनसे कई बार भेंट की।
0: महात्मा गांधी की
4: जय!
0: महात्मा गांधी की
4: जय!
0: महात्मा गांधी की
4: जय!
1: बापू, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे मिलने की कई दिनों से इच्छा थी, आज सौभाग्य मिला। आपके साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह से मैं अभिभूत हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
5: बेटा, सीखा है तो और लोगों को सिखाओ। सेवा मार्ग सबके लिए है। अपने पति को इस काम के लिए प्रेरित करो।
1: मैंने अविवाहित रहने का प्रण किया है। मैं गरीबों और असहायों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहती हूँ।
5: अरे, तुम कह रही थी मुझसे तुमने बहुत सीखा है, अब मैं तुमसे सीख रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आओ देखो, ये कुष्ठ रोगी, इन्हें सहानुभूति नहीं, इन्हें तो स्नेह चाहिए।
1: लाइए, मुझे दीजिए, मैं मलहम लगा देती हूँ। आओ इधर आओ। आज मेरे मन को कितनी शांति मिल रही है। मैं आपसे मिलकर धन्य हूँ बापू।
5: तुम्हारा नाम ही सिर्फ अमृत नहीं है, तुम्हारे पास प्रेम का अमृत भी है। उस अमृत को बांटते चलो। जीवन की सत्यता इसी में है।
1: आज मुझे मेरे गुरु मिल गए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे आज दीक्षा मिल गई। बताइए, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं?
5: तुम लोगों के लिए जियो और ऐसे काम करो कि मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूं, तुमसे हमेशा प्रेरित रहूं। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी।
1: बापू, मैं नतमस्तक हूं। मेरा मानव जीवन सफल हो गया।
3: और राजकुमारी अमृत कौर निकल पड़ी अकेली, गाते हुए, एकला चोलो रे। और आंधी तूफान सबसे जूझते हुए उनके कदम आगे बढ़ते रहे। कई बार अमृत कौर ने गांधी जी से साबरमती आश्रम में रहने की अनुमति मांगी, पर गांधी जी ने कहा, बेटी तुम घर पर रहो और माता पिता की सेवा करो। 1924 में अमृत कौर की माता और 1930 में पिता का स्वर्गवास हो गया।

0: पिताजी आप चले गए और माँ भी। नहीं, ये आंसू नहीं, श्रद्धा सुमन है। माँ, अब मेरे जीवन का हर पल जनसेवा के लिए होगा, भारत देश के लिए होगा। मेरा अगला कदम बुनकर और हरिजन कल्याण के लिए होगा।
1: 23 दिसंबर 1932, राजकुमारी अमृत कौर अखिल भारतीय महिला मंच को संबोधित कर रही थी।
0: मेरी प्यारी बहनों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने हमारे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला है। आज मैं अखिल भारतीय महिला मंच से उसका जोरदार विरोध करती हूँ।
1: राजकुमारी अमृत कौर 16 वर्ष तक महात्मा गांधी की सचिव रही और कई आंदोलनों का संचालन किया।
0: बंदूक, तोप, लाठियां कोई नहीं रोक सकता। हम आजादी लेकर रहेंगे। अंग्रेजों,
2: भारत छोड़ो!
0: अंग्रेजों,
2: भारत छोड़ो!
0: अंग्रेजों,
2: भारत छोड़ो!
0: महात्मा गांधी की
2: जय!
0: महात्मा गांधी की
2: जय!
0: महात्मा गांधी की
2: जय!
1: उन्हें सरकार ने कालका में गिरफ्तार कर लिया, फिर वहां से अंबाला जेल में भेज दिया। जेल में एक संतरी उनका हाल चाल पूछने आया, तब उन्होंने कहा,
0: अंबाले की इस काल कोठरी में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। मैं, बाइबल, गीता और पानी का एक बर्तन। बाहर सरकार हमें तंग कर रही थी और जेल में चूहे। दोनों में अंतर नहीं है। जेल में गंदगी और खराब भोजन भी हमारे साथी हैं।
3: बीबी जी, आपका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, आप जेलर से निवेदन कर लें तो आपको रियायत मिल सकती है।
0: नहीं चाहिए, मुझे रियायत नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, संपूर्ण आजादी।
1: और फिर वो दिन भी आया, 15 अगस्त 1947, जब हम आजाद हो गए, हमें आजादी मिल गई।
0: भाइयों, देश आजाद हो गया, हम सबके लिए कितनी खुशी की बात है। पर अभी हमारे सामने कठिनाइयों के पहाड़ खड़े हैं, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। अब हमें इनसे लड़ना है।
4: राजकुमारी अमृत कौर की
2: जय!
4: राजकुमारी अमृत कौर की
2: जय!
4: राजकुमारी अमृत कौर की
2: जय!
0: नहीं, जयकार मेरी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जय बोलो भारत माता की, जय उन शहीदों की जिनके बलिदान से हम आजाद हुए और आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जय हो जनता जनार्दन की, भारत माता की
2: जय!
0: भारत माता की
2: जय!
3: अमृत कौर जी, अब आपकी आगे की क्या क्या योजनाएं हैं?
0: सबसे पहले मैं पूरे भारत देश का दौरा करना चाहती हूँ। सांप्रदायिकता का ये बीज जो अंग्रेज बो गए हैं, उसे जड़ से उखाड़ना होगा। हम मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा।
5: हम सब आपके साथ हैं, युवा पीढ़ी आपके साथ है।
0: तो बस, अब और कुछ नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, वीर दल सजा रहे। वीर तुम बढ़े चलो।
1: एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी चाहती तो सारे ऐशो आराम पा सकती थी, पर नहीं, उसने तो गांधी जी की राह पकड़ ली। वैभव विलास को छोड़ जेल में चक्कियां पीसने का काम किया, अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, गरीब असहाय लोगों के लिए।
6: काका, राजकुमारी अमृत कौर आजादी के बाद कहां रही और उन्होंने क्या किया?
1: अमृत कौर ने आजाद भारत में पहली स्वास्थ्य मंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। देश को आजादी तो मिल चुकी थी पर जनता के सामने बहुत समस्याएं थी। अमृत कौर ने सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संतु निरामय वाला रास्ता पकड़ा और चल पड़ी। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे संस्थान की स्थापना की।
0: भाई देखिए, हमारा देश तो आजाद हो गया पर अभी भी हम बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निरक्षरता जैसी कुरीतियों के गुलाम हैं। और इन सबसे लड़ने के लिए पहले इस देश की स्त्री को साक्षर होना होगा। माँ साक्षर होगी तब पूरा परिवार साक्षर होगा।
3: और राजकुमारी जी, दीपावली नजदीक है, सारा देश दिवाली मनाने को बेताब है। आप भी कुछ दिन आराम कीजिए, आप तो लगातार काम में लगी हैं, कहीं आप स्वयं अस्वस्थ ना हो जाएं।
0: सेक्रेटरी साहब, मुझे मेरे कामों से ही ऊर्जा मिलती है, अगर आराम करने बैठ गई तो बीमार हो जाऊंगी। हमें अज्ञानता के अंधेरों को दूर कर शिक्षा की रोशनी पूरे देश में फैलानी है।
3: अरे सुनो, आप लोग कहाँ चले आ रहे हैं? आप कल आना, मंत्री जी अभी व्यस्त हैं।
0: अरे आने दीजिए उन्हें, आइए कहिए क्या बात है। लीजिए लीजिए, पहले पानी पी लीजिए।
7: जी मंत्री जी, मैं एक आम आदमी हूँ, हमारे कस्बे के बच्चों को शिक्षा की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है, बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं।
0: आश्चर्य, ये बात मेरे कानों तक क्यों नहीं पहुंची? सेक्रेटरी साहब।
3: जी मैम।
0: ये क्या चल रहा है, इन महाशय को मुझ तक पहुंचने का मौका क्यों नहीं मिला?
3: नहीं वो वैसी बात नहीं मैडम, वो
0: मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। आज ही इनकी समस्या पर गौर कर अभी से अमल कीजिए। अरे अरे, भारत की प्रगति बालकों के चरित्र निर्माण और उत्थान से ही संभव है।
1: अमृत कौर एक दिन गहरी नींद में सो रही थी, तभी उन्होंने एक सपना देखा।

0: व्रत कौर।
1: कौन है, कौन है, कौन मेरे ही यज्ञ में विघ्न डाल रहा है?
0: मैं हूं यमराज, उठो जागो, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तुम्हारे पुण्य कर्मों का घड़ा भर गया है, अब छलक रहा है, तुम्हारा जीवन पूरा हुआ, चलो स्वर्ग चलो।
1: नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम करने हैं, बहुतों को मेरी जरूरत है। मैं मृत्यु से नहीं डरती, पर अपने अधूरे कामों को छोड़कर नहीं जा सकती।
0: तुम्हें यमराज का आदेश मानना ही होगा, चलो मेरे साथ।
1: ठीक है, मैं मृत्यु का वरण करने को तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है।
0: मुझे भी मंजूर है, बोलो।
1: मुझे दोबारा मानव जन्म मिले और भारत में ही फिर से अपने भाई बहनों की सेवा करती रहूं, जन्मों जन्मों तक।
0: ठीक है, पर तुम अमृत कौर बनकर दोबारा जन्म नहीं ले सकती। हर जन्म में नया रूप लेकर आओगी। जब रोगियों के घावों को जो सहलाएगा वो हाथ तुम्हारा होगा। जब भी अत्याचारियों के खिलाफ कोई आवाज उठाने आगे आएगा उसकी आत्मा में तुम रहोगी। जाता हूं, मैं फिर आऊंगा, तब तक तुम अपने काम निपटा लो।
2: देखा तुम लोगों ने, कर्म ही उनके लिए पूजा थी, और लगातार काम करते करते कब जीवन की संध्या हो गई पता ही नहीं चला उन्हें। 75 वर्ष पूरे कर ये सूर्य अस्त हुआ, और अस्त होते हुए सूर्य ने कहा था, जीवन नाम ही चलने का है।
3: वाह काका, आज का दिन सार्थक हो गया।
2: बेटा, सार्थकता तो तब मानी जाएगी जब हम सार्थक काम करें। तो चलो, शहर में स्वास्थ्य शिविर लगने वाला है, लोगों को जानकारी दो, स्वस्थ रहे घर तेरा मेरा, तभी होगा सच्चा सवेरा।
4: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जागृति इस कार्यक्रम को लेकर के हम आप सभी के बीच में आए हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं महिलाओं की काउंसलिंग, यानी कि जब भी महिलाओं के साथ कोई भी घरेलू हिंसा होता है, उनके साथ बैठे, उनको समझे, बातें करें और वो क्या चाहती हैं, किस कारण से ये घरेलू हिंसा हो रहा है, इन विषयों को हम समझ सके। एक परिवार में हम जो सदस्य रहते हैं, अगर एक दूसरे को ये परामर्श करते हैं और मदद करते हैं, तो हम बाहर किसी परामर्शदाता के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कई बार आजकल हम जो देखते हैं, महिलाएं घर पे अकेली होती हैं और जब उनके साथ घरेलू हिंसा होता है तो वो किसके पास जाएं और वो किसकी मदद ले, उनकी बात कौन सुनेंगे और उन्हें मार्गदर्शन कौन देंगे।

0: ऑफिस में पहुंच सकते हैं और उन अधिकारियों से आप मदद ले सकते हैं। आज आप सभी को इस विभाग के बारे में और जो महिला ऑफिसर है जो वहाँ पर आपको मिलेगी या फिर आप जब जाएंगे उनसे आप मदद ले सकते हैं, आपसे हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं ताकि आपको इस MSSK यानी कि महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के बारे में भी जानकारी हो और वो विभाग किस तरीके से महिलाओं के लिए मदद कर सकती हैं, इन विषयों के ऊपर आज हम जानेंगे। हम स्वागत करते हैं गीता सोलंकी जी को। आप परामर्शदाता है यानी कि काउंसलर हैं इस MSSK आबरोड विभाग में। गीता जी, आपको रेडियो मधुबन में जागृति इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: तो गीता सोलंकी जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र है ये कब से शुरू हुआ और ये विभाग खोलने के पीछे का जो एक उद्देश्य है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएं।
1: धन्यवाद जी। महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 28 अगस्त 2023 को आबूरोड ब्लॉक में ये शुरुआत की गई थी। इसमें मोस्टली ये होता है कि जैसे आमतौर पे घरेलू हिंसा है, नाता प्रथा है, बाल विवाह है, इस टाइप के जो लेडीज़ों के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो वो पुलिस थाने में आने से डरती हैं। आमतौर पे बोला जाए तो वर्दी देख के लेडीजें डर जाती है, थाने में आने से कतराती है। तो उस हिसाब से हमें महिलाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर बिठाया गया है जिसमें दो काउंसलर होती है, एक तो सोशियोलॉजी काउंसलर और एक को बोल सकते हैं लीगल एडवाइजर। दोनों बैठते हैं ताकि उन लेडीज़ों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आमतौर पर किस वजह से हो रहा है, वो सारी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पास वो लेडीजें आती है, हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि जो पुलिस और आम जनता के बीच जो गैप है उन गैप को ख़त्म करना। और क्योंकि लेडीजें डरती है थाने में जाने से, वो पुलिस को कोई बात अपने बता नहीं पाती है तो हमारे पास आती है, हम एक मित्रवत रूप से उनसे रूबरू करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं उनसे, पूरी एक ये माने तो घर के हिसाब से उनके पास में बिठा के बातचीत करते हैं कि आपके साथ क्यों हो रहा है। वो डरती भी है, पहले बताती नहीं है, फिर हम फिर भी पूछने का प्रयास करते हैं, दो चार बार पूछते हैं एक आराम से, तो फिर वो बताती है कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, हम उनको जानते हैं। फिर उसके दूसरी सामने वाली पार्टी को बुलाते हैं, दोनों के बीच में काउंसलिंग कर और काउंसलिंग करके फिर हम उनके बात के तय तक जाने की कोशिश कर फिर उसका हम समाधान।
0: बहुत सुंदर। यानी कि आप लोग जो न्याय व्यवस्था है या प्रशासन जो कानूनी रीति से महिलाओं को सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं वो विभाग और महिलाओं के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं ताकि महिलाओं को जो पुलिस स्टेशन जाने में डर लगता है या फिर सीधा जाके हम कोर्ट में कैसे चले जाएंगे, ये जो प्रशासन से मदद लेने का जो एक झिझक है उसको ख़त्म करें और वहाँ तक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़े
1: जी,
0: और एक बातचीत से ही सिलसिला ख़त्म हो जाए
1: जी,
0: और जो समझौता कर सके।
1: हाँ,
0: ये आपकी प्रयास रहती। गीता सोलंकी जी, ये बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि एकल परिवार होते जा रहे हैं जहाँ पर महिलाएं असुरक्षित या अकेली हो जाती हैं तो उनको कोई देखभाल करने या फिर जब उनके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तो उनकी सुनने वाले और उनको समझाने वाले नहीं होते हैं
1: जी।
0: तो आपका जो विभाग है, जैसे आपने कहा कि अभी आपके ऑफिस में आप काउंसलर हैं, परामर्शदाता हैं और आपके साथ एक लीगल एडवाइस देने के लिए एक और ऑफिसर होते हैं
1: जी,
0: और आप वैसे इस प्रशासन के बीच में ब्रिज बनने के लिए है तो इसलिए आप यहाँ के सदर थाने में आपका ऑफिस है और वहाँ पर बैठते हैं
1: जी।
0: जो भी महिलाएं थाने में आती हैं कोई परेशानी लेकर के तो सबसे पहले आप ही से बात करेंगे
1: हमारे से।
0: बहुत सुंदर। तो इस डिपार्टमेंट को खोलने की आवश्यकता क्या पड़ी और 2023 अगस्त में ये जो शुरू किया है
1: जी,
0: इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी आप बता सकते हैं?
1: शुरुआत

0: आजकल आमतौर पे लेडीज़ों के साथ बहुत सारा अन्याय हो रहा है बहुत जगह जगह पर, तो खासकर महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। तो इसमें क्या है कि अपन जैसे महिलाओं को आमतौर पर उनको हेल्प मिल जाए, मदद मिल जाए, और एक चीज़ बोली जाए तो वो हर चीज़ में मदद चाहती है, लेकिन उसको क्या है घर में भी वो हर जगह से उनका सपोर्ट अगर घर से मिल जाता तो वो परेशान नहीं होती,
1: बाहर नहीं जाती,
0: बाहर नहीं जाती। तो बाहर जाने से और बाहर जाने के लिए भी उसके पास ये है कि वो एक समाज से डरती है, इज्जत से डरती है कि अगर मैं पुलिस लाइन में चली गई तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग समाज में मुझे क्या बोलेंगे। तो एक वो घर बचाना तो चाहती है लेकिन उनके वो उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करें। इसीलिए ये योजना है ताकि हम बैठ के वो उनके बात गुप्त भी रखी जाए और उनकी हेल्प भी कर सके, उन पे साथ कानूनी कार्रवाई न करते हुए भी उनकी घर की जो समस्या है वो मिट जाए।
1: मतलब एक तरीके से आप एक फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ बातचीत करके
0: उनका सपोर्ट कर सके,
1: सपोर्ट कर सकते हैं
0: जी।
1: तो गीता जी, अभी आप पिछले एक साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं
0: जी,
1: तो किस प्रकार की परेशानियाँ महिलाएं देखती हैं आप रोड के आसपास की, और किस प्रकार की केसेस लेकर के महिलाएं आपके पास आते हैं?
0: हमारे पास ज़्यादातर केसेस जाते हैं घरेलू हिंसा, नाता प्रथा, इस टाइप के ही आते हैं।
1: तो ये नाता प्रथा क्या होता है?
0: जिससे कम उम्र में शादी कर देते हैं लड़कियां के, बाल विवाह जिसे कह सकते हैं। तो उसमें फिर क्या उसका कम उम्र में करते हैं तो या तो आगे जाके डिवोर्स हो जाता है, या कई बार ऐसे हो जाता है कि मतलब उम्र में
1: लड़की की उम्र कम
0: और लड़के की ज़्यादा होती है तो फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसकी सेकेंड मैरिज कर देते हैं। हमारे पास ज़्यादातर ऐसे कैसे जाते हैं आदिवासी एरिया के हिसाब से, एक शादी हो गई है उसके बाद थोड़ी देर, जैसे यहाँ क्या मोस्टली गिरासियों में शादी होते ही उनको शादी का इतना इम्पोर्ट, समाज के ऐसा कुछ रीति रिवाज है, जैसे इनके समाज में थोड़ा अलग सिस्टम है, ऐसा औरत को ले आते हैं उनके साथ थोड़े दिन 10-15 दिन महीना भर बिताते हैं फिर दूसरी कोई और ले आते हैं। तो पहले वाले के साथ मारपीट, झगड़ा, घर से निकाल देना, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब वो कहाँ जाएगी, उसको तो घर से भी उधर की नहीं इधर की नहीं, इस टाइप के केसेस ऑलमोस्ट आते हैं। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा अब उनको समझाइश करने ये प्रयास किया है कि या तो इस टाइप का करो मत, और करो तो फिर दोनों को साथ में समझाइश करके रख, या फिर ऐसा आता है कि लेडीज़ को मारपीट करते हैं या अपने पति शराब पी के, ज़्यादा कैसे जैसे आते हैं कि शराब पी कर मारपीट होती है, मानसिक शारीरिक हर तरह से प्रताड़ित करते हैं।
1: तो जब महिलाएं आती हैं आपके पास, उनके अंदर किस प्रकार की, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक बार महिला अगर आपके पास आ रही है मिलने के लिए तो वो कहीं ना कहीं एक दिल में एक कड़वापन हो, या फिर टूट चुका है वो परिवार से, घर से, या फिर उस व्यक्ति से, इसलिए वो आपके पास
0: हमारे पास आती है,
1: वो अभी और रहना नहीं चाहती है उस संबंध में। लेकिन ऐसे में फिर आप लोग जब उनकी काउंसलिंग करते हैं और समझौता कराने की कोशिश करते हैं
0: जी,
1: तो फिर उस समय महिलाओं की क्या रिस्पांस होती है? क्या वो कन्विंस होकर के जाती है, या फिर रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है उस दौरान महिलाओं की जो जर्नी होती है वो क्या होती है?
0: जर्नी अब जब आएगी तो शुरुआत में स्टार्टिंग में आती है लड़ाई झगड़ा होता है घर में, तभी वो पूरी तरह से प्रताड़ित होती है, तभी अब साथ हमारे पास पहुँचती है। हमारे पास आती है तब तो पूरी तरह से एकदम गुस्से में वो होती है, तो कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं होती है कि बस हमारा तो तलाक चाहिए और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, मारपीट कर रहा है ये इस टाइप का। तो हम उन्हें बिठाते हैं, थोड़ी देर पानी पिला के शांत करते हैं, उनका गुस्सा ठंडा होने के बाद उनको समझाते हैं हम कि भाई दे अब बच्चे, उनके ऑलमोस्ट बच्चे होते हैं 2-3-4 इस टाइप के, जब बच्चे होते हैं तो फिर उनको ये हमारा पहला यही रहता है कैसे भी करके घर बच जाए और लेडीज़ के साथ भी अन्याय ना हो, महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाए और आपस में प्रेम से रिश्ता की शुरुआत वापस हो जाए। तो समझाते हैं, फिर समझ भी जाती है, तो समझ जाती है तो फिर वापस दोनों को हम समझा के भैया उनको लिखित रूप में ले लेते हैं, उसको भरोसा दिलवाते हैं कि आज के बाद इस टाइप का नहीं होगा, अगर होता है तो हम उनको बारी बारी से फॉलो अप लेते रहते हैं, ताकि अगर वापस उसके साथ अन्याय हो रहा है तो हम उनके लड़के के खिलाफ जो लिखित में लेते हैं कि कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
1: फिर आप उनके परिवार वालों को भी बुला करके बात
0: बुलाते हैं? हम परिवार वालों को बुलाते हैं, जैसे लड़की बोलती हम लड़की के माँ बाप को भी बुलाते हैं और लड़के के माँ बाप को भी बुलाते हैं, दोनों की फैमिली को बिठाते हैं, भाई उनको भी समझाते हैं, बच्चों के भविष्य का सवाल है।
1: तो वो लोग आसानी से आ जाते हैं आपके पास?
0: आसानी से कई बार आते हैं और कई बार आते भी नहीं है, तो हमें फिर उनके इधर इधर गाँव के जो मुखिया होते हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है हम खुद जाते हैं ऑटो लेके वगैरह, हमारे खुद को जाना पड़ता है, उनके घर जाके हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं।
1: तो अगर एक महिला की केस अगर सॉल्व करनी है
0: जी,
1: तो कितने दिन, कितने हफ्ते, कितनी सिटिंग लगते हैं?
0: हम जितना, हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी 10 दिन के अंदर अंदर केस सॉल्व कर दे। कई बार ऐसा होता है कि जो ज़्यादा मतलब इतना इश्यूज नहीं होता तो उसे सेम डे में सॉल्व कर देते हैं, और नहीं तो फिर 2-4 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 दिन से ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं। उसके अंदर
1: मतलब कोशिश रहती है कि 10 दिन के अंदर उनकी समझौता हो जाए
0: जो भी है।
1: सबसे ज़्यादा लंबा समय अगर लगा है तो कितना लगा होगा किसी केस में?
0: सबसे ज़्यादा केसेस में कोई दूर का, जैसे एक हमारे पास आया था गुजरात का कोई था, तो उसमें लग गया था, क्योंकि उसमें टाइम इसलिए लगा था कि वो आए नहीं, तो उसमें 10
1: मतलब पत्नी चाहती है लेकिन पति नहीं चाहता।
0: फिर वो शराब पी के हम आ जा रहे, कल आ रहे हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि फ़ोन भी नहीं होते उनके पास, तो फिर उनके कॉन्टेक्ट करने में भी टाइम लग जाता। बाकी हमारे पास आने के बाद इतना नहीं लगता। एक केसेस था क्यूरली का जिसमें लग गए थे 10 से 12 दिन। वो पहले आ तो गए थे, फिर उन्होंने समय मांगा था कि हमें एक दूसरे को समझने में, और हमारे कोई घर में फैमिली में थोड़ा इश्यूज है। पति पत्नी के बीच में ठीक हो भी जाता, लेकिन घर में जैसे बड़ों से कोई, कई बार ऐसा सास ससुर की वजह से हो रहा है, तो घर वालों, लड़के का कहना था कि मेरे फैमिली को, माता पिता को कन्वेंस, मेरे माता जी है उनको कन्वेंस करने में थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, तो उस वजह से टाइम, बाकी ज़्यादा टाइम।
1: मतलब आपकी कहना ही क्या है कि पति पत्नी फिर भी जल्दी मान जाते हैं,
0: हाँ,
1: लेकिन परिवार के कारण जब पति भड़क जाता है और पत्नी के ऊपर हिंसा करता है, तो वैसे केसेस में फैमिली काउंसलिंग बहुत जरूरी होती
0: है। बहुत जरूरी है, और मेरा कहना यही है कि परिवार, लड़के लड़की से भी, कि वो ज़्यादातर अपने परिवार के बातों में आकर अपनी पत्नी को परेशान ना करे, क्योंकि हाँ मानते हैं कि उनके लिए फैमिली भी जरूरी है, पत्नी भी जरूरी है, वो दोनों तरफ से होता है। कई बार ऐसा होता है मान भी जाते हैं, हमारा समझौता होने के बाद कॉल आता है, मैडम मेरे सास, हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में तो अच्छा है लेकिन सास परेशान करती है, तो वो जिम्मेदारी अपने पति की होती है कि वो अपनी माताजी को किस तरह से कन्वेंस करे, उनको समझाए कि भाई आखिर लाए तो आप ही लेके आए हो, जिंदगी मेरे इन्हीं के साथ में गुजारनी है, तो वो इन चीज़ों में बीच में ना आए तो ठीक रहता है, परिवार अच्छे से चलेगा, उनका सपोर्ट सही, बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, और वही अगर रिश्ता तोड़वाने के बीच में बार बार करेंगे तो फिर कैसे बच।
1: गीता जी एक बात बताइए, हमेशा हम ये सुनते हैं कि महिला महिला की दुश्मन होती है
0: जी,
1: ऐसा कितना आप परसेंटेज देखते हैं कि एक महिला के जीवन में, चाहे वो माँ का है या ससुराल का है या सास का है, कितना वो हाथ होता है कि या तो सपोर्ट नहीं कर रही है या उस बेटे को ऐसे भड़का रही है बहू के ऊपर कि वो दोनों के बीच में आकर के फिर वो पत्नी के ऊपर जुलूस कर रहा है या सितम कर रहे हैं।
0: अपन जैसे इसमें ऐसा नहीं होता कि हर लेडीज़ की दुश्मन होती है, महिला की दुश्मन तो 100% तो होती नहीं है, बट आमतौर पे देखा जाए तो ये मान के चलो 40% तो ऐसे देखने में मिल रहा है, कि जो हमारे पास कैसे जाते हैं ना, उनमें ज़्यादातर इश्यूज यही आते हैं कि हमारे पति पत्नी के सही है। कई बार ऐसा खाली महिला का ही नहीं आता, ससुर का भी आता है कि हमारे ससुर हमें परेशान, आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि लड़का बोलता है हमारे पति पत्नी के अच्छा चलता है लेकिन मेरे पापा मारते पीटते हैं, वो ये नहीं चाहते कि ये हो हमारे घर में, ऐसा दूसरी पत्नी लानी है, ये पत्नी सही नहीं है, तो अगर जो है उसी को निभाए तो सही है, क्या गारंटी कि उसको छोड़ के दूसरी लेने जाए वो इससे अच्छी मिले, हो सकता है इससे खराब भी मिल सकती है।
1: तो कई बार कारण क्या होता है ये घरेलू हिंसा का?
0: कारण तो दोनों के बीच में आपस में समझ नहीं होती, मेन बात तो यही है, छोटी छोटी बातों पे शक करना। खासकर पति पत्नी के बीच में जो हमारे पास आते हैं ना, वो मामला यही है कि लेडीज अगर ये जाती यहाँ जाती है तो वहाँ क्यों गई, वहाँ दो मिनट का क्यों, आदमी जा सकता है कहीं पे भी खड़ा रह सकता है लेकिन उसको कोई कहेगा नहीं। और औरत अगर कहीं चली गई कमाने तो वहाँ कहाँ जाने की ज़रूरत है, टाइमिंग इतना, ये लेट कैसे हो गई, वहाँ इतने टाइम कैसे लगा। मेन जो बात है वो शक की है और शक का कोई इलाज नहीं है।
1: जी, विश्वास संबंधों का नहीं,
0: विश्वास होना बहुत जरूरी है रिश्तों के बीच में। विश्वास नहीं होगा तो फिर रिश्ते का कोई।
1: जी, कभी ऐसा भी हुआ कि पुरुष आपके पास आए कि नहीं मेरी महिला मेरे को प्रताड़ित कर रही है या धोखा दिया है या फिर मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रहा है इस तरीके से?
0: आमतौर पर
1: महिला
0: ही आई है।
1: जी, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जो घरेलू हिंसा है या फिर महिला हिंसा है ये सभी महिलाओं के साथ होता है
0: जी।
1: उसमें चाहे वो परिवार जिम्मेवार होते हैं या पति जिम्मेवार होता है, और वो कुल मिला करके जो हिंसा है वो महिला ही उस हिंसा से गुजरती है। और इसका मूल कारण है शक करना और व्यसन।
0: बिल्कुल जी,
1: दारू पीते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये जो चर्चा है आज का, हमारी आसपास में या हमारी खुद के घर में जो भी प्रकार की चीज़ें हो रही है, महिलाएं अगर असंतुष्ट है, दुखी है, तो हम थोड़ा सा समय लें, एक दूसरे के साथ बैठें, बातें करें, और नहीं हो सकता है तो जिनको आप विश्वास करते हैं उन बड़ों के पास जाएं, बैठें और बातचीत करके बातों को समझने की कोशिश करें और इस घरेलू हिंसा को ख़त्म करें। तो यही एक प्रयास है, चाहे वो रेडियो मधुबन का है या फिर राजस्थान सरकार का है या MSS के है, कोई भी विभाग है जो महिलाओं को मदद करने की कोशिश करती हैं, ये घरेलू हिंसा से महिलाएं सुरक्षित रहें और वह अपने जीवन को सही रीति से चलाएं। और दोस्तों, एक और बात है।
0: हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी इसी तरह से पीड़ित महिला है तो आबू रोड ब्लॉक में सदर थाना जो पड़ता है उसके अंदर महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र का जो ऑफिस है, वहाँ पे 10 बजे से 5 बजे तक हम बैठते हैं। तो कोई भी महिला किसी चीज से परेशान है, वो आके नहीं बता सकती है तो हमें कॉल के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर सकती है, तो हम उनकी पूरी से पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और महिला सलाह एवं सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है 1090, इस पे वो हेल्प ले सकती है।
1: 1090 तो 1090 पे जब कॉल करती है, मान लीजिए रात को पति आया और उसके साथ मारपीट कर रहा है और उस समय महिला सोचती है कि मैं इससे बाहर जाऊं और मैं फोन करूं
0: जी,
1: तो 1090 तो कॉल सेंटर का नंबर है
0: जी,
1: तो फिर वो कहाँ पे जाएगा फोन?
0: फोन ये जो महिला सलाह सुरक्षा केंद्र ऑफिस है मैं वहाँ पे जाएगा,
1: सिरोही में
0: जी।
1: ओके, फिर वहाँ से आपके पास कॉल आता है?
0: वहाँ से कई बार हमारे पास भी आ सकता है, और हमारे पर्सनल नंबर भी, अगर महिला इतनी ज़्यादा परेशान है तो मेरे खुद के नंबर में दे सकती हूँ ताकि उनको कभी भी फ़ोन करें हम वहाँ तक पहुँच सकें
1: जी। कोई भी व्यक्ति आधे रात तो किसी के घर पहुँच नहीं सकता है?
0: नहीं सकता,
1: पुलिस तो फिर भी पहुँच सकती हैं, लेकिन जब 1090 में फ़ोन करते हैं तो जब कार्रवाई होती है तो कितने देर में उनके साथ कार्रवाई कर सकते हैं?
0: ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो यही रहती है कि वो, उनकी कोशिश तो वही रहती है पहुंच जाते हैं, या फिर उनसे नहीं होता तो वो
1: थाने में
0: इन्फॉर्म करेंगे
1: जी।
0: जी,
1: तो मतलब जो पीड़ित महिला जब फ़ोन करती हैं तो फिर आधा एक घंटे में उनके पास कोई ना कोई व्यक्ति पहुंच करके उनको मदद करने की कोशिश करते हैं।
0: ये अपने जो महिला थाने वगैरह है उसमें लगाई गई गाड़ी है स्पेशल महिला सुरक्षा के लिए 1090, उस पर कॉल करते ही वो गाड़ी में कॉल जाएगा और हो सकता है वो तुरंत भी आसपास है तो पहुंच सकती है गाड़ी।
1: दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे थे महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के बारे में। हमने जाना कि किस प्रकार से जब महिला पीड़ित होती हैं तो वो MSS के संस्था के द्वारा काउंसलिंग करके, पारिवारिक काउंसलिंग या फिर अपनी खुद की काउंसलिंग करके, कैसे वो अपने परिवार को, अपनी फैमिली लाइफ को फिर से सुखी बना सकते हैं। ऐसे में एक और बात है दोस्तों, जो हमारी सदर थाना है जहाँ पर इस MSSK के ऑफिसर बैठते हैं, जो महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में एक काउंसलर बैठते हैं, उन्हीं के साथ एक लीगल एडवाइज़र भी होते हैं, ताकि महिलाओं को जो कानून की मदद की आवश्यकता है वो आपको दे सके। किस प्रकार से आपकी सेवाएं होती हैं और कानून से कैसे मदद ले सकते हैं और क्या सलाह देते हैं, आज हम चर्चा करेंगे निकिता जी से। निकिता जी, आपको रेडियो मधुबन में जागृति इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: निकिता जी, आप जैसे MSSK में एक लीगल एडवाइज़र के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं
2: जी,
1: तो आप कब से ये काम कर रहे हैं और आपका कैसे इस विभाग में नियुक्ति हुई और आपका क्या रोल रहता है?
2: जी, मैंने 3 महीने पहले यहाँ पे काउंसलर का मतलब जो है पोस्ट, उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। मेरा ये दायित्व है कि मतलब इस जो महिला सुरक्षा सलाह केंद्र है, इसमें 2 एडवाइज़र होते हैं, एक सोशियोलॉजी होता है और एक लीगल एडवाइज़र होता है। तो मेरा दायित्व ये है कि मैं लोगों को कानूनी तौर पे जो नॉलेज होती है उनको बता पाऊँ। जैसे कि हमारी घरेलू हिंसा होता है जो 498A के अंदर आता है, जिसके अंदर महिलाओं के साथ जैसे यौन उत्पीड़न हो गया, या फिर दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, या फिर मानसिक प्रताड़ित करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, उसके बारे में नॉलेज दी जाती है। पहले हम हर केस को समझते हैं और दोनों जो काउंसलर में दोनों काउंसलर होते हैं वो दोनों पक्ष, जैसे कि लड़का और लड़की, दोनों को आमने सामने बिठा कर और उनकी काउंसलिंग करते हैं, दोनों की प्रॉब्लम को समझते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों की। फिर उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बुलाया जाता है, ताकि मतलब जो फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी हम समझ पाए और उनका जो समाधान है वो किस हमारे तौर पर किस तरह निकाला जाए, उसके लिए हम काम करते हैं। और फिर जैसे कि हम, मेरा ये काम है कि कानूनी नॉलेज, जैसे कि उनको अगर समझौता हो जाता है, कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें पारिवारिक तौर पर जो समझाइश हम करते हैं उसके तौर पर उनको समझाया जाता है, तो फिर जो केस हमसे सॉल्व नहीं हो पाते, जैसे कि अगर कोई डिवोर्स लेना चाहता है, कोई लेडी है जो ज़्यादा ही मतलब अधिकतर तौर पे जब प्रताड़ित होती है, उसको ऐसा होता है कि हम डिवोर्स लें, तो फिर जो डिवोर्स के आगे जो लीगल एक्शंस होते हैं उसके बारे में मैं नॉलेज देती हूँ, ऐसा है
1: जी। अभी तक आपने जो केसेस हैंडल किए हैं, कभी महिलाओं को ज़रूरत पड़ी कोर्ट तक जाना या कोई लीगल एक्शन लेना अपने परिवार के लिए?
2: नहीं नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है, मतलब 100% ऐसा नहीं होता है, 90% 10% ऐसा होता है कि कोई लेडीज़ होती है जो डिवोर्स लेना चाहती है, बट 90% ऐसा होता है कि फैमिली इशू होता है, कि जैसे सास परेशान कर रही है या फिर जो हस्बैंड है उसका कोई इशू होता है, तो वो हम मतलब जो हमारा महिला सुरक्षा सलाह केंद्र है उसके सेंटर पर बुला के दोनों की काउंसलिंग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, ताकि हमको ऐसा लगता है कि अगर इन दोनों के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उनको समझ कर उसका समाधान निकाला जाए, तो वो केस वहीं हम सॉल्व करके उनको वापस सेंटर से भेज देते हैं, ऐसा होता है
1: जी। सो दोस्तों, सुना आप सभी ने, आज के इस जागृति कार्यक्रम में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की हमारी जो अधिकारी है, परामर्शदाता गीता सोलंकी जी से, किस प्रकार की आबू में महिलाएं पीड़ित है और उनको कैसे राज्य सरकार के द्वारा एक सलाह केंद्र बनाया गया है और उस तहत आप सभी उनसे मदद ले सकते हैं। सो इसी के साथ हम आप सभी से विदाई लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
3: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
4: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
3: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
5: नानी तुझे बताए, मुझे खाना बनाना और खाना भी पसंद है।
6: मुझे खाना बनाना तो

0: बहुत ज्यादा पसंद है, खाना खाना थोड़ा थोड़ा पसंद है। और शिवांशी तुझे?
1: मुझे तो बस खाना खाना पसंद है, बनाने में तो आलस आता है।
2: हम बनाएंगे और आप खाओगे।
1: हाँ, तुम बनाओ मैं खाऊंगी।
3: क्या खाने पीने की बातें हो रही है आज, तो लग रहा है सबको भूख लगी है यहाँ पे।
4: हाँ दीदी।
3: अच्छा, तो यानी कि सबको मुझे लगता है बहुत सारी वैरायटी पसंद है खाने की।
4: हाँ दीदी।
3: गर्मी की छुट्टी में तो और याद आता है ना, ये खाना है वो खाना है।
5: हाँ दीदी। दीदी गर्मियों में तो और ज्यादा याद आता है।
3: क्योंकि स्कूल नहीं जाते हैं ना।
1: हाँ। बर्फ का गोला,
5: आइसक्रीम।
3: हाँ, तो चलो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज खाने पीने के बारे में ही बात करते हैं।
4: हाँ।
3: इतना धीरे, हाँ, खाना नहीं खाया क्या किसी ने?
4: हाँ।
3: अब लगा कि नाश्ता करके आए हैं सब लोग। तो कौन कौन है आज हमारे साथ स्टूडियो में?
1: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
5: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
6: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
7: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।
8: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
9: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
3: ओके, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है बहुत सारे बच्चे, अब 5th क्लास में भी हैं, 6th में भी हैं, 10th तक है। तो खाना खाना तो सबको पसंद है, खाना बनाना किस किस को आता है?
8: दीदी मेरे को।
5: दीदी मेरे को।
1: दीदी आता तो है, बस बनाने में थोड़ा वो लगता है कि हाँ बनाना पड़ेगा। हाँ। बस खाना खाना पसंद है, बस हमें
3: पसंद ज्यादा खाना खाना है ना।
5: दीदी सोचोगे नहीं, जब हम खाना बनाने जाते हैं ना ऐसे करते हैं।
3: हाँ, पसीना आ जाता है
5: क्योंकि गैस एकदम ऐसी बवकरी होती है, उसमें खाना बनाते हैं ऐसे।
3: तो और कुछ कहना चाह रही है हमारे साथ रूहानी भी, बोलिए।
8: दीदी मुझे तो खाना बना के दूसरों को खुश करना बहुत पसंद है।
3: ओके वेरी गुड। और आप भी कुछ कहना चाह रहे हो शिवांशी?
1: दीदी हम तो बस खा के खुश होते हैं, बना के नहीं होते।
3: अच्छा,
9: हम बना के खुश होते हैं।
7: दीदी मैं भी बना के खुश होती हूँ।
3: अरे वाह। और शिक्षा?
6: मुझे तो खाना खाना पसंद है क्योंकि जब भी कुछ बनाने के लिए जाती हूँ ना तो कुछ बन जाता है।
3: हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ बनाने जाते हो कुछ और बन जाते, वो एक नई डिश का निर्माण हो जाता है ना।
5: पर दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ है, नई डिश का निर्माण हुआ है ना, पर वो घर वालों को सबसे ज्यादा पसंद आई है।
3: हाँ, ऐसा भी हो सकता है भाई। तो भाई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं खाने में, कुछ नया बनाते हैं, कुछ पहले से जो बना रहे होते हैं वही बनाते हैं।
8: दीदी मैं तो एक बार केक बनाया था, बहुत मस्त बना था केक, लेकिन बर्तन खराब हो गए तो दादी जी ने किचन में घुसना ही बंद कर दिया मेरा।
3: हाँ भाई, बर्तन को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, आगे भी तो बताना है।
9: और फिर वो लोग बोलते हैं चल बर्तन तो खराब कर दिया पर खाना अच्छा बनाया है।
8: ये भी नहीं बोलती मेरी दादी, तो बोलती है तू खा ले खुद, मेरे को नहीं खाना।
3: हाँ, कई बार बड़ों को और बच्चों को जो पसंद होता है उसमें भी तो अंतर होता है ना। है ना, बड़ों को क्या पसंद होता है जो वो खाते आ रहे हैं ना ट्रेडिशनल खाना, और कई बार हम बच्चों को क्या लगता है अच्छा कुछ नया नया बनाना, केक बनाना, ये बनाना है,
8: फास्ट फूड
3: पसंद होता है। अच्छा, आप लोगों की फेवरेट डिश क्या है?
1: दीदी खाना खाना तो पसंद है, पर कई बार जब मूड होता है ना कि हाँ चलो आज बना लेते हैं, तब बनाते हैं। वो मुहूर्त कभी कभी आता है,
3: कभी कभी आता है वो मुहूर्त, जब घर वाले इतने लकी हो कि उनको कुछ बना के खिलाया जाए, है ना?
1: जी हाँ।
3: ओहो,
8: एक बार तो मैं घर पे अकेली थी तो मैं रोज एक घंटे के बाद मैं डिशेज बनाती जाती थी और खुद खा लेती थी। क्योंकि जब घर में होते हैं तब कोई किचन में जाने नहीं देता मेरे को ज्यादा।
3: क्योंकि अभी हमें खाना बनाना तो आता है, लेकिन और कायदे से बर्तन रखना और चीजें रखना वो कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
8: वो मैं कर देती हूँ तब भी दादी जी कमियां निकालती रहती है, ये देख काला हो गया बर्तन, अब से पकाना मत इसमें,
3: काला हो गया होगा ना।
8: हाँ।
1: पर दीदी डांटते जरूर है पर वो अंदर से खुश होते हैं, बस बताते नहीं है। अगर ऐसे डांट मारेंगे ना, कमियां बताएंगे तो ही तो आगे उनको ऐसे सुधारेंगे।
3: को कमियां धीरे धीरे सुधर भी जाती हैं, है ना? अभी तो हम बच्चे हैं, है ना, धीरे धीरे करते करते। अभी से आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो तो बाद में तो कितना ही अच्छा करोगे। अच्छा, सबको क्या क्या पसंद है खाने में सबसे ज्यादा, कौन बताएगा पहले? शिवांशी?
1: दीदी आलू के परांठे।
3: ओके।
5: दीदी मुझे छोले भटूरे।
3: शिक्षा को?
7: पाव भाजी, आलू के पराठे।
8: मेरे को पनीर की सब्जी।
3: ओके।
9: मुझे सब कुछ पसंद है।
3: कुछ फेवरेट नहीं है?
9: फेवरेट है क्या? पाव भाजी फेवरेट है।
3: तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। दो लोगों को आलू के पराठे, दो लोगों को पाव भाजी। हाँ
5: दीदी आपको पता है भाजी मुझे पसंद है पर पाव से मैं दूर भागती हूँ।
3: क्यों?
5: पसंद ही नहीं, ब्रेड का होता है, अब ब्रेड मुझे पसंद नहीं।
3: तो फिर रोटी से खा लो।
5: घर में मिला अलग रोटी बनती है।
6: पाव तो घर में भी बनते हैं, मेरी बड़ी दीदी बनाती है।
3: हाँ, बना सकते हैं घर में भी। अनुष्का कुछ कहना चाह रहे?
7: दीदी मैं महाराष्ट्र गई थी तो मेरी मौसी ने बनाया था पाव भाजी।
3: बहुत अच्छा बना था।
7: ओके।
3: सबसे अच्छा खाना अभी तक, मतलब खाना तो हमेशा ही अच्छा खाते हो, पर आपके घर में जो बनता है वो आपको क्या पसंद है, जो आपके घर वाले बनाते हैं बहुत टेस्टी जो लगता है? अमीक्षा से शुरू करते हैं।
9: मुझे मेरे नानी यहाँ के हाथ की आलू की सब्जी बहुत पसंद है।
3: ओके।
8: मेरे को दो चीज पसंद है, एक कटहल की सब्जी, दूसरी पनीर की।
3: कौन बनाता है?
8: दादी जी।
3: अरे वाह।
7: मेरे को पराठे।
3: कौन बनाता है घर पे?
7: नानी।
3: अरे वाह, कितने लकी हो आप लोग।
6: मुझे मेरी मम्मी के हाथ की बनाई हुई भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है।
5: दीदी, मेरी मम्मी के हाथ के बने हुए मुझे कटहल की सब्जी अच्छी लगती है, मेरे बहन के हाथ के बनाए हुए मोमोज अच्छा लगते हैं।
3: ओके, शिवांशी।
1: दीदी, मेरी मम्मी तो सब कुछ अच्छा बनाती है, जो बनाती है बस हम खा लेते हैं।
3: सबसे अच्छा लेकिन क्या लगता है?
1: मशरूम की सब्जी।
3: तो कभी मम्मी लोग को थैंक यू बोला नानी को दादी को कि आपने बड़ा अच्छा बनाया आज, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो?
8: हमेशा ही बोलती हूँ मैं।
1: दीदी बोलते तो है, फिर कहते मक्खन मत लगा, पता है कुछ और बनाने की बात होगी।
3: कुछ और बनवाना होगा।
5: दीदी आपको पता है मम्मी के हाथ का हर एक खाना अच्छा लगता है,
3: जो बनाते सब अच्छा लगता है।
5: और अब बहने बना दे दूर भागते नहीं, खाना अच्छा नहीं बनता था।
3: अमीचा
9: दीदी, ये सब खाना सुन के मुँह में पानी आ गया
3: है ना। अभी तो एपिसोड पूरा भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही हुआ है।
5: दीदी सही बोला।
3: अब लेकिन बात शुरू हुई है तो आगे तो जाएगी है ना। खाने के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं।
8: जब मैं दादी को बोलती हूँ ना, दादी मेरी फेवरेट सब्जी बना दो, तो दादी जी बोलती है इसलिए तंग करती है मेरे को, नहीं बनाना जा। फिर मैं घर पे आती हूँ ना, तब बनाई हुई रखती हूँ।
3: देखो दादी कितना प्यार करती है आपसे, है ना।
1: दीदी हमने तो अपनी फेवरेट डिश बता दी, आप तो बताओ।
3: मेरी फेवरेट डिश, मुझे भी पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, एकदम फेवरेट, है ना, आलू का पराठा।
1: कौन सा पनीर दीदी? शाही पनीर,
8: मक्खन पनीर, दाल मखनी,
1: आलू पनीर।
3: नहीं, शाही पनीर हम लोग बचपन में इतने वैरायटी पनीर तो नहीं खाते थे, शाही पनीर मोस्टली होता था, तो वो बहुत अच्छा लगता है।
5: दीदी किसके हाथ का शाही पनीर?
3: मम्मी के हाथ का। सबको मम्मी के हाथ का कुछ ना कुछ पसंद होता है हमारी, क्योंकि दादी और नानी जो थे ना वो दूर दूर रहते थे, तो उनसे मिलना थोड़ा कम होता था। लेकिन आप लोग बहुत लकी हो, क्योंकि जो दादी और नानी का प्यार मिलता है ना वो बड़ा स्पेशल होता है।
5: और दीदी मेरी तो नानी भी नहीं है, नाना भी नहीं है, दादी भी नहीं है, दादा भी नहीं है।
3: हाँ कोई बात नहीं, जो भी बड़े हैं जिनको दादी नानी का मिलता है वो भी, मम्मी पापा का मिलता है वो भी, और बहनों का जो मिलता है वो भी।
5: वो तो दीदी बहुत अलग है।
3: भाई बहनों से लड़ाई भले होती है, लेकिन देखो आपकी बहनें आपको बना के खिलाती है कि नहीं?
5: उनको मैं भी बनाती हूँ, बना के खिलाती हूँ, मेरे को बना के खिलाती है।
9: हाँ। दीदी एक बार है ना, मैंने ना आलू की सब्जी बनाई थी ना, तो मेरे भाई ने बोला कि मेरे को नहीं खानी, तूने बनाई है तो कड़वी बनाई होगी। मैंने बोला आलू की सब्जी कौन कड़वी बनाता है, तो बोले, मैंने बोला नहीं खानी, तो बोले नहीं खाने। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा वो तो नहीं खा रहा, मैं शाम को खा लूंगी। फिर मैं सो गई, फिर जब उठी ना तब देखा मेरा भाई किचन के जो वो होता है ना खाना बनाने का, उस पर चढ़ के खा रहा था। बोले इतना बुरा तो नहीं बनाया।
3: भाई बहनों की तारीफ करना थोड़ा मुश्किल होता है ना।
1: दीदी ऐसे लगता है अगर तारीफ कर दी ना इज्जत कम हो जाएगी,
3: तो फिर तारीफ नहीं कर सकते ना पूरा। और फिर कुछ अच्छा काम किया उसने तो क्या करेंगे फिर?
1: बस ऐसी कर दिया बस, और क्या बाद में सोचेगी हाँ अच्छा काम कर, उसके सामने नहीं बोलेंगे।
9: और दीदी बोलते हैं बस लगा लिया मक्खन और थोड़ा लगा ले,
8: अगली बार और बेहतर करता।
5: दीदी अगर हमने खाना चखा अच्छा लगा, तो अगर पूछती अच्छा लगा, मैं बोलती हूँ नहीं नहीं ले जाया, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
3: अच्छा होता है तब भी।
5: हाँ बोलती है मेरे खाने की हमेशा ऐसी तारीफ करती है। मैंने बोला इज्जत नहीं कम करनी मेरे को।
3: फिर खाने को मिलता है कि नहीं?
5: मिलता है ना दीदी,
3: है ना।
5: वो जाती है कहीं और, मैं उसको प्लेट को लेके बैठती हूँ खाना खाने।
3: शिक्षा,
6: मेरी दीदी तो मुझे घर में बहुत सारी चीजें बना के खिलाती है, बस मुझसे कहती है तुम कब खिलाओगे।
3: क्या बनाती है दीदी?
6: दीदी फोन पे से देखती है तरीके तरीके की चीजें, मोमोस बनाती है घर पे, उन्हें पाव भाजी बनाई, पास्ता के नए रेसिपी ट्राई करते हैं।
3: अरे वाह।
6: और मैं कभी कुछ बनाऊं गंदा बनता है ना, तो अभी दीदी है ना बुरा नहीं बताते। और पापा तो अगर मैंने पराठा कच्चा भी सेका हो ना, वो भी खुशी से खा लेते हैं, क्योंकि उसने ट्राई किया। और दीदी भी है ना कभी कुछ बनाती है मुझसे ही पूछती है, क्योंकि मैं ही उनका परफेक्ट बताती हूँ कि हाँ अच्छा है या इसमें नमक कम है ज़्यादा है। बाकी मम्मी पापा तो कभी कोई कमी नहीं निकालते हैं।
3: उनको लगता है कि बनाया तो अच्छा, इतना बनाया वो बहुत अच्छा ना, घर वालों को तो बहुत अच्छा लगता है।
9: एक बार ट्राई तो किया है।
3: ट्राई तो किया, बड़ी बात है बिल्कुल, और अच्छा बनता भी है ना। कभी थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है।
8: दीदी ऐसा हो तो हमारा घर ही स्वर्ग ना बन जाए।
3: तो वो तो आपको बनाना पड़ेगा ना स्वर्ग घर को, है ना।
8: लेकिन कोई इतना सपोर्ट करे घर में
3: तो सपोर्ट आप करो सबको।
8: हाँ वो तो मैं करती हूँ।
3: है ना, बहुत अच्छी बात है। और बड़ों की तो डांट में भी प्यार होता है ना। हाँ, उसको तो सिखाने के लिए वो डांटते हैं हमको, असल में थोड़ी डांटते हैं वो। हमारा बुरा सोच सकते हैं क्या कभी? बताओ सच्ची में बुरा सोच सकते हैं कभी हमारा?
8: नहीं,
3: कभी भी नहीं। हाँ। और कितना प्यार करते हैं, जो फेवरेट फेवरेट चीजें बना के खिलाते हैं।
5: हाँ। और दीदी अगर मान लो हम गुस्सा हो गए ना, फिर आके बोलते हैं ये तो मेरा प्यार था, तू क्यों गुस्सा हो गई?
1: ऐसे ही बोलते हैं क्या?
5: नहीं नहीं ऐसे नहीं, पर मेरी आवाज ऐसी है, ऐसे आएंगे मारेंगे फिर बोलेंगे ये तो मेरा प्यार था, गुस्सा क्यों हो गई?
3: हाँ असल में तो प्यार ही होता है वो।
5: दीदी आपको एक और बात बताऊं? देखो जो खाना बनाते हैं घर का वो मेरी मम्मी बनाती है, वो वैसे बनाती है। और जो बाहर की चीजें जैसे मोमोज, चाउमीन, पाव भाजी, ये सब ये मेरी बहना बनाती है, उसको हमारे घर का मास्टर शेफ बोलते हैं।
3: हाँ कुछ नई नई डिशेस देख के ट्राई करते हैं ना यूट्यूब से?
5: यूट्यूब से नहीं, उसको पहले से बनानी है।
3: उनको पहले से आती है? अरे वाह ये भी बहुत अच्छी बात है, खाना बनाना तो बहुत बड़ी आर्ट है।
1: मेरी मम्मी तो ना जब भी उनका मन करेगा कभी मोमोज बना देंगे कभी कुछ बना देंगे, बस उनकी मर्जी की बात है, हमारी मर्जी का कुछ बस नहीं चलेगा। जब उनकी मर्जी होगी हाँ आज अमृतचरी बड़े बनाना है तो अमृतचरी बड़े ही बनाने, कुछ और नहीं बनेगा घर में।
3: उनको तो रोज सोचना पड़ता होगा ना आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, है ना? घर में तीन टाइम बनाना और फिर प्लानिंग करना उसकी थोड़ी मुश्किल है।
9: और दीदी पूछते कुछ और है और बनाते कुछ और है।
3: ऐसा तो होता है।
1: एक बार ऐसे ही हुआ था, मम्मी ने पूछा था मोमोज खाएगी, मैं कहा हाँ हाँ बना लेते हैं बना लेते हैं। मैं जब शाम को फिर घर आकर देखती हूँ ना, मैंने क्या देखा, मम्मी ने नूडल्स बना रखे हैं, मैं कहा अब तो मोमोज बना रहे थे, कहते नहीं मेरा मन बदल गया।
3: हाँ।
1: मैंने इतने मूड बना रखा था कि हाँ आज तो मोमोज खाएंगे, सारा मूड खराब।
3: नूडल्स कैसे लगे फिर?
1: नूडल्स तो टेस्टी थे।
3: टेस्टी थे ना।
8: कभी कभी दादी जी पूछती है भिंडी खाएगी आलू, मैंने बोला भिंडी, तो उन्होंने बोला नहीं आलू ही बना लेते हो, मैं बोलती हूँ फिर पूछा क्यों?
9: पूछते कुछ और बनाते किचन में जाके कुछ और है, बोलते हैं मैं तो भूल गई।
3: और भी काम होते हैं ना बहुत सारे।
9: हाँ।
3: लेकिन वो लगता कैसे? लगता तो टेस्टी है ना।
8: हाँ।
5: हाँ। दीदी मम्मी के दादी के हर हाथ का खाना अच्छा ही लगता
3: है। सब अच्छा लगता है। अच्छा चलो अब अपने हाथ की बात करते हैं, आप लोगों ने क्या क्या बनाया है मुझे ये बताओ अब तक घर पे। बताओ शिवान जी।
1: दीदी बना तो सब कुछ रखा है, बस वो कभी कभी बनता है।
3: क्या क्या बनाया? अच्छा एक आध चीज बताओ।
1: आलू के परांठे हो गए, केक हो गया, पिज्जा हो गया।
3: अरे वाह,
1: होता नहीं तो बताने लगूंगी तो रात आ जाएगी ना।
3: सब कुछ बनाया है आपने खुद?
1: हाँ जी सब कुछ बनाया, बस वो कभी कभी बनता है कोई स्पेशल डे पे।
3: ओके वेरी गुड।
5: दीदी मैंने केक बना रखा है घर में, चावल बना रखे, चावल को छौंक भी रखा है, परांठे बना रखे और रोटी बना रखी है और चाय बना रखी है।
3: वेरी गुड। और
5: शरबत बना रखे है।
3: शिक्षा आपने क्या क्या बनाया?
6: मैं तो घर पे ज्यादा ज्यादा मम्मी मुझसे सेव भाजी बनवाती है, बोलती है तुम वही अच्छा बनाते हो, जब भी घर पे है ना सब्जी नहीं होगी कुछ तो मम्मी मार्केट से है ना सेव वाले नमकीन मंगाएंगे और मुझसे बोलेंगे तुम बनाओ जा। और जैसे कि भिंडी वगैरह हुआ ये चीज बनाते है ना, तो ये चीज तो मैं ही बनाती हूँ घर पे, क्योंकि बोलते है तुम्हारे हाथ से ही अच्छा लगता है ये टेस्ट।
3: भिंडी?
6: हाँ।
3: अरे वाह सेव भाजी भी बहुत अच्छी डिश है ना।
6: हाँ।
3: बहुत अच्छी लगती है। और अनुष्का कुछ आपने ट्राई किया? अभी तो आप छोटे हो है ना।
7: हाँ मैंने तो केक, मेरे को ज्यादा बनाना आता है।
3: केक आता है आपको बनाना? बाप रे अच्छा किससे सीखा आपने?
7: नहीं मैं खुद ही फोन में रील्स आती है ना उसमें देख के बना सकती हूँ, उसमें बहुत सिंपल दिखा।
3: अच्छा तो आपने बनाया है कभी केक यानी?
7: हाँ एक दिन तो मेरे भाई के बर्थडे पे मैं बना रही थी, मेरा भाई ना बोला चल इतना भी अच्छा नहीं बनाएगी नहीं बनाना।
3: हाँ,
7: वैसे कि वो बुराई निकालते लेकिन जब खाते तब अच्छा लगता है उनको।
3: ऐसे करते हैं ना भाई बहने, पहले तो ऐसे बोलते हैं और फिर खा लेते हैं चुपके से, कभी कभी तो सामने ही।
7: हाँ चुपके से खाते हैं।
3: सब भाई बहन जैसे होते हैं,
5: फिर बोलते इतना बुरा तो नहीं बना।
3: इतना बुरा भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा ऐसा नहीं बोलते ना।
5: हाँ। अगर दीदी ऐसा बोल दिया जिस दिन हमने बोल दिया वाह ऐसा बोला, बोलते इज्जत कम हो गई, नहीं बोलना था मुझे।
3: हाँ ये भाई बहनों का प्यार दिखाने का तरीका है।
1: जिस दिन ऐसे बोल दिया ना उस दिन तो धरती में स्वर्ग आ जाएगा।
3: और रानी ने क्या क्या बनाया?
8: मैंने केक बनाया, पिज्जा बनाया, पोटैटो नगेट्स बनाए, फ्राइज बनाए और शरबत भी बनाए बहुत सारे। और घर की चीजें तो आती है दाल चावल सब्जी रोटी, मैं तो नई चीजें ट्राई।
3: हाँ शरबत तो आपने यहाँ भी सबको पिलाया था, बहुत अच्छा आम पना बनाया था रूहानी ने।
8: हाँ।
3: है ना बहुत अच्छा वेरी गुड। और अमीक्षा?
9: दीदी मैंने नूडल्स बनाए, चाउमीन बनाया है और घर की चीजें तो मैंने सब्जी रोटी सब कुछ बनाया है। मैं नए नए फोन में से देख देख के बनाती हूँ, और चाउमीन और नूडल्स तो मेरे मासी ने सिखाए थे मुझे।
3: अच्छा, वेरी गुड। तो आप लोग तो बड़ी सारी चीजें बना लेते हो अभी से।
8: दीदी जब मैं छोटी थी ना, मैं सोचती थी दादी जी को देख के कि इतने सारे मसाले दादी जी याद कैसे रखती है, कब कौन सा डालना है। मुझे तो समझ भी नहीं आता मसाले का नाम क्या होता है। फिर अब जाके पता चला सब एक साथ ही डालना है।
3: हाँ, लेकिन फिर भी कितना डालना है, कितनी क्वांटिटी, मम्मी लोगों को, दादी नानी को कितनी प्रैक्टिस होती है। बहुत एक्यूरेट डालते हैं कि नमक भी ठीक पड़ेगा, हल्दी भी ठीक पड़ेगी, है ना। एक्यूरेसी कितनी होती है। हाँ मीक्षा।
9: और दीदी एक बार तो मेरी नानी ने बोला गरम मसाला ले, मैं कोई और ही मसाला लेके आ गई। तो नानी ने बोला कि तुझे मसाले में अंतर नहीं दिखता। मैंने बोला नहीं, मुझे सारे मसाले एक जैसे लगते।
3: एक जैसे लगते हैं। हाँ
1: दीदी, जब मैं छोटी थी ना, मतलब थर्ड फोर्थ क्लास में, तो मम्मी ने मेरे को बोला था गरम मसाला ले बाजार से। मैं बाजार में गई तो सिर्फ मसाला कल दिया। मैं अंकल मसाला तो गरम ही नहीं है, गरम मसाला तो घर आके मम्मी को बताया। हाँ। कहते पागल, गरम मसाला इतना है, गरम नहीं होता
3: असल में, गरम नहीं होता। हाँ, जब छोटे होते हैं तो हमें थोड़ी पता होता है कि क्या मतलब है ना
1: उस बात पे। अभी मेरे भाई बहन मेरे को चिढ़ाते, कहते गरम मसाला लेके आती नहीं है तू,
3: ठंडा मसाला ले आई। हाँ। तो अब आप लोगों को सब दालों के नाम पता है, सब मसालों के नाम पता है सबको।
5: दीदी मेरे को पता है नमक, मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, अजवाइन, राई, जीरा।
9: ये तो हमें याद है, हमें वो दाल होती है ना उसके नाम याद।
3: दाल तो कोई भी अच्छा पहचान में आ जाती है कौन सी दाल बनी है।
1: दीदी दालों के नाम तो याद नहीं रहते, कलर से याद करते हैं। ऑरेंज वाली दाल, येलो वाली दाल, ब्लैक वाली दाल,
8: यही होता है।
9: तो
8: बस इस बार खाने में टेस्टी होती है उतना बहुत है मेरे।
3: इस बार गर्मियों की छुट्टियों में सारी दाल के नाम पता करके आना, कौन सी दाल होती है, अरहर की है कि मसूर की है, है ना, कौन सी दाल।
5: आपको पता है मेरे को दालों के नाम कैसे पता है, क्योंकि घर की दाल मैं ही लेके आती हूँ।
3: हाँ जो लेके आता है उसको तो पता ही है, लेकिन नहीं भी लाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पता करके आना इस बार, ठीक है सब लोग। हाँ बताओ
9: जी, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है।
3: मेरी फेवरेट डिश जैसा मैंने बताया था वो भी पसंद है मुझे, और अभी के अगर डिशेस की बात करें तो अभी भी अच्छे लगते हैं, नूडल्स भी अच्छे लगते हैं, पिज्जा भी अच्छा लगता है, बहुत सही फेवरेट डिश है ना।
8: दीदी आपने कभी ट्राई किया है क्या कोई डिश बनाने की।
3: हाँ बहुत कुछ, क्योंकि मैं तो काफी समय से अलग भी रहती थी, जैसे बाहर पढ़ाई करने गए तो हम खुद खाना बनाते थे अपना, तो समय दाल रोटी सब्जी ये सब तो बनता ही था, कचौड़ी तहरी से नूडल्स वगैरह भी बनाते थे। आपने दाल की कचौड़ी खाई है।
1: हाँ जी दीदी,
3: है वो बनाते थे
9: दीदी, बहुत अच्छी लगती है।
3: है बहुत अच्छी लगती है ना
1: दीदी, इतने वैरायटी के खाने सुन के ना सही में भूख लग रही है
3: अब। हाँ नाश्ता किया है थोड़ी देर पहले, पर फिर भी भूख लगने लगी है ना।
9: दीदी मुँह में पानी आ रहा है।
8: पानी में मुँह आ रहा है।
5: पानी में मुँह कैसे आएगा,
8: हीरा पानी।
3: तो चलो इस बार यानी समर्स में आप लोग कुछ और भी हेल्दी, इस बार एक काम करते हैं, एक थीम रखते हैं कि आप लोग जो हेल्दी डिशेस होती है ना, जिसमें बहुत फ्राई नहीं करना पड़ेगा, और कौन कौन सी चीजें ऐसे यूज करके कोई हेल्दी ड्रिंक या हेल्दी डिश क्या बना सकते हो, वो कोई नई जो अब तक नहीं आती, जो अब तक सीखी नहीं है, वो सोच के या देख के आना, ठीक है। तो दालों के नाम याद करने हैं इस बार, और कोई हेल्दी डिश या ड्रिंक क्या बना सकते हैं और क्या खिलाई जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है, वो तैयार करके आना है, ठीक है।
1: ठीक है,
3: तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ वो रेसिपीज शेयर करेंगे, ठीक है। तो हेल्दी डिश की रेसिपीज और हेल्दी ड्रिंक्स की रेसिपीज भी अगर आपको जाननी है तो बच्चों की दुनिया में बने रहिएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपको बताएंगे बहुत नई नई इंटरेस्टिंग डिशेस, और उनकी दुनिया में भी हम सफर करेंगे और जानेंगे कैसी होती है बच्चों की दुनिया, क्योंकि भाई बड़े भी तो कभी ना कभी बच्चे थे, तो वो दुनिया तो हमारे अंदर भी हमेशा ही रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया है लेने का इजाजत, तो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हम सभी आपको करते हैं गुड बाय।
4: बाय।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य एक ऐसी एक्सपर्ट हाजिर हैं जो 11 ईयर्स यानी कि 11 साल की छोटी उम्र से आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीते आ रहे हैं। लगभग 51 साल से आप राजयोग ध्यान मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप मुंबई से आए हैं, तो मुंबई के सेलिब्रिटीज हो या फिर आम जनता हो या व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो या यूथ हो या बच्चे हो, सबको आप इंस्पायर करती आ रही है इतने वर्षों से। लगभग 40 साल से आप सेंटर पे रहते हुए लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि क्रीना दीदी जी आज हमारे मध्य पधारे हैं जीवन रोशनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आइए उनसे हम जानेंगे जो बहुत ही ज़रूरी विषय है आज के समय में, कि हम एकाग्र नहीं रह पाते कई बार। तो एकाग्रता क्या है, फोकस्ड कैसे रहें, और कई बार हम चाहते हैं फोकस रहना लेकिन हम अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अटेंशन क्या है, फोकस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, या दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इस बारे में आज प्रकाश डालेंगे आदरणीय क्रीना दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्शी जी।
0: थैंक यू।
1: मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो मधुबन के लिए कुछ ना कुछ अपनी छोटी छोटी सेवाएं भी दे सकूं।
0: जी, थैंक यू। तो दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार सोशल मीडिया का ज़माना भी है, हम इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, AI को लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, कई बार हम सही इस्तेमाल करते हुए भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि AI के कारण या इंटरनेट के कारण हम अपने अटेंशन स्पैन घटा रहे हैं और फोकस नहीं रह पा रहे, क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मीडिया और AI का उपयोग तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट इवन छोटेपन में होता है वो जल्दी से इसको ग्रास्प कर रहा है और बहुत बहुत ही उसका यूज़ कर रहे हैं। अभी कैसे, क्या यूज़ कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो तो हर एक की अपनी चॉइस है, पर बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि फोकस या अटेंशन स्पैन जो है वो कोई बाहरी वस्तु के कारण कम हो रहा है ऐसा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन जो उसका प्रभाव अलग अलग हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है, कई बार उनसे हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं
0: जी,
1: या व्यक्ति थोड़ा वीक है अपने नेचर में और जितनी भी परिस्थितियाँ आती है उन सब के प्रभाव में आता जाता है, ही गेट्स अफेक्टेड, तो फिर उसके थॉट लेवल पे बहुत ज़्यादा विचार करना शुरू कर देता है। और उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि सब विचार पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव का तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा होता है, और वेस्टेज जो थॉट्स के होते हैं वो तो खुद को भी पता नहीं पड़ता है, इतना वेस्टेज होता है
0: जी।
1: तो जब इतना सारा क्लाउडेड हो जाता है ना मन और बुद्धि का जो स्पेस है वो, तो उसके कारण वो ज़्यादा लंबे समय तक एक बात पर केंद्रित अपने मन बुद्धि को नहीं कर सकता है, क्योंकि पीछे से उसके थॉट्स उसको इंटरफेयर कराते रहते हैं
0: जी,
1: खुद के। तो जितना इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, हर एक बात से उसको कुछ और याद आता है, कुछ और याद आता है, तो डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, तो नेचुरली उसका अटेंशन स्पैन कम होगा
0: जी,
1: फोकस नहीं रहेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। क्योंकि बाहर के तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन हमको उसको यूज़ करना है, जितने भी साइंस ने हमको साधन दिए हैं वो सब यूज़ करने के लिए दिए हैं
0: जी,
1: तो हम उस पे दोष न डाल के अपने ऊपर अटेंशन ज़्यादा दे कि मेरी जो मन की स्थिति है वो ये सब यूज़ करते समय कैसी है
0: जी,
1: और उस पर अगर हम ध्यान दे करके अपने आप में थोड़ा एनर्जी

0: अपने को करेंगे और बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य की बुद्धि इतनी वंडरफुल बनी हुई है कि वो जल्दी से बना अपना फोकस तोड़ सके। पर आज ऐसा हो गया है।
1: जी, तो ये सब यूज़ करते हुए हम कैसे मन को एकाग्र रखें? और आपने कहा कि यूज़ करना भी है, इन्फॉर्मेशंस भी हमें चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, तो अगर इन्फॉर्मेशंस या नॉलेज नहीं होगा तो हम शायद कम्पीट नहीं कर पाएंगे।
0: जी सही, प्रैक्टिकल फील्ड में देखो तो ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल उसके बिना जो कई सिस्टम्स हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं, तो इसलिए जिसकी प्रायोरिटी होती है तो उसको तो हेल्प लेना ही पड़ेगा व्यक्ति को। लेकिन अगर आपको अपना फोकस मेंटेन करना है तो आपको एक प्रैक्टिस तो मिनिमम करनी पड़ेगी।
1: जी
0: कि जैसे फोकस किसको कहा जाता है, डिक्शनरी मीनिंग भी अगर आप देखो ना, जहाँ पर सारी जो लाइट की रेज है ना वो एक पॉइंट पे मिलती
1: एक केंद्र पे
0: है, एक
1: केंद्रित होता है।
0: केंद्र बिंदु बोला जाता है उसको, उसको फोकस कहते हैं। ऐसे ही अगर हम एक प्रैक्टिस करें कि कोई भी कार्य करने से पहले, भले वो ड्राइविंग हो या अपने लैपटॉप के सामने हो या व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन हो, आप जो भी नई परिस्थिति में जा रहे हो उस समय आप हर चीज़ को वापस समेटते जाओ और वो केंद्र बिंदु पर आप अपने आप को ध्यान केंद्रित करो। क्योंकि जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन आप ऑफ करो तो क्या होता है पता है, पूरी लाइट ऐसे पॉइंट पे आके फिर ब्लैकआउट हो जाता है, और जब टीवी चालू भी होता है तो हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन एक पॉइंट से ही पूरा पिक्चर एनलार्ज होता है। वही सिस्टम हमारे अंदर है, तो क्योंकि हम उसको मिस कर रहे हैं, आजकल कई लोगों को वो टेलीविजन की टेक्निक भी भूल गए हैं। उनको लगता है कि हाँ टीवी चालू हो गया, टीवी बंद हो गया, पर ये टेक्निक होती है, कोई भी चीज में को जब विजन पे आती है तो वो पॉइंट से इमर्ज होती है। ऐसे ही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हम पहले जहाँ से भी निकले वहाँ से सारे थॉट्स को मर्ज करके एक केंद्र बिंदु पर ला ले, क्या सीखा हमने उससे, और फिर थोड़ा उसको डीप साइलेंस में ले जाएं कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर दूसरी परिस्थिति की ओर जाएं। और ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका अटेंशन स्पैन ज़रूर बढ़ेगा और आपको जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम महसूस होंगे।
1: जी, कई बार जैसे मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो वही थॉट्स चलते हैं जो हमने देखा, जो इन्फॉर्मेशंस हमने कलेक्ट किया, तो फिर हम फोकस नहीं रह
0: नहीं कर
1: पाते,
0: पाते,
1: तो ये धीरे धीरे होगा करते करते।
0: ये चीज करना जरूरी है जब भी मेडिटेशन में भी बैठो। ये तो हम एक्टिविटी में बैठने की बात कर रहे थे, पर अगर प्योरली मेडिटेशन में भी बैठते हो तो यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग, आपको पहले हर चीज बाहर की मर्ज करके एक पॉइंट पर आपको आ जाना है, भले वो पॉइंट ऑफ लाइट हो, पॉइंट जहां पर सारी रेज मिल गई है, सब कुछ आपकी बाहर की दुनिया समेट ली है, आपको उस पे आना पड़ेगा। और ऐसी पोजीशन पे आप उसमें आएंगे कि वो सेकंड आप सब कुछ भूल जाएंगे।
1: तो वो क्या टेक्निक से कैसे समेटेंगे अगर मन बार बार बाहर की ओर जा ही रहा है या फिर कुछ और बातें मन में चल रही है, तो क्या बात करेंगे हम मन से?
0: तो जब आप मेडिटेशन में बैठे या एक एक्टिविटी पूरी की, तो आप पहले उस एक्टिविटी को रिवाइज करके कि भाई मैंने ये किया, मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ मिली, मैंने ये ब्रेकफास्ट खाया, मैंने ये कार्य किया, उस सब को याद करते हुए पूरा जैसे अंदर ले रहे हैं आप कि अब मैं थोड़े समय के लिए इससे भी फ्री हो रही हूँ, ब्रेकफास्ट जो खाया उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये भाई से मिली वो उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये कार्य कर लिया उससे भी फ्री हो रही हूँ, अब मैं उनमें नहीं हूँ। अपने मन को कहना है, अपने को समझाएं कि अब मैं उन सब में नहीं हूँ, मैं सबसे फ्री हो गई हूँ।
1: मन को हम ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे,
0: समझाएं
1: समझाएं।
0: उसको, इसको वो मार्ग दिखाएं कि ये सब अभी अभी अगर इसके बारे में सोचोगे तो आप डाइवर्ट हो जाओगे।
1: तो प्रेजेंट में आ जाओ ऐसे।
0: हाँ, तो जब प्रेजेंट पल में कैसे आएंगे, जब ये सारे पास्ट की चीजों को आप मर्ज कर देंगे, जैसे समझो कपड़ों का फैलावा है कमरे में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे जब आपका कोई फ्रेंड आ रहा हो या कोई ऐसा कुछ भी कार्य नेक्स्ट इस कमरे में होने वाला हो, तो आप सारे कपड़े समेट कर घड़ी करके आप कबाट के अंदर रख देंगे ना
1: जी,
0: पहले वो क्लियर करेंगे ना, तभी आप दूसरे को एंटरटेन करेंगे रूम में, तो आपको वो विस्तार डिस्टर्ब करेगा
1: जी,
0: और आपको लगेगा कि सामने वाला आएगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा
1: जी,
0: तो आप पहले उसको समेट लेते हैं। ऐसे ही हर बात को जहां से भी आप आए, जिसके लिए भी आए, एक सेकंड के लिए सब समेट लो कि अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है जो मैंने किया पास्ट का, कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य क्यों ना हो, पर अब वो नहीं है, अब मैं प्रेजेंट में कहां पर हूं और मुझे इसी के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले अंदर सब समेट कर मैं केवल एक पॉइंट हूं
1: जी,
0: हम अपने आप में ही फोकस है, मैं पॉइंट हूं, मैं जहां भी अपनी लाइट को स्प्रेड करूंगी ना, एनर्जी को भेजूंगी, वहां का कार्य होगा
1: जी।
0: तो अगर मैंने उसमें भी 10 जगह एनर्जी भेजी तो फिर कितना वेस्ट हो जाएगा एनर्जी
1: जी,
0: क्योंकि वो दूसरे 9 कार्य तो होने नहीं है,
1: बिल्कुल
0: अभी एक ही कार्य होना है, तो फिर वो एक ही कार्य के लिए मुझे एनर्जी भेजनी है, तो एकदम फ्रेश आउटलुक भी मिलता है।
1: ओके, तो कई बार हम अपने आप के साथ भी युद्ध करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, बट हम आ भी नहीं पाते हैं।
0: प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज का, तो आप वापस अपनी उस स्थिति पर आ सकते हो, नामुमकिन नहीं है।
1: तो ये लाइफ के हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है,
0: हर सिचुएशन के लिए। और दूसरा, रात को सोने से पहले,
1: ओके,
0: ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, रात को सोने से पहले भी जैसे आप पैर धुलाई करते हो, हाथ धुलाई करते हो, ब्रश करते हो, बाकी सब चीजें रख देते हो
1: जी,
0: हाँ, फिर यू चेंज योर क्लोथ्स, ये सब आप करते हो ना प्रक्रिया
1: जी।
0: क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक माइंडसेट तैयार करना है कि अभी मेरा दिन पूरा हो गया, अब मुझे सोना है। कई लोग प्रेयर करते हैं ताकि उनको लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे ये सबसे अच्छा काम करेगा, कि मेरे को पूरे दिन के जो प्रभाव से मुक्त करेगा, इसलिए वो प्रेयर करते हैं। ग्रैटिट्यूड के लिए कई लोग करते हैं रात को सोने से पहले, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है।
1: ओके,
0: वैसे ही आपके सारे दिन की दिनचर्या को आपको अंदर समेट लेना है, ये हम भूल गए हैं। अब भूली हुई चीज जब वापस करने को कोई बोले तो तकलीफ होती है, बार बार फिजिकल चीजें ही याद आती है
1: जी,
0: और अपने को लगता है कि फिर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेंटली हम करते हैं उसके लिए बहुत कम टाइम चाहिए।
1: फिजिकली
0: जो करते हैं, नहीं, रात को सोने से पहले की बात है, कार्य कर जो फिजिकली करना है उसमें टाइम लगेगा, जैसे ब्रश करना है या हाथ पैर धोने हैं या कपड़े बदलने हैं, लेकिन मेंटली जो आपको एक्टिविटी करनी है सब कुछ समेटने के लिए सुबह से लेकर रात तक, वो तो कुछ सेकंड में भी हो सकता है
1: जी,
0: इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रात को सोने से पहले भी ये पॉइंट तक वापस समेट लो, ये बहुत जरूरी
1: जी।
0: माना हमेशा समझो कि हर चीज एक स्पार्क से शुरू होती है, हर चीज
1: स्पार्क से शुरू होती है,
0: स्पार्क से शुरू होती है, स्पार्क पे ही एंड होती है। तो हम अपने लिए ये चीज भूल गए।
1: राइट जी, तो बच्चों की बात पूछना चाहूंगी कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो बार बार मन भटकता है, तो वो स्पार्क कैसे लाएं कि हम फिर से वापस पढ़ाई पे आए
0: जी? तो उनको एक सेंटेंस अपने लिए निर्धारित करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को
1: जी,
0: और वो सेंटेंस उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वापस रिपीट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ वेरी स्टूडियस पर्सन
1: जी,
0: या माय इंटेलेक्ट इज रेडी टू ग्रास्प, जो भी सेंटेंस है
1: जी,
0: मेरी बुद्धि पढ़ाई को ग्रहण करने के लिए तैयार है, बस इतना बोलना है मन में, लेकिन ये पढ़ाई के बीच में 10 बार बोलना है
1: जी, पढ़ाई के
0: उसका
1: बीच में
0: इंप्रेशन बुद्धि पे पड़ता है और बुद्धि उस बात को ग्रास्प करती है।
1: अगर मैं पढ़ाई में सही नहीं हूँ तो भी ओके,
0: तो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बुद्धि आपको मदद कर रही है और मन भी साथ दे रहा है कि आप वो अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए भी। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग आपको याद आ रहा है जो आपके लिए और इंटरेस्टिंग है, या समझो आपको बार बार ये आ रहा है पर ये किस काम की पढ़ाई है, किस काम की पढ़ाई है, मैं कर तो रही हूँ, एग्जाम ही देना है बस, और कुछ नहीं होगा इसका. जितना उसके लिए नेगेटिव वेस्ट थॉट्स करेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होगा और कहीं और

0: जी वो ही डिस्ट्रैक्ट करता है कि नहीं
1: जी। तो जैसे आप हैबिट्स की बात कर रहे हैं और सोमान की बात भी आपने कही कि आप स्टूडियस हो या आप बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपकी बुद्धि भी स्वीकार करने लगेगी और शायद यूनिवर्स भी साथ देता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दिन में कई बार हम ओवरथिंकिंग भी कर लेते हैं, तो ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ओवरथिंकिंग। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा तो हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहेंगे कि हम अपने आप से तो बोल रहे हैं कि हम स्टूडियस हैं, लेकिन टीचर ने ये कह दिया कि तुम तो गधे हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तो फिर ये ओवर थिंकिंग करने लगता है।
0: जी, और ओवर थिंकिंग जो करता है उसका एजुकेशन पे असर भी पड़ता है और उसकी इंटरेस्ट कम हो जाती है।
1: जी,
0: तो इतना वीक हम ना बन जाएं जो हम अपने आगे के रास्ते को ही ब्लॉक करें, उसके लिए आपको पहले से ही इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि लोग अपना ओपिनियन देते रहेंगे। और मुझे बहुत छोटेपन से ही इसका अनुभव मिलता रहेगा, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, फिर मेरी फ्रेंड, मेरे टीचर, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, है ना। और पहले क्या होता है, हम बहुत फ्रेजाइल होते हैं, हम हर एक पे ट्रस्ट रखते हैं, हमको लगता है हर एक मेरे लिए है, यू नो, और सबके ओपिनियंस फिर धीरे धीरे घर कर जाते हैं
1: जी।
0: तो उसमें आप अपनी आइडेंटिटी को लूज करने का पूरा चांस अपने आप को दे देते हो
1: जी।
0: भले सब ओपिनियन दे, आपको केवल अपने ऊपर फोकस करके देखना है इस सचमुच ये मेरी गलती है या इस प्रकार से भी चीज की जाती है, या इनका ओपिनियन है पर मुझे अभी भी इस बात का जो मैंने किया उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल राइट है, तो चेक करने का। अगर आपको लगे कि नहीं ओपिनियन बेटर है मेरे विचारों से, तो वो ओपिनियन स्वीकार करे और आगे बढ़े। पर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, समटाइम्स आपका कॉन्फिडेंस भी काम कर जाता है ना। तो इसीलिए आपको बहुत अनबायस्ड रह करके डिसीशंस लेने होंगे। चेक करो क्या मेरी ये मिस्टेक हुई है, मुझे इस मिस्टेक को करेक्ट करना है, मेरे से ये मिस्टेक नहीं हुई है लेकिन सामने वाले का ओपिनियन है, तो मुझे इसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। है तो आपकी जीवन
1: जी,
0: है तो आपकी आइडेंटिटी बनाने की बात है ना, तो वो आपको ही डिसीशन अल्टीमेट लेना पड़ेगा
1: जी। तो ये
0: फिर आपका ओवर थिंकिंग नहीं होगा। अगर छोटेपन से ये गाइडेंस दी जाए
1: जी,
0: है ना
1: जी,
0: जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गिर गया तो हम जमीन को ऐसे मारते हैं, कहते देखा इसकी भूल है, इसकी भूल है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर दूसरों को दोष देने लगता है, वो बच्चा आगे चल के भी
1: जी।
0: लेकिन अगर उसको समझाया जाए कि कोई बात नहीं, देखो तो दूसरी बार इधर ध्यान से चलना तो नहीं होगा, वो भी पॉजिटिवली बोल सकते है ना
1: जी,
0: तो फिर वो उस रीति से समझेगा कि मुझे चलते समय ये ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन अगर हमने कहा अरे तुम गिर गए, अरे बहुत लगा क्या, हाँ चोट लगी, देखो मैं ऐसे कर, तो फिर वो पैम्परिंग से वो ज्यादा वीक हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए, और फिर वही संस्कार आगे चल करके बच्चा भी प्रदर्शित करता है। तो ओवर थिंकिंग तब होता है जब आपने कुछ रॉन्ग गाइडेंस दे दी और फिर वो उसी रीति से चलता रहा, तो आगे चल के वो लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में हमेशा ओवरथिंक करेगा, क्योंकि वो खुद अपनी एनालिसिस नहीं करता है
1: जी। तो आजकल हम मल्टीटास्किंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोडक्टिव होता है या इससे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है?
0: नहीं, मल्टीटास्किंग से कंसंट्रेशन कम होने का कोई मार्जिन वैसे नहीं है, पर अगर आपका ढंग जो है वो हर चीज को अधूरा छोड़ के दूसरे पर जाना, या समझो आपका डेलीगेशन ठीक नहीं है, आपके डिसीशन ठीक नहीं है, तो नेचुरली फिर जो होगा उसके रिपरकेशन में, उसके लिए आपको ओवरथिंकिंग पे ले जा सकता है।
1: मल्टीटास्किंग को आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए मैं गाना सुनते सुनते खाना खा रही हूँ, या फिर मैं कुछ और करते हुए अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ, वो मल्टीटास्किंग होता है? साथ साथ में

0: दो चार चीजें करने में, या फिर कैसे मल्टीटास्किंग करते हुए भी फोकस रह सकते हैं।
1: द रियल सेंस ऑफ मल्टीटास्किंग माना कि व्यक्ति ऑफिस भी संभाल रहा है, घर के बच्चों का भी देख रहा है, और साथ में कोई सोशल वर्क भी कर रहा है, साथ में कोई डोनेशन का कार्य भी कर रहा
0: मतलब
1: है।
0: बैलेंस करके चलना।
1: हाँ, मल्टीटास्किंग वो नहीं है कि मैं गीत सुनते हुए अपना स्टडी कर रही हूँ। दैट इज नॉट कॉल्ड मल्टीटास्किंग। दैट इज योर इंटरेस्ट कि आपको कुछ आवाज चाहिए ऐसी जिससे आप कॉन्सेंट्रेट कर सको, वो अलग बात है।
0: जी।
1: माना आप हॉबी और आपके टास्क को मिक्स कर रहे हो टू मेक द एटमोसफियर लाइट और वट एवर, है
0: जी।
1: ना। कोई जोर जोर से बोल के पढ़ता है, वो मन में नहीं पढ़ पाता है क्योंकि
0: जी
1: उसको वही ज्यादा बोलना भी चलता है और पढ़ना भी हो रहा है, वॉकिंग भी हो रही है।
0: जी जी
1: तो ऐसे भी लोग करते हैं, बट दैट इज नॉट मल्टी टास्क।
0: ओके
1: दैट
0: जी
1: इज मिक्सिंग योर वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग थिंग्स विथ वन एक्टिविटी। बाकी मल्टीटास्किंग माना कि एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य बाहर अंदर उस सामाजिक रूप से कर रहा
0: कर
1: है,
0: रहा है
1: एंड ही
0: जी,
1: फाइंड्स
0: लेकिन
1: टाइम फॉर
0: एक
1: देम
0: टाइम में
1: ऑल्सो।
0: एक ही चीज करना है, मतलब ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम
1: डिपेंड्स
0: है।
1: डिपेंड्स, अगर आप एफिशिएंट हो, आप
0: ओके
1: ओवर थिंकिंग में नहीं जा रहे हो, आप इफेक्टिव हो हर कार्य के लिए, तो व्हाई नॉट। आपके
0: ओके
1: टैलेंट पर है,
0: जी, तो ये चेक करना है
1: पोटेंशियल
0: कि
1: हर एक
0: आप
1: में
0: कैसे
1: होता
0: कर
1: है।
0: रहे हो।
1: पोटेंशियल तो हर एक में होता है, आप कई बार पोटेंशियल यूज ही नहीं करते हो, कई बार आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपने पोटेंशियल के बारे में।
0: तो कैसे चेक करें कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं।
1: ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है जब आपको वो अवेयरनेस आती है, आती है, तो उस समय अगर आप अवेयर हो कि इस परिस्थिति ने मेरे पोटेंशियल्स को बाहर निकाले, तो इट इज गुड नो इफ यू कैन एक्नॉलेज। बाकी तो परिस्थितियां लोगों को आती ही है,
0: वो
1: फिर
0: अनुभवी
1: अगर
0: बना रहते
1: हाँ,
0: हैं।
1: फिर अगर थोड़ी नेगेटिव टाइप की परिस्थिति भी आती है कभी कभी, कभी पॉजिटिव भी आती है, परिस्थिति परिस्थिति है,
0: जी
1: उसमें आपने कैसे अपने पोटेंशियल्स को यूज किया वो आपके ऊपर है।
0: जी जब मन भारी या दुखी हो तब फोकस को कैसे वापस लाया जाए।
1: जी, मन भारी या दुखी हो तो उस समय पहले तो उसको लाइट करना पड़ता है, लाइट, क्योंकि आप अपना कार्य अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकते हैं
0: जी
1: और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर एक बार छोड़ने की आदत पड़ गई ना, तो छोटी छोटी बातों में आप छोड़ते रहोगे, फिर
0: जी
1: आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के योग्य नहीं बन सकते। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले जो चीज आपको लाइट करती है, जैसे आपको कोई संगीत है, फ्लूट प्लेइंग है, या आपको कोई गार्डन में जाके रिलैक्स होना अच्छा लगता है, या कोई वर्कआउट कर लेता है, कोई वॉक पे चला जाता है, यू नो, कईयों के कई मेथड्स होते हैं, तो जो हर एक को सूट हो, अगर वो थोड़ा अपने को लाइट कर देना, तो फिर अपनी जिम्मेवारी पे वापस आ सकते हैं। तो ये लाइट होने के समय में वो ओवर थिंकिंग को साथ में नहीं लेता है, बिकॉज उसकी जो आदत है ना कि मैं पार्क में जाता हूँ तब मेरा ओवर थिंकिंग नहीं होता है, देखा हुआ है, उसका अनुभव है, इसलिए अगर वो भारी हुआ तो वो सीधा पार्क में जाएगा,
0: जी
1: और सचमुच ही वो चीज उसको मदद करती है लाइट वापस होने के लिए। माना वो थोड़े समय के लिए वो जगह से, वो सिचुएशन से निकल के एक ऐसी जगह जाता है जहां उसको अनुभव है अंदर कि वो लाइट रहता है। वो
0: जी
1: कर ऐसे करते जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे जो बड़े हैं, दादियां हम जिनको बोलते हैं, तो एक दादी गुलजार जी है, तो उनको एक बार प्रश्न किया था किसी ने कि जब आपका मन भारी है, आपका मूड ऑफ है, और कोई क्लास के लिए आता है, तो क्या आप क्लास में जा पाओगे? तो दादी ने बोला, जाना तो है क्योंकि जिम्मेवारी है, लेकिन उसके पहले थोड़ा मेडिटेशन रूम में जाके अपने आप को हल्का कर, अच्छी बातें कहकर, भगवान से अच्छी बातें कर करके अपने को हल्का कर दो, गीत बजा दो, एक कमेंट्री बजा दो, भले वो बैठे जो आए हैं वो, उसकी चिंता मत करो, और जैसे आपको फील हो कि अभी हो गया है, आप जाओ वहां, बहुत ब्यूटीफुल क्लास हो जाए,
0: जी
1: उल्टा, यू नो, अ
0: बिल्कुल।
1: डिफरेंट एक्सपीरियंस
0: क्योंकि
1: ऑल्टुगेदर।
0: आप अपने रोल को मना भी नहीं कर रहे हो
1: नहीं,
0: और आप जा भी रहे हैं और भगवान से बात करके जाएंगे तो हेल्प तो
1: हाँ
0: मिलेगी।
1: जरूर, या आप साइलेंस में चले गए, या आप बिल्कुल अपने को हल्का छोड़ दिया रिलैक्स करके मेडिटेशन रूम में, और फिर जाओ तो आप एक नए व्यक्ति ही हो समझो पास्ट से।
0: बिल्कुल, तो ऐसे हर किसी के घर में एक छोटा सा मंदिर या फिर भगवान की फोटो जरूर होता है, तो आप उसके सामने जा करके अपनी बात कह के जा सकते हैं। जी, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान की अवधि के बारे में कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना या कम समय में गहराई से फोकस रहना।
1: ओके, शुरू तो कम समय से ही होता है और वो कम समय जैसे 5 मिनट या 10 मिनट में आपको कितना टाइम ध्यान लगा वो इम्पोर्टेंट है
0: जी,
1: है ना। तो वो प्रैक्टिस की अगर नोट की जाती है तो धीरे धीरे आप अपनी अवधि को बढ़ाते हुए देखते जाएंगे
0: जी।
1: लेकिन आपने नोट ही नहीं किया, आपने एक चार्ट मेंटेन ही नहीं किया, तो एक संस्कार बन जाएगा कि भाई मेरे से तो लंबा टाइम का नहीं होता है, मेरा तो 10 ही मिनट इनफ है, मेरा तो 20 मिनट ही इनफ है। तो वो आपने क्या किया, आपने प्रगति के लिए चार्ट नहीं बनाया पर आपने अपना एक नेचर बना दिया, फिर आपको कंसंट्रेशन केवल 10 मिनट या 20 मिनट लगेगा, फिर कोई 1 घंटा बिठा देगा ना तो आपका नहीं। तो वी डोंट हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर संस्कार, पर हमें चार्ट रख के अपनी अवधि को भी बढ़ाना है, अपने फोकस को भी बढ़ते हुए अनुभव करना है। दिस इज द मोस्ट सिस्टमैटिक वे, है ना।
0: ओके, आपको चेक करते हुए अपने आप को धीरे धीरे,
1: नॉट जस्ट मेकिंग अ नेचर के भाई हाँ मैंने देखा है मैं 10 मिनट बैठती हूँ ना तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा होता है, तो ये नेचर बना दिया। योगी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, उसको कई बार पूरी रात पढ़ना पड़ता है
0: जी, राइट,
1: और कई बार दिन में 1 ही घंटा पढ़ना होता है। तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि आज मैं पूरी रात नहीं पढ़ सकता हूँ, उसको पढ़ना होगा। तो वो एक ही प्रकार का संस्कार नहीं बनाता है,
0: फ्लेक्सिबिलिटी
1: भी लाता है और रोज से प्रैक्टिस से अपनी अवधि भी बढ़ाता है कभी कभी और देखता है कि कितना फोकस रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि दीदी जैसे हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो ये देखते देखते क्या हमारे अटेंशन स्पैन पर भी असर पड़ता है कि हम भी जो भी काम करते हैं उसमें हम फोकस नहीं रह पाते, 10 मिनट भी नहीं या 5 मिनट के बाद हमारा ध्यान भटक जाता है।
1: थोड़े समय पहले मैंने देखा था कि वेस्ट के टीवी में बहुत जल्दी एड्स और आती है और एकदम फास्ट फास्ट मूव होती है, उतनी स्पीड में इंडिया में नहीं होता था। इंडिया में आप पूरा एड लाइक देख पाते थे अच्छी तरह से, जबकि वेस्टर्न टीवी में बिल्कुल फास्ट होता था
0: जी।
1: तो मुझे भी सोच चलती थी कि ये लोग इतना फास्ट क्यों करते हैं। तो मुझे एक जगह पता चला कि क्योंकि वहाँ उनकी दिनचर्या भी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट लाइफ है उन लोगों की, कि अब उनको लंबा स्लो सुनने को ही नहीं होता है। इसीलिए वो लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फास्ट फास्ट फास्ट रीलों में देते हैं, ऐसा पता चला
0: जी।
1: और फिर यहाँ भी हम देखते हैं कि अभी थोड़ा फास्ट कर दिया है हर चीज और छोटे छोटे बनाते हैं। क्यों छोटे छोटे, अरे आजकल कोई लंबा देख नहीं पाता है, इसे छोटा ही बनाने का वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग का है
0: जी।
1: जितना हमारा ओवर थिंकिंग बढ़ता है ना तो नेचुरली अटेंशन स्पैन कम हो जाता है।
0: ओके, तो मूल कारण ओवर थिंकिंग।
1: हाँ जी, इट इज नॉट कि दिस इज मोर इफेक्टिव देन दैट। आप एक लेक्चर भी सुनो 1 घंटे का, बहुत इफेक्टिव होता है
0: जी।
1: और उसका ही एक छोटा रील देखो, वो भी इफेक्टिव रहता है।
0: हाँ, क्योंकि आजकल लोग दोनों एंजॉय देखते हैं।
1: यू कैन एंजॉय बोथ, पर कई लोग ऐसे हैं जो लंबा नहीं सुन सकते।
0: ये सबके लिए लागू नहीं होता।
1: हाँ, सबके लिए लागू नहीं होता। बाकी अगर आपका अटेंशन है, फोकस बराबर है, तो आप दोनों एंजॉय करें।
0: राइट जी,
1: इररिलेटिव ऑफ द स्पैन
0: जी,
1: है ना। जो भी है, आपका इंटरेस्ट बराबर होगा और आप हर चीज को बराबर सुनेंगे
0: जी। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है और दीदी ने प्रैक्टिस की बात कही है।
1: हाँ,
0: तो जरूर आप उस प्रैक्टिस करते
1: करते। केवल नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं हो।
0: हाँ, तो उसको चेक भी करना चाहिए हमको। हाँ, कि कैसे
1: ओवर थिंकिंग जिसमें कम होगा ना वो दोनों एंजॉय करेगा
0: जी।
1: जिसमें ओवर थिंकिंग ज्यादा है ना तो पेशेंस कम है।
0: ओके, तो पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है फोकस रहने में
1: जी।
0: तो आजकल धैर्यता ज्यादा कम हो रही है।
1: धीरज कम हो रहा है।
0: धीरज कम हो रहा है। तो
1: और जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड है हम, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसलिए कोई गोल गोल बात भी करेगा ना वो भी नहीं पसंद करता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ ऐसे कहते हैं,
0: डायरेक्ट बात करो, घुमा फिरा के मत करो,
1: घुमा फिरा के मत करो, क्योंकि लोग में धीरज ही नहीं है सुनने की।
0: जी
1: थोड़ा अभी कोई कह रहा था
0: जी
1: कि होम्योपैथी दवा तो बहुत अच्छी है
0: स्लो
1: लेकिन
0: है।
1: स्लो है, माना पहले वो सारी दूसरी दवाओं का असर बंद करता है फिर उसकी असर होती है, तो लोग तंग हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इसके असर ही नहीं है बीमारी पर, ऐसे होता है,
0: होता है। तो अब हम शारीरिक बात करते हैं, क्या हमारे जो दिनचर्या है, तो स्लीप है, स्लीप साइकिल है, फूड है, एक्सरसाइज है, इसका भी एकाग्रता पर असर पड़ता है?
1: एक्टिविटी तो आप बहुत कर सकते हो, स्ट्रेंथ भी उतनी शरीर को दी गई है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हो, तो एक्टिविटी में भले कितना भी हो, हाँ उतना भी नहीं हो कि जो आपका स्ट्रेंथ ही नहीं है और फिर भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, वैसा नहीं, पर मैक्सिमम आपको जितना होता है आप कर सकते। अगेन जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, आपकी एटीट्यूड्स है उसमें, आपके विचार है, आपके नेचर है, आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ये जो सारी चीज़ें ना अगर वो बैलेंस्ड नहीं है ना उन एक्टिविटीज़ के साथ, तो उसमें आप देखेंगे कि आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट इतना जल्दी से सब जगह नहीं मिल रहा है, या आप थक जाते हो या आप बर्डन फील करते हो।
0: तो जितना हो सके
1: इनसाइड एंड आउटसाइड का बैलेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो भले आप कितनी भी एक्टिविटी करो।
0: जी तो क्या हम क्या खाते हैं उसका भी असर पड़ता है?
1: हाँ खाते हैं उसका असर पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एज इज द फूड सो इज योर माइंड, माना जो खाना खाएंगे, जहाँ खाएंगे, जितना खाएंगे, जैसा खाएंगे, जिस रीति से खाएंगे, तो उसका असर मन पर पड़ता है। तो ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है
0: जी।
1: तो खाना भी अगर आप धीरज से खाते हैं, बराबर च्यू करके खाते हैं, अच्छी जगह अच्छे वाइब्रेशन में खाते हैं,
0: टाइम पर
1: खाते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला खाते हैं, और जिसमें आपका मन भारी ना हो जाए ऐसा फूड खाते हैं, तो आपको मदद मिलेगी जरूर
0: जी। हाँ। और लंबे समय तक हम बैठ करके काम करते हैं सिस्टम के सामने, तो उस समय हमारे ध्यान को कैसे हम बनाए रखें?
1: लंबे समय तक बैठने पर एक ही प्रॉब्लम है कि आपको एक पेन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी को एक ही सिचुएशन में रखना आजकल के नॉर्मल लोगों का करना बहुत डिफिकल्ट है। पहले हमारे संत करते थे, ऋषि मुनि करते थे, घंटों एक ही पोजीशन में बैठ के उनकी तपस्या होती थी और उनको कुछ नहीं होता था, ऐसे ही खड़े होके चले जाते थे। पर अभी जो हमारा बॉडी बना है ना, उसमें एक ही प्रकार का काफी समय तक रहना, जैसे खड़ा रहना, जैसे मॉल में हम देखते हैं ना कितने घंटे, 12 घंटे व्यक्ति खड़ा ही रहता है
0: जी।
1: और अगर एक ही जगह खड़ा रहे तो क्या हालत होगी उसकी, ऐसे एक ही जगह सिस्टम के आप बैठे हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको कभी खड़ा होना है, कभी पाँव को हिलाना है, कभी हाथ को, कभी कमर ट्विस्टिंग करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है
0: जी।
1: ऐसे ही आपको कभी कोई प्लेजेंट म्यूजिक भी सुनना चाहिए, या आप अच्छी बातें जो आपको रिलैक्स करती है, लाइट करती है, ऐसी अच्छी बातें भी आप देखो। मीन्स यू शुड फीड योर माइंड एट दैट टाइम विद वेरी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, वेरी एनर्जाइजिंग थॉट्स और एक्टिविटी। जो अगर ऐसा करते हैं तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। बाकी तो डेफिनेटली एक ही पोजीशन में अगर आप बैठे हो तो आपका अटेंशन स्पैन कम होने वाला है,
0: तो बीच बीच में आपको उठ के
1: या आप कोई एक्टिविटी दूसरी करो, या आप कुछ फन एक्टिविटी अपने लिए करो, जिससे क्या होता है थोड़ी एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है, तो आपका अटेंशन स्पैन अच्छा ही रहेगा
0: जी। जिस जगह पे हम काम करते हैं कई बार हमें डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो चीज वस्तु हो, जैसे आप मॉल की बात कह रहे थे, तो वैरायटीज ऑफ कस्टमर्स आते हैं तो उनकी व्यवहार से भी हम कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें तो स्माइल करनी है
1: जी।
0: और हम अपने साथ वालों के साथ रहना ही पड़ेगा
1: जी।
0: और मैनेजमेंट कैसा भी हो, हमें सैलरी की ज़रूरत है, तो हमें उनकी भी बातें सुन करके काम करना है
1: जी।
0: तो कई बार व्यक्ति दुखी होने के बावजूद भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है
1: जी,
0: और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन मोड पे चला जाता
1: है। हाँ हाँ।
0: तो उस एनवायरमेंट में रहते हुए भी, उस जगह में रहते हुए भी कैसे अपने आप को बचाए रखें?
1: राइट। इसमें ना अगर हम ऐसा देखें कि ये सब एक्टर्स हैं अलग अलग, और वो अलग अपना अपना रोल बजा रहे हैं, इनको ये रोल दिया गया है, इनको ये रोल दिया गया है अलग अलग प्रकार का, हाँ, तो एक है जो एक्चुअली किसी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए खड़ा ही नहीं है, वो कम बात करता है, दिखाता है, कस्टमर को लेना है तो लेगा, नहीं तो चला जाएगा। एक जन है वो बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग वे में बात करता है और इनको ना थोड़ा इंस्पायर करता है कि ये लेंगे, तो वो एक नहीं चार चीजें लेके जाता है। तो हर एक अपना रोल बजा रहा है, ऐसे नेचर वाइज भी हर एक का रोल होता है। अब समझो कि जो सुपीरियर है उसको ये भाई पसंद आता है जो बातें करके एक से चार करता है, तो फिर उसका व्यवहार वो शांत वाले के साथ कैसा होगा? थोड़ा तो कम होगा ना, कम होगा, ही विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन। पर अगर वो समझे कि नहीं, ऐसे भी लोग जरूरी है मॉल में, सभी ऐसे होंगे तो नहीं, हर एक अलग अलग होते हैं एंड दे आर डूइंग द ड्यूटी बट इन डिफरेंट स्टाइल्स। ऐसे अगर हम अपनी सोच को बदले कि भाई इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों आ रहा है, वो मेरा इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसके नेचर को समझे कि इसका नेचर क्या है, वो कौन सी चीज से डिस्टर्ब होता है, तो हम अगर समझेंगे तो हम कुछ अपने अंदर पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं, नॉट टू प्लीज हिम बट टू मेक आवर सेल्व्स मोर इफेक्टिव।
0: जी, है ना, तो वो सब देखते हुए भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है,
1: धीरे धीरे ऐसा रिजल्ट आएगा क्योंकि जब तक आपने एक्सेप्टेंस नहीं है ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा।
0: जी जी बिल्कुल, तो एक्सेप्ट करना
1: तो बहुत जरूरी है कि भाई एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल,
0: भले वो
1: तो मैं किसी का रोल नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने रोल को मोर इफेक्टिव बना सकती
0: हूँ और मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरा नेचर,
1: हाँ,
0: अगर कि मैं, मुझे बात करने नहीं आती है,
1: जी जी कोई बात नहीं,
0: वो
1: कंपेयर किसी से कंपेयर भी करने की जरूरत नहीं, वो अपना रोल बजा रहा है, मुझे अपना रोल बजाना है।
0: अगर मैनेजर कंपेयर किया तो,
1: मैनेजर कंपेयर करे तो सुन लो, फिर देखो कि मैं कौन सी चेंज अपने में ला सकती हूँ, और अगर ला सकते हो तो वेरी गुड है, बैलेंस करने के लिए।
0: अगर
1: बाकी अगर आपने फोर्सिबली अपने में चेंज लाया तो वो ना कस्टमर पर इफेक्टिव होगा ना आपको अच्छा लगेगा,
0: क्योंकि वो नेचुरल नेचर नहीं है।
1: नेचुरल चेंज अपने में आना चाहिए, तो भले कोई कुछ भी बोले पर अपने को फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर, है ना। अगेन फोर्स करेंगे तो फिर आपका विचार बदलता रहेगा अंदर, तो सामने जो आ रहे हैं उनसे डील करने में आपकी जो खुलापन होता है, ओपन माइंडनेस होती है, वो नहीं होगा, वो डिस्टर्ब करेगा वातावरण को और भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आसपास के लोग डिस्टर्ब करते हैं तो शांत रहकर काम कैसे करें, घर में भी, घर में मान लीजिए सब मेंबर्स के साथ हमारा नहीं बनता है कई बार, क्योंकि विचार अलग अलग होते हैं, तो कैसे शांत रखें अपने आप को और काम भी करें।
1: देखिए, शांत रहना ये चुप रहना अलग होता है।
0: ओके जी,
1: कोई चुप हो जाते हैं
0: लेकिन अंदर चलता रहता है, जी
1: चुप हो जाते हैं और कोई भी बात करने को इग्नोर करते हैं, ज्यादा टाइम बाहर चले जाएंगे जब वो व्यक्ति होता है जिसके साथ नहीं जमता ऐसे, तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है और वो हो सकता है वाइब्रेशन के कारण और भी प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो आपको ये देखना है कि जितना उसका फील्ड है उतना मेरा भी फील्ड है और दूसरे का भी फील्ड है, पर ये फील्ड में हमको कैसे रहना है, है ना। तो अगर उसने गुस्सा किया और मैं भी गुस्सा कर रही हूं और बार बार ये चीज हो रही है, तो वातावरण में कौन से इमोशन फैलेंगे? नेगेटिव, है ना, तो दुख का वातावरण बढ़ेगा। तो ऐसा करना है कि जो लोग पॉजिटिव है घर में वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दे,
0: जी ओके,
1: सामने वाले को चेंज करने की एक्सपेक्टेशन में ना जिए कि इसका गुस्सा कब कम होगा तब घर में शांति होगी, नहीं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते जाओ और जब बोलना ही है तब बोलो, बैलेंस से हर कार्य करो,
0: जी
1: है ना, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सामने वाले का गुस्सा भी कम होता जा रहा है। इसी को मेडिटेशन भी कहा जाता है। मेडिटेशन माना अपने माइंड के लेवल से आप कार्य कर रहे हो, केवल हाथ से नहीं, केवल मुख से नहीं, लेकिन माइंड के लेवल को भी आप इसमें ट्रेन कर रहे हो। कि जो मन है वो दूसरे तीसरे चौथे डिस्ट्रैक्टिव विचारों में न जाए
0: जी,
1: ऊपर अटेंशन में रख रहे हो और उसको एनर्जी को आप मोबिलाइज कर रहे हो और आप उसमें भी एक अच्छा विचार रख करके कर्म कर रहे हो, जिसको हम कर्म योगी स्टेज बोलते हैं।
0: तो ये अटेंशन सदैव रख सकते हैं हम अपने ऊपर?
1: नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है,
0: धीरे धीरे
1: धीरे धीरे स्टार्ट होता है। कोई भी चीज ABCD से ही होता है, तो ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा।
0: लेकिन जैसे 24 घंटा हम अपने ऊपर अटेंशन रख सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए?
1: मे बी नॉट, पर जितना भी आप कर सकते हो ना, तो उतना भी थोड़ा बहुत रिजल्ट तो जरूर आएगा
0: जी,
1: है ना?
0: Okay.
1: और कभी कभी ना नेचुरल परिस्थितियां भी रिजल्ट को चेंज कर देती है। कई बार उसी व्यक्ति का इतना जोरदार ऐसी परिस्थिति आती है कि वो व्यक्ति एकदम रियलाइज करने लगता है, पछतावा करने लगता है और अपने आप को बदल देता है। आपने भले खाली एनर्जाइज किया पॉजिटिविटी को, पर वो परिस्थिति ऐसी आ गई जो वो व्यक्ति चेंज हो जाता है। तो कोई ना कोई रीति से रिजल्ट जरूर आती है
0: जी।
1: जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू एनर्जाइज्ड पॉजिटिवली कि सामने वाला बदल गया, नहीं, अलग अलग रीति से।
0: क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी मानसिक शांति या फिर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए।
1: और आपने अपने घर के लिए भी किया ना,
0: घर के लिए भी किया।
1: ऐसा थोड़ी एक ही व्यक्ति को टारगेट करके करते हो, पूरे घर के लिए भी किया, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो सदा रहेगा ही रहेगा।
0: राइट,
1: उस व्यक्ति का जब भी चेंज होना होगा, जैसे भी होना होगा, वो हो जाएगा। पर नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं बनना है अपने
0: जी,
1: तो वो घर को पॉजिटिव नहीं बनाएगा। इतना तो अटेंशन दे ही सकते,
0: तो
1: मैंने अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा बार बार कि नहीं, मुझे अपना रोल बजाना है, मुझे अपना रोल बजाना है। और अगर हो सकता है उस समय मैं शांत रहूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस व्यक्ति का सुन रही हूं या मैं उस व्यक्ति को गलत रीति से मान दे रही हूं, नहीं। पर उस समय मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। इट्स योर ओन डिसीजन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स। समझे ना?
0: जब आपको लगता है कि बोलने से फायदा भी नहीं है और बात बढ़ेगी भी, तो नहीं बोलना
1: जी। जी
0: ओके। तो कई बार हम गलत जगह पर भी ना कह देते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, तो क्या ये सही है या कहाँ पे नो बोलना है, कैसे पता करें हम?
1: अभी क्या है कि बहुत ज्यादा नो भी तो कोई सुन नहीं सकता है, है ना? तो नो की जगह अगर आपको दूसरा कोई मेथड आता है, कोई दूसरे रास्ता आता है, तो आप वो उनको पूछ सकते, राय ले सकते कि मैं इस रीति से करूं या मैं ये कार्य करूं इसकी जगह। आप ऐसा ऑप्शन दो
0: जी,
1: तो एटलीस्ट वो व्यक्ति ना तो नहीं सुनेगा। कभी कभार कोई चीज के लिए आपको ना बोलना पड़ेगा, तो आप सॉरी बोल के बोलेंगे, लेकिन हमेशा ना बोलेंगे वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है
0: जी।
1: तो उसको थोड़ा टर्न करके, एक ऑप्शन दे करके आप बोलो तो बेटर रहता है
0: जी।
1: बाकी ना बोलना कोई गलत बात नहीं है।
0: जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या वो करने से आप ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, तो तब आप
1: गलत बात बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ना बोलना भी सीखना पड़ता है।
0: राइट। और क्या बीच बीच में जब हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो हम ज्यादा फोकस रहता है?
1: छोटे छोटे ब्रेक्स माना किस प्रकार?
0: हम
1: चाय पीने जाएंगे ऐसे?
0: हाँ, चाय पीने जाएंगे या फिर घर का काम बहुत ज्यादा है एक साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा बैठ जाए, अपने साथ बैठे, ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेना चाहिए?
1: बहुत ज्यादा नहीं, पर लेना जरूरी है। बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आपके करने की अवधि इतनी लंबी हो जाएगी ना
0: जी,
1: तो हो सकता है आपका कार्य ही पूरा ना हो। पर ब्रेक्स लेना जरूरी है,
0: पॉज होना
1: जरूरी है।
0: ओके।
1: कभी बॉडी को भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है। ओवरडू कोई भी चीज को कभी नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: जैसे कोई, समझो कोई मंदिर पे जा रहा है और मंदिर पर चढ़ने के लिए लगभग 700 सीढ़ी है, तो वो 100 सीढ़ी चढ़ के 2 मिनट अगर बैठेगा रिलैक्स होने के लिए, तो वो कोई भगवान नाराज नहीं हो जाएगा? फिर वो एनर्जी इकट्ठा करता है और 150 सीढ़ी चढ़ जाता है
0: जी।
1: तो ब्रेक किस लिए आप ले रहे हैं?
0: ताकि आप थोड़ा और फास्ट मूव कर सको
1: और अपने को एनर्जाइज कर सको। बाकी जो ब्रेक लेता है बार बार और फिर थोड़े ही पास में आके कहता अब मैं मंदिर में तो नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो उसने क्या किया, ब्रेक नहीं ली लेकिन वहां भी अपनी एनर्जी को यूज की
0: जी।
1: ब्रेक लेना माना एनर्जी को कंजर्व करना ताकि आगे के लिए आप ऐड कर सको
0: जी।
1: तो ब्रेक अच्छी है।
0: जी बिल्कुल। और अभी तो वक्त हो गया है कि यहाँ से हम विदा लें आपसे, लेकिन जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे एक दो क्वेश्चंस कि बार बार आजकल हम मोबाइल चेक करते हैं नोटिफिकेशंस और ये सब, तो प्रैक्टिकली कैसे हम बदल सकते हैं इस आदत को?
1: देखिए उधर आता है मोबाइल में, डू यू वॉन्ट टू अलाउ नोटिफिकेशन और नॉट, तो अगर वो आता है और आपको नहीं चाहिए तो उसी समय ना बोल दो, है कि नहीं
0: जी।
1: आप अलाउ भी करते हो और फिर आप नोटिफिकेशंस को कैंसिल करने में टाइम गवाते हो, है कि नहीं
0: जी।
1: तो इतना तो पहला डिसीशन वो पूछता ही है कि आपको अलाउ करना है कि नहीं करना,
0: नहीं करना है।
1: तो जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम जाता है तो पहले से ही आप उसको डिसाइड कर लो कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरा कि कई बार कई लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्या हो जाता है, फोन फुल हो जाता है।
0: यस, हम डिलीट भी नहीं करते हैं चीजें, कुछ
1: फुल हो जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको डिलीट करते रहना पड़ेगा
0: और अटेंशन भी देख के डिलीट करना पड़ेगा।
1: हाँ जी, अटेंशन देख के भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इस इंस्ट्रूमेंट्स का, आज का साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स का, ये थोड़ा ज्यादा ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं कभी नहीं कैंसिल करती थी कुछ भी, तो एक बार क्या हुआ, मुझे एक फोन से दूसरे फोन में सब ट्रांसफर करना था, तो आप नहीं मानेंगे एक पूरा दिन तक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। फिर वो भाई ने समझाया मुझे कि देखिए आप तो ओपन भी नहीं कर रहे हैं कहीं व्हाट्सएप, तो आपने क्यों रखा है, क्योंकि आपने ओपन भी नहीं किया, उस जगह लेता जा रहा है और अब यहाँ के लिए वो टाइम लगा रहा है
0: जी।
1: या तो आपको मेरे को ओपन करके देना पड़ेगा सब, तभी थोड़ा जल्दी होगा। तो मैंने देखा सचमुच वेस्ट था इतना सारा। तो ये बिगिनिंग से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो पूरी नॉलेज नहीं है ना मोबाइल की, तो वो फिर ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं ना, तो उसकी थोड़ी नॉलेज ग्रास्प करना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको इफेक्टिवली यूज कर
0: सको। लाइफ भी ऐसी है,
1: लाइफ भी ऐसी है, अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा होगी इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा होगा, तो आपका अटेंशन स्पैन भी बेहतर ही रहेगा
0: जी।
1: तो आज तो लाइफ भी कभी कभी मेस में होती है,
0: राइट। तो कौन से नोटिफिकेशंस ऐसे हैं लाइफ में जो हमें बंद रखना चाहिए?
1: एक तो गॉसिप,
0: ओके,
1: गॉसिप तो जरूर, बैक बाइटिंग।
0: और डिलीट क्या करना चाहिए?
1: ना यही यही जो है,
0: ये नोटिफिकेशन बंद है और इसी को डिलीट
1: भी करना
0: है, पास्ट के हैं तो
1: मैसेजेस। फिर दूसरा, दूसरों पर इल्जाम लगाना, दोष डालना, भले आपका भूल, तो ब्लेम गेम भी एक चीज है जो हमको नहीं रखनी चाहिए। फिर तीसरा, कोई को दुश्मनी हम क्यों बनावे, ऐसा ख्याल ही आपके अंदर क्यों आता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो वहीं पर अपने एक्शंस को पहले से थोड़ा कंट्रोल करो कि मुझे जरूरी नहीं है किसी को दुश्मन बनाना, भले दोस्त कम हो पर किसी को दुश्मन बनाना ये तो मेरी डायरेक्टरी में होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ कुछ है चीजें। दूसरा कि जितना हो सके मुझे शांति से कार्य करना है, मैं गुस्सा क्यों होती हूँ, क्रोध में क्यों आती हूँ, ये तो मेरी एनर्जी पूरी ये हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है इसमें, क्रोध करने में। तो अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ा रही है, कौन सी चीज मुझे रोक रही है, तो ऐसी सब नोटिफिकेशंस को हमें पहले से अगर नहीं डाले, डाउनलोड ही नहीं करे या तो डिलीट करते जाए,
0: वो एप्लीकेशन ही ना रहे।
1: हाँ हाँ, क्योंकि वो हाँ, तो ऑफकोर्स अपना फोकस बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में। और ऐसे नहीं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है हमारे सामने जिनका फोकस बहुत अच्छा रहा, भले उनके कितने भी जेलिसी वाले दुश्मन बने, उन्होंने क्या क्या उनके साथ किया, उनको वो मैटर नहीं करता है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया वो ही मैटर करता है। और ये लोग बहुत फोकस्ड लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, बहुत फोकस्ड थे, जैसे मदर टेरेसा है, वो अपने जमाने में बहुत फोकस्ड थी
0: जी,
1: है ना, खुद ही अपना जीवन निर्माण किया और खुद ही उसको सस्टेन भी करती रही
0: जी।
1: उसके बाद भले वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी किया हो, लेकिन उनके होते समय तो काफी मना फोकस्ड रही। ऐसे हमारे कई राजा महाराजाओं की फैमिलीज है जिसमें काफी फोकस्ड रूप से उन्होंने राज्य भी किया और भारत को दुश्मनों से बचा के रखा, तो भले उनकी फैमिलीज थी, सब कुछ था, लेकिन काफी फोकस्ड लोग थे। उनका क्लियर थिंकिंग, फोकस्ड माना क्लियर थिंकिंग,
0: क्या करना है क्या नहीं करना है,
1: क्या नहीं करना है, बहुत क्लैरिटी होती है उनके थॉट्स में। ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स है, संत ज्ञानेश्वर का भी एग्जांपल है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट। ऐसे कई संत भी रहे हैं हमारे भारत में और पूरे विश्व में भी ऐसे कई लोग, जैसे अब्राहम लिंकन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा अमेरिका का, उसका भी काफी फोकस था। कितना कुछ वो डिफीट हो रहा था तो भी उसने अपना रास्ता ही नहीं छोड़ा। और एंड में जब से वो 60 साल का हुआ तब अमेरिका ने सामने से बोला कि हमको आपके जैसे प्रेसिडेंट की जरूरत है
0: जी।
1: अभी तो देखो कैसे वो अपने टारगेट पे पहुंच गया ना। तो ऐसे कई लोग फोकस्ड है और उन्होंने हमें सिखाया है। ये तो क्या है कि हमने सीखना ही बंद कर दिया है
0: जी,
1: सीखना बंद किया तो फिर आप कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हो, कैसे पर, और फिर गलत एग्जांपल्स ले लेके उसको फॉलो करते जा रहे हैं, तो फिर कैसे फोकस्ड रहेंगे।
0: अपने लक्ष्य को भी रिवाइज करना है कि
1: करना चाहिए,
0: अगर मैं देख भी रही हूँ कुछ तो क्यों देख रही हूँ,
1: हाँ,
0: मुझे क्या करना है,
1: मुझे क्या मिलना है इससे, वो जरूर देखना चाहिए। कोई भी चीज मिलती है ना आपको सामने से, तो उसके 3 प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न पूछो क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, फिर दूसरा प्रश्न पूछो कि क्या ये आगे चल करके मेरी प्रगति करेगा, और तीसरा है कि क्या मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न पूछ के आप उस बात को पहले एनालाइज करो
0: जी,
1: और फिर वो कार्य करो तो आप फोकस्ड रहेंगे।
0: राइट, बिल्कुल। तो अगर आपको एक लाइन में बताना हो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे पावरफुल मंत्र क्या है?
1: पावरफुल मंत्र यही रहेगा कि आई एम हियर टू रीच माय ओन डेस्टिनेशन फ्रॉम माय ओन फ्री विल।
0: ओके,
1: आई एम हियर टू रीच माय डेस्टिनेशन विच इज क्रिएटेड फ्रॉम माय ओन फ्री विल।
0: जी, मेरी इच्छाओं से ही मेरे को अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बिल्कुल, इसे हम जरूर याद रखेंगे। दीदी, अभी वक्त हो गया विदा लेने का, तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: इसमें यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू मुझे समय देने के लिए, अपने विचारों को बांटने के लिए आप सबके साथ, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस पर अपने थॉट्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और हर एक कुछ अपनी लाइफ का थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे, जैसे एक मिरर सामने रखते हुए अपनी पूरी जीवन यात्रा को देखेंगे, और आगे ये भी समझो कि हर एक के अंदर वो फोकस है ही है, कहीं नहीं जाता है, केवल हमको वापस उसका अनुभव कैसे करना है। तो जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो जितनी भी नहीं काम की चीज़ें होती है वो निकाल देता है, एंड एट द एंड वो मूर्ति अपने आप शेप ले लेती है। तो ऐसे ही हमारा भी फोकस अपने आप शेप ले लेगा अगर उसके अलावा जो भी वेस्ट है, जो डिस्ट्रैक्शंस आपको कर रहे हैं, वो आप धीरे धीरे एक बाय एक निकालते जाओ, तो लास्ट में क्या रहेगा, आपका प्योर फोकस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।
0: थैंक यू सो मच दीदी, आज हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद है कि जब जब आप शांतिवन आएंगे तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और हमारे श्रोताओं को आपके जो अमूल्य जीवन के ज्ञान है, जो आप प्रैक्टिकल जीते हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।
1: थैंक यू। धन्यवाद आपको।
0: दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? डेफिनेटली अच्छा ही लगा होगा, तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं 9414-1415 पर। नमस्ते।

0: उठो जागो अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का, ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का, ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है।
1: किस्मत

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: तो लीजिए श्रोताओं, रविवार हो गया है और हमराही के एक और ताजा ताजा गर्मा गर्म एपिसोड को लेकर के हाजिर हूं मैं संदीप कुमार त्रिवेदी रेडियो मधुबन के इस बेहद खास मंच पर। जाहिर सी बात है, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो और कार्यक्रम हमराही पर प्रतिक्रियाएं हमेशा हर बार देते रहो, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमारे इस कार्यक्रम को अलग बनाती हैं, अनोखा बनाती हैं और कहीं ना कहीं आप सब तक कुछ न कुछ नया प्रस्तुत करने के लिए हमें प्रेरित भी करती हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको मैं बहुत सालों से जानता हूं और श्रोताओं, जब हम लोग पढ़ा करते थे, हम इन्हें जब जानते थे बचपन में या सीनियर क्लासेस में, तो अक्सर हम सब ये कहा करते थे कि अरे यार तुम्हारा क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सीधा साधा इंसान, बहुत ही एकदम हर बात को सादगी के साथ रखना और अपने मतलब किसी के प्रति मन में कोई भी जो है खटपट नहीं रखना, इस तरह का इनका व्यवहार हुआ करता था। इस वजह से इन्हें हर कोई बहुत ही सीधा साधा इंसान मान करके चलता था और निश्चित रूप से वो हैं भी, आज तक भी हैं और उनको देख करके लगता है कि वो आगे भी रहेंगे। ऐसे में अपना अध्ययन पूरा करना, उसके बाद समाज परिवार के बीच में रह करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, अपनी मेहनत के बल पर राजकीय सेवा में सरकारी नौकरी प्राप्त करना और ये सब हो जाने के बाद अपने हमराही की तलाश पूरी करना, ये सब इन्होंने कर लिया है। कहने का मतलब ये है श्रोताओं कि अगर आपका प्रयास सकारात्मक है, आपके मन में किसी के प्रति कोई भी गलत तरह की भावना अगर नहीं है और आप बहुत ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका प्रतिफल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। बहुत सारी भूमिका हो गई, आप सोच रहे होंगे कि आज कहाँ चले गए हम, कौन सी भावनाओं में बह गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आज के हमारे जो मेहमान हैं ये हाल ही में विवाह सूत्र में बंधे हैं 25 अक्टूबर को, तो जो लोग जानते हैं वो तो समझ ही गए होंगे और जो नहीं समझे हैं उनको बता दूं मैं हमारे सभी सुनने वालों के लिए कि आज के हमारे मेहमान हैं डूंगरपुर राजस्थान से राकेश पांचाल और उनकी श्रीमती जी निव्रता पांचाल। तो राकेश जी और निव्रता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद संदीप सर, और थैंक यू रिकॉर्डिंग क्लब एवं रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्ते, और आपने हमें इस प्रोग्राम में अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: जी जी राकेश, नहीं निश्चित रूप से अवसर तो हमने दिया भी है और आपने लिया भी है, क्योंकि अब आप विवाह सूत्र में बंध गए तो इस कार्यक्रम में तो लाना ही था आपको। और वैसे भी जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत सालों से जानता हूं आपको, तो निव्रता जी जरा आप भी अपनी आवाज सुनवा दें हमारे सुनने वालों को।
2: नमस्ते
0: जी। जी तो आज निव्रता जी से ही शुरुआत करते हैं। निव्रता जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको किस तरह की दिव्यांगता है और है या नहीं है, और आपने एजुकेशन में क्या क्या किया है।
2: हाँ सर, मेरा नाम है निव्रता, मैं ना डूंगरपुर की रहने वाली हूँ
0: जी।
2: और मेरे बचपन यानी 5 साल की थी तब मेरे पोलियो हो गया।
0: ओ अच्छा।
2: पोलियो की वजह से दोनों पैर यानी विकलांग की विकलांगता आ गई।
0: जी जी जी जी।
2: फिर बाद में बड़ी बहुत इलाज भी करवाया मेरे मम्मी पापा ने
0: जी।
2: सब कुछ किया पर कुछ प्रतिफल यानी कुछ परिमाण सामने नहीं आए।
0: अच्छा।
2: फिर 2-3 बार तो ऑपरेशन भी हुआ, फिर मेरे पहले यानी वैसाखी की सहायता से मैं अभी चल रही हूँ।
0: अच्छा।
2: और बाकी सब घर का भी काम कर लेती हूँ फिलहाल। अच्छा। मेरे सेल्फ पर सब कुछ कर लेती हूँ
0: जी।
2: मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, हम 5 बहनें हैं
0: जी,
2: और भैया एक ही है यानी स्टेप मदर का है, और मेरी रियली मम्मी है नहीं।
0: अच्छा।
2: और 5 यानी 4 बहनों की शादी भी हो गई है, वो भी अच्छे हैं, उनके घर पर खुश हैं, और मेरी भी अभी इनके साथ शादी हो गई है।
0: बहुत बढ़िया।
2: और मैंने मेरे ना शिक्षा मैंने यानी एसटीसी बीएड की है, और बड़ी मुश्किल से ही मैंने शिक्षा प्राप्त की है। सब जगह रहे, हमारे गांव में स्कूल था नहीं, यानी दूसरी जगह रह रह के मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त की है।
0: तो ये जो
2: दो बार
0: हाँ बताइए, दो बार
2: हाँ दो बार मैंने रीट में भी दिया, रीट तो मेरे 55.33% बना था, पर विकलांग की यानी ओबीसी में आ रही थी ना, इसकी वजह से मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन।
0: जी।
2: और 2013 में हुआ, पर केस लड़ा है उसमें कुछ सुनवाई हुई नहीं मेरी।
0: अच्छा।
2: जोधपुर मैंने केस किया है पर सुनवाई हुई नहीं अभी तक, 2.5 साल हो गए।
0: अरे बाप। तो निवृत्त, आपको जो ये पोलियो की परेशानी जो रही है, इसका अब कोई इलाज संभव नहीं है?
2: संभव तो पहले हमारी स्थिति मेरे पापा की ऐसी थी, फिर धीरे धीरे वहाँ दवाइयाँ बहुत करवाई, यानी अहमदाबाद में भी सिविल हॉस्पिटल में भी करवाई, बहुत बहुत कुछ किया, पर इसके बाद में यहाँ कैंप ही लगा था भिलवाड़ा में, तो एक डॉक्टर बोल रहे थे यानी विशाखापट्टनम में आपका इलाज अच्छा हो सकता है, पर इतना हमारे पास में बैलेंस था नहीं, फिर हमने कुछ ज्यादा उनको बोला नहीं। अभी मैं अपने बेसक की सहायता से सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपना सब काम कर लेती हूँ, यानी डूंगरपुर आना जाना और घर का भी काम, घर में भी कुछ भी काम लाना हो ले जाना वो भी मैं कर लेती।
0: अच्छा अच्छा और ये जो विशेष तरह की जो साइकिलें और जो गाड़ियां होती हैं वो चला लेती हैं आप या नहीं?
2: यानी मुझे स्कूटी मिली है पर मैं चला नहीं पा रही।
0: अच्छा, अरे कोई बात नहीं।
2: ये 2 बार ऐसे गिर गई है ना इसलिए।
0: नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें लगता है कि अब राकेश जी ये संभव बनाएंगे कि आप एक दिन स्कूटी भी चलाने लगे।
2: हाँ सर, ये तो आज से मेरे मैं चलाऊंगी ऐसा।
0: बहुत बढ़िया, मेरी बहुत बढ़िया, और हम सबकी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। तो चलिए श्रोताओं, अब निवृत्ता जी को सुना, अब राकेश जी को सुनते हैं। जी राकेश जी।
3: जी सर।
0: थोड़ा जरा तो, अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं और अपनी समस्या के बारे में भी बताएं। जी।
3: तो रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को एक बार फिर राकेश लोहार का प्यार भरा नमस्ते। तो मैं हमारे लेक सिटी कहे जाने वाले उदयपुर के ऋषभदेव के एक छोटे से गांव से हूँ, कल्याणपुर।
0: जी।
3: और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड।
0: जी।
3: तो दरअसल ये ब्लाइंडनेस बचपन से ही है और हमने डॉक्टरों से जानकारी की तो उन्होंने कहा कि वेन में ब्लड सूख चुका है।
0: अच्छा।
3: तो इसकी कोई संभावना नहीं है। अहमदाबाद में ये डॉक्टर नागपाल हैं, उस समय हमारी स्थिति भी बहुत कमजोरी थी लेकिन मामा वगैरह सक्षम थे तो उन्होंने भी काफी इस संबंध में कहा, तो डॉक्टर ने कहा कोई संभव नहीं है। तो इसके बाद में मैं उदयपुर अंध विद्यालय से 8th class की पढ़ाई की मैंने।
0: जी।
3: और 9th से 12th राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंध विद्यालय अजमेर से।
0: जी।
3: और ग्रेजुएशन जयनारायण व्यास जोधपुर से, कोटा बीएड से, और एमए मैंने किया जोधपुर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से।
0: जी
3: सर।
0: जी बहुत बढ़िया। तो राकेश जी आप जॉब कब से कर रहे हैं?
3: सर मेरा जॉब लगा ये 2017 में, 16 मई 2017 में मेरी थर्ड ग्रेड में पोस्टिंग हुई थी, जो वैसे मेरा चयन हो चुका था 2012 में, परंतु वो कोर्ट के मैं अटक गई थी वो भर्ती। तो 2017 से थर्ड ग्रेड में मैंने ज्वाइनिंग की, फिर 18 अक्टूबर 2018 को सेकेंड ग्रेड में सोशल स्टडीज से मैंने ज्वाइन किया। अभी मतलब कम से कम 27 महीने हुए हैं, 27-28 महीने सेकेंड ग्रेड में। जी सर।
0: बहुत बढ़िया। तो राकेश भाई आप मुख्य रूप से थोड़ा सा बताएं आपके जिंदगी के अभी तक के क्या अनुभव रहे हैं, विवाह पर तो हम आएंगे लेकिन उसके अलावा आपका अपना अनुभव क्या रहा है अभी तक
3: जिंदगी में? सर ये मेरा अनुभव ये रहा है कि सर हालांकि कहीं भी जैसे पढ़ते हैं तो या जहाँ भी हम रहते हैं तो सब प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि हम अपने अंदर किसी के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं तो मिलती रहती है। जैसा कि मैं उदयपुर में भी रहा तो वहाँ सभी साथियों का सहयोग मिलता था, और अजमेर में जहाँ भी रहा तो मेरा ये मानना है कि बस अपना कर्म करते चलो
0: जी,
3: और सबके प्रति अच्छी सोच रखो तो अपने आप सहयोग मिलता रहता है, और ये सभी की दुआओं का परिणाम भी होता है कि हम जीवन में सफल होते हैं तो बहुत से लोगों का कहीं ना कहीं हमारे सहयोग में हाथ होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से,
0: निश्चित रूप से।
3: और जो अपना रिकॉर्डिंग क्लब है इसके जरिए हमको, जैसे हम लोग ऑडियो कैसेट से पढ़ते हैं तो जो तैयारी करते हैं उसमें भी बहुत योगदान रहता है, सीडी वगैरह हमें उपलब्ध कराई जाती है, तो हर प्रकार से कहीं कहीं हमारी मतलब सकारात्मक सोच होनी चाहिए तो सहयोग अपने आप मिलता रहता है सर।
0: जी बहुत खूब राकेश भाई। तो थोड़ा सा अब बात कर लें कि कब से सोचना शुरू कर दिया था शादी के बारे में, या कभी सोचा ही नहीं था?
3: नहीं सर, शादी के बारे में तो सोचना शुरू हुआ था कि ये जो मैडम है
0: जी,
3: इनसे शुरुआत करूंगा कि सर ये हमारे जब भाई साहब की शादी हुई तो फिर जब मैं ग्रेजुएशन या एमए कर रहा था तब बहुत बार हमारे मतलब ये तो मेरे परिवार में था कि माता पिता को भाई को सबको कि भाई इनकी शादी तो करवानी है
0: जी।
3: हाँ, लेकिन हमारे भाई साहब ने ये चाह रहे थे कि भाई इनकी शादी हो, और मैडम को भी बोला कि और हम मम्मी को भी बोलते थे कि इनसे शादी हो जाए इनकी तो अच्छा रहेगा, लेकिन कि भाई ये कोई भी शॉप वगैरह चला कर रहे हैं, अपना काम कर सकते हैं अगर इनकी जॉब में लेके। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना था कि नहीं, शादी किसी से भी हो कहीं भी हो, लेकिन सेल्फ डिपेंड होना जरूरी था, और मेरी मम्मी का भी यही मानना था। इस जरिए से फिर प्रक्रिया, फिर मुझ तो शादी का वहां से मामला शुरू हुआ सर। लेकिन मैं बहुत बार ये सोचता था कि यार शादी तो होगी लेकिन कोई ब्लाइंड से हो, शायद तक वो अपन को समझ पाए। फिर मैं जॉब में आया, इसके बाद मैं प्रयास शुरू किया तो एक दोस्त ने बताया भी सही कि भाई एक ब्लाइंड व्यक्ति है तुम्हारे समाज का, तो भाई तुम जब भी जॉब लगोगे तब देखना है। मैंने कहा जॉब के बाद, और लकीली ये हुआ मेरा सेकंड ग्रेड में जिस दिन ज्वाइनिंग हो रही थी उस दिन उसका फोन आया।
0: अच्छा,
3: मैंने कहा चलो देखेंगे। फिर हमारे फादर आए कुवैत से और वहां फिर चर्चा चली, चलो हमने प्रस्ताव रखा, लेकिन पहले मैडम की आई, उन्होंने कहा चलो विचार करेंगे, तो फिर बस इनके साथ जो ईश्वर ने लिखा था और अच्छा है इनसे हो गई।
0: बहुत खूब, लेकिन मतलब ये सब कुछ बहुत आसानी से तो नहीं हुआ होगा ना राकेश जी?
3: नहीं सर, इसमें बड़ी दिक्कतें भी रही थोड़ी दिक्कतें रही कि पहले वो अभी आगे मैडम बताएंगे कि इनको भाई साहब ने भी बोला, फिर इन्होंने कहा कि चलो।
0: आपके आपके बड़े भाई की बात कर रहे हैं आप?
3: जी सर।
0: अच्छा,
3: मेरे बड़े भाई साहब।
0: जी जी जी।
3: और फिर इनको बोला, फिर उनका चलो देखेंगे।
0: अच्छा, एक बात बताओ राकेश जी, इनको आप पहले से जानते थे निव्रता जी को?
3: हाँ जी, ये आते जाते थे।
0: अच्छा।
3: लेकिन मैंने उन टाइम पे कोई खास गौर नहीं किया हुआ, चलो कभी बोल लेते आते
0: जी,
3: कभी मतलब बहन के हिसाब से भाभी के यहाँ, ना इन्होंने कभी ना गौर किया हुआ चलो
0: जी,
3: कोई अगर वैसे मानसिक सहयोग चलो भाई कुछ बताना होता है एक अलग बात है, बाकी कोई भी इस प्रकार इंटरेस्ट नहीं लिया
0: जी,
3: ना हमने ना इन्होंने
0: जी। मतलब इनके बारे में तो कभी आपने सोचा ही नहीं था?
3: नहीं सोचा था, मेरा तो मानना यह था कि नहीं हो सकता है कि अपन को कोई ब्लाइंड लड़की समझ पाएगी। मैं बहुत बार जब वो चर्चा चली और तब भी मैं बहुत बार इनसे पूछा करता था कि भाई देखो आपका इंटरेस्ट है, किसी के प्रेशर में तो नहीं
0: सही
3: आप हाँ भर रहे हो?
0: हाँ।
3: और क्योंकि मुझे बहुत बार ये लगता था कि शायद तक अपना मुझे कोई ब्लाइंड लड़की समझ पाएगी या वो मेरी फीलिंग को समझ पाएगी या ऐसा फील होता था, तो इसलिए मतलब मैंने तब तो सोचा भी नहीं था। हाँ, फिर थोड़ा बाद में जब चर्चा हुई तब दिमाग में लगा चलो कोई बात नहीं।
0: अच्छा।
3: हाँ सर
0: जी। तो निव्रता जी।
2: हाँ सर।
0: आपके तो आपने बताया कि जैसे माता जी आपकी है नहीं, तो
2: मेरी मम्मी है अभी फिलहाल, यानी स्टेप मदर है, तो भी यानी रियली माँ से भी बढ़कर है।
0: अरे वाह,
2: उन्होंने मुझे बहुत कुछ सहायता दी, हर समय हर पल हर मुश्किल में उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे मम्मी पापा ने।
0: ये बहुत कम देखने में आता है निव्रता जी।
2: हाँ सर,
0: बहुत बढ़िया, आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको स्टेप मदर भी बहुत अच्छी मिली। तो आपके घर परिवार ने आपके बारे में सोचना कब से शुरू कर दिया था?
2: बहुत मेरे जीजू बोलते थे, आए दिन आते थे ना, तू कर दे शादी। फिर मैंने ज्यादा गौर किया नहीं, चलो जो भी होगा परिवार वाले सोचेंगे, अपनी भी जिंदगी अपना तो फैसला ही करना ही है, पर मम्मी पापा से बढ़कर तो कर भी नहीं सकते अपन
0: जी।
2: फिर
0: जी।
2: मैंने सोचा वह मम्मी पापा से बात की, मेरी दीदी ने और मेरी जीजू ने, तो मम्मी पापा ने बोला तो उनसे बात करो पहले, उनको है ना पसंद है नहीं है उसके बारे में, उनके साथ में रहना पूरी जिंदगी इसको निकालनी है हमारे, तो कुछ नहीं हम ऐसा भी फैसला करके हम शादी करवा देंगे, पर इसके साथ में कुछ अच्छा होना चाहिए इसे। मुझे भी ऐसा लगा उनको देखकर, नहीं वो मुझे समझ सकते हैं, यानी उनकी हर भावना को मैं ऐसा हो गया कि या मुझे हर पल हर समय कभी भी किसी भी चीज के बारे में दुख नहीं देंगे, यानी अच्छा समझते हैं।
0: तो निवृता जी, जैसा कि हम लोग सोचा करते थे इनके बारे में कि बहुत सीधा साधा इंसान है, आपको भी ऐसा ही लगा?

0: इंसान होना चाहिए सी।
1: देखो शादी की बात शुरू हुई आप लोगों की और पीछे डीजे भी बजना शुरू हो गया आपके यहाँ
0: हाँ सर।
1: तो वो मतलब तो निव्रता जी फिर मतलब आपको कुछ कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ पूछें कि कंफर्म करें यार कि भाई इंसान वापस वाकई में मेरा ध्यान रख पाए। जैसे बहुत सारे लोगों को ये होता है ना कि ये अपना काम कैसे कर लेते होंगे ये वो आपके मन में भी सारी भावनाएं रही होंगी।
0: हाँ सर रही है, मुझे लगा कि वो अपना अपना काम कर लेते हैं या मुझे करना पड़ेगा या मैं ना कैसे कर पाऊंगी, ऐसे तो सवाल तो उठता ही है। फिर मैंने उनसे बात की, नहीं मैं तो अपना सब काम कर लेता हूँ और कहीं जाना हो कहीं आना हो तो मेरी मम्मी है वो साथ में आएंगे। मेरे को देखो मैं तो दोनों यानी विकलांग हूँ, मैं आ नहीं जा सकती और मैं स्कूटी भी नहीं चला सकती, यानी स्कूटी चलाती तो भी मैं उनको हर जगह ले जाऊं या सब कुछ करवा सकूं, पर मैं स्कूटी चला नहीं पाती, इसलिए फिर उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं अपन सेट हो जाएंगे।
1: मतलब जो कुछ था वो आपने साफ साफ कह दिया,
0: हाँ सर
1: ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि अपने जीवन साथी को दोनों को एक दूसरे को ये स्पष्ट तौर पर बता देना चाहिए कि भाई किसकी क्या सीमाएं हैं किसकी क्या लिमिटेशंस हैं। क्यों
0: हाँ सर ये सही बात है।
1: फिर आपकी माताजी तैयार हो गई थी तुरंत?
0: मेरी मम्मी यहाँ मुझे बोला कि तेरे क्या विचार है तू बता, तू यस बोलेगी तो मैं भी यस बोल दूंगी, तू ना बोलेगी तो मैं भी ना बोल दूंगी, तेरे पर पूरा डिपेंड करता है कि तुझे फैसला लेना, ये पूरी जिंदगी का सवाल है।
1: सही
0: मेरी
1: बात है।
0: मम्मी ने मुझे बहुत कहा कि देख 10 बार यानी इस जिंदगी में आने से पहले अपने बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, यानी नॉर्मल लोग होते हैं उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती और ऐसे ही होते हैं ना तो उनको ज्यादा सोचना पड़ता है, यानी जीवन भविष्य के बारे में ज्यादा कुछ हर तरह से सोचना जरूरी होता है।
1: बहुत जरूरी। जी जी
0: मम्मी पापा के भी ऐसे ही था कि नहीं मेरी बेटी कहीं भी जाए यानी दूसरी जगह भी शादी कर रहा है पर उसका ना उसको समझने वाला यानी भविष्य में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे करके मम्मी पापा तो यस ही थे।
1: तो एक जो हमारा प्रश्न हर किसी से रहता है निव्रता जी वो आपसे भी है
0: हाँ
1: कि
0: सर।
1: क्या और भी कहीं आपके रिश्ते की बात चली थी?
0: हाँ सर आते थे रिश्ते तो बहुत आते थे,
1: फिर
0: फिर
1: क्या उसके बाद? हाँ
0: मैंने कुछ जवाब दिया नहीं और मेरे घर वालों ने भी नहीं बोला कि नहीं नहीं करनी। मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि मैं सरकारी जॉब करूं, बस शादी तो देखी जाएगी, जॉब के बाद में भी शादी हो जाएगी ऐसे, पर
1: जी
0: नसीब तो बस कहाँ ले जाता, इसलिए जॉब आई थी वो भी चली गई, फिर दुख तो होता ही है।
1: थोड़ा सा निव्रता जी मैं अलग दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ बातचीत। हम और हमारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जब दोनों पैर इंसान के काम नहीं करें तो देखिए हमें आंखों का पता है कि आंखें अगर नहीं हो रोशनी नहीं हो तो क्या स्थितियां होती हैं, लेकिन दोनों पैर अगर काम नहीं करते हैं तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, थोड़ा सा ये आप अपने अनुभव से बताएंगे तो अच्छा लगेगा।
0: सर दोनों पैर नहीं होते तो अपन यानी ऐसे ही मोहताज हो जाते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कमी है तो हम ये काम नहीं कर सकते ऐसे। पर मैंने इतने आईटीआई यानी कुछ पढ़ा कहानी और प्रेरणा ली दूसरों के बलबूतों से कि नहीं पैर नहीं हो तो भी अपन सब कुछ कर सकते हैं, अपन दोनों हाथ तो है अपन सब कुछ काम कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। मैंने ना रीढ़ की तैयारी यानी कोचिंग की, मैंने 3 मंजिल चढ़कर मैंने कोचिंग की
1: जी
0: सीढ़ियों से।
1: जी जी जी वाह क्या बात है। जी
0: हाँ सर 3 3 मंजिल यानी गुरुकुल, हमारे डूंगरपुर में गुरुकुल सेंटर था ना उसमें हौसला
1: अच्छा
0: होता है तो कुछ भी कर कर है ना गुजर सकते हैं, हौसला नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकते,
1: अब जैसे
0: आत्मविश्वास मनोबल ज्यादा होना
1: बहुत
0: चाहिए
1: बढ़िया
0: इंसान के
1: बहुत
0: अंदर।
1: बहुत अच्छी। आपने अभी कहा कि आपने कईयों की कहानियां पढ़ी तो कुछ याद है कि किस किस की कहानियां पढ़ी आप?
0: यानी जैसे कि पर्वतारोही में जैसे वो नहीं प्रेमिला अग्रवाल थी, उनके भी एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए थे, उन्होंने तो भी वहाँ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाया, दिव्यांग पर्वतारोही का नाम रोशन किया,
1: और
0: तो
1: अरुणा
0: वो इतना
1: अरुणिमा
0: कर
1: सिन्हा का
0: सकते।
1: नाम सुना आपने?
0: हाँ हाँ हाँ सर।
1: जी जी
0: वो भूल गई सॉरी।
1: जी बहुत बढ़िया।
2: बहुत खूब।
1: अच्छा, जब शादी के बाद तो फिर निवृत्ता, घर परिवार के भी बहुत सारे काम होते हैं, कई सारी जिम्मेदारी।

0: होती हैं और थोड़ा सास ससुर को भी बहू से कुछ उम्मीदें होती हैं, तो इन सब चीजों को कैसे हैंडल कर रही हैं आप?
1: अभी तो फिलहाल तो अच्छा ही चल रहा है। यानी मैं भी काम वाम कर लेती हूँ, मेरी सास यानी मेरी मम्मी जी है वो भी बस हेल्प करने लगते हैं, और कहीं जाना है तो भी हेल्प मिल जाती है, उनका सपोर्ट रहता है, घर वालों का भी रहता है।
0: अच्छा, और ये जो खाना वगैरह बनाने में?
1: खाना मैं बना देती हूँ,
0: हाँ, बना
1: इसमें
0: लेते
1: ज्यादा
0: हैं,
1: कुछ भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं। खाना बनाना, कपड़े धोना ये कर लेती हूँ।
0: सारा काम कर लेती हैं आप।
1: हाँ सर, मैं कर लेती
0: अच्छा, एक ये जो जयपुर फुट जो होता है काफी फेमस है, तो वो आपके केस में वो नहीं काम आ सकता?
1: हूँ। नहीं सर, मेरे यानी कमर से है ना, इसलिए नहीं काम आ
0: अच्छा,
1: सकता।
0: इसलिए काम नहीं आ सकता जी। हाँ, तो राकेश,
2: जी सर,
0: तो विवाह तो आपका 25 अक्टूबर को हुआ?
2: जी सर, 25 नवंबर सर।
0: 25 नवंबर को। अच्छा, जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमको
2: नहीं नहीं कोई बात नहीं सर। तो
0: जी, बताइए।
2: इस इसके बीच की सर एक और मैं बताना चाहूंगा। जैसा
0: हाँ,
2: कि मैंने
0: जरूर
2: सर आपको
0: जरूर,
2: बताया था
0: हम
2: कि
0: सुनना
2: जैसे
0: चाहेंगे।
2: जोधपुर से बात चली, तो फिर सडनली एक दिन हम उदयपुर गए। हालांकि हमारे मन में भी था कि नहीं, अपन चलो जहां तक संभव हो सके यहीं, बस मन में ये था कि क्या पता कि इनकी फैमिली वाले अगर मना करें, या फिर इनको क्या पता मतलब ब्लाइंड व्यक्ति से करना उचित लगे नहीं लगे। तो हम दरअसल एक बार उन्हीं दिनों में फादर मम्मी और मैं उदयपुर गए थे। तो हमारे एक सर हैं जो उदयपुर में, वीरेंद्र जी सर, तो वहां गए। तो फिर जैसे ही जॉब के, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी मम्मी को कि भाई इनकी शादी के लिए क्या कर रहे हो, कोई कोशिश कर रहे हो? फिर हमने कहा कि वो हमारे भाभी जी की बहन है, उनसे कोशिश कर रहे, चलो इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है। फिर उन्होंने भी इनसे बातचीत की, उनका बहुत बढ़िया फिर इनका स्वभाव। फिर तब से फिर हमने और कहीं सोचना, और मतलब पहले से इच्छा थी, लेकिन उनकी फैमिली ने भी फिर हमको बोला कि नहीं नहीं अब चलो यही करेंगे 5-6 महीने बाद। तो फिर धीरे धीरे इनसे बातचीत शुरू हुई फोन पर। और इनको मैं बस एक ही बात पूछा करता था कि आपके मन से की इच्छा है ना मेरे प्रति, हाँ कि मैं जो भी हुआ संभव आपका सहयोग करूंगी, और हम दोनों एक दूसरे को समझे वही बहुत है। तो कम से कम हमारी सगाई सर रही 1.5-2 साल,
0: जी,
2: और फिर 25 नवंबर को फिर अभी इस साल शादी हुई, अरेंज मैरिज।
0: तो आप जो सर के पास गए थे, तो
2: जी सर,
0: ऐसे ही सर को मिलने गए थे, या मतलब यही सब राय
2: नहीं
0: लेने गए थे कि हम
2: मिलने
0: करें
2: गए
0: क्या
2: थे,
0: है?
2: वैसे ही मिलने गए थे,
0: अच्छा, मिलने गए
2: चलो
0: थे।
2: वहाँ उदयपुर आए थे तो वैसे ही मिलने गए थे। उस समय तम विवाह चलो साल भर ही हुआ था, तो वहाँ हमारे काम था तो हम वैसे ही गए थे। तो वहाँ फिर थोड़ी देर बैठे और फिर सर ने जानकारी दी, क्योंकि हमारे दिमाग में ही था चलो भी पहला प्रयास तो अपन यही करेंगे और कहीं नहीं।
0: तो ये जो आपके घर वाले क्या सोच रहे थे इनको लेकर के, जैसे आप लोगों की आपस में बातें होती होंगी,
2: जी सर,
0: हाँ, आपके घर
2: तो
0: परिवार
2: हमारी
0: में क्या चर्चा चलती थी निव्रता को लेकर के?
2: घर परिवार में तो मेरे माता पिता भाभी सब तो तैयार थे कि कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है कि भाई परिवार जाना पहचाना सब कुछ, आप एक दूसरे को जानते भी हैं फैमिली में, तो अच्छी बात है। अगर और मेरी मम्मी की भी ये इच्छा थी कि भाई मैं भरपूर सपोर्ट करूंगी, अगर जो काम वो नहीं कर सकते हैं और आराम से जीवन चलेगा। तो शुरू से उनका ये मानना, वो तो चाहते थे कि बस हमको इनकी ओर से इंतजार था कि भाई क्या वो चाहते हैं कि नहीं।
0: अच्छा राकेश, ये बताइए, लगभग 4 महीने हो गए आप दोनों की शादी को, तो 4 महीने में मतलब कभी कोई ऐसा पल आया कि किसी वजह से थोड़ी बहुत नोकझोंक और थोड़ी बहुत खटपट खट लड़ाई हुई?
2: नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि मतलब ये जो कहते हैं तो मैं भी समझ जाता हूँ, और मैं भी कोई भी काम है या कोई बात है कहता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर क्या है कि थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है तो फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सर।
0: दिक्कतें होती हैं।
2: दिक्कतें हैं सर कहने का मतलब, जैसे मान लो जैसे कबूत की कोई, जैसे हालांकि ये मेरे सब काम में, जैसे अभी कॉपी चेक करने में है
0: जी जी जी,
2: या अन्य कामों में भी सहयोग कर लेते हैं, लेकिन किसी वजह से कभी
0: कभी ये व्यस्त हो किसी और काम में।
2: हाँ,
0: हो तो और भी आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं नहीं अभी करना पड़ेगा ऐसा?
2: कभी कभी सर ऐसा हो जाता है, कभी मैं कहता हूँ नहीं यार कल देनी है, अभी टेस्ट है ये कल देना है, वह कोई फिर वो फिर कैसे करके एडजस्ट करके कभी कर भी देते हैं। और फिर मैं भी क्या है फिर मैं भी समझ लेता हूँ नहीं कोई बात नहीं, अगर अभी क्या है इन दिनों में विशेष कर ये तैयारी कर रहे हैं
0: जी,
2: तो मैं इनको फिर क्या है ज्यादा
0: परेशान नहीं करते हो,
2: नहीं करता हूँ कि वह चलो इनका भी अगर फ्यूचर बन जाए और अच्छी बात है, हर किसी की तमन्ना रहती है सर कि भाई इतना कुछ पड़ा है संघर्ष करके तो जो पाना।
0: सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा राकेश
2: जी, सर
0: आपके मतलब शादी से पहले
2: जी
0: आपने बहुत सारे साथियों को, दृष्टिबाधित साथियों को देखा होगा जो विवाहित रहे हैं, तो उनकी जिंदगी को भी देख करके कुछ आप अध्ययन करते थे अपने मन में कि यार ऐसा होता है वैसा होता है या हमारा कैसे क्या होगा, इस तरह से कुछ सोचते थे आप?
2: हाँ मैं बहुत बार सोचता था, जैसे कई बार ये देखता था
0: जी
2: कि यार जैसे किसी की जॉब लगी
0: जी,
2: तीन चार साल तक जैसे शादी नहीं हो पाई, कई बार पांच सात साल तक बहुत सुखी।
0: हाँ
2: तो फिर मैं सोचता था यार ये लोग इतने टैलेंट है, मतलब टैलेंट का मतलब इतने चतुर भी है समझदार भी है, और जब यार इनकी दिक्कत आई है तो क्या पता कोई अपने लिए ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि अपन को समझ पाएगा या अपने को अपनाएगा
0: जी,
2: ऐसा बहुत बार ख्याल आता था
0: जी जी जी
2: सर कि वाकई।
0: फिर आप मतलब थोड़ा दुखी हो जाते थे, थोड़ा निराश हो जाते थे ऐसे में कि भाई मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ होता था मन में?
2: फिर मैं ये सोचता था कि नहीं ईश्वर सबकी व्यवस्था करता है तो कहीं कहीं उसने अपना भी कुछ इंतजाम कर रखा होगा, जैसे सर मेरा सर जो भी काम होते हैं वो बड़ी मुश्किलों के बाद होते हैं।
0: जी जी जी जी जी,
2: तो
0: वो काम ही क्या जो आसानी से हो जाए, क्यों है कि नहीं, वो काम ही क्या जो आसानी से हो जाए।
2: हाँ सर सही बात है, और मुश्किल है जब इंतजार के बाद कुछ चीज मिलती है तो उसका मजा कुछ और है सर।
0: तो अब मजा आ रहा है?
2: हाँ सर आप सभी।
0: अच्छा कहीं कभी आप दोनों का अकेले इधर उधर जाना हुआ?
2: नहीं सर अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि नवंबर के बाद छुट्टियां भी नहीं मिली और इसलिए अभी तक तो नहीं होना पाया हो पाया सर।
0: अच्छा निवृत्ति को गुस्सा कितना आता राकेश? निवृत्ता को
2: नहीं बहुत कम
0: कम आता है। अच्छा अच्छा, और आपके मम्मी पापा और बाकी भाई भाभियों से सबसे अच्छा इनका तालमेल है एकदम?
2: हाँ नहीं अच्छा है, और सभी इनको घर में अच्छा इनकी वैल्यू करते हैं और इनका सबसे अच्छा तालमेल है, सभी प्यार से रखते हैं इनको और सबसे अच्छा तालमेल है।
0: तो जैसे आमतौर पर होता है इस तरह की शादियों में कि लोग बड़े उत्सुकता से देखना चाहते हैं, अरे और एक ब्लाइंड व्यक्ति की और एक दिव्यांग व्यक्ति की शादी है, तो आप लोगों के केस में भी ऐसा हुआ होगा, बहुत लोग आए होंगे?
2: हाँ सर हुआ ना, ये जब हमारी बातचीत चल रही थी तभी बहुत कहते थे अरे यार फिर आपकी लाइफ कैसे मैनेज होगी, फिर वो आपको कहीं जाओगे तो भी यार इससे अच्छा तो तुम कहीं जैसे बाहर से ले आओ, कोई दिखने वाले ले आओ।
0: अच्छा,
2: लेकिन मेरा मानना सर हमेशा से ये रहा कि कोई अपने समकक्ष होगा समस्याग्रस्त व्यक्ति वो अपने को ज्यादा अच्छे से, या बाहर से ले आओ मैंने कहा। और जब शादी हुई हमारी तो बहुत से लोग उस उत्सुकता वश ही इनको मिलने आते थे, चलो देखने चले कैसी है क्या है।
0: पीछे इसी कार्यक्रम में हम एक ऐसे परिवार से मिल चुके हैं राकेश जी, तो जैसे गोपाल जी और उनकी जो मैडम थी वो लोग बहुत ही उत्साह से और बहुत मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, और गांव में रह करके उनकी भी कहानी आपकी तरह ही मतलब रही है जी।
2: तो सर हमें भी बहुत कोई दिक्कत नहीं, बस अच्छे से बढ़िया एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए अच्छे से लाइफ चल रही है सर।
0: वेरी
2: और फैमिली का फुल सहयोग हमारे मामले में है सर।
0: क्या बात है क्या बात है। तो निवृता
1: हाँ सर,
0: कोई शिकायत आपको राकेश जी से?
1: नहीं अभी तक तो कुछ नहीं,
0: बोल दीजिए आज तो इस मंच पर बोल दीजिए आज तो।
1: नहीं है
2: आज तो बोल दो कोई शिकायत
0: नहीं, कभी लगता नहीं है कि ये भी चाय बना करके मुझे पिलाए हैं?
1: वो ऐसा कभी कहते हैं
0: लगता
1: मुझे, रोज बोलते हैं मुझे चाय बनाना सिखाओ ऐसे।
0: अच्छा,
1: क्या करना, मैं तो आ गई हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात
2: है। मैं बोलता हूँ यार मुझे प्रेस करना सिखा।
0: अच्छा,
1: सब कुछ मैं कर लेती, फिर आपकी क्या जरूरत है।
0: नहीं लेकिन क्या होता है ना अनिवृता, कि जैसे हर व्यक्ति के अंदर सीखने की एक लगन होती है ना।
1: हाँ सर,
0: वही लगन राकेश जी के, वही लगन राकेश जी के अंदर भी है। तो एक ये होता है कि भी हमें भी आनी चाहिए ये चीज। यूं
1: हाँ सर,
0: चलिए बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों से बात करके।
1: हाँ सर,
0: और कुछ अपने जिंदगी का कोई अनुभव जो रह गया हो आप बताना चाहें निव्रता?
1: हाँ सर, तो अनुभव तो क्या, बस सबका सहयोग मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ते ही जाएंगे, सबका सहयोग मिलेगा, आपका भी मिलेगा सर।
0: हाँ नहीं नहीं वो तो खैर है ही, हम लोग तो सब साथी हैं आपस में, और इसका कार्यक्रम का और रेडियो मधुबन का और हम सब का उद्देश्य यही है कि एक दूसरे का साथ हम सब निभाते चले जाएं, और समाज जो कि थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों में पीछे हट जाता है, तो उस समाज को भी हम समझा पाए कि दिव्यांग व्यक्ति को सहानुभूति की या सहारे की जरूरत नहीं है, उसको तो बराबरी की जरूरत है, अपनेपन की जरूरत है।
1: हाँ सर,
0: है कि नहीं?
1: हाँ सर पक्का, ये
0: तो कभी ऐसा लगता है आपको कि भाई आप दोनों को मतलब देख करके लोग जो हैं वो सामने कुछ हैं पीछे कुछ हैं, ऐसा कभी अनुभव हुआ आपको?
1: हाँ सर होता है, तो
0: होता है?
1: जब भी हम बाहर निकलते हैं तो सामने सामने देखते हैं लोग
0: जी।
1: बाहर भी यानी बहुत शर्म आती है निकलते तो भी।
0: ओह अच्छा। कोई बात नहीं, उनको देखने दो, अपने को क्या करना है।
1: हाँ यही तो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ।
0: है कि नहीं? और आपके क्या क्या शौक है निवृत्ता, ये बताइए, इसके अलावा आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करती हैं?
1: मैं एक तो पढ़ाई यानी बुके पढ़ना अच्छा लगता है,
0: बुक्स पढ़ना
1: यानी अभी पढ़ना यानी, हाँ अच्छी वाली कहानियां यानी प्रेरणा मिले ऐसी कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है, गाने सुनना है, गाने गुनगुना है,
0: क्या बात है। तो राकेश जी के लिए कौन सा गाना गुनगुना रही हैं आज आप? बताइए,
1: बीच में से स्टार्ट करो या शुरू से?
0: कहीं से भी करो आप, तो जहाँ से करना है करो।
1: एक प्यार का नगमा है वो जो की रवानी है, जिंदगी

もうちょっと知らない。ずるぎを立ち入り入りに行かない。口ぱくる

0: एक प्यार का नगमा भी मोचो की रवानी, जिंदगियों कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी।
1: क्या बात है,
0: हाँ
1: बहुत
0: सर,
1: बढ़िया, बहुत शानदार। लगता है आपका बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये,
0: हाँ सर,
1: काफी
0: मुझे
1: दिल
0: ना
1: से।
0: पुराने गानों से बहुत लगाव है।
1: और सर राज की बात ये कि ये भी मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि
0: अच्छा, ओ
1: मैडम
0: हो,
1: गाती भी आई हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात
1: एक
0: है,
1: दिन
0: ओ
1: मैंने भी पूछ लिया बस यूं ही, तो बताया कि मैं कॉलेज में भी जब एसटीसी कर रही थी तब सांस्कृतिक प्रोग्राम में गाती थी, और कभी स्कूल में जैसे
0: प्रार्थना सभा होती
1: प्रार्थना
0: थी
1: सभा
0: तो
1: होती थी
0: उसमें
1: उसमें।
0: कमांड भी मैं करती थी और गाना भी अच्छा लगता था।
1: तो ये राज
0: क्या बात,
1: मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला सर।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा तो राकेश,
1: जी सर,
0: देवरेता जी ने तो गा दिया, अब आप क्या गाएंगे?
1: मैं इनके
0: जी
1: लिए एक गाना गाना चाहूंगा, थोड़ा सा दो लाइन।
0: जी जी
1: बस
0: जी बताइए बताइए।
1: एक गाना है सर,
0: लगता है,
1: जिंदगी से जंग
0: हाँ
1: जीत
0: हाँ
1: लेंगे
0: वाह
1: हम
0: वाह।
1: साथी।

0: जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो तो। सर
1: वाह वाह वाह गजब, बहुत बढ़िया, सच में बात सच है, बिल्कुल ये बात सही है। अच्छा राकेश, एक बात बताइए कि हम ये जो इलाका है जहाँ के आप रहने वाले हैं,
0: जी सर,
1: थोड़ा सा अपेक्षाकृत ये मतलब इलाका पिछड़ा हुआ है,
0: जी सर,
1: और हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी ये सुनना चाहेंगे कि वहां पर खासकर दृष्टिबाधितों को लेकर के लोगों की क्या सोच है और आपने क्या अनुभव किया है, और कोई अगर घटना आपके साथ भी इस तरह की हुई हो तो वो बताना बड़ा अच्छा रहेगा आज के इस कार्यक्रम में।
0: जी सर, यहाँ पर क्या है कि अब हालांकि समय के साथ में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, बाकी यहाँ सोच यही है कि जैसे यहाँ ये रहता था कि बहुत बार जैसे कहीं जाता मम्मी के साथ में, अरे यार इनका तो क्या होगा यार, चलो इनको वाह, चलो आप हो तब तक इनको, बस हो तब तक इनको रोटी दो, बाकी इनका जीवन में क्या होगा, ये सोच रहती है। और फिर जब धीरे धीरे मुझे देखते, मतलब पढ़ के कभी उदयपुर से आता, तब लोगों को लगता हाँ भाई कि अब कुछ कर पाएंगे, बाकी अभी सोच में अभी भी परिवर्तन की जरूरत है। जैसे मेरे विवाह के संबंध में भी करे भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं यार इनकी शादी करा के क्या करोगे यार, ये तो बड़ी दिक्कत रहेगी, अभी आप फोन फिर बाद में इनका कैसे जीवन चलेगा, तो बहुत से लोग ये बात करते हैं।
1: कोई घटना ऐसी आपके साथ कोई हुई हो बहुत करीब से इस तरह का? अच्छा, स्कूल में जहाँ पढ़ाने जाते हैं
0: हाँ
1: वहां
0: जी
1: भी
0: सर,
1: लोगों के, क्योंकि आपका तो बच्चों के पेरेंट्स वगैरह से भी मिलना जुलना रहता होगा, माँ बाप से भी मिलना जुलना रहता होगा, तो वहां पर लोगों का क्या रुख रहता है?
0: हाँ सर, वहां पर सर जैसे कहीं भी शुरू शुरू में ज्वाइनिंग होती है तब तो स्टाफ भी जैसे वो रोकता ही है कि जय अरे यार इनका तो बड़ी दिक्कत ही है, क्या करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने काम को देखा और अच्छा, तो पेरेंट्स भी मिलकर बड़े खुश होते हैं। हाँ बस कई लोगों का कुछ कुछ ये मानते हैं कि वाह चलो भैया आज आ रहे हैं जा रहे हैं, वाह इनका चल रहा है, बाकी अब जो है पेरेंट्स का भी अच्छा सोचना है कि जब बच्चे घर जाके कहते हैं कि नहीं ये इनको दिखा नहीं परंतु अच्छा पढ़ाते हैं और अपना आना जाना समय पे सब करते हैं, तो वो जब भी आते हैं मीटिंग्स में तो मुझे देखकर जरूर आवाज लगाते हैं, सर नमस्ते कैसे हो क्या है, और लोगों को कहते हैं कि भाई ये तो आवाज से पहचान जाते हैं,
1: अच्छा,
0: और हमारे बच्चे घर पे आकर बताते हैं कि भाई हमारे जो सर आए हैं वो अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो अब सकारात्मक सोच आने लगी है सर
1: कुल ना कि
0: वहां।
1: अब जो है वो परिवर्तन होने लगा है।
0: हाँ बस शुरू शुरू में कहीं भी सर जैसे ज्वाइनिंग होती है लाइन की तो बहुत समय तक बच्चे पेरेंट्स स्टाफ सब में ये रहता है कि यार चलो ठीक है वाह, और तब मेरे को ज्वाइनिंग में भी ऐसी दिक्कत रही
1: क्या?
0: जब सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग करने गया, यार इनके तो जहाँ पास में है अभी जैसे मैं जाता हूँ तो वहां कम से कम 15-20 किलोमीटर है, तो अरे यार इनको अभी पास में ही रहते तो ठीक था,

0: अभी एक सेकेंड ग्रेड में क्यों ज्वाइन किया, मतलब दिक्कत आती आएगी इनको कैसे आएंगे जाएंगे 15-20 किलोमीटर, क्योंकि वहां पर हाईवे है। तो फिर जब उन्होंने देखा, अभी मुझे आते जाते कम से कम वहां 2 साल हो गए, एक सोम कागदर नहर है सर, वहां मेरी पोस्टिंग है
1: अच्छा
0: ऋषभदेव के आगे।
1: जी,
0: तो वो कहते हैं कि नहीं आ रही है, हमसे पहले आ जाते हैं और समय पे आते हैं।
1: क्या बात है।
0: यार हम तो सोच ही नहीं रहे थे कहा पापा हो गए यार, 20 किलोमीटर और
1: अच्छा
0: हाईवे पार कैसे करोगे। हाँ
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो निव्रता,
2: हाँ सर,
1: आपका भी कोई ऐसा अनुभव रहा कॉलेज में या घर परिवार में समाज में कि भाई लोग विकलांगता को लेकर के थोड़ा सा कुछ परेशान करते हैं, इस तरह की कोई बात रही हो आपके साथ?
2: हाँ सर, लोगों की तो सोच ऐसी होती है, तो उनके नतीजे के अनुसार तो ऐसा ही होता है कि ये ना क्या कर पाएंगे, दोनों पैरों से ऐसे विकलांग है, इसको कौन, यानी भविष्य इसका कैसा होगा, शादी कौन करेगा, सो सवाल लोग उठाते हैं। यानी शिक्षा ऐसी चीजें लोगों को उनकी सोच भी बदल देती है, यानी एकदम परिवर्तन कर देते हैं। यानी सिर्फ लोग होते हैं, एक दूसरे से अपन अटैच में रहते हैं तो उनके बारे में अपनी चर्चा निकलती है, अपना स्वभाव होता है, अपना कुछ भी होता है, तो लोगों के बीच में बात निकलती है तो वो उनका यानी सोच परिवर्तन हो जाता है। नहीं, ये भी हमारे जैसी ये नॉर्मल है, यानी सब कुछ कर सकते हैं। और मुझे यानी ऐसा लगता है, मैं घर पर काम करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे जैसे ना लोग होते हैं वो काम नहीं कर पाते, तो आप है ना इतना काम कर ले तो क्या बात है।
1: अच्छा, और आपके कोई साथी हैं इस तरह के, आपके फ्रेंड सर्कल में भी किसी और को समस्या रही हो कुछ भी दिव्यांगता की, ऐसा कोई रहा है आपके आपके दोस्तों में किसी को और, किसी और कोई ऐसा व्यक्ति रहा है आपके जानने वालों में जिसको भी ये विकलांगता रही हो?
2: नहीं नहीं है,
1: ऐसा
2: मेरे
1: कोई नहीं
2: दोस्तों
1: है।
2: में कोई भी नहीं, मेरे तो सब नॉर्मल ही है और अच्छे ही है सब।
1: बहुत अच्छी बात है।
2: हाँ, मैं तो जहां भी जाती हूँ यानी 2 मिनट भी नहीं लगते तो दोस्ती बना देती हूँ। हाँ,
1: अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात, क्या बात है।
2: यानी इंटर्नशिप में भी जाती थी ना स्कूल में पढ़ाने के लिए, वह भी मेरे 2 दिन में पहचान बन गई सर से, पूरे स्टाफ वालों से, बच्चों से। फिर बच्चों भी बोलते नहीं मेरा माँ भी आना और आप ही हमको पढ़ाना,
1: जी
2: आप
1: जी
2: मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें तुरंत याद हो जाता है, तुरंत याद रहता है ऐसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं काबिलियत होनी चाहिए। चलिए, आप दोनों को रेडियो मधुबन की तरफ से हम आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी से आप भी जो है, आपकी भी जॉब लग जाए। और जो है राकेश जी,
0: जी सर,
1: अब लगभग कार्यक्रम के अंत में हैं हम, तो
0: जी हाँ सर,
1: आप हमारे सुनने वालों के लिए और अपने दोस्तों के लिए क्या संदेश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे?
0: वह सर अपने अनुभव से मैंने महसूस किया कि जीवन में हर सकारात्मक काम होने से पहले समस्याएं बहुत आती है, कि जितना हम अपने लिए सोचते हैं ईश्वर आपके लिए उससे कहीं बेहतर अच्छा सोच के रखता है, बस उसको पाने में समय लगता है। तो बस जीवन में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ में जिए और ईश्वर पर भरोसा करें, वो समस्याओं का हल सतही करेगा अगर आप प्रयास करते रहेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब जी। और निव्रता जी, आप क्या संदेश देंगी सुनने वाली अपने जैसी सहेलियों को और बाकी साथियों को?
2: मैं भी यही इच्छा रखती हूँ कि यानी ब्लाइंड या विकलांग कोई भी है, उनको ना नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए, सकारात्मक रूप देखना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको हौसला देना चाहिए। यानी
1: जी
2: हर काम यानी हर संभव काम कर सके, यानी ये नहीं होनी चाहिए कि ये कुछ नहीं कर पाते इसे,
1: जी
2: उनको आगे हौसला बढ़ाते रहना चाहिए और अभी प्रेरित करना चाहिए कि वो हर काम कर सके और आगे बढ़ सके, वो ही होना चाहिए।
1: बहुत खूब। तो निव्रता जी और राकेश जी, आप दोनों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए,
0: धन्यवाद
1: और
0: सर,
1: एक बड़ा ही
2: थैंक
1: अलग तरह का अनुभव रहा आप दोनों से बात करते हुए, कि बहुत साधारण तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग हमेशा जो है वो चलते रहें, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आपसे भी समाज को प्रेरणा मिले। तो श्रोताओं जी, सर, जी जी राकेश जी,
0: और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें अवसर प्रदान किया रेडियो मधुबन के तहत अपनी कहानी को बताने का और प्रोग्राम में इनवाइट किया। धन्यवाद सर।
1: जी जी जी। तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम हमराही आज का। उम्मीद है आप सबको कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें 94-14-15-14-15 पे। रेडियो मधुबन का ऐप इंस्टॉल कर लें गूगल प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड का ऐप। और इसके अलावा यदि आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in आपका इंतजार करता ही रहेगा हमेशा। तो एक बार पुनः सुनते रहें रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं हमें। तो अगर आप विवाहित हैं और आपकी कहानी कुछ खास है और आप अपनी बातें, अपने अनुभव, अपने विचार लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आपकी बातों से शायद किसी की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, तो हम सबको आपका इंतजार रहेगा हमारे इस हमराही कार्यक्रम में। तो बस आज के लिए इतना ही श्रोताओं, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।
3: नमस्कार, मधुमन रेडियो से मैं हाकम खान। हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है। हमारा भारत में वो राजस्थान में विवाह, जन्मदिन, लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। शादी विवाह, जन्मदिन पर ढोल, हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे संगीत का वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमा कर परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो म्हारे देश। राग मांड साजन आहे हे सखी, मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं। साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुक झुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें केसरिया बालम पधारो म्हारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो म्हारे देश।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी से प्यार वैसे तो सभी को होता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हम वो प्यार करना भूल जाते हैं और हमें एहसास कराना पड़ता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और समझ लीजिए लव यू जिंदगी ऐसा कार्यक्रम ही नहीं, ऐसा मौका भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, अपने इमोशंस को पढ़ेंगे, खुद को बेहतर जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, आप स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और आप अनेक एपिसोड्स के माध्यम से हमें गाइड करते रहते हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषी जी, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार श्रोताओं से रूबरू होते हुए। हम जो कुछ भी लाइफ में सीखते हैं जब उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो जो खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, वही वो चीजें हैं जो हमें अपने रेडियो के श्रोताओं से जोड़े रखती हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट ट्रिनिटी जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी हैं। ट्रिनिटी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आरुषि जी, कल्पना जी नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है लव यू जिंदगी के और एपिसोड में वापस जुड़ के। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितना हमारे श्रोता मित्रों को हर एपिसोड में कुछ नया सुनने और समझने को मिलता है, इस एपिसोड में मुझे भी कुछ नया सुनने और समझने को मिलेगा, और इसलिए खुशी होती है हर बार इस कार्यक्रम
0: जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में बातचीत की थी इमोशनल अवेयरनेस के बारे में और रेटिंग सिस्टम के बारे में, आपने बताया था कल्पना जी किस प्रकार से हम अपने इमोशंस को रेट करते हैं कि हम 2 पे हैं कि 5 पे हैं कि 8 पे हैं। हम जो बातचीत कर रहे थे उसके आखिर तक हम एक क्वेश्चन पे आके रुके थे कि अगर मान लीजिए जेलसी है या मुझे कोई ऐसी चीज है जो पसंद नहीं आ रही है या मुझे ऐसा लग रहा है ये क्यों मुझसे आगे बढ़ गया या मैं कहाँ रह गई, वो कंपैरिजन आ जा रहा है, उसको रेट करने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे पता है मैं जेलस हूँ या फिर कभी कभी मैं अवेयर नहीं हूँ कि मैं जेलस, सामने वाला ही गलत लग रहा है, तो इसको रेटिंग करने से क्या मदद मिलती है या डील कैसे किया जाता है, कुछ इस बारे में अगर आप कंटिन्यू करें।
1: जी बिल्कुल। जब आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस होती है, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे किसी और के लिए, जब उसकी इंटेंसिटी को हम पहचानते हैं, जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार आया है, तो डॉक्टर पहले आपका बुखार नापते हैं कि कितना है भाई, 98 है, 100 है, 101 है, 102 है। जिस हिसाब से आपका बुखार है उसकी इंटेंसिटी उस तरह से पहचानी जाती है। उसी तरह से कोई भी नेगेटिव इमोशन जो मेरे प्रति क्रिएट होता है, जो दूसरे के प्रति क्रिएट होता है, जब उसकी इंटेंसिटी का पता चलता है, तब हम उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे उसे कम करना है, किस लेवल से कहां तक ले आना है, ये समझ हमें डेवलप होती है। तो इसलिए इंटेंसिटी का जानना जरूरी है। दूसरी बात, नेगेटिव इमोशन चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो दूसरे के लिए हो, नुकसान ही करता है, उसका हमें फायदा होता ही नहीं। तो ऐसे इमोशंस क्रिएट करने के बजाय अगर हम उन्हें रिप्लेस करें, नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस करें, जैसे हम हमेशा कहते आए हैं कि एंगर, हमें गुस्सा आता है, हम एक्सप्रेस करते हैं बोल के, चिल्ला के, डांट के, किसी भी तरह से, उसकी भी एक इंटेंसिटी होती है। बट अगर एंगर को हमें रिप्लेस करना है तो किससे कर सकते हैं कि हमारा पर्पस भी फुलफिल हो, जिस बात के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं वो बात दूसरों की समझ में भी आ जाए लेकिन हमें गुस्सा भी नहीं करना पड़े। तो हमने कई बार इस इमोशनल एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा की है जिसे हम असर्टिवनेस कहते हैं, कि अपनी बात खुलकर स्पष्ट रीति से कहे भी लेकिन बिना विचलित हुए, बिना गुस्सा किए, बिना अग्रेशन के, शांत भाव से वो बात जैसी है वैसी कहेगी। सो उसको असर्टिवनेस कहते हैं। तो यह बात आती है, इंटेंसिटी इसलिए जानना है क्योंकि हमें उसे रिप्लेस करना।
0: ओके, दैट्स वंडरफुल। और ये जो आपने एग्जांपल दिया बुखार का, सच में हम वहां तो नापते हैं लेकिन मन में वो नापतोल करना है ये तो आइडिया ही नहीं आता, कि हमको ये आंकना भी है कि क्या लेवल है उस गुस्से का या जेलसी का, और उससे डील करने में फर्क पड़ता है आपने जैसा बताया। श्रीनिधि जी,

0: मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया है या कुछ ऐसा इमोशंस को ऑब्जर्व करके कोई रिप्लेसमेंट किया है?
1: सबसे पहले तो कल्पना जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये हमें से लगभग ज्यादातर लोग कर पाने में सक्षम होते हैं, सिर्फ हमें वो पैमाना नहीं मिलता, अगर वो मापदंड मिल जाता है, स्केल मिल जाता है, तो हम अपने आप को स्केल पे नापने में सक्षम हैं।
0: ओके।
1: और सिर्फ छोटे बच्चे ही होते हैं शायद कोई चीज समझ में ना आए, मगर ज्यादातर एडल्ट्स जो होते हैं या टीनेजर्स भी अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से ऑन स्केल प्रेजेंट कर सकते हैं। आम बातचीत में जो इतनी ज्यादा समझ नहीं भी रखता हो, वो भी व्यक्ति अक्सर अपने इमोशनल स्टेट के बारे में बता देता है, खासकर ऐसे समय पर जब हम नेगेटिव इमोशंस से जूझ रहे हैं या उन इमोशंस के कब्जे में हैं। तो अक्सर सिंपल सा क्वेश्चन ये बात कही जाती है तो लोग आके बोलते आज मेरा मूड खराब है, मेरे कुछ मत बोलो आज, ये लोग कुछ कहते हुए नजर आते हैं। कभी कभार लोग बोलते हैं आज मेरा मूड बहुत ही खराब है, मेरे से बिल्कुल बात मत करो, ये भी चीज सुनता है लोग बोलते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन है, चिड़चिड़ापन इरिटेशन देखने को मिलता है, तो उससे थोड़े और लेवल पे लोग थोड़ा गुस्सा करते हैं, आंखों से दिखाते हैं या चेहरे पे वो गुस्सा नजर आता है, फिर उससे थोड़ा और गुस्सा होता है तो व्यक्ति गुस्सा मुंह से बोलना शुरू करते हैं, नाक बोलना लगना या फिर ऊंची आवाज में बोलना, ये सारी चीजें देखते हैं। इसी के एक और लेवल पे अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति हाथ पैर चलाने लग जाए, उससे एक और लेवल। तो मैं समझता हूँ ये रेटिंग्स हम सभी स्वाभाविक रीति से लोगों में देखते हैं, इनका पारा कितना चढ़ा हुआ है, टेम्परेचर नापा जा सकता है। लोग कहते भी हैं उदासी के लिए भी आज थोड़ा मन ठीक नहीं है, ये बहुत ही बेसिक लेवल, उसके बाद में नहीं थोड़ा मैं उदास फील कर रहा हूँ। तो कभी कभार तो लोग बिल्कुल ही चेहरे पे वो शक्ल पे नजर आने लगती है कि सामने वाला पूछ लेता है कि आज ठीक नहीं लग रहे हो, उदास उदास से लग रहे हो, मायूस लग रहे हो, क्या बात है। कभी कभार लोग सामने से बोल देते हैं कि आज मैं बहुत उदास हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी चीज में। तो ये भी लोग कहते हैं और ये कहने का जरिया हमने खुद तय किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो स्केल नहीं है। नेचुरली कल्पना जी बेहतर बता सकती कि वो अपने प्रैक्टिस में क्या चीजों को देखते हैं, लोग जब अपने स्केल में कहाँ अपने आप को स्केल पे फिट करते हैं। बट स्वाभाविक रीति से भी हम एक स्केल को जानते हैं और अपने शब्दों में हम अलग अलग तरीके से उन्हीं फीलिंग्स को कम, थोड़ा बीच में, थोड़ा ज्यादा और एकदम एक्सट्रीम पे हम ये रीड करना चाहते हैं। हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी भी, और हम सामने वाले के भी भाव से, हाव से, उनके हाव भाव से इन चीजों को माप लेते हैं या भाप लेते हैं, ऐसा कहना स्वाभाविक है। और जब रिप्लेसमेंट करने की बात कल्पना जी कह रहे थे, तो ये रिप्लेसमेंट कभी व्यक्ति खुद करता है, कभी कभार वो दूसरों से मदद लेता है। और मैं समझता हूँ कई मामलों में मैंने अपने दोस्तों से मदद ली है, जब मेरा मूड खराब है या फिर मैं उदास महसूस कर रहा हूँ या आज मन नहीं लग रहा है, तो मैंने अक्सर ये चीजें कही है मेरे आस पास के मेरा मन नहीं लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है या थोड़ा बेचैनी सी हो रही है। अब ये चीजें जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाले आपके मूड को बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं, वो कुछ आपको पॉजिटिव सुनाए, बेचैनी हो रही है तो वो आपको कुछ रीअश्योरेंस देंगे, अगर आप चिंतित हैं तो फिर वो आपको चिंता का कारण पूछेंगे और उसे निवारण करने का प्रयास करेंगे। और कभी कभार हम स्वयं भी अपने आप को ये चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, हो सकता है आप ट्रेन मिस कर जाए, तो आपके मन में बेचैनी है और उस समय पर आप एंग्शियस हो जाते हैं। मगर ऐसे समय पर जब आप देख रहे हैं कि मैं अंदर से बेचैन हो रहा हूँ, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, और मैंने अनेकों बार ये चीज की है, मैंने अपने आप को याद दिलाया, देखो ट्रेन तो मैं पकड़ ही लूंगा, चाहे दौड़ के पकड़ना पड़े पकड़ लें। और मन फिर से कुछ चीज कहता है नहीं पकड़ा तो, पर मैं अपने मन को समझाता हूँ कोई बात नहीं, अगर नहीं पकड़ना होगा तो नहीं पकड़ेंगे,
0: जैसे क्वेश्चन आंसर एक डिस्कशन चल रहा है मन के साथ,
1: मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए कुछ और आंसर दे रहा हूँ, फिर एक प्रश्न आ रहा है उसकी
0: श्योर कर रहे हैं, उससे
1: उस एंजाइटी को रीअश्योरेंस के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं श्योर कर रहा हूँ हाँ मैं पकड़ ही लूंगा, कोई बात, हो सकता है आज ट्रेन लेट हुई हो सकता है मैं टाइम पे ही पहुंचा। अनेक ऐसी चीजें हैं जो आप पॉजिटिव रीअफर्मेशन के रूप में अपने आप को ये रीअश्योरेंस दे सकते हैं, तो एंजाइटी के लिए रिप्लेसमेंट मैं दे रहा हूँ,
0: ऐसे और भी चीजें
1: हैं, ऐसे अनेक चीजें हैं जिसके लिए आप चीजें कर सकते हैं। अक्सर एक और चीज जो मैंने अक्सर ये चीज अपने आप के लिए कहा है, कभी आपको प्यार की महसूसता कम होती है, आपको लगता है कि कोई प्यार कम करता है आपसे, या आज आपको ऐसा महसूस कर रहा है कि कोई मेरे प्यार से बात करे। आज सुबह से मतलब लोगों ने मेरे को परेशान किया हुआ है, प्यार से बात ही नहीं करते हैं लोग। तब उस समय पर मैंने अपने आप को याद दिलाया, मैं दूसरों से प्यार की अपेक्षा क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैंने अपने आप को कहा है। मैंने अपने आप को ये भी समझा है कि मैं प्यार लेने वालों में से नहीं हूँ, प्यार देने वालों में मैं दाता हूँ, मेरे पास प्यार का भंडार है, मैं प्रेम से भरपूर हूँ। ये मैंने अपने आप को याद दिलाया है। बहुत बार मैंने अपने आप को याद दिलाया है कि मैं प्यार के सागर की संतान हूँ। परमात्मा भगवान प्यार का सागर है, जिसके लिए हम गाना गाते हैं कि प्यार का सागर है। तो प्यार का सागर मेरे पास है, मैं दूसरों से क्यों अपनी प्यास बुझाऊं। तो अनेक ऐसी चीजें अपने आप को कहने से भी वो चीज आपका जो हाव भाव है, जो आपका फीवर चढ़ा हुआ है, नीचे उतर जाता है।
0: कितना फर्क पड़ता है खुद से बात करने से, और जिसको सेल्फ लव पे भी हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, बातचीत की है। कल्पना जी, मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे लास्ट एपिसोड में भी आपने कहा था कि हम इमोशन को आइडेंटिफाई कभी कभी गलत करते हैं, मतलब वो प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है या कोई और चीज है, तो वो राइट आइडेंटिफाई कैसे करें। बहुत बार प्यार को लेके ही कंफ्यूजन होता है, नहीं है। जब लोग अपने पार्टनर चूज करते हैं तब भी बहुत कंफ्यूजन होता है, कॉलेज में भी कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है, तो वो राइट इमोशन को आइडेंटिफाई कैसे करें, खास तौर से अगर प्यार की बात हो।
2: बिल्कुल, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 10-12 साल की उम्र से लेकर 20-25 साल की उम्र तक प्यार वाला ये इमोशन हमारी लाइफ में एंटर होने लगता है, वो फीलिंग हमें अपोजिट सेक्स के लिए आने लगती है। सो ये चीज को अच्छी तरह से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, और ज्यादातर आजकल बच्चे फिल्मों में देखकर प्यार को समझने लगते हैं। प्यार फिल्मों में देखकर या किताबों में पढ़कर समझने की बात हालांकि है नहीं, ये बचपन से माँ बाप से हमें प्यार मिलता है, हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, भाई बहनों के बीच में प्यार होता है, हर रिश्ते में प्यार की बुनियाद तो होती है। परंतु एक दूसरे, अगर गर्ल है तो बॉय के प्रति, बॉय है तो गर्ल के प्रति आकर्षित होने के कई कारण होते हैं। जैसे कि कोई पढ़ाई में अच्छा है तो मुझे अच्छा लगने लगता है, जिसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटीज है, जैसे कोई गाने वाला है, कोई म्यूजिशियन है, उसको अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने आते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करता है तो मुझे अच्छा लगने लगता है, और मैं समझती हूँ वो प्यार है। मतलब जनरली जब बड़े होते हुए बच्चे समझते कि वो प्यार, तो वो अच्छा लगना कोई और प्यार होना, इसमें अंतर है। हमें फिल्मों के एक्टर्स भी अच्छे लगते हैं जो रोल प्ले करते हैं, हम कहते हैं हम उनके फैंस हैं। क्रिकेटर्स भी हमें जो अच्छे लगते हैं, हम कहते हैं हम उनके पीछे पागल है। अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये जब इतने सारे खिलाड़ी है उनके प्रति भी हमें बहुत ज्यादा आकर्षण होती है, तो हम कहते हैं हम उनके फैन हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हमें उनसे प्यार है, पर कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है इस भावना को, कहा जाता है हम प्यार करते हैं। तो बड़े होते बच्चों में आकर्षण, अट्रैक्शन और प्यार, ये चीज ना समझ में आने के कारण वो जैसे लोग आजकल फेसबुक पर मिलते हैं या किसी सोशल मीडिया पर मिलते हैं, हेलो हाय हो जाती है, कभी कभी फेक प्रोफाइल से भी बात करते हैं, और बातें करते करके उनकी बातें अच्छी लगनी लगती हैं। वो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को वो वैलिडेट कर रहे हैं, उससे वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनसे प्यार हो गया ऐसा हम समझते। कई बार उस व्यक्ति को देखा भी नहीं हुआ। तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगी कि कैसे बढ़ती उम्र के बच्चों को प्यार, आकर्षण और भुलावे में अंतर समझ में नहीं आता है। तो एक 15-16 साल की कन्या थी, कुमारी थी, और गुजरात के एक गांव में रहती थी। उसे अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कनेक्ट होते होते एक व्यक्ति से पहचान हुई, जिसका XYZ नाम था, जिसने बताया कि मेरी ये उम्र है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं से मत। बातचीत में उनका सिलसिला आगे बढ़ता है, तो जब भी कभी वो उससे बात करती वो बिल्कुल फ्री होके उसकी बातें सुनता, उसकी इमोशंस को समझता।

0: वो सामने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया कि रिचार्ज करना उसका, उसके खर्चे उठाना, इसके लिए भी ये लड़की तैयार होने लगी और वो करने लगी। एक जगह उसने बुलाया मिलने के लिए, वो गई वहां मिलने के लिए, लेकिन वो वहां नहीं आया, बहाना बना दिया और ऐसे ही उसको मैनिपुलेट करता गया। आखिर में वो लड़की की मानसिक अवस्था इतनी खराब हो गई, इतना डिप्रेशन में चली गई, उसने पढ़ाई छोड़ दी और आखिर उसको रिहैब में डालना पड़ा। सो, हम अपने इमोशंस के साथ बहते हुए कहाँ तक पहुंच रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए लव, प्यार, हमारे प्रोग्राम का भी नाम है लव यू जिंदगी। जिंदगी से भी प्यार होता है, उस प्यार की भावना को समझना बहुत ज्यादा जरूरी।
1: फीलिंग को आपने जैसे कहा आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बहुत जो रिपरकशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। श्रीनिधि जी, हाँ, मैं आपकी भी ओपिनियन जानना चाहूँगी। एट सच यंग एज, मतलब इतनी कम उम्र में, जब हम सब कुछ सीख ही रहे होते हैं, जिंदगी को जान ही रहे होते हैं, दुनिया हमने पूरी देखी भी नहीं है, उस समय कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या फ्रेंड्स की हेल्प लें या फिर खुद से ही जो समझ में आ रहा है समझ लें, रीच आउट करें, क्या लगता है आपको?
2: इसमें दो चीजें हैं आरुषि जी। सबसे पहले तो ये है कि जब हम ऐसे किसी सिचुएशन में होते हैं, जब हम अपने इमोशंस को नहीं रीड कर पाते या समझ नहीं पाते, या हम समझते तो हैं मगर उन सिचुएशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये होता है, स्वाभाविक है कि हम अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं तभी आप स्ट्रगल करेंगे, आप युवा होते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं, टीनेजर होते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं, आप उम्र के बेहतर पड़ाव पे पहुंचकर नौकरी विक्री करने के बाद भी आप स्ट्रगल कर सकते हैं, यहाँ तक भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अधेड़ उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस के रूप में आप इन इमोशन से स्ट्रगल कर सकते हैं, और कभी कभार बुढ़ापे में भी, इनफैक्ट जब आप लाइफ के किसी ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं तब भी आप इन चीजों से स्ट्रगल कर सकते हैं। तो पहले तो ये मान लेना चाहिए कि हाँ, इमोशंस को कई बार प्रोसेस करना आसान नहीं होता या हम सक्षम नहीं होते उस घड़ी। इसमें आपकी गलती नहीं है, इस समय पर किसी दूसरे इंसान की गलती नहीं है, बस वो है, ये सच्चाई है, ऐसा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी को किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाना शरीर में, वो स्वाभाविक है, मतलब वो हो सकता है। आप लाख अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें मगर फिर भी अगर कोई वायरस कहीं से अटैक करता है या कोई महामारी जैसी चीज है या कोई ऐसी चीज है वो आपको अटैक कर सकती है, और ये चीज है हमारे इमोशंस के साथ भी होता है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ में इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हैं कभी कभार, ऐसे ही हमारे मेंटल हेल्थ में भी ये चीजें हो सकती हैं, भावनात्मक रीति से इसी चीज को सहन कर सकते हैं। तो ये मान लेने से क्या होता है कि हम ये भी समझने लग जाएंगे कि अगला हिस्सा इसका ये है कि जब आप सक्षम नहीं हैं उस चीज को प्रोसेस करने में आप मदद लेंगे। और सबसे पहले मदद की जब बात की जाती है, हम अपने स्वजनों से मदद लेते हैं, और हमारे युवा साथियों के लिए मैं समझता हूँ ये युवाओं की उम्र के साथ की बात है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे हमउम्र लोग हमें बेहतर समझ सकते हैं, और इसी वजह से हम अपने दोस्तों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और टीनेज में आप देखेंगे कि जैसे आप टीनेजर्स में थोड़े आगे बढ़ते हैं, जब आप 16, 17, 18 साल के होने लगते हैं, आप ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। लोगों का कॉलेज स्कूल जल्दी खत्म हो भी जाता है तो जल्दी घर नहीं आते, वो ज्यादा टाइम दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरे जैसे ही हैं, उनके भी इमोशंस मेरे जैसे हैं, इसलिए वो मुझे बेहतर समझ पाएंगे। पर ये चीज होता है बचपन में, शायद ये चीज ऐसी नहीं होती, युवा काल में, खासकर बढ़ते उम्र में ही जिसमें ये चीज जरूर देखने को मिलती है। तो इसलिए दोस्तों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, मगर ये भी समझने की जरूरत है कि संभव नहीं है कि आपके दोस्त जो आपके हम उम्र हैं, खासकर वो जब युवा काल के दहलीज पर हैं, लेटर टीनेजर्स में हैं, तो उनके अंदर उसी प्रकार की मेच्योरिटी हो, ये संभव नहीं। और हर कोई आपकी मदद करना चाहेगा, भले उसके पास वो स्किल सेट्स हो या वो भावनात्मक रूप से वो इतना सक्षम है या नहीं है, मदद करने का भाव आपके सच्चे मित्र हमेशा आपके लिए रखेंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि वो आपकी मदद कर सके। उधर क्या ये गाइडेंस हमेशा सही होता है या नहीं, इस पर जरूर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो अपनी प्रज्ञा, अपना विजडम, अपने अनुभव

0: के आधार पर बताएंगे, और उनका भी अनुभव कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि वो भी आपके अपने तो युवाओं साथियों के लिए ये समझने की जरूरत है कि ऐसे समय पर भले ही आप अपने दोस्तों से बातचीत करने में कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल करें, उसमें कोई दो राय नहीं, शेयर करना ही चाहिए, मगर सही मार्गदर्शन के लिए, जो मार्गदर्शन आपके दोस्त आपको दे रहे हैं उसे किसी बड़े से वेरीफाई करके तब लागू किया जाना चाहिए। वरना क्या होता है कि अनुभव के अभाव के कारण कभी कभार हम मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य गलत नहीं होता दोस्तों का, वो भी आपका भला करना चाहते हैं, मगर भले उद्देश्य के साथ भी अगर हम कोई गलतियां करते हैं तो उसका खामियाजा बुरा ही निकलता है। इसलिए सोच समझ के साथ इन चीजों को करने की आवश्यकता है, और इसलिए ऐसे लोगों से जो इमोशनली मेच्योर हैं, अनुभवी हैं, उन लोगों के पास मदद लेना चाहिए। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि पेरेंट्स के साथ बातचीत करने में किसकी चाहत होती हो, या वो क्या मानेंगे, क्या कहेंगे, ये सोच लेते हैं कि इनहिबिशन से क्रिएट कर लेते हैं। अक्सर बच्चे बुजुर्गों के साथ, अपने दादा दादी नाना नानी, उनके साथ खुलकर बात करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये हमें जज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ओपन रह सकते हैं इनके साथ। तो वो चीजें यहाँ मायने रखती है, और मैं समझता हूँ कल्पना जी एग्री करेंगे इस बात को कि जब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ये विश्वास रहता है कि जिनके साथ हम ये बातचीत कर रहे हैं उनके साथ हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बातचीत करेंगे, और जो कुछ भी हम उनके सामने कहेंगे वो पूर्णतया कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो उन्हें जज नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाएंगे, उन्हें एक खराब उदाहरण के रूप में कहीं प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी एक प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। एक विश्वास वहां पर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं समझता हूँ कल्पना जी बेहतर बता पाएंगे इस विषय में।
1: कल्पना जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: जी मैं सहमत हूँ श्री दीदी जी से, उन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि हमें जो अगर वैलिडेशन लेना है, किसी से गाइडेंस लेना है, तो हमारे बड़ों से चर्चा कर लेनी चाहिए। बट थोड़ा सा इससे आगे बढ़कर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं
1: जी,
2: तब अपने लाइफ के डिसीजंस लेना हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे अगर हम हमारे क्रिकेट की दुनिया में अभी आजकल जो छाई हुई नई सनसनी है, हमारे वैभव सूर्यवंशी हैं, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब ये महसूस होता है कि इस छोटे से बच्चे को अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का ये जो हिम्मत है, कितनी छोटी उम्र में आ गई। उन्होंने छोटी उम्र में उनके पिताजी की मदद से इस स्किल को समझा, और उस स्किल को हासिल करने में बचपन से लेकर अब तक, मतलब अभी भी बच्चा ही है, उसके पीछे वो चले गए। और इस वजह से उन्होंने, हम इमेजिन कर सकते हैं कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टीज में जाना, इतनी सारी बातें मिस की होगी उन्होंने, परंतु उन्हें पता था कि उनके लाइफ का डिसीजन उनके फादर ने और उन्होंने मिलके लिया है, और वो बहुत सही लिया है, इसलिए उस डिसीजन के साथ वो चलते रहे। तो वैसे ही जब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कभी भी होता है, जैसे श्रीमती जी ने कहा कि वो किसी भी उम्र में हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है, बड़े होने पर भी हो सकता है, तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए साइलेंस में बैठकर खुद के साथ जुड़ने का अभ्यास करते हैं, तो मेरी क्या कैपेसिटीज है, मेरी क्या वैल्यूज है, मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या जानना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ये चीजें हमें धीरे धीरे समझने लगती हैं, और अपने ख्वाब के पीछे हम अपनी एनर्जी लगाना शुरू करते हैं। और हमारे सामने उदाहरण तो है ही, छोटी सी उम्र में अपने ख्वाब के पीछे उन्होंने सही एनर्जी लगाई, तो उसका रिजल्ट उनको कितना बेहतर मिल रहा है, इससे अच्छी तरह हम नहीं समझ सकते
1: जी। कल्पना जी, हम अंतिम चरण में पहुंच गए आज के एपिसोड के, हम एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो मैं मेडिटेशन का तो आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि हमें कराएं साथ साथ। क्या कोई ऐसे प्रश्न है जो हम खुद से डिटैच होके पूछ सकते हैं, जो हमें प्यार के इमोशन को सही आइडेंटिफाई करने में मदद करे, जो साइलेंटली बैठ के ऑब्जर्व कर सके खुद के बारे में, अगर कुछ?
2: बिल्कुल बिल्कुल। सुबह उठने के बाद जब हम अपने दिन की तैयारी, मेंटल और फिजिकल तैयारी करते हैं, मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि वो थोड़ा टाइम सुबह उठने के बाद का अगर आप खुद के साथ आप बिताते हैं, और ये 5 या 7 मिनट सोचने में बिताते हैं कि आज मुझे फिजिकली और मेंटली अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे प्रस्तुत करना है, तो हमारा माइंड इतना सुंदर जवाब हमें देता है, वो सोचकर हमें आश्चर्य लगेगा। तो पॉजिटिव प्लान जब हम बनाते हैं तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, आज मैं इमोशनली किस तरह से बैलेंस्ड वे में फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रेजेंट करूंगा या करूंगी, ये सवाल हम पूछ सकते हैं। आज मैं अपनी भावनाओं को सही शब्दों के साथ सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। इस तरह से छोटे छोटे सवालों से, क्या मैंने आज ध्यान से सुना है जो लोग कह रहे हैं, लोगों की बातें सुनते समय अगर हम ध्यान से सुने और उनको समझने की कोशिश करें, उनके भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो वो भी एक अभ्यास होता है कि दूसरे क्या कहना चाहते हैं। शायद उनके शब्दों से व्यक्त नहीं हो रहा, वो भावनाओं से समझ आ रहा है। सो ये चीजें मैं पहले समझूंगा और फिर बात में जवाब दूंगा। क्या आज किसी को मेरी बातों से खुशी मिली है? आज मैंने किसी को नाराज करने जैसा कोई काम तो नहीं किया या करूंगा? सो ये छोटे से प्रश्न है जिनके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगी कि हमारे युवा शांति से बैठकर ये अभ्यास करें, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, जिसमें कुछ पॉजिटिव और पावरफुल अफर्मेशंस हो जो हमें इमोशनली मैच्योर बनाने में काम आएंगे। तो आज अभी भी मैं इस कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि 1 मिनट के लिए वो शांति से बैठ जाएं। सबसे पहले तो गहरी और लंबी सांस लें और अपने को एहसास कराएं कि मैं इस 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल फुर्सत में हूँ खुद को समझने के लिए। अपने श्वासों पर ध्यान दें, उन्हें अच्छी तरह से महसूस करें। अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखते हुए अपने हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करें, कितनी नॉर्मल है, कितनी स्टेबल है, कितनी शांत है। कानों से सुनने वाली एकदम छोटी सी आवाज जो बहुत मधुर है, उसे सुनने का प्रयास करें। और अंत में अपने मन में 3 बार दोहराएं, मैं एक शांत प्रेममय समझदार आत्मा हूँ। मैं एक शांत प्रेममय समझदार आत्मा हूँ। मेरे प्रत्येक शब्द में सम्मान, मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा है। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग चर्चा हुई और हमें समझ में आया कैसे अपने इमोशन को रेट करना है, कैसे उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हम खुद से पूछ सकते हैं और कैसे हम दोस्तों की और कब बड़ों की मदद ले सकते हैं क्लैरिटी लाने के लिए जीवन में, और इमोशंस को बेहतर समझ के बेहतर एक्शन लेने के लिए, ताकि हमारी लाइफ को वो बेहतर बनाए और हमें नुकसान ना करे। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का इस जर्नी पे हमें लेके जाने के लिए। मुलाकात होगी लव योर जिंदगी के अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए लेते हैं इजाजत और जिंदगी से खुलकर कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: वंदे मातरम गीत देश के क्रांतिकारियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत था। ये आजाद हिंद फौज के सैनिकों का भी मूल मंत्र था। वही आजाद हिंद फौज जिसकी नींव भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे महान नेताओं और सूत्रधारों में से एक रास बिहारी बोस ने की थी, जिसकी कमान बाद में सुभाष चंद्र बोस के हाथों में चली गई। कहते हैं कि अगर अरबिंदो घोष को यंग इंडिया का मैजिनी माना जाता है, तो रास बिहारी बोस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का कैवूर कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने विदेशी धरती पर रहकर भारतीय राष्ट्रवाद की लौ जलाए रखी। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा की आज की कड़ी में हम सुनेंगे भारत के इन्हीं दिलेर क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की वीरता एवं जाबाजी की कहानी।
1: दीदी, ये वही क्रांतिकारी तो नहीं जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले के मुख्य सूत्रधार थे?
2: बिल्कुल सही पहचाना बन्नू, तुम्हें याद रहा? ये बड़ी बात है।
1: हाँ दीदी, भिकाजी कामा और कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साहसिक किस्से सुनाते समय आपने इनका जिक्र किया था।
2: दरअसल रास बिहारी बोस तभी चर्चा में आए थे जब उनका नाम भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमले में आया था।
0: बड़ी शानदार योजना बनाई गई थी क्रांतिकारियों द्वारा चंदन नगर में हुई उस बैठक में। हार्डिंग पर हमले का सुझाव देने वाले कोई और नहीं, रास बिहारी के निडर दोस्त श्रीश घोष थे। लेकिन बैठक में मौजूद कुछ लोगों को ये अव्यवहारिक लगा।
3: मुझे शंका है कि हम हार्डिंग पर बम से हमला कर पाएंगे, उसके आसपास बहुत सुरक्षा रहती है।
4: हम तैयार और दृढ़ हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। हमें शक्तिशाली बम दिया जाए और पक्के क्रांतिकारी चरित्र वाला एक युवा मिले।
0: रास बिहारी की दोनों शर्तें पूरी की गईं। 1911 की दिवाली पर चारों ओर पटाखों की आवाज के बीच पहली रिहर्सल भी हुई। बम रास बिहारी की उम्मीद के मुताबिक फटे, लेकिन उन्हें एक साल से अधिक इंतजार करना पड़ा। फिर आया 22 दिसंबर 1912 का दिन। रास बिहारी बोस अपनी युवा गर्लफ्रेंड को टोंगा में बिठाकर चांदनी चौक की सड़कों पर ले गए, जहां अगले दिन हमले की योजना बनी थी।
4: बसंत, तुम चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक के पास क्लॉक टावर वाले जगह पर रहोगे, महिलाओं के बीच, महिलाओं के वेश में। बम तभी फेंकना जब वायसराय का हाथी ठीक सामने हो। अगर तुम चूकोगे तो मैं और अवध बिहारी हमले को अंजाम देंगे।
5: जी गुरुजी।
6: तुम्हें डर तो नहीं लग रहा बसंत?
5: नहीं, डर किस बात का, महीनों अभ्यास किया है, आज के दिन का ही तो इंतजार था।
0: वायसराय और उनकी पत्नी हाथी पर सवार गली में प्रवेश करते हैं। महिलाएं जुलूस के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बसंत, जो कि एक लड़की के भेष में था, वो भी उन्हीं के बीच उपस्थित था। तभी अचानक रास बिहारी का ध्यान आता है और वो अपनी शंका अवध बिहारी से साझा करते हैं।
4: देहरादून में सिगरेट के डिब्बे में बम फेंकने की जो प्रैक्टिस की गई थी, यह काम नहीं आएगी।
6: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
4: यह हमें पहले जमीन से हाथी पर बैठे टारगेट तक की ऊंचाई का अंदाजा लगाना होगा। वसंत, तुम अपना कपड़ा बदल लो और नीचे आ जाओ।
0: कहने को तो लॉर्ड हार्डिंग पर हमले के पूरे ऑपरेशन की योजना बहुत चतुराई से बनाई गई थी, लेकिन 23 दिसंबर 1912 का ये हमला दुर्भाग्य से विफल रहा। बसंत बिल्डिंग के नीचे गया और फुटपाथ पर भीड़ में घुल मिल गया, लेकिन बम अवध बिहारी ने फेंके। इसमें वॉइसरॉय पूरी तरह घायल हो गए। उन्हें पास के एक डॉक्टर एस सी सेन के पास ले जाया गया। रास बिहारी तो बच निकले, मगर हत्या की नाकाम कोशिश के बाद बोस के 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चला। उनमें से एक को उम्र कैद की सजा हुई, बाकी अवध बिहारी गिरफ्तार समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। जबकि बोस भारत में क्रांतिकारियों के बीच मशहूर हो गए। उनके समकालीन क्रांतिकारी साथी बोस के बारे में कुछ यूं बताते हैं।
6: उनके जैसा निडर तो देखा ही नहीं। वायसराय पर हमला करने के बाद वो रात को ही ट्रेन से देहरादून लौट गए। अगले दिन दफ्तर में ऐसे काम पर लग गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने वायसराय पर हुए हमले की निंदा करने के लिए देहरादून के नागरिकों की एक बैठक भी बुलाई। इस वजह से किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि इस बेहद अहम क्रांतिकारी कार्रवाई की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले वही थे।
7: मुझे 1908 की घटना याद आ रही है। उन्हें अलीपुर बम केस में फंसाया गया था, जेल भी भेज दिया गया, लेकिन वहां से रिहा होते ही फिर से वे क्रांतिकारियों के साथ गुप्त रूप में संपर्क में रहने लगे।
1: दीदी, भिकाजी कामा ने भी रास बिहारी जी से बम और हथियार इकट्ठा करने को कहा था ना?
2: हाँ, दरअसल रास बिहारी बोस एक बहुत ही काबिल क्रांतिकारी नेता थे। स्कूली दिनों से उनकी दिलचस्पी क्रांतिकारी गतिविधियों में रहने लगी थी। मैट्रिक पास करने से पहले ही देसी बम बनाना सीख लिया था। ऐसे में जब वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए तो उनकी भूमिका बढ़ गई। उन पर लेखक, कवि और विचारक बंकिम चंद्र चटर्जी के क्रांतिकारी उपन्यास आनंद मठ का काफी प्रभाव था।
0: आनंद मठ के अलावा रास बिहारी ने मशहूर बंगाली कवि नवीन सेन की देशभक्तिपूर्ण कविताओं का संग्रह प्लासीर युद्ध भी पढ़ा। समय के साथ उन्होंने और भी क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी। उन्होंने वक्ता और क्रांतिकारी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी भाषण पढ़े। चंदन नगर में उनके शिक्षक चारू चंद्र, जो क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे, उन्होंने रास बिहारी को क्रांतिकारी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए।
8: मैंने फोर्ट विलियम में तुम्हारे नौकरी के लिए बात कर ली है, तुम वहां चले जाओ।
4: जी, जैसा आप कहे।
0: रास बिहारी फोर्ट विलियम चले गए, लेकिन वहां का माहौल उन्हें रास नहीं आ रहा था। पिताजी की भी यही इच्छा थी कि उनका तबादला शिमला में सरकारी प्रेस में हो जाए। इस तरह उन्हें प्रेस में कॉपी होल्डर नियुक्त किया गया। रास बिहारी ने अंग्रेजी और टाइपराइटिंग में महारत हासिल कर ली। कुछ समय बाद वो कसौली के पाश्चर इंस्टीट्यूट चले गए, लेकिन ये नौकरियां उन्हें रास नहीं आ रही थी। वो खुश नहीं थे।
4: मुझे ये काम अच्छे नहीं लग रहे है, क्या करूं, उलझन में हूं।
5: आप देहरादून क्यों नहीं जाते? वहां प्रथमनाथ टैगोर के घर पर गार्जियन ट्यूटर की जगह खाली है, मैं बात करता हूं।
4: जरूर करे बात मेरे लिए।
0: इस तरह वो एक ट्यूटर के तौर पर काम करने लगे। फिर उन्हें देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्लर्क की नौकरी मिली, जहां कड़ी मेहनत से वो हेड क्लर्क बन गए।
2: जानती हो बन्नो, बोस का मन नौकरी में क्यों नहीं लग रहा था?
1: क्यों दीदी?
2: वजह थी 1905 में हुआ बंगाल का बंटवारा और उसके बाद हुई घटनाएं। तब रास बिहारी बोस अपनी किशोर अवस्था में थे। बंटवारे का कारण प्रशासनिक बताया गया था, लेकिन असल में वो धार्मिक आधार पर किया गया प्रतीत हो रहा था। दूसरे बंगाली हिंदू राष्ट्रवादियों की तरह बोस इससे बहुत नाराज थे।
0: भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का मुख्य केंद्र बंगाल था। बंगाली हिंदुओं को लगा कि अंग्रेज उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए ये बंटवारा कर रहे हैं। मुसलमानों ने इस कदम का काफी समर्थन किया। पूरे बंगाल में राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। द न्यू एशिया ऑफ रास बिहारी बोस, इंडिया जापान एंड द लिमिट्स ऑफ द इंटरनेशनल 1912 से 1945 के लेखक जोसेफ मैकक्वेड के अनुसार,
9: अहिंसक गुट ने आर्थिक बहिष्कार के जरिए ब्रिटिश शासन को कमजोर करने की कोशिश की जबकि एक ज्यादा कठोर गुट ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने की कोशिश की।
0: रास बिहारी बोस गदर क्रांति के मुख्य आयोजकों में से भी एक थे। मैकक्विड अपनी एक किताब में लिखते हैं,
9: जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे तब रास बिहारी बोस ने 1857 के विद्रोह जैसा ही एक विद्रोह भड़काने की योजना बनाई। तब ब्रिटिश शासकों के अधीन काम करने वाले भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी थी। पहले विद्रोह शुरू करने की तारीख 21 फरवरी 1915 तय की गई थी। स्थान था लाहौर। 1914 तक लगभग 4000 गदर आंदोलनकारी हथियार और पैसे लेकर अमेरिका, कनाडा और सुदूर पूर्व से भारत आ चुके थे, लेकिन उनके पास कोई सही नेता नहीं था। तब रास बिहारी बोस ने उनका नेतृत्व एवं मार्गदर्शन किया। जनवरी 1915 के मध्य में रास बिहारी ने बनारस में एक निजी बैठक में आगामी क्रांति को लेकर पहली बार चर्चा की।
4: यूरोप में युद्ध शुरू हो चुका है। देश में केवल 30,000 सैनिक ही बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय हैं, और उनकी वफादारी आसानी से जीती जा सकती है। योजना यह है कि भरोसेमंद गदर आंदोलनकारियों को सेना की छावनियों में भेजा जाए। देशभक्तों की क्रांतिकारी कार्रवाई के बिना ब्रिटिश सरकार नहीं मानेगी।
10: आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ।
0: रास बिहारी द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप खैरों, फिरोजपुर और लाहौर में कुछ रिहर्सल भी आयोजित किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से इस योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका। वो जल्द ही विफल हो गई। यूं कहें कि ब्रिटिश सरकार ने संघर्ष को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। एस्टन और कवाबे अपनी किताब में लिखते हैं,
5: जैसे ही जासूसों ने आंदोलन में घुसपैठ की, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों से हथियार छीनना शुरू कर दिया। बिना डरे बोस ने विद्रोह शुरू करने की तारीख 19 फरवरी कर दी, लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए इस योजना को दबा दिया गया। कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, जेल में डाला गया और यहां तक कि देश निकाला दे दिया गया।
0: ब्रिटिश अधिकारियों के पीछे पड़ने और सिर पर इनाम घोषित होने के बाद रास बिहारी बोस ने तय किया कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है। 12 मई 1915 को रास बिहारी कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार का भेष बदलकर कोलकाता बंदरगाह से जापान के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वो गदर पार्टी के हैरम लाल गुप्ता और भगवान सिंह से मिले।
4: मैं एक भगोड़े की तरह रहकर थक चुका हूँ। 17 बार अपना ठिकाना बदला है।
7: आपको और हैरम लाल को जापान से वापस भेजने की कोशिश करता हूँ।
0: भले ही 1902 से 1923 के बीच जापान ब्रिटेन का सहयोगी था, बावजूद इसके उसने उन क्रांतिकारियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे थे जो भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना चाहते थे। पता चला कि हैरम लाल अमेरिका भाग गए और रास बिहारी ने तोसिको सोमा से शादी करके जापान की नागरिकता ले ली।
2: बन्नो, रास बिहारी बोस ने ही जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और बाद में आजाद हिंद फौज की नींव रखी, जिसकी कमान बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। हालांकि इस संगठन का प्रमुख स्लोगन वंदे मातरम ही रहा। बंगाल के सभी क्रांतिकारियों की तरह रास बिहारी बोस के लिए ये केवल एक गीत नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नारा था।
0: जापान में 3 दशकों से ज्यादा समय तक निर्वासित रहने के दौरान रास बिहारी भारत की आजादी के लिए लगातार काम करते रहे। वहां उन्होंने एक भारतीय बुद्धिजीवी, दार्शनिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर ऊंचा मुकाम हासिल किया। उसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती। उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवादी प्रतीकों को बढ़ावा दिया। रास बिहारी का मानना था कि INA उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एकता के प्रतीक के तौर पर काम करेगी, ताकि वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का मौका पा सके। असल में INA रास बिहारी बोस के आजादी के लिए उनके सशस्त्र संघर्ष के 30 साल की लंबी कोशिश का परिणाम था। वो कहते थे,
4: मैं एक व्यवहारिक और राष्ट्रवादी सोच रखता हूँ। मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में एकता और एकजुट रुख की जरूरत होती है। इसीलिए मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। यह संगठन दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जनमत और समर्थन जुटाने में एक असरदार और गतिशील संस्था के रूप में काम करेगा। वैसे ही वंदे मातरम महज एक गीत नहीं बल्कि भारतीय अस्मिता का बड़ा प्रतीक है। इसमें प्रवासी भारतीयों को एकजुट करने की क्षमता है।
0: रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई दादा कालीचरण की देखरेख में सुबलदाहा में हुई। उनका निधन 1945 में हुआ, यानी 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी मिलने से ठीक पहले। ये एक ऐसी जीत थी जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और वीर क्रांतिकारी से। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। यानी आपको समझ में आ रहा होगा, हर रोज मेरा गांव मेरा अंचल में जो कार्यक्रम होता है तो आपका प्रोग्राम है, आपके द्वारा और आपके हित में और जनहित में हमें कहीं ना कहीं पहुंच कर अपने बात को रखते हैं। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे हर वर्ग से मिलते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हम पहुंचे तपोवन में। तपोवन आपको मालूम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फार्म हाउस है, जहाँ हर प्रकार का खेती होता है। और उसी खेती में आज हम बैठकर पर्यावरण के ऊपर में थोड़ा सा बातचीत करने के लिए हम आज निमंत्रण दिए हैं। और हर रोज किसी न किसी गांव का लेते हैं, लेकिन आज खासकर केवल स्थित जो हमारा श्रीमान भोपाल रामपुरे जी उपस्थित है, इसका पहले भी बहुत सारा एपिसोड बनाए और अगला कड़ी इसी कार्यक्रम में पर्यावरण को लेकर पूरा गहरी बात मैंने पूरा डीपली हम लोग जा रहे थे। पर्यावरण क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है और इसका संरक्षण होगा तो हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो रहा है सबको। हर एपिसोड आप सुनते रहिए तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन एक एपिसोड में नहीं होगा। हम सीरियली उसको बनाए, सीरीज बना दिए, क्योंकि देने वाला जो उमंग उत्साह से दे रहे तो लेने वालों को भी ऐसे उमंग उत्साह हो रहा है। इसलिए हमें भी फोन कॉल आता है और मैसेज आता है, जिसका चलते हम आज आपका पास अगला कड़ी जो एपिसोड है उसी में पर्यावरण का ऊपर में बातचीत कर गए। और जब सुनते हमारा श्रोता मित्र को और अच्छा लगे, जैसे किसका फोन आया था भाई, हमें थोड़ा सरल रूप में कहानी का माध्यम से, कविता का माध्यम से जिसे सुनाएंगे तो और अच्छा, क्योंकि पिछला लिंक में हम कविता का माध्यम से सुनाए थे। तो चलिए हम देर किस बात की, हमारे साथ श्रीमान जी उपस्थित थे, तो रेडियो मधुबन परिवार की ओर से उनको स्वागत करते हैं, राम राम करते हैं और सभी श्रोता मित्रों को भी राम राम और ओम शांति। तो सर जी आपको स्वागत करते हैं, आपका तो परिचय पहले भी दे दिए और आपका जो उमंग उत्साह देकर मैं भी समय को निकाल कर ही आपका पास आप हमारा पास पहुंचते हैं। तो आपको वेलकम करते हैं, सुस्वागतम हमारा श्रोता मित्र की तरफ से, रेडियो मधुबन की तरफ से आपका स्वागत है।
1: राम राम भाई साहब को, बीके पवित्र भाई, रेडियो मधुबन में मुझे जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, जहां मैं पर्यावरण पर अपनी जो सोच है उसको सरल रूप में आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जो आपका समझ को विकसित करेगा।
0: जी जी, बहुत अच्छा।
1: आज एक छोटी सी कहानी
0: जी,
1: और उसी कहानी के सार के रूप में आप कुछ समझ पाएंगे कि वो पर्यावरण से किस तरह संबद्ध है। ग्रामीण परिवेश, वृक्ष बिल्कुल हरे भरे और उगता हुआ सूरज, सवेरे लालिमा छाई हुई है, उषा में एक तरह से आभास होता है जब चिड़ियाएं चहकती है
0: जी,
1: महकती है, तो प्रकृति जब महकती है तो एक सुंदर सा शीतल सा आभास होता है जो हमारे मन और मस्तिष्क को कुछ सृजनात्मकता के लिए प्रेरित करता है। गांव बिल्कुल छोटा सा है
0: जी,
1: बालक मिट्टी में खेल रहे हैं, अठखेलिया कर रहे हैं। प्रकृति ने हम सभी लोगों को जो दिया है, इस तरह से सब यहाँ आनंदित रहें, खेलें, घूमें, अपना विकास करें। मिट्टी को उड़ा उड़ा करके खेल रहा था बालक। अब देखिए, सामान्य तौर पे हमारे परिवारों में क्या हुआ करता है, अपनी अपनी दृष्टि होती है। पिताजी आते हैं, बच्चे अठखिलिया कर रहे हैं, मिट्टी को उड़ा रहे हैं, तो वो तो उसका तो आनंद ही अलग है, आनंद ही अलग है। पर अब क्या हो गया है, पिताजी जब आते हैं, अरे भाई मिट्टी में हाथ गंदे कर रहे हो, स्वाभाविक है हाथ गंदे नहीं करने। लेकिन वो जो खुशी प्रकृति के साथ में उसको मिल रही है, वो कई रोगों से उसको कोसों दूर रखती है, क्योंकि उसमें मुस्कुराहट है, उसमें आनंद आ रहा है उसको, और वही चीज उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो तुरंत माँ आती है, देखिए एक दृष्टिकोण का कितना फर्क है। बच्चे को खेलने दो, फिर बच्चे को डांटना तो वो तो खेलेगा, इस मिट्टी में ही तो पैदा हुए हम सब, और इसी मिट्टी से ही जो सब कुछ उत्पन्न है उसी से हमारा पालन पोषण हो रहा है, खेलने दीजिए इसको। परिवार का वातावरण, पिता भी बच्चे के लिए ही कह रहा है कि भाई वो डस्टिंग इतना नहीं है कि उसके आंख नाक कान के अंदर घुस जाए,
0: अपने अपने एंगल में,
1: अपने अपने एंगल में सब सही है। अब तो बहन आती है वहाँ, छोटी बहन, उसकी परिवार ने, अब गांव में घर है तो तुलसी का पौधा आंगन में सामान्य तौर पर लगाया जाता है। बहन कहती है, भैया इधर आओ, पापा की बात भी मान लो, हाथ धो लो।
0: अच्छा,
1: तो बच्चा खुशी से हाथ धोता है, पर हाथ उस तुलसी के पौधे में नहीं धोता, वो किसी और पौधे में धोता है, वहाँ उसकी आस्था है, एक स्पिरिचुअल जुड़ाव है, तो वो कहीं और हाथ धोता है, बाकी जो गमले हैं उनमें हाथ धो लेता है और फिर बहन से पानी लेकर के खुशी से उस तुलसी के पौधे को पानी पिलाता है। उसकी खुशबू, उसका जब पत्ता तोड़ता है तो एक ऐसी खुशबू आती है कि इसमें दिल और दिमाग सभी में एक अच्छी तरंग सी उठती है और मन प्रफुल्लित हो जाता है, सभी का मन प्रफुल्लित हो गया और वह परिवार रोज तुलसी को थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते हैं। देखिए फायदा क्या है, एक बार उसको हल्का बुखार आया बच्चे को, तो माँ ने वो तुलसी के पत्ते मंगवाए और उसमें कुछ अदरक वगैरह मिला करके उसको काढ़ा पिलवाया, हल्का सा जुकाम था, शहद के साथ ठीक हो गया।
2: अरे वाह,
1: तो यह है पर्यावरण, खुशी भी है और जीवन भी है,
2: इलाज भी
1: है। इसका तो भाई संरक्षण करना ही होगा, तन से कर्म करके, मन से आत्मशुद्धि करके, विचार करके, क्योंकि यह पर्यावरण हमारे और सबके लिए काम का है, धन से अंदर से और बाहर से, अंतः चिंतन से और बाह्य चिंतन से, तो हमको इस पर काम करना होगा। जो लगता है कि एक
2: कहानी से बहुत
1: इस कहानी से आप बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे कि पर्यावरण कहता क्या है, करता क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, ये चीज इसमें सामान्य तौर पे स्पष्ट हो जानी चाहिए।
2: सही बात, जैसे सर ने बताया कहानी का माध्यम से मिट्टी, पानी, पौधा, तुलसी का और ये सभी का रचनाकार जो मालिक जिसको कहते हैं
1: जी,
2: माता पिता
1: पूरा परिवार,
2: परिवार बहन, उसका संरक्षण बने पति, प्रकृति पति,
1: जी हाँ जी हाँ,
2: मालिक प्रकृति पति तो परमात्मा होते हैं, ऊपर वाला होते हैं, लेकिन जो साकार में उसको देखभाल करने के लिए मिट्टी का भी देखभाल
1: तो हमको करनी पड़ेगी,
2: पानी का भी शुद्ध, कहाँ भी फेंकना है कहाँ नहीं फेंकना है उसका भी
1: देखना पड़ेगा,
2: ये भी विचार से नहीं तो
1: शुद्ध अंत है विचार से, अंतःकरण से आप विचार करेंगे
2: तो हाथ धोना है, जब मैला पानी तुलसी का पौधा पर न हो, जब भावना उसका कितना अच्छा है, तुलसी पौधा को सम्मान देते हैं माता तुलसी माँ मैंने कहा देवी,
1: जी हाँ जी हाँ,
2: इससे क्या होता है प्रकृति साथ हम कहना नहीं पड़ा, हम सीख जाते हैं क्या करना क्या नहीं करना, बाई बर्थ से हमको धीरे धीरे प्रेरणा आती,
1: कुछ संस्कार में आ जाता है,
2: देखते देखते संस्कार आते। इस कहानी से हमें ये सीख लेना चाहिए जो मुझे जो समझ में आ रहा है, देखो कितना विचित्र ये मैंने प्रकृति का खेल है
1: जी,
2: और कुछ लेता नहीं प्रकृति, आपने लेते हैं उससे,
1: मैनेज करना है वो बहुत कुछ देगी,
2: कुछ देगी
1: आपको, थोड़ा सा देना उसकी तरफ व्यवस्था करनी है, वो इतना देगी कि जिसकी सीमा नहीं।
2: और उनका जो माता का जो विचार है, पिता का जो विचार है, और बहनों का जो विचार है, भाई का प्रति, छोटा
1: जी जी
2: भाई हो चाहे बेटा के प्रति,
1: अपना अपना एंगल सभी का
2: पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव
1: सभी का पॉजिटिव,
2: उसको ऊपर बढ़ाने के लिए, उसको जागरूक कराने के लिए, उन अंतर्निहित गुण को विकसित करने के लिए ये एक मौका था।
1: बिल्कुल।
2: और बच्चा ने सभी का बात माना है। बड़ों को बात मानने से क्या होता है, बड़े जो करते हैं, ये हमारा माता पिता, बड़ा भाई, बड़े बहन, जो भी हमारा है, तो वो हमारा भलाई के लिए करते, लेकिन उस समय हमारा कोमल मति बा शरीर हमारा इतना रिसीव नहीं कर पाता, जिसका कभी इधर उधर हो जाता, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए और हमारा परिवार डेली रोज मरा की एक परिवार में ऐसे घटना आते हैं।
1: जी हाँ जी हाँ।
2: तो इस कहानी हम तो छोटा सा एग्जाम्पल भाई साहब ने बताया, लेकिन आगे के लिए आपका भी परिवार में ऐसे कोई कहानी हो तो हमें जरूर बताना, शेयर करना, रेडियो मधुबन आपके लिए जी हाजिर है, और हमारा नंबर तो पहले भी बताए थे, उस नंबर पर आप करिए फोन, और सर ये कहानी से बहुत कुछ सीख मिलता है और ऐसे होना चाहिए, तो और क्या कहना चाहिए, तो कहानी का माध्यम से जो लिया है इस कहानी को, इससे हमें खासकर हमारे श्रोता में तो क्या सीखना चाहिए।
1: हाँ, इस कहानी से ये सीखना है कि हम प्रकृति जब हमको इतना देने को तैयार है
2: जी सर,
1: तो हम सब मिल करके छोटा छोटा प्रयास अगर सभी करेंगे
2: जी,
1: परिवार के साथ मिल करके करेंगे, तन मन धन जो भी तरीका हो उससे
2: अपनाए,
1: हाँ उसको अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से यह प्रकृति हमें बहुत कुछ दे देगी, बहुत कुछ दे देगी, जो ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, जो घटनाएं हो रही है,
2: ये आपका सहायक होगा, रक्षक होगा आपका,
1: वो सब आपकी रक्षा करेंगे, प्रकृति की तरफ थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है।
2: अब देखना प्रकृति आपका दासी बनकर उभा होगा, मैंने ऑर्डर करिए मुझे क्या
1: जी
2: चाहिए?
1: जी जी, प्रकृति के पास बहुत कुछ है, वो ये कहती है कि हमारी तरफ आगे बढ़,
2: उसको आभास हो जाता है, हमें आभास नहीं होता है, लेकिन उसको आभास होता है, पशु पंछी और पेड़ पौधे को आभास होता है, पहचानता है क्या आगने वाला समय में क्या विकटल रूप आएगा, क्या भूकंप होगा कि बाढ़ आएगा,
1: भूकंप होगा तो पहले संकेत देती है प्रकृति,
2: देती है, तो उसको हम कैच कर पाएंगे, तब हम जब मालिक हो वो हमें तुरंत समझा देगा।
1: बिल्कुल,
2: ये बात हमें अच्छा लगा क्यों? हम देखते हैं आजकल जो रील बनता है ये सब बनता है, सो देख रहे क्यों? प्रकृति को हम मान लीजिए जैसे ट्रीट करेंगे वो भी हमें ऐसे ट्रीट करेगा,
1: ऐसे ही ट्रीट करेगी और बहुत कुछ देगी। बहुत
2: मित्रता का साथ जो ट्रीट करेंगे अतृप्त नहीं होगा, मित्र का साथ पेड़ को अपना मित्र बना दे, पशु का अपना मित्र बना दे, शत्रुता नहीं होगा, वो भी हमें उससे ज्यादा मित्र को
1: ज्यादा सहयोग करेगा।
2: पर्यावरण का मुख्य लक्ष्य हमारा आसपास जो इर्द गिर्द जो हो रही है उसको थोड़ा संभाल के और अपने रक्षा करने के जितना हो सके, ना ज्यादा ना कम,
1: बिल्कुल जितना हो सके
2: 100%
1: जैसे हम अगले एपिसोड में आपसे बात किए थे
2: जी
1: कि ये जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण में जब जैव निम्नीकरण होता है, सूक्ष्म जीव अपघटन करते हैं, ये शब्द थोड़ा मैं सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपघटन, जैसे भोजन किया उसका वेस्ट बचा, वेस्ट क्या कहें, भोजन हम नहीं किए तो जो बचा हुआ जो भोजन है वो
2: बच जाता है,
1: जो बच जाता है, अब जो अपघटित नहीं हो पाता, भाई थोड़ा सा हो जाएगा लेकिन जब ज्यादा है तो फिर क्या होगा कि वो अपघटन बढ़ जाएगा, जैसे रसोई का कचरा है या अन्य जो किसी चीज में से निकला हुआ वेस्ट है जिसको जीव उसको तोड़ते हैं धीरे धीरे करके, तो जो जैव निम्नीकरण होगा तो निश्चित रूप से अगर उसका सदुपयोग कर लिया जाए
2: तो फायदा है,
1: वेस्ट मैनेज करके, जैसे गीले का गीले में डाल दिया जाए कचरा, सूखे का सूखे में डाल दिया जाए, जैसा सिस्टम बता रहा है सरकार ने खूब प्रयास किए, तो निश्चित रूप से वो नहीं तो मिक्स होकर के तो वो नुकसान कर जाएगा उसको, क्योंकि अलग नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, तो वो जो है जो कचरा है वो प्रदूषण पैदा करेगा। और वो अगले एपिसोड में बात हुई थी कि इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा सिस्टम कि मुझे लगता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पारिस्थितिक जब उसका चक्रण नहीं होता तो इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु इसमें प्रदूषण में कहूं, जैव अनिम्नीकरण, ये तो अपघटन से निम्नीकरण हो रहा था, पर जहां अनिम्नीकरण है, अनिम्नीकरण में जिसका अपघटन ही नहीं होता,
2: ऐसा भी है,
1: ऐसा भी बहुत कुछ है,
2: तो उसका
1: जो टूटता नहीं है, जो अपघटन नहीं होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे कीटनाशक,
2: हाँ हाँ हाँ,
1: कीटनाशक जितने भी है पेस्टिसाइड,
2: ओके, रासायनिक
1: तो रासायनिक जितने भी पेस्टिसाइड्स है सामान्य तौर पर अपघटित नहीं होते। आपने सब्जी पे छिड़क दिया उस जीव को मारने के लिए, अब तो नए नए तरीके सरकार ने खूब ज्यादा डेवलप कर दिए, अपनी जो IIT कानपुर है सर, मैं सीधा कई बार उसको दिखता रहता हूँ, वहाँ इसके लिए स्पेशल सेल बिठाया है जो इस पर पूरा पूरा काम कर रहा है कि बिना रसायनों के भी ये जितना भी है ये जो कीट पतंगे जो नुकसान करते हैं उसका
2: उपाय है,
1: उपाय किया जा सकता है, और पेस्टिसाइड
2: बिना खेती करते हुए उनका कोई नुकसान न हो, क्योंकि उसमें क्या जो आपका जो सहायक कीटाणु है,
1: हाँ हाँ हाँ,
2: उपकारी, वो भी मर जाते हैं,
1: हाँ, नहीं तो वो जो उपकारी कीटाणु है वो बच करके उसमें फायदा करे,
2: जैसे केचुआ है,
1: जी जी बिल्कुल,
2: जैसे मधुमक्खी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो ये तो हमारा सहायक मित्र है,
1: मित्र है, तो उनको भी हम मार देते हैं, क्योंकि वो पेस्टिसाइड उसके जाएगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, केचुए है उर्वरता को बढ़ाते हैं वो मर जाते हैं,
2: बहुत सारा,
1: तो इस तरह से सर
2: उसके लिए
1: कीटनाशक, दूसरा प्लास्टिक,
2: तो बहुत समस्या संभव घर घर में,
1: अब सर इसमें ये बहुत बहुत जबरदस्त चीज आती है,
2: सरकार भी कुछ किया है,
1: नहीं सर बहुत किया सर बहुत किया है, बस पर सर जिसकी समझ है ना काम वही कर रहा है, समस्या सरकार की नहीं है, समस्या NGOs की नहीं है, समस्या समझ की नहीं है, समस्या ज्ञान की नहीं है,
2: समस्या
1: अभी जो हम आप प्रयास कर रहे हैं वो जो सर इसको जो समझ है, आप एक कह सकते हैं 100 में कोई एक व्यक्ति समझता है और फिर वो एक में से कोई मतलब जैसे 1000 में से 10 लोग समझते हैं तो 10 में से कोई एक व्यक्ति उस पर काम के लिए आगे बढ़ता है, तो काम तो एक ही कर रहा है
2: जी,
1: तो पर 1001 ही हुआ, तो फिर किस तरह से हम संरक्षण कर पाएंगे सर? अब जैसे प्लास्टिक है, बड़ा ऐसा
2: प्लास्टिक तो है, जो रासायनिक आपने बोले ना जो पेस्टिसाइड जो उसके लिए क्या निवारण कर सकते,
1: उसका
2: पेस्टिसाइड प्लास्टिक का तो सरकार बहुत मुहिम चला है,
1: जी जी बिल्कुल,
2: आप इसका पहले जो बताए थे
1: जी जी
2: उसका बारे में थोड़ा सा करिए, कर सकते हैं
1: कीटनाशक का ऑल्टरनेट ढूंढ रहे, अभी तो सरकार ने एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है वो पूरी की पूरी इस पर लगी हुई, IIT कानपुर इसके लिए विशेष काम कर रहा है, पूसा इंस्टीट्यूट जो अपना दिल्ली वाला है वो इस पर सर विशेष रिसर्च कर रहे हैं, और पुणे वाला एक इंस्टीट्यूट है, ये पूरा इस पर काम कर रहे हैं, और जो ये पूसा ये जो अपने कानपुर इंस्टीट्यूट है वो तो इसके जो कौन सा कीट कहाँ प्रभाव करता है कैसे करता है उसका ऑल्टरनेट क्या होगा इस पर पूरी की पूरा सिस्टम ही लगा दिया उन्होंने, और ये यूपी में तो आगे पीछे जा करके वो सब बता रहे हैं
2: सर, ये तो
1: सांस्कृतिक रूप से।
2: आपने जो बताया तो पूरा भास्ट नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर पर।
1: जी जी जी जी।
2: लेकिन यहाँ पर जो आबू रोड क्षेत्र में हम जो बात कर रहे हैं,
1: जी जी,
2: यहाँ का समस्या है और यहाँ का उसको कैच करने के लिए वो कितना संभव है
1: जी,
2: उससे
1: जी।
2: और थोड़ा सरल करेंगे तो यहाँ का जो लोग कास्कर भाई हो, चाहे अपने परिवार वाले, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का, कोई भी पोस्ट का है, उसको पर्यावरण को रक्षा करने के लिए पेस्टिसाइड हो जैसे घर में जो हम भी लेते हैं, चूहा मारने के लिए भी पेस्टिसाइड लगाते हैं, ठीक है, उसका जो पेस्टिसाइड चूहा नहीं खाकर जो मनुष्य का अंदर में कभी चाव का
1: नुकसान करता है,
2: नुकसान होता है
1: सर,
2: तो उस चीज हम तो भलभांति जानते हैं, तो वो पेस्टिसाइड को प्लास्टिक तो बड़ी बात नहीं, ये जो छोटा छोटा चीज है
1: जी, जी,
2: तो बड़ा काम कर लेता है
1: जी, बहुत,
2: जो अति मानने वाला नहीं उसको मार देते।
1: कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब से,
2: पंजाब से
1: मतलब वो कैंसर के इलाज के लिए लोग निकलते हैं इतना, क्योंकि वहाँ पेस्टिसाइड का यूज सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ,
2: आबू रोड क्षेत्र जैसे
1: अपने यहाँ भी हो रहा है।
2: हाँ।
1: आबू रोड क्षेत्र में भी हो रहा है, तो सर
2: उसके लिए देखिए हमारा इस ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्व जहाँ हमसे हम बात कर रहे हैं, अभी आइए बिना रासायनिक से
1: ये
2: चीज जो पेस्टिसाइड बिना पेस्टिसाइड जो रासायनिक जैविक खेती भाई योगी खेती से संकल्प के माध्यम से करते हैं
1: ये बात,
2: और इसको सीखने के लिए बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर,
1: कानपुर जाने का जरूरत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही
2: कानपुर का
1: बिल्कुल
2: तपोवन जहाँ हम लोग सभी गवर्नमेंट का ऑफिसर गवर्नमेंट भेज रहा है यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए, हमारा मॉडल देखो और यहाँ पर आप अपना ये जमीन है आपका बाजू में वही जमीन है
1: जी,
2: अंतर देखना और यहाँ पर कोई रासायनिक कोई जो भी आता है

0: भाई साहब भाई
1: जी जी जी बिल्कुल
0: सभी कृषि अधिकारी यहाँ पर आते हैं,
1: आते हैं
0: और कास्कर भाई को भी भेजते हैं भाई तू ऐसे खेती करना है।
1: हाँ।
0: तो हमारा ब्रांचेस चार तरफ है वर्ल्ड व्यापी है जो इससे संबंधित है
1: जी।
0: तो उनको यहाँ पर सरकार से पूरा जाना खर्च देते हैं,
1: पूरा सरकार खर्चा देती है तो आकर के सीखना चाहिए उस चीज को। वहाँ
0: महाराष्ट्र हो चाहे हमारा रायपुर हो कितना जगह में इसका मॉडल बना है
1: जी। हाँ, जी।
0: तो कहने मतलब आप सुन रहे इस कार्यक्रम को आप फ्री में कभी भी तपोवन में आइए। तपोवन में अपना जो आमथला और शांतिवन
1: शांतिवन के बीच में
0: बीच में उसमें आप आएंगे तो जरूर देख कर जाइए एक बार
1: कि किस तरह से।
0: और आपको कोई पैसा नहीं खाली बोल देना भाई हम
1: बिना पेस्टिसाइड्स के
0: रेफरेंस देना पड़ेगा। कोई पूछेगा कहीं सेक्यूट रहता है तो आप उसको थोड़ा बोलना भाई हमें रेडियो मधुबन से सुने थे ऐसे ऐसे प्रोग्राम
1: जी जी।
0: और रेडियो मधुबन से हम सुनकर हम आए
1: जी। हाँ,
0: तो रेडियो मधुबन से आप संपर्क कर दीजिए नहीं तो आप करा दीजिए नहीं तो हमें घुमा दीजिए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो यहाँ पर गाइड करने के लिए हमारा भाई है वो आपको सीधा पूरा देखाएगा पूरा उसके लिए हमारा गाइड
1: बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहाँ
0: बैठा कर आपको लेगा पूरा देखने के लिए।
1: गाइड यहाँ पर उपलब्ध है और बिना
0: रूप में आएंगे
1: कीटनाशकों के निश्चित रूप से यहाँ पर किस तरह से खेती का यील्ड भी बहुत ज्यादा हम ले सकते हैं वो सारी व्यवस्थाएं
0: तो गिनती करके तो गिनती नहीं कर पाएंगे आज कितने पौधा यहाँ पर है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: फल फूल छायादार सब चीज रखा हुआ है। लेकिन जानेंगे और कुछ बातें विराम के बाद है ना सर कुछ और टॉपिक रह गया आज के लिए तो लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सुनेंगे सर जी से तो सुन रही मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
1: थैंक यू सर।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में हम पहुंच रहे हैं पर्यावरण को लेकर। पर्यावरण कितना एक मैंने दोस्त जैसे बात क्या कहूं, उसको प्रभु माने जो भी माने वो तो दाता है और उसका कितना वर्णना करे कम ही होगा, जिसे परमात्मा का महिमा अपरंपार है। ये अपना प्रकृति का भी महिमा जो करेंगे तो अपरंपार है। सरस्वती बट पर लिखेगी तभी उसका महिमा कम ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल कम ही पड़ेगा उसकी महिमा
0: अपरंपार है। जैसे परमात्मा अपरंपार है, डायरेक्टर जो है, और ये प्रकृति जो स्टेज है, जो पांच तत्व है, इनका भी महिमा
1: अपरंपार है,
0: अपरंपार अनादि है।
1: प्रकृति अनादि है, अनंत है,
0: अनंत है। परमात्मा भी अनंत है,
1: अनंत है, वो भी अनादि।
0: उसका महिमा कोई कर नहीं,
1: जान नहीं,
0: वो खुद कर सकता है, तो प्रकृति खुद कर सकता है अपना महिमा। तो हम तो मनुष्य है, जितना करे कम ही होगा, फिर भी हम प्रयास करते हैं। तो इसका कड़ी में सर को पुनः स्वागत करते हैं। सर, जैसे हम लोग अंत कर रहे थे कहानी का माध्यम से, विचार सबका अलग अलग है,
1: जी, जी।
0: जब विचार हमारा ठीक होगा तो प्रकृति भी ठीक हो जाएगी, सात्विक प्रकृति होगा। विचार तो करते,
1: जी, जी।
0: चोर भी अपना चोरी करने का एक विचार करता है, प्लानिंग करता है,
1: बिल्कुल,
0: उसको हम विचार नहीं कहेंगे,
1: बिल्कुल,
0: वो तो नेगेटिव में।
1: वो नहीं, विचार तो विवेकपूर्ण उपयोग तो अपने को करना है,
0: विवेक के साथ सात्विकता से। तो चलिए सर को स्वागत करते, क्या कहना चाहेंगे इस लिंक में।
1: सर, अभी मैं एक बैलेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी बात अभी निकली थी प्लास्टिक की।
0: हाँ।
1: प्लास्टिक में मैं ये कहना, सरकार ने खूब किया काम,
0: बराबर,
1: पर सर इसका एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक कहीं कहीं उपयोगी भी है, उसका उपयोग तो करना है। प्लास्टिक की टंकी तो बनानी पड़ेगी। प्लास्टिक का जैसे ये इनमें जो उपयोग होता है खेती बाड़ी के अंदर, जहाँ वहाँ जो उसकी जो एक धार बांधने के लिए
0: बैठे वहाँ पर कुर्सी,
1: तो उपयोग तो करना पड़ेगा, इसलिए आवश्यक उपयोग तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको, क्योंकि वो भी किसी न किसी चीज की प्रतिपूर्ति तो कर रहा है।
0: डिजेबल हो सकता है ना,
1: जी सर,
0: इसको उसका एज डेट खत्म हो गया, ये डिजेबल तो हो सकता है ना, ये प्लास्टिक जो चेयर है
1: सर, ये सर ये डिजेबल नहीं होता है, नहीं होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है।
0: हाँ।
1: अगर ये डिसॉल्व होगा और इसको तोड़ दिया जाएगा, हाँ, तो ये दूसरे रूप में परिवर्तित होगा, पर रहेगा प्लास्टिक का प्लास्टिक ही, और फिर आगे जाएगा तो इससे कोई दूसरा चीज बन जाएगा, तो रहेगा प्लास्टिक। और जब धरती पर ये चीज चली जाती है तो ये फिर पानी वगैरह को रोकती है,
0: चला जाता है।
1: हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये नुकसान ज्यादा है इससे, इससे नुकसान बहुत ज्यादा है। तो सर, जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग करें,
0: बराबर,
1: हर चीज का उपयोग है। हाँ, पर ये ज्यादा नुकसान करती है, इसलिए इसका कम उपयोग किया जाए। ये एक इसमें से बिंदु निकल करके आता है कि जितना कम हो उतना कम उपयोग करें, तो निश्चित रूप से हम बैलेंस कर जाएंगे। नहीं तो आप, हम कहेंगे कि आप तो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं,
0: बैठे
1: ये चीज। सर, बात आई थी कहीं किसी पर्यावरण की बैठक में बैठा हुआ था, तो वहाँ किसी भाई ने प्लास्टिक की माला यूज कर ली,
0: प्लास्टिक का फूल होगा नहीं तो कुछ,
1: हाँ, प्लास्टिक गुलदस्ता, वही प्लास्टिक की फूल,
0: स्वागत करते हैं
1: आप पर्यावरण में आए हो प्लास्टिक की माला। मैंने कहा बात तो पते की कही, वहाँ तो फूलों का गुलदस्ता ही होना चाहिए, फूलों की माला ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से प्राप्त है, प्रकृति का आप काम कर रहे हैं, तो सायुज्य तो होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कुछ चीजें अगर उसके लिए आवश्यक रूप से उपयोग की जा रही हैं, तो उसका एक बैलेंस होना चाहिए। जो अति आवश्यक है उतना उपयोग तो करना पड़ेगा। प्लास्टिक की गाड़ी में बैठ करके तो हमको जाना ही पड़ेगा, फिर आप कहेंगे कि ये तो जितना आवश्यक है उतना उपयोग इसका किया जाए, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हर चीज को नकारा तो नहीं जा सकता।
0: जी जी।
1: दूसरा बिंदु सर इसमें आता है, जैव अनिम्नीकरण में, मतलब ये अनिम्न होते हैं, ये जैसे प्लास्टिक जमीन में चला गया, पानी नहीं जाने देगा, एक लेयर बना देगा, जहाँ पानी का स्टोर करना वहाँ नीचे प्लास्टिक आप बिछाते हैं, वहां तक तो ठीक है।
0: जी।
1: जैसे आप प्लास्टिक पानी स्टोर करना चाह रहे हैं, तो ये पानी के भाई यहाँ पर भरा पड़ा रहे, तब तो प्लास्टिक का उपयोग चाहिए चाहिए। लेकिन इसको जो वाटर टेबल बढ़ाना है तो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। अगर आसपास पानी का लेवल बढ़ाना है तो फिर प्लास्टिक का उपयोग उस तल में करेंगे, तो निश्चित रूप से वो वाटर टेबल नहीं बढ़ाएगा। तो जहाँ पर आवश्यक है वहाँ उपयोग करना है। मैं दूसरा बिंदु कह रहा हूँ, रेडियो धर्मी जितने पदार्थ है, भाई साहब इतना नुकसान करते हैं। अब देखिए, रेडियो धर्मी पदार्थों के भी पूरी दुनिया में दो दृष्टिकोण बने हुए हैं। एक तो उसका एटॉमिक एनर्जी का पॉजिटिव उपयोग हो जाए, और एक एटॉमिक एनर्जी का विध्वंसक उपयोग हो रहा है। पॉजिटिव उपयोग तो विकास को लाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत बूस्टअप कर देगा,
0: परिवहन रास्ता जंगल को भी, मैंने जहाँ पर पहाड़ इलाका है वहाँ पर भी ब्लास्ट करके,
1: बिल्कुल करते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। तो फिर वो जो है, वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो धर्मी पदार्थ, वो रेडियो धर्मिता जब नेगेटिव है, कंट्रोल्ड है, वहां तक तो दिक्कत नहीं, अगर रिएक्टर पर आपने कुछ कर दिया तो वो स्थिति हो जाएगी कि हिरोशिमा नागासाकी और जो भी इतने भयंकर नुकसान हो जाएंगे जहां पर सैकड़ों वर्षों तक बीमारियां नहीं जाती, कैंसर ठीक नहीं होता, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये सारा अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह, इनका जो प्रकृति तक इनका यूवी रेज का वगैरह का अल्ट्रा रेज जो भी है आना जाना भी बहुत दिक्कत वाला हो जाता है, तो ये तो मानवता के नष्ट होने के चांसेस से बन जाते, तो ये अब घटित नहीं होते सर, इनका कंट्रोल्ड उपयोग होना चाहिए।
0: जी जी,
1: सरकारें कर रही है, दुनिया में इसकी एटॉमिक एनर्जी को किस तरह से शांतिपूर्ण उपयोग करें इसके लिए खूब कानून बने, लेकिन जो हमारे शक्तिशाली राष्ट्र है
0: जी,
1: अब उसका समझ करके सही उपयोग करें तो भी ठीक है, अन्यथा तो ये एक सीधे सीधे विनाश को बताता है, जहाँ क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सब, फिर क्या आप और हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये जो रेडियो धर्मी पदार्थ है इसका कंट्रोल्ड उपयोग होना अति आवश्यक है। सरकारें कहती तो है विकास के लिए तो करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि नहीं होगा तब तो नहीं चलेगा, लेकिन जहां पर इसका उपयोग डिस्ट्रक्शन के लिए,
0: कंस्ट्रक्शन के बदल डिस्ट्रक्शन,
1: नाश के लिए हो रहा है, युद्ध में हो रहा है सर, सीधे सीधे मैं कहूँ तो लोगों को मारने में हो रहा है, जमीन को कब्जाने के लिए हो रहा है, वहां तो गलत,
0: दोनों तो हो रहा है,
1: वो तो गलत ही,
0: कहीं कहीं उसको पॉजिटिव में देखेंगे तो पूरा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, वो पॉजिटिव में आ
1: जाता है। पॉजिटिव का तो वैसे कंट्रोल उपयोग है, वो तो आवश्यक है ही, वो तो करना ही,
0: जनसंख्या आवश्यकता, जनसंख्या बढ़ रहा है उसी हिसाब से सब कुछ तो
1: आवश्यकता तो है,
0: आवश्यकता उतना तो नहीं दे पा रहे, इसलिए हमें अपना बुद्धि से,
1: लेकिन जो युद्ध हो रहे हैं
0: वो तो विनाशकारी, जो भी अपना
1: इसी का उपयोग हो रहा है,
0: आत्मरक्षा का है चाहे डिफेंस में,
1: वो जो भी कर रहे तो
0: परिणाम तो नुकसान का,
1: तो फिर वहाँ शांति कैसे है, जबकि मनुष्य का जो मूल उद्देश्य है वो शांति का है,
0: शांति का है।
1: धातु अपशिष्ट जितने भी बचते हैं
0: जी,
1: धातुओं का अपशिष्ट, अब धातु से सामान तो बनाना ही पड़ेगा, जैसे कोई भी
0: लोहा
1: है, आयरन ओर है, लोह अयस्क कहते हैं, ठीक है, तो अब उसमें से जो भी है, जो उसका जो प्योरिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस होता है, वेस्ट तो निकले
0: जरूर,
1: आवश्यक भी है,
0: जंग भी रहता है तो उसमें,
1: लेकिन उसको कहाँ पर ले जा करके उसका निस्तारण किया जाए वो आवश्यक है, अपने आबरूड क्षेत्र में मॉडर्न इंसुलेटर में इंसुलेटर बनते हैं, आवश्यक है, विद्युत परिचालन के लिए इस इंस्ट्रूमेंट की बड़ी आवश्यकता है,
0: ओके,
1: लेकिन इसका जो वेस्ट है जब ये टूटता है फूटता है
0: उसका जो अवशिष्ट,
1: तब उसको कहाँ डाले, इसका कोई सिस्टम होना चाहिए,
0: बहुत अच्छा,
1: तो वो जो सिस्टम ठीक तरीके से
0: करेगा तो
1: ध्यान में रखा जाए,
0: तो
1: पब्लिक भी ध्यान में रखे, सरकार भी ध्यान में रखे, तो निश्चित रूप से फायदा है,
0: उससे भी फायदा,
1: फायदा सब जगह, लेकिन उपयोग सब चीजों का कंट्रोल हो,
0: जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर वेस्टेज वाटर जाता है,
1: बिल्कुल
0: इस तरह जो भी आयरन से जो भी निकलता है उसको भी रिट्रीट करके, उसको
1: जैसे अपने यहाँ पर मार्बल की यूनिट्स बहुत ज्यादा है, उसका जो स्लरी निकलता है सर, मैंने वहाँ जाके देखा है, भरे पड़े रहते हैं ऐसे कीचड़ के कीचड़ उसमें भरे हुए, तो उसका उपयोग भी तो हो सकता है ना, तो साइंटिस्ट से मिल करके उसका उपयोग किया जाए, सरकार है बताती है रास्ता बताती है, तो उसका उपयोग भी तो होना,
0: इस क्षेत्र का जो अति आवश्यकता है,
1: जी जी जी,
0: मार्बल का जो
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: प्राण भी चला जाता है सर, जो करते हैं ना पैसा का,
1: हाँ, बिल्कुल,
0: मैंने देखा है दो तीन जगह में पूछा भाई इसका इतना रेशियो क्यों, माता पिता का फादरलेस और मदरलेस, माँहीन और बापहीन,
1: जी जी,
0: बच्चे जो स्कूल में जाते तो मैंने क्या इतना कोई स्कूल में नहीं, वो स्कूल में पूछा कारण क्या पूछा तो बताया यहाँ के जो मूर्ति बनता है मार्बल से
1: सर, हाँ उसमें एक बीमारी होती है, मैं निवेदन करूँ,
0: सिलिकोसिस, तो ये कितना बड़ा,
1: बहुत जबरदस्त, वो क्या उसके जो कण है उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में,
0: जी सर,
1: उसके जो छोटे उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसका जो कण निकलता है PM10 उसको कहते हैं, माइक्रोमीटर में इसको नापा जाता है, तो वो माइक्रोमीटर्स की एक रेंज है, तो उससे अगर छोटा कण होगा
0: उसको देखा ही नहीं देगा हाथ
1: में। और सर इसको रोका भी जा सकता है सर,
0: ऐसे कुछ
1: इसको रोका जा सकता है, उसका सिस्टम है, किसी चूने के पानी में से किसी में से गुजारते हैं तो वो रुक जाता है, तो वो सिस्टम ये लोग करते नहीं है, तो करना पड़ेगा, सरकारें इनको परमिशन दे,
0: मतलब करने के लिए तो चाहते हैं कर नहीं पाते ऐसे,
1: तो नहीं सर, ये तो कर तो पाते, करना चाहिए, करना चाहिए, सरकारें इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, ज्यादा दे तो हो जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं होता है।
0: सरकार मतलब देखिए सरकार इतना क्यों, सरकार पैसे कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगा तो वो करेगा नहीं, सरकार को
1: एक्चुअल में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन। जैसे मैं आपसे एक बिंदु अगर इधर ही चले गए तो मैं आपसे एक बात निवेदन करूँ
0: जी सर,
1: आप और हम, ये मेरे दिमाग में खूब बार आता है और कभी इस पर आपका साथ लेकर करना भी पड़ेगा। आप देखिए ये जो नदी में सैंड का माइनिंग होता है, रेत का माइनिंग होता है ना, रेत की खुदाई होती है सर, यहाँ से जाने आने के बहुत अच्छे रास्ते थे पहले हमारे पास में, हम पैदल जाते आते थे बड़े आनंद से, बड़ा अच्छा वातावरण। और अब उसकी खुदाई कैसे हो रही है उस माइनिंग की,
0: एक कोई प्लान नहीं,
1: ट्रॉली हाँ यहाँ से भर दी, दूसरी वहां से भर दी, तीसरी वहां से भर दी, चौथी वहां से भर दी,
0: कोई सिस्टम
1: बन गए। सर मैं एक निवेदन करूँ, उन खड्डों से एक तो आना जाना असुरक्षित हो गया,
0: एक्सीडेंट,
1: भाई कोई व्यक्ति घूमने नहीं जाएगा, जाएगा तो भाई वहां
0: गड्ढा गिरेगा
1: तो कई सारी दिक्कतें हो जाती। नंबर दो, जब बरसात होती है तब अपने यहाँ पर सर डूबने की घटनाएं खूब सारी हो रही है,
0: बता।
1: ये पर्यावरण का ही बिंदु है, वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी अनइवन डिगिंग हो रही है, अनइवन हो रही है सर। जैसे आप निकल रहे हैं अब जैसे ये जो अनइवन डिगिंग है सर, आपको मैं भले वो पिट्स दिखाऊंगा, इतने गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं इधर उधर, जैसे आपने तो चार ट्रॉली, अच्छा वो ट्रॉली को सीधी लगा दे ट्रक को और लगा के भर के चल दो वहां से, भर के चल दो वहां से, जेसीबी लगाई भर दिया चल दीजिए, तो उससे सर क्या वो खड्डे बन जाते हैं।
0: ऐसे क्यों कर रहा है, उसको तो समझ होना चाहिए जो
1: वो इसलिए कर रहा है कि उसको सस्ते में भर रहा है, वो
0: सस्ता क्यों जरूरत पड़ा है भाई, वैसे तो उसको मिल रहा ना,
1: ऐसा मिल रहा है लालच
0: लालच
1: तो लालच अंदर का गुण नहीं है
0: तो, ये तो वो ठीक है, जो मुद्दा बोला ना ये चीज सब लोग कर रहे तो उसमें निवारण ऐसे होगा जैसे आप क्यों कर रहा है तो बोल भाई लालच पैसा कम समय में फटाफट हो जाता है, पांच ट्रॉली लेने के बाद 10 ट्रॉली ले
1: लेगा
0: लोन लेगा तो हमारा इनकम हो गया ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसका दूसरा को पर्यावरण को देखा नहीं,
1: पर्यावरण देखा नहीं,
0: इससे आने वाला आगे वाला जानो कि उसको नहीं देखा,
1: देखा नहीं, नहीं
0: एक आदमी कोई मेरा भाई भी आकर गिर सकता है वो भी नहीं देखा,
1: गिर रहे हैं
0: ऐसे भाई मतलब अपना परिवार वो खुद भी कभी गिर जाएगा,
1: वो भी गिरता है।
0: तो ये चीज जो हो रहा है उसको भी मालूम है फिर भी आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको भी मालूम है, गई 2 साल पहले भी ऐसे हुआ था भाई, फिर भी अभी वही रास्ता में ही जा रहा है जो आप एग्जांपल दिए,
1: रेती
0: का जो अनलिमिटेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो आंतरिक
1: तो है ही
0: पास आ गया।
1: तो सर इसमें ये जो डूबने की घटना जो अभी सुन रहे हैं ना, मेरा ऐसा मानने
0: के बाद
1: मेरा ऐसा मानना है वो क्यों हो रही है मैं बताऊँ, ये जो जहाँ पर सैंड का जो डिगिंग एरिया है उसमें व्यक्ति नहाने जाता है तो नेचर को देख करके नहाने गए, और नहाने जाते हैं ना तब वो जो अंदर की तरफ जाते हैं तब एकदम खड्डे में चला जाता है,
0: ओहो एक्सीडेंट,
1: और इसलिए यहाँ पर डूबने से मृत्यु मेरे ख्याल से ज्यादा होनी चाहिए, भाई वो एकदम खड्डे में जा रहा है, पूरे एरिया में अगर इवन डिगिंग हो रखी है कि भाई आप इस एरिया में खोदेंगे तब तो दिक्कत नहीं कि भाई यहाँ खड्डा है सबको दिखेगा, लेकिन यहाँ वहाँ भी खोद रखा है आपने, वहाँ भी खोद रखा है, तो वो व्यक्ति जब जाएगा तो निश्चित रूप से वो, तो सर एक एरिया गवर्नमेंट को चिन्हित करके दे देना चाहिए कि इस रास्ते कोई रास्ता है उससे कम से कम आधा किलोमीटर से कोई डिगिंग ना हो,
0: जैसे आपने बताया वो तो ठीक गवर्नमेंट अपना कर रहा है,
1: हाँ,
0: कर
1: ठीक,
0: रहा
1: ठीक, है, कुछ ठीक, ठीक
0: है,
1: बात है ठीक,
0: बट है
1: ठीक,
0: लेकिन जो करने वाले आप और हम जाते तो हम भी उसी फील्ड में जो रहेंगे
1: जी हाँ,
0: तो हम क्या करेंगे अपना सुविधा देखेंगे,
1: सही बात है,
0: बस क्योंकि सुविधा बात
1: एक व्यक्ति 100 में से एक व्यक्ति ने यहाँ से खोद लिया दूसरा वहीं से शुरू करेगा
0: फॉलो करेगा,
1: ये दिक्कत
0: जब तक वो सोचेगा ना भाई कोई भी कर्म करने का पहले सोचेगा 2-3 बार तो उसमें उसका आत्मज्ञान आ जाएगा,
1: तब आएगा,
0: तब जाकर फिर बोला रहे हमें कोई प्रेरणा क्या हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, खुद को समझा जाएगा, कोई दूसरा कोई समझा नहीं,
1: समझना पड़ेगा
0: दूसरा, सरकार
1: समझना खुद पड़ेगा,
0: सरकार
1: से ये चीज मैंने मेरे दिमाग में ये काफी समय से चल रहा था, ये आपके माध्यम से
0: मीडिया के माध्यम से जो कहेंगे तभी मीडिया
1: पा रहा हूँ,
0: बस सरकार भी इसके लिए क्या
1: सोच
0: फिर बहुत कानून तो बन जाता है,
1: नहीं सर कानून तो है लेकिन उसका जो सर उसका एक्चुअल में सर उसका एप्लीकेशन भी सही तरीके से होने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, नहीं नहीं तो उनको खुदाई के लिए मना नहीं कर रहे सर, मैं हमेशा बैलेंस से ही बात करता हूँ, पर जैसे कोई रास्ता है उससे आधा किलोमीटर दूर हो वो एरिया तो निश्चित रूप से उसमें कोई जाएगा नहीं,
0: हमारा कर्म सुखदाई हो ये हमारा दुखदाई न हो, कोई भी करे सरकार करे चाहे हम भी करे,
1: इसका सिस्टम तो कोई ना कोई तय करेगा,
0: और समय करा देगा सर, जैसे हम कहे नहीं करे तो प्रकृति ऐसे कराएगा
1: जी जी जी फिर प्रकृति तो
0: करा
1: तो
0: देगा उसको,
1: इसलिए प्रकृति तो सर बैलेंस करती
0: हम
1: है,
0: चाहे कोई भी हम खिलवे वो हमें,
1: पर हमारा कर्तव्य तो हमको करना है,
0: हमारा कर्म का जो सिद्धांत है सर।
1: जी जी जी
0: जो गड्ढा खोदेगा वो गड्ढा में खुद गिरेगा,
1: पर वो खुद गिरेगा, वो दूसरों को भी गिरा रहा है,
0: दूसरा गिरा रहा
1: है, दूसरों को भी गिरा रहा है,
0: खुद गिरेगा। तो कहने मतलब समझ जाओ, अभी भी प्रकृति आपको इशारा दे रहा है, हमको इशारा दे रहा है, हम समझदार बनेंगे तो इशारा काफी है। और सही बात, जैसे हम क्यों कह रहे हैं आज, कहना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पर्यावरण को बैलेंस लेकर हम लोग सब चलेंगे तो हमें जरूर हमारा इस दुनिया को, इस एरिया को हम हरा भरा और एक स्वर्गमय दुनिया बना
1: सकते,
0: क्योंकि हरा भरी वनस्पति रूप में ग्रीन हाउस बना सकते। जैसे तपोवन आओ देखो, देखो इतना ये कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते,
1: बड़ा नहीं छोटा में लिया ना ग्रीन हाउस, इतना जबरदस्त टर्म आपने काम में लिया है सर। ये ग्रीन हाउस की वजह से ही हम थोड़े से ठीक है,
0: आसपास के लोग भी जा रहा है वातावरण
1: सर, ग्रीन हाउस से जैसे हीट बढ़ती है
0: सर, अभी
1: सर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है सर। तो इस पृथ्वी का टेम्परेचर -19 डिग्री होता सेल्सियस, -19 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता, ग्रीन हाउस की वजह से पृथ्वी ने बैलेंस किया है हमारा ये टेम्परेचर है। अच्छा सर, और अब अगर ये जो है ना ये सर प्रदूषण बढ़ गया तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
0: सही बात,
1: अब घर में फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा।
0: काम नहीं करेगा सर एसी घर में बैठ कर, भाई एक पेड़ जितना ऑक्सीजन देता है
1: उतना
0: एसी घर में कोई कंट्रोल कर पाएगा, करंट नहीं रहेगा तो उसका हालत क्या कर, पेड़ तो काट देते हैं भाई, पेड़ में बहुत पत्ता गिरता है वो गिरता है, अरे वो तो गिरेगा ही,
1: गिरता है तो वो मिट्टी बनाता है, पत्ता गिर के मिट्टी अपघटित होकर मिट्टी बनती है
0: ना।
1: देखिए प्रकृति की चीज अपघटित होती है तो वो मिट्टी बनती है,
0: कितना बड़ी बात है,
1: हमारी अपघटित चीज मिट्टी नहीं बनती,
0: हम जो
1: तो बनाना पड़ता है,
0: हम तो साइंस में जो आपने क्रिएटिव करते इधर उधर मिलावट करके जो बनाते हैं
1: जी जी,
0: मैंने प्लास्टिक
1: जी हाँ जी हाँ
0: फ्लावर
1: हाँ
0: प्लास्टिक पैड
1: हाँ वो सर डिकम्पोज नहीं होता है
0: उसके बाद
1: बहुत मुश्किल है सर,
0: मनुष्य मेड है सर
1: हाँ इसलिए
0: और प्रकृति मेड जो प्रकृति जो बना हुआ उसका
1: तो
0: बहुत
1: ऑटोमेटिक, उसके पत्ते का तो मिट्टी बनता है,
0: मिट्टी बनता है चीज, इसको जो रोजमर्रा के में जो देखते हैं आसपास इर्द गिर्द में जो देखते हैं, जो हमारा साथ काम होता है इस प्रकृति का, उसको थोड़ा सा हम मित्रता का साथ परिवार का साथ ऐसे वो भी हमारा परिवार का एक पार्ट सोच करेंगे तो जरूर आपका अंदर में और प्रकृति भी आपको बहुत कुछ सुख देगा, और कभी भी आपको ऐसे खराब में आपको मृत्यु नहीं होगा,
1: निश्चित रूप से नहीं,
0: प्रकृति का जब
1: आशीर्वाद मिलता है सर,
0: दुआएं मिलता है,
1: मित्र बन करके आपका साथ देगी,
0: बहुत अच्छा बात बता रहे। और क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोता मित्र आज का एपिसोड में खासकर, क्योंकि
1: सर यही कि आप अंत चेतना के साथ में, हम प्रकृति के साथ में मिल करके इस तरह के जो छोटे मोटे प्रदूषण है या इस तरह के इम्बेलेंसिंग जो कार्यकलाप होते हैं उनको जागरूक करें, बातचीत करें, उनको बताएं कि भाई अच्छा करने से हमारा सबका आपके साथ हमारा भी भला होगा, तो वो लोग समझेंगे, समझ विकसित हो जाए लोगों के अंदर, और ये एडवोकेसी के काम तो आपको हमको तो हमेशा करना ही है, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा सर, कोई ना कोई तो जगता ही है, इतना सारा काम होता है तो कोई ना कोई तो जगता ही है, तो उससे फायदा हो सकता है।
0: मेरा भावना ये है कि भाई हम जिस जगह में रह रहे, जिसका साथ रह रहे, उसका साथ अच्छा से रह पाए और मित्रता का हिसाब से, उपकारी हिसाब से रहे, रहे तो उपकारी करेंगे तो उपकार आज नहीं तो कल हमें भी उपकार रिटर्न
1: प्रतिफल के रूप में मिलेगा,
0: जैसे कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, और हम सदा सुखदायी काम करें, कोई दुखी नहीं रहे,
1: कोई दुखी ना रहे,
0: सभी सुखी रहे, और हंसते खुलते बस आए हैं खाली हाथ में, और खाली हाथ में जाना है, लेकिन जाने का पहले प्रकृति का साथ रखकर, प्रकृति में हमको ये पांच तत्व तो मिलना ही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल उसमें मिलना ही है,
0: मिलना ही
1: है, अपने को अपघटित होना है,
0: अपघटित होना है,
1: पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश उसी में अपघटित होगा हमारा शरीर,
0: अपना शरीर तो
1: चाहे उसको जलाओ चाहे कुछ भी करो वो उसी में अपघटित होगा और मिट्टी बन जाएगा,
0: इसलिए हम जो उसके अंदर भी जो चेतना शक्ति है, जो प्राण है, जो विवेक है, वो विवेक में जो संस्कार लेकर जाएगा, फिर अगला जन्म में अच्छा घर में जन्म होगा, सत्ययुग में
1: देवी गुण पुनर्जन्म अच्छा ही अच्छा होगा,
0: और आएगा तो प्रकृति का गोद में वो अच्छा से रह पाएगा, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, चेतना जो शक्ति है जिसको हम प्राण कहते हैं, जीवन कहते हैं, जो विचार कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, जो सभी तो इसी अंतर्निहित गुण से ही विकसित हुए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जीसु क्रिस्ट हो, चाहे गौतम बुद्ध,
1: बिल्कुल
0: तो सभी क्या अपना जिज्ञासा को प्रकृति का साथ, प्रकृति प्रति का साथ इतना स्नेह भाव प्यार रहा, जिसका चलते उनका नाम आज कितना फॉलोअर बन गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि एक पॉजिटिव भावना
1: प्रकृति से प्रेरित है तभी सारा ये रचनात्मक काम कर पाते हैं,
0: नहीं तो करना मुश्किल ही होगा।
1: मुश्किल ही मुश्किल,
0: इसलिए ये तो गॉड गिफ्टेड कहेंगे।
1: गॉड गिफ्टेड ही है, सभी सब गॉड गिफ्टेड ही है। हमको अच्छा करना है, ये तो हमारे हमको करना है।
0: जी जी,
1: ये आपको तय करना है कि आप,
0: क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम नाम है मेरा गांव मेरा अंचल सर,
1: जी हाँ,
0: मेरा एरिया,
1: मेरा एरिया
0: कैसे होना चाहिए, माई एरिया,
1: ऐसा होना,
0: माई एरिया जहाँ हम रह रहे वो एरिया को हम हरा भरा करें, पर्यावरण हमारा शांत
1: सुखद
0: सुखद करे,
1: इसके लिए
0: बहुत अच्छा टाइम, मुझे भी अच्छा लगा ऐसे मेरा गांव और मेरा अंचल ऐसे हरा भरा हो, गोकुल गाँव
1: भी शांति मिलेगी,
0: शांति मिलेगा, और वहाँ जहाँ भी बैठेंगे अशांति आत्मा भी शांत महसूस करेगा। जैसे अभी तपोवन हमें यहाँ पर देखा, देखो सर चार नजर दिखाइए, पूरा जैसे पूरा छत्र छाया में हम बैठे,
1: इसी की छत्र, ग्रीन
0: हाउस, ग्रीन हाउस का मतलब पेड़ का हाउस,
1: बिल्कुल ग्रीन हाउस।
0: तो ये वास्तविकता कैसे हुआ, सभी पॉजिटिव वाले यहाँ कराते हैं और ऊर्जा लेकर परोपकारी, निस्वार्थ,
1: निस्वार्थ,
0: जैसे जैसे आपने एग्जांपल बताया, जो रेती खोदने वाला जो स्वार्थी होगा,
1: हाँ,
0: तो दूसरा को नहीं देखेगा ना,
1: वो नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा।
0: जब खुद को देखो, मैंने आत्मी अपना मन बुद्धि चेतना को देखो,
1: जी हाँ,
0: तो ये होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो और क्या कहेंगे सर, जाते जाते हैं
1: सर, यही कहना है
0: एपिसोड में, क्या
1: यही कहना है कि ये जो इतना नुकसान जो कीटनाशकों से, प्लास्टिक से, रेडियोधर्मी पदार्थों से, धातु अपशिष्ट से, यार और भी जितने प्रदूषक हैं, अन्य प्रदूषकों पर अपन बात करेंगे, और भी जितने भी प्रदूषक, वो व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं,
0: जी
1: बीमार कर देते हैं, कैंसरस कर देते हैं।
0: सर जानते भी है मन से,
1: जानते हैं फिर भी करते हैं,
0: मानते भी है
1: तो भी करते,
0: क्या नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे
1: भाई, वो इसको समझ जाए,
0: अच्छा वो ये वो
1: उस बात को समझ जाए,
0: ये माफी
1: तो नहीं करेंगे, ये महा उनको समझ, और समझ के साथ में
0: करेगा
1: काम करे, समझ भी गए, ज्ञान भी बढ़ रहा है, समझ भी कर नहीं रहे, चल नहीं रहे,
0: तो समझदार उसको थोड़े कहेंगे,
1: चलना पड़ेगा सर।
0: सर समझदार उसको कहेंगे जो बिना कहे करे,
1: वो करेगा, सब करेगा, कोई ना कोई तो करेगा, कोई तो करेगा,
0: हम
1: कोई तो करेगा, और ये खुद के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना,
0: खुद को करेगा,
1: खुद के लिए करना है
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: करना तो है ही है,
0: तो सही बात बताए, और कुछ करे
1: जी,
0: जो अच्छा काम, दुआएं मिले,
1: दुआएं मिलेगी, करेगा तो दुआ मिलेगी।
0: तो ऐसे तो बहुत बातें हैं, और जितने एपिसोड हम तो सीरियस ने किया, हमारा रेडियो मधुबन का एक अच्छा मैंने मसला, जिसको हमें खुराक
1: खुराक
0: मिल गया, और हमारा आसपास गांव वाले, हमारा आबू रोड जो ब्लॉक है, जैसे 32 ग्राम पंचायत है, 84 गांव है, विलेज और ढाणी तो बहुत है, बलिया बहुत है,
1: बहुत।
0: लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल बन जाए, अभी तो ऐसे आबू रोड व सिरोही जिला को पूरा मान्यता है, क्योंकि हरा भरा में जो है शांति का प्रिय ब्रह्मा कुमारी जैसे सभी संस्था का तरफ से, और ये देन है प्रकृति का,
1: जी
0: तो एरिया बहुत अच्छा है, और हमें इसे और अच्छा स्वर्ग बनाए सब मिलकर,
1: ये स्वर्ग सब जगह बने
0: बने, और इसको मॉडल बने,
1: प्रत्येक गांव में बने, प्रत्येक
0: गांव बन जाए, तो जरूर हमारा जो मकसद है, जहाँ हमें सुख शांति चैन में रहे और अच्छा से बन पाएगा। इन शुभ भावना का साथ जो सुनने वाले को भी धन्यवाद देते हैं, इतना ध्यान से सुन रहे, हमारा बात को नहीं देखे, हमारा भाव और भावना को देखे, देखिए क्या चाहते हैं हम
1: जी,
0: तो हम और आप और हम मिलकर ही जरूर
1: मिलकर
0: ही करेंगे, अकेला तो नहीं होगा। तो रेडियो मधुबन एक मंच है, मंच तो सबको खोला है, जो भी स्टेज के माध्यम से अपना बात को रखना चाहे, हार्टी वेलकम है, सुस्वागतम है, मंच खोला मंच है, आपका रेडियो है, आपके द्वारा ही, फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द
1: कम्युनिटी।
0: तो ये सरकार का जो मंशा है, जो आसपास गांव का जो गतिविधि हो रहा है, चाहे कोई भी क्षेत्र में, पर्यावरण क्यों, दूसरा खेती के बारे में भी आप बता सकते हैं, तो इन शुभ भावना का साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, खासकर हमारा श्रीमान भोपाल राम पुरोहित जी, और मुझे दीजिए इजाजत। रेडियो मधुबन इस तरह कोई कोई मुद्दा को लेकर आपका पास पहुंचता है, और आप भी हमारा नंबर में कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर पर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, और फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8302352272, और ऑफिशियल फोन नंबर है 9414151415, यानी 94-14-15-14-15, ये ऑफिशियल रेडियो मधुबन का नंबर है, आपका नंबर है, और मेरा गांव मेरा अंचल का नंबर है। ठीक है,
1: धन्यवाद सर,
0: धन्यवाद,
1: आभार।
2: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जी हिचकी, मारो वादीलो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे, हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक आकम खान

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। दोस्तों, संगीत का सफर जब शुरू होता है ना तो खत्म नहीं होता। वैसे कोई भी सफर हो तो लगता है अरे मंजिल कब आएगी इंतजार रहता है, लेकिन संगीत का सफर अपने आप में मंजिल बन जाता है, क्योंकि इतनी खुशी मिलती है, इतना कुछ मिलता है कि पूरी दुनिया भूल जाती है। कई बार अगर हम उदास होते हैं तो उदास मन को थोड़ा दिलासा मिल जाता है, खुश होते हैं तो खुशी दोगुनी चौगुनी हो जाती है। ऐसे ही गाने हर ओकेजन के लिए बने हैं, चाहे वो सिनेमा के हों, बॉलीवुड के, टॉलीवुड के या हॉलीवुड के हों, या फिर हमारा लोक संगीत हो। और लोक संगीत तो सच में दोस्तों दिल के तार छू जाता है। आपके एरिया का भी कोई ना कोई संगीत ऐसा ज़रूर होगा जो आपके दिल से निकलता होगा, है ना दोस्तों? आपकी यादें, आपकी संस्कृति सभी से जुड़ा होगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे आज की गेस्ट, जिनका नाम है सरोज देवी जी, जो कि पानीपत से आई हैं और बचपन से उन्हें गाने का शौक है, खासतौर से लोक संगीत उनके अति प्रिय है और बहुत सुंदर वो गीत की रचना भी करती हैं और बुलंद उनकी आवाज है। तो आइए उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं, यानी मिलवाते हैं। सरोज जी, आपका रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी दीदी,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे।
0: अच्छे हैं?
1: बहुत अच्छे।
0: बहुत अच्छे हैं सरोज जी। वैसे तो ये गाने का ही प्रोग्राम है, तो आपसे गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन पहले जो हमारे श्रोता मित्र, क्योंकि आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कुछ अपने बारे में आप बताएं, थोड़ा अपना परिचय दें आप।
1: मेरा नाम सरोज है जी, मैं पानीपत से, प्रकाश नगर से, और पहले मैं गांव में रहती थी, और जैसे स्कूल से ही मेरे गाने को शौक था तो वहीं से मेरी शुरुआत गाने की हुई थी।
0: अच्छा।
1: वहीं फिर जो सर थे वो कहते थे भाई माँ आगे ले जाना चाहूँ, तो घर वाले थोड़े से नहीं जाने देते थे उस टाइम, मेरे को सहमत नहीं थे वो इस चीज से भाई लड़की गाए कहीं, इसलिए मेरी ये चीज रुक गई वहीं पे। तो फिर मैंने अपनी शुरुआत जारी रखी, मैंने गाना नहीं छोड़ा।
0: गाना नहीं छोड़ा।
1: हाँ।
0: आप कितने बड़े थे तब जब आपको स्कूल में आप थे गाना गाते थे?
1: उस टाइम तो दीदी मैं 8-9 साल।
0: 8-9 साल के थे। हाँ। तो आपको बुरा तो लगा होगा कि गाने के लिए आगे परमिशन नहीं मिली?
1: दीदी बहुत बुरा लगा था। बहुत बुरा लगा था। ये एक बार नहीं हुआ दीदी, मेरे साथ बहुत बार हुआ।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। और वैसे तो दोस्तों, गीत संगीत हमारे जीवन से कुछ इस तरह जुड़ा है कि जीवन की पहली सांस से लेकर जीवन के सफर में जो भी आयाम आते हैं, समझ लीजिए संगीतमय होते हैं। अगर संगीत हमारे जीवन में ना हो तो कुछ अधूरा सा लगेगा। और सच में ये संगीत दिल को कभी कभी उदासी से भी छुड़ा देता है, और कभी कभी अकेलेपन की तलाश में इंसान निकल जाए तो भी संगीत उसका साथ देता है। समझ लीजिए क्या जादू है संगीत में। तो इसी जादू को हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है मधुबन अनप्लग्ड। और दोस्तों, मैं हूँ आरुषि, और मेरे साथ आज स्टूडियो में जुड़ गई हैं अनुराधा जी। वैसे तो अनुराधा जी पहले भी हमारे साथ इस मंच पर जुड़ चुके हैं, लेकिन काफ़ी समय बाद फिर से आए हैं। तो आइए उनसे मुखातिब होते हैं और गीत संगीत के सफर पर आगे चलते हैं। अनुराधा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू दीदी।
0: कैसे हैं आप, सबसे पहले बताइए।
1: बहुत अच्छी हूँ दीदी, और मेरे सभी प्रिय श्रोताओं मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और याद प्यार, और बहुत ही मतलब उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत प्यार से वो सुनते हैं, और आज मुझे फिर एक बार मौका मिला है अपने सॉन्ग उनके सामने रखने का।
0: जी बिल्कुल। और अनुराधा जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, क्या संगीत आपके लिए क्या मायने रखता है, या क्या आप हमेशा से गाते थे, गुनगुनाते थे, क्या क्या रिश्ता है आपका संगीत से?
1: संगीत मेरे प्राणों में बसता है, अगर मैं ये कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा दीदी, क्योंकि बचपन से ही सिंगिंग मैं करती रही हूँ, और मेरे पापा ने मुझे संगीत की शिक्षा दी है, और संगीत के बिना मैं रह भी नहीं सकती हूँ। हर पल, हर जब भी मुझे टाइम मिलता है, या फ्री होती हूँ, या फिर मैं कभी भी कुछ भी किचन में वर्क कर रही हूँ, तो भी मेरे को सिंगिंग करने का बड़ा अच्छा लगता है मुझे सिंगिंग करना, और मैं करती रहती हूँ रेगुलर। मेरा ये हैबिट है, मेरी सिंगिंग हमेशा करती हूँ मैं।
0: तो पहला गीत हमारे श्रोताओं के लिए आज आप कौन सा लेकर आए हैं अनुराधा जी?
1: सबसे पहले हम परमात्मा को याद करेंगे दीदी।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि उसके बिना तो हमारा कहीं भी, उनसे परमात्मा से जब तक हम मिलन नहीं करते हैं, तो कोई भी दिन या कोई भी शुभ काम हमारा स्टार्ट नहीं होता है। तो आज हम सबसे पहले परमात्मा को याद करेंगे। नाम है तेरा तारनहारा।
0: क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, जितने सुंदर ये शब्द हैं उससे मधुर ये संगीत और गीत होगा। तो बिना देरी करिए, आइए अनुराधा जी की आवाज़ में सुनते हैं ये गीत। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो

0: क्या बात है, बहुत तालियां बनती हैं इस पर तो हम सबकी ओर से, बहुत ही सुंदर।
1: थैंक यू जी।
0: और सच में गीत भी बहुत सुंदर है।
1: परमात्मा की याद में खो जाते हैं इसमें हम।
0: खो जाते हैं। नाम है तेरा तारनहारा, और सच में उसको हमने इतने नाम दिए हैं, वो सच में प्रेम से दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि वो महसूस करते हैं नाम का वो अर्थ है, वो सत्य है। आप जब ये गा रहे थे तो क्या फील कर रहे थे अनुराधा जी?
1: मेरे को फीलिंग में ये आ रहा था कि जैसे भगवान मेरे सामने हैं, उनसे मैं उनको मैं देख पा रही हूँ, उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है कि मेरा उनको मतलब चेहरा मैं देख ही रही हूँ उनका, और मेरा मन कर रहा है कि मैं उनको निहारती ही रहूँ उनके प्यार में, जैसे खो जाते हैं ना भगवान के प्यार में, सेम वो मेरा सिचुएशन थी। मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ पे हूँ, गाने में ही खो गई थी मैं।
0: गाने में खो गए थे
1: ये जी।
0: मतलब कितना अच्छा है ना, जैसे कई बार हमें डर लगता है जिंदगी में, उदास होते हैं, या फिर कई बार ना नर्वस भी होता है, तो ऐसे में ऐसे गीत साथ हो तो सब भूल जाए आसपास, जैसे
1: खुद को भी भूल जाते हैं, इतनी याद में हम परमात्मा ही खो जाते हैं कि खुद का भी हमें एहसास नहीं होता कि हम यहाँ पे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सच में। और अगर बात करें, आपने परमात्मा के गीत से ही शुरुआत करी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कैसा रिश्ता है आपका परमात्मा के साथ, मतलब क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में कुछ बताएं।
1: परमात्मा को मैं अपना पिता भी मानती हूँ और फ्रेंड भी मानती हूँ, है ना, सभी रिश्ते मैं परमात्मा के साथ में मानती हूँ। गुरु भी हैं वो मेरे, है ना, फ्रेंड भी हैं, हमेशा साथ देते हैं। जब भी मुझे कुछ परेशानी होती है तो मैं उनको ध्यान करती हूँ, तो तुरंत वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि आपको करना है, कैसे आपको रास्ता दिखाते हैं, मेरे को मार्गदर्शन जैसे कहते हैं करते हैं,
0: वैसे करते
1: तो मुझे वो हमेशा साथ देते हैं
0: जी।

0: तो दोस्तों बहुत सुंदर गीत भी आप सुन रहे हैं, संगीत भी आप सुन रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ बीच में कि अगर आपको भी संगीत का शौक है, अगर आप गाते गुनगुनाते हैं और आपका कोई भी दिन बिना गीत के नहीं कटता, तो समझ लीजिए आप भी इस कार्यक्रम पर आ सकते हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बस करना सिर्फ इतना है, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए आपका नाम, आपके गांव का नाम। रेडियो मधुबन का नंबर है 94-1415-1415, यानी कि 9414151415। और अनुराधा जी हमारे साथ हैं, हम बात कर रहे थे ईश्वर की और ईश्वर से जुड़े रिश्तों की। सच में उसके साथ वो रिश्ते वही महसूस कर सकता है जिसने वो निभाए हैं, जिसके एग्जाम्पल्स भी हम देखते आए हैं। बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं ईश्वर के प्रेम की और कैसे ईश्वर मदद करता है, तभी इतने गीत भी शायद रचे गए हैं, लिखे गए हैं, वो भावनाएं सत्य हैं
1: जी।
0: अनुराधा जी आप बताएं, जैसे आपको गाने का शौक, मतलब जैसे कोई आपकी स्मृति हो, कोई मेमोरी हो, आपने गाना गाया था बचपन में, या कोई ऐसी चीज़, कोई इंसिडेंट आपको याद हो जो संगीत से जुड़ा हो।

0: जॉब करते थे, श्याम सिंह काम्बोज उनका नाम है, एंड वो बहुत ही अच्छे इंसान कह सकते हैं, कहते हैं ना बेटी को तो फादर अच्छे ही लगते हैं, पर सच में उन्होंने मुझे हमेशा ही आगे बढ़ाया है, और आज मतलब हमेशा आज भी कहते हैं बेटा जो करना है करो आप। तो वो उनको राइटिंग का भी शौक था, और ना रामलीला होती थी पहले टाइम में ना, वो लोग रामलीला में जाते थे तो प्ले करते थे, तो हम लोग भी स्टेज पे रहते थे, तो कभी रावण की सेना में तो कभी राम की सेना में हमारा ये रहता था,
1: रोल रहता था।
0: तो हमने बहुत रोल प्ले किया बचपन से ही, हम एक्टिव थे हर फील्ड में, चाहे वो सिंगिंग का था, डांस का था, या फिर एक्टिंग का था। तो पापा हमेशा साथ रखते थे ना, तो जैसे हम गए हैं फ्रॉक पहनी हुई है, छोटे थे बच्चे, तो बस कहते थे कि आपकी बेटी आपके साथ में, इसको डांस करने के लिए खड़ा कीजिए, तो डांस भी करते थे, पैरों में घुंघरू बांधा और डांस शुरू कर दिया। तो ऐसी हमारी लाइफ बचपन की बीती है कि पापा ने हमें हर कुछ सिखाया, सब कुछ सिखाते हुए हमें आगे रखा हर चीज़ में कि आपको सब कुछ करना है। तो सिंगिंग भी उनसे उन्हीं की देन है।
1: बहुत सुंदर, सच में माँ बाप से बहुत कुछ मिलता है बच्चों को, और ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं, जैसे संगीत का आपका रिश्ता है वो जीवन भर अब साथ है आपके।
0: बिल्कुल दीदी, गजल लिखते थे पापा, बहुत अच्छे गाते भी थे, और जैसे हमें प्रैक्टिस भी कराते थे ना, तो जब तक हम बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे नहीं आ जाते थे ना सिंगिंग में, तो वो तब तक हमें खड़ा रखते थे, कहते भाई पहले प्रैक्टिस अच्छे से करो, मतलब बहुत मेहनत कराई है पापा ने हमारी, तो शायद आज हम सफल भी हो पाए उस चीज को हम देखते हैं।
1: जी, वो बहुत बड़ा कारण है
0: जी।
1: उन्होंने मेहनत करना सिखाया, और ये सब पेरेंट्स जो सिखाते हैं वो सीख हमारे साथ रह ही जाती है। उस वक्त कभी कभी लगता है कि अरे इतनी डांट पड़ रही है, अरे इतने स्ट्रिक्ट
0: है, लेकिन आज समझ में आता है कि हमारे फायदे के लिए थी, बड़े होकर समझ में आता है। बचपन में थोड़ा डरते भी थे पापा से ना, लेकिन अब लगता है कि हाँ हमारे फायदे के लिए किया, जो भी उन्होंने किया आज हम सफल हो पाए,
1: बाद में उनकी कीमत समझ में आती है।
0: लेकिन आज वो लोग खुश भी होते हैं हमारे लिए, पेरेंट्स हमारे खुश भी होते हैं, अब देखते हैं ना कि हम प्रोग्राम देते हैं सिंगिंग करें तो उन्हें कितनी खुशी मिलती है,
1: कितनी खुशी मिलती है, क्या बात
0: है।
1: तो चलिए एक और गीत की ओर आगे बढ़ते हैं अनुराधा जी। कोई ऐसा गीत जो आपके अपने पिता को भी चाहे तो आप डेडिकेट करना चाहें, हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें आज?
0: ये अपने प्यारे श्रोताओं के लिए मैं सॉन्ग सुना रही हूँ, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत ही सुंदर गीत है, और क्या लिखा है, क्या अल्फाज हैं इसके। तो चलिए इसको संगीतबद्ध करते हैं और सुनते हैं आज अनुराधा जी की आवाज में ये प्यारा सा नगमा, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये गीत जब हम सुन रहे थे, आपको कोई ना कोई याद तो आ रहा होगा। हो सकता है वो आपके परिवार का कोई हो, हो सकता है वो ईश्वर हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन जरूर कोई याद आया ही होगा। ये गीत सुना, जब
1: बोलूं तो मैं परमात्मा ही मुझे याद आते हैं। जब मैं कोई भी गीत गाती हूँ तो वो मेरे सामने नजर आते हैं मेरे को, और लगता है कि हाँ, उन्होंने जीवन में सच में हमारे रंग भरे हैं। जो हम हमेशा ही खुश भी रहते हैं तो सब उन्हीं की देन है। हमें खुशी भी मिली है या जो भी कुछ हमें मिलता है लाइफ में अपनी, वो सब परमात्मा की ही देन है।
0: परमात्मा की देन है, बिल्कुल सच में। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, कितना ये सत्य है विचार करें तो। और इतना कुछ हमें मिला है परमात्मा से, प्रकृति से, जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। ये गीत लिखा भी बड़ा खूबसूरत हुआ है,
1: वर्डिंग
0: बहुत बहुत ही सुंदर है। अनुराधा जी, गाना भी आपने बड़ा ही अच्छा गाया। आपके फेवरेट सिंगर कौन है, मैं ये भी जरूर जानना चाहूँगी।
1: वैसे अलका याग्निक जी को मैं बहुत सुनती हूँ, और मतलब उन्हीं की थोड़ा सा कोशिश भी करती हूँ उनके जैसा गाने की। मैं गा तो नहीं पाती उनके जैसा, लेकिन वो मेरी फेवरेट सिंगर हैं। बहुत अच्छा सिंगिंग करती हैं, बहुत
0: हाँ, बहुत बहुत सुंदर आवाज़ है उनकी। और मुझे लगता है हर तरह के गानों में जैसे वो फिट हो जाती है उनकी ना आवाज़, इतनी स्वीट है। जी जी जी,
1: मतलब सिंगर तो सभी अच्छे हैं। लता दीदी बहुत अच्छे सिंगर थे।
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल, लेजेंड्स हैं वो,
1: ही नहीं है
0: बिल्कुल।
1: लेकिन फिर भी हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सा भी हम उनको फॉलो कर पाएं अपनी लाइफ में।
0: बिल्कुल सही बात है। और सच में ये लोग बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आज भी उनके इंटरव्यू सुनते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने शुरू में नहीं मेहनत की, आज भी करते हैं, रियाज करते हैं बकायदा। आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ उस बारे में भी बताइए।
1: दीदी, मेरी प्रैक्टिस का ये रहता है कि जब भी मैं किचन में वर्क कर रही हूँ, या फिर मैं फ्री हूँ, या फिर मैं मतलब वॉकिंग के लिए जा रही हूँ कहीं भी, तो भी मेरे को सिंगिंग करने की हैबिट है।
0: अच्छा।
1: डेली सिंगिंग करने की मेरे को रहता है कि मैं करनी है, सिंगिंग प्रैक्टिस करनी है। और सुबह का रियाज तो जरूरी होता है इसमें।
0: अच्छा, कैसे कैसे रियाज करते हैं आप?
1: जैसे सा का रियाज करना होता है इसमें, एक ओम का। अगर आप ओम का डेली रियाज करेंगे तो फिर वो अच्छा रहता है सिंगिंग के लिए, बहुत बेस्ट रहता है आपकी। मतलब थोड़ा सा ना, जैसे आप सिंगिंग करते हैं तो वो सांस किसी किसी का टूटता है, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है इससे, मतलब एंड हो जाता है उसका। आप ओम का डेली रियाज करेंगे तो बहुत परफेक्शन आता है सिंगिंग में।
0: अच्छा।
1: और सा का रियाज मेन है।
0: अच्छा। तो जैसा आपने कहा कि वो मतलब सांस जो है उस पे पकड़ आ जाती है, फिर उस अभ्यास से, रियाज से।
1: लंबा हमें कोई भी आलाप लेना तो वो ले सकते हैं जी, से अगर हम ओम का डेली करते हैं जाप तो।
0: पर निरंतरता जरूरी,
1: निरंतरता जरूरी है हर चीज में। जितना हम कहते हैं दीदी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये जो भी कहावतें हैं सब कुछ किसी बेस पे ही आधारित होती हैं। तो प्रैक्टिस हम जब करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, हमें सक्सेस जरूर होंगे हम, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें डेली रूटीन में उसको फॉलो भी करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: और कुछ जैसे खाने की चीजों पे बहुत परहेज करना पड़ता है।
0: अच्छा, क्या परहेज करते हैं?
1: जैसे कि ठंडा पानी नहीं आपको पीना है, और आपको आइसक्रीम भी अवॉइड करनी पड़ेगी, अचार आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सिंगिंग करनी है तो, वरना सब कुछ खाएंगे तो फिर ये नहीं कर पाएंगे आप सिंगिंग।
0: हाँ, वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है,
1: सोचना पड़ता है। लस्सी नहीं पीनी है, मतलब अच्छा। हमें पता होता है जब प्रोग्राम देना है तो कुछ भी ऐसा नहीं लेना जो हमें नुकसान देगा, मतलब जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है
0: जी,
1: तभी हम कर पाते हैं। अगर कुछ भी ऐसा कुछ ले लिया तो फिर वो सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है,
0: डिस्टर्ब हो जाता है। आप गला साथ नहीं देगा तो फिर गाना कितना भी अच्छा आता हो उसको गा नहीं पाएंगे उस वक्त।
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का मेन, इसमें सिंगिंग में अगर आपको करियर बनाना है तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें ये
0: जी। अनुराधा जी, गाने जो बनते हैं बहुत अलग अलग विषयों पर भी बनते हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो रेडियो मधुबन पर भी, जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं, क्योंकि वो विषय ही ऐसा है जिसको हम नशा मुक्ति कह सकते हैं कि नशे की चपेट में एक बार इंसान आ गया तो उसका जीवन, उसके ना सपने रहते हैं, ना रिश्ते रहते हैं, ना उसका स्वास्थ्य रहता है, कुछ भी नहीं बचता जैसे। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं?
1: देखिए, जिन लोगों के घर पे इस तरह की स्थिति होती है, जो लोग नशा करते हैं, उनकी फैमिली का कुछ भी फ्यूचर नहीं होता है, बच्चों की कोई लाइफ नहीं होती है, सब लोग परेशान होते हैं, वाइफ भी परेशान होती है, खुद जिसको नशे की लत लग जाती है ना वो भी परेशान रहता है। वो चाहता भी है छोड़ना कि नहीं, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो इतना गिर जाता है उसके चारों साइड से कि वो छोड़ना भी चाहे तो अभी छोड़ नहीं पाता है। एक तरह से बच्चे भी परेशान हैं, परिवार पूरा परेशान ही रहता है। हर कोई ये चाहता है कि किस तरह छोड़े, पुरानी तरह से भाई ठीक होके आए वापस। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, सभी का लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है
0: जी। यहाँ भी मुझे लगता है रेडियो मधुबन पे भी हमने जो डॉक्टर से बात की उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये भी एक बीमारी है, आप उनसे नफरत ना करें जो नशा करते हैं, उनको बार बार कर्स ना करें, गलत शब्द ना बोलें उन पे, उनको मदद करने की अगर हमें कोशिश करनी है तो हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि जैसे बीमार व्यक्ति से बात करते हैं वैसे भी बीमारी है तो वो उसको ठीक करना होगा, ये उन्होंने समझाया था। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, ये अच्छी बात लगी।
1: उनको जितना हम प्यार से ट्रीट करेंगे ना उनको, बिल्कुल उनको फील नहीं होने देंगे कि भाई वो गलत है या वो गलत कर रहे हैं, तो शायद वो चेंज हो जाए और छोड़ भी पाए। अगर हम उनको प्यार से उनकी हेल्प करेंगे, उनको समझाएंगे, तो मे बी वो छोड़ दें। मतलब टाइम लगेगा पर समझेंगे,
0: पर समझेंगे,
1: क्योंकि प्यार से तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप डांट के वो काम कराएंगे तो शायद वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये है,
0: और हमारा पर्पस तो ये है कि वो छोड़ दें, इस लत से बाहर आ जाएं, निकल जाएं, तो उसके लिए कुछ अलग तरह से प्रयास करना होगा। गीत संगीत भी बड़ा सुंदर एक साधन है इस प्रयास का। क्या कोई गीत है आपके खजाने में?
1: हाँ, इससे दीदी मैंने एक सॉन्ग लिखा है नशा मुक्ति पे, तो वो मैं सभी अपने प्रिय श्रोताओं को सुनाती हूँ, आप भी सुनिए।
0: जरूर जरूर, बिल्कुल।

आज कसम ये खानी है। देखूंगी मैं जब जब भी नशा करते हुए लोगों को, रोकूंगी उन्हें समझा।

इसके बिछाए जाल में भारत माँ के लाल, तुम ही हो देश को तुम्हें।

आज कसम ये खानी है। रोकेंगे हम नशे को मिलकर, कलयुग का

0: आज कसम ये खानी है।
1: बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर। मतलब आपने एक एक शब्द जो कहा और जैसे उसको गाया, वो सच में ये महसूस होता है कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है, अगर वो ये फील कर रहा है तो सच में आज वो कसम खा ही ले, आज वो ये डिसाइड कर ही ले कि नहीं करना है,
0: थैंक यू दी,
1: क्योंकि
0: ये वास्तव में बोल
1: कल
0: के
1: कभी नहीं
0: आप।
1: आता है।
0: हाँ जी दीदी, मैं चाहती हूँ कि जो भी इस गीत को सुने ना वो कभी नशे की ओर जाए ही नहीं। इसी भावना, शुभ भावना के साथ में मैंने ये सॉन्ग लिखा है
1: जी
0: कि जो भी सुने ना वो तो नशा कभी करे ही नहीं और नशे की ओर जाए भी नहीं, और सभी सुने इस सॉन्ग को ना, और जो जिनको जानते भी ना कोई नशा करता भी है उसको भी सुनाए तो शायद वो बच जाए उस चीज से ना।
1: अनुराधा जी, कि क्यों लिखा था आपने, मतलब क्या प्रेरणा थी इसके पीछे?
0: हाँ जी दीदी, मतलब मैं देखती थी ना छोटे छोटे बच्चों को भी नशा करते हुए, तो मैं सोचती थी कि इसलिए मैं गीत लिखूंगी बच्चों के लिए भी, या समाज को एक मतलब मैसेज देने के हिसाब से मैंने ये सॉन्ग लिखा था कि एक अच्छा मैसेज समाज के लिए जाएगा, शायद कोई जो नशा करता भी होगा उसने सुन भी लिया, शायद वो बच जाए इससे, मतलब छोड़ दे नशा, और शायद उसको याद आ जाए कि हाँ मैं परमात्मा मतलब मैं भारत का बच्चा हूँ, मुझे देश के लिए कुछ करना है, नशे की ओर जाके अपना जीवन को मुझे खराब नहीं करना है, मेरा परिवार भी बर्बाद होता है उससे, मतलब फैमिली मेरी सारी परेशान होती है, तो जो मैं किसी को दुख देता हूँ उससे मैं भी दुखी हूँ, दूसरा भी सामने वाला भी दुखी है, तो इस सबसे ये सब कुछ देख के ना मैं देखती थी, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मतलब एक साइड में कोने में खड़े होकर नशा करते हैं तो दुख होता था देख के ना, तो सोचा था कि एक मैसेज समाज को देना है, एक सॉन्ग के जरिए ही मैं दे सकती थी, तो इसलिए मैंने ये सॉन्ग लिखा था।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा अनुराधा जी। और हम यहाँ भी देखते हैं, और ये भी पता चलता है बच्चे नशा करना सीखते कहाँ से, वो जब अपने माँ बाप को देखते हैं करते हुए, या उनके माँ बाप
0: जी
1: कभी कभी उनसे ना, उनको लगता है छोटे ऐसे कुछ मंगा लो सामान, कि तंबाकू ले
0: बिल्कुल
1: आ, ये ले आ, तो वो वहाँ से उनकी क्यूरियोसिटी जग जाती है। और जब उन्हें लगता है कि भले उनके माता पिता कहते हैं नहीं करो, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ठीक ही होगा।
0: घर में अगर बड़े कर रहे हैं तो बच्चे तो नेचुरल करेंगे।
1: बिल्कुल, तो अगर बच्चों को आपको नहीं सिखाना है तो आपको अपना नशा बंद करना होगा।
0: हाँ जी दीदी, अब नशा तो हर तरह का होता है, देखिए फोन का भी एडिक्शन ही है एक तरीके से
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: और अगर हम पेरेंट्स ही फोन यूज कर रहे हैं तो हम मतलब बच्चे फिर कैसे नहीं करेंगे, आप बताइए ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फोन को यूज नहीं करें तो हमें सबसे पहले बंद करना पड़ेगा फोन को यूज करना, एडिक्शन तो हर मतलब बहुत कुछ है, नशा तो बहुत तरह का
1: ये
0: है।
1: मेरी सही बात है। मुझे तो एक बात याद आ गई, एक बच्चे ने अपनी टीचर को पूछा, मैम आपने सिखाया था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो बोलते हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, सच बोलना चाहिए। तो उनको याद, तो बोला कि नहीं मैम, कल तो आप ना छुट्टी में मुझे, आपने ली छुट्टी ली थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल तो मैंने आपको मॉल के पास देखा था, तो आपने तो झूठ बोला, और फिर आप बोलते हैं कि सच बोलना चाहिए।
0: जी
1: तो वो टीचर भी रुक गई सोच के कि अरे ये अब इसको कैसे समझाऊं।
0: बिल्कुल
1: और इसीलिए जो कर्म में नहीं आता वो बात फिर
0: बिल्कुल,
1: है ना, विश्वास भी नहीं
0: बच्चे
1: करता
0: ऑब्जर्व
1: कोई
0: करते
1: उस
0: हैं
1: पे।
0: सब कुछ, बोलते कम है बच्चे लेकिन ऑब्जर्व सब कुछ करते हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे हमें देख रहे हैं, तो हमें
1: देख
0: जो हम
1: रहे
0: जो
1: हैं,
0: करेंगे वही बच्चे करेंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो करवाना चाहते हैं वो पहले
0: वो
1: खुद
0: हमें
1: करना
0: करना
1: होगा।
0: पड़ेगा बिल्कुल दी।
1: सच में। अच्छा अनुराधा जी, बहुत सारी चीज़ें हैं संगीत में, आपने बताया आपको पसंद कौन है, आपने इंस्पिरेशंस के बारे में भी बात किया, और आपके थोड़ा सा और बात करते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या है, मतलब आगे अपने जीवन के लिए आपने क्या सोचा है, क्या आपने संकल्प किया है, कुछ इस बारे में बताएं।
0: मेरा तो एम यही है कि मैं वैसे तो मेरे को सॉन्ग लिखने का शौक बहुत ज़्यादा है, तो यही है कि हर किसी भी विषय पे मुझे सॉन्ग लिखना ही है, देश के लिए जहाँ भी ज़रूरी है वो, कोई भी मतलब किसी भी तरह का सॉन्ग है, चाहे आप नशा मुक्ति के लिए कहिए या फिर कोई देश प्रेम का सॉन्ग कहिए या फिर परमात्मा की याद का सॉन्ग कहिए, सॉन्ग लिखना मुझे बहुत पसंद है, तो परमात्मा की याद में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, कुछ भी सॉन्ग परमात्मा के लिए लिखना या उनको फीलिंग में ला के लिखना, और लोगों का यही है कि सबका सबकी सेवा करना, किसी भी तरह से सेवा करना मेरा भाव, सेवा भाव मेरा रहता है हमेशा ही, सबका साथ देना, जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ जाके उनकी सेवा भी करना चाहती हूँ कि सेवा को दूँ लोगों को अपनी, मतलब अभी मैं ठीक हूँ, कर सकती हूँ, फ्री भी हूँ, बच्चे मेरे बड़े हैं, 3 बेटे हैं मेरे, तो मेरे पास टाइम भी है, अभी पहले टाइम नहीं होता था लेकिन अभी मैं सेवा करना चाहती हूँ समाज की, सोशल वर्कर की तरह,
1: क्या बात है,
0: तो कर भी रही हूँ जितना मुझसे हो पाता है, आगे भी करूँगी।
1: ये बहुत सुंदर लक्ष्य है आपने। देखिए कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन आपने समाज सेवा का लक्ष्य रखा है, आप कर
0: बिल्कुल
1: भी रहे हैं
0: बिल्कुल
1: और भी करना चाहते हैं आप, तो बहुत वंडरफुल लक्ष्य है
0: थैंक यू
1: आपका,
0: दी,
1: एंड हम ज़रूर ये विश
0: परमात्मा
1: करेंगे
0: मेरा
1: कि आप
0: साथ दे
1: सफल
0: इसमें
1: हों
0: तो मैं
1: इसमें।
0: जरूर अच्छे से करूंगी। जो भी मुझसे हो पाएगा समाज के लिए मैं जरूर करूंगी।
1: बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है अनुराधा जी, कहाँ ज़रूरत है समाज में बदलाव की? क्या ऐसा काम है जो आपको लगता है कि आप भी करना चाहते हैं और हमारे श्रोताओं को भी करना चाहिए?
0: सबसे पहले आज के टाइम में जो मैं देखती हूँ ना समाज में जो है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो आजकल जो शादियाँ आप देख रहे हैं ना होती हैं, तो बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में होते हैं वो उनको ये मतलब लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है। जो आजकल फैमिली बन रही है ना, आते हैं भाई, तो उनको सोचना चाहिए कि नहीं, जैसे हमारे खुद के कोई भी मतलब लड़की शादी होकर आती है उसको सोचना चाहिए जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, ऐसे ये भी मेरे मम्मी पापा हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना है। आजकल यही ज़्यादा देखने में आ रहा है कि मतलब पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है, उनको वृद्धाश्रम में भेजा जाता है, तो वो बहुत गलत सीन होता है। वो मैं मतलब मुझे दुख होता है बहुत देख के ना, तो मैं उन लोगों का साथ जरूर देना चाहूँगी कि जो ऐसे मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी सबको कि अपने पेरेंट्स का प्यार कीजिए, उनका साथ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप नहीं समझ सकते अगर वो हमारे साथ हैं तो हम घर से बाहर कहीं भी जा सकते हैं, आप फ्री माइंड होकर जा सकते हैं कि वो घर में हैं सब कुछ संभाल लेंगे। अगर वो नहीं होंगे ना तो आप उनकी वैल्यू तब समझेंगे, अभी आप उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं लेकिन बाद में आप उनकी वैल्यू समझेंगे। तो ऐसा देर करने से फ़ायदा नहीं है, आप अभी आपके साथ में वो है, उनकी केयर कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, उनका साथ रहिए, उन्हें टाइम दीजिए अपना, क्योंकि वो उनके हकदार हैं और बदले में आपको उनसे कितना कुछ आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। तो मुझे वो सब देख के बड़ा दुख होता है जब मैं देखती हूँ समाज में कि पेरेंट्स की कोई वैल्यू आजकल डाउन होती जा रही है बहुत, जबकि पेरेंट्स सबसे ऊपर होने चाहिए।
1: बिल्कुल आप सच कह रहे हैं अनुराधा जी, और एक बार हम याद भी कर देना कि बचपन में उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, वो आप याद तो करिए। पता नहीं कौन सा हम जीवन की दौड़ में आगे निकल गए हैं कि आसपास के नज़ारे भी नहीं दिखते, होता है ना कभी कभी हम बहुत स्पीड में होते हैं तो दिखता नहीं है कि आसपास क्या है, पीछे क्या गुजर गया, मगर उनके बिना तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते जहाँ है।
0: दीदी ये भी है जैसे आज वो लोग ऐसा कर रहे हैं, कल को उनके साथ भी तो होना है, कल को वो भी बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे,
1: बिल्कुल,
0: तो वो कैसे सोचेंगे कि हम जो आज वो बच्चे देख रहे हैं वही उनके साथ में होने वाला है। तो उस चीज को अगर आज समझते हैं तो आज समझ जाएंगे, वरना पछताएंगे बाद में। फिर कहते हैं ना आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत,
1: बिल्कुल,
0: तो वो वाली फिर कहावत आ जाती है उसमें। तो संभलना अभी का टाइम है। मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स की सब लोग केयर कीजिए, बहुत परमात्मा का पता सर पे हाथ समझिए कि वो आपके साथ हैं, उनको साथ रखिए, उन्हें प्यार दीजिए, उनकी केयर कीजिए। तो आपसे ज्यादा मतलब भाग्यवान कोई है ही नहीं जिनके पास पेरेंट्स हैं।
1: सही कह रहे हैं,
0: तो आप ध्यान रखिए उनका। मैं यही श्रोता मित्रों को अपने कहना चाहूंगी कि आप उनका ध्यान दीजिए,
1: बिल्कुल उनके पास बैठिए, उनसे थोड़ा बातें कीजिए,
0: टाइम निकालिए
1: उनके लिए भी। सबसे ज्यादा तो यही होता है, हाँ टाइम नहीं है आज लोगों के पास, बैठ के बात करने का समय नहीं है।
0: वो लोग बुजुर्ग जो होते हैं ना घर में कि हमारे पास थोड़ी देर बच्चा बैठे बात करे हमसे, वो सिर्फ इसी में खुश है कि पापा आप कैसे हो, मम्मी आप कैसे हो, इतना सुन के वो खुश हो जाते हैं, उन्हें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए।
1: लेकिन थोड़ा वक्त जरूर दीजिए उनके पास, जाके बैठिए, नहीं समझ में आ रहा आपको कुछ भी नहीं तब भी बस बैठिए उनके पास जाके, है ना, उनसे उनका हालचाल पूछिए, कुछ पुरानी बातें करिए, कुछ नया आप क्या करने वाले हैं वो शेयर कीजिए, उनको कितनी खुशी होगी कि आप उनसे अपना बांट रहे हैं अपने थॉट्स को, कितनी ज़रूरी चीज़ है और हम रियलाइज ही नहीं करते।
0: हाँ जी, बाद में पछतावा होता है कि शायद हम समय पहले रहते हुए हम जाग जाते तो सही रहता, लेकिन तब देर हो जाती है, तब कोई फायदा नहीं है उसका। आज समझ जाए तो अच्छा है, वो भी पेरेंट्स भी अपनी लाइफ जी लेंगे और आप लोगों को भी उनके मतलब साथ हमेशा रहेगा, प्यार भी बना रहेगा।
1: बिल्कुल, और माता पिता की दुआओं से ना बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है।
0: वो लोग तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, मतलब वो बच्चे भले ही उनको कुछ भी बोल दे लेकिन वो तो आशीर्वाद ही देते रहते हैं कि भाई तुम खुश रहो, तुम सुखी रहो। तो ये है कि उनका साथ बहुत जरूरी है,
1: बहुत बहुत जरूरी है। सच में माता पिता जितना प्यार कौन कर सकता है, तो ज़रूर आज से ही मैं तो कहूँगी दोस्तों कल का भी इंतज़ार मत कीजिए, उनके साथ वक्त ज़रूर गुजारिए, उनको थोड़ा बाहर भी लेके जाइए, उनके साथ वॉक करिए, कुछ करिए उनके लिए ज़रूर,
0: आप ले जाइए आउटिंग कराइए,
1: आउटिंग कराइए उनको, आपका जीवन और बेटर हो जाएगा इसकी तो गारंटी है। तो सच में माता पिता का ये खूबसूरत रिश्ता जो जैसा आपने शुरू में कहा था परमात्मा के साथ भी आपने भाते हैं, है ना, वो भी पिता है,
0: बिल्कुल प्यार ऐसे ही करता है मतलब बच्चों को ना, उनको वो हम परमात्मा को हम गुस्सा भी कर देते हैं आपने ऐसा किया, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे लिए हमेशा ही रहता है, वो तो हमें बराबर सेम उसी नजर से देखते रहते हैं, हम ही चेंज होते रहते हैं कभी।

0: अच्छा किया तो ठीक है, आपने अच्छा किया, कुछ खराब किया तो आपकी वजह से बाबा खराब हो गया, या परमात्मा आपने तो ऐसा हमारे साथ में ऐसा कर दिया। लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, कर तो हम ही रहे हैं ना, हम तो दोष भगवान को देते हैं, लेकिन कर तो हम सब हमारे कर्मों का फल है, जो भी हम कर रहे हैं, जो हम पा रहे हैं। हम परमात्मा को दोष तो फालतू में देते हैं, मतलब उनका कोई वो नहीं है इसमें,
1: सही
0: तो
1: बात है।
0: हमें आशीर्वाद ही देते हैं,
1: परमात्मा,
0: हमारे लिए
1: हाँ
0: अच्छा चाहते हैं,
1: परमात्मा के पास हमारे हमें देने के लिए प्यार ही प्यार
0: प्यार ही
1: है।
0: प्यार है, असीम प्यार है, कहते हैं परमात्मा आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, वो तो हमें
1: बिल्कुल
0: देता ही रहता है,
1: बिल्कुल।
0: हमें लेना आना चाहिए उनसे, बस ये है।
1: तो कहीं अगर दोस्तों आपको लग रहा है ना प्यार की कमी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है मन उदास है, या कुछ खाली खाली सा है, कोई भी आपके ज़िंदगी में समस्या आपको लग रही है, तो समझ लीजिए प्यार अवेलेबल है आपके लिए। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ना है। और अनुराधा जी, जाते जाते बहुत सुंदर ये सफ़र रहा आज आपके साथ, बड़ा मज़ा आया
0: थैंक यू दी।
1: बातें करके, संगीत सुन के। जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत आज सुनाएंगे?
0: परमात्मा के लिए बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, तो यही मैं आपको सुनाऊंगी, और श्रोता मित्र बहुत प्यार से सुनेंगे मेरे को, और हमेशा मिलेंगे, और मेरे से हम आगे भी आपसे मिलने के लिए मैं आऊंगी, तो बड़े ध्यान से आप इसको बिल्कुल प्रभु में ना मगन होके इस सॉन्ग को आप सुनिए, तो आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। तो मैं शुरू करती हूँ अपना सॉन्ग ये।
1: जरूर।

0: ऐसे गीत जब सुनते हैं तो उसके बाद लगता है कुछ कहा ना जाए, बस उनकी जो यादें हैं, वो जो शब्द हैं, वो जो संगीत है, वो स्वीटनेस है, वो घुली रहे हवाओं में, वो घुली रहे हमारे मन में और हम उसी में खो जाएं। तो थैंक यू सो मच अनुराधा जी का, आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत मधुर यात्रा पर हमें आप लेकर गए और हम यही विश करते हैं आपका जो समाज सेवा का लक्ष्य है वो भी पूर्ण हो, साथ साथ ये संगीत का सिलसिला भी हमेशा जारी रहे।
1: थैंक यू दीदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और श्रोता मित्रों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमेशा प्यार से मुझे सुनते भी हैं श्रोता मित्र, जो भी मुझे सुन रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर मिलेंगे हम आपसे, जल्दी ही मिलेंगे शायद,
0: बिल्कुल
1: है ना। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आप इतने प्यार से मुझे बुलाते हो और बहुत ही अच्छा लगा आज
0: हमें
1: का।
0: भी बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया
1: जी।
0: लेकिन वक्त इशारा कर रहा है कि भाई समय हो चुका है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो इजाज़त लेनी होगी अपने दोस्तों से, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मधुबन अनप्लग्ड पर फिर से हाजिर होंगे कुछ नए गीतों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों देरी मत करिए, हमें मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्ममंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार डॉक्टर प्रीति जयकर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रीति, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल ठीक, नमस्ते रमेश जी, ओम शांति। अर्चना जी को, कल्पेश जी को बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ दूसरी बार हूँ शो पे, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, आई थिंक ये आपका एक सिग्नेचर लाइन है, वो सुन के आपकी वो आपका एक स्माइल है साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपका आई थिंक एक ही शो है जो मैंने आई थिंक इतने एपिसोड्स देखे हैं, और कोई एक आपका गेस्ट सेम नहीं है, हर एक का अलग। आई थिंक अर्चना हैज बीन वेरी वेरी वेरी गुड एट गेटिंग सच गुड स्पीकर्स। तो एक एक आपके सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इट इज सो डाइवर्स, एंड डाइवर्सिटी में उनका पैशन इतना आगे आता है, इट इज रियली वेरी यूनिक। तो उसके लिए बहुत बधाई,
1: थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर प्रीति के स्वागत में आज हमारे साथ कल्पेश जी जुड़े हैं, एक बहुत ही खूबसूरत गीत।
3: नमस्कार
1: जी भी है। नमस्ते नमस्ते कल्पेश, मैं चाहूंगा स्वागत पेश कीजिए।

0: थैंक यू,
1: थैंक यू
0: आई होप
1: थैंक
0: यू
1: यू।
0: लाइक्ड इट।
1: या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने नैरेट किया, थैंक सो मच। बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामना। तो आइए मैं फिर से अभी डॉक्टर प्रीति जी को जोड़ना चाहूंगा आप सभी के साथ में। आज हम लोग जिस विषय को लेकर बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन चीज है, जैसे कि थायराइड के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर प्रीति जी से। तो प्रीति जी, मैं चाहूंगा कि थायराइड ये क्या है, इसके बारे में बताइए।
2: रमेश जी, अपना बेसिकली अभी क्या है कि वी हैव टेकन, अभी इंग्लिश में बोलते हैं कि वी हैव टेकन आवर बॉडी आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। अपना हार्ट अपना काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, पैर काम कर रहे हैं, तो वी फील दैट एवरीथिंग इज ओके। लेकिन ये ऐसा है कि इसको सब कंट्रोल या बैलेंस में लाने के लिए हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हम हिंदी में उसको अंतस्त्राव ग्रंथि बोलते हैं, जो गले के निचले हिस्से में रहता है, जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अभी मैंने मेरा ट्रेनिंग सब बम्बई में किया है, सर्जरी के बाद 2 साल टाटा में फेलोशिप किया था हेडनेक में। अभी ये हेडनेक डिपार्टमेंट में काफी पेशेंट जो है थायराइड के पेशेंट आते थे कैंसर के, और वो काफी लेट स्टेज में आते थे, उनके सर्जरीज जो है जो जल्दी अगर आते थे तो लेस कॉम्प्लिकेशन लेस साइड इफेक्ट से हम ट्रीट कर सकते थे, लेकिन काफी लेट आते थे। तो तभी भी ऑलमोस्ट 20 इयर्स नाउ जब मैं टाटा छोड़ा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जागरूकता अभी भी थायराइड के लिए काफी कम है। तो आपके ये शो में जितना हमें हमारे पास टाइम है, ग्लैंड तो ग्लैंड का ऐसे वो ग्रंथि का काम समझाना बहुत मुश्किल है लेमेंस टर्म में, लेकिन अपना जो बॉडी का संतुलन है, हर एक कोशिका हर एक ऑर्गन को जो कंट्रोल करता है बैलेंस लाता है वो ये ग्लैंड है। अभी अगर आप अडल्ट मेल को ले या आप यूजुअल हेल्थी मेल को ले जिसका वजन अगर 60 किलो का है, तो क्या आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये ग्लैंड का वजन कितना हो सकता है? जस्ट अ वाइल्ड गेस, कितना हो सकता है? ये 25 to 30 grams का ग्लैंड है सिर्फ। आप सोचिए 60 किलो हेल्थी अडल्ट मेल में 25 से 30 ग्राम का 2 इंच का एक छोटा ग्लैंड जो है ये नीचे अपने गले के नीचे इसलिए में रहता है, और जो हमारी सांस की नली है उससे वो चिपका हुआ रहता है, और तितली के शेप का बोलते हैं हम। इसलिए मैंने इसका एक्चुअली शील्ड करके इसका जो टॉपिक दिया है वो जैसे ढाल बोलते हैं वैसे इसका चिपका हुआ रहता है। नॉर्मली आप में हमें ये दिखता नहीं है, लेकिन इसका जो कंट्रोल अपने बॉडी पे है, आपका सोना, आपका उठना, आपका जो स्किन का टेक्सचर है, आपका आवाज है, आपका जो एनर्जी है, आपका जैसे आप इतने प्यार से लोगों को ग्रीट करते हैं, आपका वो सिग्नेचर लाइन, आपका पैशन एनर्जी, सब का जो मेन कंट्रोल है वो ये ग्लैंड करता है। एक ही ग्लैंड नहीं है अपने बॉडी में, अपने पास बहुत सारे ग्रंथियां हैं, लेकिन ये दूसरे ग्रंथि आप लेके जैसे पैनक्रियाज है, उसका ज्यादा कंट्रोल रहता है शुगर पे। आपका डायबिटीज और पैनक्रियाज से आपको डेफिनेटली उसकी इसकी थोड़ा कुछ मालूम रहेगा। लेडीज में ओवरीज रहती है, जेंट्स में टेस्टीज रहती है, ब्रेन में 2-3 ग्लैंड्स रहते हैं, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, लेकिन सबका एक एक जो हार्मोन रहता है उसका फंक्शन लिमिटेड रहता है कि आगे पैंक्रियाज है वो शुगर पे कंट्रोल करे, या ओवरीज का जो हार्मोन्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कंट्रोल करे। तो ये थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो पूरे शरीर में हर कोशिका सर से लेके पैर तक, अपने चमड़ी से लेके आंखों तक, अपने मूड से सबसे संबंधित रहता है, और जब ये हेल्थी रहता है हम हेल्थी रहते हैं। तो इसकी जानकारी, इसके जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा समझना, सतर्क रहना बहुत जरूरी है कि हमें आगे चल के ट्रीटमेंट भी जल्दी मिले, और इसका एडवांटेज ये है कि जल्दी पकड़ में आने में ट्रीटमेंट भी बहुत ही आसान है। तो ये ग्लैंड, इसके सिम्टम्स, इसके फंक्शंस, इसके प्रॉब्लम्स हैं, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि हम हेल्थी कैसे रहे।
1: बिल्कुल डॉक्टर प्रीति, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये ग्रंथि है जो बहुत ही कम वेट का है, लेकिन इससे पूरा जो है बहुत सारे काम होते हैं जो आपने अभी जिक्र किया। तो अब बात आती है कि अभी कॉमनली जैसे कि चलो थायराइड का ही बीमारी है ये समझना बहुत जरूरी है पहली बात तो कि ये थायराइड के कारण हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो फिर चीजें आगे बढ़ेगी नहीं। तो प्रॉब्लम को कैसे से हम लोग कॉमनली देख सकते हैं, समझ सकते हैं?
2: बिल्कुल, अभी जैसे हमने डिस्कस किया ये पूरे शरीर पे काम करता है, तो इसके सिम्टम्स भी जो है वो सामने आने के लिए भी काफी टाइम लगते हैं, लेकिन लकीली जो 30 साल या 40 साल पहले सिवियर डिजीज के साथ आते थे कि बाबा बहुत ही थायराइड का इश्यू है और फिर वो डायग्नोस हो रहे हैं, वो लकीली आज अनफॉर्चुनेटली जो बोले कि आजकल कम दिखाई देता है, क्योंकि ये टेस्ट बहुत फ्रीली अवेलेबल है और जो सतर्कता है एटलीस्ट शहरों में या आप गाँव में भी बोले तो ये टेस्ट जो है काफी इजिली मिलता है करने के लिए। तो ये हॉर्मोन्स जो है जो ग्लैंड से निकलते हैं वो बेसिकली दो हॉर्मोन है, T3 और T4। इसका जो लेवल बॉडी में रहना चाहिए उसका जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उससे हमें इजिली आइडिया आ जाता है कि लेवल्स आपके बॉडी में बराबर है कि नहीं। अगर लेवल्स बॉडी में कम है, अभी प्रॉब्लम्स अगर हम सोचे तो सिम्टम्स वाइज अगर हॉर्मोन लेवल ज्यादा है, यानी प्रोडक्शन जो कार्य प्रणाली ग्रंथि से हो रही है अगर वो ज्यादा हो रही है तो इसे हम हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं, यानी जो हार्मोन लेवल है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा है। अगर उसका प्रोडक्शन या कार्य प्रणाली कम है, यानी थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम कर रहा है, तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और तीसरा एक टोटली डिफरेंट सिम्टम जो हम और डिस्कस करेंगे वो है कि जब गले में गांठ आती है, जो नॉन कैंसरस या बिनाइन भी बोलते हैं और जिसमें उसमें कैंसर होता है, तो उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अभी ये जो हॉर्मोन्स है वो बचपन से लेके अपने आयु के अंत तक उसका काम रहता है, स्पेशली लेडीज में ऐसा देखा गया है कि 10 लेडीज में से एक को डेफिनेटली थायराइड प्रॉब्लम होता है और वो कभी कभी मिस हो जाता है। अभी ये 10 में से आप एक सोचो, यू आर टॉकिंग अबाउट 10%, काफी बड़ा नंबर है। और ये लेडीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्यूबर्टी से लेके प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, इसका जो रोल है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स आते हैं लेडीज में उस पे काम उसका प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो इनफर्टिलिटी, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, जिनमें कंसीव जो हम बोलते हैं कि बच्चा हो नहीं रहा है, जिसको हम इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं, ब्लीडिंग का इश्यूज ज्यादा होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जब अगर स्त्री को या महिला को थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपो या हाइपर, तो उसे हम हाई रिस्क कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है वो बच्चे में और मदर में दोनों में हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम आते हैं वो ज्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जो कार्य प्रणाली है वो कम है, तो थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान देना है वो बराबर से गायनेक एंडोक्राइन जो स्पेशलिस्ट है वो देके प्रेगनेंसी एंड तक बराबर उसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर बाय चांस ये मिस हो गया और अगर बच्चा पोस्ट डिलीवरी हमें चेक करना है कि बाबा रिसेंटली डायग्नोस हुआ है या उनका जो ट्रीटमेंट है वो एडिक्वेट नहीं है मदर का, तो बच्चे में भी हाइपोथायराइड सिम्टम्स बहुत डेंजरस होते हैं। ब्रीदिंग से लेके क्राइंग तक, फीडिंग तक, मेंटल रिटार्डेशन तक वहां प्रॉब्लम जा सकता है और ये इरिवर्सिबल है। अगर हम जल्दी पकड़ नहीं लेते हैं कि बाबा बच्चे में, जन्मजात बच्चे में, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूबॉर्न, उसमें एक स्पेशल टेस्ट रहता है जो हील प्रिक टेस्ट बोलते हैं, वहां से खून में इमीडिएटली हम लोग चेक करते हैं कि थायराइड लेवल कैसा है, और अगर हम तभी के तभी इनिशिएट नहीं करते हैं ट्रीटमेंट तो आगे चल के रिटार्डेशन और प्रॉब्लम जो इरिवर्सिबल है उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। तो ये सब चीज जो है थायराइड हार्मोन से जुड़ी हुई है और ये थायराइड ग्लैंड जो लेडीज में मैंने जब अभी उसका उल्लेख किया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थायराइड अपना नॉर्मल होना चाहिए। सिम्टम्स आप बताएं तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत वेग सिम्टम्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्किन ड्राइनेस रहना, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स, मोटापा होना, अगर मोटापा एज इन नॉट ओबेसिटी टाइप मोटापा, खाते भी ज्यादा है, खाते कम है कोई कोई लोग।

0: में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकते, तो दैट इज क्वाइट कॉमन इन बोथ. अभी ड्राई आईज रहते हैं किसी किसी में, हाइपर में, और एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि आंख जो है, हमें आंख का जो ऊपर का व्हाइट है जो नॉर्मली दिखता नहीं है वो दिखने लगता है. सो दैट इज कॉल्ड एक्सॉफ्थाल्मस. सो एक वेरी क्लासिकल, लकीली ज्यादा दिखता नहीं है अभी, लेकिन दिस आर द सिम्टम. तीसरा जो रीजन है ये सब, अभी मैं हॉर्मोन्स का मैं आपको लेवल बता रही हूँ, लेकिन उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे आपके ऑफिस में आपका बॉस रहेगा या आपका फैन रेगुलेट करने के लिए एक स्पीड रहेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा बाबा मैं सिर्फ T3 T4 करके अगर मेरा लेवल नॉर्मल है तो, या डज दैट मीन कि मेरा थायराइड बराबर है. आप सबने TSH करके टेस्ट सुना होगा जो इसके साथ में जाता है, T3 T4 TSH. अभी ये TSH जो है वो थायराइड से निकलता नहीं है, वो थायराइड का एक बॉस है जो ब्रेन में रहता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं. वो और एक हार्मोन ग्लैंड है, छोटा सा 1 सेंटीमीटर का ग्लैंड है, लेकिन वो किंग है. तो जब हमारे हमारे शरीर में हम उसको लगता है कि बाबा हमें थायराइड हार्मोन ज्यादा चाहिए यानी कमी है, तो वो एक सिग्नल भेजता है, TSH बढ़ जाता है. तो ये जो लेवल है वो उल्टा है, यानी आपका थायराइड ग्लैंड कम सेक्रीट कर रहा है तो ये TSH ज्यादा हो जाएगा. तो ये काफी लोगों को समझता नहीं है, उनको लगता है कि मेरे को थायराइड ज्यादा हो गया है क्योंकि TSH बढ़ जाता है, लेकिन उसका जो जो मतलब है वो उल्टा है. यानी TSH बढ़ गया यानी आपका थायराइड लेवल कम है, तो आपको थायराइड की गोली चाहिए. उल्टा हाइपर थायराइड में होता है कि उसका जो प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से थायराइड का जो स्टिमुलेशन चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड कम होता है, तो वो रेंज से कम हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि बाबा ये पेशेंट हाइपर थायराइड है. तो ये कॉमन सिम्टम्स है हाइपो और हाइपर के लिए. अभी मैं रही सर्जिकल डॉक्टर, तो मैं ज्यादा मेडिकल इश्यूज से ज्यादा आई एम ज्यादा मेरा गले से जो गांठ के पेशेंट आते हैं सिम्टम लेके, उस पे हमारा ज्यादा ध्यान जाता है. तो थर्ड कैटेगरी के जो पेशेंट है वो गले में गांठ लेके आते हैं. अभी आप अगर कहीं भी घूमे तो भी आप देखेंगे कि बहुत सारे इसमें ये गांठ दिख जाती है रास्ते में चलते हुए, आप बहुत लोगों में आपने देखा होगा. अभी ये जो है इसे हम इंग्लिश में गॉइटर बोलते हैं. इसका स्पेसिफिक सिर्फ थायराइड से संबंध है, और हिंदी में इसको गलगंड बोलते हैं. अभी ये जो गॉइटर है वो बहुत, हम अगर क्लासिफाई करें तो हमें जो है उसको दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं. एक जो है स्मूथ जो ग्लैंड रहता है उसको डिफ्यूज गॉइटर बोलते हैं, और दूसरा आप देखेंगे पूरा ऐसे पूरा सूज जाता है तो उसे डिफ्यूज गॉइटर बोलते हैं. दूसरे इसमें जहां वो थायराइड के ग्लैंड में ही गांठ आती है उसको नोड्यूलर गॉइटर बोलते हैं. अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ट्रीटमेंट अलग है दोनों का. और तीसरे जो वैरायटी है वो पूरे अपने कैंसर रिलेटेड आते हैं. तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे आई कैन स्पीक ऑन द स्वेलिंग्स की हम
1: जी जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन बीच में एक क्वेश्चन किसी ने डाला है सुभाष जी ने, कहा ट्राइबल एंड ट्राइबल आदिवासी लोगों को ज्यादा थायराइड होता है क्या, दिस इज ट्रू और फॉल्स ये पूछा है, और व्हाई पीपल एक्सप्लेन्स ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताइए दीदी. डॉक्टर प्रीति जी, अर्जुन रमेश जी, अर्चना जी, ओम शांति, थैंक यू. यस, आदिवासी और ट्राइबल जो गांव के अंदर रहते हैं उन लोगों को ज्यादा होता है कि ये पूछा है.
0: बिल्कुल, अभी ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये पिछले आई थिंक 50 या 60 ईयर्स में काफी बदल चुके हैं. बिकॉज जो पहले के जमाने में जो सॉल्ट होता था वो हमें या तो डायरेक्टली सी सॉल्ट से मिलता था, और उसका जो है सब्स्टिट्यूट ज्यादा इंटीरियर्स में नहीं मिलता था, एज इन द सेंस कि वो लोग जो है उनके प्रोडक्शन में जो उनको सॉल्ट मिल रहा है वो यूज करते थे. अभी थायराइड इतना एक अमेजिंग या इतना वंडरफुल एक ग्लैंड है जो पूरे शरीर में आयोडीन का जो रिक्वायरमेंट रहता है, आयोडीन करके आई थिंक आप सब लोग
1: बिल्कुल सुना है.
0: तो वो जो आयोडीन है वो उसको यूज करने में सबसे इम्पोर्टेंट उसका एक काम है, और वो T3 और T4 दोनों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है काम करने में. तो पहले के जमाने में जब हमारे पास आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं रहता था तो ये जो नमक आती थी, अभी जो आप सब नमक जो मार्केट में मिलता है वो सब आयोडाइज्ड है. तो पहले के जमाने में जब नहीं मिलता था, या तो ऐसे जो आदिवासी हैं जो आयोडाइज्ड नमक नहीं ले रहे हैं, उनमें जो है ये आयोडीन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन थायराइड का सेक्रीशन कम हो जाता है और उनको वो गॉइटर आ जाता है. तो उसमें वो स्वेलिंग्स और वो जो हाइपोथायराइड डिजीज है वो आयोडीन डेफिशिएंसी के वजह से है और ये रिवर्सिबल है. तो इन लोगों में अगर ये हम इंफॉर्मेशन दें कि बाबा आपका सॉल्ट आपसे वो नमक चेंज करके आयोडाइज सॉल्ट ले ले तो ये प्रॉब्लम मिट जाए. तो अभी कंपेयर टू द लास्ट 40-50 ईयर्स बहुत कम है, लेकिन

0: एंडेमिक एरियाज थे, जैसे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में एंडेमिक एरियाज थे जहाँ पे ये हमें ज्यादा दिखता था।
1: प्रीति जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और सुभाष जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका। क्योंकि कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं लेकिन फिर हम उसे ठीक से नहीं समझ पाते। अगर समझ जाएंगे तो नेचुरली ये चीजें जो है, पहले मेरे ख्याल से ये खास करके ऐड भी चलता था एक तरह का एडिन नमक ये करके
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वगैरह में, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रचलन था ये। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये सारा नॉर्मल मना लोग आयोडीन नमक खाने लग गए और ये सारी चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई। अब बात करते हैं हम लोग डायग्नोसिस पे, इसके बारे में, इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं।
0: अभी डायग्नोसिस जो हाइपो या हाइपर थायराइड के हैं वो सिंपल ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। एक T3 T4 TSH का एक सिंपल ब्लड टेस्ट रहता है जिसके लिए हमें भूखे पेट की भी जरूरत नहीं है। वो टेस्ट में एक अंदाज आ जाता है कि अपने लेवल्स ठीक है कि नहीं। अभी इसमें अगर आप T3 T4 भी ना करें और सिर्फ TSH करें तो उससे भी हमें काफी आइडिया आ जाएगा कि बाबा थायराइड का आपका प्रोडक्शन बराबर है कि नहीं। और ये रेंज में रहता है, वो रेंज में अगर है तो यूर ओके। और ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा रेंज, फॉर एग्जाम्पल अगर 4.95 है और आपका अगर 5 है तो आपको हाइपोथायरॉयड, ऐसे नहीं है। ये जो है हम डिसाइड करते हैं गोलियां देनी है नहीं देनी है बेस्ड ऑन द लेवल सिम्टम्स। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा एक पॉइंट इधर उधर हुआ तो आप हाइपो या हाइपर है। तो ये ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपका रेंज में नहीं है तो इमीडिएटली आपके या तो MD स्पेशलिस्ट, जो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट है, या तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इससे अगर आप मिले तो दे कैन गाइड यू कि आपको मेडिकेशन की जरूरत है या आपको टेस्ट थोड़े दिनों के बाद वापस रिपीट करके चेक करना है। इसके अलावा जो है, अगर अगर हाइपर थायराइड की बात करें तो और 2-3 ब्लड टेस्ट रहते हैं जो एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह करते हैं, उसमें भी आइडिया आता है। इसके साथ में कभी कभी हम गले की सोनोग्राफी निकालते हैं देखने के लिए कि थायराइड ग्लैंड दिखने में कैसा है, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बराबर है कि नहीं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम हमारे पास पेशेंट वो गांठ लेके आते हैं तो हमें पता करना पड़ता है कि वो गांठ कैसा है, कितना बड़ा है, एक है कि ज्यादा है, या हमें उसमें कोई डेंजर सिम्टम लग रहे हैं, उसके साथ में और कहीं फैला हुआ गांठ हमें दिख रहा है कि नहीं करके। तो इसके ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड तो आपको मालूम है, आई थिंक 15 मिनट्स में अल्ट्रासाउंड हो भी जाता है। तो ये बहुत सिंपल टेस्ट है। इसके अलावा अगर हमें डाउट है कि हाइपरथायरॉयडिज्म कोई पर्टिकुलर एरिया थायराइड की वजह से है तो कभी कभी थायराइड स्कैन होता है, जो स्पेशलाइज्ड स्कैन है, जो न्यूक्लियर मेडिसिन, एक अलग ही डिपार्टमेंट है, वहां पे करते हैं। तो वो सिर्फ थायराइड का ग्लैंड देख के वो बताते हैं कि बाबा ये एरिया में उसका प्रोडक्शन ज्यादा है, तो वो स्पेशलाइज स्कैन है। CT MRI तो हम सबने सुना है। तो अगर कैंसर का डाउट है या हमें लग रहा है कि कोई और सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस है तो कभी कभी हम वो भी करते हैं। इसके अलावा अगर कोई एरिया में हमें दिखता है तो छोटी सी हम उसमें सुई डालते हैं जिसे FNAC करते हैं। तो उसमें एक FNAC करके है जो छोटी सुई वो एरिया में डाल के उसका जो है टेस्टिंग करके हमें आइडिया आता है कि ये कैंसरस है कि नहीं। तो ये सब जो है टेस्ट है जो हमारे पास है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन वन।
1: एक कुछ सवाल आए हैं, वापस एक बार हम लोग उनको देख लेते हैं। यहाँ पर संगीता चांदक लिखते हैं, क्या पत्ता गोभी से बढ़ता है थायराइड या इसे अवॉइड करना चाहिए? दूसरा उन्होंने लिखा है, तो इसको अवॉइड या थायराइड को कम करने के लिए कोई एक्सरसाइज है?
0: ये बहुत ही कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम हमारा अगर वजन ज्यादा है या तो हम कोई चीज खा रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया पत्ता गोभी, किसी किसी को एक स्पेशली देर आस्ट टू अवॉइड टमाटोज, तो ये सब जो चीजें हैं इनका थायराइड से कोई संबंध नहीं है। देर इज नो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन विद थायराइड। थायराइड का जो ग्लैंड है वो अपने आप से एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड है जिसका आयोडीन छोड़ के डाइट में कोई फर्क में कोई चीज में आप ले या ना ले उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कोई चीज अवॉइड करने के लिए थायराइड के लिए कोई देर इज नो कनेक्शन एट ऑल। एक्सरसाइज की बात, एक्सरसाइज करना तो एनीवे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक्सरसाइज और अगेन थायराइड का कोई संबंध नहीं है। तो अगर थायराइड में प्रॉब्लम है, कमी या ज्यादा है, तो उसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। साथ ही आप एक्सरसाइज कीजिए, साथ ही आप बैलेंस डाइट लीजिए, इट विल हेल्प, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द सिचुएशन।
1: सवाल आया है यहाँ पर, इट इज ए बिलीव दैट इफ यू कर्ब योर फीलिंग यू डू नॉट स्पीक आउट, यानी जो लोग अपने भावनाओं को दबा के रखते हैं और बात नहीं करते हैं, तो इससे भी क्या थायराइड प्रॉब्लम होता है, क्या ये सही है?
0: एक्चुअली क्वाइट द रिवर्स। बेसिकली क्या रहता है कि जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइपो है या हाइपर है, तो जैसे मैंने बताया इसका जो रोल है वो पूरे शरीर में है, इंक्लूडिंग द ब्रेन। तो बहुत और अनट्रीटेड जो थायराइड बोलते हैं, जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है, उनके दिमाग में बहुत विचार चलते हैं. हाइपर एक्टिविटी से लेके डिप्रेशन तक, एंजाइटी तक, कुछ भी हो सकता है. तो मेनी पीपल ये रिलेट करके ऐसे समझते हैं कि बिकॉज मैंने ऐसा किया तो मुझे थायराइड हुआ. वो एक्चुअली सिचुएशन टोटली उल्टा रहता है. थायराइड डिटेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके जो विचार है उसकी वजह से कोई चेंज हो सकता है. अगर ऐसा लग रहा है कि बाबा विचार अलग आ रहे हैं या हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ तो बदल हो गया है, तो डेफिनेटली थायराइड चेक कर दीजिए, थायराइड लेवल.
1: एक और सवाल आया है, ये लिखते हैं मीनल जी के बाद, कल्पेश जी खुद लिख रहे हैं, क्या थायराइड की वजह से डायबिटीज होने का चांसेस है क्या?
0: ये टोटली अलग अलग ग्लैंड्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे थायराइड ग्लैंड जो है उसका, मैंने बिगनिंग में कहा था थायराइड ग्लैंड का फंक्शन अलग है, पैंक्रियास का फंक्शन अलग है, हर एक का रोल है. और वो रोल जो है इतना बैलेंस्ड है जिसकी वजह से आप ऐसे हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपकी आवाज अच्छी आ रही है. तो ये बैलेंस रखने के लिए हर ग्लैंड को अपना काम बराबर करना चाहिए. तो डायबिटीज जो है वो रिलेटेड रहता है, उसका पैनक्रिया से भी रिलेशन है, उसका इंसुलिन जो सेक्रेट हो रहा है डाइट में, वो उसमें उसका टोटली अलग एक रीजन रहता है. लेकिन थायराइड और थायराइड की वजह से डायबिटीज होना अनलाइकली है.
1: अच्छा अच्छा, चलिए कल्पेश जी आपने जो पूछा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं. तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी अलग है, टेस्टिंग भी अलग है, सब कुछ अलग है. तो आइए अब बात करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें समझ लिया कि थायराइड एक ग्रंथि है और हाइपो हाइपर या हाइपो मना कम, हाइपर मना ज्यादा, मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहबा? तो ये कम ज्यादा वाला बात होता है. तो इसमें आपको, इसलिए मेरे ख्याल से थायराइड के टैबलेट्स में ना पावर होते हैं, है ना, तो कभी 25, कभी 50, कभी 75, 100 तक भी जाते. तो आप फिर कम होते वो सारी चीजें, कम भी गोलियां कम लेनी पड़ती. इसका मतलब आपका थायराइड लेवल अगर बैलेंस में आ रहा है, कम करनी पड़ेगी गोलियां, और अगर कम हो रहा है तो फिर आपको गोलियों का पावर बढ़ाना पड़ता. तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ठीक से समझने की जरूरत. एक और बात आई थी इस पर, पिछली बार किसी डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बातें कही थी. तो क्या थायराइड एक बार होने से कम्प्लीटली वो खत्म होता है क्या ट्रीटमेंट करने के बाद, या रहता ही है, या गोली लेना ही पड़ता है?
0: देखिए इसमें जो है हाइपोथायरॉयडिज्म में, जहाँ पे सेक्रीशन जो कार्य प्रणाली वो कम हो रही है, उसमें हमें टैबलेट लेना ही है. और वो टैबलेट क्या है, वो एक्सटर्नली सिंथेटिक हम लोग हार्मोन दे रहे हैं कि वो बैलेंस करने की. तो ये कम ज्यादा हम कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ, लेकिन ये यूजुअली जो है लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है. कि आप अपने, जैसे आप अपना चश्मा है वो जी, अगर जी. आप शुरू से पहन रहे हैं तो सडनली जो है आप निकाल नहीं सकते, आपको नंबर चेंज हो सकता है. हाई बिल्कुल, तो हाई. और वो क्या है, सिर्फ एक गोली है जो सवेरे हम भूखे पेट लेते हैं, तो इट इज लाइक अ लाइफ स्टाइल. यू हैव टू चेंज इट कि बाबा हमें थायराइड की गोली लेनी है. उसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो हमारी कमी को बैलेंस कर रहा है. दैट इज द ओनली रोल इट हैज. हाइपरथायरॉयडिज्म जो है हमें क्योर करने के लिए उसके उसके पीछे हम यूजुअली ट्राई करते हैं. हाइपर में क्या रहता है कि समटाइम्स वो ग्लैंड ही सूट जाता है किसी डिजीज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से. कभी एक जगह जो है वो ग्लैंड का वो ज्यादा काम करता है. तो नॉर्मली इसमें जो है दवाई टोटली अलग दी जाती है. वो थायराइड हार्मोन नहीं रहता है, वो हार्मोन को दबाने के लिए अलग से ड्रग रहता है. वो कभी कभी जैसे वो उसकी सूजन चली जाती है या उसका जो प्रभाव है वो निकल जाता है, तो हो सकता है कि 3-4 साल में वो गोली हम बंद भी कर सकते हैं. तीसरा, अगर वो 3-4 साल के बाद भी नहीं हो रहा है और हमें एक पता है कि वो एक जगह में वो गड़बड़ है, तो ऑपरेशन द्वारा वो भाग निकाल के हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं. तो हाइपर में डेफिनेटली हम बंद करने की कोशिश करते हैं, हाइपो में चांसेस कम है.
1: कम, ठीक है. ये दो कॉन्सेप्ट था जो समझना जरूरी था. अब बात करते हैं, जैसे मान लो किसी को डिटेक्ट हो गया भाई थायराइड है, हाइपो या हाइपर, लेकिन फिर भी अब ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या करना होता है, थोड़ा सा वो बताएं.
0: अभी हाइपो में जैसे हम अभी बता रहे थे कि गोली लेनी पड़ती है, और जैसे आपने सही बताया कि उसके पावर रहते हैं. तो ये जो दवाई है वो कोई अपने आप से ना लेके, अगर आप बराबर एक फिजिशियन के पास या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके, अगर आप डोज वो टीएसएच को देख के आपको डिसाइड करते हैं कि आपको स्टार्टिंग डोज क्या लेना है. अब वो अगर 25 से चालू करें तो 25 ऐसा नहीं कि 10 दिन में आपका लेवल बदल जाएगा. ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो मे बी 2 महीने या 3 महीने के बाद वापस चेक करके वो देखते हैं कि लेवल कितना चेंज हो गया है. अगर नॉर्मल आ गया है तो वो उसी डोज पे आपको कंटिन्यू करेंगे. फिर भी अगर TSH ज्यादा है यानी आपका लेवल फिर भी कम है तो वो थोड़ा और डोज बढ़ा देंगे. तो वो जो बैलेंस करने का जो एक ये रहता है कि आपको 25 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, वो बैलेंसिंग करने के लिए कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं. और ये करने के बाद हर 6 महीने में वो टेस्टिंग रिपीट करके हम देखते हैं कि अगर TSH लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं कि नहीं. हाइपर में क्या रहता है कि एक स्पेशल, जैसे मैंने बोला, वो टैबलेट देते हैं जिसकी वजह से वो हम लोग हार्मोन लेवल्स कंट्रोल करते हैं. वो कम्प्लीटली डिफरेंट ड्रग रहते हैं. अभी ये जो थायरोक्सिन की गोली है जो आती है पावर में, उसका सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट चीज है कि वो सवेरे बिफोर ब्रेकफास्ट भूखे पेट में लेना है, और हो सकता है तो उसके बाद एटलीस्ट एक 40-45 मिनट्स 1 आवर के बाद आप चाय लो, कुछ और लो, कुछ और ले सकते हैं. तो एम्प्टी स्टमक होना जरूरी है. इसमें भी काफी अभी वाद विवाद है, बट जो टीचिंग है हमारा रेगुलर वो ऐसा है कि मॉर्निंग में भूखे पेट में ले लीजिए, और मिस नहीं होना चाहिए, वो एक जरूरी चीज. तो वो मिस ना करें और बराबर से लें. और प्रेगनेंसी के द्वारा तो यू हैव टू बी इन टोटल कनेक्शन विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट कि बाबा बराबर चल रही है कि नहीं. तो उसमें भी हार्मोन लेवल बहुत ऊपर नीचे चले जाते हैं. ये हाइपो और हाइपर. अभी अगर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट जाए तो जो गलगन जो बोलते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए राइट फ्रॉम कुछ नहीं करने से लेके पूरा थायराइड निकालने तक हमारा पूरा एक प्लान रहता है. जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो डिफ्यूज, जो स्मूथ गोइटर है, उसको नॉर्मली ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर वो अपने आप से बैठ गई, अगर हम हाइपो है, हमने गोली ले ली, वो बैठ गई तो ठीक है. नहीं बैठी तो भी हम लोग उसके लिए ऑपरेशन नहीं करते हैं. अगर बाय चांस उसकी वजह से तकलीफ हो रही हो, राइट फ्रॉम कॉस्मेटिक की बाबा बहुत सूजा हुआ लग रहा है, या उसकी वजह से प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हो, तो ही हम उसे ऑपरेट करते हैं. जो नोड्यूलर गोइटर है, जिसमें जो उसमें ग्रंथि में ही छोटे छोटे गांठ है, उसमें 2 टाइप के हैं. एक जो सिंगल गांठ आती है, उसमें हम एक स्पेशल उसका नाम रहता है जो हम सॉलिटरी थायरॉइड नोड्यूल, यानी एक ही साइड में एक ही जगह वो गांठ है, उसके लिए अगर हम साइज 1.5 सेंटीमीटर से क्रॉस करें तो वो हम आधा थायराइड निकालते हैं. अच्छा. तो वो जो भाग है, क्योंकि चांसेस कम है, लेकिन वो आगे चल के कैंसर में बदलने का चांस करके हम करते हैं. तीसरा जो है मल्टी नोड्यूल, यानी दोनों साइड में छोटी छोटी गांठें हैं, उसको भी हम यूजुअली सर्जरी नहीं करते हैं. ये जब हम टच करते हैं, जब हमें कोई डाउट है कि बाबा कोई एक जगह डेंजर हो गया है, सडनली कुछ बढ़ गया है. अभी ये आप, मैं जो नोड्यूल बता रही हूँ वो 2 मिलीमीटर से लेके 1.5 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं. कोई कोई पेशेंट ऐसे लिटरली ऐसे गांठ गांठ लेके आते हैं, उनमें भी आपने देखा भी होगा काफी, इट्स क्वाइट कॉमन, अभी भी क्वाइट कॉमन. लेकिन फिर भी अगर हमें डाउट है कि बाबा उसमें तकलीफ हो रही है, उसमें तकलीफ क्या रहती है, 2 चीज से हमें डर रहता है. एक तो प्रेशर की वजह से, बिल्कुल पीछे सांस की नली रहती है, तो बहुत टाइम से अगर 15-20 साल वो हम गांठ में वो सूजन, गले में सूजन है, तो उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है, तो लेटते समय सांस में तकलीफ आ जाती है. उसके पीछे डायरेक्टली जो है हमारा, हमारी अन्न नलिका रहती है, तो कभी कभी निगलने में तकलीफ आ जाती है. और ये जो ग्लैंड है उसके दोनों साइड, उसके पीछे से छोटी जो है नसें जाती है, जो हमारा, हमारी जो वॉइस बॉक्स है, जो हम बात कर रहे हैं, अपना जो पिच है, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, तो उसको वो सप्लाई करती है. तो कभी कभी उस पे प्रेशर आता है तो आवाज होर्स हो जाता है, जैसे हमारा गला बैठ गया है वैसे आवाज आती है. ये सब कंडीशन में हम ऑपरेट करने के लिए हम पेशेंट को सलाह देते हैं. टोटली डिफरेंट चीज है कैंसर. अभी कैंसर में जो थायराइड ग्लैंड के कैंसर है वो नॉर्मली 3-4 टाइप के रहते हैं. कोई कोई कैंसर उसमें फैमिलियल रहते हैं, जो जेनेटिक रहते हैं कि किसी के फादर की साइड से या मदर की साइड से वो कैंसर ट्रांसमिट होता है, लेकिन वो कम है. लेकिन अगेन सतर्कता जरूरी है कि बाबा समबडी इन माय फैमिली हैड कैंसर, स्पेशली थायराइड कैंसर, तो हम चांसेस है. इंडिया में जेनेटिक टेस्टिंग अभी भी इतना प्रचलित नहीं है, तो ये जो जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री है वो अभी भी काफी कम हमें दिखता है, या हम उसका जो डायग्नोसिस कर रहे हैं. आई थिंक आगे के 20-30 साल में वो और बढ़ जाएगा. ये जो कैंसर आते हैं इसमें, इसका जो टाइप्स है वो 2-3 टाइप के जैसे है, जो काफी कॉमन है. उसका ट्रीटमेंट भी जो है वो कैंसर के टाइप से डिसाइड होता है. तो इसका जैसे हमने पहले बताया कि छोटी सुई डालते हैं, उसका स्लाइड देखते हैं, अगर उसमें कैंसर दिखता है तो या तो सर्जरी, या तो सर्जरी के साथ कभी कभी हम कीमो, कभी रेडिएशन, वो भी देना पड़ता है। इसके अलावा अगर वो एक स्पेशल टाइप का कैंसर जो मेड्यूलरी कैंसर बोलते हैं, फॉलिकुलर कैंसर बोलते हैं, जो उसका फैलने का डेंजर रहता है, तो जो थायराइड ग्लैंड के साथ में कभी कभी उसके आजू बाजू के जो नोड्स हैं जो गले में फैल रहे हैं उसको देखना पड़ता है। कभी कोई टाइप के कैंसर्स में हमें एक्स्ट्रा बूस्ट, जैसे हम रेडिएशन देते हैं वैसे, जैसे आयोडीन का कनेक्शन है थायराइड के साथ, रेडियो आयोडीन करके एक थेरेपी रहता है जिसमें वो सिर्फ आयोडीन की के माध्यम से, स्पेशल आयोडीन के माध्यम से जो कैंसर का टिश्यू है वो जल जाता है।
1: अच्छा।
0: इसका वो एक स्पेशल, ये सब मोडालिटीज हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट काफी सक्सेसफुल रहता है, जितने जल्दी आएंगे उतना डेफिनेटली सर्वाइवल अच्छा है। तो अगर पेन है, कहीं नया गांठ कुछ निकला है, आपको ऐसे लग रहा है कि गले में आपका आवाज में बदल आ गई है या सांस लेने में बदल आई है, तो प्लीज आपके डॉक्टर से मिलिए एंड गेट दैट चेक्ड आउट, बिकॉज ये नॉर्मली दिखता नहीं है किसी में। अगर दिख जाता है देन यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इट इज इजी टू, अभी डर के बैठ के घर पे बैठने से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो यू हैव टू अप्रोच द डॉक्टर, यू हैव टू गेट इट ट्रीटेड।
1: बिल्कुल बिल्कुल। कल्पेश जी कुछ लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मेरी वाइफ शायद 250 नहीं होगा, 25 होगा, नहीं टेबलेट 250 mg का भी आता है क्या?
0: नहीं, वो 100 के आके देते भी हैं, इट इज नॉट, इज नॉट गिवन। काफी वो
1: तो हो सकता है, ज्यादा भी देना पड़ता है अपने को डोज
0: कभी कभी। और ये जो हम जब ऑपरेशन करके पूरा थायराइड निकालते हैं तो जिंदगी भर थायराइड की गोली देनी ही पड़ती है, तो वो ऑपरेशन के बाद 6 हफ्ते के बाद हम लोग टेस्ट करके बेसलाइन कितना है देखे, वो हम लोग लाइफ लॉन्ग देने की जो है एक नीड हो जाता है कि देना ही पड़ता है। तो हो सकता है कि वो लगे, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज कंट्रोल में है डोज मैटर नहीं करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी मिस कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक सवाल आया था जैसे पत्ता गोभी खाने से थायराइड बढ़ जाता है या सही है, या कोई एक्सरसाइज है जिससे हमारा थायराइड कम हो सकता है, तो ये इन चीजों पे थोड़ा सा और आप गहराई से बताएं।
0: ये सबसे जो आसान मिसकंसेप्शन जो मैं बोल रही हूँ, कॉमन मिसकंसेप्शन है वो है कि मैंने 6 महीने मेरी थायराइड की गोली ले ली, अभी मेरा लेवल नॉर्मल है, अभी मैं बंद कर देती हूँ। और जैसे यू नो मेरा नेबर है वो 25 ले रहा है, मेरे डॉक्टर ने मुझे 100 लेने को बोला है, वो तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैं अपने आप से कम कर देता हूँ। तो ये चीज बहुत गलत है। आपके थायराइड लेवल चेंज होने में 2 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपका लेवल नॉर्मल है, ये नॉर्मल है क्योंकि आपकी गोली चल रही है, तो अपने आप से तो कभी बंद मत कीजिए। अगर करना भी है कि आपको वो चेक करना है कि कोई चेंज करना है, तो टेस्ट करके आपके डॉक्टर की सलाह के साथ ही लीजिए। जैसे मैंने बताया वो सिर्फ एक ही गोली है, सवेरे लेनी है बस, लिटरली अपने दिन की शुरुआत अगर उससे करें तो आपका पूरा दिन जो है इट इज गोइंग टू गो वेल। तो हम सवेरे उठ के चाय पीते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, उसके वैसे ही हमें ये एक लाइफस्टाइल में जोड़ना है, वो एक चीज है। लेकिन मिसकंसेप्शन ये है कि आपने जैसे बताया कोई डाइट खाने से या डाइट ना खाने से ये इसमें बदल हो सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट प्रूवन कि डाइट और इसमें कोई संबंध है। सिर्फ वो आयोडीन का है जैसे मैंने बताया, तो आयोडाइज सॉल्ट लेना बहुत जरूरी है। तो ये डेली डाइट में जितना अपना रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है जिसको RDA बोलते हैं, वो लेना जरूरी। और थर्ड जो ये हम सर्जिकल इसमें देखते हैं कि काफी लोगों में ये जो गांठ आती है वो दिखने में तो काफी बड़ी भी होती है, कभी कभी छोटी रहती है, लेकिन बहुत जो पेशेंट्स आते हैं उनको डर रहता है कि निशान ना आ जाए। अच्छा। बाबा मैं ऐसे कैसे घूमू की इधर ऑपरेशन हुआ है करके। लेकिन कॉस्मेटिक जो सर्जरी का एक भाग नेक का सर्जरी रहता है, जो हम इंसिजन ही ऐसा लेते हैं, जो कट ही ऐसा लेते हैं, तो निशान और उसका जो दिखने का जो एक डर रहता है वो भी काफी लोगों में रहता है, वो ना ले। द अदर थिंग इज कि बाबा मेरा वॉइस बदल ना जाए ऑपरेशन के बाद, ये काफी इम्पोर्टेंट है, जो हम सिंगर्स में देखते हैं, जो टीचर्स है, जो आपकी तरह है, जो RJ है, जो आपका काम ही है, जो यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, तो इनमें जो है जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो आपके सर्जन के साथ आपको ये समझना जरूरी है कि वो जो 2 नसें जा रही है, जो अपने वोकल कॉर्ड को पिच दे रही है, जो उसको बैलेंस दे रही है, वो कभी कभार जो है इंजर होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली कैंसर में, क्योंकि कैंसर का एम है कि हम कैंसर को निकालना जरूरी है, लेकिन अगर वो कैंसर वो नस में चली जाए या बाई मिस्टेक वो आप लिटरली आपके जो बाल है उससे भी छोटे वो नसें रहती है जो हमें बचा के ऑपरेशन करना है, इतना डेलिकेट सर्जरी है वो। और वो कभी कभी अगर इंजर होती है तो कभी टेम्पररी भी इंजर हो सकती है, कभी परमानेंट भी हो सकती है। तो ये कभी कभी पेशेंट को पहले अगर पता होता है कि बाबा ये प्रॉब्लम हो सकता है तो टेम्पररी चीज थोड़े दिनों में, हफ्तों में एक्सरसाइज के साथ ठीक भी हो जाती है। परमानेंट जब रहती है तो भी 2-3 महीने में उसका जो एक बैलेंस आ जाता है। वॉइस में हो सकता है कि थोड़ा बदल हो, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी बैड कैंसर या वेरी बैड थिंग। नॉर्मली पेशेंट आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होता नहीं है, लेकिन ये वॉइस इश्यूज काफी लोग डर जाते हैं उससे तो नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया सब गांठ में कैंसर नहीं होते, सब थायराइड स्वेलिंग्स में ऑपरेशन नहीं लगता है, लेकिन किसमें लगता है नहीं लगता है वो आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकती है। एक चीज
1: जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि क्या इसमें कुछ, बहुत सारे लोग अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो क्या थायराइड में भी कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है?
0: अभी बहुत अल्टरनेटिव अपना, आई थिंक इंडिया इज द हब फॉर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, लेकिन एक बहुत इसका एक लॉजिकल ये है कि अगर हमारे हार्मोन कम है, ग्लैंड कम सेक्रेट कर रहा है, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद द सेम हार्मोन, तो दूसरे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में जाने के लिए लॉजिक क्या है? आई एम एन एलोपैथ, आई मुझे ज्यादा होम्योपैथी के बारे में नहीं है, एलोपैथी यूनानी कुछ भी, आई डोंट नो मच अबाउट द अदर थिंग, बट लॉजिक एंड प्रैक्टिकली जब हम बात करें कि बाबा इसका ये हम हमारे पास आसान से इलाज है, बहुत सस्ता भी है, अगर हम ले और हेल्थी रहे तो व्हाई नॉट,
1: अभी
0: अलग एंड सेकेंडली अगर हम जो फीमेल्स के बारे में जिनमें ये बहुत ज्यादा दिखता है थायराइड प्रॉब्लम उसका हम देखें तो ये इसके जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा है। तो आई वुड नॉट लाइक एनी फीमेल या कोई भी महिला कि बाबा मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, मैंने बराबर ट्रीटमेंट जो है जो रिकमेंडेड है या जो मेरे सामने अवेलेबल है अगर मैं ना लूं तो आर यू रेडी टू टेक अप द प्रॉब्लम्स दैट कम एसोसिएटेड विद, मिसकैरेजेस है, प्रेगनेंसी रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स है, इनफर्टिलिटी है, स्पेशली प्रेगनेंसी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारे। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट द अल्टरनेटिव्स, बट आई नो कि हमारे पास जो अभी अवेलेबल है जो ट्रीटमेंट है दे वर्क, दे आर गुड। अल्टीमेटली इट इज अ व्हाट यू कॉल एजुकेटेड चॉइस, कि आपको ये पता होना जरूरी है कि आपके पास ये 2-3 ऑप्शन है और आप वैसे चूज करो।
1: बिल्कुल, कई बार होते हैं लोग अरे एलोपैथी नहीं, आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में चले जाओ ठीक हो जाएंगे, और ज्यादा दिन डोजेस यानी दवाइयां भी लेनी नहीं पड़ेगी, ऐसे कुछ सजेशन, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
0: नहीं, वो ऐसे नॉट ओनली थायराइड, मैं कोई भी डिजीज के बारे में आपको बताऊं कि अपने एटलीस्ट अपने भारत में हमने देखा है कि अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने जो अपने कांटेक्ट में है उनके जो विचार है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, वो हमें बहुत आई थिंक दूसरे दिन ही पता चलता है कि भाई मुझे भी ये प्रॉब्लम था, मेरे नेबर को भी ये प्रॉब्लम था, मेरे इसको भी प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि जो मेडिकली हम 13 साल या 15 साल सीख के हम आपके सामने ला रहे हैं वो हम आपके नेबर के साथ हम कैसे उससे कैसे मैं आर्ग्यू करूँ। तो अभी एजुकेशन हमारे सब आई थिंक ऑल ऑफ अस आर एजुकेटेड, लेकिन ये जो मेडिकल एजुकेशन है या ये जो बॉडी का साइंस है वो इतना इट इज सो अमेजिंग कि मैं थायराइड कैंसर के बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को बोलो तो वो आपका शो सवेरे से लेकर रात तक ले जाए सिर्फ थायराइड पे। यानी इतना एडवांस्ड हो गया है अभी अपना ये, फिर भी हमारा जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो और बढ़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा ऐसा ही एक होप है कि बाबा कोई एडवांस स्टेज में ना आए, अर्ली डायग्नोसिस करे, सेकेंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन अपने पास कोई शॉर्टेज नहीं है। तो अगर आपको कोई डाउट है कि बाबा ये ट्रीटमेंट जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, मुझे और एक ओपिनियन है, तो बिंदास ले लीजिए, लेकिन डिले मत। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले और प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले रूटीन टेस्ट जो है उसमें थायराइड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्शन से लेके पूरा आपके जो प्रेगनेंसी के दौरान जो 9 महीने 40 वीक्स के जो है वो जो दौरान आपका प्रेगनेंसी ठीक चल रहा है कि नहीं, बच्चा बराबर बढ़ रहा है कि नहीं, जो बच्चा फर्स्ट डे से लेके पैदा होने तक उसका जो डेवलपमेंट है उसका और थायराइड का इतना क्लोज संबंध है कि आपको वो आपको बहुत केयर लेना पड़ता है. तो एनीबॉडी प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, जो भी महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, वो सब रूटीन टेस्ट के साथ एक थायराइड टेस्ट भी कीजिए. फर्स्ट जो एंटीनेटल स्कैन रहता है, एंटीनेटल टेस्ट रहता है, पहले 6 हफ्ते में जब आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हो, तभी भी 99% गायनेकोलॉजिस्ट थायराइड टेस्ट भी कराती है. तो ये करना जरूरी है.
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफी चीजें हमने समझ ली है थायराइड के बारे में. अभी कोई मिस कॉन्सेप्ट में मत जाइए. आप सीधे अगर आपको लग रहा है कुछ चीजें ऐसी है तो आप टेस्ट करें, डॉक्टर के पास जाइए और उनसे जरूर ट्रीटमेंट ले और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले. हाइपो और हाइपर के बारे में आपको पूरी तरह से पता चल गया है, जहां पर आपको सिर्फ टैबलेट्स लेने हैं हाइपो में, और हाइपर में मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रीटमेंट होने के बाद आप नॉर्मली बिना टैबलेट के भी रह सकते हैं. तो ये ऐसा नहीं हो कि भाई आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने से बंद कर दे. ये चीजें बिल्कुल ना करें आप. इन चीजों के लिए अगर बंद भी करना है आपको, तो डॉक्टर से प्रॉपरली डायग्नोस होने के बाद डॉक्टर कहे तो बंद कीजिए. अदरवाइज कोई मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज नहीं है. आप सवेरे उठ के एक गोली ले लिया तो समझ लो फ्रूट खा रहे एक. तो मैनेज हो जाएगा.
0: परफेक्ट, आपने परफेक्ट शॉटिंग कर दिया.
1: जी जी, चलिए अर्चना जी, कुछ पूछना है आपको?
2: हाँ जी.
1: जी.
2: हाय डॉक्टर प्रीति, नाइस टू सी यू ऑन द शो बैक अगेन.
0: वी आर सेम हियर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू.
2: एक सवाल मुझे पूछना था आपसे. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड, आई थिंक इट्स द हाइपरथायराइड. सो आई सी देम दैट यू नो दे स्किप देयर लंचेस एंड दे कीप हैविंग सम न्यूट्री बार्स एंड योगा बार्स. सो आई ऑलवेज वंडर कि हाउ कैन फूड सब्स्टिट्यूट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस. So I think they have it, thyroid ke wajah se. So is it good to have these kind of Nutribars and things, artificial food in place of natural food? Like, does it help you reduce your thyroid levels?
0: Absolutely not. I think you have, got the crux of the whole thing. Ye jo thyroid ka problem hai, वो लाइक आई सेड एक्सेप्ट फॉर आयोडीन देयर इज नो कनेक्शन टू अ डाइट. लोगों को क्या रहता है कि अगर हाइपोथायरॉयड है तो वजन बढ़ता है, तो उनको लगता है कि वजन क्यों बढ़ गया है तो उसकी वजह से डाइटिंग करते हैं. और अभी जो है स्पेशली सिटीज में जो ये डाइट के फैट्स आ गए हैं, एज इन इफ यू लुक आउट द, आप अगर डायटरी फैट्स देखो कि बाबा कीटो डाइट है, ये डाइट है, वो डाइट है, फ्रूट डाइट है, जूस डाइट है, ये सब जो है दे आर टेम्पररी एंड दे कैन कॉज प्रॉब्लम. जो मैं अपने पेशेंट को एक ही कोई भी वॉट एवर इट इज, वेदर इट इज अ थायराइड प्रॉब्लम एनी अदर प्रॉब्लम, एक सलाह देती हूँ कि मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट. यू डोंट हैव टू हैव टू मच ऑफ वन थिंग. ऐसे नहीं कि दिन भर फ्रूट्स खाओ एंड यू आर ओके एंड योर बॉडी इज गोइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल. इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग कि बाबा यू हैव अ हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड यू आर गोइंग टू अप योर विटामिन ई लेवल्स. इट डजंट वर्क दैट वे. इट इज अ सिस्टम व्हिच इज गोइंग टू वर्क इन its own time, and if you help it, it will work better. We are all aging. All of us are growing older every day, every second, but we can age well, we can age healthy. So you have to maintain a diet where you are getting everything. So you take a Nutribar, nothing is wrong, but if you are taking a Nutribar in place of something, the rest of the meal has to make sure that you are compensating for it. I have patients who have no breakfast, no lunch, they will have a cup of soup in the evening and they feel that they are losing weight. But is that a good way to lose weight? No, because it will not, aapko do din mein pata nahi chalega, but 6 months later you start having joint pains, you start having tiredness, and then you can't reverse 6 months in 2 days, then it takes that much time to get it back. So as a rule, if you have a good healthy diet, it should not be an excess of anything. It should be have a balance. Yani aap agar bhaji le rahe ho, chapati le rahe ho, uske sath mein salad lo, you take dal, you take there has to be a protein, there has to be a carb, there has to be a fiber, there have to be balance of everything. Unless you have been specifically told ki baba restrict this, agar aapko sugar ka problem hai ya aapka bp ka problem hai, then you lower it. But as a rule, most healthy people who don't have any underlying disease can manage with a good healthy diet. So these fads are absolutely no help and definitely not in thyroid.
2: People who are, getting treated regularly for thyroid because they have it and they do their tests and take all the medicines, but still it keeps, you know, coming up time and again. So is it like a regular thing in thyroid or something is not right? Either on emotional level, health level, your diet level, or what is it? because I know somebody who is quite regular with the medicines and diet and everything, but still, you know, it keeps coming up all the time. So yeah. What could be the reason?
0: See, it's like what we discussed earlier, is like wearing glasses. It's not that where you wear one and 6 months later, your number might change. So the idea is that when you're having an issue with the thyroid, there will be ups and downs. Very few people, bahut kami patients rehte hain jinme agar aap dekhe to saalon tak wohi ek dose chalta hai. There are quite a few patients who just need one dose and it continues. But a lot of times, perimenopausal, old age, jo ladies rehte hain 60 plus, 70 plus, even 90s, they have a very, what we call a labile thyroid. And, you know, ek mahina hyper, next month hyper, you know, the dose has to vary based on the levels that you get. And unme jo hai symptoms bahut jaldi pata chal jata hai ki baba they hyperactive, then you know ki baba thoda level badh gaya hai, check karte hain to kam karna padta hai. So it is known, quite a few people have that problem. The only thing to do is be patient, check, make sure that your lifestyle is proper, you're eating well, you're exercising, mentally you're doing your meditation. Meditation is very important. It really helps calm you down, whether you have a thyroid or not, but definitely makes you feel better. Exercise, good lifestyle, make sure that you have a hobby. I think that is very, very important nowadays. We have all lost having a hobby. And get your thyroid levels checked every 6 months if possible. As a routine, I would tell everybody, get it checked at least once in a year. As a routine, but if you already have a problem, check it every 6 months. So you know whether you're in the range or not. But don't worry, it happens. There are changes and it can be easily corrected. Not a problem.
1: Okay. थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और हमारे बाबूलाल प्रजापति जी लिखते हैं, डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली स्पष्टीकरण दिया है इस बीमारी पर, तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करके मैसेज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सुभाष जी ने भी धन्यवाद भेजा है, कल्पेश जी ने भी धन्यवाद भेजा है। आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और चलिए फिर से एक बार जो है, आपको थायराइड अगर हो जाता है तो भी टेंशन लीजिए, क्योंकि एक ही गोली आपको खाना है। और अगर हाइपर है तो आप जो है ट्रीटमेंट लेके उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है, चॉइस इज यूर्स। और कभी भी अल्टरनेटिव पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर वो ग्रंथि के साथ काम होता है, तो इसीलिए आप ज्यादा सोचिएगा नहीं। और बहुत ही सस्ता टैबलेट है, वो टैबलेट आप कंटिन्यू ले सकते हैं, और सिर्फ एक ही लेना है तो वो भी आराम से आप सवेरे ले सकते हैं। और फिर भी लग रहा है कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके आप इसका इलाज बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी थायराइड से मुक्त रहे, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम ऐसी नारी शक्ति पर आधारित है जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव या कुछ अलग उनके जीवन की कोई कहानी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नारी शक्ति के साथ जो घर में रह रही है या बाहर जो भी करती है तो उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नारी शक्ति की शक्ति को भी पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रगल को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है मधु राठौड़। आप गुजरात जूनागढ़ जिला बांटवा गांव के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 52 वर्ष है। आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है। सिलाई कढ़ाई बुनाई का आपको बहुत ही शौक है, कुकिंग का और विशेष करके सफाई का बहुत ही शौक है और अध्यात्म में गहरी रुचि रखती है। तो ऐसी नारी शक्ति से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। मधु जी नमस्कार।
1: धन्यवाद जी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद
0: मधु जी। चलिए, आपकी उम्र 52 है, मतलब पिचपन के आसपास पहुंच चुकी है। और कहते हैं ना, पिचपन में जब बचपन की बातें करते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहेंगे?
1: बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी
0: जी,
1: तब से मुझे कुछ ऐसे लगा, बचपन से तो वैसे माँ बाप, हम 5, 3 बहनें हैं, 2 भाई है, छोटा सा परिवार है और माता पिता है, दादी थी। फिर दादी तो अचानक से हार्ट अटैक आया और चली गई। उसके बाद सत्संग चला था घर में, जैसे कि तो सत्यनारायण की कथा हर 11 को होती थी। तो मम्मी सब कहती थी कि जाओ आप ना सबको, जो सगे संबंधी है उसको कहना कि हमारे यहाँ सत्संग है तो आ जाना। फिर सबको वो फूल लाना, प्रसाद लाना, वो सब मम्मी मुझे देती थी कि आप वो करो। फिर तो सब लाते थे, फिर ना बरसात आई, ये सब इकट्ठा करते हैं पैसा और उसका कुछ बड़ा करना था। तो मैं तो छोटी थी, तो एकदम बरसात आई तो सारा पैसा इसे पास रहता है 25 पैसे का 30 पैसे का
0: जी
1: हाँ, तो वो सब इकट्ठा किया हुआ था और घर की जो कांधी कहते मतलब माड़िया कहते उसमें लगा था। तो बरसात आने की वजह से जोरदार वो बिक गया। फिर सब वो सुखाया बहनों ने, मेरी 2 बहनें हैं और भाभी है, सब सुखाया। फिर तो मम्मी ने और सत्संग की जो मंडली थी ना, बड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही वो सत्संग चालू किया। तो कहते हैं कि अब ना कुछ उसका नया करे, हमारे यहाँ जो राजपूत के मंडली होती है ना बहनों की, तो उसमें सत्संग में से जो इतने पैसे इकट्ठे हुए थे तो उसका कुछ अच्छा सा करे जो सबको काम भी आए उसमें।
0: चलिए मधु जी, सत्संग की बातें हम जरूर जानेंगे, पहले हम बचपन की बात जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कि 5 भाई बहनों, ठीक है, अच्छा आप 3 बहनें और 2 भाई हो, आपका नंबर कौन सा आता है?
1: मेरा लास्ट का नंबर 5वां।
0: तो आप तो सबके चहेते रहे होंगे।
1: बहुत बहुत बहुत चहेते रहे।
0: आपके पिताजी क्या काम करते थे उस समय?
1: वो किसान थे, किसान। पहले तो मैं जब से आई ना तब से तो हमने बहुत खेती देखी। इससे पहले कहते थे कि हमारे 7 थे ना घर में, जैसे 5 बच्चे और 2 माँ बाप और दादी, उसमें बहुत एकदम करकसर से जीवन था।
0: जी जी, मुश्किल से हाँ, चल पाते थे गृहस्थी की।
1: हाँ, नहीं, पापा का यही एक सपना था कि मैं बड़ी खेती लूँ। इसके लिए उसने करकसर से हम सबको ऐसे सिखाया कि करकसर से रहोगे, लोभ से नहीं, करकसर से।
0: जी जी।
1: तो उसने 100 बीघा, मतलब अभी उसका पैसा होता है वो 15 करोड़ होता है। तभी कभी कुछ नहीं था, फिर भी पापा ने, हम काका कहते थे, हम साथ में रहते थे,
0: जॉइंट परिवार था।
1: हाँ, जॉइंट परिवार था, मतलब मेरे जो बड़े पापा के बड़े भाई वो साथ में रहते थे, उसका 6 बेटा
0: जी
1: हाँ, और साथ में रहते थे। तो साथ में रहने की वजह से जो बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं
0: जी, काका बोलते हैं और बड़े पापा के बेटे,
1: हाँ पापा के बड़े भाई, उसको हम अदा बोलते हैं गुजराती में
0: जी।
1: तो वो अदा का सब बच्चे इकट्ठे रहते, तो वो मेरे पापा को काका कहते थे, तो हम भी काका ही कहते हैं, लास्ट तक काका किया। तो काका का यही सपना था और मुझे बहुत पढ़ाया उसने, सब हमारे भाई बहन है ना उसमें से मुझे ज्यादा पढ़ाया।
0: अच्छा, बाकी आपसे सब कम पढ़े लिखे है?
1: सब कम पढ़े लिखे,
0: भाई भी?
1: भाई भी।
0: तो सब क्या करते, खेती का काम?
1: हाँ, सब खेती का ही काम करते हैं।
0: तो आपके सामने 100 बीघा जमीन का जो आपके पिताजी का
1: वो बनाया उसने अपने।
0: संकल्प था तो लिया?
1: हाँ, वो पूरा किया। पहले ऐसा नहीं था, फिर पूरा किया। फिर उसको तो इतना उमंग आया। उसके बाद सब, पहले भाई की शादी हुई, बड़े भाई की। उसके बाद तीन तीन की साथ में हुई और मेरी अकेली हुई।
0: अच्छा, आपकी शादी की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात कर रहे थे आपके बचपन की, कि इस तरह आपके पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे। आपके माताजी भी कुछ करते थे?
1: हाँ, घर का काम करती थी और खेत में पिताजी को बहुत साथ देती थी। सारा पूरा काम करके, अपना बाता बना करके, और मुझे कहती थी कि आप ये घर संभालो, और पढ़ाई करने के बाद हम आएंगे तो आपको ये खिचड़ी बना के रखनी है, ये सफाई करनी है, और चूल्हा चूल्हा यह सब कुछ अच्छे से रखना है, ताकि आए तो सिर्फ हमें सब्जी और रोटी दोनों ही बनानी है, और पूरा घर का ख्याल रखना है, बाहर सब आपको करना है। और फिर आप ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर पेड़ाई कर लेना और सफाई कर लेना। तो मम्मी भाता बनाकर, मतलब रसोई बनाकर जाती थी।
0: जी
1: हाँ, और साथ में पिताजी को बहुत बहुत साथ देती थी।
0: तो आपके भाई बहन भी जाते थे खेत में?
1: सब जाते थे, सब के सब।
0: आप अकेले घर पर रहते?
1: हाँ, मैं अकेली घर पर रहती। मैं डरती नहीं थी। मेरे से जो तीसरे नंबर की बहन है ना, जैसे हम तीन बहन है, तो तीसरे नंबर की बहन वो अकेली नहीं रहती थी। वो डरती थी, वो कहती थी मैं अकेली नहीं रहूंगी। मम्मी बहुत कहती थी कि आप रहो इसके साथ। फिर मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं मम्मी, आप जाओ, उसको भी ले जाओ, मैं अकेली रहूंगी। और मैं बहुत बड़ा था तो मैं उसमें अकेली रहती थी और सब काम कर लिया करती। और मम्मी मुझे ऐसी शाबाशी देती, देखो तो आपसे छोटी है तो भी वो अकेली रहती है, और सारा डरती भी नहीं है। कोई आते हैं तो ऊपर से देख लेती हूँ कि कौन आया है। अगर कोई हमारा संबंधी आते हैं तो मैं खिड़की खोलती हूँ, अगर कोई और है तो खिड़की भी नहीं खोलती। ऐसे में बहुत तैयार थी, तो मम्मी और पापा दोनों की चाहती थी।
0: जी
1: पापा पापा तो हमें साथ में ही सुलाते थे। वो तो मेरी सगड़ी है, जैसे बोलते। मैं इतनी गर्म रहती हूँ ना, तो वो खेत में से आते और पापा को मैं पानी देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तो पापा की बहुत चाहती थी। छोटी थी इसलिए बहुत बचपन प्यार से ही गुजरा, और सबका, भाई बहनों का अभी तक प्यार मिल रहा है।
0: जी जी
1: हाँ,
0: जी
1: बहुत प्यार मिल रहा है।
0: जी
1: और अभी वो पे दुलार देते तो कहते हैं कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसे कहते हैं अभी भी।
0: जी जी वो कहते हैं ना कि नमे सौने गमे, गुजराती कहावत है। तो
1: हाँ,
0: आपके अंदर नम्रता थी, तो आप सभी के दिलों पर राज करते थे
1: अभी भी कर रही हूँ। और
0: बचपन से। जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं, वो लाइफ टाइम चलता है।
1: हाँ, वो आगे ज्यादा हो जाता है बढ़कर। तो बचपन ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला कि देखो सबने इतना साथ दिया। और मैं मेरा उत्साह और उमंग बहुत बढ़ाते थे भाई बहने।
0: जी
1: जो मेरे से चारों भाई बहन है ना, बहुत उत्सव उमंग बढ़ाते थे। जैसे कि खेतों में बुनाई होती है, कटाई होती है, वो हम एक दो मजदूर रख करके हम स्वयं करते थे।
0: अच्छा
1: मजदूर चार आते थे, वो चार बहनें आती थी, दो बहनें अपनी और दो भाई उसके, वो चार ही आते थे, और हम सब मिल करके ये सारा खेत संभालते थे।
0: सौ
1: तो
0: सौ बीघा जमीन में?
1: हाँ, सब
0: अच्छा,
1: मजदूर नहीं, ना कोई किराए का रखा, रात में कोई नहीं, सब अकेले ऐसे ही करते थे। तो हमने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो, और मेहनत से आगे बढ़े। और पापा का तो बहुत था कि ये ले वो ले, बहुत था को ना, मेहनत में बहुत विश्वास था।
0: जी चलिए मधु जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मधु जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं जो हम फिर से सुनेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी जुड़ी हुई है, ऐसी ही मातृशक्ति जुड़ी हुई है, मधु राठौड़, जिनके अनुभव हमने सुने हैं। इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। मधु जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: जी थैंक यू जी।
4: तो मधु जी आपके बचपन की बातें चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा स्कूल की बातें बताएंगे कि आपके टीचर्स के साथ, सखियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: हाँ मेरी सखिया भी बहुत बढ़िया थी, एक सखी तो बहुत अच्छी थी, मैंने उसे अपना माना था, उसका वो अलग था। फिर मैंने पहले आठवीं पढ़ी तो मम्मी होली का त्यौहार था, जैसे अभी होली आ रही है, तो होली का त्यौहार था तो मम्मी ने कहा कि अबे ना सारा रसोई या भाता बोलते हैं ना, वो भाता कर रही हूँ, तो अपना आज जाओ शिव के मंदिर पर। और वहाँ से गुजरात में ये होता है कि बड़ा शिवरात्रि का महत्व होता है, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं और भांग का प्रसाद मिलता है, और बड़ी उत्साह उमंग से शिवरात्रि पूरा दिन रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन खाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेना है, दूध लेना है और वो प्रसाद लेना जरूरी है। तो प्रसाद नहीं, माताजी लाई थी तो उसने कहा आप जाओ तो मुझे मंदिर भेजा। तभी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिली और मैं आठवीं कक्षा में वो प्रदर्शनी देखी। तो वो प्रदर्शनी पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, बाद में इतनी मन को भा गई कि बार बार वही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। इसमें इतनी लगती थी कि मैं ही वही देवी हूँ, और मुझे इतना अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं बस इसी मार्ग पर चलूँ। घर पर आई, प्रदर्शनी देखी तो उस प्रदर्शनी में सुना कि मैं कौन हूँ, वही बहुत अच्छा लगा। फिर पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, और माताजी तो चली गई खेत में और मैं घर पे, तब स्कूल पे रजा होती है तो घर पे हूँ, घर पे थी। उसके बाद आध्यात्मिक में मेरा जुड़ाव बहुत रहा, मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आध्यात्मिक में कैसे आगे चलूँ। फिर हर ग्यारस के दिन और पूनम के दिन मेरी माताजी कथा करती है, सत्संग सब बहनें आती है, सत्संग की 50 बहनें होती है, तो माताजी

0: मम्मी अध्यात्म से जुड़ी थी तो अध्यात्म में बहुत रुचि थी मेरी पहले से ही।
1: तो भक्ति के संस्कार आपको बचपन से जी, और आठवीं से आपको थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
0: स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
1: अच्छा, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि आपकी सखियों के साथ कैसा था?
0: सखियों के साथ तो इतना मैं सखी नहीं करती थी, मुझे ऐसे अध्यात्म में अच्छा लगता है बस।
1: अच्छा, ये बताइए आप स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करते थे जैसे गाने? हाँ, में
0: हाँ, जो कोई स्पर्धा होती है, कोई भी स्पर्धा होती है, तो पहले तो मैं लींबू चमची में वो स्पर्धा किया ना, तो मेरा वो उसमें फर्स्ट नंबर आया, पहला नंबर आया, जो अच्छा लगा कि आगे बहुत बढ़ना चाहिए, उत्सव उमंग बढ़ा, जैसे पहले नंबर आए ना तो अंदर से लगा कि बहुत आगे मेहनत करनी चाहिए, फिर तो आगे आगे नंबर आता ही गया।
1: अच्छा, तो हर साल आप भाग लेते थे?
0: हाँ, हर साल भाग लेते।
1: अच्छा, और डांस गरबा ये भी करते थे?
0: हाँ, गरबा करते, डांस तो अकेले अकेले करते।
1: तो करते थे अकेले स्टेज पर?
0: हाँ, अकेले अकेले स्टेज पर करते थे, पर थोड़ा हिचकिचाते पर कर लेते थे, फिर बाद में एक भी किया फिर तो अच्छा लगा तो करते रहते थे डांस भी।
1: कभी टूर्नामेंट में भी गए? गेम्स में कोई गेम्स खेलते थे?
0: गेम्स तो नहीं खेली।
1: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
0: पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, और एक फोकस था कि आगे बढ़ना है, मतलब इतना तो लाना ही है, तो पढ़ाई में भी रुचि बहुत रही। दसवीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बारहवीं तक, पर बारहवीं तक में तो मेरी शादी हो गई थी, मैं बारहवीं तो वहाँ ससुराल में किया।
1: अच्छा, बारहवीं पढ़ रहे थे और शादी करवा दी?
0: हाँ, बारहवीं में तो मेरा जो रिजल्ट आया ना वो ससुराल में आया, पढ़ाई तो वहाँ, शादी तुरंत कर दी।
1: तो आपका ससुराल कहाँ है?
0: ससुराल भी वही बांटवा में ही है।
1: बांटवा में ही? कितना बड़ा शहर है बांटवा? शहर है या गांव है?
0: वैसे शहर भी कहो तो शहर भी है और गांव भी है,
1: तो वहीं पर आपका पियर भी और ससुराल भी?
0: ससुर
1: वहीं पर,
0: एक गांव में। सब कई बाहर गई नहीं, रेल तो मैंने कहीं देखा नहीं, आध्यात्मिक में रहे और गांव में ही शादी हो गई।
1: तो आप बता रहे थे कि छोटे थे तब तो कोई विरोध नहीं करते थे, तो शादी के समय किसी ने विरोध किया क्या?
0: नहीं, फिर तो युगल को मैं आध्यात्मिक में ले गई तो उसको भी अच्छा लगा, फिर विरोध होगा आध्यात्मिक में,
1: फिर क्या हुआ, विरोध हुआ?
0: हाँ, ससुराल में कहते हैं कि नहीं, हम कोई पकड़ बकड़ नहीं है, हम आध्यात्मिक में नहीं चल सकते, अब तो हमें बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ऐसे आप शादी किए तो ये करना है वो करना है।
1: कौन बोलता है?
0: सास ससुर बोलता है, पर हमारे में लाज प्रथा थी, घूंघट निकालने की प्रथा थी
1: जी,
0: तो मेरे पापा ने ही शादी के वक्त किया था कि आप घर जाके घूंघट उठाओ, वो अलग बात है, हमारे यहाँ तो शादी होगी तो घूंघट में ही होगी
1: जी।
0: पापा जी ने यही बोला था, और माता जी और बड़ी दो बहनें हैं वो भी अच्छे से शिक्षा देती रही कि हमें अपने मर्यादा में ही रहना है, कभी इधर उधर पाँव ना जाए, फिसल ना जाए, वो बड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ, बहुत सारी हमें मदद की बातें मिली उसी से
1: जी।
0: बड़ी दो बहनें थी उसी से सब मिला।
1: तो फिर ससुराल में सब कैसे रहते थे? शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
0: सासी तो घूंघट निकालते थे और बहुत स्ट्रगल हुआ,
1: मतलब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते थे?
0: तभी तो करते थे, पर जब आध्यात्मिक में जुड़ी, आध्यात्मिक में मेरा मन रुचि लगी, तभी विरोध हुआ।
1: तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ जाते थे?
0: पहले उसने थोड़े टाइम किया, थोड़े टाइम वो मेरे साथ चले, मैंने कहा प्यार से उसे बोला ना कि चलो हम जाते हैं, इसमें आध्यात्मिक में क्या बहुत अच्छा है लगता है, वो सत्संग में जाने लगे, अब मेरे साथ आए, उसमें साप्ताहिक होता है कोर्स, उस वो किया उसने, और उसके बाद विरोध किया, और घर में तो जाते हैं तो सबको पता चलता है ना ससुराल में, तो मैं कह कर के जाती थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो फिर आने के बाद सबको अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना काम टाइम पर करती थी, सबको बहुत प्यार से रखती थी, फिर भी उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हम पकड़ लोग नहीं है सत्संग में, हमारा आध्यात्मिक में नहीं जाना है, सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर मन नहीं लगता था सत्संग के बिना, तो
1: फिर आपने विरोध किया?
0: मैंने विरोध नहीं किया, मैंने चलती रही सत्संग में, जाती रही
1: जी।
0: फिर छुप छुप के जाने

0: लगी है, इसे थोड़े सामने से। फिर तो उसको पता चल गया कि ये वहां से वहां हंस जाती है, तो सामने से आकर दो चमाट लगा देती।
1: अच्छा, तो इस तरह आपके साथ विरोध होने लगा।
0: बहुत
1: अच्छा, ससुराल में कितना बड़ा परिवार था, मतलब संयुक्त परिवार था या आप अकेले रहते थे सास ससुर के साथ?
0: संयुक्त परिवार था, 10 जने रहते थे। 4 भाई है, 2 बहनें हैं, 2 ननद है और सास ससुर है, जेठ जेठानी, उसके 3 बच्चे
1: जी जी
0: बच्चे थे। हाँ,
1: तो इतना बड़ा परिवार था, आप कह रहे 10 जने थे, इतना बड़ा परिवार रहते थे साथ में।
0: हाँ, सबका काम भी हमें ही करता है, ऐसे कोई काम का भाग नहीं हुआ था, सब इकट्ठे काम करते थे। और मैं तब पानी की तंगी थी तो खेत में जाकर के कपड़े धोने होते हैं।
1: जी जी जी
0: हाँ, और वहाँ नहाने का सब सब मना होता है, नहाते नहीं थे, कहते कि नहीं हम थोड़ा ब्राह्मण लोग है, हम ब्राह्मण लोग नहीं है, वो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण लोग नहाते हैं, हम नहीं नहाते। तो 2-3 दिन में नहाने देते थे और जैसे कि चलता था।
1: अच्छा, नहाने रोज नहीं देते थे और आपको
0: नहीं,
1: स्वच्छता पसंद है तो फिर क्या करते है?
0: फिर मैं तो नहाती हूँ तो उसको विरोध होता है कि ये कैसी है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते बोलते थे ना कि नहीं नाना नहीं है, हम थोड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते हैं वो नाते थे इस।
1: जी चलिए मधु जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए, इनके अनुभव हमने काफी कुछ सुने हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी, जैसे आपकी शादी हो गई, आपको अध्यात्म में गहरी रुचि थी, सत्संग में आप जाते थे, ससुराल में फिर आप जाने लगे तो विरोध होने लगा, फिर आप रोज नहाते तो नहाने का भी विरोध होने लगा, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? घर पर नल था?
2: हाँ जी, नल तो था, पर ऐसे भी सबका मन भी देखना है ना। उसका मन नहीं है और हम ना रहे, फिर भी नहाना ही है, जरूरी है। फिर नहाते थे, नहाना तो जरूरी लगा, तब भी लगा और अब भी लग रहा है।
1: नहाते और रोज डांट खाते?
2: रोज डांट भी खाते, और उसको हम अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? नहाने के लिए मना करते और हम नहाते, तो संबंध ऐसे प्यार से नहीं रहता है।
1: आपके हस्बैंड के साथ?
2: हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे है।
1: तो कौन मना करते है?
2: सासू, जेठानी, वो कहते कि नहीं नहाना है, ये क्यों नहाना है इसे।
1: तो फिर साथ में ही रहे या अलग हो गए?
2: नहीं, फिर तो साथ में रही, जब तक पहली बेटी आई, दूसरा बेटा आया, तब तक साथ थे।
1: अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे उस समय?
2: वो होमगार्ड में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं।
1: अच्छा, तो आपके गांव में थे?
2: हाँ, गांव में सेवा होती है ना सरकारी, होमगार्ड की, जैसे पुलिस के नीचे।
1: जी जी,
2: कॉन्स्टेबल के नीचे होती है।
1: अच्छा, तो जैसे आपका मायका भी वहीं था और
2: ससुराल भी गांव में।
1: जी, जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े धोने आप खेत में जाते थे, तो पानी की कमी थी तो आपके मायके में भी कपड़े धोने आप खेत पर जाते थे?
2: जी नहीं, वहाँ तो घर पे ही था सब कुछ, घर पे ही कपड़े धोते थे, पर ससुराल में ना दुष्काल हुआ तो वहाँ थोड़ी तंगी हुई पानी की, तो कहते कि आप खेत में जाओ। तो मैंने तो जैसे शादी की आई और तुरंत कपड़े या जो चद्दर वो रजाई होती है ना, एक साथ 18 रजाई धोई, एक दिन भी मैंने बैठी नहीं हूँ।
1: इतना काम करते थे?
2: एक दिन भी बैठी नहीं हूँ। जैसे आज इधर पांव रखा, शाम को शादी करके आए, सुबह सब बोलने लगे इतना काम है, इतना काम है, वो है, इतना धोना है। तो मैंने सीधा कहा चलो मैं आती हूँ, मैं और मेरी जेठानी साथ में गए। फिर एक दिन आई, दूसरे दिन तो सास बोलने लगी कि इतना काम मैं अकेली क्या करूँगी, तो वो तो घर पर रही रसोई के लिए और मैं अकेली गई
1: कपड़े धोने।
2: हाँ,
1: तो शादी होते ही आपके काम में लगा देते हैं। नई नई बहू आई तो थोड़ा लाड़कोड़ भी तो करते हैं ना?
2: करते हैं ना, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी बहू है, हम भी बहुत करते हैं। क्योंकि ऐसे आध्यात्म में जाते हैं ना, तो जैसे हम पर बीती है ना, उस पर ना ही बीते, उसको तो इतना लाड प्यार करते, उसको तो आप करके, आप अभी भी, मैं, मेरी बहू है, उसको आप कहकर ही बुलाती हूँ
1: जी।
2: उसको ऐसे तुकार के नहीं बुलाते, प्यार से ही उसे बुलाते, अगर बुलाना है तो प्यार से ही बुलाते।
1: जी जी। अच्छा, तो जैसे आपका काम में लगा दिया तो आपके मायके वालों ने कुछ नहीं कहा?
2: नहीं नहीं माँ पापा का तो यही था कि मेहनत करो, मेहनत आपको जगह देगी, मेहनत से ही आगे बढ़ना है ना।
1: तो इतना आप काम करते थे तो सास ससुर प्यार करते थे आपको?
2: नहीं, हो अपना अपना तरीका होता है ना, अपना अपना नजरिया होता है।
1: अच्छा, किसी का प्रेम नहीं मिला?
2: नहीं, आध्यात्मिक में बहुत रुचि इसलिए तो जगी ना।
1: अच्छा, तो इसलिए आपको थोड़ा सत्संग से प्रेम बढ़ा?
2: हाँ, प्रेम और बढ़ा।
1: फिर कितने समय में आप पियर जाते थे?
2: पियर तो गांव में ही था, क्योंकि वहाँ खाना, मुझे वहाँ तेल बहुत लगता था सब्जी में, और मायके में तेल नहीं था, तो साग भाजी में मायके ही खाती थी। अब माता जी मेरी और मेरी भाभी थी, सब कहते थे अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता, यहाँ खा लो, और खा करके वहाँ जाती हूँ ससुराल में।
1: तो रोज जाते थे खाना खाने?
2: हाँ, वहाँ रिवाज है, गांव में जो शादी होती है ना, वो 4 बजे या 5 बजे मायके में रोज जाती है।
1: अच्छा,
2: अभी भी
1: टाइम मिल जाता है?
2: नहीं, टाइम निकालते, वो रिवाज हो गया है।
1: तो 5 बजे जा करके खाना खा के वापिस आ जाते।
2: हाँ।
1: फिर ससुराल में खाना नहीं खाते थे?
2: नहीं, सब्जी में बहुत तेल होता है, कोई स्वाद नहीं। तो क्या,
1: तो आप नहीं बोलते कि सब्जी में थोड़ा तेल कम डालो, या आप खुद नहीं बनाते?
2: नहीं, सबको यही पसंद है, मेरी पसंद नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम मैं खा लेते।
1: नहीं तो जैसे नहीं कहते कि आपके चाहिए उत्ती अलग से बना दो?
2: अलग कोई नहीं बनता किसी का।
1: अच्छा, तो इस तरह आपके जीवन यात्रा रही। तो वो कहते हैं ना, गांव में पियर और गांव में ससुराल है, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है बैलेंस बनाने में। तो मुश्किल रहती थी आपके जीवन में भी?
2: हाँ, पर अध्यात्म में बहुत रुचि थी ना, तो मुश्किल नहीं लगा
1: जी। अच्छा, और आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था?
2: तभी मिलता था, फिर वो आध्यात्मिक में जुड़े तो थोड़ा कम हुआ। फिर ससुराल में सास ने और बोला कि अब तो 3 साल हो गए, तो 3 साल में तो बच्चा होना चाहिए। मैके में भी यही कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर तो बेटी हुई। बेटी हुई तो जेठानी थी, वो खेत में चली जाती थी, पूरा काम मेरे पर आ जाता था। जैसे गायों को दोना, भैंस रखते थे इसको दोना, सब काम करना और बच्चे को रखना
1: जी।
2: थोड़ा थोड़ा ज्यादा सासू का साथ था, सासू थोड़ी बेटी को रखती थी, साथ में थे ना जॉइंट फैमिली में
1: जी,
2: तो रखती थी।
1: दूसरे और कोई सदस्य नहीं थे परिवार में?
2: हाँ थे ना, वो है, एक चूल्हे पर ही रसोई बनती थी, पर यहाँ से कटोरी में लेकर वो अपने घर में खाती थी, वो मेरी सास की सास थी ना वो।
1: अच्छा, तो मधु जी, जैसे आप कह रहे थे कि आपको सत्संग का शौक था, इस वजह से परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे और काम की जिम्मेवारी काफी रहती थी आपके ऊपर, और फिर आप कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद आप अलग हो गए, तो सभी अलग हो गए, जेठानी, आप या फिर सास ससुर के साथ रहते थे आप?
2: सभी अलग हो गए, देवरानी भी अलग हो गई, मैं भी। फिर तो देवर की शादी हुई, उसके बाद 1 साल में सब अलग हो गए
1: जी। फिर तो आपको सत्संग में जाने से कोई नहीं रोकता था?
2: नहीं, कोई नहीं रोकता था, मैं चुपके से ही जाती थी सत्संग में। वो जो मेरे पति है ना, उसको जाना अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं अपना ढूंढती थी अंदर से कि भाई क्या मेरी कमी है, मेरा कोई काम छूट ना जाए, उसको बराबर से टाइम देती हूँ, उसका खाना पीना सब काम करना।
1: अच्छा, आप सारा काम करते थे और भजन कीर्तन भी करते थे
2: साथ में? बहुत भजन कीर्तन साथ में ही रहता था।
1: अच्छा, और आप क्या करते थे? कभी
2: सिलाई करते थे? हाँ, बच्चों को पढ़ाई। हाँ, में
1: आपको सिलाई का भी शौक रहा, तो सिलने में आप क्या क्या सिलते थे?
2: ब्लाउज सिलते थे, ड्रेस सिलते थे, सिलाई का काफी शौक था। मैं ब्लाउज भी बना लेती थी और अपना पूरा जो भी है वो सब मैं सिलाई कर लेती हूँ।
1: जी जी, तो आप जैसे सास जेठानी देरानी सबके साथ रहते थे, वहां पर भी सिलाई करते थे या अलग होने के बाद शुरू?
2: अलग होने के बाद, साथ में तो टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि 10 जने का काम था,
1: इसलिए आप अलग होने के बाद सिलाई का काम शुरू किया। तो आप अपना ही सिलते थे या मोल का भी सिलते थे?
2: मैं अपना ही सिलती थी, फिर दो थे, भैंस थी और खेत थी। अलग होने के बाद तो खेत को संभालना होता है, सुबह 8 बजे बाता बना करके 8 बजे निकल जाना, 1 घंटे का चलने का खेत दूर थी।
1: अच्छा,
2: तो वहाँ पहुँच के, आध्यात्मिक में रुचि थी ना, तो वहाँ भी मैं पढ़ लेती थी, कुछ भजन भजन कर लेती थी।
1: वहाँ भजन किसके साथ करते थे?
2: ऐसे अपने ऐसे ही मन से, तो जब मजदूर आते हैं ना, उससे पहले मैं पहुंच जाती थी।
1: अच्छा।
2: हाँ।
1: तो आपके हस्बैंड भी जाते थे?
2: वो दोपहर को रोटी लेकर आते थे, उसको क्या भाता बोलते हैं। हाँ, तो वो भात लेकर के आते, मैं अपने भाता लेकर के जाती थी सुबह, और बच्चों को मेरी माँ रखती थी।
1: अच्छा,
2: अलग होने के बाद।
1: जी जी।
2: हाँ, और शाम को आती थी चल करके, साइकिल भी नहीं, कुछ नहीं था, चल के आना चल के जाना, तो 1 घंटा तो हो जाता है आने जाने में, 2 घंटा।
1: खेत में क्या करते थे आप, कुछ बोते थे?
2: बोते तो वो
1: बुआई आप ही करते हैं या मजदूर करते हैं, आप देख रेख करते हैं?
2: बुआई तो उसी से होती है, ट्रैक्टर से होती है
1: जी।
2: पहले तो बेल था ना, बेल से होती बुआई तो, फिर उसमें सफाई होती है ना, वो हम करते थे।
1: अच्छा,
2: उसके बाद बड़े होकर के कटाई होती है ना, जैसे मूंगफली को पाड़ते हैं, भेगी करते हैं जैसे
1: जी, खटी करते हैं और हाँ, फिर उसकी मिट्टी हटाते हैं।
2: हाँ,
1: मतलब खेत के, खेत के काम में आप ये
2: सारे काम, सारे काम करते थे
1: जी। जी,
2: जो मजदूर वाला होता है ना वो सारा काम करते थे
1: जी। जी, और पढ़ाई में आपको शौक था और उसी गांव में आपकी शादी हुई, तो आपके टीचर लोग नहीं कहते कि क्या तू इन कामों में लग गई, पढ़ाई कर लेती तो अच्छा रहता?
2: टीचर बहुत अच्छी थी, पढ़ने जाते थे तो भी वो ऐसे वार्ता बोलते, ऐसे ही पढ़ाई की भार नहीं दिया, भणतर में तो बहुत अच्छा।
1: जी जी, आप इस तरह खेत में जाते, खेत में आते, आपका टाइम पूरा हो जाता, फिर सिलाई कब करते हैं?
2: सिलाई तो मैं जिस दिन नहीं जाना होता है ना तब करती हूँ, और कभी कभी तो खाने पीने के बाद टाइम निकाल करके जो बनाना है ना वो मन से बना लेती हूँ, करना है कि यही करना है, यही चाहिए घर में और अपने पहनने में, तो रात को भी मैं सिल लेती थी।
1: अच्छा, जब जरूरत पड़ी कि हाँ मेरे को इस तरह के कपड़े चाहिए तो आप खुद का सिल लेते थे?
2: खुद का सिल लेते।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है मधु जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव और भी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: शिवराज सिंह चौहान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो नारी का मान रखे उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी के काफ़ी अनुभव सुने हैं, और भी हम कहना चाहेंगे, मधु जी आप पूरे जीवन अभी तक 52 साल की उम्र है तब तक आप पाटवा गांव में ही रहे, उससे बाहर आपका जाना नहीं हुआ
2: कभी नहीं।
1: तो जैसे आपकी दो बहनें बड़ी है, कभी उनके यहाँ जाना हुआ होगा?
2: एक तो गांव में ही है, एक बाजू में मजेठी है, वहाँ है।
1: अच्छा, पास पास में ही है।
2: हाँ, कभी कभी जैसे कि प्रसंग होते हैं, उसकी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तभी जाना हुआ
1: जी। और आप कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं?
2: नहीं, पहली बार एक आध्यात्मिक ही बैठे।
1: हाँ, पहले जब आप रहे अपने ससुराल में तब तक ट्रेन में नहीं बैठे?
2: ट्रेन देखा ही नहीं था, दूर बाटवे में तो ट्रेन नहीं है, जूनागढ़ से।
1: जूनागढ़ से मिलती है। अच्छा, और जैसे अब आपकी उम्र 52 साल की है, आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, बेटी की भी शादी हो गई होगी?
2: हाँ, बेटी की भी शादी हो गई है, वो उसका भी दो बेटी है, बेटा है छोटा।
1: अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाए तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया?
2: बहुत खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको तो नौकरी भी दिलाई यहाँ तक।
1: बेटी को?
2: बेटे को भी, अभी बेटा भी है, वो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर वहाँ पाजोद में है।
1: अच्छा, दोनों बच्चे जॉब करते हैं आपके?
2: हाँ, बेटी नहीं करती, बेटी को तो अच्छा ससुराल मिला है तो उसको नहीं करने देते, पर अब वो विदेश जाने वाली है।
1: जी जी, शादी हो गई और बेटा जॉब करता है।
2: हाँ,
1: अभी आपको कोई दिक्कत नहीं?
2: जी नहीं।
1: अभी कोई सत्संग से रोकता नहीं?
2: जी नहीं।
1: आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं अब?
2: हाँ, वो सहयोग करते हैं, थोड़ा मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो सत्संग में, तो मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है
1: जी।
2: मैं उसको भी बोलती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
1: अभी भी आपके सास ससुर सभी है?
2: सास है अभी।
1: जी जी जी। अब अच्छे रहते हैं आपके साथ?
2: हाँ, बढ़िया रहते हैं, सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
1: जी जी।
2: हाँ,
1: एक समय था जब कोई आपके साथ अच्छे नहीं रहते थे तो आपका दिल दुखता था?
2: एक समय तो यही था कि जब मैं अलग हुई ना, तब तो मेरे से सब विरोधी थे, फिर मेरी ये सत्संग की वजह से मैं सबसे साथ मिलजुल रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको स्वीकार लेती हूँ, जैसे भी है मैं मिल जाती हूँ उसके, हर प्रसंग में उसके आगे होती हूँ।
1: जी जी जी, बिल्कुल। तो आपने सबके साथ तालमेल बनाए रखा?
2: अभी भी बनाए रखा है।
1: जी जी। और बहू के साथ आपका कैसा व्यवहार है?
2: बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसका नाम भी ऐसा है जैसा उसका काम है, उसका नाम है शीतल। तो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है।
1: जी जी जी। तो आपने बहू और बेटी को समान समझा?
2: हाँ, बेटी से बढ़कर भी बहू को मैंने अपने दिल में रखा है।
1: जी जी।
2: कहते हैं ना, बेटी तो आती है तो जाती है।
1: जी।
2: बेटी से हमारा क्या? हाँ, आती है, वो फोन भी करती है, सब हालचाल पूछती है, पर बेटी से बढ़कर है बहू।
1: जी जी, बहुत।
2: और बहू बहुत अच्छी है।
1: जी,
2: बहुत प्यारी है, और उस जैसा इसका नाम है ना वैसा उसका गुण है।
1: जी। और सिलाई काम आज भी आप करते हैं? हाँ, या छोड़ दिया?
2: नहीं नहीं, करती हूँ अभी भी। अभी तो बहुत अच्छा सिलाई काम हाथ में बैठ गया है।
1: तो आप अपना ही करते हैं या अभी भी मुल्का करते हैं?
2: मुल्का बेटे ना बोलते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं मम्मी, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती है, अभी बहुत अच्छा है।
1: तो पहले आप मोल का भी करते थे?
2: पहले मोल का नहीं, घर का पूरा करती थी, खेत करती थी और पशुपालन।
1: अच्छा,
2: पशुपालन मेरे ऊपर था।
1: अच्छा, कितनी गाय भेजते?
2: 3 गाय भैंसे थी, और उसके बछड़े बच्चे होते हैं वो थे।
1: तो आप अकेले संभालते थे?
2: हाँ, हस्बैंड का तभी थोड़ा कम था साथ सहयोग।
1: जी, तो वो क्यों सहयोग नहीं करते थे फिर? आपने इतना क्यों पाला? खेती को संभालना,
2: पैसे के लिए, पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो खेत में से जो उत्पादन होता है वो तो इतना नहीं होता था तब।
1: लेकिन आपके हस्बैंड तो होमगार्ड थे ना, तो सैलरी तो आती होगी ना।
2: हाँ, वो उसके खाते में जमा होती है, वो घर पर नहीं देते थे ना।
1: अच्छा, घर में पैसे नहीं देते?
2: नहीं देते थे,
1: तो घर कैसे चलेगा?
2: हाँ, बस दूध घर का है, सब्जी खेत की आती है, गेहूं भी खेत के आते हैं, तो और क्या चाहिए? जैसे कि बाहर से कुछ लेना है ना, तो वो गाय भैंस का जो दूध बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसमें से मेरा घर चल जाता है।
1: इसलिए आपने गाय भैंस रखी कि आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते थे?
2: हाँ, तभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते,
1: अभी भी नहीं देते,
2: नहीं देते।
1: तो फिर पैसों का क्या करेंगे वो?
2: वो तो क्या करेगी, ले जाएंगे साथ में, कोई नहीं ले जाता है ना, यहाँ ही पड़ा रहेगा।
1: अच्छा, तो आप जैसे आबू आए, अभी आप रेडियो मधुबन में हमारे साथ है, तो किराया भी लगता है, पैसा भी चाहिए बाहर जाने पर, तो कौन देता है फिर आपको?
2: बेटा देता है ना।
1: अच्छा, बेटा देता है,
2: बेटे से मांगती हूँ। मेरा स्वभाव यही है कि मैं मांगती नहीं, वो सामने से बोलता है कि अभी तो आपका खलास हो गया होगा, इतना दिया था, अब खलास हो गया होगा तो लो मम्मी। मैं तो पहले तो ना ही बोलती थी, मुझे नहीं चाहिए, फिर यहाँ ये तो
1: बाहर जाते हैं तो फिर पैसे दे देते हैं बेटा, लेकिन हस्बैंड आज भी नहीं देते?
2: नहीं,
1: और आज भी जॉब उनकी जारी है?
2: नहीं, वो रिटायर्ड हो गए।
1: रिटायर्ड हो गए, पेंशन आती होगी?
2: नहीं, पेंशन नहीं आती उसमें, नहीं आती है। अच्छा, होमगार्ड में नहीं आती है।
1: अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में होगा, लेकिन देते नहीं है।
2: हाँ, वो सारा जमीन का पैसा तो आता ही है ना।
1: जी, खेती बाड़ी का?
2: खेती बाड़ी का।
1: तो फिर खेती बाड़ी में से भी आपको नहीं मिलता, जबकि आप तो काम करते हैं?
2: मुझे नहीं मिलता।
1: अच्छा,
2: ये महिलाओं की जिंदगी इसी टगल वाली है।
1: फिर भी आप खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करके चल रहे हैं?
2: स्वीकार लिया ना, जैसे भी है।
1: जी जी जी, तो चलिए कार्यक्रम के अंत में आप हमारी बहनें सुन रही, उनको क्या कहना चाहेंगे?
2: मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, और हर परिस्थिति का डट के सामना करना है। जब सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमें अंदर से खुशी भी आएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
1: जी, चलिए, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है मधु जी, सभी नारी शक्ति को, कि मेहनत करना है और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जैसे आप पशुपालन करके थोड़ा बहुत पैसे बचा करके कहीं जाते हो तो लेके जाते हो, बाकी घर से नहीं मिलता है।
2: और सहन शक्ति एक बड़ी शक्ति है, वो सहन शक्ति से हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहता है।
1: जी जी जी,
2: सहन करेंगे ना तो सबके प्यारे रहेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है मधु जी ने, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू जी, थैंक यू उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मधु जी राठौड़ हमारे साथ बने हुए थे। आप जूनागढ़ बांटवा से पधारे हैं और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए हैं। देखिए, आपने जाना है कि नारी शक्ति कितनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एक रुपये पर भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी आप खुश है, परिवार को साथ में लेके चलते, और सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप ईश्वर भजन करते हैं, तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और आपके साथ अव्यवहार किया, फिर भी आप सहनशीलता के दम पर और मिलनसार संस्कार होने के दम पर सभी को साथ में लेके चले और हमेशा खुश रहे, और आज भी खुश है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। यानी आपको समझ में आ रहा होगा, हर रोज मेरा गांव मेरा अंचल में जो कार्यक्रम होता है तो आपका प्रोग्राम है, आपके द्वारा और आपके हित में और जनहित में हमें कहीं ना कहीं पहुंच कर अपने बात को रखते हैं। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे हर वर्ग से मिलते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हम पहुंचे तपोवन में। तपोवन आपको मालूम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फार्म हाउस है, जहाँ हर प्रकार का खेती होता है। और उसी खेती में आज हम बैठकर पर्यावरण का ऊपर में थोड़ा सा बातचीत करने के लिए हम आज निमंत्रण दिए हैं। और हर रोज किसी न किसी गांव का लेते हैं, लेकिन आज खासकर केवल स्थित जो हमारा श्रीमान भोपाल रामपुरे जी उपस्थित थे, इसका पहले भी बहुत सारा एपिसोड बनाए। और अगला कड़ी इसी कार्यक्रम में पर्यावरण को लेकर पूरा गहरी बात, मैंने पूरा डीपली हम लोग जा रहे हैं। पर्यावरण क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है और इसका संरक्षण होगा तो हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो रहा है सबको। हर एपिसोड आप सुनते रहिए तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन एक एपिसोड में नहीं होगा। हम सीरियली उसको बनाए, सीरीज बना दिए, क्योंकि देने वाला जो उमंग उत्साह से दे रहे तो लेने वालों को भी ऐसे उमंग उत्साह हो रहा है। इसलिए हमें भी फोन कॉल आता है और मैसेज आता है, जिसका चलते हम आज आपके पास अगला कड़ी जो एपिसोड है उसी में पर्यावरण का ऊपर में बातचीत कर गए। और जब सुनते हमारा श्रोता मित्र को और अच्छा लगे, जैसे किसका फोन आया था, भाई हमें थोड़ा सरल रूप में कहानी का माध्यम से, कविता का माध्यम से जिसे सुनाएंगे तो और अच्छा, क्योंकि पिछला लिंक में हम कविता का माध्यम से सुनाए थे। तो चलिए, हम देर किस बात के, हमारे साथ श्रीमान जी उपस्थित थे, तो रेडियो मधुबन परिवार की ओर से उनको स्वागत करते हैं, राम राम करते हैं और सभी श्रोता मित्रों को भी राम राम और ओम शांति। तो सर जी आपको स्वागत करते हैं, आपका तो परिचय पहले भी दे दिए और आपका जो उमंग उत्साह देकर मैं भी समय को निकाल कर ही आपके पास, आप हमारा पास पहुंचते हैं, तो आपको वेलकम करते हैं, सुस्वागतम हमारा श्रोता मित्र की तरफ से, रेडियो मधुबन की तरफ से आपका स्वागत है।
1: राम राम भाई साहब को, बीके पवित्र भाई रेडियो मधुबन में मुझे जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, जहां मैं पर्यावरण पर अपनी जो सोच है उसको सरल रूप में आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जो आपका समझ को विकसित करेगा।
0: जी जी, बहुत अच्छा।
1: आज एक छोटी सी कहानी
0: जी,
1: और उसी कहानी के सार के रूप में आप कुछ समझ पाएंगे कि वो पर्यावरण से किस तरह संबद्ध है। ग्रामीण परिवेश, वृक्ष बिल्कुल हरे भरे और उगता हुआ सूरज, सवेरे लालिमा छाई हुई है, उषा में एक तरह से आभास होता है जब चिड़ियाएं चहकती है
0: जी,
1: महकती है, तो प्रकृति जब महकती है तो एक सुंदर सा शीतल सा आभास होता है जो हमारे मन और मस्तिष्क को कुछ सृजनात्मकता के लिए प्रेरित करता है। गांव बिल्कुल छोटा सा है
0: जी,
1: बालक मिट्टी में खेल रहे हैं, अठखेलिया कर रहे हैं। प्रकृति ने हम सभी लोगों को जो दिया है, इस तरह से सब यहाँ आनंदित रहें, खेलें, घूमें, अपना विकास करें। मिट्टी को उड़ा उड़ा करके खेल रहा था बालक। अब देखिए, सामान्य तौर पे हमारे परिवारों में क्या हुआ करता है, अपनी अपनी दृष्टि होती है। पिताजी आते हैं, बच्चे अठखेलिया कर रहे हैं, मिट्टी को उड़ा रहे हैं, तो वो तो उसका तो आनंद ही अलग है, आनंद ही अलग है। पर अब क्या हो गया है, पिताजी जब आते हैं, अरे भाई मिट्टी में हाथ गंदे कर रहे हो, स्वाभाविक है हाथ गंदे नहीं करने। लेकिन वो जो खुशी प्रकृति के साथ में उसको मिल रही है, वो कई रोगों से उसको कोसों दूर रखती है, क्योंकि उसमें मुस्कुराहट है, उसमें आनंद आ रहा है उसको, और वही चीज उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो तुरंत माँ आती है, देखिए एक दृष्टिकोण का कितना फर्क है। बच्चे को खेलने दो, फिर बच्चे को डांटना तो खेलेगा, इस मिट्टी में ही तो पैदा हुए हैं हम सब, और इसी मिट्टी से ही जो सब कुछ उत्पन्न है उसी से हमारा पालन पोषण हो रहा है, खेलने दीजिए इसको। परिवार का वातावरण, पिता भी बच्चे के लिए ही कह रहा है कि भाई वो डस्टिंग इतना नहीं है कि उसके आंख नाक कान के अंदर घुस जाए,
0: अपने अपने एंगल में,
1: अपने अपने एंगल में सब सही है। अब तो बहन आती है वहाँ, छोटी बहन, उसकी परिवार ने, अब गांव में घर है तो तुलसी का पौधा आंगन में सामान्य तौर पर लगाया जाता है। बहन कहती है, भैया इधर आओ, पापा की बात भी मान लो, हाथ धो लो।
0: अच्छा।
1: तो बच्चा खुशी से हाथ धोता है, पर हाथ उस तुलसी के पौधे में नहीं धोता, वो किसी और पौधे में धोता है, वहाँ उसकी आस्था है, एक स्पिरिचुअल जुड़ाव है, तो वो कहीं और हाथ धोता है, बाकी जो गमले हैं उनमें हाथ धो लेता है और फिर बहन से पानी लेकर के खुशी से उस तुलसी के पौधे को पानी पिलाता है। उसकी खुशबू, उसका जब पत्ता तोड़ता है तो एक ऐसी खुशबू आती है कि इसमें दिल और दिमाग सभी में एक अच्छी तरंग सी उठती है और मन प्रफुल्लित हो जाता है, सभी का मन प्रफुल्लित हो गया और वह परिवार रोज तुलसी को थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते हैं। देखिए फायदा क्या है, एक बार उसको हल्का बुखार आया बच्चे को, तो माँ ने वो तुलसी के पत्ते मंगवाए और उसमें कुछ अदरक वगैरह मिला करके उसको काढ़ा पिलवाया, हल्का सा जुकाम था शहद के साथ, ठीक हो गया।
2: अरे वाह,
1: तो यह है पर्यावरण, खुशी भी है और जीवन भी है,
2: इलाज भी है।
1: इसका तो भाई संरक्षण करना ही होगा, तन से कर्म करके, मन से आत्मशुद्धि करके, विचार करके, क्योंकि यह पर्यावरण हमारे और सबके लिए काम का है, धन से, अंदर से और बाहर से, अंतः चिंतन से और बाह्य चिंतन से, तो हमको इस पर काम करना होगा। जो लगता है कि एक
2: कहानी से, बहुत
1: इस कहानी से आप बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे कि पर्यावरण कहता क्या है, करता क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, ये चीज इसमें सामान्य तौर पे स्पष्ट हो जानी चाहिए।
2: सही बात, जैसे सर ने बताया कहानी का माध्यम से मिट्टी, पानी, पौधा, तुलसी का और ये सभी का रचनाकार जो मालिक जिसको कहते हैं, माता, पिता,
1: पूरा परिवार,
2: परिवार, बहन, उसका संरक्षण बने पति, प्रकृति पति।
1: जी हाँ जी हाँ,
2: मालिक प्रकृति पति तो परमात्मा होते हैं, ऊपर वाला होते हैं, लेकिन जो साकार में उसको देखभाल करने के लिए मिट्टी का भी देखभाल,
1: देखभाल तो हमको करनी पड़ेगी,
2: पड़ता है पानी का भी शुद्ध, कहाँ भी फेंकना है कहाँ नहीं फेंकना है उसका भी
1: देखना पड़ेगा,
2: ये भी विचार से, नहीं तो
1: शुद्ध अंत है विचार से, अंतःकरण से आप विचार करेंगे।
2: कहाँ पर हाथ धोना है, जब मैला पानी तुलसी का पौधा पर न हो, जब भावना उसका कितना अच्छा है, तुलसी पौधा को सम्मान देते हैं, माता तुलसी माँ मैंने कहा देवी।
1: जी हाँ जी हाँ,
2: इससे क्या होता है प्रकृति साथ हम कहना नहीं पड़ा, हम सीख जाते हैं क्या करना क्या नहीं करना, बाई बर्थ से हमको धीरे धीरे प्रेरणा आती,
1: कुछ संस्कार में,
2: संस्कार में आ जाता,
1: संस्कार में
2: देखते देखते संस्कार आते। इस कहानी से हमें ये सीख लेना चाहिए, जो मुझे जो समझ में आ रहा है, देखो कितना विचित्र ये मैंने प्रकृति का खेल है, और कुछ लेता नहीं प्रकृति, आपने लेते हैं उससे
1: मैनेज करना है, वो बहुत कुछ देगी,
2: कुछ देगी
1: आपको, थोड़ा सा देना उसकी तरफ व्यवस्था करनी है, वो इतना देगी कि जिसकी सीमा नहीं, जिसकी सीमा नहीं।
2: और उनका जो माता का जो विचार है, पिता का जो विचार है और बहनों का जो विचार है, भाई का प्रति, छोटा भाई हो चाहे बेटा के प्रति,
1: अपना अपना एंगल, सभी का
2: पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव,
1: सभी का पॉजिटिव है, सभी का पॉजिटिव,
2: उसको ऊपर बढ़ाने के लिए, उसको जागरूक कराने के लिए, उनका अंतर्निहित गुण को विकसित करने के लिए ये एक मौका था।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: और बच्चा ने सभी का बात माना है,
1: सभी का माना है,
2: बड़ों को बात मानने से क्या होता है, बड़े जो करते हैं, ये हमारा माता पिता, बड़ा भाई, बड़े बहन, जो भी हमारा है, तो वो हमारा भलाई के लिए करते, लेकिन उस समय हमारा कोमल मोती बा शरीर हमारा इतना रिसीव नहीं कर पाता, जिसका कभी इधर उधर हो जाता, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। और हमारा परिवार डेली रोज मरा की एक परिवार में ऐसे घटना आते हैं।
1: जी हाँ जी हाँ,
2: तो इस कहानी हम तो छोटा सा एग्जाम्पल भाई साहब ने बताया, लेकिन आगे के लिए आपका भी परिवार में ऐसे कोई कहानी हो तो हमें जरूर बताना, शेयर करना, रेडियो मधुबन आपके लिए जी हाजिर है, और हमारा नंबर तो पहले भी बताया थे, उस नंबर पर आप सो करिए फोन। और सर ये कहानी से बहुत कुछ सीख मिलता है और ऐसे होना चाहिए, तो और क्या कहना चाहिए, तो कहानी के माध्यम से जो लिया है इस कहानी को, इससे हमें खासकर हमारे श्रोता में तो क्या सीखना चाहिए।
1: हाँ, इस कहानी से ये सीखना है कि हम प्रकृति जब हमको इतना देने को तैयार है,
2: जी सर,
1: तो हम सब मिल करके छोटा छोटा प्रयास अगर सभी करेंगे,
2: जी,
1: परिवार के साथ मिल करके करेंगे, तन मन धन जो भी तरीका हो उससे
2: अपनाए,
1: हाँ उसको अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से यह प्रकृति हमें बहुत कुछ दे देगी, बहुत कुछ दे देगी। जो ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, जो घटनाएं हो रही है,
2: ये आपका सहायक होगा, रक्षक होगा आपका,
1: वो सब आपकी रक्षा करेंगे। प्रकृति की तरफ थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है।
2: अब देखना प्रकृति आपका दासी बनकर उभा होगा, मैंने ऑर्डर करिए मुझे क्या
1: जी चाहिए? जी जी, प्रकृति के पास बहुत कुछ है, वो ये कहती है कि हमारी तरफ आगे बढ़ो,
2: उसको आभास हो जाता है, हमें आभास नहीं होता है, लेकिन उसको आभास होता है, पशु पंछी और पेड़ पौधे को आभास होता है,
1: आभास होता है, आभास होता है,
2: पहचान तब क्या आगने वाला समय में क्या विकटल रूप आएगा, क्या भूकंप होगा कि बाढ़ आएगा,
1: भूकंप होगा तो पहले संकेत देती है प्रकृति,
2: देती है, तो उसको हम कैच कर पाएंगे, तब हम जब मालिक हो वो हमें तुरंत समझा देगा।
1: बिल्कुल,
2: ये बात हमें अच्छा लगा, क्यों हम देखते हैं आजकल जो रील बनता है ये सब बनता है, सो देख रहे क्यों प्रकृति को हम मान लीजिए जैसे ट्रीट करेंगे वो भी हमें ऐसे ट्रीट करेगा,
1: वैसे ही ट्रीट करेगी और बहुत कुछ देगी।
2: हम मित्रता का साथ जो ट्रीट करेंगे अतृप्त नहीं होगा, मित्र का साथ दे, पेड़ को अपना मित्र बना दे, पशु को अपना मित्र बना दे, शत्रुता नहीं, वो भी हमें उससे ज्यादा मित्र को
1: सहयोग ज्यादा सहयोग करेगा।
2: तो पर्यावरण का मुख्य लक्ष्य हमारा आसपास जो इर्द गिर्द जो हो रही है उसको थोड़ा संभाल के और अपने रक्षा करने के जितना हो सके, ना ज्यादा ना कम,
1: बिल्कुल जितना हो सके
2: हमने कहा 100%
1: जैसे हम अगले एपिसोड में आपसे बात किए थे
2: जी
1: कि ये जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण में जब जैव निम्नीकरण होता है, सूक्ष्म जीव अपघटन करते हैं, ये शब्द थोड़ा मैं सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपघटन, जैसे भोजन किया उसका वेस्ट बचा, वेस्ट क्या कहें, भोजन हम नहीं किए तो जो बचा हुआ जो भोजन है वो
2: बच जाता है,
1: जो बच जाता है, अब जो अपघटित नहीं हो पाता, थोड़ा सा हो जाएगा लेकिन जब ज्यादा है तो फिर क्या होगा कि वो अपघटन बढ़ जाएगा, जैसे रसोई का कचरा है या अन्य जो किसी चीज में से निकला हुआ वेस्ट है जिसको जीव उसको तोड़ते हैं धीरे धीरे करके, तो जो जैव निम्नीकरण होगा तो निश्चित रूप से अगर उसका सदुपयोग कर लिया जाए
2: तो फायदा है,
1: वेस्ट मैनेज करके, जैसे गीले का गीले में डाल दिया जाए कचरा, सूखे का सूखे में डाल दिया जाए, जैसा सिस्टम बता रहा है सरकार ने खूब प्रयास किए, तो निश्चित रूप से वो नहीं तो मिक्स होकर के तो वो नुकसान कर जाएगा उसको, क्योंकि अलग नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, तो वो जो है जो कचरा है वो प्रदूषण पैदा करेगा। और वो अगले एपिसोड में बात हुई थी कि इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा सिस्टम कि मुझे लगता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पारिस्थितिक जब उसका चक्रण नहीं होता तो इम्बेलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु इसमें प्रदूषण में कहूँ, जैव अनिम्नीकरण, ये तो अपघटन से निम्नीकरण हो रहा था, पर जहाँ अनिम्नीकरण है, अनिम्नीकरण में जिसका अपघटन ही नहीं होता,
2: ऐसा भी है,
1: ऐसा भी बहुत कुछ है,
2: तो उसका
1: जो टूटता नहीं है, जो अपघटन नहीं होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे कीटनाशक,
2: हाँ हाँ हाँ,
1: कीटनाशक जितने भी है पेस्टिसाइड्स,
2: ओके, रासायनिक
1: तो रासायनिक जितने भी पेस्टिसाइड्स सामान्य तौर पर अपघटित नहीं होते। आपने सब्जी पे छिड़क दिया उस जीव को मारने के लिए, अब तो नए नए तरीके सरकार ने खूब ज्यादा डेवलप कर दिए, अपनी जो IIT कानपुर है सर, मैं सीधा कई बार उसको दिखता रहता हूँ, वहाँ इसके लिए स्पेशल सेल बिठाया है जो इस पर पूरा पूरा काम कर रहा है कि बिना रसायनों के भी ये जितना भी है ये जो कीट पतंगे जो नुकसान करते हैं उसका
2: उपाय है,
1: उपाय किया जा सकता है, और पेस्टिसाइड
2: बिना खेती करते हुए उनका कोई नुकसान न हो,
1: नुकसान न हो,
2: क्योंकि उसमें क्या जो आपका जो सहायक कीटाणु है,
1: हाँ हाँ हाँ,
2: उपकारी वो भी मर जाते हैं,
1: हाँ, नहीं तो वो जो उपकारी कीटाणु है वो बच करके उसमें फायदा करे,
2: जैसे केचुआ है,
1: जी जी बिल्कुल,
2: जैसे मधुमक्खी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो ये तो हमारा सहायक बड़ा मित्र है,
1: मित्र है, तो उनको भी हम मार देते हैं क्योंकि वो पेस्टिसाइड उसके जाएगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, केचुए है उर्वरता को बढ़ाते हैं वो मर जाते हैं,
2: बहुत
1: तो इस तरह से सर
2: उसके लिए
1: कीटनाशक। दूसरा प्लास्टिक,
2: तो बहुत समस्या संभव घर घर में,
1: अब सर इसमें ये बहुत बहुत जबरदस्त चीज आती है,
2: सरकार भी कुछ किया
1: नहीं, सर बहुत किया सर, बहुत किया है बस, पर सर जिसकी समझ है ना काम वही कर रहा है, समस्या सरकार की नहीं है, समस्या NGO की नहीं है, समस्या समझ की नहीं है, समस्या ज्ञान की नहीं है,
2: समस्या
1: अभी जो हम आप प्रयास कर रहे हैं वो जो सर इसको जो समझ है, आप एक कह सकते 100 में कोई एक व्यक्ति समझता है और फिर वो एक में से कोई, मतलब जैसे 1000 में से 10 लोग समझते हैं तो 10 में से कोई एक व्यक्ति उस पर काम के लिए आगे बढ़ता है, तो काम तो एक ही कर रहा है
2: जी, जी।
1: तो पर 1001 ही हुआ, तो फिर किस तरह से हम संरक्षण कर पाएंगे सर। अब जैसे प्लास्टिक है, बड़ा ऐसा
2: प्लास्टिक तो है, जो रासायनिक आपने बोले ना, जो पेस्टिसाइड जो उसके लिए क्या निवारण कर सकते,
1: उसका
2: पेस्टिसाइड प्लास्टिक का तो सरकार बहुत मुहिम चला है,
1: जी जी बिल्कुल,
2: आप इसका पहले जो बताए थे
1: जी जी
2: उसका बारे में थोड़ा सा करिए, कैसे कर सकते हैं
1: कीटनाशक का ये अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, अभी तो सरकार ने एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है वो पूरी की पूरी इस पर लगी हुई, IIT कानपुर इसके लिए विशेष काम कर रहा है, पूसा इंस्टीट्यूट जो अपना दिल्ली वाला है वो इस पर सर विशेष रिसर्च कर रहे हैं, और पुणे वाला एक इंस्टीट्यूट है, ये पूरा इस पर काम कर रहे हैं, और जो ये पूसा ये जो अपने कानपुर इंस्टीट्यूट है वो तो तो इसके जो कौन सा कीट कहाँ प्रभाव करता है, कैसे करता है, उसका अल्टरनेट क्या होगा, इस पर पूरा सिस्टम ही लगा दिया उन्होंने। और ये यूपी में तो आगे पीछे जा करके वो सब बता रहे हैं
2: सर। ये आपने जो बताया तो पूरा भारत नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर पर।
1: जी जी जी जी।
2: लेकिन यहाँ पर जो आबू रोड क्षेत्र में हम जो बात कर रहे हैं,
1: जी जी,
2: यहाँ का समस्या है और यहाँ का उसको कैच करने के लिए वो कितना संभव है,
1: जिससे
2: और थोड़ा सरल करेंगे तो यहाँ का जो लोग कास्कर भाई हो, चाहे अपने परिवार वाले, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का, कोई भी पोस्ट का है,
1: जी,
2: उसको जो पर्यावरण को रक्षा करने के लिए पेस्टिसाइड हो, जैसे घर में जो हम भी लेते हैं, हम चूहा मारने के लिए भी पेस्टिसाइड लगाते हैं,
1: जी जी,
2: ठीक है, उसका जल पेस्टिसाइड चूहा नहीं खाकर जो मनुष्य का अंदर में कभी चाव का
1: नुकसान करता है,
2: नुकसान होता है
1: सर,
2: तो उस चीज हम तो भलभांति जानते हैं। तो वो पेस्टिसाइड को प्लास्टिक तो बड़ी बात नहीं, ये जो छोटा छोटा चीज है बड़ा काम कर लेता है,
1: बहुत
2: जो अति मानने वाला नहीं उसको मार देते हैं।
1: कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब से, मतलब वो कैंसर के इलाज के लिए लोग निकलते हैं इतना, क्योंकि वहाँ पेस्टिसाइड का यूज सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ।
2: आबू रोड क्षेत्र जैसे
1: अपने यहाँ भी हो रहा है।
2: हाँ,
1: आबू रोड क्षेत्र में भी हो रहा है।
2: तो सर उसके लिए देखिए, हमारा इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्व जहाँ से हम बात कर रहे हैं, अभी आइए बिना रासायनिक से,
1: ये
2: चीज जो पेस्टिसाइड बिना पेस्टिसाइड जो रासायनिक जैविक खेती भाई योगी खेती से संकल्प का माध्यम से करते हैं,
1: ये बात,
2: और इसको सीखने के लिए बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: कानपुर
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: तपोवन जहाँ हम लोग सभी गवर्नमेंट का ऑफिसर गवर्नमेंट भेज रहा है यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए, हमारा मॉडल देखो और यहाँ पर आप अपना यही जमीन है आपका बाजू में वही जमीन है
1: जी,
2: अंतर देखना, और यहाँ पर कोई रासायनिक कोई जो भी आता
1: सर, वो जो वहाँ से मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र को वो सारी चीजें भेजी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र अपने यहाँ पर जैसे ब्रह्मा कुमारी का तपोवन है, जहाँ ये बिना पेस्टिसाइड के
2: यूज करते,
1: जो पेस्टिसाइड को यूज न करते हुए जो खेती की जाती है बायो,
2: उससे आपने केवल शायद देखे तब तो अनुभव आता, बता
1: देखेंगे तभी तो पता चलेगा, तो आकर के देखे तो निश्चित रूप से उस दिशा की ओर ये कदम बढ़ सकता है।
2: यहाँ पर अनेक मोड अनेक जगह में भी लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था जहाँ पर है गवर्नमेंट यहाँ से ट्रेनिंग कर भेजते पैसा भाई,
1: जी जी जी बिल्कुल,
2: सभी कृषि अधिकारी यहाँ पर आते हैं,
1: आते हैं
2: और कास्कर भाई को भी भेजते हैं भाई तू ऐसे खेती करना है।
1: हाँ।
2: तो हमारा ब्रांचेस चार तरफ है, वर्ल्ड व्यापी है, जो इससे संबंधित है
1: जी,
2: तो उनको यहाँ पर सरकार से पूरा जाना ना खर्च देते हैं,
1: पूरा सरकार खर्चा देती है, तो आकर के सीखना चाहिए उस चीज को। वहाँ
2: महाराष्ट्र हो चाहे हमारा रायपुर हो, कितना जगह में इसका मॉडल बना है, तो कहने मतलब आप सुन रहे इस कार्यक्रम को, आप फ्री में कभी भी तपोवन में आइए, तपोवन में अपना जो आमथला और शांतिवन
1: तलैटी शांतिवन के बीच में, बीच में
2: उसमें आप आएंगे तो जरूर देख कर जाइए एक बार
1: कि किस तरह से,
2: और आपको कोई पैसा नहीं, खाली बोल देना भाई हम
1: बिना पेस्टिसाइड्स के,
2: खाली रेफरेंस देना पड़ेगा, अगर कोई पूछेगा कहीं सेकुट रहता है तो आप उसको थोड़ा बोलना भाई हमें रेडियो मधुबन से सुने थे ऐसे ऐसे प्रोग्राम, और रेडियो मधुबन से हम सुनकर हम आए, तो रेडियो मधुबन से आप संपर्क कर दीजिए, नहीं तो आप करा दीजिए, नहीं तो हमें घुमा दीजिए,
1: बिल्कुल सही।
2: तो यहाँ पर गाइड करने के लिए हमारा भाई को आपको सीधा पूरा दिखाएगा, पूरा उसके लिए हमारा गाइड
1: बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहाँ पर
2: बैठा कर आपको लेगा पूरा दिखाने के लिए,
1: गाइड यहाँ पर उपलब्ध है, और बिना
2: रूप में आएंगे
1: कीटनाशकों के निश्चित रूप से यहाँ पर किस तरह से खेती का यील्ड भी बहुत ज्यादा हम ले सकते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर
2: गिनती करके तो गिनती नहीं कर पाएंगे आज कितने पौधा यहाँ पर है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: फल फूल छायादार सब चीज रखा हुआ है। लेकिन जानेंगे और कुछ बातें विराम के बाद है ना सर, कुछ और टॉपिक रह गया आज के लिए, तो लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद सुनेंगे सर जी से, तो सुन रही मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
1: थैंक यू सर।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में हम पहुंच रहे हैं पर्यावरण को लेकर। पर्यावरण कितना एक मैंने दोस्त जैसे बात क्या कहे, उसको प्रभु माने जो भी माने वो तो दाता है, और उसका कितना वर्णना करे कम ही होगा, जिसे परमात्मा का महिमा अपरंपार है। ये अपना प्रकृति का भी महिमा जो करें तो अपरंपार है। सरस्वती बट पर लिखेगी तब भी उसका महिमा कम ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल कम ही पड़ेगा, उसकी
0: महिमा अपरंपार है। जैसे परमात्मा अपरंपार है, डायरेक्टर जो है, और ये प्रकृति जो स्टेज है, जो पांच तत्व है, इनका भी महिमा
1: अपरंपार है,
0: अपरंपार अनादि है।
1: प्रकृति अनादि है, अनंत है,
0: अनंत है, परमात्मा भी अनंत है,
1: अनंत है, वो भी अनादि,
0: तो उसका महिमा कोई कर नहीं,
1: जान नहीं सकता,
0: खुद कर सकता है, तो प्रकृति खुद कर सकता है अपना महिमा। तो हम तो मनुष्य जितना करे कम ही होगा, फिर भी हम प्रयास करते हैं। तो इसका कड़ी में सर को पुनः स्वागत करते हैं। सर, जैसे हम लोग अंत कर रहे थे, जैसे कहानी का माध्यम से विचार सबका अलग अलग है,
1: जी, जी।
0: जब विचार हमारा ठीक होगा तो प्रकृति भी ठीक हो जाएगी, सात्विक प्रकृति होगा। विचार तो करते हैं,
1: जी, जी।
0: चोर भी अपना चोरी करने का एक विचार करता है, प्लानिंग करता है,
1: बिल्कुल,
0: उसको हम विचार नहीं कहेंगे,
1: बिल्कुल,
0: वो तो नेगेटिव में,
1: वो नहीं, विचार तो विवेकपूर्ण उपयोग तो अपने को करना है,
0: विवेक के साथ सात्विकता से। तो चलिए सर को स्वागत करते, क्या कहना चाहेंगे इस लिंक में।
1: सर, अभी मैं एक बैलेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी बात अभी निकली थी प्लास्टिक की।
0: हाँ।
1: प्लास्टिक में मैं ये कहना, सरकार ने खूब किया काम,
0: बराबर,
1: पर सर इसका एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक कहीं कहीं उपयोगी भी है, उसका उपयोग तो करना है, प्लास्टिक की टंकी तो बनानी पड़ेगी। प्लास्टिक का जैसे ये इनमें जो उपयोग होता है खेती बाड़ी के अंदर, जहाँ वहाँ जो उसकी जो एक धार बांधने के लिए
0: बैठे वहाँ पर कुर्सी,
1: तो उपयोग तो करना पड़ेगा, इसलिए आवश्यक उपयोग तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसको, क्योंकि वो भी किसी न किसी चीज की प्रतिपूर्ति तो कर रहा है।
0: डिजेबल हो सकता है ना,
1: जी सर,
0: इसको उसका एज डेट खत्म हो गया, ये डिजेबल तो हो सकता है, ये प्लास्टिक जो चेयर है
1: सर, ये सर ये डिजेबल नहीं होता है, नहीं होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है।
0: हाँ।
1: अगर ये डिसॉल्व होगा और इसको तोड़ दिया जाएगा, हाँ, तो ये दूसरे रूप में परिवर्तित होगा, पर रहेगा प्लास्टिक का प्लास्टिक ही, और फिर आगे जाएगा तो इससे कोई दूसरा चीज बन जाएगा, तो रहेगा प्लास्टिक, और जब धरती पर ये चीज चली जाती है तो ये फिर पानी वगैरह को रोकती है,
0: चला जाता है,
1: हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये नुकसान ज्यादा है इससे, इससे नुकसान बहुत ज्यादा है। तो सर जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग करें,
0: बराबर,
1: हर चीज का उपयोग है, हाँ, पर ये ज्यादा नुकसान करती है, इसलिए इसका कम उपयोग किया जाए, ये एक इसमें से बिंदु निकल करके आता है कि जितना कम हो उतना कम उपयोग करें, तो निश्चित रूप से हम बैलेंस कर जाएंगे, नहीं तो आप हम कहेंगे कि आप तो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं,
0: बैठे है।
1: ये चीज सर बात आई थी, कहीं किसी पर्यावरण की बैठक में बैठा हुआ था, तो वहाँ किसी भाई ने प्लास्टिक की माला यूज कर ली,
0: प्लास्टिक का फूल होगा नहीं तो कुछ,
1: हाँ, प्लास्टिक गुलदस्ता, वही प्लास्टिक की फूल,
0: स्वागत करते हैं
1: आप पर्यावरण में आए हो प्लास्टिक की माला। मैंने कहा बात तो पते की कही, वहाँ तो फूलों का गुलदस्ता ही होना चाहिए, फूलों की माला ही होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो प्रकृति से प्राप्त है, प्रकृति का आप काम कर रहे हैं, तो सायुज्य तो होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कुछ चीजें अगर उसके लिए आवश्यक रूप से उपयोग की जा रही हैं, तो उसका एक बैलेंस होना चाहिए, जो अति आवश्यक है उतना उपयोग तो करना पड़ेगा। प्लास्टिक की गाड़ी में बैठ करके तो हमको जाना ही पड़ेगा, फिर आप कहेंगे कि ये तो जितना आवश्यक है उतना उपयोग इसका किया जाए, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हर चीज को नकारा तो नहीं जा सकता,
0: जी जी।
1: दूसरा बिंदु सर इसमें आता है, जैव अनिम्नीकरण में, मतलब ये अनिम्न होते हैं, ये जैसे प्लास्टिक जमीन में चला गया, पानी नहीं जाने देगा, एक लेयर बना देगा, जहाँ पानी का स्टोर करना वहाँ नीचे प्लास्टिक आप बिछाते हैं, वहां तक तो ठीक है,
0: जी।
1: जैसे आप प्लास्टिक पानी स्टोर करना चाह रहे हैं, तो ये पानी के भाई यहाँ पर भरा पड़ा रहे, तब तो प्लास्टिक का उपयोग चाहिए चाहिए। लेकिन इसको जो वाटर टेबल बढ़ाना है तो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, अगर आसपास पानी का लेवल बढ़ाना है तो फिर प्लास्टिक का उपयोग उस तल में करेंगे तो निश्चित रूप से वो वाटर टेबल नहीं बढ़ाएगा, तो जहाँ पर आवश्यक है वहाँ उपयोग करना है। मैं दूसरा बिंदु कह रहा हूँ, रेडियो धर्मी जितने पदार्थ है, भाई साहब इतना नुकसान करते हैं। अब देखिए रेडियो धर्मी पदार्थों के भी पूरी दुनिया में दो दृष्टिकोण बने हुए हैं, एक तो उसका एटॉमिक एनर्जी का पॉजिटिव उपयोग हो जाए, और एक एटॉमिक एनर्जी का विध्वंसक उपयोग हो रहा है। पॉजिटिव उपयोग तो विकास को लाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत बूस्टअप कर देगा,
0: परिवहन रास्ता जंगल को भी, मैंने जहाँ पर पहाड़ इलाका है वहाँ पर भी ब्लास्ट करके,
1: बिल्कुल
0: करते हैं,
1: मैं वही कह रहा हूँ। तो फिर वो जो है, वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो धर्मी पदार्थ, वो रेडियो धर्मिता जब नेगेटिव है, कंट्रोल्ड है, वहाँ तक तो दिक्कत नहीं, अगर रिएक्टर पर आपने कुछ कर दिया तो वो स्थिति हो जाएगी कि हिरोशिमा नागासाकी और जो भी इतने भयंकर नुकसान हो जाएंगे जहां पर सैकड़ों वर्षों तक बीमारियां नहीं जाती, कैंसर ठीक नहीं होता, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये सारा अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह इनका जो प्रकृति तक इनका यूवी रेज का वगैरह का अल्ट्रा रेज जो भी है आना जाना भी बहुत दिक्कत वाला हो जाता है, तो ये तो मानवता के नष्ट होने के चांसेस से बन जाते, तो ये अब घटित नहीं होते सर, इनका कंट्रोल्ड उपयोग होना चाहिए।
0: जी जी,
1: सरकारें कर रही है, दुनिया में इसकी एटॉमिक एनर्जी को किस तरह से शांतिपूर्ण उपयोग करे इसके लिए खूब कानून बने, लेकिन जो हमारे शक्तिशाली राष्ट्र है
0: जी,
1: अब उसका समझ करके सही उपयोग करे तो भी ठीक है, अन्यथा तो ये एक सीधे सीधे विनाश को बताता है, जहाँ क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सब फिर क्या आप और हम कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये जो रेडियो धर्मी पदार्थ है इसका कंट्रोल्ड उपयोग होना अति आवश्यक है। सरकारें कहती तो है विकास के लिए तो करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि नहीं होगा तब तो नहीं चलेगा, लेकिन जहाँ पर इसका उपयोग डिस्ट्रक्शन के लिए,
0: कंस्ट्रक्शन के बदल डिस्ट्रक्शन,
1: नाश के लिए हो रहा है, युद्ध में हो रहा है सर, सीधे सीधे मैं कहूँ तो लोगों को मारने में हो रहा है, जमीन को कब्जाने के लिए हो रहा है, वहाँ तो गलत,
0: दोनों तो हो रहा है,
1: वो तो गलत ही,
0: कहीं कहीं उसको पॉजिटिव में देखेंगे तो पूरा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, वो पॉजिटिव में
1: पॉजिटिव का तो वैसे कंट्रोल उपयोग है, वो तो आवश्यक है ही, वो तो करना ही,
0: लेकिन आवश्यकता जनसंख्या बढ़ रहा है उसी हिसाब से सब कुछ तो
1: आवश्यकता तो है,
0: आवश्यकता उतना तो नहीं दे पा रहे, इसलिए हमें अपना बुद्धि से,
1: लेकिन जो युद्ध हो रहे हैं
0: वो तो विनाशकारी, जो भी अपना
1: इसी का उपयोग हो रहा है,
0: आत्मरक्षा का है चाहे डिफेंस में,
1: वो जो भी कर रहे हैं तो
0: परिणाम तो नुकसान का,
1: तो फिर वहाँ शांति कैसे है, जबकि मनुष्य का जो मूल उद्देश्य है वो शांति का
0: है।
1: धातु अपशिष्ट जितने भी बचते हैं
0: जी,
1: धातुओं का अपशिष्ट, अब धातु से सामान तो बनाना ही पड़ेगा, जैसे कोई भी
0: लोहा
1: है, आयरन ओर है, लोहा अयस्क कहते हैं, ठीक है, तो अब उसमें से जो भी है, जो उसका जो प्योरिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस होता है, वेस्ट तो निकले
0: जरूर,
1: आवश्यक भी है,
0: जंग भी रहता है तो उसमें,
1: लेकिन उसको कहाँ पर ले जा करके उसका निस्तारण किया जाए वो आवश्यक है, अपने आबरूड क्षेत्र में मॉडर्न इंसुलेटर में इंसुलेटर बनते हैं, आवश्यक है, विद्युत परिचालन के लिए इस इंस्ट्रूमेंट की बड़ी आवश्यकता है,
0: ओके,
1: लेकिन इसका जो वेस्ट है जब ये टूटता है फूटता है
0: तो इसका जो अवशिष्ट
1: तब उसको कहाँ डाले, इसका कोई सिस्टम होना चाहिए,
0: बहुत अच्छा,
1: तो वो जो सिस्टम ठीक तरीके से
0: करेगा
1: ध्यान
0: तो
1: में रखा जाए
0: तो
1: पब्लिक भी ध्यान में रखे, सरकार भी ध्यान में रखे, तो निश्चित रूप से फायदा है,
0: उससे भी फायदा
1: सब जगह, लेकिन उपयोग सब चीजों का कंट्रोल हो,
0: जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वेस्टेज वाटर जाता है
1: बिल्कुल,
0: इस तरह जो भी आयरन से जो भी निकलता है उसको भी रिट्रीट करके, उसको
1: जैसे अपने यहाँ पर मार्बल की यूनिट्स बहुत ज्यादा है, उसका जो स्लरी निकलता है सर, मैंने वहाँ जाके देखा है, भरे पड़े रहते हैं ऐसे कीचड़ उसमें भरे हुए, तो उसका उपयोग भी तो हो सकता है, तो साइंटिस्ट से मिल करके उसका उपयोग किया जाए, सरकार है बताती है रास्ता बताती है तो उसका उपयोग भी तो होना,
0: इस क्षेत्र की जो अति आवश्यकता है,
1: जी जी जी,
0: मार्बल का जो
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: प्राण भी चला जाता है सर, जो करते हैं ना पैसा का,
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: मैंने देखा है दो तीन जगह में पूछा भाई इसका इतना रेशियो क्यों, माता पिता का फादरलेस और मदरलेस, माँहीन और बापहीन,
1: जी जी,
0: बच्चे जो स्कूल में जाते तो मैंने क्या इतना कोई स्कूल में नहीं, वो स्कूल में पूछा कारण क्या पूछा तो बताया यहाँ के जो मूर्ति बनता है मार्बल से
1: सर, हाँ उसमें एक बीमारी होती है, मैं निवेदन करूँ, सिलिकोसिस
0: तो ये कितना बड़ा
1: बहुत जबरदस्त, वो क्या उसके जो कण है उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में,
0: जी सर,
1: उसके जो छोटे उसके पार्टिकल्स होते हैं उसका जो कण निकलता है PM10 उसको कहते हैं, माइक्रोमीटर में इसको नापा जाता है, तो वो माइक्रोमीटर्स की एक रेंज है, तो उससे अगर छोटा कण होगा
0: उसको देखा ही नहीं देगा हाथ
1: में। और सर इसको रोका भी जा सकता है सर,
0: ऐसे कुछ
1: इसको रोका जा सकता है, उसका सिस्टम है, किसी चूने के पानी में से किसी में से गुजारते हैं तो वो रुक जाता है, तो वो सिस्टम ये लोग करते नहीं है, तो करना पड़ेगा, सरकारें इनको परमिशन दे,
0: मतलब करने के लिए तो चाहते हैं कर नहीं पाते ऐसे,
1: तो नहीं सर ये तो कर तो पाते, करना चाहिए सरकारें इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, ज्यादा दे तो हो जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं होता है।
0: सरकार मतलब देखिए सरकार इतना क्यों, सरकार पैसे कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगा तो वो करेगा नहीं, सरकार को
1: एक्चुअल में
0: कहीं ना कहीं
1: एप्लीकेशन। जैसे मैं आपसे एक बिंदु इधर ही चले गए तो मैं आपसे एक बात निवेदन करूं।
0: जी सर।
1: आप और हम, ये मेरे दिमाग में खूब बार आता है और कभी इस पर आपका साथ लेकर करना भी पड़ेगा। आप देखिए ये जो नदी में सैंड का माइनिंग होता है, रेत का माइनिंग होता है ना, रेत की खुदाई होती है सर, यहाँ से जाने आने के बहुत अच्छे रास्ते थे पहले हमारे पास में, हम पैदल जाते आते थे बड़े आनंद से, बड़ा अच्छा वातावरण। और अब उसकी खुदाई कैसे हो रही है उस माइनिंग की,
0: एक कोई प्लान नहीं,
1: ट्रॉली हाँ यहाँ से भर दी, दूसरी वहां से भर दी, तीसरी वहां से भर दी, चौथी वहां से भर दी,
0: कुछ खड्डे
1: बन गए। सर मैं एक निवेदन करूँ, उन खड्डों से एक तो आना जाना असुरक्षित हो गया,
0: एक्सीडेंट,
1: भाई कोई व्यक्ति घूमने नहीं जाएगा, जाएगा तो भाई वहाँ
0: गड्ढा गिरेगा
1: तो कई सारी दिक्कतें हो जाती। नंबर दो, जब बरसात होती है तब अपने यहाँ पर सर डूबने की घटनाएं खूब सारी हो रही है,
0: बता।
1: ये पर्यावरण का ही बिंदु है। वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी अनइवन डिगिंग हो रही है, अनइवन हो रही है सर। जैसे आप निकल रहे हैं अब जैसे ये जो अनइवन डिगिंग है सर, आपको मैं भले वो पिट्स दिखाऊंगा, इतने गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं इधर उधर, जैसे आपने तो चार ट्रॉली, अच्छा वो ट्रॉली को सीधी लगा दे ट्रक को और लगा के भर के चल दो, वहां से भर के चल दो, वहां से जेसीबी लगाई भर दिया चल दीजिए, तो उससे सर क्या वो खड्डे बन जाते हैं।
0: ऐसे क्यों कर रहा है, उसको तो समझ होना चाहिए जो
1: वो इसलिए कर रहा है कि उसको सस्ते में भर रहा है, वो
0: सस्ता क्यों जरूरत पड़ा है भाई, वैसे तो उसको मिल रहा है,
1: ऐसा मिल रहा है लालच लालच आपका तो लालच अंदर का गुण नहीं है
0: तो, ये तो वो सर ठीक है, जो मुद्दा बोले ना ये चीज सब लोग कर रहे तो उसमें निवारण ऐसे होगा जैसे आप क्यों कर रहा है तो बोल भाई लालच पैसा कम समय में फटाफट हो जाता है, पांच ट्रॉली लेने के बाद 10 ट्रॉली ले
1: लेगा
0: लोन लेगा तो हमारा इनकम हो गया ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसका दूसरा को पर्यावरण को देखा नहीं,
1: पर्यावरण देखा नहीं,
0: इससे आने वाला आगे वाला जानो कि उसको नहीं देखा,
1: देखा नहीं, नहीं
0: एक आदमी कोई मेरा भाई भी आकर गिर सकता है वो भी नहीं देखा,
1: गिर रहे हैं
0: ऐसे भाई मतलब अपना परिवार वो खुद भी कभी गिर जाएगा,
1: वो भी गिरता है।
0: तो ये चीज जो हो रहा है उसको भी मालूम है फिर भी आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको भी मालूम है गई 2 साल पहले भी ऐसे हुआ था भाई, फिर भी अभी वही रास्ता में ही जा रहा जो आप एग्जांपल दिए रेती का जो अनलिमिटेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो आंतरिक
1: तो है ही
0: पास आ गया।
1: तो सर इसमें ये जो डूबने की घटना जो अभी सुन रहे हैं ना, मेरा ऐसा मानने
0: के बाद ये तो
1: मेरा ऐसा मानना है वो क्यों हो रही है मैं बताऊं, ये जो जहां पर सैंड का जो डिगिंग एरिया है उसमें व्यक्ति नहाने जाता है तो नेचर को देख करके नहाने गए और नहाने जाते हैं ना तब वो जो अंदर की तरफ जाते हैं तब एकदम खड्डे में चला जाता है,
0: ओहो एक्सीडेंट,
1: और इसलिए यहाँ पर डूबने से मृत्यु मेरे ख्याल से ज्यादा होनी चाहिए, भाई वो एकदम खड्डे में जा रहा है। पूरे एरिया में अगर इवन डिगिंग हो रखी है कि भाई आप इस एरिया में खोदेंगे तब तो दिक्कत नहीं कि भाई यहाँ खड्डा है सबको दिखेगा, लेकिन यहाँ वहां भी खोद रखा है आपने, वहां भी खोद रखा है, तो वो व्यक्ति जब जाएगा तो निश्चित रूप से वो, तो सर एक एरिया गवर्नमेंट को चिन्हित करके दे देना चाहिए कि इस रास्ते कोई रास्ता है उससे कम से कम आधा किलोमीटर से कोई डिगिंग ना हो,
0: जैसे आपने बताया वो तो ठीक गवर्नमेंट अपना कर रहा है,
1: हाँ,
0: कर
1: ठीक,
0: रहा
1: ठीक, है, ठीक, कर ठीक रहा बात है, ठीक,
0: बट है
1: ठीक,
0: लेकिन जो करने वाले आप और हम जाते हैं तो हम भी उसी फील्ड में जो रहेंगे
1: जी हाँ,
0: तो हम क्या करेंगे अपना सुविधा देखेंगे,
1: सही बात है,
0: बस क्योंकि सुविधा बात
1: एक व्यक्ति 100 में से एक व्यक्ति ने यहाँ से खोद लिया दूसरा वहीं से शुरू करेगा
0: फॉलो करेगा,
1: ये दिक्कत
0: जब तक वो सोचेगा ना भाई कोई भी कर्म करने का पहले सोचेगा 2-3 बार तो उसमें उसका आत्मज्ञान आ जाएगा,
1: तब आएगा,
0: तब जाकर फिर बोले अरे हमें कोई प्रेरणा क्या हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, खुद को समझा जाएगा, कोई दूसरा कोई समझा नहीं,
1: समझना पड़ेगा
0: दूसरा, सरकार
1: समझना खुद पड़ेगा,
0: सरकार
1: से ये चीज मैंने मेरे दिमाग में ये काफी समय से चल रहा था, ये आपके माध्यम से
0: मीडिया के माध्यम से जो कहेंगे तब मीडिया
1: कह पा रहा हूँ,
0: बस सरकार भी इसके लिए क्या
1: सोच
0: फिर बहुत कानून तो बन जाता है,
1: नहीं सर कानून तो है लेकिन उसका जो सर उसका एक्चुअल में सर उसका एप्लीकेशन भी सही तरीके से होने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, नहीं तो उनको खुदाई के लिए मना नहीं कर रहे सर, मैं हमेशा बैलेंस से ही बात करता हूँ, पर जैसे कोई रास्ता है उससे आधा किलोमीटर दूर हो वो एरिया तो निश्चित रूप से उसमें कोई जाएगा नहीं,
0: हमारा कर्म सुखदायी हो ये हमारा दुखदायी न हो, कोई भी करे सरकार करे चाहे हम भी करे,
1: इसका सिस्टम तो कोई ना कोई तय करेगा,
0: समय करा देगा सर, जैसे हम कहे नहीं करे तो प्रकृति ऐसे कराएगा
1: जी जी जी फिर प्रकृति तो
0: करा देगा उसको, इसलिए
1: प्रकृति तो सर बैलेंस करती
0: हम है, चाहे कोई भी हम खिलवे वो हमें,
1: पर हमारा कर्तव्य तो हमको करना है,
0: हमारा कर्म का जो सिद्धांत है सर,
1: जी जी जी,
0: जो गड्ढा खोदेगा वो गड्ढा में वो खुद गिरेगा,
1: पर वो खुद गिरेगा, वो दूसरों को भी गिरा रहा है,
0: दूसरा गिरा रहा है,
1: दूसरों को भी गिरा रहा है,
0: खुद गिरेगा। तो कहने मतलब समझ जाओ, अभी भी प्रकृति आपको इशारा दे रहा है, हमको इशारा दे रहा है, हम समझदार बनेंगे तो इशारा काफी है। और सही बात, जैसे हम क्यों कह रहे हैं आज, कहना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पर्यावरण को बैलेंस लेकर हम लोग सब चलेंगे तो हमें जरूर हमारा इस दुनिया को, इस एरिया को हम हरा भरा और एक स्वर्गमय दुनिया बना
1: सकते हैं,
0: हरा भरी वनस्पति रूप में ग्रीन हाउस बना सकते हैं। जैसे तपोवन आओ देखो, देखो इतना ये कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते,
1: बड़ा नहीं छोटा लिया ना ग्रीन हाउस, इतना जबरदस्त टर्म आपने काम में लिया है सर। ये ग्रीन हाउस की वजह से ही हम थोड़े से ठीक है,
0: आसपास के लोग भी जा रहा है वातावरण में ग्रीन हाउस,
1: सर ग्रीन हाउस से जैसे हीट बढ़ती है।
0: देखिए सर, आप अभी
1: हम ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता सर, तो इस पृथ्वी का टेम्परेचर -19 डिग्री होता सेल्सियस, -19 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता, ग्रीन हाउस की वजह से पृथ्वी ने बैलेंस किया है हमारा ये टेम्परेचर है। अच्छा सर, और अब अगर ये जो है ना ये सर प्रदूषण बढ़ गया तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
0: सही बात,
1: अब घर में आप हम फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा।
0: काम नहीं करेगा सर एसी घर में बैठ कर, भाई एक पेड़ जितना ऑक्सीजन देता है
1: उतना
0: एसी घर में कोई कंट्रोल कर पाएगा, करंट नहीं रहेगा तो उसका हालत क्या कर, पेड़ तो काट देते हैं भाई, पेड़ में बहुत पत्ता गिरता है वो गिरता है, अरे वो तो गिरेगा ही,
1: गिरता है तो वो मिट्टी बनाता है, पत्ता गिर के मिट्टी अपघटित होकर मिट्टी बनती
0: है ना।
1: देखिए प्रकृति की चीज अपघटित होती है तो वो मिट्टी बनती है,
0: कितना बड़ी बात है,
1: हमारी अपघटित चीज मिट्टी नहीं बनती,
0: हम जो
1: तो बनाना पड़ता,
0: हम तो साइंस में जो आपने क्रिएटिव करते इधर उधर मिलावट करके जो बनाते हैं,
1: जी जी,
0: मैंने प्लास्टिक,
1: जी हाँ जी हाँ,
0: फ्लावर,
1: हाँ
0: प्लास्टिक पैड,
1: हाँ वो सर डिकम्पोज नहीं होता है
0: उसके बाद
1: बहुत मुश्किल है सर,
0: मनुष्य मेड है सर,
1: हाँ इसलिए
0: और प्रकृति मेड, जो प्रकृति जो बना हुआ उसका
1: तो
0: बहुत
1: ऑटोमेटिक, उसके पत्ते का तो मिट्टी बनता है,
0: मिट्टी बनता है चीज, इसको जो रोजमर्रा के में जो देखते हैं आसपास इर्द गिर्द में जो देखते हैं, जो हमारा साथ काम होता है इस प्रकृति का, उसको थोड़ा सा हम मित्रता का साथ, परिवार का साथ, ऐसे वो भी हमारा परिवार का एक पार्ट सोच करेंगे तो जरूर आपका अंदर में और प्रकृति भी आपको बहुत कुछ सुख देगा, और कभी भी आपको ऐसे खराब में आपको अपनी मृत्यु नहीं होगा,
1: निश्चित रूप से नहीं,
0: प्रकृति का जब
1: आशीर्वाद मिलता है सर,
0: दुआएं मिलता है,
1: मित्र बन करके आपका साथ देगी,
0: बहुत अच्छा बात बता रहे। और क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोता मित्र आज का एपिसोड में खासकर, क्योंकि
1: सर यही कि आपके अंत चेतना के साथ में हम प्रकृति के साथ में मिल करके इस तरह के जो छोटे मोटे प्रदूषण है या इस तरह के इम्बेलेंसिंग जो कार्यकलाप होते हैं उनको जागरूक करें, बातचीत करें, उनको बताएं कि भाई अच्छा करने से हमारा सबका आपके साथ हमारा भी भला होगा, तो वो लोग समझेंगे, समझ विकसित हो जाए लोगों के अंदर, और ये एडवोकेसी के काम तो आपको हमको तो हमेशा करना ही है, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा सर, कोई ना कोई तो जगता ही है, इतना सारा काम होता है तो कोई ना कोई तो जगता ही है, तो उससे फायदा हो सकता है।
0: मेरा भावना ये है कि भाई हम जिस जगह में रह रहे, जिसका साथ रह रहे, उसका साथ अच्छा से रह पाए और मित्रता का हिसाब से, उपकारी हिसाब से रहे,
1: हिसाब से
0: रहे तो उपकारी करेंगे तो उपकार आज नहीं तो कल हमें वो भी उपकार रिटर्न
1: प्रतिफल के रूप में मिलेगा,
0: जैसे कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, और हम सदा सुखदायी काम करें, कोई दुखी नहीं रहे,
1: कोई दुखी ना रहे,
0: सभी सुखी रहे, और हंसते खुलते बस आए हैं खाली हाथ में, और खाली हाथ में जाना है, लेकिन जाने का पहले प्रकृति का साथ रखकर, प्रकृति में हमको ये पांच तत्व तो मिलना ही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल उसमें मिलना ही है,
0: मिलना ही
1: है, अपने को अपघटित होना है,
0: अपघटित होना है,
1: पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश उसी में अपघटित होगा हमारा शरीर,
0: अपना शरीर तो
1: चाहे उसको जलाओ चाहे कुछ भी करो वो उसी में अपघटित होगा और मिट्टी बन जाएगा,
0: इसलिए हम जो उसके अंदर भी जो चेतना शक्ति है, जो प्राण है, जो विवेक है, वो विवेक में जो संस्कार लेकर जाएगा, फिर अगला जन्म में अच्छा घर में जन्म होगा, सत्ययुग में
1: देवी गुण पुनर्जन्म अच्छा ही अच्छा होगा,
0: और आएगा तो प्रकृति का गोद में वो अच्छा से रह पाएगा, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, चेतना जो शक्ति है जिसको हम प्राण कहते हैं, जीवन कहते हैं, जो विचार कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, जो सभी तो इसी अंतर्निहित गुण से ही विकसित हुए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जीसु क्रिस्ट हो, चाहे गौतम बुद्ध हो,
1: बिल्कुल
0: तो सभी क्या अपना जिज्ञासा को प्रकृति का साथ, प्रकृति प्रति का साथ इतना स्नेह भाव प्यार रहा, जिसका चलते उनका नाम आज कितना फॉलोअर बन गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि एक पॉजिटिव भावना
1: प्रकृति से प्रेरित है तभी सारा ये रचनात्मक काम कर पाते हैं,
0: नहीं तो करना मुश्किल ही होगा।
1: मुश्किल ही मुश्किल,
0: इसलिए ये तो गॉड गिफ्टेड कहेंगे।
1: गॉड गिफ्टेड ही है, हम भी सब गॉड गिफ्टेड ही है। हमको अच्छा करना है, ये तो हमारे हमको करना है।
0: जी जी,
1: ये आपको तय करना है कि आप,
0: क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम नाम है मेरा गांव मेरा अंचल सर,
1: जी हाँ,
0: मेरा एरिया,
1: मेरा एरिया
0: कैसे होना चाहिए, माई एरिया,
1: ऐसा होना,
0: माई एरिया जहाँ हम रह रहे वो एरिया को हम हरा भरा करें, पर्यावरण हमारा शांत
1: सुखद
0: सुखद करें।
1: इसके
0: लिए बहुत अच्छा टाइम, मुझे भी अच्छा लगा ऐसे मेरा गांव और मेरा अंचल ऐसे हरा भरा हो, गोकुल गाँव
1: तभी शांति मिलेगी,
0: शांति मिलेगा। और वहाँ जहाँ भी बैठेंगे अशांति आत्मा भी शांत महसूस करेगा। जैसे अभी तपोवन हमें यहाँ पर देखा, देखो सर चार नजर दिखाइए, पूरा जैसे पूरा छत्र छाया में हम बैठे,
1: इसी की छत्र, ग्रीन
0: हाउस, ग्रीन हाउस का मतलब पेड़ का हाउस,
1: बिल्कुल ग्रीन हाउस।
0: तो ये वास्तविकता कैसे हुआ, सभी पॉजिटिव वाले यहाँ कराते हैं और ऊर्जा लेकर परोपकारी, निस्वार्थ,
1: निस्वार्थ,
0: जैसे जैसे आपने एग्जांपल बताया, जो रेती खोदने वाला जो स्वार्थी होगा,
1: हाँ,
0: तो दूसरा को नहीं देखेगा ना,
1: वो नहीं देखेगा,
0: वो नहीं देखेगा। जब खुद को देखो, मैंने आत्मी अपना मन बुद्धि चेतना को देखो,
1: जी हाँ,
0: तो ये होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो और क्या कहेंगे सर, जाते जाते हैं
1: सर, यही कहना है
0: एपिसोड में क्या
1: सर, यही कहना है कि ये जो इतना नुकसान कीटनाशकों से, प्लास्टिक से, रेडियोधर्मी पदार्थों से, धातु अपशिष्ट से, यार और भी जितने प्रदूषक हैं, अन्य प्रदूषकों पर अपन बात करेंगे, और भी जितने भी प्रदूषक, वो व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं,
0: जी
1: बीमार कर देते हैं, कैंसरस कर देते हैं।
0: सर जानते भी है मन से,
1: जानते हैं फिर भी करते हैं,
0: मानते भी है
1: तो भी करते,
0: क्या नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे
1: भाई, वो इसको समझ जाए,
0: अच्छा वो ये
1: वो उस बात को समझ जाए,
0: ये
1: तो नहीं करेंगे, ये उनको समझ, और समझ के साथ में
0: करेगा
1: काम करें, समझ भी गए, ज्ञान भी बढ़ रहा है, समझ भी कर नहीं रहे, चल नहीं रहे,
0: तो समझदार उसको थोड़े कहेंगे,
1: चलना पड़ेगा सर।
0: सर समझदार उसको कहेंगे जो बिना कहे करे,
1: वो करेगा, सब करेगा, कोई ना कोई तो
0: करेगा,
1: कोई तो करेगा,
0: हम
1: कोई तो करेगा, और ये खुद के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना,
0: खुद को करेगा,
1: खुद के लिए करना है, तो करना तो है ही है।
0: तो सही बात बताए, और कुछ करे
1: जी,
0: जो अच्छा काम, दुआएं मिले,
1: दुआएं मिलेगी, करेगा तो दुआ मिलेगी।
0: तो ऐसे तो बहुत बातें हैं, और जितने एपिसोड हम तो सीरियस ने किया, हमारा रेडियो मधुबन का एक अच्छा मैंने मसला, जिसको हमें खुराक
1: खुराक
0: मिल गया, और हमारा आसपास गांव वाले, हमारा आबू रोड जो ब्लॉक है, जैसे 32 ग्राम पंचायत है, 84 गांव है, विलेज, और ढाणी तो बहुत है, फलियां बहुत है, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल बन जाए। अभी तो ऐसे आबू रोड बा सिरोही जिला को पूरा मान्यता है, क्योंकि हरा भरा में जो है शांति का प्रिय ब्रह्मा कुमारी जैसे सभी संस्था का तरफ से, और ये देन है प्रकृति का,
1: आरामली
0: तो एरिया बहुत अच्छा है, और हमें इसे और अच्छा स्वर्ग बनाए सब मिलकर,
1: ये स्वर्ग सब जगह बने
0: बने, और इसको मॉडल बने,
1: प्रत्येक गांव में बने,
0: बने
1: प्रत्येक गांव
0: गांव बन जाए, तो जरूर हमारा जो मकसद है, जहाँ हमें सुख शांति चैन में रहे, और अच्छा से बन पाएगा। इन शुभ भावना का साथ जो सुनने वाले को भी धन्यवाद देते हैं, इतना ध्यान से सुन रहे, हमारा बात को नहीं देखे, हमारा भाव और भावना को देखे, देखिए क्या चाहते हैं हम,
1: जी
0: तो हम और आप और हम मिलकर ही जरूर
1: मिलकर
0: ही करेंगे, अकेला तो नहीं होगा। तो रेडियो मधुबन एक मंच है, मंच तो सबको खोला है, जो भी स्टेज के माध्यम से अपना बात को रखना चाहे, हार्टी वेलकम है, सुस्वागतम है, मंच खोला मंच है, आपका रेडियो है, आपके द्वारा ही फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द
1: कम्युनिटी।
0: तो ये सरकार का जो मंशा है, जो आसपास गांव का जो गतिविधि हो रहा है, चाहे कोई भी क्षेत्र में पर्यावरण क्यों, दूसरा खेती के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो इन शुभ भावना का साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, खासकर हमारा श्रीमान भोपाल राम पुरेत जी, और मुझे दीजिए इजाजत। रेडियो मधुबन इस तरह कोई कोई मुद्दा को लेकर आपका पास पहुंचता है, और आप भी हमारा नंबर में कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर पर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, और फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8302352272, और ऑफिशियल फोन नंबर है 9414151415, यानी 94-14-15-14-15। ये ऑफिशियल रेडियो मधुबन का नंबर है, आपका नंबर है, और मेरा गांव मेरा अंचल का नंबर है। ठीक है,
1: धन्यवाद सर,
0: धन्यवाद, आभार।

मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जीरी हिचकी मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752 9001313752 ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा खड़ताल ढोलक हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: नमस्कार। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे एक बागवान बगीचे की रचना करता है, माली उसका ध्यान रखते हैं, फूलों की शोभा सिर्फ उसके रूप और रंग से संपूर्ण नहीं होती, उसमें सुगंध भी हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इस प्रकार जगत नियंता ने हम सभी को जीवन रूपी उपहार तो दिया है और उसमें संगीत रूपी सुगंध भी दी है, जो जीवन के आनंद में और भी बढ़ोतरी करता है। जरूरी नहीं सभी मनुष्य आत्मा इसका उतना ही आनंद लेता होगा, परंतु देखा गया है हर प्राणी जीव, जो सामाजिक प्राणी मनुष्य के साथ साथ पशु पंछी और पौधे भी संगीत की धुन से पुलकित हो जाते हैं। आइए संगीत की महिमा में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको भी शुभेच्छा देती हूँ और जितने सारे लिसनर हैं उसको भी प्यार देती हूँ।
0: श्यामली जी, आज हमने बताया कि जीवन में संगीत,
1: हाँ जी,
0: ये जैसे के फूल में सुगंध,
1: हाँ जी,
0: जैसे सुगंध के बिना फूलों की सुंदरता में थोड़ी सी कमी आ जाती है,
1: हाँ जी,
0: इसी प्रकार संगीत का स्थान भी हमारे जीवन में कुछ तो कमी लाता है, कैसे उसको हम और अच्छी तरह से हमारे लिसनर को समझा सकते?
1: देखिए, ऐसे जरूरी नहीं कि वो गीत कर सकते हैं,
0: जी
1: कंठ से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति है जो गीत सुनना बिना सोते भी नहीं है।
0: जी जी,
1: दिनचर्या में अगर थोड़ा सा गीत रखे तो हर काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं।
0: जी जी,
1: गीत सुनते सुनते कोई भी काम करे, खाना बनाए, उसको वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा होता है।
0: जी,
1: अगर कोई भक्तिमूलक डिवोशनल जो गीत होता है, अगर वही गीत का जो वाइब्रेशन होता है वो खाना में पड़ते हैं या कोई काम में,
0: एनर्जी हमारी बनी रहती है।
1: हाँ जी
0: जी,
1: जब हम मंदिर में जाते हैं, अलग दुनिया में जाते हैं, तो मन की भावना भी अलग हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ हर कोई गीत कर नहीं सकते है, ठीक है चलो, वो उसको शायद उसको कंठ अच्छा नहीं है, वो कर भी नहीं पाती है, उसकी इच्छा भी है, उसको समय नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, लेकिन सुन तो सकते है। अभी जिंदगी बहुत फास्ट हो गया, हर घर में टेप रेडियो एफएम तो चलता ही है,
0: जी
1: टीवी हर कुछ भी, लेकिन मैं सोचती हूँ जितना सीरियल देखना पसंद करते हैं उतना गीत भी सुनना पसंद करें।
0: जी जी,
1: सारा दिन इसमें जो जन साधन होता है उसमें प्रभाव भी पड़ते हैं।
0: जी,
1: घर की माहौल कैसे होना चाहिए, थोड़ा गीत प्रधान होता है, म्यूजिक होता है तो, क्योंकि म्यूजिक थोड़ा घर में रहने से बहुत ये लाभदायक है।
0: जी,
1: जानवर भी गीत से थोड़ा मान जाते हैं।
0: जी,
1: अगर एक सांप के सामने बीन बजाए,
0: हाँ ये तो हमारे पास
1: एग्जांपल है, तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें जो हाथ हम हिलाते हैं उसमें वो थोड़ा उसको सिर हिलाते हैं, ऐसे कान में, ऐसे सुना है कि सांप कान में नहीं सुन पाते हैं,
0: हाँ।
1: लेकिन अगर थोड़ा सामने बीन बजाइए, देखिए वो भी थोड़ा डांस करना शुरू करते हैं। हम देख मोर जैसे
0: प्रकृति की रचना को भी कुछ, हाँ ना कुछ ऐसा,
1: बरसात जब आते हैं, बारिश जब होता है, बारिश के रिमझिम से मोर क्यों नाचते हैं,
0: जी
1: उसको
0: जी,
1: अच्छा लगता है। प्रकृति के साथ जानवर या इंसान सब
0: अपने उमंग उत्साह को, हाँ जी, वो प्रत्यक्ष करते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: श्यामली जी, आज आप हमें संगीत में क्या सिखाने वाले हैं?
1: हाँ, हर बार की तरह मैं सरगम ही सिखाऊंगी,
0: हाँ,
1: अलंकार पलटा, क्योंकि अलंकार पलटा करने का बहुत लाभ है।
0: जी,
1: अगर हम पहले कोई भी एडुकेशन, कोई भी शिक्षा लेने के पहले ग्रामर तो जरूरी है।
0: जी,
1: ग्रामर बिना कुछ नहीं सीख सकते,
0: भाषा कोई भी हो, मगर
1: भाषा कोई भी हो,
0: ग्रामर तो चाहिए।
1: या आप कोई शिक्षा, आप खाना बनाइए, उसमें भी प्राथमिक तो शिक्षा लेना चाहिए, वो शिक्षा बिना अधूरा रहते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा उसके पलटा सीखा है, गला को थोड़ा गर्म करे।
0: जी जी,
1: गर्म भी होता है, क्योंकि जब गीत सीखना शुरू करते हैं वोकल कॉर्ड जो है वो नरम हो जाते हैं,
0: अच्छा,
1: उसको थोड़ा सख्त बनाना है, उसको थोड़ा अच्छा एकदम कंक्रीट बनाना है।
0: अच्छा,
1: कैसे, वो जितना पलटा करेंगे उतना उसको गला मजबूत हो जाएंगे।
0: माने ये एक विधि है उसको मजबूत करने की।
1: हाँ, सुमधुर करना है, सुरेला करना है, तो पालटा जरूरी है ही है।
0: जी जी, जी।
1: जितना हम कोई भी प्रैक्टिस करें उतना उसमें भी, और भी पीएचडी किस लिए करते हैं
0: जी?
1: जब जानकारी हो जाए तब तो जाके पीएचडी करते हैं ना
0: जी।
1: तो जितना वो संगीत के ऊपर थोड़ा रिसर्च करेंगे, जितना सरगम करेंगे, उतना और भी पक्का होते जाएंगे।
0: ओके,
1: मैं चाहती हूँ हर लिसनर जो शिक्षा लेना चाहते हैं, पहले उनको पालटा करना जरूरी है ही है।
0: ओके,
1: इसलिए मैं पिछले एपिसोड में जितना सिखाया और भी मैं आगे बढ़ती हूँ।
0: जी जी,
1: ओके,
0: हाँ जी।
1: आज मैं शुरू करती हूँ कि हमने क्या किया। सारे गा सारे गामा लास्ट तक हमने शायद किया है
0: जी।
1: सारे गा सारे गामा पहले किया है, सारे सारे गा, उसके बाद लास्ट में किया है सारे गा सारे गामा, तीन चार। आज क्या करेंगे, सारे गामा पाधा नी, इतना जो सप्तक जो है उसमें क्या करेंगे, जैसे होता है ना 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 2 4 3 5 ऐसे करेंगे।
0: अच्छा,
1: 1 3 करेंगे, उसके बाद 2 जो है बीच का एक स्वर निकल देंगे।
0: ओके,
1: करके मैं सुनाती हूँ। उसके बाद 2 स्वर निकल देती हूँ, उसके बाद 3 स्वर निकल देती हूँ, उसके बाद 4 स्वर निकल देती हूँ, इसलिए एकदम एक बाई एक करते हैं
0: ना। फर्स्ट थर्ड, फिर थर्ड फिफ्थ,
1: नहीं फर्स्ट थर्ड 2 4।
0: अच्छा 2 4, ओके फाइन।
1: 3 5,
0: ओके हाँ जी।
1: 4 6,
0: हाँ जी।
1: 5 7, ऐसे करती हूँ। अगर हम शुरू करेंगे तो समझ जाएंगे लिसनर, ठीक है?
0: हाँ जी।

शायद लिसनर को समझ में आया कि मैं सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा ऐसे प्रकार दो तीन चार हटा देंगी। तो पहले एक हटा दिया, फिर से करती हूँ।

0: इसमें एक लाभ भी है, मैं लाभ भी बताती हूँ
1: जी।
0: कोई कोई गीत में, कोई कोई राग में शुरू होता है सागा। जैसे हम राग सीखेंगे सागा मा पा धानी सा, अगर हम पहले ये नहीं करेंगे तो दिक्कत होंगे, बाद में तकलीफ होंगे।
1: अच्छा।
0: इसलिए मैं सिखा चाहती हूँ निकल के एक एक स्वर, दो स्वर निकल के, बाद में जब राग सीखते हैं उस टाइम में मेहनत नहीं करना पड़े।
1: सात जो सारे गामा प ध नी सा, ये कोई भी स्वर से शुरू होने वाला गीत आसानी से करने के लिए ऐसा करना,
0: ऐसे पलटा करना जरूरी है। ठीक है
1: जी।
0: मैं आ करती हूँ।

0: लिसनर नोटिस किया है कि इसमें दो स्वर निकल दिया है, सा मा अगर करते हैं तो बीच में जो रे गा निकल दिया है
1: जी,
0: दो स्वर निकल दिया, फिर इसको आ करते हैं।

श्यामली जी, सरगम के इसी अलंकार के साथ और भी आपसे बहुत कुछ हम सीखना चाहते हैं और आप सिखाएंगे भी, मगर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में हम बहुत मीठा सा प्यारा सा गीत लेकर आए हैं हमारे सभी श्रोता मित्रों के लिए, आप सभी उसका आनंद लीजिए। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने शामली जी से अलंकार के बारे में कुछ जानकारी ली। आज वो हमें नंबर वाइज जो 7 सुर है उसमें फर्स्ट, थर्ड, फिर सेकंड, फोर्थ
1: ऐसे सिखाया,
0: इस प्रकार से कैसे जंप करके एक एक बीच में निकाल के जंपिंग वाला जो टेक्टिस है, जिससे आने वाले समय में हम राग को जब सीखेंगे तो कोई भी सुर से अगर राग शुरू हो तो हम उसको आसानी से कर पाते हैं। श्यामली जी पुनः आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आगे आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: अभी साधा, सा पा तक किया है साधा,

0: मैं सोचती हूँ कि शायद लिसनर को ये जो हमने किया है पहले से वो थोड़ा रिविजन करेंगे तो अच्छा है
1: जी।
0: थोड़ा कठिन है, अगर थोड़ा और भी एक बार जानकारी दे देती हूँ तो और भी अच्छा करते। मैं ये जो किया है रिविजन करती हूँ।
1: हाँ, मतलब उनका रिविजन भी हो जाएगा।

0: जितना ऐसे करेंगे और भी गला और भी सुंदर होते जाएंगे।
1: सभी प्रकार की स्पीड जो है,
0: हाँ जी,
1: उसको प्रैक्टिस में लाना है।
0: लेकिन मैं अभी मना करती हूँ, इतना जल्दी नहीं होंगे, इतना जल्दी भी नहीं करे, इसलिए मैं रिपीट करती हूँ, दोबारा करती हूँ, रिविजन कराती हूँ। तो अगर कभी भी जरूरी होता है तो मैं फिर भी रिविजन करा दूंगी
1: जी।
0: ठीक है
1: जी। श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत। आपसे अलंकार के बारे में और भी जानकारी हम लेते रहेंगे। आज आप हमारे लिए कौन सा गीत लेकर आए?
0: बहुत अच्छा एक फिल्म है, आ गले लग जा।
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: उसमें एक
1: बहुत ही फेमस ये फिल्म है,
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता, क्योंकि शायद लिसनर के साथ पहले कुछ
1: नाता है हमारा, बिल्कुल लिसनर के साथ नाता है, इसलिए घर बैठे उनको गुरुजी मिल गए।
0: हाँ जी
1: जी।
0: तो मैं सोचती हूँ कि अगर कोई भी लिसनर ये सुनकर वो भी गा सकते हैं, मैं कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है
1: जी।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सचमुच का पक्का वादा रहा, कभी नहीं छूटने वाला।
1: मैं कोशिश कर सकती हूँ।
0: सही बात है,
1: बच्चों को सुनाना है, लिसनर को सुनाना है।
0: जी, और सचमुच हमारा नाता भी तो वैसा है।
1: हाँ जी,
0: जी,
1: हाँ
0: जी। हम यहाँ वो वहाँ, फिर भी हमारा नाता अटूट बंध जाता है। श्यामली जी, इसी के साथ आज हम लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। SMS के द्वारा भी आप हमें संगीत के बारे में पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 94-1415-1415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 94-1415-1415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं माँ खायू, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौड़ परिवार के जमाई सा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौड़ परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौड़ परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
1: मेरा फैसला यह है कि
2: क्या है पापा,
3: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
4: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
5: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
1: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे है, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
5: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
6: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
7: शांति, सब ठीक कह रहे हैं, चलो हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
1: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
8: क्या?
9: क्या?
8: क्या?
9: क्या?
1: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
2: हाँ जमाई सा तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
3: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
6: मैं तो बहुत खुश हूँ।
3: बढ़िया,
2: बहुत अच्छी बात है,
3: सब लोग मिलकर रहेंगे।
10: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
1: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर।
11: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
12: माँ, आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके?
10: किशन, सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
3: जमाई सा परिवार के हैं, और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपके ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
5: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा, और घर जमाई की इज्जत कौन करता है?
12: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं?
13: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो?
5: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है ये खुशी न दामाद की।
3: अरे जमाई सा, अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
2: वैसे जमाई सा, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
10: अरे राजकुमारी, तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
3: अरे माँ, खतरा है ना?
11: क्या?
3: राजकुमारी के हाथ का खाना।
7: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
13: क्या, करेले के लड्डू
6: या मिर्ची का हलवा?
2: बस इसी से वार्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊँ, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
9: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
12: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
14: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
2: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
14: हाँ हाँ वही।
10: हाँ बेटा, हमारी समझ में नहीं।

0: आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
1: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या, अंधेरों में साथ निभाता है दिन में भला क्या खूबी है, मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या।
2: किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
3: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
4: चंद्रावती, तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
3: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
4: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
2: भाई साहब जाने दीजिए ना।
5: भाभी जी, मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
4: जमाई साहब, आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो। एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो ना सोने देती हो तुम।
2: भाई साहब बस कीजिए, जमाई साहब के सामने ये सब शोभता नहीं।
3: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है, पर ये कहते हैं।
6: भाभी जी, भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी भी है दिल नहीं।
7: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
1: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
3: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
0: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
8: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
5: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
8: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है, रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
2: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन, शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार, कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन दिल में नहीं।
0: चलिए जमाई साहब, अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
6: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाईसा के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोल कर इस्तेमाल कर लिया था। वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाईसा रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
9: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
10: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित।

की पर चले और बंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई

0: टले ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

शांति। आज 6 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में पुनः बाबा ने आत्मा का लेसन पक्का कराया है। साथ ही बाबा कहते हैं, दुनिया में मनुष्य कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो आत्मा शांत हो गई, अर्थात शरीर से अलग हो गए। तो तुम्हें भी यहां योग में जीते जी देह से अलग होना है, अशरीरी होने का अभ्यास करना है, अर्थात डेड साइलेंस का अनुभव करना है। चारों ओर बाबा कहे वह डेड साइलेंस का सन्नाटा छा जाए, और वह तभी होगा जब आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होगी। आत्मा का पहला स्वधर्म शांत स्वरूप होना। उस शांत स्वधर्म में स्थित होना और दूसरों को भी यही प्रेरणा देना। दूसरा हमारा स्वधर्म है कि आत्मा पवित्र स्वरूप है। तो बाबा कहते, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करना। जितना पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत होगा, उतना ही स्वराज्य के फाउंडेशन को हम मजबूत करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को इस बात का विशेष अटेंशन रखना है, शांति और पवित्रता, इस दोनों बातों के स्वधर्म में स्थित होकर के फाउंडेशन को मजबूत करो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर है, पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती है। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता, तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है, कहते हैं उनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहां भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है, अर्थात जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है, अशरीरी होकर स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करते, ये है सच्ची शांति। वो लोग शांति को नहीं जानते, डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वो मर गया, शांत हो गया, तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस, अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है, दुनिया को पता ही नहीं है, हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं, अपने स्वरूप अपने स्वधर्म में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, उनको यह पता ही नहीं
इसलिए शांति मांगते हैं। तो धर्म का पता ही नहीं, स्वस्वरूप का पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांत है? अशरीरी हो बैठ जाओ। बाबा कहते शांति चाहिए, अशरीरी होकर बैठ जाओ। वह तो हठ से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं। उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, इतना बाबा आत्मा के पाठ पक्का कराते जाते हैं। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हो। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है। देह अभिमान में है तो दुख में, देह अभिमानी में है तो शांति में। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है। अपने परमपिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। आत्मा स्वराज्य मांगती है किससे? बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राज योग कहा जाता है। परमपिता परमात्मा राज योग सिखाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं देह को समझ लेते हैं। आत्मा बोल रही है लेकिन क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं इसलिए देह को ही समझ लेते मैं। वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती है मैं ये चीज उठाता हूं। फीमेल कहेगी मैं उठाती हूं। वास्तव में आत्मा तो मेल है, बच्चे हैं। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं कौन? आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे कहां बजते हैं? बाबा कहते सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं। उनको जगाते हैं, शिव बाबा को जगाते हैं। बाबा कहते जगाते तो सबको है। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बड़े बड़े ढोल नगाड़े सब बजाते हैं अपने आप, जैसे वो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। तो सवेरे सवेरे बैंड बाजा बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं, वो फिर भक्ति में शिव बाबा को जगाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं है। बाप कहते तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो, शांत स्वधर्म में स्थित हो जाओ। पहला स्वरूप है शांति, दूसरा स्वरूप है हमारा पवित्रता। तो तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम यह मैट्रिक पास करेंगे फिर यह करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। तो वह भी शांति को बाहर ढूंढते हैं। वास्तव में है भीतर, हमारा स्वधर्म है, लेकिन शांति को बाहर ढूंढते हैं।
परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाबा कहते आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। यह बातें दूसरा कोई समझा ना सके। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती, सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि रूपी बर्तन सोने का हो तब ज्ञान की धारणा उसमें हो सके। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे, ये ज्ञान का असर किसको होता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को स्वराज्य देता हूं। यह स्वराज्य मिलेगा तब, तब यह स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्य को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्य को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन न सके, तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते, अगर जान जाए तो दुखी हो जाए। क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे, राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहां तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा है, इसमें संशय की बात नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। यह दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है, यह दैवी धर्मों का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो यह हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। जब किसी आत्मा को देखते हो तो समझते हैं यह हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है, इसने पूरी भक्ति की है फिर बाप से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है फिर भक्ति शुरू होती है। यह किसको पता ही नहीं है, मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं, बल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं। इतने पक्के मकान बनाते हैं कि अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान ना हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का, अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहां की राजाई तो कुछ है नहीं, कलयुगी दुनिया की राजाई तो कुछ है नहीं। आज राजाई है कल किसी ने चढ़ाई की, खलास। फाउंडेशन कोई का है नहीं, मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं है, मनुष्य जीवन का भी फाउंडेशन नहीं। आज है कल मर जाए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला ना सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके, ऐसा स्वराज्य बाबा देते हैं। ऐसी बादशाही देते हैं कैसी, जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। एक तो कोई गिरा ना सके, कोई ले ना सके, छीन ना सके,
और ऐसी बादशाही देती है जो जरा भी दुख की बात ही नहीं रहती। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए ऐसा स्वराज्य हम पाते। निश्चय तो है ना, निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इसलिए तीसरा फाउंडेशन है निश्चय का। पहला स्वधर्म को फाउंडेशन पक्का करना है, शांति स्वधर्म। दूसरा पवित्रता का। तीसरा निश्चय। निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया। यह कैसे समझे शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे तुम सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है। वह ज्ञान का सागर पतित पावन, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है, उनके ही श्रेष्ठ मत है। दुख हरता सुख करता एक ही है, उनके ही श्रेष्ठ मत है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। ये तो बाप का ही काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं है। बादशाह में भी ताकत रहती है। बाबा कहे द्वापर युगी बादशाहों में भी ताकत रहती है, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, तो सतयुगी महाराजाओं में तो कितनी ताकत होगी, उनको वजीर आदि की जरूरत ही नहीं। तो बाबा कहे तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। श्री कृष्ण को अपनी राजधानी होगी। दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना। फिर 8 है व 108 है, आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वह भी देंगे। जो जिएंगे बाप ज्ञान रत्न देते रहेंगे, जो जिएंगे बाप ज्ञान रत्न देते रहेंगे। देना ही है, ड्रामा में नोंद है। परमात्मा का अभी पार्ट है, ये ज्ञान देने का पार्ट अभी नोंदा हुआ है। बाप कहते आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो। दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, यह भी पता चले कि हम वहां राजधानी कैसे करते हैं, हम वहां राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहां सोने के महल है, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो। बाबा कहे तुम अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। समझते हैं थोड़ी ईंट ले जाए। ध्यान में जाते हैं, वहां सोने के महल देखते हैं, सोने के ईंटों के मकान देखते हैं। ईंटें पड़ी होती है तो समझते थोड़ी ईंट ले जाए। फिर उतरते हैं तो अपने को यहां देखते हो।
मेरा भी ध्यान में अपने को रास करती थी, श्री कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस नहीं होता है, रिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, बाबा कहते ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाता है, यही पुरुषार्थी स्वरूप जाकर संपूर्ण स्वरूप बनते हैं, तो फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचा आदि देखते हो, यह बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको शुभिरस पिलाते हैं। ध्यान में जब जाते हैं संदेशिया तो क्या कहते हैं, बाबा हमको वहां शुभिरस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो पिला ना सके, फल फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा ही नहीं होगा। तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहां प्रिंस था, वो तो वैकुंठ हो गया ना, वैकुंठ के वैभव यहां मिल ना सके, यहां देखने को नहीं मिलता है, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाप कहते हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, यहां तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। इस सारे संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जो भगवान से प्रार्थना न करता हो कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। दुख में ही याद करते हैं, श्री कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाप कहते निरंतर मुझ बाप को याद करो,

रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं है, रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं, शिव और शालिग्राम शोभता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो शालिग्राम भी बनाते हैं, पतित पावन तो वही है ना, यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह तो चलाना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं, तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो। बाबा कहे वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं, तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत कहाँ है, बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं इसलिए शांति और सुख का वर्षा देने लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता, परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। ऐसे परिवार है जहां इकट्ठे रहते हैं लेकिन बाबा के उनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होते नहीं, नाम ही है स्वर्ग, वहां सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है, कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। बाप के साथ हम बच्चे भी कौन है, खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है, डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेगी लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनना। आज का स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली

0: के याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूरत और प्रेरक आधार मूरत आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अच्छा, ओम शांति।
1: निमित निर्माण निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ। घर चलना है, घर चलना है, देर हो रही और न देर लगाओ। सुनो सुनो क्या कहती दादी, जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ।